0: मंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, पूरी घटना का वक्तव्य नहीं देंगे और दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, आदेश किसने दिया चलाने का गोली, जब तक ये लोगों के समक्ष नहीं रखेंगे, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, जब तक नौकरियां बेरोजगारी खत्म नहीं होती, निष्पक्ष परीक्षाएं पारदर्शिता ढंग से नहीं होती और जितना पेपर लीक बंद हो जाए जितना जल्द से जल्द उतना अच्छा है, वरना हम सब लोग जो है ये लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे।
1: आपको बता दें कि दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बिहार में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते हैं। जगह जगह पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें होती हैं। इसी कड़ी में बिहार के सिवान में प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग का वीडियो भी आता है। सिवान के JP चौक के पास SIT के एक जवान ने फायरिंग की। SIT के जवान अभिषेक पटेल की तरफ से फायरिंग वाला वीडियो वायरल होता है। 3 प्रदर्शनकारियों के घायल होने का दावा किया जाता है और तगड़ा सियासी संग्राम छिड़ जाता है। अनिकेत के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।
2: बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके स्वीकार किया है कि सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल ने भीड़ में फंसने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए AK-47 से हवा में 4 राउंड गोलियां चलाई थी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि इन गोलियों से कोई घायल नहीं हुआ था। अब तेजस्वी और RJD सम्राट चौधरी सरकार से जवाब मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सरकार ये बताए कि AK-47 चलाने का आदेश दिया किसने था।
1: अब सिवान में हुई AK-47 से फायरिंग के खिलाफ तेजस्वी यादव की अगुवाई में RJD पटना के गांधी मैदान से लोक भवन के लिए मार्च शुरू करती है। सुबह से ही RJD कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगते हैं।
3: तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये तमाम RJD के नेता कार्यकर्ता पटना के JP गोलंबर से निकलेंगे और डाक बंगला चौराहा होते हुए मार्च कूच करेगा लोक भवन तक के लिए। और आप तस्वीरें देख रहे हैं JP गोलंबर से, जहां पर देखिए ये पोस्टर बैनर है जिसपे साफ लिखा गया है कि ना डरेंगे ना झुकेंगे, हक के लिए लड़ेंगे राष्ट्रीय जनता दल। और जो AK-47 से फायरिंग की घटना हुई थी सिवान में,
1: इस मार्च में RJD के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता छात्र आंदोलन में AK-47 के इस्तेमाल को लेकर निकल पड़ते हैं। बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि RJD कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के झंडे नहीं बल्कि तिरंगा रहता है।
4: ये छात्र और युवा विरोधी जो सरकार है, ये अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। किसके कहने पर AK-47 चलाया गया, किसके कहने पर गोली चलाई गई? सवाल ये है कि ये सरकार जो जिस तरह से युवाओं और छात्र विरोधी है उन पर दमन कर रही है, गोली चला रही।
1: लेकिन लोक भवन से पहले ही डाक बंगला चौराहे पर तेजस्वी के इस मार्च को रोका जाता है। इस मार्च में RJD के कार्यकर्ता हाथों में नकली AK-47 लिए नजर आते हैं।
3: RJD का राजभवन मार्च और तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि सिवान में AK-47 से जो फायरिंग हुई उस मामले में कार्रवाई होने चाहिए बड़े अधिकारियों पे। और यहाँ देखिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये AK-47 का एक कटआउट लेकर के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं और इस पर पुलिस लिखा हुआ है। आप RJD के कार्यकर्ता हैं या पुलिस? मतलब
5: हम आम जनता है, कलाकार है।
3: ये क्या लेकर के आए हैं?
5: ये जो अभी मौजूदा सरकार, हम लोग स्टूडेंट पर जो घटना घटा है उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं कि दोबारा ऐसा घटना नहीं हो। मेरे देश का भविष्य है, जो स्टूडेंट है मेरे देश के भविष्य है, उन पे ये ऐसा ऐसा घिनौना काम दोबारा न हो।
1: तेजस्वी यादव के साथ उनकी बहन मीसा भारती भी इस विरोध मार्च में सड़क पर उतरती है। डाक बंगला चौराहे पर जब पुलिस बैरिकेडिंग कार्यकर्ताओं को रोकती है तो वो बैरिकेडिंग पर ही चढ़ जाते हैं और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं।
6: जो न्याय की मांग को लेकर आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं, हमें आज उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से। पूरे देश को उम्मीद रहता है सुप्रीम कोर्ट से कि वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से कि न्याय मिलेगा, लेकिन आज पूरे देश के छात्रों को ना उम्मीदी हाथ लगी है।
1: तेजस्वी और RJD के लोग आगे बढ़ते बढ़ते इनकम टैक्स गोलंबर तक पहुंच जाते हैं। यहां पुलिस इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है।
7: वाटर कैनन की जो बौछार है वो की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से वाटर कैनन की बौछार राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं पर की जा रही है, बावजूद जो है जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं वो यहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर आरजेडी के कई विधायक खड़े और तेजस्वी यादव वाटर कैनन में भीग रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव जो है वो वाटर कैनन में भीग रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो वाटर कैनन और तेजस्वी यादव के ऊपर वाटर कैनन की बौछार की गई है। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के ऊपर वाटर कैनन की बौछार जो है वो की गई है। और देखिए तेजस्वी यादव आगे की तरफ जो है वो कूद गए हैं।
1: कोलंबर पर पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी होती है। इसके बाद तेजस्वी यादव समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। इन लोगों को हिरासत में लेकर जिस बस में बैठाया जाता है, आरजेडी कार्यकर्ता उस बस को ही हाईजैक कर लेते हैं।
7: तेजस्वी यादव को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और डिटेन करने के बाद इस बस में जो है उन्हें बिठाया गया। और अब आप इस तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने इस बस को ही कब्जे में कर लिया है। देखिए किस तरीके से सैकड़ों कार्यकर्ता जो है इस बस में चढ़ गए हैं और आगे तेजस्वी यादव मौजूद हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं ने इस बस को ही हाईजैक कर लिया है। इस बस में पुलिस से कई ज्यादा गुना में यहाँ पर जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं।
1: हिरासत में लेने पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं।
8: लोगों का मार्च राजभवन तक का था लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुर्म आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे, जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं
6: है। देखिए इस सरकार से उम्मीद जो है कि छात्रों के ऊपर AK-47 चला सकती है वो हमारे नेता के ऊपर तेजस्वी के ऊपर वोटर कैनन का ही। अभी आप थोड़े देर में हमें अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बिहार सरकार इनके ऊपर गोली ना चलाए।
3: तेजस्वी यादव जी का लोक भवन मार्च सुपर फ्लॉप हो गया, छात्रों नौजवानों ने ही इसे नकार दिया। इसमें सिर्फ उपद्रवियों की भागीदारी राजद कार्यकर्ताओं की रही।
1: तेजस्वी यादव को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन अब दिल्ली और रांची के बाद बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया है। पटना के गर्दनी बाग में छात्र शिक्षा भर्ती परीक्षा यानी TRE-4 के लिए धरने पर बैठ गए। धरना भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकालने की मांग पर शुरू हुआ था। हालांकि सम्राट सरकार ने चंद घंटों में ही 32,388 भर्तियों के लिए कल ही विज्ञापन निकाल दिया, लेकिन छात्र सिर्फ इससे सहमत नहीं है। उनकी मांग है कि TRE-4 में सिर्फ एक ही परीक्षा होनी चाहिए।
9: लोग एक परीक्षा की मांग कर रहे हैं, एक ही परीक्षा होनी चाहिए। तो ये भी मांग अभी तो क्लियर हुआ नहीं है, ये तो बरगलाने के लिए भी दिया जा सकता है। इस तरह का नोटिस तो पहले भी दिया गया था।
10: जीत तो दिख रही है,
9: बिल्कुल एक जीत है, बहुत बड़ी जीत है। क्या हम लोग शुरुआत किया और आज ही नोटिफिकेशन आ गया।
1: और उन छात्रों के समर्थन में तेजस्वी यादव भी गर्दनी बाग पहुंच जाते हैं।
11: वो लोग सत्ता में है, उन लोगों को कोई होश नहीं है, जो अधिकारी चलाता है वही लोग चलते हैं।
1: अब छात्रों का कहना है कि वो प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि सरकार को जो भी नया प्रयोग करना है वो TRE-5 से करे। इसके अलावा अभ्यर्थी TRE-4 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। अनिकेत के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।
2: रांची में 24 दिन के बाद भ्रष्टाचार से ग्रसित भर्तियों को लेकर होता आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन अब एक और आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड सरकार ने जिस तरह से TDPL के तहत हुई सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया, अब इस फैसले ने हजारों सरकारी कर्मचारियों को एक दिन में बेरोजगार कर दिया है। अब ये आंदोलन के रास्ते पर है।
12: रातों रात आपके पैर के नीचे जमीन खींच ली गई है।
13: हम कहाँ जाए सर, हम रोड में आ गए हैं।
14: मैं अपने माँ को ये बता नहीं पाया हूँ कि मेरी नौकरी चली गई। अगर मैं ये बात अगर मैं अपने घर में बताता हूँ तो अगर वो उनका श्योर है कि उनको शायद उनको दिल का दौरा पड़ जाए।
15: हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ रहा ही नहीं।
16: घर वालों को बता रहे कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो, लेकिन हम लोग अपना मानसिक स्थिति को कैसे ठीक करें कि सब कुछ कैसे ठीक होगा।
17: पानी, पानी, थोड़ा सा एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए।
18: टूट कर वो लोग गिरते जा रहे हैं जो अपनी जिंदगी में लंबे संघर्ष के बाद सरकारी नौकरी ईमानदारी से पाकर अपने पैरों पर खड़े हुए। जमीन पर गश खाकर गिरी ये बेटी मनीषा है जिसकी नौकरी रांची में 8 महीने पहले लगी। ईमानदारी से मेहनत से परीक्षा देकर जिसे संभालने के लिए दौड़े लोग भी इस वक्त उसी मानसिक हालत में है जिसकी वजह से मनीषा को चक्कर आए। आज तक संवाददाता सत्यजीत और बाकी लोग यहाँ इस बेटी को धैर्य बंधाते।
10: धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, अच्छा अच्छा हो जाएगा।
16: ये पहले से स्टेशन मास्टर ऑलरेडी थी रेलवे में, लेकिन इनका स्थिति ऐसा है कि वहाँ जॉब किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, ट्रेनिंग में ही थी, वो छोड़ करके आई है, वहाँ से भाग करके आई है। मतलब ऐसे
10: सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए,
16: स्टेशन मास्टर ऑलरेडी थी,
10: धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, न्याय होगा।
16: ऐसे स्थिति में सोच रहे कि मैं न उधर के रही न इधर के रही, और सब सिचुएशन हमेशा बराबर नहीं रहता है कि हमको, हम लोग एक साल से अभी तक ले ऐसे ही है।
18: मनीषा जैसी स्थिति देश के किसी भी घर की बेटे या बेटी की हो सकती है जो रेलवे की नौकरी करती थी, लेकिन 2024 में JSSC CGL की परीक्षा झारखंड में पास की। कोर्ट में परीक्षा को लेकर लड़ाई लड़ी गई, फिर 2025 दिसंबर में नियुक्ति पत्र मिला। रेलवे की नौकरी छोड़कर घर के राज्य में रोजगार पाने के सपने में बुना गया महल सोरेन सरकार के एक फैसले से तोड़ दिया गया।
16: घर वालों को बता रहे कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो, लेकिन हम लोग अपना मानसिक स्थिति को कैसे ठीक करें कि सब कुछ कैसे ठीक होगा। कल तक हम तीन तीन जॉब के हकदार थे, आज हम रोड पे आ गए हैं, क्या करेंगे बताइए सर। न घर में रह रहे, न ससुराल में रह रहे, बाहर रह रहे।
18: अगर आप देश में सरकारी नौकरियों का सरकारी कुचक्र समझना चाहते हैं तो झारखंड ऐसा उदाहरण है जो भगवान न करे कभी दोबारा देना पड़े। जहां 11 साल तक JSSC CGL की परीक्षा या तो लटकती रही या पेपर लीक से रद्द होती रही, फिर सितंबर 2024 में जाकर परीक्षा किसी तरह हुई, आरोप फिर से CGL परीक्षा में धांधली के लगे, लेकिन कोर्ट से आदेश के बाद और सरकारी जांच के बाद सफल 2000 से ज्यादा लोगों को दिसंबर 2025 में नियुक्ति पत्र बंटता है। जुलाई 2026 में JPSC सिविल सर्विस प्री परीक्षा में धांधली के बाद प्रदर्शन रांची में शुरू होता है। प्रदर्शनकारी फिर JPSC से लेकर JSSC CGL की परीक्षा तक को रद्द करने की मांग करते हैं। 24 दिन आंदोलन के बाद सोरेन सरकार 22 परीक्षाएं रद्द कर देती है, 6 परीक्षाओं को पोस्टपोन कर देती है, 17 परीक्षाओं की CID जांच का आदेश दे देती है, जिसमें 2014 से अब तक की कई भर्तियां शामिल हैं। और इसी वजह से झारखंड की राजधानी रांची में सैकड़ों युवाओं के पैरों तले जमीन एक झटके में खींच ली गई है।
10: किसी ने घर खरीद लिए नौकरी बनने के बाद, किसी ने खरीदी गाड़ियां, अब उसका EMI कैसे जाएगा, ये तमाम सवाल इनके साथ, इनकी नौकरी तो गई है, ये सवाल भी अब इनके दिमाग और जेहन को ऐसे कौंध रहा है, इस तरह से टीस रहा है जिसका जवाब इनके पास है नहीं।
19: रेलवे में ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पद छोड़कर रिजाइन देकर मैं यहाँ ज्वाइन किया। मैं इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं राज्य की सेवा के लिए अपना योगदान देना चाहता था। सर अभी हमारी नई नई शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, हमारे पास अभी लाइबिलिटी है, तो हम कहाँ जाएं सर, हम रोड में आ गए हैं, मेरा क्या होगा सर, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बाल, मेरा नौकरी सर, मेरा नौकरी केवल अकेले हम डिपेंडेंट नहीं सर, मेरे पापा, मेरे माता पिता बूढ़े माँ बाप है, मेरे भाई है, भाई है, भौजाई है, मेरी बीबी है, कहाँ जाएंगे सर, क्या खिलाएंगे पहले बताइए तो आप, हम क्या करेंगे अब, मेरी नौकरी चली गई, चले गए घर भी, घर तक कोई सर, हम बता रहे हैं कोई अपनी बहन की शादी के लिए अभी तक अभी लोन ले लिए हैं, उनकी भरपाई कैसे होगी सर, सरकार इसका जवाब दे, सरकार जवाब दे सर, हम न्याय की गुहार लगाते हैं।
14: मैं अभी तक मैं अपने माँ को ये बता नहीं पाया हूँ कि मेरी नौकरी चली गई, अगर मैं ये बात अगर मैं अपने घर में बताता हूँ तो अगर वो उनका श्योर है कि उनका शायद उनको दिल का दौरा पड़ जाए या उनके स्वास्थ्य इतनी बिगड़ जाए कि वो शायद इस दुनिया में ना रहे या ऐसा कुछ भी होने का आशंका है। ये मैं CM साहब से यही मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी माँ का अगर कुछ भविष्य में अगर ऐसा होता है, क्योंकि न्यूज आज नहीं तो कल वो तो पता चलना ही है, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेता है।
18: सवाल है कि क्या सोरेन सरकार बीच का रास्ता नहीं निकाल सकती थी, क्या उस बीच के रास्ते पर आंदोलन करने वाले छात्र भरोसा ना करते, क्या यही रास्ता बचता है कि भ्रष्टाचार की चक्की में ईमानदार भी पीस दिए जाएं? अगर हाँ तो ये भी अन्याय है जिस पर संज्ञान लेना जरूरी है।
2: UGC नेट में पेपर की गड़बड़ियों से NTA पर फिर से सवाल उठे हैं, तो अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बड़े स्तर पर बदलाव शुरू हो गया है। एजेंसी ने 600 एक्सपर्ट्स को परीक्षा टीम से हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। इसी के साथ प्रश्न पत्रों की जांच अब एक नहीं बल्कि 4 स्तरों पर होगी। और इतना ही नहीं, NTA के दफ्तरों की सुरक्षा भी CISF के हवाले करने की तैयारियां हैं।
1: एनटीए फिर फेल हुआ तो एजेंसी ने हटाए 600 एक्सपर्ट। यूजीसी नेट परीक्षा पर विवाद तो एनटीए में किए बदलाव। पेपर की जांच करेगी स्पेशल टीम, शिक्षा मंत्री कर रहे हैं बैठक। क्या परीक्षाएं लेने में नाकाम एजेंसी, एनटीए पर फिर उठे सवाल। क्या एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल रही, आखिर खोट कहां है। एनटीए के पुराने दाग भुले भी नहीं थे कि नए धब्बों से एनटीए का दामन फिर से दागदार हो गया। जी हां, नीट पेपर लीक के बाद यूजीसी नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई, जिसके चलते एनटीए ने अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है और दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान किया। लेकिन एनटीए के खिलाफ कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने हल्ला बोल दिया तो यूजीसी नेट के परीक्षार्थियों ने भी एनटीए को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया।
20: जिस तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है, आप समझिए इनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं है, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए कि वो किसके लिए बैठे हैं। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, एनटीए को बंद करना पड़ेगा, अन्यथा ये हर साल लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देंगे।
21: इतनी मेहनत से आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में गलतियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन रिपीट पाए जाते हैं और अब एकदम कहा जाता है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया,
22: तो ये काफी डिसहार्टनिंग है। हमारे दिल को काफी ठेस पहुंचती है क्योंकि हम 2 महीने से वेट कर रहे थे कि आंसर की रिलीज होगी। हमने 25 जून को एग्जाम दिया था और पिछले साइकिल्स को देखा जाए तो एक हफ्ते के अंदर आ जाती थी आंसर की, बट 2 महीने तक नहीं आई। हमको कैंपेन चलाना पड़ा ट्विटर पे, हमको एक्स पे कैंपेन चलाना पड़ा, तब जाके हमको कोई रिस्पांस मिला। मैम यहाँ पे बहुत बार आई है एनटीए ऑफिस, आंसर की के लिए भी आई है मैम। सो वी वर होपिंग कि आंसर की आएगी, बट एकदम से आप 2 महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ कि किस बेसिस पे कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट जनरलाइज कि टाइपोग्राफिकल एरर्स थे। इंग्लिश में कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स थे ही नहीं, बस क्वेश्चन पेपर जो 2024 के थे वो रिपीट हुए थे, PYQs रिपीट हुए थे, कोई एरर नहीं था। तो उस बेसिस पे आप री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, विच इज अनफेयर।
23: इतना वास्ट सिलेबस है, पेपर वन भी है उसके साथ, हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें। तो ऐसे और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि री एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है।
1: बार बार सवालों के घेरे में आने वाले एनटीए के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद दिल्ली में एनटीए के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन हुआ तो अब एनटीए में फिर से बदलाव का दौर शुरू हो गया है। पहले एनटीए ने 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाने की जानकारी दी थी और अब परीक्षा टीम में शामिल 600 एक्सपर्ट्स को हटाकर उनकी जगह नए विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था लागू करने, नए अधिकारियों की नियुक्ति और एनटीए के कार्यालयों की सुरक्षा CISF के हवाले करने की तैयारी है। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी एनटीए में सुधार के लिए बैठकें कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए सभी जरूरी सुरक्षा और उससे जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। एनटीए की ओर से बताया गया कि पेपर सेट करने वाली पूरी टीम को बदल दिया गया है। पेपर की जाँच के लिए 4 स्तरीय प्रश्न पत्र जाँच सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसके लिए विशेष टीम बनाई जा रही है। अगले 2 से 3 हफ्तों में 20 से 25 अधिकारियों की विशेष टीम होगी और इन अधिकारियों को विशेष तौर पर इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पात्रता और PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 87 विषयों में UGC नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून 2026 तक आयोजित की थी। 16 अगस्त को इनमें से UGC नेट की अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। UGC नेट जून 2026 के इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि 150 में से 67 सवाल 2024 की UGC नेट परीक्षा से दोहराए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया था कि दोहराए गए सवालों में विकल्पों का क्रम भी समान था। सोशियोलॉजी के पेपर में वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां थी, समाज शास्त्रियों और अवधारणाओं के नाम गलत लिखे गए थे, अस्पष्ट और खराब हिंदी अनुवाद था, कथित तौर पर सिलेबस से बाहर के सवालों को लेकर शिकायतें सामने आई थी। परीक्षा से पहले सोशियोलॉजी के सवालों की PDF प्रसारित होने का दावा भी किया गया था, हालांकि एनटीए ने लीक के इस आरोप की पुष्टि नहीं की थी।
0: वहीं कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में सवाल दोहराए जाने का आरोप लगाया था। 80 से अधिक सवाल दोहराए जाने का दावा किया था। अब सरकार एनडीए में बड़े स्तर पर बदलाव का दावा कर रही है। इसके अलावा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नीट परीक्षा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें सेंध लगाना मुश्किल है। पेपर तैयार करने से लेकर एग्जाम सेंटर में पहुंचाने तक पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखा जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से यूपीएससी जैसा मजबूत परीक्षा सिस्टम बनाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी समझने वाले अधिकारियों को शामिल करना चाहिए, साथ ही अनुभवी अधिकारियों के बार बार ट्रांसफर से बचने की सलाह दी। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
2: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों में जबरदस्त बरसात हो रही है। गंगा उफनाई है और गंगा के आसपास बसे हुए जो शहर हैं उनमें जल प्रलय देखने को मिल रहा है।
4: पूरा प्रयागराज लबालब है। रेलवे स्टेशन पानी पानी, थाना तालाब हो गया है। शहरों की गलियों में गंगा बह रही है। प्रयागराज के ज्यादातर इलाके इसी तरह दरिया हुए जा रहे हैं। प्रयागराज में बादलों की ऐसी मेहरबानी हुई है कि गंगा नगर में घुस आई है। पुलिस स्टेशन पानी पानी, रेलवे स्टेशन तो तालाब हो गया है। रामबाग स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर पानी भर चुका है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 से जुड़े ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं।
5: हम इस वक्त रामबाग के रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पर ये बारिश का पानी यात्रियों को परेशान करने लगा है। ये रेलवे ट्रैक है जो बारिश के पानी से पूरा भर गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3, तीनों ये प्लेटफॉर्म है जो बारिश के पानी से भरे हुए हैं। रेलवे ट्रैक है जिसमें पानी भरा हुआ है, यात्री परेशान हैं और इसमें जो 4 ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई हैं और वहां पर यात्रियों को दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ रहा है। लोग अब इस बारिश के पानी से परेशान हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिलेगा।
4: गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब गंगा लेटे हुए हनुमान मंदिर की दीवारों तक पहुंच गई है। प्रयागराज के बाद बिजनौर की तस्वीरें देखिए। इतना पानी भरा हुआ है कि बड़े बड़े ट्रैक्टर का पूरा पहिया डूबा हुआ है। बिजनौर में गंगा और उसकी सहायक नदियां कितनी आवेग में हैं, उसकी गवाही देती हैं ये तस्वीरें। देखिए, गंगा के बहाव में ये घर ढह गया और गंगा के साथ बह गया। इस घर के अलावा देखिए ये बड़ा सा दरख्त जिसे जलधारा जड़ से उखाड़कर अपने साथ बहा ले गई। गलियों में नाव चलाने की नौबत आ गई है। यही हाल वाराणसी का भी है। वाराणसी में गंगा रौद्र रूप दिखा रही है। यहाँ घाट डूब गए हैं। स्थिति यह है कि दाह संस्कार छत पर किया जा रहा है। उत्तर भारत में बादलों ने धावा बोल दिया है। यूपी के कई शहर लबालब हैं और लोग परेशान। आज तक ब्यूरो।
2: मैदानों में मूसलाधार मुसीबत बरस रही है तो पहाड़ों पर भूस्खलन और चटकती हुई चट्टाने लोगों के दिलों में दहशत भर रही हैं। उत्तराखंड में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं जिसके चलते एक और लोहे का पुल तबाह हो गया। वहीं सड़कों पर सैलाब भी बह रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं जिसके चलते सैलाब और मलबे से भारी तबाही हो रही है।
4: शोपिया में बादल फटा तो ऐसा भयानक मंजर सामने आ गया। देखिए, मलबा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब है। गांदरबल से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, फ्लैश फ्लड की तस्वीरें दहशत से भर देने वाली हैं। उत्तराखंड के विकास नगर की तस्वीरें देखिए। ऐसा लगता है जैसे बादल फटा हो, मलबा सब कुछ अपने साथ बहाए ले जा रहा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के कोटद्वार की हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ों से आए मलबे ने एक घर को अपनी चपेट में ले लिया। कोटद्वार के मेहरगांव के 4 लोग इस मलबे में दब गए। घटना की खबर मिलते ही प्रशासन एक्शन में आया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद एक महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया और बाकी लोगों की तलाश अभी जारी है। कोटद्वार ही नहीं, चमोली में भी लैंडस्लाइड के कई हादसे सामने आ रहे हैं। पंच केदार तीर्थों में से एक कल्पेश्वर महादेव मंदिर के पास जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। लगातार बारिश के बाद मंदिर के पीछे से भारी मात्रा में मलबा नीचे आया और मंदिर परिसर के अंदर जमा हो गया, जिससे मंदिर के आसपास के क्षेत्र में नुकसान हुआ है।
7: ये सामने वाली जो रेलिंग थी वो टूट गई है और जो है ऊपर से जो है जो
3: पहले सुरक्षा दीवार थी वो भी टूट गई है, हवन कुंडी टूट गई है, और जो है पांडव मंदिर था वो क्षतिग्रस्त हो गया है।
4: अब हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें देखिए। लाहौल स्पीति की मयाल घाटी में नालों में उफान है, करपट और गवाली नाले रौद्र रूप दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दहशत पैदा करती हैं। अब पहाड़ों पर बाढ़ बारिश के साथ भूस्खलन की भी मार पड़ी है। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

का वहम रहता है? क्या आपको ये वहम रहता है कि जीवन में अशुभ घटनाएं घट जाएंगी? क्या है वहम के कारण और क्या है इसका निवारण? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: वंदे मातरम पर और तेज सियासी लड़ाई, कांग्रेस के सभी कार्यक्रम में गाए जाएंगे सिर्फ दो पैरा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला लिया गया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बनी। जेन जी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री। आउटरीच प्रोग्राम के तहत तैयार हुआ वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए। श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान, बोले भारत का अहम अंग कश्मीर सच सुन बौखलाया पाकिस्तान। अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई नाराजगी। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को कामयाबी का दावा। 10 ठिकानों पर रेड में अहम दस्तावेज, डिजिटल सामग्री, फर्जी डोनेशन से जुड़े रिकॉर्ड बरामद करने का दावा। और कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। प्रयागराज में कई इलाके जलमग्न, रेलवे ट्रैक तक भरा पानी। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन से हाहाकार। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और दिन का पहला बुलेटिन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहले बड़ी खबर वंदे भातरम, भारत के राष्ट्रीय गीत पर जारी सियासी टकराव की। कानून संसद से पास हो चुका है। सरकार कहती है कि अब राष्ट्रगीत का अपमान नहीं हो सकता, लेकिन राष्ट्रगीत के अपमान की परिभाषा क्या होगी? राष्ट्रगीत के गायन को लेकर के विवाद काफी बढ़ चुका है। तो कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि वो अपने पार्टी के कार्यक्रम में वंदे भातरम के सिर्फ दो ही पैरा गाएंगे, वही वंदे मातरम के दो पैरा जो पिछले कई दशकों से हर जगह गाया जाता रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कल यह फैसला लिया गया है और इसे लेकर के बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो नई मुस्लिम लीग बन गई है।
1: कांग्रेस कह रही है कि वो वंदे मातरम के शुरुआत के दो पैरा ही गाएगी। पार्टी ने आधिकारिक रूप से इसका ऐलान कर दिया है। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। उसी मीटिंग में पार्टी ने वंदे मातरम पर 1937 वाले रुख को अपनाने का फैसला किया। इसके मुताबिक अपने सभी कार्यक्रमों में कांग्रेस राष्ट्रगीत के सिर्फ शुरुआती दो पद ही गाए जाएंगे। पार्टी नेता कह रही है कि इसमें अब कोई दुविधा नहीं है।
2: हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रहा है पहले दिन से। 1937 जो अक्टूबर 28 का रेजोल्यूशन है, 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जनगण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा।
1: कांग्रेस के इस फैसले के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है।
3: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
1: वंदे मातरम पर कांग्रेस के रुख को बीजेपी राष्ट्रीय अपमान बता रही है।
4: जब संसद में बना हुआ कानून उसका लोग उल्लंघन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको करना है, आंदोलन ही करना है, तो संसद से क्या आपत्ति देना चाहिए।
1: कांग्रेस फैसला कर चुकी है, बीजेपी भी हमलावर है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर सियासी संग्राम के अभी खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। मेरठ से उस्मान चौधरी और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और एक लड़ाई अब सड़कों पर भी चल रही है। पहले दिल्ली, दिल्ली से रांची और रांची से पटना। पटना में तेजस्वी यादव सम्राट सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी ने पटना के गांधी मैदान से लेकर लोकभवन तक मार्च निकाला। पुलिस ने इस मार्च को बीच में रोक दिया। तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया, बाद में फिर तेजस्वी को छोड़ दिया गया।
5: सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव, बिहार में छिड़ा नया आंदोलन। बिहार में शिक्षक भर्ती पर घमासान, छात्रों ने मांगों का किया ऐलान। जेन जी पर लड़ाई, सम्राट सरकार पर आरजेडी की चढ़ाई। छात्रों के प्रदर्शन में AK-47 से फायरिंग, सुरक्षा कार पर तेजस्वी फायर।
6: दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी आदेश किसने दिया चलाने का गोली।
5: दिल्ली झारखंड के बाद बिहार में छात्रों ने शुरू कर दिया आंदोलन।
7: किस तरीके से बैरिकेडिंग से पार करके जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो भागने शुरू कर चुके हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है।
5: तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी छात्रों के समर्थन में और सम्राट सरकार के विरुद्ध पटना की सड़कों पर उतरती है। फिर जो तस्वीरें दिखाई देती हैं उनमें आरजेडी कार्यकर्ता नकली AK-47 राइफल हाथ में लेकर दिखाई देते हैं।
7: तेजस्वी यादव के ऊपर दो दो वाटर कैनन से बौछार किया जा रहा है
5: तो पुलिस आरजेडी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन चलाते हुए नजर आती है। तेजस्वी यादव के विरोध मार्च को रोकने के लिए जब उन्हें हिरासत में लेकर बस में बैठाया जाता है तो आरजेडी के कार्यकर्ता पूरी बस को ही हाईजैक कर लेते हैं।
8: उस वैन में तेजस्वी यादव है और उस पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का नेताओं का कब्जा है।
5: आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पटना के गांधी मैदान से लोक भवन तक छात्रों के दो मुद्दों को लेकर विरोध मार्च निकाला। पहला तो पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक भर्ती यानी TRE-4 के लिए शुरू हुए छात्र आंदोलन का समर्थन। दूसरा जुलाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सिवान में AK-47 से हुई फायरिंग पर सम्राट सरकार को घेरने के लिए।
6: जब तक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, पूरी घटना का वक्तव्य नहीं देंगे और दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी आदेश किसने दिया चलाने का गोली, जब तक ये लोगों के समक्ष नहीं रखेंगे, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, जब तक नौकरियां बेरोजगारी खत्म नहीं होती, निष्पक्ष परीक्षाएं पारदर्शिता ढंग से नहीं होती और जितना पेपर लीक बंद हो जाए जितना जल्द से जल्द उतना अच्छा है, वरना हम सब लोग जो है ये लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे।
5: आपको बता दें कि दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बिहार में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते हैं। जगह जगह पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें होती हैं। इसी कड़ी में बिहार के सिवान में प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग का वीडियो भी आता है। सिवान के JP चौक के पास SIT के एक जवान ने फायरिंग की। SIT के जवान अभिषेक पटेल की तरफ से फायरिंग वाला वीडियो वायरल होता है। 3 प्रदर्शनकारियों के घायल होने का दावा किया जाता है और तगड़ा सियासी संग्राम छिड़ जाता है। अनिकेत के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।
0: फायरिंग का ये वीडियो बिहार सरकार के गले की फांस बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तो दाखिल किया और ये स्वीकार कर लिया कि सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल ने भीड़ में फंसने के बाद AK-47 से फायरिंग की थी। लेकिन पुलिस का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि 4 राउंड गोलियां हवा में चलाई थी और इन गोलियों से कोई घायल नहीं हुआ था। अब तेजस्वी, RJD, सम्राट चौधरी सरकार से जवाब मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सरकार ये बताए AK-47 चलाने का आदेश दिया किसने था।
5: अब सिवान में हुई AK-47 से फायरिंग के खिलाफ तेजस्वी यादव की अगुवाई में RJD पटना के गांधी मैदान से लोक भवन के लिए मार्च शुरू करती है। सुबह से ही RJD कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगते हैं।
8: तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये तमाम RJD के नेता कार्यकर्ता पटना के JP गोलंबर से निकलेंगे और डाक बंगला चौराहा होते हुए मार्च कूच करेगा लोक भवन तक के लिए। और आप तस्वीरें देख रहे हैं जेपी गोलंबर से, जहां पर देखिए ये पोस्टर बैनर है जिस पर साफ लिखा गया है कि ना डरेंगे ना झुकेंगे, हक के लिए लड़ेंगे राष्ट्रीय जनता दल। और जो AK-47 से फायरिंग की घटना हुई थी सिवान में,
5: इस मार्च में RJD के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता छात्र आंदोलन में AK-47 के इस्तेमाल को लेकर निकल पड़ते हैं। बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि RJD कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के झंडे नहीं बल्कि तिरंगा रहता है।
9: ये छात्र और युवा विरोधी जो सरकार है, ये अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। किसके कहने पर AK-47 चलाया गया, किसके कहने पर गोली चलाई गई? सवाल ये है कि ये सरकार जो जिस तरह से युवा और छात्र विरोधी है उन पर दमन कर रही है, गोली चला रही।
5: लेकिन लोक भवन से पहले ही डाक बंगला चौराहे पर तेजस्वी के इस मार्च को रोका जाता है। इस मार्च में आरजेडी के कार्यकर्ता हाथों में नकली AK-47 लिए नजर आते हैं।
10: आरजेडी का राजभवन मार्च और तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि सिवान में AK-47 से जो फायरिंग हुई उस मामले में कार्रवाई होने चाहिए बड़े अधिकारियों पे। और यहाँ देखिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये AK-47 का एक कटआउट लेकर के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं और इस पर पुलिस लिखा हुआ है। आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या पुलिस? मतलब
11: हम आम जनता है, कलाकार है।
10: ये क्या लेकर के आए हैं?
11: ये जो अभी मौजूदा सरकार, हम लोग स्टूडेंट पर जो घटना घटा है उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं कि दोबारा ऐसा घटना नहीं हो। मेरे देश का भविष्य है, जो स्टूडेंट है मेरे देश के भविष्य है, उन पे ये ऐसा ऐसा घिनौना काम दोबारा ना हो।
5: तेजस्वी यादव के साथ उनकी बहन मीसा भारती भी इस विरोध मार्च में सड़क पर उतरती हैं। डाक बंगला चौराहे पर जब पुलिस बैरिकेडिंग कार्यकर्ताओं को रोकती है तो वो बैरिकेडिंग पर ही चढ़ जाते हैं और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं।
12: जो न्याय की मांग को लेकर आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं, हमें आज उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से। पूरे देश को उम्मीद रहता है सुप्रीम कोर्ट से कि वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से कि न्याय मिलेगा, लेकिन आज पूरे देश के छात्रों को ना उम्मीदी हाथ लगी है।
5: तेजस्वी और आरजेडी के लोग आगे बढ़ते बढ़ते इनकम टैक्स गोलंबर तक पहुंच जाते हैं। यहां पुलिस इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है।
13: वाटर कैनन की जो

0: राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं पर की जा रही है, बावजूद जो है जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं वो यहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर आरजेडी के कई विधायक खड़े और तेजस्वी यादव वाटर कैनन में भीग रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव जो है वो वाटर कैनन में भीग रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो वाटर कैनन और तेजस्वी यादव के ऊपर वाटर कैनन की बौछार की गई है। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के ऊपर वाटर कैनन की बौछार जो है वो की गई है। और देखिए तेजस्वी यादव आगे की तरफ जो है वो कूद गए हैं।
1: कोलंबर पर पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी होती है। इसके बाद तेजस्वी यादव समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। इन लोगों को हिरासत में लेकर जिस बस में बैठाया जाता है, आरजेडी कार्यकर्ता उस बस को ही हाईजैक कर लेते हैं।
0: तेजस्वी यादव को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और डिटेन करने के बाद इस बस में जो है उन्हें बिठाया गया। और अब आप इस तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने इस बस को ही कब्जे में कर लिया है। देखिए किस तरीके से सैकड़ों कार्यकर्ता जो है इस बस में चढ़ गए हैं और आगे तेजस्वी यादव मौजूद हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं ने इस बस को ही हाईजैक कर लिया है। इस बस में पुलिस से कई ज्यादा गुना में यहाँ पर जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है।
1: हिरासत में लेने पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं।
2: लोगों का मार्च राजभवन तक का था लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुर्म आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे, जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं
3: है। देखिए इस सरकार से उम्मीद है जो एक छात्रों के ऊपर AK-47 चला सकती है वो हमारे नेता के ऊपर तेजस्वी के ऊपर वोटर कैनन का ही। अभी आप थोड़े देर में हमें अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बिहार सरकार इनके ऊपर गोली ना चलाए।
4: तेजस्वी यादव जी का लोक भवन मार्च सुपर फ्लॉप हो गया, छात्रों नौजवानों ने ही इसे नकार दिया। इसमें सिर्फ उपद्रवियों की भागीदारी राजद कार्यकर्ताओं की रही।
1: तेजस्वी यादव को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन अब दिल्ली और रांची के बाद बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया है। पटना के गर्दनी बाग में छात्र शिक्षा भर्ती परीक्षा यानी TRE-4 के लिए धरने पर बैठ गए। धरना भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकालने की मांग पर शुरू हुआ था। हालांकि सम्राट सरकार ने चंद घंटों में ही 32,388 भर्तियों के लिए कल ही विज्ञापन निकाल दिया, लेकिन छात्र सिर्फ इससे सहमत नहीं है। उनकी मांग है कि TRE-4 में सिर्फ एक ही परीक्षा होनी चाहिए।
5: लोग एक परीक्षा की मांग कर रहे हैं, एक ही परीक्षा होनी चाहिए, तो ये भी मांग अभी तो क्लियर हुआ नहीं है। ये तो बरगलाने के लिए भी दिया जा सकता है, इस तरह का नोटिस तो पहले भी दिया गया था।
6: जीत तो दिख रही है,
5: बिल्कुल एक जीत है, बहुत बड़ी जीत है। क्या हम लोग शुरुआत किया और आज ही नोटिफिकेशन आ गया।
1: और उन छात्रों के समर्थन में तेजस्वी यादव भी गर्दनी बाग पहुंच जाते हैं।
7: वो लोग सत्ता में हैं, उन लोगों को कोई होश नहीं है, जो अधिकारी चलाता है वही लोग चलते हैं।
1: अब छात्रों का कहना है कि वो प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि सरकार को जो भी नया प्रयोग करना है वो TRE-5 से करे। इसके अलावा अभ्यर्थी TRE-4 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। अनिकेत के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।
8: पटना के बाद आपको झारखंड लिए चलते हैं। रांची में 24 दिन बाद भ्रष्टाचार से ग्रसित भर्तियों को लेकर आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन अब एक दूसरे आंदोलन की शुरुआत हो गई है। झारखंड सरकार ने जिस तरह से TDPL के तहत हुई सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया, अब इस फैसले ने हजारों सरकारी कर्मचारियों को एक ही दिन में बेरोजगार कर दिया है। ये भी अब आंदोलन के रास्ते पर चल पड़े हैं।
9: यहाँ रातों रात आपके पैर के नीचे जमीन खींच लिए है।
10: कहाँ जाएं सर, हम रोड में आ गए।
11: मैं अपने माँ को ये बता नहीं पाया हूँ कि मेरी नौकरी चली गई। अगर मैं ये बात अगर मैं अपने घर में बताता हूँ तो अगर वो उनका श्योर है कि उनका शायद उनको दिल का दौरा पड़ जाए।
12: हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ रहा ही नहीं।
9: घर वालों को बता रहे कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो, लेकिन हम लोग अपना मानसिक स्थिति को कैसे ठीक करें कि सब कुछ कैसे ठीक होगा।
13: पानी, पानी, थोड़ा सा एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए।
14: टूट कर वो लोग गिरते जा रहे हैं जो अपनी जिंदगी में लंबे संघर्ष के बाद सरकारी नौकरी ईमानदारी से पाकर अपने पैरों पर खड़े हुए। जमीन पर गश खाकर गिरी ये बेटी मनीषा है, जिसकी नौकरी रांची में 8 महीने पहले लगी। ईमानदारी

0: से मेहनत से परीक्षा देकर जिसे संभालने के लिए दौड़े लोग भी इस वक्त उसी मानसिक हालत में हैं, जिसकी वजह से मनीषा को चक्कर आया। आज तक संवाददाता सत्यजीत और बाकी लोग यहाँ इस बेटी को धैर्य बंधाते।
1: धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, अच्छा अच्छा हो जाएगा।
2: ये पहले से स्टेशन मास्टर ऑलरेडी थी रेलवे में, लेकिन इनका स्थिति ऐसा है कि वहाँ जॉब किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, ट्रेनिंग में ही थी, वो छोड़ करके आई है, वहाँ से भाग करके आई है। मतलब ऐसे
1: सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए।
2: स्टेशन मास्टर ऑलरेडी थी,
1: धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, न्याय होगा।
2: ऐसे स्थिति में सोच रहे कि मैं न उधर के रही न इधर के रही, और सब सिचुएशन हमेशा बराबर नहीं रहता है कि हमको, हम एक साल से अभी तक ले ऐसे ही है।
0: मनीषा जैसी स्थिति देश के किसी भी घर की बेटे या बेटी की हो सकती है जो रेलवे की नौकरी करती थी, लेकिन 2024 में JSSC CGL की परीक्षा झारखंड में पास की। कोर्ट में परीक्षा को लेकर लड़ाई लड़ी गई, फिर 2025 दिसंबर में नियुक्ति पत्र मिला। रेलवे की नौकरी छोड़कर घर के राज्य में रोजगार पाने के सपने में बुना गया महल सोरेन सरकार के एक फैसले से तोड़ दिया गया।
2: घर वालों को बता रहे कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक, लेकिन हम लोग अपना मानसिक स्थिति को कैसे ठीक करें कि सब कुछ कैसे ठीक होगा। कल तक हम तीन तीन जॉब के हकदार थे, आज हम रोड पे आ गए, क्या करेंगे बताइए सर। न घर में रह रहे, न ससुराल में रह रहे, बाहर रह रहे।
0: अगर आप देश में सरकारी नौकरियों का सरकारी कुचक्र समझना चाहते हैं, तो झारखंड ऐसा उदाहरण है जो भगवान न करे कभी दोबारा देना पड़े। जहां 11 साल तक JSSC CGL की परीक्षा या तो लटकती रही या पेपर लीक से रद्द होती रही, फिर सितंबर 2024 में जाकर परीक्षा किसी तरह हुई। आरोप फिर से CGL परीक्षा में धांधली के लगे, लेकिन कोर्ट से आदेश के बाद और सरकारी जांच के बाद सफल 2000 से ज्यादा लोगों को दिसंबर 2025 में नियुक्ति पत्र बंटता है। जुलाई 2026 में JPSC सिविल सर्विस प्री परीक्षा में धांधली के बाद प्रदर्शन रांची में शुरू होता है। प्रदर्शनकारी फिर JPSC से लेकर JSSC CGL की परीक्षा तक को रद्द करने की मांग करते हैं। 24 दिन आंदोलन के बाद सोरेन सरकार 22 परीक्षाएं रद्द कर देती है, 6 परीक्षाओं को पोस्टपोन कर देती है, 17 परीक्षाओं की CID जांच का आदेश दे देती है, जिसमें 2014 से अब तक की कई भर्तियां शामिल हैं। और इसी वजह से झारखंड की राजधानी रांची में सैकड़ों युवाओं के पैरों तले जमीन एक झटके में खींच ली गई है।
1: किसी ने घर खरीद लिए नौकरी बनने के बाद, किसी ने खरीदी गाड़ियां, अब उसका EMI कैसे जाएगा, ये तमाम सवाल इनके साथ, इनकी नौकरी तो गई है, ये सवाल भी अब इनके दिमाग और जेहन को ऐसे कौंध रहा है, इस तरह से टीस रहा है जिसका जवाब इनके पास है नहीं।
3: रेलवे में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट का पद छोड़कर रिजाइन देकर मैं यहाँ ज्वाइन किया। मैं इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं राज्य की सेवा के लिए अपना योगदान देना चाहता था। सर अभी हमारी नई नई शादी हुई है, हमारे पास अभी लाइबिलिटी है, तो हम कहाँ जाएं सर, हम रोड में आ गए हैं, मेरा क्या होगा सर, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बाल, मेरा नौकरी केवल अकेले हम डिपेंडेंट नहीं सर, मेरे पापा, मेरे माता पिता बूढ़े माँ बाप है, मेरे भाई है, भौजाई है, मेरी बीबी है, कहाँ जाएंगे सर, क्या खिलाएंगे पहले बताइए तो आप, हम क्या करेंगे अब, मेरी नौकरी चली गई, चले गए घर भी, घर तक कोई सर, हम बता रहे हैं कोई अपनी बहन की शादी के लिए अभी लोन ले लिए हैं, उनकी भरपाई कैसे होगी सर, सरकार इसका जवाब दे सर, हम न्याय की गुहार लगाते हैं।
4: मैं अभी तक मैं अपने माँ को ये बता नहीं पाया हूँ कि मेरी नौकरी चली गई, अगर मैं ये बात अगर मैं अपने घर में बताता हूँ तो अगर वो उनका श्योर है कि उनको शायद उनको दिल का दौरा पड़ जाए या उनके स्वास्थ्य इतनी बिगड़ जाए कि वो शायद इस दुनिया में ना रहे या ऐसा कुछ भी होने का आशंका है। ये मैं CM साहब से यही मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी माँ का अगर कुछ भविष्य में अगर ऐसा होता है, क्योंकि न्यूज आज नहीं तो कल वो तो पता चलना ही है, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेता है।
0: सवाल है कि क्या सोरेन सरकार बीच का रास्ता नहीं निकाल सकती थी, क्या उस बीच के रास्ते पर आंदोलन करने वाले छात्र भरोसा ना करते, क्या यही रास्ता बचता है कि भ्रष्टाचार की चक्की में ईमानदार भी पीस दिए जाएं? अगर हाँ तो ये भी अन्याय है जिस पर संज्ञान लेना जरूरी है।
5: अब सोचिए, कोई राज्य, कोई व्यवस्था क्या ऐसी है जो छात्रों के भविष्य की गारंटी दे सके? राज्यों में हो रहा है, लेकिन उधर यूजीसी नेट में पेपर की गड़बड़ियों से एनटीए पर भी सवाल उठे। अब जब सवाल उठे हैं तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में एक बार फिर बड़े लेवल पर बदलाव की शुरुआत की बात की जा रही है। 600 एक्सपर्ट्स को परीक्षा टीम से हटा दिया गया है, नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया गया है। इसके साथ प्रश्न पत्रों की जांच अब एक नहीं चार स्तरों पर होगी। इतना ही नहीं, एनटीए के दफ्तरों की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले करने की तैयारी, सब कुछ हो रहा है। सवाल ये है, अब

0: एनटीए फिर फेल हुआ तो एजेंसी ने हटाए 600 एक्सपर्ट। यूजीसी नेट परीक्षा पर विवाद तो एनटीए में किए बदलाव। पेपर की जांच करेगी स्पेशल टीम, शिक्षा मंत्री कर रहे हैं बैठक। क्या परीक्षाएं लेने में नाकाम एजेंसी, एनटीए पर फिर उठे सवाल। क्या एनटीए से परीक्षाएं नहीं संभल रही, आखिर खोट कहां है। एनटीए के पुराने दाग धुले भी नहीं थे कि नए धब्बों से एनटीए का दामन फिर से दागदार हो गया। जी हां, नीट पेपर लीक के बाद यूजीसी नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई, जिसके चलते एनटीए ने अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है और दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान किया। लेकिन एनटीए के खिलाफ कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने हल्ला बोल दिया तो यूजीसी नेट के परीक्षार्थियों ने भी एनटीए को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया।
1: जिस तरीके से एनटीए की विफलताओं के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है, आप समझिए इनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं है, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए कि वो किसके लिए बैठे हैं। आज एनटीए केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, एनटीए को बंद करना पड़ेगा, अन्यथा ये हर साल लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देंगे।
2: इतनी मेहनत से आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में गलतियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन रिपीट पाए जाते हैं और अब एकदम कहा जाता है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया,
3: तो ये काफी डिसहार्टनिंग है। हमारे दिल को काफी ठेस पहुंचती है क्योंकि हम 2 महीने से वेट कर रहे थे कि आंसर की रिलीज होगी। हमने 25 जून को एग्जाम दिया था और पिछले साइकिल्स को देखा जाए तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाती थी आंसर की, बट 2 महीने तक नहीं आई। हमको कैंपेन चलाना पड़ा ट्विटर पे, हमको एक्स पे कैंपेन चलाना पड़ा, तब जाके हमको कोई रिस्पॉन्स मिला। मैम यहाँ पे बहुत बार आई है एनटीए ऑफिस, आंसर की के लिए भी आई है मैम। सो वी आर होपिंग की आंसर की आएगी, बट एकदम से आप 2 महीने बाद आते हो और बोलते हो कि हम री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले बताओ कि किस बेसिस पे कर रहे हो। यू कैन नॉट जस्ट जनरलाइज कि टाइपोग्राफिकल एरर्स थे। इंग्लिश में कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स थे ही नहीं, बस क्वेश्चन पेपर जो 2024 के थे वो रिपीट हुए थे, PYQs रिपीट हुए थे, कोई एरर नहीं था। तो उस बेसिस पे आप री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, विच इज अनफेयर।
4: इतना वास्ट सिलेबस है, पेपर 1 भी है उसके साथ, हमें ये नहीं समझ आ रहा हम शुरू कहाँ से करें। तो ऐसे और ये स्ट्रेस भी है कि सडनली हमें पता चले कि री एग्जाम होना है, हम उस चीज से टैकल करें कि हम ये खुद को प्रिपेयर करें कि हमें 24 दिनों के बाद फिर से पेपर देना है।
0: बार बार सवालों के घेरे में आने वाले एनटीए के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद दिल्ली में एनटीए के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन हुआ तो अब एनटीए में फिर से बदलाव का दौर शुरू हो गया है। पहले एनटीए ने 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाने की जानकारी दी थी और अब परीक्षा टीम में शामिल 600 एक्सपर्ट्स को हटाकर उनकी जगह नए विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4-स्तरीय व्यवस्था लागू करने, नए अधिकारियों की नियुक्ति और एनटीए के कार्यालयों की सुरक्षा CISF के हवाले करने की तैयारी है। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी एनटीए में सुधार के लिए बैठकें कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए सभी जरूरी सुरक्षा और उससे जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। एनटीए की ओर से बताया गया कि पेपर सेट करने वाली पूरी टीम को बदल दिया गया है। पेपर की जांच के लिए 4-स्तरीय प्रश्न पत्र जांच सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसके लिए विशेष टीम बनाई जा रही है। अगले 2 से 3 हफ्तों में 20 से 25 अधिकारियों की विशेष टीम होगी और इन अधिकारियों को विशेष तौर पर इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पात्रता और PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 87 विषयों में UGC नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून 2026 तक आयोजित की थी। 16 अगस्त को इनमें से UGC नेट की अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गयी। UGC नेट जून 2026 के इंग्लिश के अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि 150 में से 67 सवाल 2024 की UGC नेट परीक्षा से दोहराए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया था कि दोहराए गए सवालों में विकल्पों का क्रम भी समान था। सोशियोलॉजी के पेपर में वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां थी, समाज शास्त्रियों और अवधारणाओं के नाम गलत लिखे गए थे, अस्पष्ट और खराब हिंदी अनुवाद था, कथित तौर पर सिलेबस से बाहर के सवालों को लेकर शिकायतें सामने आई थी। परीक्षा से पहले सोशियोलॉजी के सवालों की PDF प्रसारित होने का दावा भी किया गया था, हालांकि एनटीए ने लीक के इस आरोप की पुष्टि नहीं की थी। वहीं कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में सवाल दोहराए जाने का आरोप लगाया था। 80 से अधिक सवाल दोहराए जाने का दावा किया था। अब सरकार एनडीए में बड़े स्तर पर बदलाव का दावा कर रही है। इसके अलावा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नीट परीक्षा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें सेंध लगाना मुश्किल है। पेपर तैयार करने से लेकर एग्जाम सेंटर में पहुंचाने तक पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखा जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से यूपीएससी जैसा मजबूत परीक्षा सिस्टम बनाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी समझने वाले अधिकारियों को शामिल करना चाहिए, साथ ही अनुभवी अधिकारियों के बार बार ट्रांसफर से बचने की सलाह दी। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
5: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
7: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आपको बीमारियों का वहम रहता है? क्या आपको ये वहम रहता है कि जीवन में अशुभ घटनाएं घट जाएंगी? क्या है वहम के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
2: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: वंदे मातरम पर और तेज सियासी लड़ाई, कांग्रेस के सभी कार्यक्रम में गाए जाएंगे सिर्फ दो पैरा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला लिया गया, बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बनी। जेन जी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, आउटरीच प्रोग्राम के तहत तैयार हुआ वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान, कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए। श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान, बोले भारत का अहम अंग कश्मीर, सच सुन बौखलाया पाकिस्तान, अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई नाराजगी। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को कामयाबी का दावा, 10 ठिकानों पर रेड में अहम दस्तावेज, डिजिटल सामग्री, फर्जी डोनेशन से जुड़े रिकॉर्ड बरामद करने का दावा। और कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, प्रयागराज में कई इलाके जलमग्न, रेलवे ट्रैक तक भरा पानी, पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन से हाहाकार। दो हजार 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आजम खान का फैक्टर कितना महत्व रखता है, क्या आजम खान समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुस्लिम वोटों को एक कर सकते हैं, ये सवाल इस वक्त दोनों खेमा इसलिए पूछ रहा है यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, क्योंकि आजम खान जेल में हैं, पिछले लगभग 5 सालों से उनकी सियासत पर, उनके सियासी प्रभाव पर सवाल उठ रहे हैं।
1: देखिए, जिंदा रहेंगे तो गाजी कहलाएंगे, मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे।
2: चुनावों से पहले यूपी में सियासी विरोधियों के खिलाफ ईडी की एंट्री हो गई। आजम खान के ठिकानों पर सुबह से छापेमारी हो रही है। सवाल है कि इसका राजनीतिक फायदा किसे होगा और नुकसान किसे। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में 494 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं मिला। आरोप है कि ठेकेदारों से चंदा दिखाकर टैक्स चोरी भी किया गया। लेकिन क्या ये सब आजम खान से कोई दुश्मनी निकालने के लिए किया जा रहा है?
3: 11 सालों में कोई भी ऐसा केस जो ऐसा नहीं मिला है जो आजम खान साहब के ऊपर सिद्ध हो चुका हो।
4: क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? एक शिक्षा संस्थान को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं, आजम साहब को इन्होंने बर्बाद कर दिया।
2: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जेल में बंद, कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आए भी थे फिर अंदर चले गए। सारा केस रामपुर की उस जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर है जिसे बनाने के लिए आजम खान ने पूरा जोर लगाया। नौबत तो उसे तोड़ने की भी आ गई थी लेकिन उस पर फिलहाल रोक लगी है। लेकिन बुधवार सुबह से आजम खान के 10 ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है। यूपी से लेकर दिल्ली तक ये छापेमारी चल रही है। दिल्ली के जामिया नगर से लेकर जसोला तक और रामपुर में अली जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर सहारनपुर में सीए दीपक गुप्ता के दफ्तरों तक तमाम जगह ईडी की टीम तलाशी अभियान चला रही है। इन छापेमारियों के पीछे बड़ी वजह यह है कि जौहर यूनिवर्सिटी में देश विदेश से अवैध फंडिंग का शक हुआ है, क्योंकि जांच एजेंसियों को कुछ डिजिटल सबूत और वित्तीय धांधली के सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि सरकारी फंड की भी हेराफेरी। आरोप है कि यूनिवर्सिटी बनाने में 494 करोड़ रुपए के आय व्यय का सही हिसाब किताब नहीं मिला है। ठेकेदारों, उद्योगपतियों से चंदा दिखाकर टैक्स चोरी के आरोप भी। इसके अलावा फर्जी नामों से करोड़ों की चंदा उगाही की रसीदों का पता चला है। अली जौहर ट्रस्ट के चैरिटेबल दर्जे का पंजीकरण रद्द होने के बाद जांच तेज हुई है, क्योंकि प्रशासन ने 84 आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा ईडी को सौंपा है। ईडी की इन कार्रवाइयों के बीच सबसे ज्यादा हलचल रामपुर में अली जौहर यूनिवर्सिटी में देखने को मिली, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में अब नए सत्र के दौरान पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी है और वीकडेज में छापेमारी के कारण यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी मौजूद थे। अब इन विद्यार्थियों को डर है कि ऐसी कार्रवाइयों से उनकी पढ़ाई पर संकट न आ जाए।
5: कहीं जाने गलत है, ये सब कुछ हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। अब हम डिफार्मा के छात्र हूँ, मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है, अब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, अब बताओ ये टूट जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? ये नहीं, कहाँ जाएंगे अब? दूसरी जगह कहाँ जाएंगे? यहाँ से दूर अब हमारा इतना नहीं है हिसाब के हम दूसरी जगह पढ़ सकें, दूसरी जगह जा सकें।
6: झुकाया जाए, सरकार से अपील है, ये गलत हो रही है, माशाल्लाह मुझे आज 15 दिन होगा आते हुए, लगातार आ रही माशाल्लाह। मैं माशाल्लाह डाकता भी नहीं हूँ, मैं मौलवी भी कर रहा हूँ, हाफिज भी हूँ माशाल्लाह। मैं यही कहूँगा इसको रुकाया जाए कि हमारी पढ़ाई खराब नहीं होना चाहिए।
2: ईडी की टीमें सभी ठिकानों से बैंक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सबूत और संपत्ति के कागजात जब्त करने में लगी हैं, जिसके बाद आने वाले दिनों में आजम खान और उनके सहयोगियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ईडी की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है।
3: पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, किस तरीके से प्रदेश का विकास होगा, किस प्रकार से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से प्रदेश में नया इन्वेस्टमेंट होगा, उसकी कोई बात नहीं करनी है। खाली इन्वेस्टमेंट मीट करो, एमओयू करो और विपक्षी पार्टी के नेताओं को परेशान करो। आज तक 11 सालों में कोई भी ऐसा केस जो ऐसा नहीं मिला है जो आजम खान साहब के ऊपर सिद्ध हो चुका हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब परेशान होती है, जब जनता के विरोध में जाती है, तो विपक्षी पार्टी को टारगेट करती है।
4: पता नहीं कब तक इनकी छापेमारियां चलेंगी। भाई शिक्षण संस्थान को क्यों तबाह करना चाहते, आप उसे अपने कब्जे में लेकर के चला लो यार। बहुत सारे तरीके हैं रेगुलराइज करने के तरीके, उसे क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? एक शिक्षा संस्थान को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं, आजम साहब को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कौन सी दुश्मनी राजनीति के अंदर इस तरह से नहीं निकाली जाती जो दुश्मनी आजम साहब से निकाली जा रही है।
2: आजम खान पर ईडी की छापेमारी के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। अखिलेश बीजेपी को शिक्षक और शिक्षा विरोधी बता रहे हैं। इसके साथ ही एक लिस्ट भी पोस्ट कर रहे हैं जिन्हें बीजेपी के आपराधिक कांड बताया जा रहा है। हो सकता है कि अखिलेश यादव को ये लग रहा हो कि आजम खान के खिलाफ इस कार्रवाई से आने वाले चुनावों में उन्हें सियासी फायदा हो सकता है। उन्हें ये लग सकता है कि आजम खान के खिलाफ इस एक्शन को वो मुसलमान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर भुना सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या इससे मुस्लिम वोट अखिलेश और उनकी पार्टी के पक्ष में एकजुट होंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रियाएं अखिलेश के मन मुताबिक नहीं आ रही।
7: गवर्नमेंट की एजेंसी को जरूर कोई इनपुट ऐसा मिला है, जरूर कागजात में या बैंकों के लेन देन में या ऑडिट में, ऑडिट के रखरखाव में गड़बड़ी मिली है। इसी वजह से ईडी ने आजम खान के ऊपर रेड डाली है और ईडी रोज़ाना कहीं न कहीं किसी न किसी जगह रेड डालती रहती है। ये उसका काम है, ये जांच एजेंसी है और जांच एजेंसी का काम है जांच पड़ताल करना, दूध का दूध पानी का पानी करना। अब इसको हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक कार्रवाई है और कार्रवाई की हद तक ही, तफ्तीशी कार्रवाई को उसी हद तक ही देखा जाना चाहिए।
2: कुल मिलाकर यूपी की सियासत गर्म है। सरकार के सहयोगी तो यहां तक कह रहे हैं कि सब अखिलेश यादव ही करवा रहे हैं। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के खिलाफ ऐसे बयान देते रहते हैं।
8: इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी हैं। ये लोग आजम खान को जीने नहीं देना चाहते हैं। यही लोग रात को मिलते हैं योगी आदित्यनाथ जी से और दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। रात को उनसे कहते हैं कि ये इन्होंने किया, इसकी जाँच करा दीजिए, तो सुबह जाँच शुरू हो जाती है। सबसे बड़े जिम्मेदार इस घटना के अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी हैं।
9: संवैधानिक प्रक्रिया भाई, ये तो भरेगा, इसमें कौन राजनीति भाई, जिसके पास रहेगा, झोपड़ी वाले के पास क्यों नहीं ईडी पड़ता है? हम कह रहे जो टेंट में है उसके लिए क्यों, वो भी तो वोटर है ना। ये करोड़पति लोग सांसद विधायक रहेंगे, अरबपति लोग सांसद विधायक मंत्री रहेंगे, और झोपड़ी वाला वोट देगा, झोपड़ी वाले के यहाँ ईडी डलवाए ना, ये उसके लिए ईडी पड़े तो पता है जिसके। मतलब ईडी भारत की एक संवैधानिक संस्था है कि सबके जनता का पैसा, जनता का पैसा जनता के सरकार के हाथ में होना चाहिए। अगर अवैध ढंग से, गैर कानून ढंग से, असंवैधानिक ढंग से होगा तो ये एजेंसियां उनके पीछे पीछे घूमेंगी।
2: देखना दिलचस्प होगा कि आजम खान के खिलाफ ईडी की इन कार्रवाइयों का चुनावों में क्या असर होता है, या कोई असर होता भी है या नहीं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
0: महाराष्ट्र एफडीए ने विमल इलायची विज्ञापन मामले में शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को जो नोटिस भेजा था उसका जवाब अभी तक सेलिब्रिटीज की टीम ने नहीं दिया है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कहा है कि अगर इन सितारों का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उनसे 10 लाख तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके साथ ही उनके ऊपर 3 साल तक कोई भी विज्ञापन नहीं करने का प्रतिबंध लग सकता है। अगर ये कार्यवाही अपने अंजाम तक पहुंचती है तो सितारों को किसी भी ब्रांड से जुड़ने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा।
2: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एफडीए की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कह दिया है कि मिलावटखोरों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी।
10: बहुत अच्छी एक्शन हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि फूड एडल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार से जो हमारे फूड के मानक है इनको जब कोई ब्रीच करता है तो उसके कारण लोगों की जान को खतरा होता है, लोगों की हेल्थ को खतरा होता है, इसलिए इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन की आवश्यकता थी और वो एक्शन हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार की एक्शन हो रही है और ये एक्शन कंटिन्यू रहेगी।
2: इस बीच बॉलीवुड के बड़े सितारों की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर महाराष्ट्र एफडीए ने अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 11 अगस्त को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसका जवाब इन सितारों को 30 दिन के अंदर देना है। लेकिन अब तक इन सेलिब्रिटीज की लीगल टीम से कोई जवाब नहीं आया है। एफडीए के मुताबिक विज्ञापन में विमल नाम, प्रोडक्ट और डायलॉग इस तरह इस्तेमाल किए गए हैं कि इससे विमल ब्रांड का प्रचार होता दिखता है, क्योंकि विमल ब्रांड पान मसाला से भी जुड़ा है। इसलिए एफडीए को शक है कि विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाले का इनडायरेक्ट रूप से प्रचार किया जा रहा है। ये पूरा मामला बीजेपी विधायक विक्रम पचपुते की शिकायत के बाद गरमाया है। पचपुते ने एफडीए की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इलायची की आड़ में तंबाकू और गुटखे का प्रचार अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे विज्ञापनों के जरिए युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है।
11: आज की डेट में अभी जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है ये सरोगेटेड एड्स के नाम पे होता है। सो बेसिकली सरोगेटेड एड ऐसी होती है कि कोई ब्रांड नेम होता है, लेट्स फॉर एग्जांपल एबीसीडी ब्रांड नेम है, तो एबीसीडी ब्रांड नेम सुपारी भी बनाती है, टबैको भी बनाती है और एबीसीडी ब्रांड नेम इलायची भी बनाती है। तो अल्टीमेटली जो टबैको प्रोडक्ट्स है उसके एडवर्टाइजमेंट पे बैन है, और जो टोबैको प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे टोबैको प्रोडक्ट्स है जैसे गुटखा महाराष्ट्र में बैन है, फ्लेवर्ड सुपारी महाराष्ट्र में बैन है, फ्लेवर्ड टोबैको महाराष्ट्र में बैन है, तो ये फ्लेवर्ड सुपारी और इसकी एडवर्टाइज नहीं करेंगे। ये जो प्रोडक्ट बैन नहीं है उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। जैसे अभी इलायची की ऐड करते हैं, अगर आप इनका टोटल एडवर्टाइजमेंट बजट कैलकुलेट करोगे तो उसका 10% भी इलायची का सेल नहीं होगा। तो इतने कम सेल वाले प्रोडक्ट को इतना बड़ा ये पैसा कैसे खर्चा करते हैं, तो ये भी देखना जरूरी है। ये इनडायरेक्टली वो ब्रांड प्रमोट करते हैं और वो ब्रांड इलायची की जगह पे ये टोबैको प्रोडक्ट्स यूज करता है, और ये सिमिलर दूसरी इंडस्ट्री भी है जो अल्कोहल इंडस्ट्री है, वहां पे भी ऐसा ही होता है।
2: मामले की गंभीरता को देखते हुए एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ से उनके विज्ञापन करार की कॉपी, फीस का ब्यौरा और विज्ञापन करने से पहले की गई जांच पड़ताल के सबूत मांगे हैं। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने साफ कर दिया है कि अगर सितारों की तरफ से आया जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद FSSAI एक्ट के तहत अगली कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर इन अभिनेताओं पर 3 साल तक किसी भी प्रोडक्ट के विज्ञापन पर रोक भी लगाई जा सकती है।
12: ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, इस पे एग्जामिन कर भी रहे थे, तो देरी हो गई ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम काम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। जो भी ऐसे सरोगेट ऐड या गलत ऐड, मिसलीडिंग ऐड करते हैं उनके लिए रेगुलेशंस है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 24 के है तहत है, और एडवर्टाइजिंग के और क्लेम्स के भी रेगुलेशन 2018 से है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन आया है 1 जुलाई 2019 से। तो उसके बाद कोई भी ऐसी गलत ऐड, मिसलीडिंग ऐड, सरोगेसी ऐड नहीं कर सकता है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिटेड है, उस पर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है।
2: सरोगेट विज्ञापनों पर कसते इस शिकंजे ने पूरी विज्ञापन इंडस्ट्री और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के तरीके पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
11: देखो, सरोगेटेड एड्स में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मिसलीडिंग एड्स में है। मिसलीडिंग एड अगर प्रूव होता है तो उनको ऑलमोस्ट 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। अल्टीमेटली इट्स एन ऑफेंस, और ये ऑफेंस अगर कंटिन्यू होता है तो महाराष्ट्र का जो मकोका है वो मकोका में आ सकते हैं, क्योंकि इट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। बेसिकली मकोका क्या है, कोई तो ऑर्गेनाइज क्राइम अगर वहां पे डिस्क्राइब होता है या फिर वो डी से प्रूव होता है कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है तो डेफिनेटली ये मकोका में आ सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, इक्विवेलेंट टू नहीं ऐसी पॉसिबिलिटी है, 0.1% पॉसिबिलिटी है मकोका लग सकता है, और 0.1 पॉसिबिलिटी होगी कि ये मिसलीडिंग एड नहीं बल्कि सरोगेटेड एड प्रूव होगा, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी बॉडी से लीगल टीम्स है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा उतना डाल ही रहे और जो कंपनीज है जिनके लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं वो कंपनीज आंसर करेंगे, थोड़ी एक्टर्स आंसर करने वाले है।
13: वहीं बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने भी एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की तारीफ करते हुए कहा कि जहर बेचने वालों के खिलाफ उनकी कार्रवाई का पूरा समर्थन है।
14: मैं तो तुकाराम मुंडे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन्होंने कानून के चौकट में कार्रवाई शुरू की है, कानून के बाहर उल्लंघन नहीं किया है, हमने ही कानून बनाए। कानून बनाने वाले लोग कौन है जिनको लाखों लोगों ने चुन कर दिया, संसद में भेजा, विधानसभा में भेजा, उन्होंने कानून बनाए, उसका अमल वो कर रहे हैं। अब हमने तो विधानसभा में ये कहा पिछले अधिवेशन में कि उनको पूरा 3 वर्ष रखिए, ये विषय को वो सुधारेंगे। मैंने कभी गाड़ी में हम जाते रहते हैं, कभी हवाई जहाज में कहीं से जाते रहते हैं, लोग बोलते कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है उसके लिए उन्होंने की हुई कार्रवाई ये तारीफ काबिल है। हमको जहर बेचा जाता है, आपने देखा होगा उन्होंने कुछ ऐसे बड़े नामों को भी इस विषय को लेकर नोटिस भेजे कि आप ये गलत काम मत करो। और वैसे भी मैं तो समझता हूं कि अच्छा काम कर रहे हैं ना, तुकाराम मुंडे जी के नोटिस की वजह से जो गलत काम करने वाले उद्योगपति है आज तो धनवान है, मगर कल तो नरक में जाएंगे ना अगर गलत काम करेंगे तो, बच्चों की जान से खेलेंगे।
13: इधर छत्रपति संभाजीनगर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट पर एफडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। एफडीए की जांच में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और कानूनी नियमों का उल्लंघन पाया गया। जांच के दौरान प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थों के साथ सिगरेट की बिक्री, एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थ और कोल्ड चेन नियमों के उल्लंघन जैसी अनियमितताएं पाई गई। इसके अलावा शाकाहारी और मांसाहारी खाने के सामानों को भी नियमों के मुताबिक अलग अलग रखने की व्यवस्था नहीं थी। वहीं गोदाम में गंदगी, चूहों की मौजूदगी की वजह से एफडीए ने ब्लिंकिट के इस आउटलेट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया।
15: सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के नाम पर चल रहे इस खेल पर अब नकेल कसना तय माना जा रहा है। अगर सेलिब्रिटीज केवल चंद पैसों के लिए इस तरह के उत्पादों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उन पर न सिर्फ भारी आर्थिक जुर्माना देना पड़ सकता है बल्कि 3 साल तक उन्हें बैन का सामना भी करना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि बॉलीवुड के ये दिग्गज कलाकार इस शोकॉज नोटिस का किस तरह से लीगल तौर पर सामना करते हैं। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों में जबरदस्त बरसात हो रही है। गंगा उफान पर है। गंगा के आसपास बसे शहरों में जल प्रलय देखने को मिल रहा है।
16: प्रयागराज लबालब है। रेलवे स्टेशन पानी पानी, थाना तालाब हो गया है। शहरों की गलियों में गंगा बह रही है। प्रयागराज के ज्यादातर इलाके इसी तरह दरिया हुए जा रहे हैं। प्रयागराज में बादलों की ऐसी मेहरबानी हुई है कि गंगा नगर में घुस आई है। पुलिस स्टेशन पानी पानी, रेलवे स्टेशन तो तालाब हो गया है। रामबाग स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर पानी भर चुका है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 से जुड़े ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं।
17: हम इस वक्त रामबाग के रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पर ये बारिश का पानी यात्रियों को परेशान करने लगा है। ये रेलवे ट्रैक है जो बारिश के पानी से पूरा भर गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 तीनों ये प्लेटफॉर्म है जो बारिश के पानी से भरे हुए हैं। रेलवे ट्रैक है जिसमें पानी भरा हुआ है, यात्री परेशान हैं और इसमें जो 4 ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई हैं और वहां पर यात्रियों को दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ रहा है। लोग अब इस बारिश के पानी से परेशान हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिलेगा।
16: गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब गंगा लेटे हुए हनुमान मंदिर की दीवारों तक पहुंच गई है। प्रयागराज के बाद बिजनौर की तस्वीरें देखिए। इतना पानी भरा हुआ है कि बड़े बड़े ट्रैक्टर का पूरा पहिया डूबा हुआ है। बिजनौर में गंगा और उसकी सहायक नदियां कितनी आवेग में हैं, उसकी गवाही देती हैं ये तस्वीरें। देखिए, गंगा के बहाव में ये घर ढह गया और गंगा के साथ बह गया। इस घर के अलावा देखिए ये बड़ा सा दरख्त जिसे जलधारा जड़ से उखाड़कर अपने साथ बहा ले गई। गलियों में नाव चलाने की नौबत आ गई है। यही हाल वाराणसी का भी है। वाराणसी में गंगा रौद्र रूप दिखा रही है। यहाँ घाट डूब गए हैं। स्थिति यह है कि दाह संस्कार छत पर किया जा रहा है। उत्तर भारत में बादलों ने धावा बोल दिया है। यूपी के कई शहर लबालब हैं और लोग परेशान। आज तक ब्यूरो।
0: मैदानों में मूसलाधार मुसीबत बरस रही है तो पहाड़ों पर भूस्खलन, चटकती चट्टाने लोगों के दिलों में दहशत भर रही है। उत्तराखंड में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं जिसके चलते एक और लोहे का पुल तबाह हो गया। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं जिसके चलते सैलाब और मलबे से भारी तबाही हो रही है।
16: शोपियां में बादल फटा तो ऐसा भयानक मंजर सामने आ गया। देखिए मलबा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब है। गांदरबल से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए फ्लैश फ्लड की तस्वीरें दहशत से भर देने वाली हैं। उत्तराखंड के विकास नगर की तस्वीरें देखिए, ऐसा लगता है जैसे बादल फटा हो। मलबा सब कुछ अपने साथ बहाए ले जा रहा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के कोटद्वार की हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ों से आए मलबे ने एक घर को अपनी चपेट में ले लिया। कोटद्वार के मेहरगांव के चार लोग इस मलबे में दब गए। घटना की खबर मिलते ही प्रशासन एक्शन में आया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद एक महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया और बाकी लोगों की तलाश अभी जारी है। कोटद्वार ही नहीं, चमोली में भी लैंडस्लाइड के कई हादसे सामने आ रहे हैं। पंच केदार तीर्थों में से एक कल्पेश्वर महादेव मंदिर के पास जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। लगातार बारिश के बाद मंदिर के पीछे से भारी मात्रा में मलबा नीचे आया और मंदिर परिसर के अंदर जमा हो गया, जिससे मंदिर के आसपास के क्षेत्र में नुकसान हुआ है।
18: ये सामने वाली जो रेलिंग थी वो टूट गई है और जो है ऊपर से जो पहले सुरक्षा दीवार थी वो भी टूट गई है। हवन कुंडी टूट गई है और जो है पांडव मंदिर था वो क्षतिग्रस्त हो गया है।
16: अब हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें देखिए। लाहौल स्पीति की मयाड़ घाटी में नालों में उफान है। करपट और गवाली नाले रौद्र रूप दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दहशत पैदा करती हैं। अब पहाड़ों पर बाढ़ बारिश के साथ भूस्खलन की भी मार पड़ी है। आज तक ब्यूरो।
0: डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन से मिलने को बेताब हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग से क्यों मिलना चाहते हैं? वो कौन सा खतरा है जिससे वो अमेरिका की सुरक्षा करना चाहते हैं? देखिए रिपोर्ट।
19: क्या डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर एक साथ दिखने वाले हैं? वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले नवंबर महीने में किम जोंग उन के साथ आमने सामने की बैठक करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये कूटनीतिक मुलाकात इसी साल नवंबर 2026 में चीन के शेंजेन में होने वाले एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। ट्रंप जब एशिया यात्रा पर होंगे तब वो इस बैठक को अंजाम देना चाहते हैं।
20: Kim Jong-un has always treated me with great respect and we met on numerous occasions, actually two primary occasions, spoken and spent time. I understand him, he understands me. You're doing war games. I get along with him. You know, he didn't like Biden, he didn't like Obama, he didn't like anybody, but I get along with him very well. Now what I'm doing is making things safer.
19: इस बार की मुलाकात से पहले ट्रंप का दावा है कि किम जोंग उन की तरफ से संदेश आ चुका है और वो भी मिलना चाहते हैं। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए ही ट्रंप ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने दक्षिण कोरिया के साथ चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यासों को 27 अगस्त के बजाय शुक्रवार को ही खत्म करने और इसमें भारी कटौती करने का पेंटागन को निर्देश दे दिया। अब इसे कम भी कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप उत्तर कोरिया से क्या सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं? अमेरिकी महाद्वीप के लिए सबसे बड़ा सीधा खतरा उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जैसे हुआसोंग 17 और हुआसोंग 18, जो सीधे अमेरिका के भीतर तक परमाणु हमला करने की ताकत रखती हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया का तेजी से बढ़ता परमाणु हथियार भंडार भी अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ा सिरदर्द है। ट्रंप आमने सामने की बात से इस सीधे परमाणु खतरे को टालना और एक बड़ा कूटनीतिक सौदा करना चाहते हैं। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेकर उत्तर कोरिया की सेना अब और घातक बन चुकी है। ट्रंप का दावा है कि उनके और किम के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। ट्रंप और किम सीधी बातचीत के जरिए फैसले लेने में यकीन रखते हैं। ट्रंप का मानना है कि वो किम को समझ सकते हैं और किम उन्हें, और यही अनूठा समीकरण आने वाली सर्दियों में दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक खबर बन सकता है। आज तक ब्यूरो
0: ब्रेक का है, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
21: क्या आपको बीमारियों का वहम रहता है? क्या आपको ये वहम रहता है कि जीवन में अशुभ घटनाएं घट जाएंगी? क्या है वहम के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

वंदे मातरम पर और तेज सियासी लड़ाई, कांग्रेस के सभी कार्यक्रम में गाए जाएंगे सिर्फ दो पैरा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला लिया गया, बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बनी। जेन जी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, आउटरीच प्रोग्राम के तहत तैयार हुआ वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान, कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए। श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान, बोले भारत का अहम अंग कश्मीर सच सुन बौखलाया पाकिस्तान, अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई नाराजगी। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को कामयाबी का दावा, 10 ठिकानों पर रेड में अहम दस्तावेज, डिजिटल सामग्री, फर्जी डोनेशन से जुड़े रिकॉर्ड बरामद करने का दावा। और कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, प्रयागराज में कई इलाके जलमग्न, रेलवे ट्रैक तक भरा पानी, पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन से हाहाकार।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के मन की बहुत सारी समस्याएं होती हैं और एक समस्या होती है वहम की। बीमारियों का वहम, जीवन में कुछ बुरा ना हो जाए इसका वहम। अगर वहम की समस्या है तो इसका कारण क्या है और निवारण क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 9:18 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, सुबह 9:08 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर

बज के 30 मिनट से लगभग 3 बजे तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोगों को वहम होता है, खास तौर से बीमारियों का वहम, और ये वहम मन में चलता रहता है कि कुछ अशुभ ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। वहम की समस्या के पीछे कौन से ग्रह होते हैं? देखिए, वहम की समस्या आपके मन से पैदा होती है, आपके मन में पैदा होती है, और वहम का मुख्य ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा के साथ छाया ग्रहों का जब संबंध होता है, राहु या केतु का जब संबंध होता है, तो ये वहम को जन्म देता है। जो वायु तत्व की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इनके अंदर वहम की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। इन्हें बेवजह की चिंताएं और बेवजह का वहम बहुत होता है। इसके बाद जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशि के लोगों को भी वहम बहुत होता है। सबसे ज्यादा वहम होता है बीमारियों का, और सबसे ज्यादा वहम होता है अशुभ घटनाओं के घटने का। वहम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले की सफलता मिले, और सावन के महीने का एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम टाल दें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब ये जानते हैं कि अलग अलग तरह के वहम कैसे होते हैं और वहम की अलग अलग स्थितियां कैसी होती हैं। कुंडली में अगर कोई नकारात्मक योग स्थायी हो, परमानेंट हो, तो वहम स्थायी हो जाता है, जीवन भर आपके साथ चलता रहता है। कभी कभी किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण, निगेटिव एनर्जी के कारण भी जीवन में वहम हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि अचानक जीवन में गड़बड़ दशा आ जाए, अचानक जीवन में राहु या केतु की दशा आ जाए, तो जिंदगी में वहम की स्थितियां बन जाती हैं, जीवन में वहम हो जाता है। हालांकि बाद में दशाओं के बीत जाने के बाद ये वहम समाप्त हो जाता है। गलत रत्न आपने पहन लिया, बिना सोचे विचारे आपने राहु का, केतु का या शनि का रत्न पहन लिया, तो गलत रत्न पहनने पर भी वहम जैसी स्थितियां जीवन में बन जाती हैं। बिना सोचे विचारे आप गलत मंत्र जप करते हैं, बिना विचार के कोई मंत्र जप गलत तरीके से करते हैं, तो ये आपके मन पर निगेटिव असर डालता है और मन में बेवजह की चिंताएं और बेवजह के वहम पैदा हो जाते हैं। यानी अगर ऐसा कोई काम जीवन में होता है जिसका बुरा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, तो जीवन में वहम आने की संभावना बन जाती है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, काम का दबाव समाप्त होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन खर्च पर नियंत्रण रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान

आज का पहला प्रश्न दीपिका वर्मा ने हमें लिखा है, आगरा से लिखती हैं। दीपिका की जन्म की तारीख है 16 मार्च 1994, रात में 11:52, आगरा उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दीपिका, आपकी कुंडली में साल 2027 में आपके विवाह का योग बनता है। 2027 के आरंभ में आपका विवाह तय होगा और 2027 के मध्य में आपका विवाह होगा। जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके ही करिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आपका विवाह शीघ्र हो और बेहतर हो, इसके लिए एक पीला पुखराज, 6 से 8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, बहुत सारे वजहों से आपको वहम होता है, ग्रहों की दशाओं की वजह से, गलत मंत्र जप करने की वजह से। कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो आपके सोच और समझ पर असर डालती हैं और जिसकी वजह से जीवन में वहम पैदा होता है। कौन सी आदतें हैं? अगर आप रोज स्नान ना करें और साफ सफाई से ना रहें तो राहु आपका प्रभावशाली हो जाएगा। राहु का इम्पैक्ट आपके ऊपर ज्यादा होगा और आप वहम के शिकार होंगे। अगर आप गलत और खराब संगति में रहेंगे तो निगेटिव चीजें, नकारात्मक चीजें ग्रहण करेंगे और वहम के शिकार होंगे। अगर आप बिना किसी सही वजह के हरे वृक्ष काटते हैं तो ये जीवन के लिए भी बुरा है और आपकी मानसिक आदत के लिए और भी बुरा है। आपके मन पर बुरा असर डालेगा और आपको डर और भय का वहम परेशान करेगा। अगर आपको नशे की आदत है तो इसका मतलब राहु आपका निगेटिव है, और अगर नशे की आदत होगी तो जीवन में आपको वहम की समस्या परेशान कर सकती है। जीवन में मेंटल निगेटिविटी के या वहम के शिकार आप हो सकते हैं। फिर बता दूं, सबसे ज्यादा जो वहम होता है लोगों को वो होता है बीमारियों का और भविष्य में घटने वाली अशुभ घटनाओं का वहम भी सामान्यतः जीवन में ज्यादा होता है। अगर वहम की शिकायत है, वहम की आदत है, तो इसको दूर कैसे किया जाए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा,

होंगे, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, खान पान में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब मान लिया आपको वहम की शिकायत है, शरीर में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप बड़ी बीमारी का वहम पाल लेते हैं, घर से कोई बाहर जाता है आपके मन में अशुभता का वहम आ जाता है, यात्रा पर जाते हैं मन में वहम रहता है, तो इस वहम को दूर करने के उपाय क्या हैं? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत बेहतर होगा। सुबह के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा चैन से बैठ करके। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल पीकर और फल खाकर पूर्णिमा का व्रत रखिएगा। पूर्णिमा के व्रत में अनाज मत खाइएगा। सलाह लेकर एक पन्ना या एक पीला पुखराज धारण करिएगा। नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाएं या चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाएं तो आप नकारात्मक ऊर्जा से बचेंगे, किसी भी प्रकार का वहम आपको परेशान नहीं करेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

काम पूरे होंगे, करियर में सफलता के योग हैं, धन का लाभ होगा, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोज।

योगा स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खान पान का ध्यान रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, हल्दी एक स्त्री कारक वस्तु है, फीमेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट है, इसलिए सामान्यतः शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। चूंकि शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों होते हैं तो शिवलिंग के किनारे की जो वेदी है उस पर आप हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो शिवलिंग पर हल्दी लगाने से बचना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। नंबर 5, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 6, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नंबर 7, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 8, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, लाभकारी यात्रा होने वाली है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाइएगा। वाद विवाद, कर्ज और मुकदमे से छुटकारा मिलेगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हरि कृष्ण जी ने हमें लिखा है। हरि कृष्ण जी अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं, मथुरा से मेल लिखते हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 14 अप्रैल 2000। जन्म का समय सुबह के 7:50। जन्म स्थान है मथुरा। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, क्या मेरी पुत्री को सरकारी नौकरी पाने में सफलता मिलेगी? हरि कृष्ण जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
गवर्नमेंट जॉब पाएंगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इनको एजुकेशन की नौकरी मिलेगी। साल 2027 के अंतिम समय में इनको शिक्षा क्षेत्र में बेहतर नौकरी की संभावना बनती है, लेकिन उसके लिए इनको मथुरा से दूर जाना पड़ेगा। इनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला इस कुंडली में बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इनका करियर और स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाएं और रोज सुबह इनसे कहें कि अगर ये सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से निकलिए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो जीरा खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा, आज का दिन मंगलमय होगा। मकर राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा मेष राशि वालों को, बेवजह की चिंताएं और तनाव परेशान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज अष्टमी तिथि है, आज पीले फूलों से भगवान शिव की पूजा करिएगा और आज तामसिक आहार ग्रहण ना करें। सावन का पावन महीना चल रहा है तो चलिए आपको बताते हैं सावन के महीने का एक महा उपाय सावन सूत्र में।

प्रार्थना करनी चाहिए, उनका विवाह शीघ्र होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन। सोलन में नेशनल हाईवे 5 के एक लेन ने पूरी तरह बंद हुई। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और भारी मलबा अचानक हाईवे पर गिरा। भूस्खलन की वजह से सड़क पर यातायात प्रभावित। सड़क धंसने से एक ट्रक असंतुलित होकर नाले की तरफ लटका। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश का कहर। लैंडस्लाइड से 11 सड़कें बंद। 3 दर्जन गांवों का संपर्क मुख्य सड़कों से कटा। कई जगह ग्रामीण खुद मलबा हटाने में जुटे। मार्ग अवरुद्ध होने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश और जलभराव के कारण कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में आज के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। पंचकुला के एमडीसी इलाके में बारिश का कहर देखने को मिला। पानी में कार डूबी, बच्चों को धकेल कर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। पेड़ गिरे, नेशनल हाईवे बंद हुए, सड़कें और पानी लबालब। अनंतनाग के बाटकूट में अचानक बाढ़ आई। नाले उफान पर, कई घरों में पानी घुसा। झांसी में जर्जर रपटा मुसीबत बन गया। नदी में पानी बढ़ा तो थम गया, लेकिन 3 गांवों का रास्ता शिक्षक कट गया, जिसके बाद शिक्षक बच्चों को हाथ पकड़कर नदी पार कराते दिखे। प्रयागराज में बाढ़ के चलते बेल नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। संपर्क मार्ग बाधित हो गया, पुल को बंद किया गया, कई गांवों का संपर्क कट गया। रामबन में बगलिहार डैम के कई गेट खोले गए। डैम में जमा मिट्टी और गंदगी बाहर निकालने के लिए अब पानी छोड़ा जा रहा है। डैम के आसपास रहने वाले लोगों को नदी और पानी से तेज बहाव से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए एडवाइजरी जारी की। बिजनौर में बाढ़ के हालात का जायजा लेने ट्रैक्टर पर पहुंची डीएम जसजीत कौर। सीओ ने संभाली स्टीयरिंग। चांदपुर मेरठ मार्ग समेत कई रास्ते बंद हो गए। हरिद्वार में कल देर शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के चलते भगत सिंह चौक रानीपुर मोड़ पर पानी भर गया। वाहन चालकों की परेशानी से काफी बढ़ गई। राजस्थान विधानसभा का आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। यूसीसी बिल पेश करने में राजस्थान सरकार पूरी कोशिश करेगी। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोत्रा के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। भड़काऊ टिप्पणी के आरोप में कृष्णानगर कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। आज विशाखापट्टनम में चल रही आरएसएस की मीटिंग का दूसरा दिन है। जेन जी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। नितिन नवीन और बीएल संतोष इसमें शामिल। सर्जी गोर के बयान से पाकिस्तान बौखलाया। अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान जारी करके अमेरिकी राजदूत की इस टिप्पणी को तथ्यात्मक रूप से गलत और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वंदे मातरम पर बड़ा फैसला लिया गया है। अब हमेशा की तरह सिर्फ शुरू के 2 पैराग्राफ को अपनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर एक तिहाई महिला आरक्षण की भी मांग की गई है। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। 800 शहरों तक छात्रों की गूंज अभियान को पहुंचाया जाएगा। सीडब्ल्यूसी में युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा हमला। पेपर लीक बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। कांग्रेस के फैसले के बाद बीजेपी का जोरदार पलटवार। कहा आज की नई मुस्लिम लीग बन रही है कांग्रेस। मेरठ में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा संसद से पारित कानून को नहीं मानने वालों को अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। राम मंदिर चंदे की सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की मांग की गई है। चीन और E20 पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि भारत का अहम अंग है जम्मू कश्मीर। हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। एनसीईआरटी का बड़ा कदम। क्लास 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की नई किताबें तैयार करने के लिए 20 सदस्यीय टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम का फिर से गठन किया गया। हालांकि इस टीम के 4 सदस्य आरएसएस से जुड़े हैं। नई किताबें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2023 के अनुसार तैयार की जाएंगी। मोदी सरकार शुरू करेगी जेन जी से संपर्क अभियान। हर रोज एक यूनिवर्सिटी जाएंगे केंद्रीय मंत्री। छात्रों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और चिंताओं को समझेंगे। मोदी कैबिनेट ने 9,450 करोड़ रुपए की 4 मल्टीट्रेकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 4 राज्यों के 8 जिलों को इसका लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करेगी ये परियोजना। रेल नेटवर्क में करीब 410 किलोमीटर की बढ़ोतरी भी होगी। बिहार कैबिनेट ने फैसला लेते हुए बक्सर भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। निर्माण कार्य जल्दी शुरू होगा। 11,000 नए निजी नलकूप, 48,200 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी, एआई को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को दिल्ली की अदालत ने सही माना है। टेंडर घोटाला केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, 25 अगस्त को बेल याचिका पर सुनवाई होगी। आज 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, अमित शाह चेन्नई पहुंचे हैं। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। झारखंड में सीजीएल के सफल उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंचे, परीक्षा रद्द करने के सरकारी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई। पटना में सम्राट चौधरी द्वारा शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई गई है। बैठक टीआरई 4 से जुड़े विरोध के बीच होने वाली है। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। 10 ठिकानों पर छापेमारी की। पीएमएलए के तहत रामपुर, सहारनपुर, दिल्ली में 10 ठिकानों पर तलाशी ली। ईडी का दावा है कि यह जांच यूनिवर्सिटी के लिए जमीन के अवैध अधिग्रहण, सरकारी धन के दुरुपयोग, इमारतों के निर्माण में सरकारी फंड के डायवर्जन के आरोपों की जांच की जा रही है। सावन के पवित्र महीने में शिवभक्ति के अनोखे रंग दिखाई दे रहे हैं। मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा आकर्षण का केंद्र बन गई है। श्रद्धालु वैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करेंगे। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने श्रीनगर का दौरा किया। अमेरिकी राजदूत को एयरपोर्ट पर बडगाम के कलेक्टर ने स्वागत किया। अमेरिकी राजदूत ने श्रीनगर की खूबसूरती के दीदार किए। सर्गियो गोर ने श्रीनगर की डल झील में शिकारा सवारी का भी आनंद लिया। दिल्ली को साफ करने के लिए अभियान की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कूड़े से आजादी अभियान शुरू किया। सबसे साफ वार्ड को 1 करोड़ रुपए ऐलान देने का ऐलान किया गया है। दिल्ली के लोगों ने कूड़े से आजादी अभियान की तारीफ भी की। दिल्ली के लोगों ने कहा, योजना तो अच्छी है लेकिन लागू होना जरूरी है। अनंतनाग की जावलीपोरा फ्रूट मंडी में किसानों ने प्रदर्शन किया। फसल बीमा और बेहतर सुविधाओं की मांग करने पर आवाज उठाई। जयपुर में खराब सड़कों के लिए अनोखा प्रदर्शन किया गया। गड्ढों का विरोध करने के लिए एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहनकर उतरे लोग भूख हड़ताल पर बैठे। कपूरथला में छात्रों का हंगामा हुआ। टीचर का तबादला रद्द करने और हाई वोल्टेज तार हटाने की मांग। कुल्लू में स्कूल के खीर खाने से 39 बच्चे बीमार हो गए। 5 जिला अस्पताल में रेफर किए गए। उल्टी दस्त के बाद फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई है। खीर खाने के बाद कुछ ही घंटे बाद तबीयत बिगड़ गई। चावल, चीनी, पानी के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। एसडीएम के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी गई। वैशाली में ट्रांसपोर्ट एजेंसी से 800 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, अनुमानित कीमत 13 लाख रुपए। कन्नौज में विवाद सुलझाने गए सिपाही को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार करके उनका जुलूस निकाला। चंदौली में वन विभाग की जमीन को खाली कराने गई पुलिस। वन विभाग की टीम से ग्रामीणों की भिड़ंत, कई पुलिसकर्मी घायल। ग्रेटर नोएडा की वुडन डाई कंपनी में भीषण आग लग गई। 10 दमकल गाड़ियों ने 3 घंटे में काबू पाया। उज्जैन के महाकाल लोक में खाद्य विभाग की कार्रवाई हुई है। गंदगी मिलने पर दुकान सील कर दी गई। इंदौर में छात्र संघ के चुनाव की मांग पर बवाल हो गया है। डीएवीवी द्वारा गेट तोड़ा गया तो 10 छात्रों पर एफआईआर कर दी गई। मुंबई थाने राशनिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10,600 लीटर चोरी का पेट्रोल जब्त किया। टैंकर को कब्जे में ले लिया गया। हापुड़ में मामूली कहासुनी में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हरिद्वार में एक कुत्ते ने अपने मालिक की जान बचाई। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। मुरादाबाद में तेंदुओं का आतंक देखने को मिला है। कई जिलों की स्पेशल टीमें जमीन पर उतारी गई हैं। जंगल खेतों में कॉम्बिंग किए जा रहे हैं। जगह जगह पिंजरे लगाए जा रहे हैं। थर्मल ड्रोन से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। संभल में पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। कान में घुसा 5 फीट का सरिया ग्राइंडर से काटकर निकाला गया। 2 घंटे तक ऑपरेशन चला। देवघर में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर 40 लाख की लूट की गई है। गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 4.5 लाख कैश भी बरामद किया गया। नगरोटा टोल प्लाजा के पास बस पलट गई। 10 यात्री घायल हो गए। 1 महिला की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वडोदरा में अंधविश्वास और तांत्रिक के जाल में 28 साल की युवती फंसी। उसने अपनी जान दे दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बागपत डबल मर्डर केस में परिजनों का दावा है कि पुजारी नहीं बल्कि तांत्रिक था बाबा, नरबलि देने का आरोप है। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है। लुधियाना के पास इलाके में देर रात पिज्जा आउटलेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। सोशल मीडिया पर गोपी लाहौरिया ग्रुप ने पोस्ट डालकर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। गाजियाबाद के क्लब में युवकों का धावा हुआ, संचालक और बाउंसरों को घेर करके पीटा गया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। पुलिस मामले की जांच में। नागपुर में एक मां ने अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी और बहन से करवा रही थी देह व्यापार, पुलिस ने छापेमारी करके दोनों को आजाद कराया। पुणे में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई, आरोपी की एक गलती पुलिस के लिए सबसे अहम सुराग बन गई। मणिपुर में रॉकेट लॉन्चर समेत विस्फोटक बरामद किए गए, दिल्ली के नरेला में उन्हें नष्ट किया गया। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु की शानदार जीत, कनाडा की वेन यूझांग को 21-16, 21-17 से हराकर अंतिम 16 में पहुंची पीवी सिंधु। वर्ल्ड चैंपियनशिप के अगले राउंड में चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त वांग यिंगनिंग से भिड़ेंगी नौवीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु। वर्ल्ड चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने श्रीलंका के डोमिंडो अविक्रमा को 21-8, 21-10 से मात दे दी। अगले राउंड में इंडोनेशिया के अल्वी फरहान से होगी भिड़ंत। बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल जोड़ी को मिला वॉकओवर, प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अमेरिका के गैरेट रैन से हारकर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गए लक्ष्य सेन, मैच पर कहा कि आज बेहतर साबित हुए लेकिन आगे की तैयारी जरूर करूंगा। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, नेदरलैंड में शानदार जीत मिली। अगले राउंड में पहुंची हरमनप्रीत एंड कंपनी। नेदरलैंड के एम्सलवीन में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर अगले राउंड में पहुंची भारतीय हॉकी टीम। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5:21 मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया, टीम को बढ़त दिलाई। भारतीय टीम की ओर से अभिषेक ने 11वें और 24 मिनट में शानदार गोल किए। उपकप्तान हार्दिक सिंह ने 85 मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया। हॉकी विश्व कप में 16 साल बाद खेला गया भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला, भारत के हाथों हारकर विश्व कप से पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन को लेकर के बड़ा बयान दिया है कि वो किम से मिलने की योजना बना रहे हैं, साथ ही कहा कि दोनों नेताओं के बीच संबंध भी अब काफी अच्छे हैं। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने भीषण हमला किया है, 6 से अधिक लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं, एक पुलिस थाने को निशाना बनाकर हमला किया गया। यूक्रेन के खेरसन में रूस का भीषण हमला हुआ है, बस पर हुए ड्रोन हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। पुतिन ने रूस के औद्योगिक ठिकानों पर हो रहे हमले को आतंकी हमला ठहराया, कहा रूस की अर्थव्यवस्था औद्योगिक ठिकाने पर हो रहे आतंकी हमलों का सामना कर रही है रूस की सेना। रूस और यूक्रेन ने युद्धबंदियों की अदला बदली की, दोनों तरफ से 103 सैनिक सौंपे गए। रूसी रक्षा मंत्रालय समेत यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसकी जानकारी दी। ईरान के शीर्ष वार्ताकार गालिबाफ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जब तक अमेरिका अंतिम समझौते की शर्त नहीं मानता तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट सबके लिए बंद रहेगा। ट्रंप ने अपने शीर्ष दूतों को ईरान के साथ जारी तमाम कूटनीतिक बातचीत रोकने के आदेश दिए। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रणनीति में माना जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। हॉर्मुज पर कतर के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया, कहा है हॉर्मुज के समझौते से अमेरिका ईरान वार्ता फिर से शुरू करना अब काफी आसान होगा। अमेरिकी सेना के विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मध्य पूर्व में तैनात किया जाएगा, विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे जापान के विदेश मंत्री, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात हुई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: नए पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा
2: तो स्विच टू बीम एकदम सेफ और भरोसेमंद रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर भीम ऐप से करो पे
3: इट्स द माई वे
4: नीमा लेट्स गो

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. AU
5: सोच बदलो और बैंक भी.

0: इन एसोसिएशन विद हिंद बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
0: विमल बोलो जुबा केसरी
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में बाढ़ का कहर, मूसलाधार बारिश के बाद पानी पानी हुआ प्रयागराज, पुलिस थाने से लेकर रेलवे ट्रैक तक भरा पानी। संगम नगरी प्रयागराज पर इस वक्त मानसून की मार पड़ रही है। शहरी इलाकों के साथ साथ पुलिस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन, कोई भी बारिश के कहर से बच नहीं पा रहा है। प्रयागराज से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां प्रयागराज के रामबाग स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर पानी भर चुका है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 से जुड़े ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं।
2: हम इस वक्त रामबाग के रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पर ये बारिश का पानी यात्रियों को परेशान करने लगा है। ये रेलवे ट्रैक है जो बारिश के पानी से पूरा भर गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 तीनों ये प्लेटफॉर्म है जो बारिश के पानी से भरे हुए हैं। रेलवे ट्रैक है जिसमें पानी भरा हुआ है, यात्री परेशान हैं और इसमें जो 4 ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई हैं और वहां पर यात्रियों को दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ रहा है। लोग अब इस बारिश के पानी से परेशान हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिलेगा।
1: प्रयागराज रामबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पानी भर जाने के बाद ट्रेनों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया गया है, जिससे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
3: तो यहाँ पे 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण ये पूरा देख रही है रेलवे ट्रैक पूरा पानी में भरा हुआ, जिससे सारी रेल सेवाएं बाधित हैं और सारी ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे जा रही हैं। इससे रोज के आने जाने वाले जो भी मुसाफिर यात्री हैं उनको बहुत कठिनाई हो रही है। जो लोग चलने में उनको प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे जाना पड़ा, जो ट्रेन 10 बजे की यहाँ पे थी अब वो उधर से जा रही है, तो काफी दिक्कतें हैं।
1: वहीं रेलवे ट्रैक पर भरे पानी को हटाने के लिए रेलवे प्रशासन के साथ साथ प्रयागराज प्रशासन भी जुटा है और पानी को निकालने की कोशिशें की जा रही है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते रेलवे स्टेशन के साथ साथ पुलिस स्टेशन में भी बारिश का पानी घुस गया है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में भी पानी भर गया और पुलिसकर्मी जूते उतारकर टहलते नजर आए।
4: आप देखिए थाने के कर्मचारी अधिकतर बाहर खड़े हैं और उनका पांव भी डूब गया। जो जिसपे काम करते हैं उस काम करने वाली सीटों भी डूब गई है और अधिकतर आप देखेंगे थाने में पानी भर गया है। इसी तरह माल खाना कहा जाता है, माल खाने के अंदर पानी, यही थानेदार साहब का रूम है, उनके रूम तक में पानी घुस गया है।
1: पुलिस थाना ही नहीं, प्रयागराज के अंडरपास में भी पानी भर जाने से उसे बंद कर दिया गया है। वहीं प्रयागराज के कई इलाकों की कॉलोनियों और गलियों में पानी भर गया है। कारें और बाइकें डूब गई हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है और लोग पहली मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। जहां एक तरफ शहरी इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ जाने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी का पानी अब शहर की सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। नदी का जल स्तर बढ़ जाने के चलते बख्शी बांध के पास फाफामुह को जोड़ने वाला गंगा पथ पानी में डूब गया, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने वाहनों को पानी के अंदर से ही निकालने को मजबूर है।
2: लोगों की परेशानी अब यहां पर बढ़ना शुरू हो गई है और ये गंगा पथ का रास्ता है जो फाफामऊ से सीधा ये दारागंज शहर की तरफ रास्ते को जोड़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर बाढ़ की वजह से ये रास्ता बंद हो रहा है और लेकिन कुछ लोग हैं जो इसी रास्ते का सहारा लेकर के निकल रहे हैं।
1: जहाँ एक तरफ भारी बारिश के चलते लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ आज तक ब्यूरो

के मंत्री आउटरीच प्रोग्राम के तहत तो वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान, कैबिनेट की बैठक में पीएम का निर्देश, आरएसएस की मीटिंग में भी जेन ज़ी पर मंथन। भारत का अंग है कश्मीर, श्रीनगर दौरे पर अमेरिका राजदूत सर्जियो गोर के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई नाराजगी। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, प्रयागराज में कई इलाके जलमग्न, सभी स्कूल बंद, रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से ट्रेन की आवाजाही पर असर, पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन से हाहाकार।

0: कर चुके हैं और अब वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें होंगी आपके सामने। सबसे पहले बात करेंगे वंदे मातरम पर जारी टकराव की खबर, जेन जी की भी आपको बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री बढ़ाएंगे उनसे कनेक्शन। रांची में क्या हो रहा है, अभ्यर्थी रो पड़े हैं, पूरी खबर डिटेल के साथ आगे आपको देंगे। बात दिल्ली में निगम पार्षद पर हुए हमले की भी करेंगे, साथ ही सैलाबी संकट की भी बात होगी, कहां पर कार अटकी दिखाई दी है वो आपको बताएंगे। वहीं यूपी में उफनती गंगा ने डराया हुआ है, इस पर पूरी डिटेल आपको देंगे। सोलन में हुई तबाही पर भी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे कि कहां स्टेशन के अंदर पानी पहुंच चुका है। सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर आज लद्दाख के दौरे पर हैं और इससे पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि जिससे पाकिस्तान बौखला गया है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे गोर ने सच बता दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे लेकर पाकिस्तान गुस्से से भर गया है। कश्मीर को भारत का हिस्सा बताने पर आग बबूला हुए वो।
1: कश्मीर पर गला फाड़कर चिल्लाने वाले पाकिस्तान का फिर मुंह लटक गया है। एक बार फिर उसने सुन लिया है कि कश्मीर का सच क्या है। इस बार भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दुनिया को बता दिया कि कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। बुधवार को श्रीनगर दौरे पर पहुंचे सर्जियो गोर ने घाटी की जमकर तारीफ की।
2: It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward.
1: इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सर्जियो की यात्रा को सकारात्मक बताया।
3: We had an opportunity to discuss relations between our two countries with a specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir.
1: कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताने पर पाकिस्तान का गुस्सा फूटा है। पड़ोसी मुल्क ने इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को तलब किया और सर्जियो के बयान को लेकर नाराजगी जताई। पाकिस्तान ने हर बार की तरह कश्मीर का वही पुराना रटा रटाया राग अलापा। सदा सच को नकारने वाले पाकिस्तान की बौखलाहट स्वाभाविक है, लेकिन सर्जियो के बयान की बीजेपी ने जमकर तारीफ की है।
4: जो जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववादी और आतंकवादियों के समर्थक जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा साजिशें और षड्यंत्र करते थे, उनको अमेरिका के राजदूत ने आज बेनकाब किया है। जम्मू कश्मीर हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है और जम्मू कश्मीर में अगर कोई विवाद है वो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है जो कि भारत का हिस्सा है।
1: अमेरिकी राजदूत ने बुधवार को शिकारा राइड भी किया, डल झील में उन्होंने कुछ पल बिताए और अब आज वे लद्दाख दौरे पर हैं। सर्जियो गोर वहां तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात करेंगे। लेह में ये मुलाकात होनी है, साथ ही अमेरिकी राजदूत लद्दाख के LG विनय सक्सेना से भी मिलेंगे। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
0: पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारत ने उसे करारा जवाब दिया है। दरअसल दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर अवैध स्ट्रक्चर को एजेंसियों ने हटा दिया है और यह कार्रवाई पाकिस्तान ने उस फैसले के बाद की है जिसमें उसने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर से पार्किंग पोल हटा दिए थे, उसी के बाद भारत ने यह कार्रवाई की है। चलिए अब खबर वंदे मातरम पर जारी सियासी टकराव से जुड़ी। राष्ट्रगीत के गायन को लेकर जारी विवाद अब और ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि कांग्रेस ने फैसला किया है कि अपने कार्यक्रम में पार्टी नेता वंदे मातरम के सिर्फ दो ही पैरा गाएंगे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कल पार्टी ने यह फैसला लिया है। अब इसको लेकर बीजेपी हमलावर है, बीजेपी ने कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बता दिया है। वंदे मातरम पर सियासी टकराव जारी।
5: कांग्रेस कह रही है कि वो वंदे मातरम के शुरुआत के दो पैरा ही गाएगी। पार्टी ने आधिकारिक रूप से इसका ऐलान कर दिया है। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसी मीटिंग में पार्टी ने वंदे मातरम पर 1937 वाले रुख को अपनाने का फैसला किया। इसके मुताबिक अपने सभी कार्यक्रमों में कांग्रेस राष्ट्रगीत के सिर्फ शुरुआती दो पद ही गाए जाएंगे।
6: हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रहा है पहले दिन से। 1937 जो अक्टूबर 28 का रेजोल्यूशन है, 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जनगण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा।
5: कांग्रेस के इस फैसले के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है।
7: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
5: वंदे मातरम पर कांग्रेस के रुख को बीजेपी राष्ट्रीय अपमान बता रही है।
8: जब संसद में बना हुआ कानून उसका लोग उल्लंघन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको करना है आंदोलन ही करना है तो संसद से त्यागपत्र देना चाहिए।
5: कांग्रेस फैसला कर चुकी है, बीजेपी भी हमलावर है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर सियासी संग्राम के अभी खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। मेरठ से उस्मान चौधरी और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। वंदे मातरम पर कांग्रेस के फैसले को लेकर उन्होंने कहा है कि भारत माता की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है जिन्होंने इसी गीत को अपनी चेतना में रखकर राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल एक राजनीतिक बचाव नहीं है बल्कि उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में पार्टी ने कई अहम फैसले लिए हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस अयोध्या में चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी और इसमें पार्टी ने परिसीमन पर भी अपना रुख दोहराया और अगले 25 साल तक लोकसभा सीटों की संख्या 543 पर ही बनाए रखने की मांग की है।
1: सीडब्ल्यूसी में पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा हुई। देश भर में छात्रों के आंदोलन और सरकार के एक्शन की कांग्रेस ने सर्वसम्मति से निंदा की। पार्टी ने छात्रों की गूंज अभियान को देश के अन्य हिस्सों में भी जारी रखने का फैसला लिया।
9: छात्रों की गूंज अब तक पिछले 2 महीने में कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है, 22 तारीख को पुणे में होगा और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे।
1: बैठक में दूसरा अहम मुद्दा राम मंदिर चंदा चोरी का रहा। पार्टी ने आरोप लगाया कि जो लोग राम मंदिर के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं वे पूरी तरह बेनकाब हो गए। कांग्रेस ने सरकार पर पहले अमेरिका के सामने सरेंडर करने का भी आरोप लगाया। साथ ही हल्द्वानी में खरगे की रैली के बाद शुद्धिकरण के मामले को लेकर भी पार्टी ने सरकार को घेरा और E20 पेट्रोल पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। सूत्रों की माने तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की विचारधारा पर गर्व करने को कहा। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी सिर्फ कांग्रेस से डरते हैं। उनके शब्दों में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से लड़ रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: वहीं नीट पेपर लीक के बाद अब केंद्र सरकार युवाओं तक पहुंच बढ़ाने की मुहिम में जुटी हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में अपने सभी मंत्रियों से कहा है कि वो जेनजी तक पहुंच बढ़ाएं। इसके लिए आउटरीच प्रोग्राम के तहत सभी मंत्रियों को कहा गया है कि वो वन डे वन यूनिवर्सिटी में बताएं और जेनजी को सरकार की यूथ पॉलिसी और स्कीम के बारे में समझाएं। चलिए अब कुछ और खबरें यूपी और पंजाब के सियासी समर की। इस खास रिपोर्ट में देखिए दोनों राज्यों में कैसी है चुनावी हलचल।
1: सहारनपुर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक के बीच तकरार हो गई। हालांकि सवाल उठे तो बाद में दोनों नेताओं ने किसी भी विवाद से इनकार कर दिया, लेकिन इसे लेकर यूपी बीजेपी हमलावर है। पार्टी तंज कर रही है कि गठबंधन की गाड़ी में स्टीयरिंग को लेकर ही संग्राम चल रहा है। बीजेपी की माने तो हार सामने देख समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बौखलाहट बढ़ गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने इमरान मसूद और आशु मलिक के बीच हुए विवाद की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि 2027 के चुनाव में गठबंधन की सरकार बननी तय है।
10: वैचारिक मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं होना चाहिए। और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा। सपा का कांग्रेस का गठबंधन तय है और हम सरकार बनाएंगे।
1: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी CWC की बैठक में शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं और आज उसकी अंतिम परीक्षा है। पार्टी सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया कि परीक्षा की वजह से ही वो इसमें शामिल नहीं हो पाए।
0: और अब खबर रांची में हुए छात्रों के प्रदर्शन की। दरअसल JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने भी अपने आंदोलन को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। ऐसे में कल शाम आंदोलन को स्थगित करने के बाद छात्रों ने एक आभार यात्रा निकाली है। और वहीं दूसरी ओर परीक्षा रद्द होने की वजह से जिन अभ्यर्थियों की नौकरी गई उनमें से कई अभ्यर्थी रोने भी लग गए। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। उनकी तरफ से अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है और इस मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री सोरेन को चिट्ठी लिखी है और CBI जांच की मांग की गई है। तो वहीं इस वक्त की एक और बड़ी खबर शिलोंग से आ रही है, जहां पर एक दिन पहले खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने काले झंडे के साथ बाइक रैली निकाली और इस पूरे दौरान शहर में कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई है। पुलिस ने बताया है कि 31 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। सड़कों पर चल रहे लोगों के साथ मारपीट तक की गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्टूडेंट्स यूनियन के 3 नेताओं पर कार्रवाई की गई। उन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आम नागरिकों पर हमला करने और अन्य

0: अब खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली की। दरअसल बाबरपुर विधानसभा स्थित कबीर नगर वार्ड नंबर 234 में कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद से मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि शादरा नॉर्थ जोन अध्यक्ष दफ्तर के अंदर उन्हीं के वार्ड में रहने वाले कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। निगम पार्षद हाजी शरीफ के अनुसार उनके वार्ड में एमसीडी ने अवैध चल रही फैक्ट्री को वहां पर सील करने का नोटिस भेजने के लिए भेजा था और ऐसे में इलाके के लोगों को शक था कि ये नोटिस हाजी करीब के कहने पर भी भेजा गया है और इसी बात से नाराज वार्ड की जनता ने निगम पार्षद पर हमला कर दिया। जबकि निगम पार्षद का कहना है कि उन्होंने कोई भी नोटिस जारी करने का आदेश एमसीडी के कर्मचारियों को नहीं दिया था। सबसे बड़ी बात यही है कि जब निगम पार्षद के साथ मारपीट हुई तब वेलकम थाना के जो प्रभारी हैं वो खुद मौके पर मौजूद थे, फिर भी ऐसा हुआ। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। राज्य में बीते 24 घंटे से लगातार जारी बारिश से जगह जगह पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं।
1: इन दिनों पहाड़ डरा रहे हैं। इस खौफ की एक बानगी हिमाचल से देख लीजिए। परवाणु के सेक्टर 5 स्थित ओल्ड कसौली रोड पर भारी बारिश की वजह से मिट्टी कटाव की घटना हुई। वहां सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। घटना के दौरान एक टैंकर नाले में समाते समाते बचा। भूस्खलन ऐसा हुआ कि कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। ये सोलन के वाकना घाट की तस्वीरें हैं। भारी बारिश से सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर भूस्खलन होने से हाईवे की एक लेन पूरी तरह बंद हो गई। अब कांगड़ा के हालात देखिए। 19 अगस्त को वहां भारी बारिश हुई, उसके बाद कांगड़ा के प्रयागपुर इलाके में निक्की खड्ड में बाढ़ आ गई। नदी का पानी कांगड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर फैल गया। इस वजह से हाईवे पर ट्रैफिक बाधित हो गया। एक कार ड्राइवर ने बाढ़ के बीच से अपनी कार निकालने की कोशिश की, लेकिन कार बीच रास्ते में ही फंस गई। स्थानीय लोगों ने कार में सवार लोगों को तो बचा लिया, लेकिन कार सैलाब में समा गई और नीचे की ओर चली गई। सिर्फ सोलन और कांगड़ा ही नहीं, हिमाचल के अन्य इलाकों में आसमानी आफत मंडरा रही है। हिमाचल के 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। खतरे की तस्वीरें जम्मू से भी आई। कल रामबार के चंदेरकोट में बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के गेट खोलने पड़े। जलाशय से गाद निकालने के लिए ऐसा किया गया। गेट खोले जाने की वजह से अब चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी आफत दिख रही है। ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं। वहां बुधवार देर शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सोलन से राजेश शर्मा और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ मुरित अग्रवाल, हरिद्वार आज तक।
0: अब खबर प्रयागराज की। वहां पर 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जिंदगी को ठप कर दिया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हैं। घरों के भीतर पानी घुस चुका है।

आसमान से मानो आफत बरस रही है, बादल मानो इस संकट से बेफिक्र है। संकट काल की ये तस्वीरें प्रयागराज की है। वहाँ रामबाग रेलवे स्टेशन के हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बारिश हुई है। पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में मूसलाधार बारिश जारी है। इस वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रयागराज में अधिकतर जगहों पर बारिश का पानी भर चुका है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़कों पर समंदर जैसे हालात हैं, तो लोगों के घरों तक बारिश का पानी पहुंच गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस संकट के बीच हाउस अरेस्ट जैसे हालात हैं। जरूरी काम से बाहर निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल भराव की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। वहीं घर की महिलाओं का कहना है कि पिछले 3 दिनों से घर के अंदर बाहर बारिश का पानी भर गया है और ऊपर से लाइट नहीं आ रही, न ही कहीं जा पा रहे हैं। जल भराव की वजह से काफी परेशानी हो रही है।

0: लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं।
1: आप समझिए कि हालात बहुत बुरी है। देखिए बोर्ड तक डूब गए हैं, मेमोरियल हॉस्पिटल तक, यानी प्रयालात बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हॉस्पिटल बैंक इसलिए बंद है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है और किसी को कहीं से नहीं नजर आ रही है।
0: प्रयागराज में अस्पताल बैंक तक में पानी भर गया है। गंभीर स्थिति के बीच आज प्री प्राइमरी से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। आनंद राज के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
2: सिर्फ प्रयागराज ही नहीं है, कानपुर में भी भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से बाढ़ का खतरा वहां पर बढ़ गया है।
3: बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के खतरे के बीच में प्रशासन द्वारा कमर कस ली गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह मौके पर जाकर घाटों के पास निरीक्षण करने पाए और अगर सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लेने पाए। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, जो खुद बोट के जरिए अपने बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं घाटों का। स्पीकर के जरिए लोगों को चेताया जा रहा है कि वह किस तरीके से सावधान रहें, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो डेंजरस मार्क पे लगभग पहुंच चुका है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर द्वारा उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है जहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। घाटों के पास से गुजरते हुए आप देखेंगे यहां पर लोगों के घर भी है जो वहां पर रहते हैं और ठीक 2 से 3 फीट दूर ही अब गंगा रह गई है और किसी भी वक्त जो वाटर लेवल है जो नरोरा बैंक से जो है छोड़ा जा चुका है वो इन घरों के ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कैसे लोगों को यहां से शिफ्ट करने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ेगी तो यहां से उनको दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा। इसी को देखने के लिए पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर मौजूद हैं और बोट के जरिए यहां पर सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं, उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां से लोगों को शिफ्ट करने की जरूरत है, जहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत है। आपको बता दूं कि नरोरा डैम से जो वाट पानी छोड़ा गया था उसके बाद पानी आम दिनों से यहां पर जलस्तर जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। पीछे अगर आप देखेंगे तो गंगा का जलस्तर वो ऊपर पहुंच चुका है, काफी हद तक जो यहां पर कम होना चाहिए था फिलहाल डेंजर लेवल पे गंगा पहुंच चुकी है। ऐसे में जो जिले के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा यहां पर मौके पर पहुंच के स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।
2: चलिए अब पंचकुला की बात कर लेते हैं जहां पर बारिश का कहर टूटा। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद रेलवे लाइन के नीचे बने अंडरपास में पानी इतना ज्यादा भर गया है कि एक कार पानी में डूब गई। ये तस्वीर आप देखिए, कार को निकालने के लिए स्थानीय बच्चों ने आगे आकर मोर्चा संभाला और पानी के बीच कार अटकी, उसको धक्का देकर वहां से बाहर निकाला गया है। घटना का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंचकुला की तस्वीर आप देख रहे हैं, पानी में फंसी कार और इसको यहां पर जो लोग हैं वो पानी में अंदर आते हैं और धक्का देकर बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। मूसलाधार बारिश से कितना संकट बढ़ गया है ये तस्वीरें बयां कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाड़ी प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील की खीर खाने के बाद 39 बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में जांच शुरू हो गई है। मंगलवार को यह पूरी घटना हुई थी और अब कुछ बच्चों की हालत में सुधार जरूर है जबकि कुछ को कुल्लू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
4: बच्चों को उल्टी दस्त और कुछ मामलों में बुखार की शिकायत हुई थी। अस्पताल में उपचार के बाद आज 15 बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। 5 बच्चों को आगे की जाँच के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया है। बच्चों की डिमांड पर स्कूल में खीर तैयार की गई लेकिन अचानक खीर खाने के कुछ घंटे बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ बच्चों को स्कूल से छुट्टी के बाद रास्ते में उल्टियां हुई जबकि कई बच्चे घर पहुंचने के बाद बीमार पड़े। तुरंत सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
5: ये जब घर जा रहे थे कुछ बच्चों की रास्ते में तबीयत खराब हुई, कुछ घर पहुंच के तबीयत खराब हो गई तो टीचर तो अपने घर चले गए। तो ऐसा कि फिर गाँव के लोगों ने जो है वो फटाफट उन बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया और धीरे धीरे काफी बच्चे जो है वो तकरीबन 39 बच्चे जो शाम को जो आपका CHC है पत्रीपुर वहां पहुंच गए।
4: मामले ने तूल पकड़ा तो स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल पहुंची, मिड डे मील तैयार करने वाली जगह का निरीक्षण किया। टीम ने खीर में इस्तेमाल किए गए चावल, चीनी और पानी के सैंपल लिए और उन सभी सैंपल को जांच के लिए भेज दिया।
6: ये वही स्कूल है जहां बीते दिन जो है खीर खाने के बाद करीब 38 बच्चे जो है बीमार पड़ गए थे। बहरहाल अभी फिलहाल उनका जो सभी बच्चे हैं उनका कुल्लू अस्पताल में जो है वो इलाज चल रहा है।
4: इस घटना के तुरंत बाद विधायक भुवनेश्वर गौड ने अस्पताल पहुंचकर बीमार बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की और स्वास्थ्य की जानकारी ली। फिर एसडीएम को जांच सौंप दी। अब प्रशासन कह रहा है कि लापरवाही सामने आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार है। मनमिंदर अरोड़ा, कुल्लू, आज तक।
2: सुपर 8 में आ वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मन जाएगा, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
8: इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: आगे आगे,
11: अरे उधर
10: उधर किधर,
11: करेक्ट करेक्ट,
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी है।

0: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ, कौन सा?
10: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
11: इट्स द माय वे।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: वंदे मातरम का सिर्फ दो पैरा गाने के कांग्रेसी फरमान से सियासत गरमाई, पूरी बीजेपी की चढ़ाई, कहा नई मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस, सीडब्ल्यूसी में बोले राहुल, राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं मोदी। जेंजी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान, कैबिनेट की बैठक में पीएम का निर्देश, आरएसएस की मीटिंग में भी जेंजी पर मंथन। भारत का अंग है कश्मीर, श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई नाराजगी। गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब से पांच गांवों में हाहाकार मचा, सात लोगों की मौत के बाद एक्शन, तस्करी के सरगना समेत 21 पर एफआईआर, 12 गिरफ्तार, 4 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, प्रयागराज में कई इलाके जलमग्न, सभी स्कूल बंद, रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेन की आवाजाही पर असर, पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन से हाहाकार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वंदे मातरम पर बड़ा फैसला, सिर्फ शुरू के दो पैरा को अपनाने का प्रस्ताव, लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर एक तिहाई महिला आरक्षण की मांग। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी बैठक में बड़े फैसले, 800 शहरों तक पहुंचेगा छात्रों की गूंज अभियान। सीडब्ल्यूसी में युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा हमला, पेपर लीक और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। कांग्रेस के फैसले के बाद बीजेपी का जोरदार पलटवार, कहा आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। मेरठ में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कांग्रेस पर बोला हमला, कहा संसद से पारित कानून को नहीं मानने वालों को पहले अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान विधानसभा का आज से मॉनसून सत्र, यूजीसी बिल पेश करेगी राजस्थान में बीजेपी सरकार। राम मंदिर चंदे की सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की मांग, चीन और E20 पर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल। एनसीईआरटी का बड़ा कदम, क्लास 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की नई किताबें तैयार करने के लिए 20 सदस्यीय टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम का पुनर्गठन किया। टीम के 4 सदस्य आरएसएस से जुड़े हैं, नई किताबें राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2023 के अनुसार तैयार की जाएंगी। आज विशाखापट्टनम में आरएसएस की मीटिंग का दूसरा दिन, जेंजी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना, नितिन नवीन और बीएल संतोष भी होंगे शामिल। टीएमसी सांसद नवा मोहित्रा के खिलाफ वारंट जारी, भड़काऊ टिप्पणी के आरोप में कृष्णनगर कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान, बोले भारत का अहम अंग जम्मू कश्मीर, हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक। सर्जियो गोर के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, अमेरिका की राजनयिक को किया तलब। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान जारी कर अमेरिकी राजदूत की इस टिप्पणी को तथ्यात्मक रूप से गलत और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। मोदी सरकार शुरू करेगी जेंजी से संपर्क का अभियान, हर रोज एक यूनिवर्सिटी जाएंगे एक केंद्रीय मंत्री, छात्रों से सीधे बातचीत पर उनकी समस्याओं और चिंताओं को समझेंगे। मोदी कैबिनेट ने 9,450 करोड़ रुपए की 4 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी, 4 राज्यों के 8 जिलों को मिलेगा लाभ। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करेगी परियोजना, रेल नेटवर्क में करीब 410 किलोमीटर की होगी वृद्धि। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, बक्सर भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी गई। 11,000 नए निजी नलकूप, 48,200 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता बढ़ेगी और एआई को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। आज पटना में सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग की बुलाई बैठक, ये बैठक TRA4 से जुड़े विरोध के बीच हो रही है। आज 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, चेन्नई पहुंचे अमित शाह, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले अमित शाह ने तमिलनाडु सीएम से की मुलाकात। झारखंड में सीजीएल के सफल उम्मीदवार पहुंचे हाईकोर्ट, परीक्षा रद्द करने के सरकारी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को दिल्ली की अदालत ने माना सही, टेंडर घोटाला केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 25 अगस्त को बेल याचिका पर सुनवाई। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 10 ठिकानों पर छापेमारी, पीएमएलए के तहत रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 ठिकानों पर तलाशी। ईडी के मुताबिक यहां पर जांच यूनिवर्सिटी के लिए जमीन के अवैध अधिग्रहण और सरकारी धन से दुरुपयोग से जुड़ी इमारतों के निर्माण में सरकारी फंड के डायवर्जन के आरोपों की जांच। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो रगोर ने श्रीनगर का दौरा किया। अमेरिकी राजदूत को एयरपोर्ट पर बड़गाम के कलेक्टर ने किया स्वागत। अमेरिकी राजदूत ने श्रीनगर की खूबसूरती के दीदार किए और साथ ही श्रीनगर की डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद भी लिया। दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने शुरू किया। कूड़े से आजादी अभियान सबसे स्वच्छ वार्ड को 1 करोड़ इनाम देने का ऐलान। दिल्ली के लोगों ने कूड़े से आजादी अभियान की तारीफ की। दिल्ली के लोग बोले, योजना तो अच्छी है लेकिन योजना का लागू होना जरूरी है। अनंतनाग की जाबलीपुरा फ्रूट मंडी में किसानों का प्रदर्शन हुआ। फसल बीमा और बेहतर सुविधाओं की मांग। जयपुर में खराब सड़कों के लिए किया अनोखा प्रदर्शन। गड्ढों का विरोध करने के लिए एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहनकर उतरे लोग भूख हड़ताल पर बैठे। कपूरथला में छात्रों का हंगामा। टीचर का तबादला रद्द करने और हाई वोल्टेज तार हटाने की मांग। कुल्लू में स्कूल की खीर खाने की वजह से 39 बच्चे बीमार हुए। 5 जिला अस्पताल रेफर किए गए। उल्टी दस्त के बाद फूड पॉइजनिंग की आशंका। खीर खाने के कुछ घंटे बाद बिगड़ी बच्चों की तबीयत। चावल चीनी और पानी के सैंपल जांच को भेजे गए। एसडीएम के नेतृत्व में जांच शुरू। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे शिव भक्ति के अनोखे रंग। मुंगेर में भव्य कावड़ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। हिमाचल में लगातार जारी बारिश की वजह से जगह जगह पर भूस्खलन। सोलन में नेशनल हाईवे 5 की एक लेन पूरी तरह से बंद। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और भारी मलबा अचानक से हाईवे पर आ गिरा। भूस्खलन की वजह से सड़क पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित। सड़क धंसने की वजह से एक ट्रक असंतुलित होकर नाले की तरफ लटका। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर। लैंडस्लाइड की वजह से 11 सड़कें बंद। 3 दर्जन गांव का संपर्क कटा। कई जगह ग्रामीण खुद मलबा हटाने में जुटे। मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश और जलभराव के कारण कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में आज के लिए अवकाश घोषित। पंचकुला के एमडीसी क्षेत्र में बारिश का कहर। पानी में डूबी कार को बच्चों ने धकेल कर वहां से बाहर निकाला। कांगड़ा में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। पेड़ गिरने के कारण नेशनल हाईवे बंद। सड़कें पानी में लबालब। अनंतनाग के बाटकुट में अचानक से आई बाढ़। नाले उफने और कई घरों में घुसा बारिश का पानी। झांसी में जर्जर रपटा बना मुसीबत। नदी में पानी बढ़ा तो थम गया 3 गांव का रास्ता। शिक्षक बच्चों को हाथ पकड़कर कर रहे हैं नदी पार। प्रयागराज में बाढ़ के चलते बेला नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ। संपर्क मार्ग हुआ बाधित। पुल किया गया बंद। कई गांव का संपर्क टूटा। रामबन में बगलिहार डैम के कई गेट खोले गए। डैम में जमा मिट्टी और गंदगी बाहर निकालने के लिए छोड़ा जा रहा पानी। डैम के आसपास रहने वाले लोगों को नदी और पानी के तेज बहाव से दूर रहने की सलाह दी गई। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए एडवाइजरी जारी की। बिजनौर में बाढ़ के हालात का जायजा लेने ट्रैक्टर पर पहुंची डीएम जसजीत कौर। सीओ ने संभाली स्टीयरिंग। चांदपुर मेरठ मार्ग समेत कई रास्ते पर। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। बारिश के चलते भगत सिंह चौक और रानीपुर मोड़ पर भरा पानी। वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। वैशाली के ट्रांसपोर्ट एजेंसी से 800 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। अनुमानित कीमत करीब 13 लाख रुपए। कन्नौज में विवाद सुलझाने गए सिपाही को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। चंदौली में वन विभाग की जमीन को खाली कराने गई पुलिस। वन विभाग की टीम से ग्रामीणों की भिड़न। कई पुलिसकर्मी घायल। ग्रेटर नोएडा की वुडन डाई कंपनी में भीषण आग लगी। 10 दमकल गाड़ियों ने 3 घंटे में पाया काबू। उज्जैन के महाकाल लोक में खाद्य विभाग की कार्रवाई। गंदगी मिलने पर दुकान से। इंदौर में छात्र संघ चुनाव की मांग पर बवाल। डीएवीवी का गेट तोड़ा गया। 10 छात्रों पर एफआईआर। मुंबई ठाणे राशनिंग विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10,600 लीटर चोरी का पेट्रोल जब्त किया। टैंकर को भी कब्जे में लिया गया। हापुड़ में मामूली कहासुनी में जमकर हुआ खूनी संघर्ष। महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार में कुत्ते ने बचाई मालिक की जान। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक। कई जिलों की स्पेशल टीमें उतरी। जंगल खेतों में कॉम्बिंग। जगह जगह लगाए जा रहे पिंजरे। थर्मल ड्रोन से निगरानी। संभल में पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला। कान में घुसा 5 फीट का सरिया। ग्राइंडर से काटकर निकाला गया। 2 घंटे चला ऑपरेशन। देवघर में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर 40 लाख की लूट। गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। 4.5 लाख कैश बरामद। नागरोटा टोल प्लाजा के पास बस पलटी। 10 यात्री घायल हुए। 1 महिला की हालत गंभीर। वडोदरा में अंधविश्वास और तांत्रिक के जाल में फंसी 28 साल की युवती ने दी जान, आरोपी गिरफ्तार। बागपत डबल मर्डर केस, परिजनों का दावा पुजारी नहीं तांत्रिक था बाबा, नरबलि देने का भी आरोप लगा। लुधियाना के पौश इलाके में देर रात पिज्जा आउटलेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, सोशल मीडिया पर गोपी लाहौरिया ग्रुप ने पोस्ट डालकर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। गाजियाबाद में क्लब में युवकों का धावा, संचालक और बाउंसर्स को घेर कर पीटा गया, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी मारपीट। नागपुर में मां ही अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी और बहन से करवा रही थी देह व्यापार, पुलिस ने छापेमारी कर कराया आजाद। पुणे में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या, आरोपी की एक गलती बनी पुलिस के लिए अहम सुराग। मणिपुर में बरामद रॉकेट लॉन्चर समेत विस्फोट, दिल्ली के नरेला में किए गए नष्ट। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु की शानदार जीत, कनाडा की वेन्यू झांग को 21-16, 21-17 से हराकर अंतिम 16 में पहुंची सिंधु। वर्ल्ड चैंपियनशिप के अगले राउंड में चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त वांग जी यी से भिड़ेंगी नौवीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु। वर्ल्ड चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने श्रीलंका के डुमडू को 21-8, 21-10 से दी मात, अगले राउंड में इंडोनेशिया के अलवी से होगी भिड़ंत। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी को मिला वॉकओवर, प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अमेरिका के गैरेट टेन से हारकर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हुए लक्ष्य सेन, मैच पर बोले लक्ष्य सेन, आज वो बेहतर साबित हुए, आगे की तैयारी करूंगा। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, नीदरलैंड्स में मिली शानदार जीत, अगले राउंड में पहुंची हरमनप्रीत एंड कंपनी। नीदरलैंड्स में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर अगले राउंड में पहुंची भारतीय हॉकी टीम। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें और 21वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से किया गोल, टीम को दिलाई बढ़त। भारतीय टीम की ओर से अभिषेक ने 11वें और 24 मिनट में किए शानदार गोल, तो उप कप्तान हार्दिक सिंह ने 35वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक से किया गोल। हॉकी विश्व कप में 16 साल बाद खेला गया भारत पाकिस्तान मुकाबला, भारत के हाथों हार कर विश्व कप से बाहर हुई पाकिस्तानी टीम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का किम जोंग उन को लेकर एक बड़ा बयान, कहा कि वो किम से मिलने की बना रहे हैं योजना, साथ ही कहा दोनों नेताओं के बीच हैं अच्छे संबंध। गाजा पर इजरायली सेना का भीषण हमला, हवाई हमले में 6 से अधिक लोगों की मौत, कई लोग घायल, पुलिस थाने को निशाना बनाकर किया गया था हमला। यूक्रेन के खेरसन में रूस का भीषण हमला, बस पर हुए ड्रोन हमले में 4 लोगों की मौत, कई घायल। पुतिन रूस के औद्योगिक ठिकानों पर हो रहे हमलों को ठहराया आतंकी हमला, कहा रूस की अर्थव्यवस्था औद्योगिक ठिकानों पर हो रहे आतंकी हमलों का कर रहे हैं सामना। रूस और यूक्रेन ने युद्ध बंदियों की अदला बदली की, दोनों तरफ से सौंपे गए 103 सैनिक और रूसी रक्षा मंत्रालय समेत यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी जानकारी। ईरान के शीर्ष वार्ताकार कलिवाफ का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका अंतरिम समझौते की शर्तें नहीं मानता तब तक हॉर्मुज रहेगा बंद। ट्रंप ने अपने शीर्ष दूतों को ईरान के साथ जारी तमाम कूटनीतिक बातचीत रोकने के लिए आदेश दिए, सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रणनीति में माना जा रहा है यह बहुत बड़ा बदलाव। हॉर्मुज पर कतर के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा हॉर्मुज पर समझौते से अमेरिका ईरान वार्ता फिर से शुरू करेगा, काफी आसान। अमेरिकी सेना का विमानवाहक पोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मध्य पूर्व में किया गया तैनात, विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की लेगा जगह। सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे जापान के विदेश मंत्री, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई बातचीत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 9:18 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, सुबह 9:08 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम टाल दें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

मानसिक चिंताएं समाप्त तो होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, काम का दबाव समाप्त होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन खर्च पर नियंत्रण रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

सूचना मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

होंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

हो सकती है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, खान पान में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता के योग हैं, धन का लाभ होगा, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, खान पान का ध्यान रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह बिहार में सुपौल के जिस लक्की चंद साहू उच्च माध्यमिक विद्यालय में दाखिल हो रहे हैं वो साल 1958 में बना और पिछले 70 वर्षों से यहाँ पर 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है। लेकिन इसी स्कूल परिसर में एक 2 मंजिला नई इमारत भी है जहाँ न छात्र है और न ही टीचर। स्कूल की इमारत वीरान पड़ी है। सवाल है कि स्कूल की बिल्डिंग बन जाने पर भी यहाँ पढ़ाई इतने वर्ष बीत जाने पर भी शुरू क्यों नहीं हुई। यहीं पर हमें इस स्कूल में पढ़ चुके मयंक मिलते हैं जिन्होंने स्कूल की पुरानी इमारत में पढ़ाई की है। नई बिल्डिंग का काम इनके सामने शुरू हुआ लेकिन सरकारी लापरवाही पर इन्हें रोना आता है। तो सवाल सीधा सा, जिस मॉडल स्कूल की इमारत 8 साल पहले बनकर तैयार हो गई वहाँ योजना के मुताबिक 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई क्यों शुरू नहीं हो पाई? आखिर स्कूल की इस नई इमारत के इस तरह जर्जर हालत में पहुंचने का जिम्मेदार कौन है? आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा कैसे स्कूल के चारों तरफ जंगल और झाड़ियां उगाई, इमारत की खिड़की और दरवाजे चोरी हो गए, खिड़कियों के ग्रिल तक निकाल लिए गए, बिजली के तार और दूसरे सामान भी गायब। सबसे बड़ी विडंबना ये कि यहाँ से शिक्षा की रोशनी फैलनी थी वहाँ नशे का बोलबाला है। हमें इस स्कूल के अंदर कई जगह इस्तेमाल की गई सुइयां, नशीले सिरप के बोतल और नशीली दवाओं से जुड़ा सामान इधर उधर बिखरा मिला। इलाके की वार्ड पार्षद स्मृति कुमारी आज तक को बताती हैं कि स्कूल की इमारत बनने के बाद भी इसे सरकार को हैंडओवर नहीं किया गया और स्कूल की इमारत खंडहर हो गई। तो ये है बिहार में शिक्षा की बदहाली से खबरदार करती हमारी रिपोर्ट का निचोड़। तस्वीर बिहार के सुपौल से है जहाँ एक तरफ बच्चे 70 साल पुराने स्कूल की इमारत में पढ़ने को मजबूर हैं, तो वहीं लाखों रुपए खर्च करके स्कूल की नई बिल्डिंग पढ़ाई शुरू हुए बिना ही खंडहर में तब्दील हो गई। मतलब बच्चे जोखिम में पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं उसी स्कूल में बनी नई इमारत खंडहर कर दी गई है। सवाल है क्यों, किसने इसका पैसा बर्बाद किया, बच्चों के हक के साथ खिलवाड़ किया? इस सवाल का जवाब हमें यहाँ 20 साल से पढ़ाने वाले टीचर अजय कुमार ने दिया। बताया कैसे सरकारी लापरवाही ने आम आदमी के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं। यानी जिस नई इमारत में बच्चों को पढ़ना था वो इसलिए हैंडओवर नहीं हो सकी क्योंकि बनाने वाले शौचालय बनाना भूल गए। लेकिन सवाल है कि इस गलती के लिए क्या किसी को सजा मिली? शौचालय ही बनाना था तो बाद में उसे बनाकर पूरा क्यों नहीं किया गया?
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: लीग बन गई है कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी में बोले राहुल, राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं मोदी। यूपी में जैन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार सख्त, लापरवाही मिली तो तय होगी जिम्मेदारी। सीएम ऑफिस करेगा सीधी निगरानी, सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम कमिश्नर। जेन जी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान। कैबिनेट की बैठक में पीएम का निर्देश, आरएसएस की मीटिंग में भी जेन जी पर मंथन। भारत का अंग है कश्मीर, श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के बयान से बौखलाया पाकिस्तान। इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई नाराजगी। गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब से पांच गांव में हाहाकार, सात लोगों की मौत के बाद एक्शन। तस्करी के सरगना समेत 21 पर एफआईआर, 12 गिरफ्तार, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी में कांग्रेस की क्यों कहां आज की मुस्लिम लीग, आज की बड़ी खबर पर प्रमुखता से चर्चा होगी, बात होगी अफसरों के सामने, आपस में भिड़ गए कांग्रेस और सांसद और एसपी के विधायक, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। महोबा में हाईवे पर क्यों उतरा जैन अल्फा, इस खबर पर भी होगी बात। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल आज की सबसे बड़ी खबर के साथ जो कि वंदे मातरम गान से जुड़ी हुई है, इस पर सियासी टकराव जारी है। कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में कल हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस अपने कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा ही गाएगी। कांग्रेस ने कहा कि वो वंदे मातरम को लेकर 1937 से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा किए गए फैसले का पूरी तरीके से पालन करेगी।

0: 15 अगस्त को सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान के आरोपों की तपिश अभी कम भी नहीं हुई थी कि गोवा से तस्वीर आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने कल अपनी कार्य समिति में आधिकारिक रूप से ये तय कर दिया कि वो दो पद ही गाएगी।
1: वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज आवर डिसीजन। फर्स्ट टू चांस था
2: 28 अक्टूबर 1947 को वंदे मातरम सॉरी 37 को वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में जब पारित किया गया CWC की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेता, आचार्य नरेंद्र देव मौजूद थे और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था और आज उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है।
0: इसी साल फरवरी में सरकार ने आधिकारिक मौकों पर वंदे मातरम के 6 पद वाले संस्करण को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया था, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट और 10 सेकंड की है। संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम को मंजूरी दी गई, जिसमें वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या अपमान को एक दंडनीय अपराध माना गया है। इसमें पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अपराध दोबारा दोहराने पर कम से कम 1 साल की अनिवार्य जेल होगी। क्या कांग्रेस संसद से पास कानून को नहीं मानेगी?
3: कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
0: जी हाँ, बड़ा सवाल यही है कि देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी का रुख संसद से पास कानून से अलग क्यों है? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: तो कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि दो ही पैरा उनके किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में गाए जाएंगे या बजाए जाएंगे, जिसको लेकर अब लगातार बीजेपी भी हमलावर है। और हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अगर कोई कानून पारित है वंदे मातरम को लेकर, तो क्या उस कानून को मानने से साफ तौर पर कांग्रेस इनकार कर रही है? और अगर ऐसा है तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा?
5: देखिए, बिल्कुल बीजेपी इस पूरे मुद्दे को जो है वो पूरे देश भर में लेके जाना चाहेगी। और आप देखिए, जिस दिन 15 अगस्त के दिन कांग्रेस के दफ्तर के अंदर जब ध्वजारोहण किया जा रहा था, तब जब वंदे मातरम का गायन किया गया तो उसमें 6 के 6 जो पैरा है वो गाए जा रहे थे। तब सोनिया गांधी ने कुछ इशारा किया जिससे ये पूरा विवाद हुआ और उसके बाद गृह मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर जो है कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। जब जो है कानून का रूप ले चुका है ये पूरा, उसमें कि जो भी नेशनल सॉन्ग है उसको पूरा गाया जाए और 6 स्टेंजा के साथ गाया जाए, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। क्या बीजेपी या कोई अन्य संगठन इस पर कोई कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे? या इतना तो जरूर है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस निर्णय के खिलाफ जो है वो जनता के बीच में जरूर जाएगी।
4: हिमांशु, इसके साथ ही अगर सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस इस बात का ऐलान कर रही है कि उनके किसी भी कार्यक्रम में दो ही स्टैंजा बजेंगे या फिर गाए जाएंगे, तो एक तरीके से आप जो पार्टी सत्ता में है उसको नहीं नकार रहे हैं, आप उस संविधान को नकार रहे हैं जिसमें ये रूल्स बने हैं कि पूरा का पूरा गान होगा और हर सार्वजनिक कार्यक्रम में होगा। इसके साथ ही कल आपके 2 वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा ये कह रहे हैं और 1937 का हवाला दे रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने यह फैसला लिया है? और अगर पूरा गान बज भी जाता है तो दिक्कत क्या है?
5: देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि 1937 के अंदर जो है रविंद्र टैगोर के कहने के बाद ही जो है वंदे मातरम का ये जो दो पैरा है यही जो है रखे गए थे और उसी को 80 साल से जो है वो गायन में लाया जा रहा था वंदे मातरम के। अब सरकार जो है चाहती है कि 6 पैरा का जो है वो वंदे मातरम का गायन हो, तो उसको लेकर कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा कि जब रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान जो व्यक्ति है उन्होंने अगर इसको अप्रूवल दिया, उनकी अप्रूवल से ये हुआ था, तो उस पर ये अब क्यों किया गया। संसद में जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया था तब वो हल्लांगामे के अंदर ये बिल जरूर पास हुआ, और तब कांग्रेस ने इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है वो आगे जाएगी, और कांग्रेस का जो स्टैंड है कि वो दो ही जो है वो स्टैंजा गायक अपने कार्यक्रमों में गाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखा जाए तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, और दोनों ही पार्टियां इस पर अपनी अपनी राजनीतिक जो है वो बिसात बिछाने की कोशिश भी करेंगी, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस का ये कहना है कि रविंद्रनाथ टैगोर उनके जो है कहने पर ये दो पैराग्राफ जो वो माने गए थे, और अब 80 साल बाद अगर बदलाव किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, उसके क्या कारण है, उसके कारण आपको बताने पड़ेंगे। और संसद से ये बिल पास हो चुका है और कानूनी रूप ले चुका है, क्योंकि आपका गजेटेड नोटिफिकेशन जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से भी जारी किया गया।
4: ठीक है मांचो, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। और पूर्व गवर्नर और बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने भी वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। संसद ने कानून पास होने के बाद भी वंदे मातरम पर कांग्रेस के रुख पर उन्होंने सवाल खड़े किए।
6: मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी इस तरीके से काम कर रही है जिसे आम लोगों को लगने लगा है कि ये तो भारत माँ के विरोध का काम हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये संसद ने कानून पास किया है। अब आपका बहुमत नहीं तो उसके लिए हम क्या करें। संसद में कानून पास हुआ है, बहुमत से कानून पास हुआ है, संसद के द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाला अपराधी होता है, और इसलिए जब संसद में बना हुआ कानून उसका ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनको करना है, आंदोलन ही करना है, तो संसद से त्यागपत्र देना चाहिए।
4: वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। वंदे मातरम पर कांग्रेस के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि भारत माता की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है जिन्होंने इसी गीत को अपनी चेतना में रखकर राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल एक राजनीतिक बचाव नहीं बल्कि उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रख दिया।

0: वहीं कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी ने कई अहम फैसले लिए हैं। उसके मुताबिक कांग्रेस अयोध्या में चंदा चोरी के मुद्दे पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। इसमें पार्टी ने परिसीमन पर भी अपना रुख दोहराया और अगले 25 साल तक लोकसभा सीटों की संख्या 543 पर ही बनाए रखने की मांग की है।
1: सीडब्ल्यूसी में पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा हुई। देश भर में छात्रों के आंदोलन और सरकार के एक्शन की कांग्रेस ने सर्वसम्मति से निंदा की। पार्टी ने छात्रों की गूंज अभियान को देश के अन्य हिस्सों में भी जारी रखने का फैसला लिया।
2: छात्रों की गूंज अब तक पिछले 2 महीने में कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है, 22 तारीख को पुणे में होगा और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे।
1: बैठक में दूसरा अहम मुद्दा राम मंदिर चंदा चोरी का रहा। पार्टी ने आरोप लगाया कि जो लोग राम मंदिर के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, वे पूरी तरह बेनकाब हो गए। कांग्रेस ने सरकार पर पहले अमेरिका के सामने सरेंडर करने का भी आरोप लगाया। साथ ही हल्द्वानी में खरगे की रैली के बाद शुद्धिकरण के मामले को लेकर भी पार्टी ने सरकार को घेरा और E20 पेट्रोल पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। सूत्रों की माने तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की विचारधारा पर गर्व करने को कहा। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी सिर्फ कांग्रेस से डरते हैं। उनके शब्दों में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से लड़ रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक के बीच सहारनपुर में एक बैठक के दौरान नोकझोंक हुई, कहा सुनी तक हुई। सुनिए।
3: यूपी की सियासत में नए बवाल का ये वायरल वीडियो है। वीडियो 18 अगस्त को सहारनपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक का है। इसमें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी विधायक आशु मलिक तूतू मैं करते नजर आ रहे हैं और पास ही में बैठी समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन खामोशी से सब देख रही हैं।
4: कच्चा नाला भी फुटवाया था जाकर के पिछली बार। आप नई बात हमें बता रहे हैं तो जवाब तो सही आना चाहिए ना।
3: दरअसल दिशा की बैठक में SP विधायक आशु मलिक अपने विधानसभा से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों से तीखे सवाल कर रहे थे। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक हो गई। SP और कांग्रेस के नेता के बीच नोकझोंक के वीडियो से सवाल खड़ा हो गया कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच सब ठीक ठाक है? ऊपर से दिखने वाली एकजुटता जमीनी तौर पर तो नदारद है। इस

0: मसूद पिछले कुछ समय से एसपी पर लगातार हमलावर हैं। दूसरी बात ये कि आशु मलिक और इमरान मसूद में निजी सियासी अदावत की बात भी आम है। फिलहाल इन स्थानीय टकरावों पर दोनों पार्टियों का नेतृत्व खामोश है। शायद 2027 का चुनाव बिगुल बजने से पहले दोनों दल एक दूसरे को तौलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल कुमार, सहारनपुर, आज तक।
1: तो नोकझोंक का आपने ये वीडियो देखा, ये खूब वायरल हो रहा है। इस पर आशु मलिक इमरान मलिक ने सफाई दी है, सुनिए।
2: जो एजेंडा था मीटिंग का, उस एजेंडे के तहत मीटिंग चलनी थी, तो माननीय सांसद जी ने आते ही बोला कि ये पड़ावा मान लिया जाए। हमने कहा ये कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं कि हम लोग अपना भाषण देके यहाँ से चले जाएंगे। जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जनता से जुड़ी हुई बात है। सहारनपुर में जो विकास कार्य है जिस प्रकार से होने चाहिए थे, जिस तेजी से होने चाहिए थे, वो बाधित पड़े हैं। देखिए, हर जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि वो अपने क्षेत्र और अपने लोगों की ज्यादा से ज्यादा बात रख सके, तो मैं इसको अभी दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता और ना इस पे कोई राजनीति करना चाहता। इस तरह की जो बातें सदन में होती हैं या इस तरह की मीटिंग में होती है, हम लोग इसी तरह की परंपरा है कि उनको वहीं छोड़ देते हैं।
3: नहीं, ये तो मीटिंगों में होती रहती है, जनप्रतिनिधि हैं, सब के अपने अपने विषय हैं और मैं अध्यक्षता कर रहा था तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबको बोलने का मौका मिले, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं। सबसे ज्यादा तो आशु मलिक ही बोले वहाँ, नियमों में तरीके से बोलेंगे ना, तो सबसे ज्यादा तो वही बोल रहे थे, उसके अलावा तो कोई बोला नहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा वो बोले। नहीं, कोई भटकी भी नहीं थी, सब लोगों का एक ही दिया है, एक ही मकसद है के सारे कार्यों की समीक्षा हो और सही दिशा के अंदर काम हो।
1: कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, जिस तरीके से इमरान मसूद बोल रहे हैं, उनकी भाषा में तो अभी भी तल्खी दिखाई दे रही है, लग नहीं रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। और अगर इस तरह की कोई मीटिंग होती है तो जरूरी नहीं है कि जो अध्यक्ष है वही डिसाइड करेगा, ये कोई संसद भवन तो है नहीं जहां पर सिर्फ अध्यक्ष डिसाइड कर रहे हैं, स्पीकर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कितना बोलेगा और कब बोलेगा।
4: नया, देखिए, इन दोनों नेताओं की जो अदावत है ये कोई नई नहीं है, ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये काफी समय से इन लोगों के बीच पहले से चलती आई है और इसी का असर यहाँ दिखाई भी दिया है। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मामला है नेहा, जिसमें ये साफ दिखने लगा है कि दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं एक पेज पर तो बिल्कुल ही नहीं है। और ये भी दिख रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये लड़ाई पहले भी इस जगह पर होती रही है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच बहुत कोई बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो ये लड़ाई मुख्य तौर पर तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खास करके अगर आप देखें तो ये लड़ाई सहारनपुर की है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं बन रही है, ये किसी से छुपी बात नहीं है और ये ही यहाँ पर खुलकर दिखाई भी दिया है। दोनों एक दूसरे के का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये तो सिर्फ दो नेताओं की बात है, लेकिन ये पार्टियों के बीच की भी, दोनों पार्टियों के बीच की भी यही स्थिति है। हालांकि रफू करने की कोशिश कल से चली है नेताओं के, शीर्ष नेताओं के कह सकते हैं, दोनों के पास फोन वोन भी आए और ये भी कहा जा रहा है कि अब इसको इस मामले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जेनरेशन अल्फा यानी कि जेन अल्फा का आंदोलन चल रहा है और कभी लखनऊ, कभी आजमगढ़, कभी कन्नौज में छात्रों के मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्होंने आवाज अपनी बुलंद की है। अब महोबा में जेन अल्फा के छात्र सड़क पर उतर आए, छात्रों की मांग यह है कि स्कूल आने जाने का रास्ता बनवा दीजिए।
0: उत्तर प्रदेश के जिला महोबा से आई ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि बच्चे स्कूल छोड़कर सड़कों पर क्यों उतरे हैं। ये जेन अल्फा के छात्र क्लासरूम छोड़कर सड़क पर चक्का जाम और नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? महोबा में छात्र सड़क पर इसलिए उतरे थे क्योंकि स्कूल आने जाने का जो रास्ता है वो खस्ता हाल है। सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है, सड़क तालाब है या तालाब में सड़कें हैं, ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा था। आए दिन बच्चे इन सड़कों पर गिर जाते थे, चोट लगती थी, जूता मोजा उतार कर स्कूल जाना पड़ता था। इसलिए जनरेशन अल्फा ने अपनी बात हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए झांसी मिर्जापुर हाईवे जाम कर दिया।
5: तो उनको बोलते हैं तो गाली भी देते हैं, आज रिक्शे भी पलटते हैं। अभी हमारे यहाँ के एक लोगों का पैर भी टूट गया है गिनने से।
0: हालात इतने बदतर हैं कि आए दिन ई रिक्शा और ऑटो पलट जाते हैं, जिससे कई बच्चे चोटिल

0: हो चुके हैं। छात्रों का आरोप है कि इस रास्ते पर कई दाल मिलें संचालित हैं। इन मिलों के बड़े बड़े ओवरलोडेड ट्रकों की आवाजाही होती है, जिससे सड़क खराब हो गई है। समस्या ये भी है कि मिलों का गंदा पानी सड़क पर बहा दिया जाता है। कई बार अधिकारियों से शिकायत के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो बच्चों ने सड़क पर उतरना ही मुनासिब समझा। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल बच्चों को शायद ठीक से पता भी ना हो कि आंदोलन कैसे करते हैं। इनमें से ज्यादातर के लिए ये पहला अनुभव रहा होगा, पहली बार पुलिस से सामना हुआ होगा, लेकिन पुलिस ने उनके साथ क्या किया?
1: जान का परिणाम देखना चाहते हो? जान का परिणाम देखोगे? तुम तो पढ़ते भी नहीं हो। जाम लगाओगे, जाम का परिणाम देखना चाहते हो?
0: आरोप है कि बच्चों के साथ महोबा पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। उन्हें धमकियां दी गई कि रोड खाली कर दो वरना तुम्हारे घर वालों पर कार्यवाही करेंगे। बल प्रयोग की भी धमकी देने का आरोप है। लेकिन महोबा के नगर क्षेत्राधिकारी रविकांत गौड़ कहते हैं कि पुलिस ने तो सद्भाव पूर्वक छात्रों को समझाया और रास्ता खुलवा दिया।
2: उस सूचना पे तत्कालिक पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस की टीम मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंच करके छात्रों से उनकी समस्याओं की जानकारी की गई तथा उनसे सद्भाव पूर्वक बातचीत करके आपातकालीन सेवाओं को बहाल किया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
0: महोबा में पुलिस ने बच्चों के साथ जो किया, यदि वो सद्भाव है तो पुलिस बताए जरा कि दुर्भाव क्या होता है। बच्चों की मांगे जायज हैं, स्कूल है तो रास्ता तो होना ही चाहिए। नाहिदा अंसारी, महोबा, आज तक।
3: और बाद उत्तर प्रदेश शिक्षण संस्थाओं की अव्यवस्था को लेकर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन की करेंगे, जिसके बाद सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने कहा कि जहां भी कमियां सामने आ रही हैं वहां के संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। लखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में छात्रों के प्रदर्शन को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। शिक्षकों की कमी और अन्य अव्यवस्थाओं पर सीएम योगी ने नाराजगी जताते हुए समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश दे दिए। साथ ही जहां भी खामियां सामने आएंगी उनका तत्काल निस्तारण कराने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा और एक्शन होगा। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, किस तरीके से सीएम इस पूरे मामले पर निगरानी रखे हुए हैं और आगे के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि इस तरह के प्रदर्शन ना हो?
4: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब से ही जेएनपी के हमने कई प्रोटेस्ट देखे और उसके बाद विपक्ष भी लगातार हावी था उत्तर प्रदेश सरकार पर, और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की और उसके बाद निर्देश दिए सभी बेसिक स्कूलों को, माध्यमिक स्कूलों को, कि जो उन पर एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाई है, साथ ही साथ एक नोडल ऑफिसर भी तय किया है कि वो इन सब चीजों को तय करेगा कि आखिर क्या कमियां हैं। क्योंकि जहां पर कमियां हैं, जहां पर टीचर नहीं आ रहे हैं, जहां पर जो बच्चे हैं वो प्रॉपर तरीके से उनको जो उपलब्धता है वो नहीं हो पा रही है, इन सभी पर फोकस करते हुए ये चीफ सेक्रेटरी को भी निर्देश दिए गए कि चीफ सेक्रेटरी सीधे उनको अब डायरेक्ट बीएसए से कनेक्ट करेगा और बीएसए नोडल ऑफिसर से, जिसके बाद इस तरीके से अब एक बड़ी कार्रवाई भी हो जाएगी। अगर लापरवाही पाई जाती है तो इसमें बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी कहा गया है। यानी कि जिम्मेदारी तय हो गई है वो वहां के हेडमास्टर से लेकर बीएसए, एबीएसए तक और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी तक। तो अब ये कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि किसी भी स्कूल में, किसी भी बेसिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल में ऐसी परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए जिससे कि कोई दिक्कत बच्चों को सामने आए। चूंकि सरकार हर चीज उपलब्ध करा रही है, हर चीज सरकार मुहैया करा रही है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके जिम्मेदार सीधे कार्रवाई तक की जाएगी।
3: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात नीट पेपर लीक मामले की करेंगे, उसके बाद अब केंद्र सरकार युवाओं तक पहुंच बढ़ाने की मुहिम में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में अपने सभी मंत्रियों से कह दिया है कि वो जेन जी तक अपनी पहुंच बढ़ाएं, और इसके लिए आउटरीच प्रोग्राम के तहत सभी मंत्रियों को कहा गया है कि वो वन डे वन यूनिवर्सिटी कार्यक्रम के तहत यूनिवर्सिटीज में जाएं और जेन जी को सरकार की यूथ पॉलिसी और स्कीम के बारे में जानकारी दें। और अब बात पटना में छात्र आंदोलन की करेंगे। पटना में बीपीएससी छात्रों के धरने के बीच आज शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे से लोक सेवक आवास में शिक्षा विभाग की बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। बिहार में टीआरई 4 समेत छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई है और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री को दिल्ली रवाना। वहीं पटना में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन का आज तीसरा दिन है। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है लेकिन छात्र आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इस बीच आज सीएम सम्राट चौधरी ने बैठक बुलाई है जिसमें शिक्षा विभाग के अफसर शामिल होंगे। माना जा रहा है कि छात्र आंदोलन को देखते हुए ये बैठक की जा रही है। तो छात्रों के समर्थन में कल तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे। राजभवन मार्च की तैयारी थी लेकिन इस दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की बस से तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी करके बीजेपी पर निशाना साधा।
5: बीजेपी का कार्यालय है, दूर करके जितने चंदा चोर पेपर लीक डस्टबिन घोटाले वाले छात्रों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे वही मिलेंगे।
3: शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, कल आरजेडी का मार्च तो अधूरा रह गया, हिरासत में चले गए तेजस्वी यादव, अब आगे आरजेडी की लड़ाई छात्रों के साथ कैसे रहेगी?
6: देखिए, तेजस्वी यादव को जो मैसेज देना था नेहा, वो उन्होंने कल राजभवन मार्च के जरिए दिया है और बाद में फिर आरजेडी के नेता लोकभवन भी गए थे और राज्यपाल से तो उनकी मुलाकात नहीं हुई लेकिन राजभवन मतलब लोकभवन के जो अधिकारी हैं, जो भी राज्यपाल की तरफ से प्राधिकृत अधिकृत थे, उनको एक मेमोरेंडम उन्होंने दिया। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि एक तो ये कि जो बीपीएससी टीआरई 4 में अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के छात्रों का धरना है वो आज तीसरे दिन में पहुंच गया है और दूसरी तरफ बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज एक रिव्यू मीटिंग भी रखी है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। हालांकि इस रिव्यू मीटिंग का एजेंडा क्लियर नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री के शेड्यूल में शिक्षा विभाग की बैठक 12 बजे से है तो वहां क्या इस मसले पर भी कोई चर्चा होती है या फिर एजेंडा दूसरा रहता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि आज सम्राट चौधरी को दिल्ली भी रवाना होना है शाम में, आज उनके 2-3 कार्यक्रम है लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण शेड्यूल जो है वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। एजेंडा भले तय ना हो लेकिन क्लियर ना हो मीडिया तक, लेकिन एक बात जरूर है कि जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है या फिर जो तमाम मांगे हैं उसको लेकर के हो सकता है मुख्यमंत्री जरूर कहीं मंथन कर रहे हों।
3: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात मानसूनी आफत की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और वहां पर कहर बरपा रहा है। राज्य बीते 24 घंटों से लगातार हो रही है बारिश और इसकी जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं नदी नाले उफान पर है।
7: इन दिनों पहाड़ डरा रहे हैं, इस खौफ की एक बानगी हिमाचल से देख लीजिए। परवाणू के सेक्टर 5 स्थित ओल्ड कसौली रोड पर भारी बारिश की वजह से मिट्टी कटाव की घटना हुई। वहां सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। घटना के दौरान एक टैंकर नाले में समाते समाते बचा। भूस्खलन ऐसा हुआ कि कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। ये सोलन के वाकना घाट की तस्वीरें हैं। भारी बारिश से सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर भूस्खलन होने से हाईवे की एक लेन पूरी तरह बंद हो गई। अब कांगड़ा के हालात देखिए। 19 अगस्त को वहां भारी बारिश हुई, उसके बाद कांगड़ा के प्रागपुर इलाके में निक्की खड्ड में बाढ़ आ गई। नदी का पानी कांगड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर फैल गया, इस वजह से हाईवे पर ट्रैफिक बाधित हो गया। एक कार ड्राइवर ने बाढ़ के बीच से अपनी कार निकालने की कोशिश की लेकिन कार बीच रास्ते में ही फंस गई। स्थानीय लोगों ने कार में सवार लोगों को तो बचा लिया लेकिन कार सैलाब में समा गई और नीचे की ओर चली गई। सिर्फ सोलन और कांगड़ा ही नहीं, हिमाचल के अन्य इलाकों में आसमानी आफत मंडरा रही। हिमाचल के 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। खतरे की तस्वीरें जम्मू से भी आई। कल रामबार के चंदेरकोट में बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के गेट खोलने पड़े। जलाशय से गाद निकालने के लिए ऐसा किया गया। गेट खोले जाने की वजह से अब चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी आफत दिख रही है। ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं। वहां बुधवार देर शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सोलन से राजेश शर्मा और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ मुदित अग्रवाल, हरिद्वार आज तक।
3: तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: जमाई पूरी बीजेपी की चढ़ाई, कहा नई मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी में बोले राहुल, राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं मोदी। यूपी में जैन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार सख्त, लापरवाही मिली तो तय होगी जिम्मेदारी। सीएम ऑफिस करेगा सीधी निगरानी, सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम कमिश्नर। के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान। कैबिनेट की बैठक में पीएम का निर्देश, आरएसएस की मीटिंग में भी जेन जी पर मंथन। भारत का अंग है कश्मीर, श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के बयान से बौखलाया पाकिस्तान। इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई नाराजगी। गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब से 5 गांव में हाहाकार, 7 लोगों की मौत के बाद एक्शन, तस्करी के सरगना समेत 21 पर एफआईआर, 12 गिरफ्तार, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
0: आज है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती। दिल्ली में नेताओं ने वीर भूमि पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पर श्रद्धांजलि सभा, कार्यक्रम पहुंचे सोनिया, राहुल और खड़गे समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सद्भावना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री को किया याद, एक पोस्ट में लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि। यूपी में जैन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार सख्त, बोले जैन अल्फा प्रदर्शन से निपटने के लिए लाठीचार्ज नहीं, बातचीत होगी। योगी के दफ्तर से होगी सीधी निगरानी, सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम कमिश्नर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वंदे मातरम पर बड़ा फैसला, सिर्फ शुरू के दो पैरा को अपनाने का प्रस्ताव। लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर एक तिहाई महिला आरक्षण की मांग। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी बैठक में बड़े फैसले, 800 शहरों तक पहुंचेगा छात्रों की गूंज अभियान। सीडब्ल्यूसी में युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा हमला, पेपर लीक और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। कांग्रेस के फैसले के बाद बीजेपी का जोरदार पलटवार, कहा आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। मेरठ में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कांग्रेस पर बोला हमला, कहा संसद से पारित कानून को नहीं मानने वालों को पहले अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान विधानसभा का आज से मॉनसून सत्र, यूसीसी बिल पेश करेगी राजस्थान बीजेपी सरकार। राम मंदिर चंदे की सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की मांग, चीन और E20 पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। एनसीईआरटी का बड़ा कदम, क्लास 11वीं और 12वीं पॉलिटिकल साइंस की नई किताबें तैयार करने के लिए 20 सदस्यीय टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम का पुनर्गठन किया गया। टीम के 4 सदस्य आरएसएस से जुड़े हैं। नई किताबें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 के अनुसार तैयार की जाएंगी। आज विशाखापट्टनम में आरएसएस की मीटिंग का दूसरा दिन, जेएनजी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ वारंट जारी, भड़काऊ टिप्पणी के आरोप में कृष्णानगर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का बड़ा बयान, बोले भारत का अहम हिस्सा है जम्मू कश्मीर, हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। सर्जियो गौर के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, अमेरिकी राजनयिक को किया तलब। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान जारी कर अमेरिकी राजदूत की इस टिप्पणी को तथ्यात्मक रूप से गलत और गैर जिम्मेदार ठहराया। मोदी सरकार शुरू करेगी जेएनजी से संपर्क अभियान, हर रोज एक यूनिवर्सिटी जाएगा एक केंद्रीय मंत्री, छात्रों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और चिंताओं को समझेंगे। मोदी कैबिनेट ने 9,450 करोड़ रूपये की 4 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी, 4 राज्यों में 8 जिलों को मिलेगा लाभ। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करेगी परियोजना, रेल नेटवर्क में करीब 410 किलोमीटर की होगी वृद्धि। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, बक्सर भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक मंजूरी। 11,000 नए निजी नलकूप, 48,200 मेट्रिक टन भंडारण क्षमता बढ़ेगी, एआई को भी मिलेगा बढ़ावा। आज पटना में सम्राट चौधरी शिक्षा विभाग की बुलाई बैठक, ये बैठक TRE4 से जुड़े विरोध के बीच हो रही है। आज 31वीं दक्षिणी परिषद की बैठक, चेन्नई पहुंचे अमित शाह, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले अमित शाह ने तमिलनाडु सीएम से की मुलाकात। झारखंड में CGL के सफल उम्मीदवार पहुंचे हाईकोर्ट, परीक्षा रद्द करने के सरकारी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार। सत्येन जैन की गिरफ्तारी को दिल्ली की अदालत ने माना सही, टेंडर घोटाला केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 10 ठिकानों पर छापेमारी, PMLA के तहत रामपुर, सहारनपुर, दिल्ली में 10 ठिकानों पर तलाशी ली गई। ई ईडी के मुताबिक ये जांच यूनिवर्सिटी के लिए जमीन के अवैध अधिग्रहण और सरकारी धन से जुड़े दुरुपयोग से जुड़ी हुई है। जयपुर में खराब सड़कों के लिए किया गया अनोखा प्रदर्शन, गड्ढों का विरोध करने के लिए एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहनकर उतरे लोग, भूख हड़ताल पर बैठे। कपूरथला में छात्रों का हंगामा, टीचर का तबादला रद्द करने और हाई वोल्टेज तार गिरने की मांग। कुल्लू में स्कूल की खीर खाने से 39 बच्चे बीमार, 5 जिला अस्पताल रेफर, उल्टी 10 के बाद फूड पॉइजनिंग की आशंका। खीर खाने के बाद बिगड़ी तबियत, चावल चीनी और पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, एसडीएम ने नेतृत्व में शुरू की गई जांच। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। हिमाचल में लगातार जारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन, सोलन में नेशनल हाईवे 5 की एक लेन पूरी तरह बंद, पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और भारी मलबा अचानक हाईवे पर गिरा। भूस्खलन की वजह से सड़क पर यातायात बुरी तरह प्रभावित, सड़क धंसने से एक ट्रक असंतुलित होकर नाले की तरफ लटका। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर, लैंडस्लाइड से 11 सड़कें बंद, 3 दर्जन गांवों का संपर्क कटा। कई जगह ग्रामीण खुद मलबा हटाने में जुटे, मार्ग अवरुद्ध होने से ग्रामीणों को आवागमन में हो रही है दिक्कत। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश और जलभराव के कारण कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में आज के लिए अवकाश घोषित। पंचकुला के एमडीसी क्षेत्र में बारिश का कहर, पानी में डूबी कार को बच्चों ने ढकेल कर निकाला। कांगड़ा में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, पेड़ गिरने से नेशनल हाईवे ठप, सड़कें पानी से लबालब। अनंतनाग के बाद कूट में अचानक आई बाढ़, नाल उफनने लगा, नाले उफान पर कई घरों में घुसा पानी। झांसी में जर्जर रपटा बना मुसीबत, नदी में पानी बढ़ा तो थम गया 3 गांव का रास्ता, शिक्षक बच्चों को हाथ पकड़कर करा रहे नदी पार। प्रयागराज में बाढ़ के चलते बेलन नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त, संपर्क मार्ग हुआ बाधित, पुल किया गया बंद। रामबन में बगलीहर डैम के कई गेट खोले गए, डैम में जमा मिट्टी और गंदगी बाहर निकालने के लिए छोड़ा जा रहा है पानी। डैम के आसपास रहने वाले लोगों के लिए नदी और पानी के तेज बहाव से दूर रहने की सलाह, प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। बिजनौर में बाढ़ जैसे हालात का जायजा लेने ट्रैक्टर पर पहुंचे डीएम जसजीत कौर, सीओ ने संभाली स्टीयरिंग। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न, जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। बारिश के चलते भगत सिंह चौक और रानीपुर मोड़ पर भरा पानी, वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। शिलांग में एक दिन पहले खासी स्टूडेंट्स यूनियन के काले झंडे के साथ निकाली बाइक रैली, इस दौरान शहर के कुछ जगहों पर हुई हिंसा। रैली के दौरान 31 गाड़ियों को पहुंचाया गया नुकसान और राहगीरों के साथ मारपीट, हिंसक रैली के बाद केएसयू के अध्यक्ष समेत 3 बड़े नेताओं पर मेघालय पुलिस का एक्शन। केएसयू नेताओं पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आम नागरिकों पर हमला करने और अन्य अपराधों के आरोप में भारतीय न्याय संहिता 2023 की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज। नवादा में थाने से 50 मीटर दूरी पर दिन दहाड़े फायरिंग, मोबाइल छीनने के विरोध में युवक ने लहराई बंदूक, 20 लोगों पर FIR। पटना में जेईई मेंस की तैयारी कर रहे छात्रों का हॉस्टल में फंदे से लटका मिला शव, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के सहारनपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में ग्रामीणों ने पीटा, मुंह काला कर चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। यूपी के झांसी ललितपुर हाईवे पर हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, करीब 150 मीटर दूर तक घसीटा। यूपी के झांसी में लूट के आरोपी 4 बदमाशों का पुलिस ने किया एनकाउंटर, 2 को लगी गोली, 4th गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में मदरसे की छात्रा से पिछले 1 साल से मौलवी पर रेप का आरोप, फरुखाबाद ले जाते समय परिजनों ने आरोपी को पकड़ा, मंचला गिरफ्तार। कानपुर में 1 बीघा जमीन के विवाद में बहन की हत्या, 1 साल बाद खुला सड़क हादसे का झूठा राज, आरोपी भाई गिरफ्तार। वैशाली में ट्रांसपोर्ट एजेंसी से 800 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, अनुमानित करीब 13 लाख रुपए कीमत। कन्नौज में विवाद सुलझाने गए सिपाही को दड़ा दड़ा कर पीटा, 12 लोगों को गिरफ्तार कर निकाला गया जुलूस। चंदौली में वन विभाग की जमीन को खाली कराने गई पुलिस, वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों की भिड़त, कई पुलिसकर्मी घायल। ग्रेटर नोएडा की वुडन डाई कंपनी में भीषण आग, 10 दमकल गाड़ियों ने 3 घंटे में आग पर पाया काबू। उज्जैन के महाकाल लोक में खाद्य विभाग की कार्रवाई, गंदगी मिलने पर दुकान सील। इंदौर में छात्र संघ चुनाव की मांग पर बवाल, DAVV का गेट तोड़ा, 10 छात्रों पर FIR। मुंबई थारे राशन विभाग की बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10,600 लीटर चोरी का पेट्रोल जब्त। हापुड़ में मामली कहासुनी में जमकर हुआ खूनी संघर्ष, महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार में कुत्ते ने बचाई मालिक की जान, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना, वीडियो वायरल। मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक, कई जिलों में स्पेशल टीमें तैनात, जंगल खेतों में कॉम्बिंग ऑपरेशन, जगह जगह लगाए जा रहे हैं पिंजरे। संभल पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला, कान में घुसा 5 फीट का सरिया, ग्राइंडर से रिकॉर्ड कर निकाला, 2 घंटे चला ऑपरेशन। देवघर में फर्जी GST अधिकारी बनकर 40 लाख की लूट, गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, 4.5 लाख कैश बरामद। नागरोटा टोल प्लाजा के पास बस हादसा, 10 यात्री घायल, एक महिला की हालत गंभीर। वडोदरा में अंधविश्वास और तांत्रिक के जाल में फंसी 28 साल की युवती की जान, आरोपी गिरफ्तार। बागपत डबल मर्डर मामले में परिजनों का दावा। लुधियाना के पौश इलाके में देर रात पिज्जा आउटलेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गाजियाबाद में क्लब में युवकों का धावा, संचालक और बाउंसर्स को घेर कर पीटा, सीसी में कैद हुई मारपीट। नागपुर में माही अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी और बहन से करवा रही थी देह व्यापार, पुलिस ने छापेमारी कर कराया आजाद। पुणे में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या, आरोपी की गलती बन गई पुलिस के लिए अहम सुराग। मणिपुर में बरामद रॉकेट लॉन्चर समेत विस्फोटक दिल्ली के नरेला में किए गए नष्ट। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु की शानदार जीत, कनाडा की वेन यू झांग को 21-16, 21-17 से हराकर अंतिम 16 में पहुंची। वर्ल्ड चैंपियनशिप के अगले राउंड में चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त वांग जी यी से मिलेंगी 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु। वर्ल्ड चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने श्रीलंका के डुमिंग अबेविक्रमा को 21-8, 21-10 से दी मात। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सात्विक राय राज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी को मिला वॉकओवर। अमेरिका के गैरेट टेन से हारकर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हुए लक्ष्य सेन, मैच पर बोले लक्ष्य सेन, आज वो बेहतर साबित हुए, आगे की तैयारी करूंगा। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, नीदरलैंड्स में ली शानदार जीत, अगले राउंड में पहुंची हरमनप्रीत एंड कंपनी। नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर अगले राउंड में पहुंची भारतीय हॉकी टीम। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें और 21वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से किया गोल। भारतीय टीम की ओर से अभिषेक ने 11वें और 24वें मिनट में किए शानदार गोल, तो उप कप्तान हार्दिक सिंह ने 35वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक से किया गोल। हॉकी विश्व कप में 16 साल बाद खेला गया भारत पाकिस्तान मुकाबला, भारत के हाथों हारकर विश्व कप से बाहर हुई पाकिस्तानी टीम। और अब बात पाकिस्तान की उस हरकत की जिसका भारत ने करारा जवाब दे दिया। दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर अवैध स्ट्रक्चर को एजेंसियों ने हटा दिया है। ये कार्रवाई पाकिस्तान के उस फैसले के बाद की गई जिसमें उसने इस्लामाबाद से भारतीय उच्चायोग के बाहर से पार्किंग पोल हटा दिए थे, उसी के बाद भारत ने ये कार्रवाई की।
2: दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के बाहर से इलीगल इंक्रोचमेंट को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि एक ये रेसिप्रोकल एक्शन है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के बाहर से बैरिकेड्स को हटाया गया और कहीं ना कहीं सुरक्षा को कम किया गया, उसी का रेसिप्रोकल एक्शन आज दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, जहां पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से जो ट्रैफिक बैरिकेड्स लगे हुए थे, जो इलीगल इंक्रोचमेंट था, उसे पूरी तरीके से बुलडोजर्स की मदद से हटा दिया गया है। याद रखिए, पिछले साल जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसी टाइम जो सिक्योरिटी थी, जो पुलिस वाले यहां तैनात थे, उनको कम कर दिया गया था, सिक्योरिटी में यहां कमी कर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब होते ही दिख रहे हैं, उसी में ये रेसिप्रोकल एक्शन सामने आया है, जहां पहले पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास के बाहर से सिक्योरिटी हटाई और बैरिकेड्स हटाए, तो उसके ही बदले अब भारतीय अथॉरिटीज ने भी पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर से जो सिक्योरिटी अपरेटस था, जो इलीगल इंक्रोचमेंट था, जो ट्रैफिक बैरिकेड्स यहां लगे हुए थे, उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अब किसी भी तरीके का जो सिक्योरिटी दायरा है वो देखने को नहीं मिल रहा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
0: और अब बात जयपुर की, जहां सरकारी स्कूलों के हालात को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने जयपुर में मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि सरकार ने स्कूलों की हालत खराब कर दी है और स्कूलों की अव्यवस्था को दिखाने के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है। ये मोर्चा कांग्रेस द्वारा निकाला गया, सड़क पर मार्च के द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से हाल के दिनों में फरमान जारी किया कि किसी भी स्कूल परिसर के भीतर कोई वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या फिर रील नहीं बनाई जाएगी, इसी फैसले के खिलाफ अब कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ।
3: देश के विद्यार्थी सवाल पूछ रहे हैं, देश की आर्थिक ताकत हमारे लिए लगी या किसी और के लिए लगी, आज स्कूलों के लिए क्या हालात बना चुके हैं। ONGC ने CA साहब के पिछले 10 वर्षों में 668 करोड़ रुपए जो देश की शिक्षा में लगना चाहिए वो पैसा लूट कर RSS को दिया। ये लूट अब देश बर्दाश्त नहीं कर सकता।
0: शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, जाहिर तौर पर बीजेपी सरकार ने जो फैसला लिया है स्कूलों में रील्स और फोटोग्राफी ना करने को लेकर, उसे एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाने की तैयारी में है।
4: हाँ बिल्कुल नेहा, जिस तरह से आज विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, विधानसभा में जाने से पहले कांग्रेस के नेताओं ने तय किया कि हम वहां पर जो दिव्यांग विद्यालय है जयपुर में वहां जाएंगे और वहां पर इस कानून को तोड़ेंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी विधायक, जनप्रतिनिधि या किसी मीडिया कर्मी को जाने पर रोक नहीं है। अनऑथराइज लोग जो मोबाइल लेके चले जाते हैं और वीडियो बनाते हैं केवल उनके लिए रोक लगाई है हमने, और इस नियम को तोड़ने के लिए यहाँ जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं विधानसभा जाने से पहले वहां पर दिव्यांग स्कूल गए हुए हैं। हालांकि वहां पर जो टीचर है उन्होंने किसी ने रोका नहीं उन्हें अंदर बात जाने से, तो एक तरह से एक सांकेतिक विरोध था इनका कि इस तरह के आदेश को वापस लेना चाहिए। सरकार का दूसरा पक्ष है, सरकार का कहना है कि जो बहुत सारी अविवाहित लड़कियां टीचर हैं, महिलाएं हैं, 12वीं 11वीं की लड़कियां हैं, लोग मोबाइल लेकर घूम जाते हैं और रील्स बनाने लगते हैं अपने अपने इंस्टाग्राम पर डालने के लिए, ये उनके लिए आदेश है। जो भी हो, इसे लेकर राजस्थान में एक सियासत शुरू हो गई है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी लगातार आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कि 5 साल में एक भी पैसा स्कूल के लिए नहीं दिया, और कांग्रेस जो स्कूल की हालत खराब है उसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। तो आज विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले इस तरह से कांग्रेस ने एक सांकेतिक विरोध का प्रदर्शन किया है दिव्यांग स्कूल में जाकर कि हम इस नियम को तोड़ने आए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि उनके लिए नियम था ही नहीं, जो भी व्यक्ति मीडिया का हो या सरकार का हो वो स्कूलों में जा सकता है, केवल अनऑथराइज जो लोग घुस रहे थे उनके लिए हमने नियम बनाया।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ला भाई मेरा बैट,
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
8: चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the coolest spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Hey Maya, let's go.
3: The new BE6 Sportage.
4: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: बिजली का बिल पेड
2: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
2: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
3: इतना माही वे।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
0: विमल बोलो जुबां केसरी
2: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का
3: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे
2: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है वाटर कैनन खत्म हो गए फायर टेंडर खत्म हो गए
4: प्रोटेस्टर हैं देखिए उनको कैसे चोट लगी है
5: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है
6: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
7: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है
2: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं जयपाल सिंह स्टेडियम मेलो केंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: ईएमआई में राहत का इंतजार करने वालों को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद मायूसी हाथ लगी है। दरअसल उम्मीद के अनुसार ही सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर स्थिर रखा है। रेपो रेट स्थिर रहने से एफडी और बचत खातों की ब्याज दरों पर तत्काल असर की संभावना कम है। वहीं आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, यानी आगे हालात देखकर फैसला होगा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%.
0: लेकिन रसोई के बजट पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में चल रहे तनाव और कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव की वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने का सामान थोड़ा महंगा हो सकता है। आशंका है कि सब्जी और तेल के दाम बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अल नीनो और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता का असर खेती और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। खास बात है कि खाद्य और ईंधन कीमतों को छोड़ दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन फिलहाल काबू में है। राहत की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में भारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
1: बॉन्ड मार्केट सेंटिमेंट्स रिमेन बेयरिश, रिफ्लेक्टिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। हाउएवर, इक्विटी मार्केट्स ड्रिवन बाय टेक स्टॉक्स रिमेन अपबीट।
0: कुल मिलाकर आरबीआई ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में ईएमआई में राहत का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और महंगाई पर नजर बनाए रखते हुए ग्रोथ को समर्थन दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दो पैरा गाने के कांग्रेसी फरमान से सियासत गरमाई, पूरी बीजेपी की चढ़ाई, कहा नई मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी में बोले राहुल, राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं मोदी। उत्तर प्रदेश में जैन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार सख्त, लापरवाही मिली तो तय होगी जिम्मेदारी, सीएम ऑफिस करेगा सीधी निगरानी, सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम कमिश्नर। जैन जी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान, कैबिनेट की बैठक में पीएम का निर्देश, आरएसएस की मीटिंग में भी जैन जी पर मंथन। राजस्थान में मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, स्कूलों में फोटोग्राफी पर रोक के फरमान का विरोध, खराब शिक्षा व्यवस्था को बनाया मुद्दा। भारत का अंग है कश्मीर, श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई नाराजगी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवा। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आगे क्या क्या खास है। तो बात होगी वंदे मातरम विवाद की, जिसके पैरा टू और फुल गाने पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। साथ ही रुक करेंगे यूपी का, जहां जेन अल्फा के प्रदर्शन को लेकर योगी सरकार एक्शन में अब आ गई है, और बताएंगे कि आखिर अमेरिकी राजदूत के बयान पर क्यों तिलमिला गया है पाकिस्तान। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। वंदे मातरम पर कांग्रेस और सरकार आमने सामने आ गए हैं। संसद से कानून पास होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस दो पैरा वाले अपने फैसले पर कायम रहेगी, या फिर कानून के मुताबिक छह पैरा वाला संस्करण अपनाएगी। तो 15 अगस्त को सोनिया गांधी से जुड़े विवाद के बाद गोवा में मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में सिर्फ दो पद ही, यानी कि दो पैरा स्टैंजा ही गाए गए, और अब कांग्रेस की कार्य समिति ने भी दो पद ही गाने का फैसला कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले की बौछार कर दी है। पार्टी को अब नई मुस्लिम लीग करार दिया गया है। तो आपको बता दें कि दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि वंदे मातरम के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालना अब दंडनीय अपराध है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ऐसे में कांग्रेस का दो पद वाला फैसला क्या कानून से टकराव की नई वजह बन सकता है?
3: वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली, दिस इज अवर डिसीजन। फर्स्ट टू चांस था।
4: कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है, और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
2: तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। वंदे मातरम पर कांग्रेस के फैसले को लेकर उन्होंने कहा है कि भारत माता की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है जिन्होंने इसी गीत को अपनी चेतना में रखकर राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल एक राजनीतिक बचाव नहीं, बल्कि उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी और उसके नेता कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साध रहे हैं। ये मुद्दा लगातार विवादों में बना हुआ है। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हिमांशु, ये मौका रहेगा बीजेपी के लिए, सरकार के लिए, कांग्रेस को घेरने के लिए, क्योंकि ये आखिरकार चाहे उनकी आपत्ति जितनी भी हो और जिस भी आधार पर हो, ये कानून तो बन ही चुका है।
5: देखिए, बिल्कुल इस कानून का रूप ले चुका है और इसका नोटिफिकेशन भी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाएगा। लेकिन एक चीज ये है कि कांग्रेस का ये कहना है कि 1937 के अंदर CWC के अंदर ये है पारित किया गया था, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर, और अब सरकार उसको बदल रही है, और इसीलिए कांग्रेस ये कह रही है कि उसके दो ही स्टैंजा जो है वो उनकी पार्टी जो है हमेशा वंदे मातरम के गाएंगे। पूरा जो वंदे मातरम है 6 स्टेंजा का वो नहीं होगा, जिसकी ड्यूरेशन जो है 3 मिनट 29 सेकंड है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को बनाना चाहती है, और इसीलिए सुधांशु त्रिवेदी हो, नितिन नवीन हो, पार्टी के अध्यक्ष हो, लगातार जो है कांग्रेस पे हमले कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 15 अगस्त को ही ये कहा था, जब वंदे मातरम गीत के बीच में सोनिया गांधी जो है लोगों से बातचीत करती हुई या डायरेक्शन देती हुई दिखी, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है, इसके लिए देश से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। अब ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहती है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर, राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर और देश प्रेम के मुद्दे को लेकर वंदे मातरम पर कांग्रेस को घेरेगी और इस पूरे मामले को जो है देश भर के अंदर उठाएगी। वो हर डिस्ट्रिक्ट में हो, हर राज्य में हो, केंद्र के अंदर हो, सरकार किसी भी तरीके से ये चाहती है कि कांग्रेस को जो है वंदे मातरम पर एक्सपोज किया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि जो चीजें 80 साल से ज्यादा समय से चली आ रही थी आप उसको बदल रहे हैं, ये कानूनी रूप ले लिया है। लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये बिल जो है वो हो हल्ले हंगामे में लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ है। तो आप देखना ये है कि ये लड़ाई कहां तक जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
2: हिमांशु आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि दो दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलील दी थी कि कांग्रेस क्यों वंदे मातरम के दो पैरा के ही पक्ष में है।
6: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाए थे वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गया। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं, अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा, कल के दिन दूसरी सरकार आएगी वो अगर कहे वही होता है, 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए।
2: उधर बीजेपी नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने कांग्रेस के फैसले को न सिर्फ संविधान बल्कि कानून का भी उल्लंघन माना है।
7: और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी इस तरीके से काम कर रही है जिससे आम लोगों को लगने लगा है कि ये तो भारत माँ के विरोध का काम हो रहा है, ये ठीक नहीं हुआ है, ये संसद ने कानून पास किया है। अब आपका बहुमत रहे तो उसके लिए हम क्या करें, संसद में कानून पास हुआ है, बहुमत से कानून पास हुआ है, संसद के द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाला अपराधी होता है। और इसलिए जो संसद में बना हुआ कानून उसका ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनको करना है आंदोलन ही करना है तो संसद से त्यागपत्र देना चाहिए।
2: तो सियासत गर्म है, वंदे मातरम पर कांग्रेस और बीजेपी में तलवारें खिंच गई हैं।
8: इस तरह का कोई भी कृत्य वो गैर कानूनी भी है, कानून के तहत कार्रवाई करने के योग्य भी है। इस तरह की गतिविधियां हरकतें अगर कोई करता है और पार्टी किसी नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, ऐसे पार्टी के मुखिया की उपस्थिति में अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति और देश के मान बिंदुओं के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, उनकी कितनी आस्था है, उनकी कितना उनके मन में पवित्रता का भाव है, देश के सामने प्रकट हो जाता है।
9: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा, नहीं मैंने पहले भी गाया अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें कौन नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।
2: एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्र का। हिमांशु एक बात तो साफ है, अगर कांग्रेस कहती है कि उसने पारित कर दिया सीडब्ल्यूसी में कि वो दो ही पैरा गाएगी तो एक संदेश जो वो दे रही है वो ये कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी किस स्ट्रैटेजी के साथ और सरकार भी किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ सकती है?
5: बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, वो इस पर पूरे देश के अंदर जो है आंदोलन चला सकती है कि कांग्रेस जो है वंदे मातरम का विरोध कर रही है और वो भी उस गीत का जिसको जो है पार्लियामेंट से एक कानून बनाया गया है उस कानून का विरोध कर रही है। और इसी इशू के ऊपर जो है ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको उनके जो स्वर है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से जो है वो कार्रवाई अब क्या होगी नहीं होगी, अगर क्योंकि अगर कोई कानून पास हो गया और कानून को अगर नहीं मानता है कोई तो उसके खिलाफ जो है वो पुलिस में शिकायत हो सकती है, केस दर्ज कराया जा सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दे बनाने के साथ साथ इस पर लीगली कोई फ्रेमवर्क सोच रही है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आने वाले दिनों में ये लड़ाई जो है दोनों ही तरफ से जो है बहुत मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि वो दो ही स्टेंजा गाएंगे, इससे ज्यादा वो नहीं गाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और सरकार का मानना है कि जब कानून बन गया है कि छह स्टेंजा गाने हैं तो आपको छह ही स्टेंजा गाने चाहिए,
2: नहीं जो है तो विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा। शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात सीडब्ल्यूसी मीटिंग की, जिसमें कल वंदे मातरम के साथ साथ कई मसलों पर कांग्रेस ने फैसले किए हैं। तो पेपर लीक, छात्रों से लेकर राम मंदिर चंदा चोरी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच के शुद्धिकरण पर भी पार्टी मोर्चा निकालेगी, बीजेपी को घेरेगी। पार्टी ने परिसीमन पर भी अपना रुख दोहराया है और अगले 25 साल तक लोकसभा सीटों की संख्या 543 पर ही बनाए रखने की मांग की है। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि उनकी सियासी पारी खत्म हो गई है, वो सिर्फ कांग्रेस से ही डरते हैं।
10: छात्रों की गूंज अब तक पिछले दो महीने में कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है, 22 तारीख को पुणे में होगा और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे।
2: इस पर चर्चा के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, अब लगता है कांग्रेस अपने हमले और पैने करने के लिए तैयार हो गई है, ऐसे में कौन से मुद्दे हैं जो उसके लिए सबसे कारगर साबित हो सकते हैं?
11: जी देखिए, यहाँ पे चार पांच बड़े मुद्दे कांग्रेस ने जिन पर साधा है बीजेपी पर निशाना और मोदी सरकार पर। और एक तो छात्रों का जो आंदोलन है उसको और सक्रिय किया जाएगा और इंटेंसिफाई किया जाएगा। दूसरा राम मंदिर का मसला है, उसमें उसको लेके अंजलि ये बताया गया कि देश भर में जो है आंदोलन निकाला जाएगा, सारे स्टेट यूनिट्स जो है प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये स्टेट मसला नहीं है, ये केंद्र का मसला है। जब राम मंदिर को लेके केंद्र से सारी घोषणाएं की प्रधानमंत्री ने की, तो उसको लेके भी इंटेंसिफाई किया जाएगा। दूसरा बड़ी बात यह है कि जो सेक्युलर क्रीडेंशियल्स है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो वंदे मातरम के जरिए कहीं ना कहीं एक तरीके से 1937 का जो रेजोल्यूशन है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, उसी को दोहराते हुए कि वंदे मातरम हम दो ही स्टैंजास गाएंगे, एक तरीके से सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को कांग्रेस यहाँ पे रीइंफोर्स करते हुए नजर आ रही है। और सब चौथा बड़ा मसला है डीलिमिटेशन को लेके। ये पहली बार है कि कांग्रेस ने डोर टू कह दिया है कि हम डीलिमिटेशन नहीं चाहते अगले 25 साल तक और 543 पर ही सीटों को जो है फिक्स किया जाए।
2: जी शुक्रिया आपका मौसमी इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया। बीजेपी की नई महासचिव स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में बिना अखिलेश मायावती के साथ लड़ने की चुनौती दे दी है।
12: मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी

0: स्वागत करती हूँ। सीईसी के माध्यम से ये घोषणा करा दें, क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है कि बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के, अकेले अपने दम पे राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे।
1: और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से आ रही बड़ी खबर का। छात्र प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सख्त हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में शिक्षण संस्थानों की अव्यवस्थाओं को लेकर हो रहे छात्र और छात्राओं के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपना लिया है। लखनऊ, आजमगढ़, महोबा हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में शिकायतें आई और उस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए समस्याओं के तत्काल समाधान और लापरवाही पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर बेसिक और माध्यमिक से लेकर उच्च तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी दे दी गई है। जहां भी खामियां मिलेगी उन्हें तत्काल दूर कराने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं, ये जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है कि छात्रों को प्रदर्शन करना ही ना पड़े।
2: देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने ये निर्देश दिया है कि सभी विभागों में, फिर चाहे वो बेसिक विभाग हो, माध्यमिक विभाग हो, उच्च विभाग हो, वहां पर जिस तरीके के वीडियो वायरल आते हैं जहां पर भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाती हैं, सोशल मीडिया पर इस तरीके के आता है, तो चीफ सेक्रेटरी के आदेश के बाद साफ कर दिया गया है कि कहीं पर भी इस तरीके के मामले सामने नहीं आने चाहिए। उनकी व्यवस्थाओं को लेकर तत्काल जो है नोडल ऑफिसर जो बनाए गए उन तक ये सूचनाएं पहुंचाई जानी चाहिए, जिससे कि उसको तत्काल दुरुस्त किया जा सके, पहली बात। और दूसरा ये भी है कि अगर कोई भ्रामक सूचनाएं फैला रहा है, लगातार उसको मिसगाइड कर रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि अगर इस दौरान कोई टीचर या मौके पर नहीं पहुंचता है या लेट पहुंचता है या बच्चों की देखरेख नहीं हो रही, तो उसके खिलाफ भी शिकायत होगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती। तो एक प्रॉपर नीति के तहत चीफ सेक्रेटरी ने सभी जो विभाग हैं, जिस शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, उनको ये निर्देश जारी कर दिया है। और कहीं ना कहीं देखा गया है कि कई वीडियोस ऐसे वायरल होते रहे हैं जिसमें व्यवस्थाएं दिखाती जाती रही, अव्यवस्थाएं दिखाती जाती रही, विपक्ष भी निशाना साधता रहा है। तो इन सभी को कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने के लिए, कहीं ना कहीं इन सबको एक कड़ा रुख अपनाते हुए ये पूरी तरीके से निर्देश दिया गया है, जिसमें कि सभी विभाग शिक्षा के शामिल है, बेसिक से लेकर माध्यमिक और उच्च स्तरीय, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना हो, इसके लिए नोडल ऑफिसर को तैयार किया गया है कि किसी भी दिक्कत के लिए तत्काल उनको फोन भी किया जाए और कर्मचारियों के खिलाफ अगर कोई कुछ ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जाए। तो कहीं ना कहीं निर्देश है, जिस तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है, वीडियो जारी करता है, उसको लेकर ये साफ निर्देश है।
1: जी, शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। उधर बात करते हैं नीट पेपर लीक के बाद क्या हो रहा है। तो उसके बाद अब केंद्र सरकार युवाओं तक पहुंच बढ़ाने की मुहिम में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में अपने सभी मंत्रियों से कहा है कि वे जेन जी तक पहुंच बढ़ाएं। इसके लिए आउटरीच प्रोग्राम के तहत सभी मंत्रियों को कहा गया है कि वो वन डे वन यूनिवर्सिटी में बिताएं और जेन जी को सरकार की यूथ पॉलिसी और स्कीम्स के बारे में जरूर बताएं। तो ये कोशिश है सरकार की तरफ से जेन जी के साथ एक कनेक्ट बनाने की, एक जोड़ बनाने की। और इसकी वजह ये रही है कि हाल में जो हमने विरोध प्रदर्शन देखे थे, जेन जी उन्हीं में सबसे कारगर नजर आया था, सबसे आगे नजर आया था। तो एक कोशिश है, कहीं ना कहीं अगर कोई दूरी बन गई है सरकार और इस जेन जी के बीच, उस दूरी को पाटने की। और अब रुक करते हैं राजस्थान से आ रही बड़ी खबर का। खबर जयपुर की, जहां सरकारी स्कूलों के हालात को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने जयपुर में मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि सरकार ने स्कूलों की हालत खराब कर दी है और स्कूलों की अव्यवस्थाओं को दिखाने के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस कर रही है शिक्षा की बदहाली को लेकर। तो आपको बता दें कि लगातार शिक्षा को लेकर कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार को। राजस्थान में स्कूलों की जो हालत है उसे अब मुद्दा बनाया जा रहा है और कांग्रेस का कहना है कि बदहाली है इसलिए

0: कहना नहीं चाहती वो लोगों के सामने आए, और यही वजह है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को बैन कर दिया गया है स्कूलों के परिसर के अंदर, ताकि किसी को असलियत ना नजर आए। और इस मुद्दे को उठाते हुए जयपुर में कांग्रेस नेताओं ने एक मार्च भी निकाला ताकि वो सरकार को हिला सके।
1: सवाल पूछ रहे हैं, देश की आर्थिक ताकत हमारे लिए लगी या किसी और के लिए लगी? आज स्कूलों के लिए क्या हालात बना चुके हैं? ONGC ने CSR के पिछले 10 वर्षों में 668 करोड़ रुपए जो देश की शिक्षा में लगना चाहिए वो पैसा लूटकर RSS को दिया। ये लूट अब देश बर्दाश्त नहीं कर सकता।
0: और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शरद कुमार का। शरद, कांग्रेस की रणनीति साफ नजर आ रही है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर राजस्थान के स्तर पर, शिक्षा एक मुद्दा है जो घेरने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब जबकि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला विधानसभा का राजस्थान में, क्या करेगी कांग्रेस और कैसे जवाब देगी बीजेपी?
2: अब देखिए, कांग्रेस इसे मुद्दा बनाना चाह रही है स्कूलों की स्थिति को, और जिस तरह से ये मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं, ये नलफा प्रदर्शन कर रहा है, उसके बाद सरकार ने जो एक एंट्री का बैन लगाया था उसे लेकर आज प्रदर्शन किया है। लेकिन बीजेपी के पास काउंटर करने का है मुद्दा, क्योंकि कांग्रेस 5 साल सत्ता में रही और एक भी स्कूल नहीं बना पाया। झोपड़िया में स्कूल चल रही है, तो ऐसा नहीं था कि 2023 से पहले वहां कोई महल था जो रातों रात झोपड़ी हो गई है, या फिर रातों रात सारे स्कूल जो जर्जर होकर गिर गए। वो अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं कि किस तरह से 5 साल में कांग्रेस ने स्कूलों पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है इसे मुद्दा बना रही है कि स्कूलों की स्थिति राजस्थान में इतना दयनीय है, और उसके बाद एंट्री पर पाबंदी लगाई गई है जो कि ठीक नहीं है। सरकार छुपाने के लिए पाबंदी लगा रही है। तो दोनों तरफ से काउंटर हो रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि पहली बार इतिहास में 12,500 करोड़ का पैकेज हमने रखा है स्कूलों को ठीक करने के लिए। ये चूंकि मानसून सत्र की शुरुआत इसके प्रदर्शन
0: बिल्कुल, और नजर हमारी रहेगी इस मानसून सत्र पर भी। शुक्रिया आपका शरद। तो छात्रों को लेकर झारखंड से बिहार तक गहमा गहमी दिख रही है। झारखंड में छात्रों का आंदोलन खत्म हुआ तो भर्ती परीक्षा रद्द होने से नौकरी गंवाने वाले छात्र सड़कों पर हैं। वहीं बिहार में छात्रों के आंदोलन का तीसरा दिन है। छात्रों की मांग को लेकर सम्राट सरकार भी अब एक्शन में नजर आ रही है। तो आइए अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स, और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
6: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर यार।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
7: Neymar, let's go.

0: The new BE6 Sportex.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर, भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स द माही वे।
3: पापा
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर, भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स द माई वे।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर। पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पैरा गाने के कांग्रेसी फरमान से सियासत गरमाई, पूरी बीजेपी की चढ़ाई, कहा नई मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी में बोले राहुल, राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं मोदी। यूपी में जैन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार सख्त, लापरवाही मिली तो तय होगी जिम्मेदारी। सीएम ऑफिस करेगा सीधी निगरानी, सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम कमिश्नर। जेन जी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान। कैबिनेट की बैठक में पीएम का निर्देश, आरएसएस की मीटिंग में भी जेन जी पर मंथन। राजस्थान में मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, स्कूलों में फोटोग्राफी पर रोक के फरमान का विरोध, खराब शिक्षा व्यवस्था को बनाया मुद्दा। भारत का अंग है कश्मीर, श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई नाराजगी।

0: आज सुबह में आपका फिर से स्वागत है और बुलेटिन के इस हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान की और उसकी बौखलाहट की। पाकिस्तान से पीओके तो संभलता नहीं और बातें बड़ी बड़ी करेंगे। कल अमेरिकी राजदूत ने श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है तो इससे पाकिस्तान की सुलग गई, जबकि सच तो यही है कि पाकिस्तान भी भारत का ही था। लेकिन अब बात अलग है। उधर पीओके में बवाल मचा हुआ है, आसिम मुनीर की सेना के खिलाफ इंकलाब हो रहा है। तो अब बड़ी खबर के साथ आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के खिलाफ गुस्सा ही बढ़ता जा रहा है। पीओके में आसिम मुनीर के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। 2 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है। पीओजेके की आवाम आंदोलित है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान की फौज ने मौत के घाट उतार दिया है। 71 दिन से आंदोलन चल रहा है और हर दिन पाकिस्तानी फौज आंदोलनकारियों को कुचल रही है। इस बीच आंदोलनकारियों ने धमकी दी है कि अगर आसिम मुनीर बंदूक और गोली की भाषा ही समझते हैं तो अब आवाम भी गोलियों से ही जवाब देगी। तो पाकिस्तान ने बलपूर्वक जिस पीओजेके को अपने से जोड़े रखने की कोशिश की है, अब वो आर पार की जंग मांग रहा है।
1: गोली के कानून को मानते हैं? हम इस गोली के कानून को नहीं मानते। हम इस गोली के कानून को नहीं मानते। हम इस गोली के कानून को नहीं मानते। और अगर किसी को बहुत शौक है गोलियां चलाने का, बहुत शौक है, इन 71 दिनों में हमने अपने सीने तुम्हारे सामने पेश करके बताए कि हम इन गोलियों से नहीं डरते। हमें मऊ ने बहुत मेहनत से पाला है, मजदूरियां करके पाला है। हम मजदूरों की अलार खाने वाली औलाद है। हम तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते हैं। और जब अगर तुम गोलियों की हुक्मरानी चाहते हो तो फिर आवाम भी गोलियां इकट्ठी करेगी इंशाल्लाह ताला। आवाम भी करेगी इंशाल्लाह ताला। फिर वही कानूनों का जो आप चाहेंगे।
0: और इस पर चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, ये कितना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के लिए इस आंदोलन को हैंडल करना मुश्किल होता जा रहा है।
2: देखिए अंजलि, वो हिंदी की कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद अपने ही जाल के अंदर, अपने ही गड्ढे के अंदर उलझते हैं, गिरते हैं। और यही तस्वीर, यही जो नजारा है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाके के अंदर नजर आ रहा है, जिससे वो कथित तौर पर आजाद तो कहते हैं लेकिन जो जनता की तस्वीरें जो आप देख रही है और दिखा रही है दर्शकों को, ये सीधे सीधे तौर पर बयान दे करती है कि किस तरीके के हालात हैं इस समय यहाँ पर। और ये केवल 71 दिन का मामला नहीं है, ये बीते 3 सालों से चल रहा गुस्सा है जो लगातार रह रहे के फूट रहा है। पाकिस्तान अंतस्फोट से टूटता बिखर रहा नजर आ रहा है, यानी एक इम्प्लोजन की तस्वीर पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। न केवल इस पीओके के इलाके के अंदर बल्कि अन्य राज्यों के अंदर भी कुछ इस तरीके की तस्वीर जो गुस्से की है, नाराजगी की, वो नजर आ रही है। और सरदार अमन मलिक, जिनका भाषण अभी आपने सुनवाया, ये ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के फाउंडर मेंबर हैं, इस समय इस आंदोलन को लीड भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम सीधे तौर पर कॉल देते हैं कि अब बिजली का बिल कोई न चुका है, अब किसी तरीके का टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब सीधे सीधे आर पार हो ही जाए पाकिस्तान की सरकार के साथ में, ये हिसाब भी हो जाए जिनका हवाला दिया जाता है। यानी ये जो सड़कों पर उतरी हुई भीड़ आप नजर आ रहे हैं, ये एक तरीके से सिविल डिफाइंस के तौर पर सड़कों पर आ चुकी है। पाकिस्तान की सरकार के लिए बंदूक के जोर पर इसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता चला जा रहा है। और जो तस्वीर वो दिखाने की कोशिश दुनिया में करते रहे, वो तस्वीर पूरी तरह से टूटती और बिखरती हुई नजर आ रही है। यहां मामला शुरू हुआ था आटे के दाम, बिजली के दाम से, लेकिन अब वो सीधे सीधे तौर पर पाकिस्तान के कब्जे से मुक्ति के नाम पर शुरू हो चुका है, वहां पर टर्न ले चुका है। और ये भीड़ तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो पाकिस्तान के रेंजर संभाल पा रहे हैं, ना पाकिस्तान की फौज इसे नियंत्रित कर पा रही है। ये बॉर्डर का LOC का इलाका है, उससे सटा हुआ इलाका है, चाहे मुजफ्फराबाद हो, रावलाकोट हो, इन तमाम इलाकों के अंदर भीड़ नजर आ रही है।
0: जी, शुक्रिया प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात पाकिस्तान की बौखलाहट की। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के एक बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दरअसल अमेरिकी राजदूत कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। श्रीनगर में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तो भारत का हिस्सा है। बरसों से हम भी यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तो भारत का ही है, पाकिस्तान ने अवैध तरीके से उसके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात अच्छी नहीं लगी। अमेरिका का ये रुख देखकर पाकिस्तान ने अपने यहां के अमेरिकी राजनयिक को समन कर दिया।
3: कश्मीर पर गला फाड़कर चिल्लाने वाले पाकिस्तान का फिर मुंह लटक गया है। एक बार फिर उसने सुन लिया है कि कश्मीर का सच क्या है। इस बार भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दुनिया को बता दिया कि कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। बुधवार को श्रीनगर दौरे पर पहुंचे सर्जियो गोर ने घाटी की जमकर तारीफ की।
4: It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward.
3: इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सर्जियो की यात्रा को सकारात्मक बताया।
5: We had an opportunity to discuss relations between our two countries with a specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir.
3: कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताने पर पाकिस्तान का गुस्सा फूटा है। पड़ोसी मुल्क ने इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को तलब किया और सर्जियो के बयान को लेकर नाराजगी जताई। पाकिस्तान ने हर बार की तरह कश्मीर का वही पुराना रटा रटाया राग अलापा। सदा सच को नकारने वाले पाकिस्तान की बौखलाहट स्वाभाविक है, लेकिन सर्जियो के बयान की बीजेपी ने जमकर तारीफ की है।
6: जो जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववादी और आतंकवादियों के समर्थक जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा साजिशें और षड्यंत्र करते थे, उनको अमेरिका के राजदूत ने आज बेनकाब किया है। जम्मू कश्मीर हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है, और जम्मू कश्मीर में अगर कोई विवाद है वो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है जो कि भारत का हिस्सा है।
3: अमेरिकी राजदूत ने बुधवार को शिकारा राइड भी किया। डल झील में उन्होंने कुछ पल बिताए और अब आज वे लद्दाख दौरे पर हैं। सर्जियो गोर वहां तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात करेंगे। लेह में ये मुलाकात होनी है, साथ ही अमेरिकी राजदूत लद्दाख के LG विनय सक्सेना से भी मिलेंगे। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
0: तो पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारत ने उसे करारा जवाब दिया है। दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर अवैध स्ट्रक्चर्स को एजेंसियों ने हटा दिया है। ये कार्रवाई पाकिस्तान के उस फैसले के बाद की गई है जिसमें उसने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर से पार्किंग पोल हटा दिए थे। उसी के बाद भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की है।
7: दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के बाहर से इलीगल इंक्रोचमेंट को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि एक ये रेसिप्रोकल एक्शन है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के बाहर से बैरिकेड्स को हटाया गया और कहीं ना कहीं सुरक्षा को कम किया गया, उसी का रेसिप्रोकल एक्शन आज दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, जहां पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से जो ट्रैफिक बैरिकेड्स लगे हुए थे, जो इलीगल इंक्रोचमेंट था, उसे पूरी तरीके से बुलडोजर्स की मदद से हटा दिया गया है। याद रखिए, पिछले साल जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसी टाइम जो सिक्योरिटी थी, जो पुलिस वाले यहां तैनात थे, उनको कम कर दिया गया था। सिक्योरिटी में यहां कमी कर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब होते ही दिख रहे हैं, उसी में ये रेसिप्रोकल एक्शन सामने आया है, जहां पहले पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास के बाहर से सिक्योरिटी हटाई और बैरिकेड्स हटाए, तो उसके ही बदले अब भारतीय अथॉरिटीज ने भी पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर से जो सिक्योरिटी अपरेटस था, जो इलीगल इंक्रोचमेंट था, जो ट्रैफिक बैरिकेड्स यहां लगे हुए थे, उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अब किसी भी तरह का जो सिक्योरिटी दायरा है वो देखने को नहीं मिल रहा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
0: तो पाकिस्तान की हालत खस्ता हाल है। शहबाज शरीफ से सरकार संभल नहीं रही है। और बात करते हैं कश्मीर की। क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल से छूटने वाले हैं? कुछ ऐसा भी लग रहा है। उन्हें 16 सितंबर तक जेल से अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अस्पताल भेजने का यह आदेश दिया है। लेकिन इस खबर के बाद शहबाज शरीफ की धड़कनें बड़ी हुई हैं कि कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। पाकिस्तानी मीडिया ने भी अब खबरें चलानी शुरू कर दी हैं कि कहीं इमरान खान और आसिम मुनीर की फौज के बीच कोई डील तो नहीं हो गई है।
8: इमरान खान बाहर आएंगे, तख्ता पलट कर आएंगे। जेल से इमरान को अस्पताल भेजने के पीछे कोई डील है? पाकिस्तान की सियासत में भूचाल, शहबाज क्यों घबराए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शहबाज सरकार ने दी चुनौती। इमरान खान को राहत से शहबाज सरकार ने मचा हड़कंप। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी बहन नौरीन नियाजी और पत्नी बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मुलाकात हुई। नौरीन 9 महीने बाद इमरान से मिली। करीब 15 मिनट की मुलाकात में परिवार ने इमरान की सेहत के बारे में पूछा। उन्होंने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जानकारी भी दी जिसमें इमरान को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने को कहा गया है।
9: बड़ा रिलीफ है आज।
10: अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने दुआएं सुनी, सारी दुनिया दुआएं कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने हमारा, आपको पता कितने महीनों के बाद हम और ये अडियाला में।
9: सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करेंगी आज?
10: अल्लाह का शुक्र, मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के दिल में भी अल्लाह ने डाला वरना चक्कर तो हम दांतों के लग सकते हैं।
8: इमरान और पत्नी बुशरा बीबी की मुलाकात करीब 30 से 35 मिनट चली। मुलाकात के बाद नौरीन ने इमरान से मिलने की पुष्टि की लेकिन कोर्ट के निर्देश के मुताबिक मीडिया से बात नहीं की।
11: इमरान खान से मुलाकात भी हो गई है उनकी बहन की, उनकी तबीयत के बारे में खबरें आई हैं। उन्होंने जो पहली बात पूछी, उन्होंने सोशल मीडिया का पूछा कि सोशल मीडिया कैसा है, मेरी आवाम कैसी है, ये उनके जहन के ऊपर था और उनके रिएक्शन से लग रहा था कि उनको इल्म नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। मुकम्मल तौर के ऊपर उनको इन कम्युनिकेटो रखा गया है। लेकिन बहुत सी बातचीत जो है वो इस वक्त मिलिट्री ग्रेपवाइन के अंदर चल रही है। इस वक्त एक लड़ाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या मरियम नवाज और नवाज शरीफ के जाती लड़ाई चल रही है मोहसिन नकवी के साथ। मोहसिन नकवी बदला भी मुका रहा है। इमरान खान से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें, इस इशू से रिलेटेड अब हो गई हैं सारी चीज़ें क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान में पावर प्ले का एक अहम तरीन बल्कि सबसे अहम किरदार है इस वक्त।
8: पाकिस्तान की सियासत भी अजीब है। फौज कभी नवाज शरीफ के साथ हो जाती है तो कभी इमरान खान के साथ। और इसीलिए जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जेल से सीधे प्राइवेट अस्पताल भेजने का फैसला सुनाया तो शहबाज सरकार में हड़कंप मच गया। कानून बताने के लिए कानून मंत्री आगे आ गए। कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने के साथ ही ये कहा कि उनकी सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी।
12: अथॉरिटीज का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन फोर वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत।
8: शहबाज सरकार किसी भी हाल में नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आए, लिहाजा उन्हें ये समझ नहीं आया कि आखिर 3 साल बाद अचानक ऐसा फैसला कैसे आ गया। और तभी पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर प्राइम टाइम में ये सवाल सुलगने लगा कि कहीं शहबाज सरकार की विदाई तो नहीं होने वाली।
13: तलाल चौधरी साहब, इमरान खान की हुकूमत का डिक्लाइन शुरू हुआ था उस वक्त से जब नवाज शरीफ साहब को अस्पताल ले जाया गया, सहूलतें दी गई, फिर वो मुल्क से बाहर गए। आज इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाएगा, अगले महीने तक समाप्त मुलतवी कर दी है। डर लग रहा है?
14: जब तक ये जोड़ी इस हुकूमत की और रियासत में ये कायम है, वजीर आजम और फील्ड मार्शल, यहाँ किसी किस्म की कोई साजिश की गुंजाइश नहीं है और ना ही ये क्या कहते हैं छुरा घोंपने वाले हैं, ये सीधी बात करने वाले हैं। इनके सामने पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हैं, तो बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है। असल में पीटीआई ने मिठाई जल्दी खा ली है।
8: अब पाकिस्तान में अटकलों का बाजार गर्म है। पाकिस्तान में चर्चा यही चल रही है कि क्या पाकिस्तान में सत्ता बदलने का खेल शुरू हो गया है।
11: कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्ट बात चल रही है और डी एस्केलेशन के ऊपर बात हो रही है कि हालात को ठंडा किया जाए और सिस्टम एक ब्रॉडर अकोमोडेशन ढूंढ रहा है इमरान खान से कि इमरान खान जो है वो बात ये आगे चल के इलेक्शन दो साल बाद फ्री एंड फेयर हो जाएं, ये बातचीत चल रही है और उसके ऊपर इमरान खान जो है उनको कहा जाए कि दो साल आप निकाल लें किसी तरह। और एक इमरान खान और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जो इस वक्त कोई भी, लेकिन ये भी ब्यूरोक्रेसी मानती है कि इस वक्त डील फिर भी कोई नहीं हुई क्योंकि इमरान खान राजी नहीं है इसके ऊपर। ये भाई मैं नहीं कह रहा, ये फौज के अंदर जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में जो बातचीत चल रही है इस्लामाबाद में, आप किसी भी ब्यूरोक्रेट से पूछ लें वो ये बात कर रहा है कि इमरान खान से कोई भी इस वक्त तक फाइनलाइज कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस वक्त अपना काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर रही है।
8: सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इमरान खान के साथ आसिफ मुनीर ने कोई ऐसी डील कर ली है जिसके बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
0: तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए सेल्स

आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह बिहार में सुपौल के जिस लखी चंद साहू उच्च माध्यमिक विद्यालय में दाखिल हो रहे हैं वो साल 1958 में बना और पिछले 70 वर्षों से यहाँ पर 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है। लेकिन इसी स्कूल परिसर में एक 2 मंजिला नई इमारत भी है जहाँ न छात्र है और न ही टीचर। स्कूल की इमारत वीरान पड़ी है। सवाल है कि स्कूल की बिल्डिंग बन जाने पर भी यहाँ पढ़ाई इतने वर्ष बीत जाने पर भी शुरू क्यों नहीं हुई। यहीं पर हमें इस स्कूल में पढ़ चुके मयंक मिलते हैं जिन्होंने स्कूल की पुरानी इमारत में पढ़ाई की है। नई बिल्डिंग का काम इनके सामने शुरू हुआ लेकिन सरकारी लापरवाही पर इन्हें रोना आता है। तो सवाल सीधा सा, जिस मॉडल स्कूल की इमारत 8 साल पहले बनकर तैयार हो गई वहाँ योजना के मुताबिक 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई क्यों शुरू नहीं हो पाई? आखिर स्कूल की इस नई इमारत के इस तरह जर्जर हालत में पहुंचने का जिम्मेदार कौन है? आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा कैसे स्कूल के चारों तरफ जंगल और झाड़ियां उगाई, इमारत की खिड़की और दरवाजे चोरी हो गए, खिड़कियों के ग्रिल तक निकाल लिए गए, बिजली के तार और दूसरे सामान भी गायब। सबसे बड़ी विडंबना ये कि यहां से शिक्षा की रोशनी फैलनी थी वहां नशे का बोलबाला है। हमें इस स्कूल के अंदर कई जगह इस्तेमाल की गई सुइयां, नशीले सिरप की बोतल और नशीली दवाओं से जुड़ा सामान इधर उधर बिखरा मिला। इलाके की वार्ड पार्षद स्मृति कुमारी आज तक को बताती हैं कि स्कूल की इमारत बनने के बाद भी से सरकार को हैंडओवर नहीं किया गया और स्कूल की इमारत खंडहर हो गई। तो ये है बिहार में शिक्षा की बदहाली से खबरदार करती हमारी रिपोर्ट का निचोड़। तस्वीर बिहार के सुपौल से है जहाँ एक तरफ बच्चे 70 साल पुराने स्कूल की इमारत में पढ़ने को मजबूर हैं, तो वहीं लाखों रुपए खर्च करके स्कूल की नई बिल्डिंग पढ़ाई शुरू हुए बिना ही खंडहर में तब्दील हो गई। मतलब बच्चे जोखिम में पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं उसी स्कूल में बनी नई इमारत खंडहर कर दी गई है। सवाल है क्यों, किसने इसका पैसा बर्बाद किया, बच्चों के हक के साथ खिलवाड़ किया? इस सवाल का जवाब हमें यहाँ 20 साल से पढ़ाने वाले टीचर अजय कुमार ने दिया। बताया कैसे सरकारी लापरवाही ने आम आदमी के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं। यानी जिस नई इमारत में बच्चों को पढ़ना था वो इसलिए हैंडओवर नहीं हो सकी क्योंकि बनाने वाले शौचालय बनाना भूल गए। लेकिन सवाल है कि इस गलती के लिए क्या किसी को सजा मिली? शौचालय ही बनाना था तो बाद में उसे बनाकर पूरा क्यों नहीं किया गया?

0: कांग्रेसी फरमान से सियासत गरमाई, पूरी बीजेपी की चढ़ाई, कहा नई मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी में बोले राहुल, राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं मोदी।
1: यूपी में जेन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार सख्त, लापरवाही मिली तो तय होगी जिम्मेदारी, सीएम ऑफिस करेगा सीधी निगरानी, सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम कमिश्नर।
0: जेन जी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान, कैबिनेट की बैठक में पीएम का निर्देश, आरएसएस की मीटिंग में भी जेन जी पर मंथन।
1: राजस्थान में मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, स्कूलों में फोटोग्राफी पर रोक के फरमान का विरोध, खराब शिक्षा व्यवस्था को बनाया मुद्दा।
0: भारत का अंग है कश्मीर, श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई नाराजगी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक बार 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वडोदरा से आए एक दर्दनाक वीडियो को। वडोदरा में एक लग्जरी बस के ऑटोमेटिक दरवाजे में फंसकर 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बस का दरवाजा अचानक बंद हो गया और बच्चे की गर्दन दरवाजे की चपेट में आ गई। यह हादसा वडोदरा के सूर्यनगर तरसाली बाईपास का है, जहां लग्जरी बस रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप में आई थी। बच्चे के परिवार वालों का कहना है कि बच्चा प्रसाद लेने की बात कहकर घर से निकला था। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ।
0: ब्रजेश दोषी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रजेश, वर्कशॉप में खड़ी बस थी, बच्चा इसके अंदर कैसे दाखिल हुआ?
3: यही जो है वो जांच का विषय है, क्योंकि परिवार को भी नहीं पता। परिवार जो उसके पिता ने कहा था कि वो हमेशा स्कूल से आने के बाद घर पे ही खेलता था, पर कल वो प्रसाद लेने के लिए गया था और उसके बाद वापस नहीं लौटा। फिर आसपास के लोगों ने उनको बताया कि आपके बच्चे के साथ कुछ हुआ है, तब जाके वो लोग वहां पे पहुंचे। पता चला कि जो ये बस है उसके ऑटोमेटिक जो दरवाजा है उसके अंदर उनका बच्चा फंसा था, तो ये जानकारी आई। उसके बाद पुलिस को बताया गया, पुलिस की तरफ से जांच की जा रही। अभी तक पुलिस की तरफ से प्राइमरी कोई स्टेटमेंट आया नहीं है इसमें, पर ये जांच कर सके कि बच्चा कैसे पहुंचा और ये ऑटोमेटिक जो दरवाजा था उसमें वो कैसे फंसा। क्योंकि कोई भी अगर बस पड़ी है तो बच्चे ऐसे ही खेलने के लिए चढ़ गया था या फिर कोई उसको ले गया था, कोई उसको बुलाकर वहां पे ले गया, क्या है सही जानकारी वो अभी सामने आनी बाकी है। पर परिवार के लिए अभी बड़ी ये दुख का वक्त है कि उनका जो बेटा था वो बेटा अब नहीं रहा। इसके लिए बहुत ही परिवार के लिए बहुत ही दुखद ये हादसा हुआ है और अब पुलिस जो है तो पूरे मामले की जांच कर रही है।
1: जी ब्रजेश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए आप देखते हैं शतक आज तक।

0: कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वंदे मातरम पर बड़ा फैसला, सिर्फ शुरू के दो पैरा को अपनाने का प्रस्ताव। लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर एक तिहाई महिला आरक्षण की मांग। सीडब्ल्यूसी में युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा हमला, पेपर लीक और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। राहुल बोले, राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं मोदी। 800 शहरों तक पहुंचेगा छात्रों की गूंज अभियान, पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को अनुमति, पुलिस ने 30 शर्तें लगाई, आपत्तिजनक बैनर पर रोक। कांग्रेस के फैसले के बाद बीजेपी का जोरदार पलटवार, कहा आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। मेरठ में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कांग्रेस पर बोला हमला, कहा संसद से पारित कानून को नहीं मानने वालों को पहले अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती है और दिल्ली में नेताओं ने वीरभूमि पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी है। राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में पहुंचे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सद्भावना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को किया याद, एक्स पर पोस्ट में लिखा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि। यूपी में जैन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार सख्त, बोले जैन अल्फा प्रदर्शनों से निपटने के लिए लाठीचार्ज नहीं बातचीत होगी, लापरवाही मिली तो तय होगी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी के दफ्तर से होगी सीधी निगरानी, सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम और कमिश्नर।
1: अयोध्या के सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री पर रोक, बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश। यूपी विधानसभा 2027 के चुनाव से पहले पारंपरिक वोटर्स के साथ समाजवादी पार्टी का जेनजी पर फोकस, एआई मीम्स और शॉर्ट वीडियोस से युवाओं को साधने की रणनीति। कल पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का होगा आयोजन, लखनऊ के कान्हा स्टेडियम मनाया जाएगा गौरव दिवस। यूपी के सभी जिलों में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजन कार्यक्रम में पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के सम्मान का मुद्दा उठाएगा ओबीसी मोर्चा। ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल का एसपी प्रमुख अखिलेश पर पिछड़ों के अपमान का आरोप, कहा राजनीतिक दलों का वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक पर मन का भेद होना हमारी संस्कृति नहीं। राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर एक्शन, इस्लामाबाद की कार्रवाई के जवाब में अवैध ढांचों और अतिक्रमण को हटाया गया। आज 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक, चेन्नई पहुंचे अमित शाह, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले अमित शाह ने तमिलनाडु सीएम से की मुलाकात। झारखंड में सीजीएल के सफल उम्मीदवार पहुंचे हाईकोर्ट, परीक्षा रद्द करने के सरकारी फैसले खिलाफ हाईकोर्ट में अपील। सत्येन जैन की गिरफ्तारी को दिल्ली की अदालत ने माना सही, टेंडर घोटाला केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 25 अगस्त को बेल याचिका पर सुनवाई। राजस्थान में मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, स्कूलों में फोटोग्राफी पर रोक के फरमान का विरोध, खराब शिक्षा व्यवस्था को बनाया मुद्दा।
0: राजस्थान विधानसभा का आज से मानसून सत्र, यूसीसी बिल पेश करेगी राजस्थान से बीजेपी सरकार। राम मंदिर चंदे की सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की मांग, चीन और E20 पर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल। एनसीईआरटी का बड़ा कदम, क्लास 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की नई किताबें तैयार करने के लिए 20 सदस्यीय टेक्स्ट बुक डिवेलपमेंट टीम का पुनर्गठन होगा। टीम के 4 सदस्य आरएसएस से जुड़े हैं। नई किताबें राष्ट्रीय पाठ्याचार्य रूपरेखा 2023 के अनुसार तय की जाएंगी। आज विशाखापट्टनम में आरएसएस की मीटिंग का दूसरा दिन, जेन जी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना, नितिन नवीन और बीएल संतोष भी होंगे शामिल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ वारंट जारी, भड़काऊ टिप्पणी के आरोप में कृष्णनगर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान, बोले भारत का अहम अंग जम्मू कश्मीर, हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक। सर्जियो गोर के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, अमेरिका की राजनयिक को किया तलब। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान जारी कर अमेरिकी राजदूत की इस टिप्पणी को तथ्यात्मक रूप से गलत और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। मोदी सरकार शुरू करेगी जेन जी से संपर्क का अभियान, हर रोज एक यूनिवर्सिटी जाएंगे एक केंद्रीय मंत्री, छात्रों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और चिंताओं को समझेंगे।
1: मोदी कैबिनेट ने 9,450 करोड़ रुपए की 4 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। 4 राज्यों के 8 जिलों में मिलेगा लाभ। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करेगी परियोजना। रेल नेटवर्क में करीब 410 किलोमीटर की होगी वृद्धि। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, बक्सर भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक मंजूरी। 11,000 नए निजी नलकूप, 48,200 मेट्रिक टन भंडारण क्षमता बढ़ेगी। AI को भी मिलेगा बढ़ावा। आज पटना में सम्राट चौधरी शिक्षा विभाग की बुलाई बैठक, ये बैठक TRE4 से जुड़े विरोध के बीच हो रही है। जयपुर में खराब सड़कों के लिए किया अनोखा प्रदर्शन, गड्ढों का विरोध करने के लिए एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहनकर उतरे लोग। कपूरथला में छात्रों का हंगामा, टीचर का तबादला रद्द करने और हाई वोल्टेज तार हटाने की मांग। कुल्लू में स्कूल की खीर खाने से 47 बच्चे बीमार, 5 जिला अस्पताल में रेफर, उल्टी 10 के बाद फूड पॉइजनिंग की आशंका। खीर खाने के कुछ ही घंटे बाद बिगड़ी तबियत, चावल, चीनी और पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए।
0: हिमाचल में लगातार जारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन। सोलन ने नेशनल हाईवे 5 की एक लेन पूरी तरह बंद की और पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और भारी मलबा अचानक हाईवे पर आ गया। भूस्खलन की वजह से सड़क पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित। सड़क धंसने से एक ट्रक असंतुलित होकर नाले की तरफ लटक गया। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर, लैंडस्लाइड से 11 सड़कें बंद, 3 दर्जन गांव का संपर्क कटा। कई जगह ग्रामीण खुद मलबा हटाने में जुटे, मार्ग अवरुद्ध होने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश और जल भराव के कारण कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में आज के लिए अवकाश घोषित। पंचकुला के MDC क्षेत्र में बारिश का कहर, पानी में डूबी कार को बच्चों ने धकेल कर निकाला। कांगड़ा में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, पेड़ गिरने से नेशनल हाईवे बंद, सड़कें पानी से लबालब। अनंतनाग के बाटकूट में अचानक आई बाढ़, नाले उफान पर, कई घरों में पानी घुसा। झांसी में जर्जर रपटा बनी मुसीबत, नदी में पानी बढ़ा तो थम गया 3 गांवों का रास्ता। शिक्षक बच्चों को हाथ पकड़कर करा रहे हैं नदी पार। प्रयागराज में बाढ़ के चलते बेलन नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त, संपर्क मार्ग हुआ बाधित और पुल किया गया बंद, कई गांवों का संपर्क सड़क मार्ग से कटा।
1: रामबन में बगलिहार डैम के कई गेट खोले गए, डैम में जमा मिट्टी और गंदगी बाहर निकालने के लिए छोड़ा जा रहा है पानी। डैम के आसपास रहने वाले लोगों को नदी और पानी से तेज बहाव से दूर रहने की सलाह, प्रशासन ने सुरक्षा को देते हुए एडवाइजरी जारी की। बिजनौर में बाढ़ के हालात का जायजा लेने ट्रैक्टर पर पहुंचे DM जसजीत कौर, CO ने संभाली स्टीयरिंग। चांदपुर मेरठ मार्ग समेत कई रास्ते बंद। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश चलते भगत सिंह चौक और रानीपुर मोड़ पर भरा पानी, वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। शिलोंग में एक दिन पहले खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने काले झंडे के साथ निकाली बाइक रैली, इस दौरान शहर में कुछ जगहों पर हुई हिंसा। रैली के दौरान 31 गाड़ी को पहुंचाया गया नुकसान, राहगीरों के साथ मारपीट। हिंसक रैली के बाद KSU के अध्यक्ष समेत 3 बड़े नेताओं पर मेघालय पुलिस की कार्रवाई। KSU नेताओं पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आम नागरिकों पर हमला करने और अन्य अपराधों के आरोप में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज। नवादा में थाने से 50 मीटर दूर दिन दहाड़े फायरिंग, मोबाइल छीने के विरोध में युवक ने लाई बंदूक, 20 लोगों पर FIR। पटना में JEE मेंस की तैयारी कर रहे छात्रों का हॉस्टल में फंदे से लड़का मिला शव, पिता ने लगाया हत्या का आरोप।
0: यूपी के सहारनपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को ग्रामीणों ने पीटा, मुंह काला कर चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया, वीडियो वायरल। यूपी के झांसी ललितपुर हाईवे पर हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार के परिवार को रौंदा, करीब 150 मीटर दूर तक घसीटा, 3 की मौत। यूपी के झांसी में लूट के आरोपी 4 बदमाशों का पुलिस ने किया एनकाउंटर, 2 को गोली मारी, 4th गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में मदरसे की छात्रा से पिछले 1 साल से मौलवी पर रेप का आरोप, फरुखाबाद ले जाते समय परिजनों ने आरोपी को पकड़ा, मनचला गिरफ्तार। कानपुर में 1 बीघा जमीन के विवाद में बहन की हत्या, 1 साल बाद खुला सड़क हादसे का झूठा राज, आरोपी भाई गिरफ्तार। गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब से 7 की मौत, 2 की हालत गंभीर, मामले में मुख्य तस्कर समेत 21 पर FIR दर्ज, 12 गिरफ्तार, 4 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड। गाजियाबाद में क्लब में युवकों का धावा, संचालक और बाउंसरों को घेर कर पीटा, CCTV में कैद हुई मारपीट। नागपुर में माही अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी और बहन से करवा रही थी देह व्यापार, पुलिस ने छापेमारी कर कराया आजाद। पुणे में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या, आरोपी की एक गलती बनी पुलिस के लिए अहम सुराग। मणिपुर में बरामद रॉकेट लॉन्चर समेत विस्फोटक दिल्ली के नरेला में किए गए नष्ट।
1: वैशाली में ट्रांसपोर्ट एजेंसी से 800 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, अनुमान कीमत करीब 13 लाख रुपए। कन्नौज में विवाद सुलझाने गए सिपाही को दड़ा दड़ा कर पीटा, 12 लोगों को गिरफ्तार कर निकाला गया जुलूस। चंदौली वन विभाग की जमीन को खाली करवाने गई पुलिस, वन विभाग की टीम से ग्रामीणों की भिड़ंत, कई पुलिसकर्मी घायल। ग्रेटर नोएडा की वुडन डाई कंपनी में भीषण आग, 10 दमकल गाड़ियों ने 3 घंटे में पाया काबू। उज्जैन के महाकाल में खाद्य विभाग की कार्रवाई, गंदगी मिलने पर दुकान सील। इंदौर में छात्र संघ चुनाव की मांग पर बवाल, डीएवीवी का गेट तोड़ा, 10 पर FIR दर्ज। मुंबई थाने राष्ट्रीय विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,600 लीटर चोरी की पेट्रोल जब्त की, टैंकर को कब्जे में लिया। हापुड़ में मामले की आसुनी में जमकर हुआ खूनी संघर्ष, महिला सहित 5 लोग घायल। हरिद्वार में कुत्ते ने बचाई मालिक की जान, सीसीटीवी रिकॉर्ड में पूरी घटना वीडियो हुआ वायरल। मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक, कई जिलों की स्पेशल टीमें उतरी, जंगल खेतों में कॉम्बिंग, जगह जगह लगाए गए पिंजरे, थर्मल ड्रोन से निगरानी।
0: संभल में पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला, कान में घुसा 5 फीट का सरिया, ग्राइंडर से काट कर निकाला, 2 घंटे तक चला ऑपरेशन। देवघर में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर 40 लाख की लूट, गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, 4.5 लाख रुपए कैश बरामद। नगरोटा जेल टोल प्लाजा के पास बस पलटी, 10 यात्री घायल, 1 महिला की हालत गंभीर। वडोदरा में अंधविश्वास और तांत्रिक के जाल में फंसी 28 साल की युवती ने दी जान, आरोपी गिरफ्तार। बागपत डबल मर्डर केस, परिजनों का दावा पुजारी नहीं तांत्रिक था बाबा, नरबलि देने का भी आरोप, पुलिस तलाश में जुटी। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु की शानदार जीत, कनाडा की वेन्यू झांग को 21-16, 21-17 से हराकर अंतिम 16 में पहुंची सिंधु। वर्ल्ड चैंपियनशिप के अगले राउंड में चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त वांग जी

0: तीसरी वरीयता प्राप्त वांग जी यी से भिड़ेंगी नौवीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु। वर्ल्ड चैंपियनशिप में आशुतोष शेट्टी ने श्रीलंका के डुमिंगडू अबे विक्रमा को 21-8, 21-10 से दी मात। अगले राउंड में इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगी भिड़ंत। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी को मिला वॉकओवर। अमेरिका के गैरेट टैन से हारकर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हुए लक्ष्य सेन मैच पर बोले लक्ष्य सेन, आज वो बेहतर साबित हुए, आगे की तैयारी करूंगा।
1: पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। नेदरलैंड से मिली शानदार जीत, अगले राउंड पहुंची हरमनप्रीत एंड कंपनी। नेदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर अगले राउंड में पहुंची भारतीय हॉकी टीम। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें और 21वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से किया गोल, टीम को दिलाई बढ़त। भारतीय टीम की ओर से अभिषेक ने 11वें और 24वें मिनट में शानदार गोल किए। उपकप्तान हार्दिक सिंह ने 35वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक से किया गोल। हॉकी विश्व कप में 16 साल बाद खेला गया भारत पाकिस्तान मुकाबला, भारत के हाथों हार कर विश्व कप से बाहर हुई पाकिस्तानी टीम।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन।
1: इस बीच बड़ी खबर राजस्थान के जयपुर से, जहां पर सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने पैदल मार्च निकालकर विधानसभा का घेराव किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य गेट पर चढ़ गए कांग्रेस के विधायक, और इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्कूल की बदहाली दिखाने को लेकर सरकार ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है।
0: हमारे सहयोगी शरद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए सीधा रुख करते हैं। जाहिर तौर पर शिक्षा का मुद्दा लेकर अब कांग्रेस वहां हमलावर हो गई है।
3: अब बिल्कुल अंजलि, देख सकते हैं ये विधानसभा है, विधानसभा के बाहर ये तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से स्कूलों की बदहाली है उसे दिखाने से रोका जा रहा है, मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे थे और ये अब मुख्य गेट से अंदर जाना चाह रहे थे, नहीं जाने दिया जा रहा है तो वहां बैठ गए। सचिन पायलट भी हमारे साथ हैं। बाहर क्यों आप मुद्दा उठा रहे हो, अंदर भी तो उठा सकते हो।
4: सरकार ना तो मुद्दे को उठाने देना चाहती है और ना अपनी गलती को स्वीकार कर रही है। जब पूरे प्रदेश में इतने बच्चों की जान चली गई, छतें गिर रही हैं, बाढ़ आ रही है, व्यवस्था चरमरा गई है, बजाय उस वास्तविकता को एक्सेप्ट करके उस पर कदम उठाएं, सरकार ने आदेश जारी कर दिया, कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई रील नहीं बनाएगा, कोई मीडिया नहीं जाएगा, सरकारी स्कूलों पे लोगों को पाबंद कर दिया, अगर आप जाएंगे अंदर आप पे पॉस्को कानून लगा दिया जाएगा। तो ये सरकार को जो एक तानाशाह रवैया है और शिक्षा मंत्री जो एक बेवजह इस प्रकार के आदेश जारी किए उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। हम चाहते हैं कि स्कूलों में जो हालात हैं पूरे प्रदेश और देश में, लेकिन राजस्थान के अंदर विशेष रूप से अनेक जिलों के अंदर जर्जर हालत में स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं।
3: ये 2.5 साल में जर्जर हो गए, आपके समय सब ठीक थे।
4: ये 2.5 साल की बात ही नहीं है, आज जो स्थिति है उसका जवाब कौन देगा, जिनको सत्ता जनता ने बिठाया है। आप नेहरू जी का नाम लो, इंदिरा गांधी का नाम लो, कांग्रेस सरकार 12 साल पहले केंद्र में थी, लेकिन 2.5 साल में जब हालत बिगड़ गई है, हाईकोर्ट ने लताड़ मारी है और हाईकोर्ट ने निर्देशित सरकार को किया, फिर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
3: आप स्वीकार करते हो कांग्रेस शासन में ये स्कूल नहीं बने?
4: स्कूल हमने बनवाए थे लेकिन मेंटेन कौन करेगा, जो अब निर्माण में जो घटिया माल चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन सरकार नहीं करा पा रही है, जो आज बच्चों की मौत हो रही है, कब तक बैठे देखते रहेंगे और कौन जिम्मेदार है इसके लिए?
3: कब तक बैठे रहेंगे आप लोग?
4: जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती, लेकिन हम सदन के अंदर मुद्दे को उठाना चाहते हैं कि सरकार ने यहाँ गेट बंद कर रखा है, जाने नहीं दे रहे हैं।
3: तो दूसरे गेट से भी तो अंदर जा सकते हैं?
4: ये हम सब विधायक नहीं है क्या, पहले भी जाते थे यहाँ से? तो सरकार ये है आवाज दबाने का और एक ऐसा आक्रामक रवैया अपना रखा है कि ना तो बात सुनेंगे। ये पार्लियामेंट में हुआ, 20 दिन गृह मंत्री ने बयान नहीं दिया, आखिरी माह के भाषण दे रहे हैं, तो ये जो बच्चों के साथ हो रहा है इसको हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं।
3: तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर इनका प्रदर्शन जारी है, गेट बंद है और गेट बंद के बाहर यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी टीकाराम जूली भी बैठे हुए हैं। टीकाराम जूली जी, आप सदन के बाहर बैठे हुए हैं, आपको सदन के अंदर जाके इन मांगों को नहीं उठाना चाहते?
5: ये गेट ही बंद कर दिया,
3: दूसरे गेट में चले जाए,
5: क्यों जाए दूसरे से? यानी हमारे अधिकारों पे हनन हो जाए। हम जब स्कूल गए, पोदारी स्कूल गया मैं, आप भी शायद गए थे वहाँ, क्या स्थिति थी वहाँ? मैं भी गया था 15 दिन पहले, जब हम वहाँ गए तो कहा कि 15 दिन में स्थिति सुधारेंगे, वो देखने के लिए मैं गया था कि क्या स्थिति सुधरी है। वहाँ जाने से हमें रोक दिया गया, यहाँ तो यहाँ रोक दिया गया, आप मैं

0: पूछता हूँ किस नियम से ये गेट बंद कराया?
1: अब कब तक बैठे रहेंगे आप लोग यहाँ?
0: अभी आज की कार्रवाई खत्म होने दीजिए, फिर बात करेंगे। मैं चाहता हूँ स्पीकर साहब को बुलाना चाहिए और जिन लोगों ने ये गेट बंद किया उनको सस्पेंड करना चाहिए। विशेषाधिकार हनन का मामला हम
1: जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो भी बैठे हुए यहाँ धरने पर। डोटासरा जी, ये प्रदर्शन लोग कह रहे हैं कि सदन के अंदर भी तो आप कर सकते थे।
2: जाने दे तब ना, पश्चिमी गेट से जब से ये विधानसभा बनी है पैदल जाने के लिए है, पैदल नहीं जाने दिया। पहले गाड़ियां थी, गाड़ियां जो है वो पूर्वी गेट से कर दी। अब गाड़ी हम लेके आए नहीं, पैदल पैदल आए तो उधर से जाने नहीं देंगे, तो इधर से 6 नंबर गेट से अलाउ है क्योंकि यही हमारा विधायक आवास है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं तो जाने नहीं दे रहे, पुलिस लगा दी, बैरिकेड लगा दिए, ताले लगा दिए, तो कहाँ जाए?
1: स्कूलों के मुद्दों पर ये विधानसभा में इस बार आप लोग घेरेंगे?
2: या तो ये काला कानून वापस ले लेंगे, नहीं ये शिक्षा मंत्री भी जाएगा, और शिक्षा मंत्री नहीं जाएगा तो फिर सरकार के भी मोरिये बोल सकते हैं।
1: तो काला कानून है कह रहे हैं यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के, और इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शन जारी है। तमाम विधायक हैं यहाँ पर, अंजलि और नेहा की, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस गेट पर चढ़ गए थे अंदर जाने के लिए। इनका कहना है कि हम अंदर जाना चाह रहे थे मगर ये कह रहे हैं कि आप रिसेप्शन से आओ, और रिसेप्शन से न जाकर ये अंदर जाना चाह रहे हैं। आप हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, देख सकते हैं बदहाल शिक्षा व्यवस्था का। हालांकि देखिए ये भी सच है कि
3: लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, अंदर मांग नहीं उठाएंगे, बाहरी धरने पर बैठ गए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, टिकते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: पापा।
5: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का
6: सब कैशलेस हो गया
5: है। ला भाई मेरा बैट,
7: वो अभी तो ठीक हुआ।
8: चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
7: जब तक वो CBI जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
6: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
8: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
9: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
10: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
11: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
6: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
1: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
2: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पीवा आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लद से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक
0: नहीं। गुलटनिया और कलखनिया।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: बन गई है कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी में बोले राहुल, राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं मोदी।
1: यूपी में जेन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार सख्त, लापरवाही मिली तो तय होगी जिम्मेदारी। सीएम ऑफिस करेगा सीधी निगरानी, सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम और कमिश्नर।
0: जेन जी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान। कैबिनेट की बैठक में पीएम का निर्देश, आरएसएस की मीटिंग में भी जेन जी पर मंथन।
1: राजस्थान में मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव कर स्कूलों में फोटोग्राफी पर रोक के फरमान का विरोध, खराब शिक्षा व्यवस्था को बनाया मुद्दा।
0: भारत का अंग है कश्मीर, श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के बयान से बौखलाया पाकिस्तान। इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई नाराजगी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है। कांग्रेस ने दो टूकिये कहा है कि वंदे मातरम के सभी छह पद नहीं गाए जाने के खिलाफ कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में निर्णय ये लिया गया कि कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ दो ही पैरा गाए जाएंगे।
1: तो कांग्रेस के इस फैसले के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाना कानून के खिलाफ है? क्या कहता है कानून और क्या कांग्रेस का ये स्टैंड कानून के विरोध में है? देखिए रिपोर्ट।
3: सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस ने ठाना वंदे मातरम के दो पद ही गाना। वंदे मातरम पर दो पद वर्सेस फुल, कांग्रेस के लिए सियासी शोर। आधे अधूरे वंदे मातरम पर युद्ध, कांग्रेस का स्टैंड कानून के विरुद्ध। पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कांग्रेस के नेता जेल जाएंगे। ये 15 अगस्त का वाकया है। मौका था कांग्रेस मुख्यालय में झंडा रोहण का, जब सोनिया गांधी पर आरोप लगा पूरा वंदे मातरम गाने से रोकने का। उसके बाद दो और बातें हुई। 15 अगस्त का सोनिया गांधी पर वंदे मातरम की अपमान के आरोपों की तपिश कम भी नहीं हुई थी। गोवा से तस्वीर आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने कल अपनी कार्य समिति में आधिकारिक रूप से तय कर दिया कि वो दो पद ही गाएगी।
4: We are very very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First two stands था।
5: 28 अक्टूबर 1947 को वंदे मातरम, सॉरी 37 को वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में जब पारित किया गया सीडब्ल्यूसी की बैठक में, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेता, आचार्य नरेंद्र देव मौजूद थे और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था। और आज उस पर चर्चा हुई, कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है।
3: तो पहली बार कांग्रेस ने खुलकर स्टैंड लिया है, वंदे मातरम के दो पद गाने का ही फैसला किया है। तो अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का ये स्टैंड कानून के खिलाफ है? इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर कानून क्या कहता है। संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन जैसी कानूनी सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया। नए कानून के तहत वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना, जानबूझकर वंदे मातरम का गायन रोकना, वंदे मातरम गा रहे किसी समूह सभा में जानबूझकर व्यवधान डालना अपराध माने जाएंगे। नए कानून के तहत इन अपराधों का दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अपराध दोहराने पर कम से कम एक वर्ष की अनिवार्य जेल होगी। इस मामले में गृह मंत्रालय ने प्रोटोकॉल भी जारी किया है, जिनके मुताबिक दिशा निर्देश बताते हैं कि आधिकारिक कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों शामिल हों तो वंदे मातरम पहले और उसके बाद राष्ट्रगान गाए जाएंगे। आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम का पूरा संस्करण या सभी 6 पद गाए जाएंगे। तो कानून की बिसात पर कांग्रेस को उतनी मुश्किलें ना हों, लेकिन सियासी बिसात पर उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
6: कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है, और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
3: कांग्रेस 1937 के अधिवेशन का हवाला देकर दो पद ही गाने जाने की दलील दे रही है, लेकिन इसका जनता से सियासी संदेश क्या जाता है, इससे नफा या नुकसान तय होगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कांग्रेस ये कह रही है कि 1937 के पार्टी अधिवेशन में वंदे मातरम के दो पद गाने पर ही सहमति बनी थी, इसलिए वो दो पद की ही हिमायत कर रही है। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में क्या कहा था, ये सुनिए।
7: साथियों, वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का यह महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है।
1: क्या राष्ट्रीय गीत के सिर्फ दो पैरा गाना कानूनन अपराध है? इस बारे में हम लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य से भी बात कर चुके हैं, सुनिए क्या कहते हैं वो।
8: हमारे साथ पीडीटी आचार्य साहब हैं। आचार्य साहब, विवाद ये है कि क्या पूरे 6 स्टैंजाज में आपको खड़ा होना, अगर कोई 2 स्टैंजा पहले की तरह गाता है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में आएगा?
9: देखिए ना, ये एक कानून है, वो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। उसके अंदर पहले नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग, इन तीनों का जिक्र हुआ था। तो इसको डिसऑनर करेंगे आप, अनादर करेंगे, तो उसमें दंड मिलेगा, 3 साल तक का दंड का प्रोविजन है उसमें। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन को आप पब्लिक के सामने होना, पब्लिक के सामने होना चाहिए, आप घर के अंदर कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं है, पब्लिक के सामने अगर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लात मारें या उसको फाड़ें और जलाएं और नेशनल फ्लैग को नीचे फेंक करके उसके ऊपर पैर पर खड़े हो जाए, इस तरह की चीज़ें जो हैं, और नेशनल एंथम गाने में उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको मतलब किसी को रोकते हैं आप, या जो गाने वाली सभा में आप गड़बड़ करते हैं उसको ताकि वो गाए ना गाए, ये सारी चीज़ें ऑफेंसेस हैं, मतलब दंडनीय अपराध है। अब ये कंट्रोवर्सी आ गई है, वो उन्होंने पूरा गाने के लिए हमें बात करते हैं, लेकिन कानून में तो है नहीं वो। जहां तक मैंने देखा है उसमें है नहीं। अब सवाल ये है कि जो पहले वाला जो दोस्त हमसा अगर गाएंगे तो इसको आप कह सकते हैं कि आपने प्रिवेंट किया है पूरा गाने के लिए, तो यही एक सवाल है इसमें, क्योंकि उसमें कानून में ये इसका प्रोविजन ये है कि अगर आप ये जो गाते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको रोकते हैं, और जब लोग गाते हैं उसमें आप गड़बड़ करते हैं ताकि ना गा पाए वो, इस हालत में वो एक ऑफेंस बन जाता है, मतलब प्रिवेंटिंग वर्ड।
8: अगर सर गाना शुरू किया तो पूरा गाने के दो स्टांजा के बाद अगर किसी ने प्रिवेंट किया, किसी ने उसको रोकने की कोशिश की दो स्टांजा गाने के बाद, तो वैसी स्थिति में क्या है?
9: देखो ना, इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि पूरा गाना चाहिए, तो पूरा क्या है आधा क्या है इसके बारे में कोई डेफिनेशन तो है नहीं कानून में, तो किस आधार पर आप आगे बढ़ेंगे इसमें, यही प्रॉब्लम है।
0: संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, आचार्य जी तो साफ कह रहे हैं कि कानून में तो कोई प्रावधान नहीं है, पूरा गाइए, आधा गाइए, दो डेढ़ कोई भी पैरा गाइए, इस तरह की कोई बात लिखित तौर पर नहीं है, लेकिन क्या इसको लेकर जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर, वो आधार क्या देगी अब जब कानून ही नहीं है?
10: बिल्कुल, अब इसमें कई वकीलों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि देर सवेर ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट आ सकता है और संविधान पीठ इस मामले में तय करेगी, क्योंकि जो कानून है उसमें कहीं पर ये नहीं है कि छह स्टांजा गाने हैं दो स्टांजा गाने हैं, बस ये है कि वंदे मातरम को भी राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीकों की सूची में शामिल कर दिया गया है। तो ऐसे में अब इस पर ये विवाद, ये कानूनी विवाद है और जाहिर है संवैधानिक विवाद है, तो इस पर हो सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के जल्दी ही संविधान पीठ के समक्ष जाए और कोई ना कोई इस मामले को लेकर, हो सकता है कांग्रेस ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, या कांग्रेस अगर परहेज भी करती है, क्योंकि राष्ट्रगीत का मामला है, राष्ट्रीय प्रतीक और सम्मान का मामला है, तो हो सकता है कि कोई और इस मामले में जनहित याचिका लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ इस पर बात करे, क्योंकि जहां संविधान मौन है वहां सुप्रीम कोर्ट मुखर होता है, सुप्रीम कोर्ट बताता है कि आखिर संविधान क्या कहना चाहता है।
1: जी शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो दो दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलील दी थी कि कांग्रेस क्यों वंदे मातरम के सिर्फ दो पैरा के पक्ष में है।
11: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गया, अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं, अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा, कल के दिन दूसरी सरकार आएगी वो अगर कहे वही होता है, 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए।
0: बीजेपी नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने कांग्रेस के इस फैसले को ना सिर्फ संविधान बल्कि कानून का भी उल्लंघन माना है।
12: और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी इस तरीके से काम कर रही है जिससे आम लोगों को लगने लगा है कि ये तो भारत माँ के विरोध का काम हो रहा है, ये ठीक नहीं हुआ है, ये संसद ने कानून पास किया है, अब आपका बहुमत नहीं तो उसके लिए हम क्या करें, संसद में कानून पास हुआ है, बहुमत से कानून पास हुआ है, संसद के द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाला अपराधी होता है, और इसलिए जो संसद में बना हुआ कानून उसका ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको करना है आंदोलन ही करना है तो संसद से त्यागपत्र देना चाहिए।
1: तो सियासत बढ़ रही है, विवाद गर्म है, वंदे मातरम पर कांग्रेस और बीजेपी में तलवारें खिंच गई हैं।
13: इस तरह का कोई भी कृत्य वो गैर कानूनी भी है, कानून के तहत कार्रवाई करने के योग्य भी है, इस तरह की गतिविधियां हरकतें अगर कोई करता है और पार्टी किसी नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, ऐसे पार्टी के मुखिया की उपस्थिति में अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति और देश के मान बिंदुओं के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, उनकी कितनी आस्था है, उनकी कितना उनके मन में पवित्रता का भाव है, देश के सामने प्रकट हो जाता है।
14: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा, नहीं मैंने पहले भी गाई अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें कौन नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।
0: मौसमी सिंह भी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी देखिए, कानूनन इस पर क्लैरिटी पाने के लिए शायद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को रुकवाया, उसके बाद कांग्रेस को उसका स्पष्टीकरण देना पड़ा कि वो खड़गे साहब के लिए कुर्सी मंगवा रही थी, उस मुद्दे को लेकर शायद बीजेपी ज्यादा हमलावर हो सकती है।
15: देखिए कुल मिला के अब तो ये हम लोगों ने सबसे पहले कहा भी था नेहा, और कल केसी वेणुगोपाल ने बोल दिया कि कम्युनिकेशन मिस कम्युनिकेशन हो गया था जिसकी वजह से पूरा वंदे मातरम बज गया। यानी कि दो टूक कांग्रेस का कहना है कि बजना दो ही स्टैंडर्ड था, और ये अब दिशा निर्देश पूरे भारत में कांग्रेस के तमाम इकाइयों को दे दिया गया है कि गाएंगे तो हम 1937 वाला जो रेजोल्यूशन पारित हुआ था उसमें जो दो स्टैंडर्ड वंदे मातरम के वही गाएंगे। यानी कि जो नया कानून बना है उसके तर्ज पे या उसके मुताबिक अब वंदे मातरम जो पूरा गाना है उसको कांग्रेस नहीं गाएगी। ये साफ तौर पे दो टूक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी संदेश दे दिया।
1: जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मौसमी। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां के स्कूलों में जेनरेशन अल्फा का आंदोलन चल रहा है। कहीं कभी लखनऊ में तो कभी आजमगढ़ में तो कभी कन्नौज में छात्रों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। अब महोबा में जेन अल्फा के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों की मांग है कि स्कूल आने जाने का रास्ता बनवा दीजिए।
16: उत्तर प्रदेश के जिला महोबा से आई ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि बच्चे स्कूल छोड़कर सड़कों पर क्यों उतरे हैं। ये जेन अल्फा के छात्र क्लासरूम छोड़कर सड़क पर चक्का जाम और नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? महोबा में छात्र सड़क पर इसलिए उतरे थे क्योंकि स्कूल आने जाने का जो रास्ता है वो खस्ता हाल है। सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है, सड़क तालाब है या तालाब में सड़कें हैं, ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा था। आए दिन बच्चे इन सड़कों पर गिर जाते थे, चोट लगती थी, जूता मोजा उतार कर स्कूल जाना पड़ता था। इसलिए जनरेशन अल्फा ने अपनी बात हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए झांसी मिर्जापुर हाईवे जाम कर दिया।
17: सड़क खराब सही करवानी है, हम रोज दिन स्कूल जाते हैं इसलिए हम लोगों को दिक्कत होती है रास्ते में, रिक्शे पलट जाते हैं, नाली का पानी मिली, लैंड्रिन का पानी रोड में डाल रहे हैं,
18: तो उनको बोलते हैं तो गाली भी देते हैं, आज दिन रिक्शे भी पलटते हैं, अभी हमारे यहाँ के एक लोगों का पैर भी टूट गया है गिनने से।
19: कितनी समस्या आ रही छात्रों को?
18: बहुत ज्यादा समस्या आ रही, जाने में भी दिक्कत होती, जूते वूते पूरे भर जाते हैं ड्रेस से लेके सब, वहाँ पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे जूते साफ करेंगे।
16: हालात इतने बदतर हैं कि आए दिन ई रिक्शा और ऑटो पलट जाते हैं जिससे कई बच्चे चोटिल हो चुके हैं। छात्रों का आरोप है कि इस रास्ते पर कई दाल मिलें संचालित हैं, इन मिलों के बड़े बड़े ओवरलोडेड ट्रकों की आवाजाही होती है जिससे सड़क खराब हो गई है। समस्या ये भी है कि मिलों का गंदा पानी सड़क पर बहा दिया जाता है। कई बार अधिकारियों से शिकायत के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो बच्चों ने सड़क पर उतरना ही मुनासिब समझा। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल बच्चों को शायद ठीक से पता भी ना हो कि आंदोलन कैसे करते हैं। इनमें से ज्यादातर के लिए ये पहला अनुभव रहा होगा, पहली बार पुलिस से सामना हुआ होगा, लेकिन पुलिस ने उनके साथ क्या किया?
20: चलो जान का परिणाम देखना चाहते हो? हैं? जान का परिणाम देखोगे? तुम तो पढ़ते भी नहीं हो।
16: आरोप है कि बच्चों के साथ महोबा पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, उन्हें धमकियां दी गई कि रोड खाली कर दो वरना तुम्हारे घर वालों पर कार्यवाही करेंगे। बल प्रयोग की भी धमकी देने का आरोप है। लेकिन महोबा के नगर क्षेत्राधिकारी रविकांत गौड़ कहते हैं कि पुलिस ने तो सद्भाव पूर्वक छात्रों को समझाया और रास्ता खुलवा दिया।
21: झांसी मिर्जापुर हाईवे पर कुछ छात्रों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर हाईवे को जाम कर दिया गया है, जिससे आपातकालीन सेवाएं और तथा आम जनमानस का आवागमन प्रभावित हो रहा था। उस सूचना पर तत्कालीन पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंच करके छात्रों से उनकी समस्याओं की जानकारी की गई तथा उनसे सद्भावपूर्वक बातचीत करके आपातकालीन सेवाओं को बहाल किया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
16: महोबा में पुलिस ने बच्चों के साथ जो किया, यदि वो सद्भाव है तो पुलिस बताए जरा कि दुर्भाव क्या होता है। बच्चों की मांगे जायज हैं, स्कूल है तो रास्ता तो होना ही चाहिए। नाहिदा अंसारी, महोबा, आज तक।
0: यूपी के शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं को लेकर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के बाद सीएम योगी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। योगी ने कहा है कि जहां भी कमियां सामने आ रही हैं वहां पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है।
1: तो बड़ी खबर यह है कि लखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में छात्रों के प्रदर्शन को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। शिक्षकों की कमी और अन्य अव्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री योगी ने नाराजगी जताते हुए समस्याओं के तत्काल समाधान का निर्देश दिया है। साथ ही जहां भी खामियां सामने आएंगी उनका तत्काल निस्तारण करने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित भी किया जाएगा।
0: रुकेंगे आज से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसून का कहर। आसनसोल से लेकर पुरुलिया तक बिगड़े हालात। बाढ़ बारिश के चलते लोगों के घरों में आया पानी। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानों पर हो रही बारिश के चलते अब हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गरुई नदी से सटे इलाकों में पानी भर गया और लोगों के घरों के अंदर तक घुस चुका है। कुछ जगहों पर तो पानी लोगों की कमर तक पहुंच चुका है। रेल पार्क, तरी मोहल्ला, केटी रोड, काली मंदिर, न्यू बस्ती और सोहन पापड़ी में हालात सबसे ज्यादा खराब है। 100 से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम की सिविल डिफेंस टीम साथ साथ आसपास के स्थानीय लोग भी प्रभावित इलाकों में जाकर खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं।
1: सब तरफ हम लोग टीम पहुंचेगा, हम लोग खुद पहुंचेंगे और घर घर में जाके लोगों को हम लोग जो खाने पीने का सामग्री ये सिलसिल चीजें देंगे। उसके अलावा हम लोग सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब रिस्क ना ले, आप लोग सिविल डिफेंस की टीम आया हुआ है और आप लोग घर से निकल, आप लोग को हम लोग लेने के लिए आ रहे हैं, साथ में निकले क्योंकि ये रिस्की हो जाएगा, पानी बहुत बढ़ते जा रहा है।
0: वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को और बच्चों को नाव के जरिए रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। आसनसोल ही नहीं, पुरुलिया में भी लगातार हो रही बारिश के चलते हालात काफी खराब हो चुके हैं। कई इलाकों में पानी भर चुका है, वहीं रास्तों पर पानी सैलाब की तरह बह रहा है। इसी दौरान सड़क पार कर रहा एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गया और देखते ही देखते पानी के साथ बहता चला गया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उसे बचाया गया। वहीं कोलकाता में भारी बारिश के चलते जोरबागन इलाके में एक घर गिर गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पहाड़ हो या मैदान, इस वक्त हर जगह मानसूनी आफत का सिलसिला जारी है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मिडिल ईस्ट तनाव के बाद तेल कंपनियों ने मई में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए थे। जून के बाद अमेरिका और ईरान में तनाव घटने से कच्चे तेल की कीमतों में जब कमी आई तो फ्यूल प्राइस कम होने पर भरोसा बढ़ गया था, लेकिन खाड़ी में तनाव फिर बढ़ने से ईंधन की कीमतों में कमी की उम्मीद टूटने लगी है। दरअसल इस वक्त दुनिया भर में चल रहे तनाव का असर भारत के ईंधन और खाने पीने के सामानों पर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान के बीच नए समझौते की उम्मीदें कमजोर पड़ने से कच्चे तेल में तेजी आ रही है। इससे ब्रेंट क्रूड $91 प्रति बैरल के ऊपर और WTI क्रूड करीब $85 प्रति बैरल पर चल रहा है। आशंका है क्रूड जल्द ही $100 प्रति बैरल के पास पहुंच सकता है। तेल की कीमतों में ये तेजी ऐसे समय में आई है जब भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन हालात फिलहाल राहत वाले नहीं दिख रहे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बनी अनिश्चितता और ईरान अमेरिका के बीच बढ़ी दूरी ने एनर्जी मार्केट की बेचैनी बढ़ा दी है। भारत के लिए हालात ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि देश अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। महंगे कच्चे तेल से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ सकती है और लंबे समय तक ऊंचे दाम रहने पर ईंधन कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। तेल के साथ साथ खाने की थाली से जुड़ी एक और चिंता भी सिर उठाने लगी है। गेहूं की कीमतों में तेजी ने आटा और ब्रेड जैसे जरूरी सामान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुनिया के बड़े गेहूं निर्यातक रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने काला सागर क्षेत्र में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारतीय मंडियों तक दिखाई देने लगा है। वैश्विक बाजार में गेहूं करीब $6.7 प्रति बुशेल के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं देश की प्रमुख मंडियों में एक महीने में गेहूं के भाव करीब 4% तक बढ़ गए हैं। जाहिर है गेहूं की बढ़ती कीमतें आटा ब्रेड और दूसरे खाद्य उत्पादों की लागत बढ़ा सकती हैं, लेकिन रसोई की चिंता यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि प्याज भी लोगों की जेब पर दबाव बढ़ाने लगा है और प्याज का औसत खुदरा बाजार ₹37.20 प्रति किलो पर पहुंच गया है, जबकि एक महीने पहले कीमत ₹34.53 प्रति किलो थी और एक साल पहले प्याज का भाव ₹26.86 प्रति किलो था। इस तेजी की वजह खरीफ प्याज की आवक में देरी है, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ गया है। तेल से लेकर गेहूं और प्याज तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पैदा हुआ तनाव भारतीय ग्राहकों की जेब तक पहुंच रहा है। ऐसे में सबकी नजर दो मोर्चों पर टिकी है, जिसमें पहला है कि मिडिल ईस्ट में तेल की दिशा क्या रहती है और काला सागर क्षेत्र में सप्लाई का संकट कितना गहराता है, क्योंकि इन दोनों का असर सीधे आपकी गाड़ी के खर्च और रसोई के बजट पर पड़ सकता है। आदित्य केराड़ा, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

वंदे मातरम का सिर्फ दो पैरा गाने के कांग्रेसी फरमान से सियासत गरमाई, पूरी बीजेपी की चढ़ाई, कहा नई मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी में बोले राहुल, राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं मोदी। यूपी में जैन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार सख्त लापरवाही मिली तो तय होगी जिम्मेदारी, सीएम ऑफिस करेगा सीधी निगरानी, सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम कमिश्नर। जेन जी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान, कैबिनेट की बैठक में पीएम का निर्देश, आरएसएस की मीटिंग में भी जेन जी पर मंथन। राजस्थान में मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव कर स्कूलों में फोटोग्राफी पर रोक के फरमान का विरोध, कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। भारत का अंग है कश्मीर, अमेरिका के बयान पर बौखलाए पाकिस्तान के कब्जे वाली घाटी में उठी विद्रोह की चिंगारी, शहबाज मुनीर के खिलाफ पीओजेके की बेटियों की खुली बगावत।

0: आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 12 बजे 12 रिपोर्टर में सबसे पहले गुजरात के वडोदरा से एक जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में आपको बताएंगे। एक लग्जरी बस के ऑटोमेटिक दरवाजा अचानक बंद होता है और उसमें फंसकर 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन रहस्य की बात यह है कि बच्चे की गर्दन बस के दरवाजे में फंसी कैसे, यह साफ हो ही नहीं पाया। घटना के वक्त का सीसीटीवी फुटेज ना मिलने से यह रहस्य गहरा गया है। घटना से पहले का, घटना हुई उसके बाद का सीसीटीवी फुटेज है। यह घटना वडोदरा के सूर्यनगर तरसाली बाईपास की है, जहां लग्जरी बस रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप में आई थी। बच्चे के परिवार वालों का कहना है कि बच्चा प्रसाद लेने की बात कहकर घर से निकला था। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है कि प्रसाद लेने की बात कहकर घर से बाहर निकला था, अचानक बस तक कैसे पहुंचा और उसके बाद गर्दन कैसे फंसी और जान कैसे गई।
1: वडोदरा से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि जहां पर जो है एक 7 साल के मासूम बच्चे की बेहद भयावह मृत्यु हुई है। एक लग्जरी बस जो आई थी उसके ऑटोमेटिक दरवाजे में ये मासूम आ गया और इसका जो है वो गला फंस गया था। अब सवाल यही है कि जो मासूम उस ऑटोमेटिक ड्रॉर में कैसे फंसा, क्या उसको वहां पे कोई ले गया था या फिर वो खुद जो है वो कोशिश कर रहा था चढ़ने की, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है वो जो बच्चा फंसा उसके आए हैं, पर उससे पहले वाले जो सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो चढ़ा हो या फिर उसको कोई ले गया हो, ये सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है। ये पुलिस जांच का विषय है। माता पिता का कहना है कि बच्चा जो है प्रसाद लेने के कहकर घर से निकला था और फिर घर नहीं लौटा। आसपास के लोगों ने उनको बताया कि आपके बच्चे के साथ कुछ हुआ है, उसके बाद वो वहां पे पहुंचे थे और देखा था तो बच्चे की यह हालत थी। अब पुलिस ने जो है वो केस दर्ज कर लिया और पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच में ही पता चल पाएगा कि बच्चे की मौत किस वजह से हुई, क्या वो खुद चढ़ा था या कोई उसे वहां पे ले गया था। ये सारी जानकारी पुलिस तफ्तीश के बाद ही सामने आएगी।
0: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में जो अगली रिपोर्ट है वो दिल्ली से है। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में 22 साल के युवक की हत्या से खलबली मच गई। ये बताया जाता है कि 22 साल के जय सिंह की कल देर रात एक झगड़े में बीट बचाव के दौरान चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घर वालों के मुताबिक रात में जय अपने घर पर था, उसे जानने वाले दो लोग उसके पास आए, झगड़ा सुलझाने में मदद की गुहार लगाई, लेकिन झगड़ा सुलझाने के दौरान आरोपियों ने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।
2: कल्याणपुरी में एक बार फिर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 22 वर्षीय युवक की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं और अगर मैं आपको यहां आज सुबह की भी तस्वीरें दिखाऊं तो अभी तक जो खून के धब्बे हैं वो यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, कहीं ना कहीं ये बताता है कि काफी दर्दनाक तरीके से चाकू से बार बार मार के जय सिंह, 22 वर्षीय जय सिंह की हत्या कर दी गई। दरअसल ये मामला कल देर रात हुआ जब जय सिंह अपने घर पे मौजूद था और तभी उसके 2 दोस्त आते हैं और बताते हैं कि सड़क पे उनकी लड़ाई हो गई है। वो बीच बचाव करने यहां पर आता है, तभी जो सामने वाले पक्ष के लोग होते हैं वो उसे चाकू से हमला करते हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके साथ आए हुए परिवार के 2 से 3 लोग वो भी इस पूरे हमले में जख्मी हो जाते हैं। जिस तरीके से हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है और एहतियात के तौर पे पूरे इलाके में काफी भारी संख्या में जो पुलिस बल है और अर्धसैनिक बल है उन्हें तैनात कर दिया गया है।
0: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट राजस्थान के जयपुर से। सरकारी स्कूलों के हालात को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेताओं ने जयपुर में मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि सरकार ने स्कूलों की हालत खराब कर रहे हैं और स्कूलों की अव्यवस्थाओं को दिखाने के लिए फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई है, ये कहा जा रहा है। कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया।
3: विधानसभा है, विधानसभा के बाहर ये तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से स्कूलों की बदहाली है उसे दिखाने से रोका जा रहा है, मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे थे और ये अब मुख्य गेट से अंदर जाना चाह रहे थे, नहीं जाने दिया जा रहा है तो वहाँ बैठ गए। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर इनका प्रदर्शन जारी है, गेट बंद है और गेट बंद के बाहर यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी टीकाराम जूली भी बैठे हुए हैं। टीकाराम जूली जी, आप सदन के बाहर बैठे हुए हैं, आपको सदन के अंदर जाकर इन मांगों को नहीं उठाना चाहते?
4: ये गेट ही बंद कर दिया, क्यों जाएं दूसरे से, यानी हमारे अधिकारों पे हनन हो जाए। हम जब स्कूल गए, पोदारी स्कूल गया मैं, आप भी शायद गए थे वहाँ, क्या स्थिति थी वहाँ? मैं भी गया था 15 दिन पहले, जब हम वहां गए तो कहा कि 15 दिन में स्थिति सुधारेंगे। वो देखने के लिए मैं गया था कि क्या स्थिति सुधरी है, वहां जाने से हमें रोक दिया गया, यहाँ तो यहाँ रोक दिया गया। अब मैं पूछता हूँ किस नियम से ये गेट बंद कराया?
0: तो राजस्थान सरकार के फरमान से कांग्रेस खफा है और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार के फरमान को तानाशाही रवैया बताया।
5: सरकार ना तो मुद्दे को उठाने देना चाहती है और ना अपनी गलती को स्वीकार कर रही है। जब पूरे प्रदेश में इतने बच्चों की जान चली गई, छतें गिर रही हैं, बाढ़ आ रही है, व्यवस्था चरमरा गई है, बजाय उस वास्तविकता को एक्सेप्ट करके उस पर कदम उठाएं, सरकार ने आदेश जारी कर दिया, कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई रील नहीं बनाएगा, कोई मीडिया नहीं जाएगा, सरकारी स्कूलों पे लोगों को पाबंद कर दिया, अगर आप जाएंगे अंदर आप पे पॉस्को कानून लगा दिया जाएगा। तो ये सरकार को जो एक तानाशाही रवैया है और शिक्षा मंत्री जो एक बेवजह इस प्रकार के आदेश जारी किए उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। हम चाहते हैं कि स्कूलों में जो हालात हैं पूरे प्रदेश और देश में, लेकिन राजस्थान के अंदर विशेष रूप से अनेक जिलों के अंदर जर्जर हालत में स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं।
0: 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट। वंदे मातरम पर कांग्रेस के प्रस्ताव की दिल्ली में कल हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तय किया गया है कि कांग्रेस अपने कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद ही गाएगी। कांग्रेस ने कहा कि वो वंदे मातरम को लेकर 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा किए गए फैसलों को पूरी तरह पालन करेगी। तो कांग्रेस के निर्णय को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को नया मुस्लिम लीग बताया है।
6: वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली, दिस इज आवर डिसीजन। फर्स्ट 2 चांस था।
7: कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
0: वहीं बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा वंदे मातरम पर कांग्रेस के फैसले को लेकर। उन्होंने कहा कि भारत माता की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है जिन्होंने इसी गीत को अपनी चेतना में रखकर राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल एक राजनीतिक बचाव नहीं है बल्कि उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। तो बीजेपी ने वंदे मातरम पर कांग्रेस से स्टैंड पर चौतरफा हमला किया आज तक से बातचीत में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा वो हम आपको दिखाते।
8: 1 मिनट 3 सेकेंड या 9 सेकेंड का 2 स्टेंजा है और 6 स्टेंजा सब मिला के 3 मिनट 9 सेकेंड का है। 2 मिनट क्या इस राष्ट्र के सम्मान के लिए? छी छी छी छी सोनिया जी, डूब के मर जाना चाहिए। अब तो राष्ट्र ने क्या नहीं दिया आपको, बहू बना के लाया, सम्मान किया, आज उस शासन के आप बनी हुई थी कर्ता धरता, देश के प्रति थोड़ा प्रेम नहीं? छी छी छी छी।
0: तो नीट पेपर लीक के बाद अब केंद्र सरकार युवाओं तक पहुंच बढ़ाने की मुहिम में जुटी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में अपने सभी
9: पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी। और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है, आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे।
0: अमित शाह को सुन रहे थे और कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, बोल रहे राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, कांग्रेस ने विभाजन की नींव डाली है। ये भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया, वंदे मातरम पूरा ना गाना ये अवहेलना है। कांग्रेस के तुष्टिकरण की पुष्टि यहां पर हुई है कि कांग्रेस की तरफ से तुष्टिकरण किया जा रहा है। 1937 का ध्यान करवाया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये देश विरोधी फैसला है, ये संसद के एक्ट को

0: विरोध करेंगे कांग्रेस की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसका, और कांग्रेस के खिलाफ देश की जनता एकजुट हो, ये देश की जनता से अपील भी की। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कांग्रेस की तरफ से फैसला लिया गया दो झंड गाए जाएंगे, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम देश की जनता के बीच जाएंगे।
1: देखिए बिल्कुल देशव्यापी आंदोलन तो करेगी भारतीय जनता पार्टी।
2: गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी, और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी, और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और ये गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है, आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है, और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे।
0: तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बहुत स्पष्ट भाषा में कहा गया कि राहुल के नेतृत्व में तुष्टिकरण की राजनीति की राह पर कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस ने देश विरोधी फैसला लिया है, लेकिन हम जनता के बीच जाएंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से बीजेपी की आगे की रणनीति स्पष्ट दिखाई दे रही है?
1: देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो अब स्पष्ट दिखाई दे रही है, और देश व्यापी आंदोलन जो है वो कांग्रेस के विरुद्ध किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा जो है अब गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला है। ये जिस दिन 15 अगस्त को ये घटना हुई भी थी, जब दो छंद गाए गए, उसके बाद सोनिया गांधी जो है वो उन दो छंदों के बाद जो है लोगों से बातचीत

0: करते हुए डायरेक्शन देती हुई समझ दिखाई दी थी। तब भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सोनिया गांधी ने जो है वंदे मातरम का अपमान किया है, इसके लिए जो है उनको माफी मांगनी चाहिए। अब जब कांग्रेस ने ये फैसला लिया है, उनकी CWC ने, कि कांग्रेस जो है दो ही छंदों को जो है वो गाएगी और इसके अलावा नहीं, तो अब गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कांग्रेस ने ये देश विरोधी फैसला लिया है और देश को बांटने की नींव जो है 1947 के अंदर जो है वो ली गई थी कांग्रेस के द्वारा। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी कोशिश होगी कि पूरे देश भर में इस पूरे मामले पर जो है वो आंदोलन चलाया जाए और एक्सपोज किया जाए कि कांग्रेस किस तरीके से जो है वो राष्ट्र विरोधी काम करती है, और वो कानून जो देश की दोनों संसद के दोनों सदनों ने पास किया है, अब उस कानून को नहीं मान रही है। और कांग्रेस ने पहले भी जो दो छंद गाने का प्रस्ताव कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में 1937 में पास किया था, वो देश को बांटने का काम किया था और दो राष्ट्र की जो थ्योरी है उसको वहीं से उन्होंने चालू किया था, और उसी का परिणाम है कि आज तक जो है वो कांग्रेस जो है पूरे वंदे मातरम का विरोध करती रही है।
1: लेकिन हिमांशु, अब क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से क्या रणनीति अपनाई जाएगी, जब चौतरफा घेराव बीजेपी की तरफ से करने का मन बना लिया गया है, जनता के बीच जाएंगे, जनता से भी अपील करते हुए दिखाई दिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, क्या लगता है आपको?
0: देखिए देखिए कांग्रेस की भी रणनीति साफ है। कांग्रेस का ये कहना है कि जब 1937 से वंदे मातरम के दो छंद जो है वो गाए जा रहे थे, तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से जो है वो छह छंद का लिए जो कानून बनाया गया है वो क्यों मान्य है? 80 साल तक आप क्यों चुप रहे 1937 से अभी तक, और जब आपकी सरकार 2014 से 26 तक थी, इन 12 सालों में आप क्यों चुप रहे? 6 साल जो है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के, उसमें आप क्यों चुप रहे? क्यों आपने इसका विरोध नहीं किया? तो तमाम सवाल जो है कांग्रेस भी चाहती है कि इसके जवाब आए। अब देखना यह है, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पीछे नहीं हटना चाहती है। कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया है उनकी वर्किंग कमेटी में, और दूसरी तरफ गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी जो है इसको ना सिर्फ सड़क पे लड़ाई लड़ेगी, बल्कि सड़क से संसद और विधानसभा तक के लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी कि कांग्रेस जो है वो वंदे मातरम का विरोध करती है, क्योंकि इसके अंदर जो बाकी के चार छंद है वो जोड़े गए हैं, और इन चार छंदों के कारण ही जो है वो हटाए जाने के
1: तो
0: कारण जो है
1: क्या हिमांशु हम ये माने कि अब मुद्दा पूरी तरह से सेट हो चुका है, क्योंकि तुष्टिकरण का भी जिक्र यहां पर किया गया। अब 2027 तो बहुत ज्यादा कीमती है ही सभी राजनीतिक दलों के लिए, बड़े बड़े राज्यों में चुनाव हैं, जनता के बीच भी जाना है, राष्ट्रीयता का मुद्दा भी उठाना है, तुष्टिकरण का मुद्दा भी अब उठेगा, तो 2027 तक अब ये मुद्दा खिंचेगा?
0: देखिए अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि दोनों ही पार्टियां कितने लंबे समय तक इस पूरे मुद्दे को बनाए रखती हैं, क्योंकि जो भी मुद्दा देखें, चाहे वो राष्ट्रीयता का हो, देशभक्ति का हो, राष्ट्रवाद का है, वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसको फ्रंट फुट पे आके खेलती है, और हमेशा ये कोशिश करती है कि ये बताए कि कांग्रेस इन सब इश्यूज के खिलाफ है। जैसा अब वंदे मातरम के गायन को लेकर हुआ है, तो 2027 का जो विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों के, जिनमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, मणिपुर और गोवा है, इन चुनावों तक क्या ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जीवित रखेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, जब भी चुनाव आएंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कोर एजेंडे होंगे उनमें ये एक बड़ा सवाल होगा कि कांग्रेस ने जो है वंदे मातरम का विरोध किया है, उस पूरे वंदे मातरम के 6 छंदों का जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है उन्होंने लिखा था, भले ही जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के अगुवाई के अंदर उनके प्रस्ताव के बावजूद जो है दो ही छंद गाए जा रहे थे 80 साल से, लेकिन जो है आपको ये देखना होगा कि दोनों ही पार्टी जो है इस पूरे मुद्दे को आगे तक लेके जाने के मूड में है, और सड़क पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ
1: नहीं तो हिमांशु क्या क्या ये
0: चलाती दिखेंगे,
1: क्या यही यही चीज जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान था कि हम जनता के बीच जाएंगे, जनता से भी अपील करेंगे, क्या हम इसको इस तरह से लें कि बीजेपी की तरफ से आने वाले दिनों में ब्लॉक स्तर पर, जब संगठन मजबूत है, कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है, तो जिला स्तर पर अलग अलग जगह पर इस तरह के प्रदर्शन देखे जा सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि उनकी पार्टी जो है वो देश भर में जनता के बीच जाएगी, तो जनता के बीच जाने के लिए आप सेमिनार और बाकी चीजें
1: बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि राहुल गौतम भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। राहुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति आगे बढ़ा रही है और हम जनता के बीच जाएंगे, और राहुल के नेतृत्व में तुष्टिकरण हो रहा है, कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर बीजेपी दिखाई दे रही है, अब कांग्रेस के लिए अब आगे की रणनीति क्या होगी?
2: देखिए, कांग्रेस ने कल अपनी बैठक करी थी CWC के अंदर, और उसके अंदर ये तय कर दिया है कि हम 1937 वाला जो राष्ट्रगीत है उसी पर हमारा स्टैंड कायम रहेगा, यानी जो दो पैरा है, दो छंद हैं, हम उसी को आगे भी गाएंगे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इसको बीजेपी को इससे आपत्ति है तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, जो तमाम जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जब उन्होंने ये फैसला किया था कि हम वंदे मातरम के दो ही छंद गाएंगे, तो क्या वो भी देशद्रोही थे या उनकी जो मानसिकता है क्या वो देश विरोधी थी? तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का ये साफ तौर पर कहना है कि हम पिछले 100 सालों से राष्ट्रगीत गा रहे हैं और हम कतई हमारे मन के अंदर कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है वंदे मातरम के लिए, लेकिन जो हमारी परंपरा रही है, आपने देखा गोवा के अंदर हुआ जिसमें दो ही स्टांजा गाए गए, उसके अलावा अब ये तय कर दिया गया है कि पार्टी के तमाम कार्यक्रमों के अंदर दो ही पैरा या दो ही छंद गाए जाएंगे राष्ट्रगीत के। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि आर पार की लड़ाई की शुरुआत हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ने भी ये तय कर लिया है कि वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे, हमारा जो स्टैंड रहा है पिछले तकरीबन 100 सालों से, हम उसके ऊपर कायम रहेंगे। आपको याद होगा बीके हरिप्रसाद ने तो यहां तक कहा कि आप हमें जेल में डालिए या फांसी दीजिए, मैं दो ही छंद गाऊंगा। तो एक एक्सट्रीम आप कह सकते हैं लाइन ली है कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इस पे पीछे नहीं हटेंगे, घबराने वाले नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अमित शाह का बयान आया है, अब ये लग रहा है कि एक राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत होने वाली है। जाहिर है दोनों जो पक्ष हैं वो कोशिश करेंगे कि नैरेटिव बनाए कि जो दूसरा दल है वो इज्जत नहीं
1: राहुल
2: करता
1: बहुत स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस ने कह दिया है कि हम दो छंदों से आगे नहीं बढ़ेंगे, बीजेपी कह रही है कि हम तो जनता के बीच में अब जाएंगे, यानी आने वाले वक्त में इसी मुद्दे के इर्द गिर्द सियासत देखने को मिलेगी। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Hey man, let's go.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी। I wake up wearing someone else again.

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड.
4: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम.
5: EU
6: सोच बदलो और बैंक भी.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि वंदे मातरम से दो छंदे गाए जाएंगे, यहां तक कि ये तक कह दिया था कि आपको जो करना है करिए, लेकिन हम 1937 में कानून बना था उसी का पालन करेंगे और दो छंदी गाएंगे, कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कहा गया। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह कहा गया है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। वंदे मातरम के दो टुकड़े कांग्रेस ने किए और कांग्रेस ने विभाजन की नींव रखी है।
3: कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है, आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे।
2: और आइए अब बात करते हैं योगी के चुनावी यज्ञ की।

0: जंतर मंतर पर आंदोलन क्या हुआ, देश में जेंजी से लेकर जेन अल्फा तक के प्रदर्शन का एक ट्रेंड चल पड़ा। यूपी भी इस ट्रेंड से छूता नहीं रहा और इसका सियासी असर देखते हुए दिल्ली से लखनऊ तक की हुकूमतें सतर्क हो गई हैं। खासकर सीएम योगी ने यूपी में स्कूलों में किसी भी तरह की बद इंतजामी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। खुद सीएम दफ्तर अब ऐसे मामलों पर नजर बनाए हुए है।
1: लखनऊ में प्रदर्शन हुआ क्योंकि सर्वोदय स्कूल में साइंस के टीचर ही नहीं थे, हॉस्टल में जमकर बदहाली थी, बच्चों ने सड़क जाम कर दी। तो उनको समझा बुझाकर हटा दिया गया। महोबा में स्कूली बच्चों ने प्रदर्शन किया क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के रास्ते की 3 किलोमीटर सड़क गड्ढों और बरसात के पानी में डूबी हुई थी, हादसे हो रहे थे। बच्चों ने झांसी मिर्जापुर हाईवे जाम किया, जोर जबर की कोशिश हुई और बच्चों को किसी तरह से सड़क से हटा दिया गया।
2: जाम का परिणाम देखना चाहते हो? जाम का परिणाम देखोगे? तुम तो पढ़ते भी नहीं हो।
1: आजमगढ़ में स्कूली बच्चों का प्रदर्शन हुआ क्योंकि स्कूल में 26 साल से पर्याप्त शिक्षक की बहाली नहीं हुई है, तरह तरह के फॉर्म भरने के नाम पर पैसों की वसूली भी की जा रही है। उन्नाव के मोहान में जेपी सर्वोदय विद्यालय के बच्चे चौराहा जाम करके बैठे हुए थे कि जब तक स्कूल में सारे टीचर की बहाली नहीं होती और खाने पीने का सही इंतजाम नहीं होता, रास्ता नहीं खोलेंगे। समाजवादी पार्टी नेता भी बच्चों के साथ पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से जिलाधिकारी ने जाम खुलवाया।
3: अपनी जगह से बैठे रहे, अधिकारी वार्ता कर रहे हैं और शीघ्र ही आपकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा।
1: हमीरपुर में तिरंगा लेकर 5 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालते हुए बच्चे डीएम दफ्तर तक पहुंच गए। इनकी मांग थी कि आजादी के बाद से चंदूपुर पंचायत के गांव में सड़क नहीं है।
4: युवा समझ चुका है कि हमारे साथ छल हो रहा है। ना उनके प्राथमिक स्कूलों में मास्टर है, ना उनके प्राथमिक स्कूलों में ठीक से छत है, ना पंखे हैं, ना लाइट है। ये स्थिति स्कूलों की हो गई है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब स्कूलों का कोई वीडियो नहीं बना सकता है, कोई जा नहीं सकता है। क्यों? क्या वो आपकी पोल पट्टी खोल देगा? समाजवादी पार्टी आगे आने वाले 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बंद हुए 25,500 स्कूलों में शिक्षक दिवस बनाएगी और आपकी पोल पट्टी भी खोलेगी।
1: लखनऊ, आजमगढ़, महोबा, उन्नाव, हमीरपुर, जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे। और तब जाकर सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया। स्कूलों में शिक्षकों की कमी और अन्य अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए सीएम योगी ने सभी समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश दिए। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: तो दरअसल लखनऊ के सर्वोदय विद्यालय में जब शिक्षकों की कमी का मसला सामने आया तो सीएम योगी ने उसे बेहद गंभीरता से लिया, क्योंकि सर्वोदय विद्यालय में नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और जून में ही शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन की भी बात की गई थी। खबर है कि अब सीएम इसमें देर करने वाले अधिकारियों को भी चिन्हित करने का आदेश दे चुके हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में स्कूलों में पढ़ाई लिखाई और बाकी इंतजामों को सुलभ बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा, समाज कल्याण और श्रम विभाग के शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी उन्हें फौरन दूर करने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडल आयुक्तों और जिला अधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट से मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को भी कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडल आयुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने तय की है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में एमजीएम, किचन, ब्लैकबोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जलभराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉकवार निर्देश भी दिए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। बड़ी खबर, बीएसपी प्रमुख मायावती ने बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जेन अल्फा को स्कूली बच्चों के हालिया विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। मायावती भी आ गई। मायावती ने स्कूलों के हालात पर दुख और चिंता जताते हुए कहा कि छात्रों को शुरुआती शिक्षा के लिए जरूरी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह भी आरोप लगाया मायावती ने कि सरकारी स्कूल सिस्टम को बेहतर बनाने पर पर्याप्त ध्यान देने के बजाय सभी सरकारों ने इसे काफी हद तक नजरअंदाज किया। आरोप लगाया उन्होंने कि पूरे सरकारी शिक्षा सिस्टम को काफी हद तक बेकार बनाने की साजिश रची जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे इन वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था को बेकार बना दिया गया। तो स्कूलों और इंटर कॉलेज के बच्चों में जिस तरह व्यवस्थाओं को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए सरकार अब सतर्क हो रखी है और विपक्ष तैयार है। अब खबर है कि समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव से पहले पारंपरिक वोट बैंक पॉलिटिक्स से आगे जेन जी को फोकस पर रणनीति बना रही है। क्या है स्ट्रेटजी, एक खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं।
5: दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में जिस तरह डिंपल यादव ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जेन जी प्रोटेस्ट के दौरान संसद से सड़क तक जिस तरह समाजवादी पार्टी ने नौजवानों के मुद्दे को लेकर रुचि और राजनीति दिखाई और अब जेन अल्फा के हो रहे प्रदर्शनों में जैसे समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचकर सियासी मुनाफा बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जाहिर हो चुका है कि 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश का ध्यान जेन जी से जेन अल्फा तक है।
6: नौजवान एक सांकेतिक धरना दे रहे थे, सांकेतिक पदयात्रा निकाल रहे थे और बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर टियर गैस, पैलेट गन से उनके ऊपर हमला हुआ, उनको लाठी चार्ज किया गया उनके ऊपर। तो अगर कोई वहां पे खड़ा दिखा तो समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश अखिलेश यादव जी उनके साथ खड़े रहे।
5: और इसी बीच ये खबर आई है कि समाजवादी पार्टी ने जेन जी को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी जेन जी वोटरों को एआई, मीम और शॉर्ट वीडियो के जरिए साध रही है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक हैंडल से एआई जनरेटेड वीडियो और ग्राफिक्स साझा किए जा रहे हैं। पार्टी के राजनीतिक संदेश, नीतियां और उपलब्धियां भी एआई कंटेंट के रूप में जेन जी तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि यूपी में करीब 21% वोटर 18 से 29 वर्ष की उम्र के हैं जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का खास फोकस है।
7: उत्तर प्रदेश में अब 2027 का चुनाव है और समाजवादी पार्टी ने AI जनरेटेड वीडियोस और ऐसे कंटेंट को तैयार किया है जो युवाओं तक पहुंचाया जा सके, यानी कि जैन जी को सीधे उनसे कनेक्ट किया जा सके। इसकी वजह से भी अब ये वीडियोस, ये फोटोज, ये पोस्टें की जा रही हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जैन जी को प्रभावित करने के लिए और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उन तक पहुंचाने के लिए ये शॉर्ट वीडियो, AI जनरेटेड वीडियो और इसके साथ मैसेजिंग काफी ज्यादा पुख्ता होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल जो मेथड है, चाहे वो स्पीच का रहा हो, भाषण का रहा हो, वो जैन जी कहीं फिट नहीं बैठता है। इस वजह से समाजवादी पार्टी अब इस पैटर्न पर उतर आई है।
8: अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का व्यवहार किसी ट्रोलर की तरह हो गया है, झूठे चित्र, झूठे वीडियो लाकर समाज को भ्रम में पैदा करो।
9: समाजवादियों ने ही इनको कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप देने का काम किया, वही लैपटॉप समाजवादी द्वारा दिए लैपटॉप को। जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात आई तो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए लैपटॉप और आईपैड से ही छात्रों ने अपनी पढ़ाई की।
10: समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल सिर्फ गालियां बकने का काम करता रहा है और लोगों के लिए एक निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करता रहा है। जैन जी इसको बिल्कुल लाइक नहीं करता है। जैन जी देश की विचारधारा के साथ में है। जैन जी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में है और उसको योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भरोसा है।
5: समाजवादी पार्टी ही नहीं, अब कांग्रेस से लेकर BSP तक की नजर जैन जी क्लास के वोट बैंक की ओर घूम रही है। यूपी कांग्रेस भी डिजिटल मोर्चे पर सक्रिय हो चुकी है। हर जोन के लिए सोशल मीडिया और IT सेल की टीमें मजबूत की जा रही है। कांग्रेस मीम, व्यंग, ग्राफिक्स और विजुअल कंटेंट के जरिए सरकार विरोधी मुद्दों को युवाओं तक पहुंचा रही है। उधर मायावती के निर्देश पर BSP भी बूथवार समीक्षा बैठकें कर रही है। इसमें भी जैन जी कनेक्ट का आधार तलाशा जा रहा है। BSP सूत्रों के मुताबिक 100 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम करीब करीब तय हो चुका है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: तो एक तरफ राजनीतिक दल अलग अलग वोटर क्लास को अलग अलग तरीके से लुभाने, प्रभावित करने की रणनीतियां बना रहे, तो दूसरी तरफ एक दूसरे की स्ट्रेटेजी को लेकर जुबानी जंग भी चालू है। पिछले 2 दिनों से BJP और NDA के अंदर सीट बंटवारे को लेकर तंज कर रही समाजवादी पार्टी पर अब BJP के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पलटवार किया। पंकज चौधरी ने कहा कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तुष्टीकरण, जातीय समीकरण और जोड़ तोड़ के भरोसे जीत का सपना देख रही थी, वहां मजबूत जनाधार वाले प्रत्याशी तलाशना मुश्किल हो रहा है। पंकज चौधरी का दावा है कि समाजवादी पार्टी के चाणक्य बने पूर्व अफसर शाह की सर्वे रिपोर्ट ने समाजवादी कुनबे को फिक्र में डाल दिया।
9: देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, कार्यकर्ता जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में टिकट पाने के लिए और आने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में हताशा, निराशा और भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, हम समझते हैं, अपनी चिंता करे, आते आते आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को खोजे जो है प्रत्याशी नहीं मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत दूर जा चुके हैं। इवन इनके जो सिटिंग MLA है उनमें जिस तरीके से आक्रोश है, जनता में उनको लेकर के आक्रोश है, तो हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की चिंता छोड़ दे।
0: दरअसल पिछले दिनों दोनों ही गठबंधनों की ओर से एक दूसरे पर सियासी हमले चल रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी पंकज चौधरी के बयान पर पलटवार कर दिया।
7: BJP कह रही है, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 400 सीटों पर लड़ने के लिए चेहरे ही नहीं है विपक्ष के पास, ना समाजवादी पार्टी ना कांग्रेस के पास, पहले तो वो ढूंढे।
11: भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी हास्यास्पद है। आज की डेट में अपने झूठ में, अपने भ्रम के जाल में जो जनता को फंसाना चाह रही थी, खुद फंस गई। अरे, हमारे पास चेहरे नहीं है, आप आरोप लगा रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट आप हार गए हैं, आपके पास चेहरे हैं? नरेंद्र मोदी ने जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, नितिन नवीन को, बांकीपुर, वो सीट हार गए। आपके पास चेहरे हैं? आपके वो लड़ने के लिए प्रत्याशी हैं? नहीं है। सच बात यह है कि आपके पास 403 सीटें लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है। इसीलिए ना अखिलेश यादव जी ने कहा अपने सूत्रों के माध्यम से कि आप ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने सहयोगी दलों को देना चाहते हैं।
0: तो देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव के नजदीक आते ही दोनों ही गठबंधनों के अंदर की हलचलें अब सामने आ रही है। अब नया बखेड़ा आरक्षण का खड़ा हो रहा है। मंत्री संजय निषाद ने पिछले दिनों निषाद पार्टी के कार्यक्रम के दौरान मंच पर मंत्री दयाशंकर सिंह की मौजूदगी में आरक्षण की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी कराई थी। यहां तक कि निषाद ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात तक कह डाली थी। संजय निषाद की इस मांग को लेकर अब एक और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि वो संजय निषाद के साथ हैं। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने इस मुद्दे पर OP राजभर से बात की अब वो बातचीत आपको सुनवाते हैं।
12: मुझे निषाद भी एक सहयोगी दल है, वो तो कह रहे हैं कि हम अगर आरक्षण नहीं लाए हम तो सड़क पे आ जाएंगे, हम अपना मंत्री पर छोड़ देंगे।
13: सही कहा है उन्होंने, आरक्षण मिलना चाहिए, हम भी पक्षधर हैं उनकी बात के। वो अगर अनशन धरना देंगे तो उनके साथ रहेंगे, सड़क पर आएंगे तो हम उनके दहिने खड़ा रहेंगे।
12: मतलब दोनों कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार के खिलाफ धरना देंगे?
13: सरकार के खिलाफ थोड़ा दे रहे हैं, हम अपने समाज की बात कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं भैया।
12: आरक्षण कौन लाएगा?
13: सरकार देती है ना कि जनता देती है,
12: तो धरना किसके खिलाफ
13: है? हम सरकार से मांग करें कि सरकार के खिलाफ धरना थोड़ा दे रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं कि भाई ये चीजें हैं हमारी दीजिए।
12: मंत्री को धरना करने की आवश्यकता है क्या? मंत्री तो सीधे जाकर मांग कर सकता है।
13: कहाँ मांग करेगा
12: आप बताइए ना, कहाँ मांग
13: करेगा? नहीं, मंत्री जैसे अब जहाँ फोरम है वहाँ कहा, अब बात वहाँ नहीं बन रही है।
12: क्यों?
13: अभी वो जातिवाद जनगणना का हवाला है, बात सही है, दम है उसमें, उनकी बात में भी दम है।
12: संजय निषाद जी का सहयोग करेंगे ओम प्रकाश?
13: बिल्कुल करेंगे सहयोग, उनके दहिने रहेंगे महाराज।
12: कुछ लोग कह रहे हैं कि सहयोगी दल जो है बीजेपी के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये सब बोलकर, जिससे कि सीट ज्यादा मिल जाए।
13: नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सीट फीट का झगड़ा नहीं रहता हमारे यहाँ।
0: तो अब ओपी राजभर ने डबल मोर्चा खोल दिया, एक तरफ वो सरकार की नीतियों के खिलाफ संजय निषाद के साथ मिलकर आरक्षण की आवाज बुलंद करने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी गठबंधन पर भी उतनी ही आक्रामकता के साथ वार कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने ओपी राजभर को एनडीए में सिर्फ 3 सीटें मिलने का दावा कर दिया।
14: कौन है वो पीले गमछे वाले? उनको भी हमने बहुत सीटें दी थी, लगता है उनको उससे दुगनी मिलनी चाहिए। जितने भी दल हैं जो हमारे साथ रहे हो न रहे हो हमारे साथ, हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें सीटें भारतीय जनता पार्टी दे।
15: रात में आप सीएम से मिलने जाते हैं?
14: ओ पी तो समझ लो क्या है।
15: बहुत करते हैं सर,
14: पी करते हैं वो,
15: ट्वीट बहुत करते हैं सर, आपको लेके
14: देखिए वो नहीं करते, उनके सब रास्ते बंद कर दिए। देखिए बीजेपी जितनी होशियार है कोई दल होशियार नहीं है, उनके हर रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया, इतने ट्वीट करा दिए, इतने कुछ लिखवा दिया कि अब वो किसी दल में जाने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें देखना 3 सीट देगी, अगर 3 सीट से ज्यादा दे तो हम और आप लोग फिर मिलेंगे।
16: टीएमसी का हाल जो हुआ है वही सपा का होने वाला है, वो हमारे विषय में न चिंता करें, अपनी चिंता करें। और हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे, एक भी सीट एनडीए नहीं देगी तब भी हम किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं।
0: और अब चुनावी सूबे में सियासी फाइट की एक और खबर हम आपको बता देते हैं। कल हमने कांग्रेस सांसद और समाजवादी पार्टी विधायक के बीच तूतू मैमे की खबर दिखाई, अब ऐसी एक और खबर कानपुर से आई है। कानपुर के केशव नगर बीजेपी दफ्तर में यह अफरा तफरी कुर्सी पर बैठने को लेकर हो रही है। खबर है कि प्रदेश महामंत्री शंकर लाल लोधी के स्वागत समारोह में पूर्व जिला मंत्री शिवपूजन सविता और जिला सह मीडिया प्रभारी विनय सिंह राठौर के बीच विवाद हो गया। बात बढ़ने पर दोनों आमने सामने आ गए, हाथापाई भी शुरू हो गई। झड़प के दौरान दोनों के कपड़े भी फट गए। मामला बिगड़ता देख बीजेपी जिलाध्यक्ष दक्षिण शिवराम सिंह ने दोनों को समझाकर अलग अलग किया। हालांकि मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ, कुछ समय बाद दोनों के बीच फिर से झड़प हो गई। इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों ने दोनों को कार्यक्रम स्थल से बाहर भेज दिया। कार्यालय के बाहर भी दोनों एक दूसरे से भिड़ते रहे। अब क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर साहू ने प्रकरण की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसकी रिपोर्ट पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो यहां पर रखेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
17: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
20: EU
21: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

0: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
1: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
2: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पियो आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लद्द से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक
0: नहीं। गुलटनिया और कलखनिया।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: शहीदों का अपमान है, तुष्टीकरण के खिलाफ देश को एकजुट होने का आह्वान। यूपी में जैन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार सख्त, लापरवाही मिली तो तय होगी जिम्मेदारी, सीएम ऑफिस करेगा सीधी निगरानी, सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम कमिश्नर। जेन जी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान, कैबिनेट की बैठक में पीएम का निर्देश, आरएसएस की मीटिंग में भी जेन जी पर मंथन। राजस्थान में मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव कर स्कूलों में फोटोग्राफी पर रोक के फरमान का विरोध, कल तक के लिए स्थगित करने पड़ी कार्रवाई। भारत तंग है कश्मीर, अमेरिका के बयान पर बौखलाए पाकिस्तान, कब्जे वाली घाटी में उठी विद्रोह की चिंगारी, शहबाज मुनीर के खिलाफ पीओजेके की बेटियों की खुली बगावत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

वंदे मातरम पर सियासी संग्राम तेज, दो चंदों के फैसले पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। वंदे मातरम के सिर्फ दो छंद गाने के कांग्रेस के फैसले पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने रखी विभाजन की नींव, किया शहीदों का अपमान। अमित शाह ने कहा 1937 में कांग्रेस ने जो फैसला लिया उसे पीएम मोदी ने सुधारा। अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने वंदे मातरम के दो टुकड़े किए, संसद से पास कानून को नकारा, तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ एकजुट हो पूरा देश। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला, बोले वंदे मातरम के सिर्फ दो छंद गाने का फैसला राष्ट्र का अपमान है। सीडब्ल्यूसी में युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा हमला, पेपर लीक और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा, राहुल बोले राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं मोदी। 800 शहरों तक पहुंचेगा छात्रों की गूंज अभियान, पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को अनुमति, पुलिस ने 30 शर्तें लगाई। कांग्रेस के फैसले के बाद बीजेपी का जोरदार पलटवार, कहा आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। मेरठ में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कांग्रेस पर बोला हमला, कहा संसद से पारित कानून को नहीं मानने वालों को पहले अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। आज से श्री राम मंदिर निर्माण समिति की दो दिवसीय बैठक शुरू, अध्यक्ष उपेन्द्र मिश्रा बोले 30 सितंबर तक राम मंदिर परिसर के अधिकांश निर्माण को पूरा करने की उम्मीद। श्री राम मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाएगा मंदिर का प्रतीक चिन्ह, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष उपेन्द्र मिश्र ने दी जानकारी। यूपी में जैन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार सख्त, बोले जैन अल्फा प्रदर्शनों से निपटने के लिए लाठीचार्ज नहीं, बातचीत की जाएगी। सोशल मीडिया किसी अन्य माध्यम से स्कूलों की व्यवस्थाओं की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच के निर्देश, तुरंत उचित कार्रवाई पर जोर। मुख्यमंत्री योगी के दफ्तर से होगी सीधी निगरानी, सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम कमिश्नर। अयोध्या के सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री पर रोक, बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पारंपरिक वोटर्स के साथ समाजवादी पार्टी का जेन जी पर फोकस, AI मीम्स और शॉर्ट वीडियो से युवाओं को साधने की रणनीति। कल पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम का होगा आयोजन, लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मनाया जाएगा गौरव दिवस। यूपी के सभी जिलों में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि का आयोजन, कार्यक्रम में पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के सम्मान का मुद्दा उठाएगा ओबीसी मोर्चा। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल का एसपी प्रमुख अखिलेश पर पिछड़ों के अपमान का आरोप, कहा राजनीतिक दलों का वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का अखिलेश पर हमला, बोले झूठे फोटो वीडियो से जनता को बरगलाने की कर रहे हैं कोशिश। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का अखिलेश पर हमला, कहा 400 सीटों का दावा कर रहे हैं लेकिन एसपी के पास जिताऊ चेहरे नहीं है और कुनबा मॉडल पर भी उठाए सवाल। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, प्रयागराज में जलभराव को लेकर बोले भ्रष्ट काम और नियत बदले वरना जनता बदल देगी सरकार। लखनऊ में डीआरआई का बड़ा एक्शन, हाथी दांत की 54 कलाकृतियों के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, नेपाल के रास्ते विदेश भेजने की तैयारी। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर एक्शन, इस्लामाबाद की कार्रवाई के जवाब में अवैध ढांचों और अतिक्रमण को हटाया गया। आज 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, चेन्नई पहुंचे अमित शाह, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले अमित शाह ने तमिलनाडु सीएम से की मुलाकात। झारखंड में सीजीएल के सफल उम्मीदवार पहुंचे हाईकोर्ट, झारखंड में सीजीएल के सफल परीक्षार्थी पहुंचे हाईकोर्ट, परीक्षा रद्द करने के सरकारी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार। सत्येन जैन की गिरफ्तारी को दिल्ली की अदालत ने माना सही, टेंडर घोटाला केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 25 अगस्त को बेल याचिका पर होगी सुनवाई। राजस्थान में मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, स्कूलों में फोटोग्राफी पर रोक के फरमान का विरोध, खराब शिक्षा व्यवस्था को बनाया मुद्दा। राजस्थान विधानसभा का आज से मॉनसून सत्र, यूसीसी बिल पेश करेगी राजस्थान में बीजेपी सरकार। राम मंदिर चंदे की सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की मांग, चीन और E20 पर कांग्रेस उठाए सवाल। एनसीईआरटी का बड़ा कदम, क्लास 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की नई किताबें तैयार करने के लिए 20 सदस्यीय टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम का पुनर्गठन। टीम के 4 सदस्य आरएसएस से जुड़े हैं, नई किताबें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 के अनुसार तैयार की जाएगी। आज विशाखापट्टनम में आरएसएस की मीटिंग का दूसरा दिन, जेएनसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना, नितिन नवीन और बीएल संतोष होंगे शामिल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ वारंट जारी, भड़काऊ टिप्पणी के आरोप में कृष्णानगर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का बड़ा बयान, बोले भारत का अहम अंग है जम्मू कश्मीर, हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं।
सर्जी गौर के बयान से बौखला पाकिस्तान, अमेरिकी राजनयिक को किया तलब। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान जारी कर अमेरिकी राजदूत की इस टिप्पणी को तथ्यात्मक रूप से गलत और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। मोदी सरकार शुरू करेगी जेएनजी से संपर्क अभियान, हर रोज एक यूनिवर्सिटी जाएंगे केंद्रीय मंत्री, छात्रों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं चिंताओं को समझेंगे। मोदी कैबिनेट ने 9,450 करोड़ रुपए की चार मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी, चार राज्यों में 8 जिलों को मिलेगा लाभ। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करेगी परियोजना। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, बक्सर भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर के 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक मंजूरी। आज पटना में सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई, यह बैठक TRE4 से जुड़े विरोध के बीच हो रही है। पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, बीपीएससी AEDO परीक्षा में धांधली का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। हिमाचल लगातार जारी बारिश से जगह जगह जलभराव और भूस्खलन, सोलन में नेशनल हाईवे 5 की 1 लेन पूरी तरह से बंद। भूस्खलन की वजह से सड़क पर यातायात प्रभावित, सड़क धंसने से एक ट्रक अस्वतंत्र होकर नाले की तरफ लटका। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर, लैंडस्लाइड से 11 सड़कें बंद, 3 दर्जन गांव का संपर्क कटा। कई जगह ग्रामीण खुद मलबा हटाने में जुटे, मार्ग अवरुद्ध होने से ग्रामीणों के आवागमन में भारी परेशानी। पंचकुला के MDC क्षेत्र में बारिश का कहर, पानी में डूबी कार को बच्चों ने धकेल कर निकाला। कांगड़ा में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, पेड़ गिरने से नेशनल हाईवे बंद, सड़कें पानी से हुई लबालब। अनंतनाग के बाटकूट में अचानक आई बाढ़, नदी नाले उफान पर, कई घरों में घुसा पानी। झांसी में जर्जर रपटा बना मुसीबत, नदी में पानी बढ़ा तो थम गया 3 गांव का रास्ता, शिक्षक बच्चों के हाथ पकड़ कर करा रहे नदी पार। प्रयागराज बाढ़ के चलते बेला नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त, संपर्क मार्ग हुआ बाधित, पुल को किया गया बंद, कई गांवों का संपर्क सड़क मार्ग से टूटा। रामबन में बगलिहार डैम के कई गेट खोले गए, डैम में जमा मिट्टी और गंदगी बाहर निकालने के लिए छोड़ा जा रहा है पानी। डैम के आसपास रहने वाले लोगों को नदी और पानी के तेज बहाव से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। बिजनौर में बाढ़ के हालात का जायजा लेने ट्रैक्टर पहुंची DM जसजीत कौर, CEO ने संभाली स्टीयरिंग। हैदराबाद, हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। बारिश के चलते भगत सिंह चौक और रानीपुर मोड़ पर भरा पानी, वाहन चालकों को भारी परेशानी। शिलांग में एक दिन पहले खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने काले झंडे के साथ निकाली बाइक रैली, इस दौरान शहर में कई जगहों पर हिंसा। रैली के दौरान 31 गाड़ियों को पहुंचाया गया नुकसान और राहगीरों के साथ की गई मारपीट। हिंसक रैली के बाद KSU के अध्यक्ष समेत 3 बड़े नेताओं पर मेघालय पुलिस का एक्शन। KSU नेताओं पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आम नागरिकों पर हमला करने और अन्य अपराधों के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 के अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज। नवादा में थाने से 50 मीटर की दूरी पर दिनदहाड़े फायरिंग, मोबाइल छीनने के विरोध में युवक ने लहराई बंदूक, 20 लोगों पर FIR। पटना में JEE मेंस की तैयारी कर रहे छात्र का हॉस्टल में पंखे से लटका मिला शव, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के सहारनपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को ग्रामीणों ने पीटा, मुंह काला कर चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया, वीडियो वायरल। यूपी के झांसी ललितपुर हाईवे पर हादसा, नियंत्रण ट्रक में बाइक सवार परिवार को रौंदा, करीब 150 मीटर दूर तक घसीटा। यूपी के झांसी में लूट के आरोपी 4 बदमाशों को पुलिस ने किया एनकाउंटर, 2 को लगी गोली, 4th गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में मदरसे की छात्रा से पिछले 1 साल तक मौलवी प्रदीप का आरोप, फरकाबाद ले जाते समय परिजनों ने आरोपी को पकड़ा, मनचला गिरफ्तार। कानपुर में 1 बीघा जमीन के विवाद, बहन की हत्या, 1 साल बाद खुला सड़क हादसे का झूठा राज, आरोपी भाई गिरफ्तार। गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब से 7 की मौत, 2 की हालत गंभीर, मामले के मुख्य तस्कर समेत 21 पर FIR दर्ज, 12 गिरफ्तार। गाजियाबाद में क्लब में युवकों का धावा, संचालन बाउंसर्स को घेर कर पीटा, CCTV में कैद हुई मारपीट। नागपुर में माही अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी और बहन से करवा रही देह व्यापार, पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को छुड़ाया। पुणे में नाबालिग लड़की रेप के बाद हत्या, आरोपी की ये गलती बन गई पुलिस के लिए अहम सुराग। मणिपुर में बरामद रॉकेट लॉन्चर समेत विस्फोटक, दिल्ली के नरेला में किए गए नष्ट। वैशाली में ट्रांसपोर्ट एजेंसी के 800 लीटर प्रतिबंधित काफ सिरप बरामद, अनुमानित कीमत करीब 13 लाख रुपए। कन्नौज में विवाद सुलझाने गए सिपाही को दड़ा दड़ा कर पीटा, 12 लोगों को गिरफ्तार कर निकाला गया जुलूस। चंदौली में वन विभाग की जमीन को खाली कराने गई पुलिस, वन विभाग की टीम से ग्रामीणों की भिड़ंत।
ग्रेटर नोएडा की वुडन डाई कंपनी में भीषण आग, 10 दमकल गाड़ियों ने 3 घंटे में पाया आग पर काबू। जैन के महाकाल में खाद्य विभाग की छापेमारी, गंदगी मिलने पर दुकान सील। इंदौर में छात्र संघ चुनाव की मांग पर बवाल, डीएवीवी का गेट तोड़ा गया, कई छात्रों पर एफआईआर। मुंबई थाने राष्ट्रीय विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,600 लीटर चोरी का पेट्रोल जब्त किया। आपकुंड में मामली का सुनी के बाद जमकर खूनी संघर्ष, महिला सहित 5 लोग घायल। हरिद्वार में कुत्ते ने बचाई मालिक की जान, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक, कई जिलों की स्पेशल टीमें तैनात, जंगल खेतों में कॉम्बिंग, जगह जगह लगाए गए पिंजरे। बॉक्स ऑफिस में तूफान मचाने आ रहे यश, कल से टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग शुरू, दर्शकों में उत्साह। सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर दस्तक दे रही है फिल्म वेलकम टू द जंगल, जियो और स्टार पर स्ट्रीम होगी अक्षय कुमार की ये फिल्म। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो भी अब ओटीटी पर लॉन्च होगी, G5 पर होगी स्ट्रीम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जननायकन ओटीटी पर स्ट्रीमिंग को तैयार। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी तमिल रोमांटिक फिल्म प्यार प्रेमा कल्याणम।

0: लंच ब्रेक आपके साथ मैं नेहा बातम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो कि राष्ट्रीय वंदे मातरम गीत को लेकर अमित शाह के बयान से जुड़ी हुई है। गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला हुआ है। कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा ना गाना तुष्टीकरण और राष्ट्र विरोधी है, यह अमित शाह का कहना है। 1937 में कांग्रेस ने फैसला लिया था, उसे पीएम मोदी ने सुधारा। कांग्रेस 1937 में राष्ट्रगीत के टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था, इसने देश के बंटवारे की नींव रखी और आज कांग्रेस पार्टी अपने 1937 के प्रस्ताव को लागू कर रही है, लेकिन संसद के बनाए गए कानून को खारिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। देश की जनता कांग्रेस के इस फैसले को नहीं सहेगी।
1: कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है, आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अमित शाह कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों की तुष्टीकरण की ये राजनीति है, लेकिन कानून इस मामले में पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। अगर आप दो पैरा गाते हैं, ये कानून के दायरे में है या नहीं है, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कांग्रेस इस पर अभी भी अडिग है, ऐसे में बीजेपी का क्या एक्शन संभव है?
2: देखिए बिल्कुल, क्योंकि गृहमंत्री ने साफ कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है देश की जनता के सामने जाएगी, यानी कि जगह जगह सेमिनार्स होंगे, प्रोटेस्ट होंगे। और देखिए बिल्कुल, गृहमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि देश की जनता के सामने जो है भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर जाएगी और ये बताएगी कि किस तरीके से जो है कांग्रेस जो है वंदे मातरम का विरोध कर रही है। 2037 में जब वंदे मातरम के 6 स्टैंजा छंद में से 2 छंदों को जो है वो पढ़ने का प्रस्ताव पास हुआ था, तब दो नेशन थ्योरी को जो है वो माना गया था और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ही जो है वो बाकी 4 छंद नहीं गाए गए। अब जब ये कानून का रूप ले चुका है तो अब इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हमने इसको ठीक किया है, ये तुष्टीकरण से बाहर लाने का काम जो है वंदे मातरम को किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है वो देश विरोधी काम कर रही है जब वंदे मातरम का विरोध कर रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को

0: कोशिश करेगी कि लगातार कांग्रेस पर ये हमला करे और ये देश की जनता को बताए कि वंदे मातरम का विरोध करके जो है कांग्रेस देश विरोधी काम कर रही है। वंदे मातरम के दो ही छंद गाए जाए इसको लेकर जो है कोई भी कानून नहीं था। अब जो नया कानून लाया गया है उस कानून के तहत ये साफ है कि पूरे 6 छंद गाने होंगे और अगर कोई नहीं उसका गायन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा प्रोविजन जो है वो इस कानून के अंदर है। अब देखना यह है कि क्या कानूनी लड़ाई देश भर में जो प्रदर्शन होंगे कांग्रेस के खिलाफ वो तो होंगे, क्या कानूनी लड़ाई भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई अन्य संगठन वो इसको कोर्ट के अंदर लेकर जाएगा।
1: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं, बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस की बैठक में साफ कर दिया गया कि वो सिर्फ 2 ही छंद गाएगी।
2: वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज अवर डिसीजन। हाँ, फर्स्ट टू चांस था।
3: कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
1: वहीं 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलील दी कि कांग्रेस क्यों वंदे मातरम के दो पैरा के पक्ष में है।
4: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गया। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा, कल के दिन दूसरी सरकार आएगी वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम की।
1: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, खड़गे जी तो रेजोल्यूशन का हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन तो बहुत पहले ही पास हो गया था कि किस तरीके से राष्ट्रगीत गाना है, अब जितनी बार सरकार आएगी तो क्या इसका पूरा का पूरा जो परिप्रेक्ष्य है उसे बदला जाएगा या कैसे इसे गाया जाएगा वो हर सरकार अलग तरीके से बताएगी।
0: देखिए बिल्कुल कांग्रेस से इस बात को लेकर पूरी तरीके से जो है वो अब अड़ गई है और कांग्रेस का ये मानना है कि जो 80 सालों से 2 छंद गाए जा रहे थे वंदे मातरम के, हम उसी के पक्षधर हैं। और क्या सरकार अपने हिसाब से इसको बदल सकती है या इसमें कुछ बदलाव कर सकती है, अमेंडमेंट, ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है इसको लेकर जो है कोर्ट जाए और इस जो कानून है इसमें जो भी बदलाव किए गए हैं उस पर कोर्ट के अंदर जाके जो है दरवाजा खटखटाए और अपनी बात को रखे। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर जो है वो कांग्रेस को घेरना चाहती है और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से साफ कर दिया गया है, देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है देश की जनता के सामने जाएंगे और आने वाले दिनों में हो सकता है कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट भी करे और साथ ही साथ देश के अलग अलग जो प्रबुद्ध जन है उनके सेमिनार्स आने वाले दिनों में देखे। और जैसे जैसे ये मामला बढ़ता जाए, चुनाव आते जाएंगे, 2027 में विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों में से पहले भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनाना चाहती है, राष्ट्रवाद बनाम जो है राष्ट्र विरोधी। आज गृह मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस जो है वो राष्ट्र विरोधी है और वो देश को बांटने का काम कर रही है, क्योंकि ये जो 2 छंद है ये जब प्रस्ताव लाया गया था वो सिर्फ तुष्टिकरण के कारण जो है वो लाया गया था और जिस दिन ये प्रस्ताव पास किया गया था उसी दिन से तय हो गया था कि 2 राष्ट्र की जो थ्योरी है उस पर कांग्रेस काम कर रही है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वंदे मातरम में कांग्रेस और बीजेपी तलवारें खिंच चुकी है।
5: तरह का कोई भी कृत्य वो गैर कानूनी भी है, कानून के तहत

0: कार्रवाई करने के योग्य भी है। इस तरह की गतिविधियां हरकतें अगर कोई करता है, और पार्टी किसी नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, ऐसे पार्टी के मुखिया की उपस्थिति में अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति और देश के मानबिंदुओं के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, उनकी कितनी आस्था है, उनकी कितना उनके मन में पवित्रता का भाव है, देश के सामने प्रकट हो जाता है।
1: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा, नहीं मैंने पहले भी गाया अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें कौन नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।
2: और अब बात कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी की करेंगे, जहां पर एसएफआई और एबीवीपी के बीच झड़प के बाद तनाव की एसएफआई पर एबीवीपी समर्थकों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। खबर के मुताबिक दोनों गुटों के बीच ये टकराव यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कल रात हुआ, और इस घटना में दोनों पक्षों के कई समर्थकों के घायल होने की खबर है। फिलहाल जादवपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। एसएफआई और वामपंथी संगठनों ने बुधवार को जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई। एबीवीपी का कहना है कि अभी कोई एक्टिव स्टूडेंट यूनियन नहीं है और ना ही सरकार ने स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर कोई निर्देश या नोटिफिकेशन जारी किया है। उनका सवाल है कि ऐसे हालात में वामपंथी संगठन जनरल बॉडी मीटिंग कैसे बुला सकते हैं। आरोपी है कि 70-80 लोगों के एक ग्रुप ने मीटिंग का विरोध किया, एबीवीपी समर्थकों पर हमला किया जिससे दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इसके बाद लेफ्ट स्टूडेंट से आरोप लगाया कि एबीवीपी ने बाहर के लोगों को लाकर उन पर हमला करवाया। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ये जो समर्थकों की झड़प हुई है इसकी दरअसल वजह क्या रही, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपना अपना वर्जन बता रहे हैं।
3: जी देखिए, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और लेफ्ट स्टूडेंट्स के बीच इससे पहले भी कई बार झड़प हो चुकी है। खासतौर पर जादवपुर यूनिवर्सिटी में इस वक्त क्या बहुत सालों से लेफ्ट के स्टूडेंट्स का कब्जा रहा है। ऐसे में एबीवीपी की ओर से कोशिश की जा रही है कि वहां पर अपना पांव जमाया जाए, और इसी सिलसिले में पिछले कई सालों में कई बार झड़प की स्थिति और हालात हुए हैं, और इस बार भी लगभग यही स्थिति हुई है। लेकिन इस बार का केंद्र है जीबी मीटिंग, जहां एबीवीपी का आरोप है कि जीबी मीटिंग कैसे की जा सकती है, और इसी को लेकर बवाल हुआ। वहीं एसएफआई और लेफ्ट स्टूडेंट्स का आरोप है कि उन पर बाहर के लोगों के द्वारा अंदर घुसाकर हमला किया गया। लेकिन इसके बाद तनाव को देखते हुए भारी संख्या में, मैं आपको दिखाऊंगा, पुलिस बल भारी संख्या में जादवपुर यूनिवर्सिटी के पास, जो जादवपुर थाना है, वहां पर तैनात किया गया है। और ये दो रैली निकलने की बात है, एक एसएफआई के स्टूडेंट्स की और एक एबीवीपी की। तो उनको विश्वविद्यालय जाने से और आमने सामने होने से रोकने के लिए ही ये फोर्स को तैनात किया गया है। विश्वविद्यालय के ठीक बाहर सीआरपीएफ की महिला जवानों को तैनात किया गया है। तो भारी संख्या में पुलिस बल की इस वक्त तैनाती है यहां पर। एबीवीपी के जो लोग हैं ये सामने से वो रैली करके आने वाले हैं, जिनको यहां पर रोका जाएगा। वहीं जो एसएफआई के लोग हैं उनको भी जादवपुर में 8B एक जगह है यूनिवर्सिटी के पास, उस जगह पर रोक दिया गया है, वो इस तरफ है। तो इस वक्त ये जो तनाव का माहौल है इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल जरूर तैनात कर दिया गया है पूरे इलाके में।
2: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहां रुकना होगा फिर से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये छोट खर्चा वर्चा।
10: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
9: छक्का?
10: सब कैशलेस हो गया
9: है।
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट,
13: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

वंदे मातरम में सिर्फ दो छंद गाने से कांग्रेस के फैसले पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस से रखी विभाजन की नींव, ये शहीदों का अपमान है, तुष्टिकरण के खिलाफ देश को एकजुट होने का आह्वान। यूपी में जैन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार सख्त, लापरवाही मिली तो तय होगी जिम्मेदारी, सीएम ऑफिस करेगा सीधी निगरानी, सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम कमिश्नर। जैन जी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान, कैबिनेट की बैठक में पीएम का निर्देश, आरएसएस की मीटिंग में भी जैन जी पर मंथन। राजस्थान में मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव कर स्कूलों में फोटोग्राफी पर रोक के फरमान का विरोध, कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई।

0: नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा बाथम। यूपी के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात है। बिजनौर से बनारस तक गंगा उफान पर है। सबसे बुरा हाल बिजनौर का है। यहां पर गंगा का पानी खतरे के निशान के पार है। कई छोटी छोटी नदियां भी इस वक्त उफान पर है। वहीं कानपुर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बनारस में भी तमाम घाट पानी में डूब गए।
1: पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी दिख रहा है। उत्तराखंड से सटा ये यूपी का जिला बिजनौर है, जहां गंगा नदी उफान पर है। गंगा के रास्ते में जो भी आ रहा है वो इसी तरह लहरों के साथ बहता चला जा रहा है। बिजनौर में इस समय सिर्फ गंगा नहीं बल्कि उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां भी उफान पर है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते बिजनौर में बाढ़ आ गई है। गंगा खतरे के निशान के करीब है। सहायक नदियां भी पूरे उफान पर हैं। बिजनौर में बिजनौर हरिद्वार रोड पर बालन नदी का पानी सड़क पर 2 से 3 फीट ऊपर बह रहा है। सबसे बुरे हालात नगीना तहसील में है, जहां पर खो नदी कहर बरपा रही है। खो नदी के कटान में कई खेत बह गए। नदी किनारे बना मंदिर और हैंडपंप भी पानी में बह गया।
2: बिजनौर में हालात इतने खराब है कि गंगा खतरे के निशान पर है तो सहायक नदियां भी उफान पर है। इस समय बिजनौर में गंगा और खो नदी अपने पूरे उफान पर है।
1: बाढ़ के चलते चांदपुर मवाना रोड को बंद करना पड़ा। चांदपुर के लपुर में तो गंगा का पानी कई गांवों में घुस गया है। स्टेट हाईवे पानी में डूबा है। मजबूरी में लोग अपने वाहनों को ट्रैक्टर ट्राली पर रखकर अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। बाढ़ की वजह से हजारों बीघा जमीन जलमग्न हो गई। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर है। पौड़ी गढ़वाल से निकलने वाली इस नदी में पहाड़ों से पानी आ रहा है, जिसकी वजह से इसके मैदानी इलाके सतर्क हो गए हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी चेतावनी बिंदु को पार कर गई है। कानपुर के गंगा घाटों पर इसी तरह से पुलिस की टीमें नावों से गश्त कर रही हैं, लोगों को आगाह कर रही हैं कि गंगा तट से दूर रहें, गंगा किनारे ना जाएं, क्योंकि गंगा जी में पानी तेजी से बढ़ रहा है। कानपुर के कई घाट पानी में डूब गए हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीमें संवेदनशील इलाकों की पहचान कर रही हैं, जहां खतरा ज्यादा है।
3: बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के खतरे के बीच में प्रशासन द्वारा कमर कस ली गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह मौके पर जाकर घाटों के पास निरीक्षण करने पाए और अगर सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लेने पाए। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, जो खुद बोट के जरिए अपने बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं घाटों का। स्पीकर के जरिए लोगों को चेताया जा रहा है कि वह किस तरीके से सावधान रहे, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो डेंजरस मार्क पे लगभग पहुंच चुका है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर द्वारा उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है जहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। घाटों के पास से गुजरते हुए आप देखेंगे यहां पर लोगों के घर भी है जो वहां पर रहते हैं, और ठीक 2 से 3 फीट दूर ही अब गंगा रह गई है। और किसी भी वक्त जो वाटर लेवल है जो नरोरा बैंक से जो है छोड़ा जा चुका है वो इन घरों के ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कैसे लोगों को यहां से शिफ्ट करने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ेगी तो यहां से उनको दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा। इसी को देखने के लिए पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर मौजूद।
1: गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए कानपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कानपुर के आला अफसर खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कानपुर बैराज पर अपस्ट्रीम जलस्तर 113.570 मीटर और डाउनस्ट्रीम जलस्तर 113.420 मीटर दर्ज किया गया। वहीं बैराज से करीब 2,91,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी जल स्तर चेतावनी स्तर से नीचे है, लेकिन प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। हरिद्वार बैराज से 1,18,622 क्यूसेक और नरोरा बैराज से 1,15,137 क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया है, जिस वजह से आने वाले दिनों में जल स्तर और बढ़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए कानपुर में गंगा किनारे के इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। अब जरा वाराणसी की भी तस्वीरें देखिए। काशी के सभी घाट जल समाधि ले चुके हैं। गंगा का पानी अब बनारस की गलियों में घुसने लगा है। घाटों पर बने मंदिर डूब गए हैं। बनारस में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन की टीमें भी अलर्ट हैं। मणिकर्णिका घाट भी पानी में डूब गया है। अब घाट की बजाय छत पर चिताएं जल रही हैं।
4: बाढ़ की विभीषिका ने डराना शुरू कर दिया है। वाराणसी में पक्के घाटों को डुबोने के बाद अब गलियों का रुख बाढ़ के पानी ने कर लिया है। यही वजह है कि जो महाशमशान मणिकर्णिका घाट के सभी गंगा घाट किनारे प्लेटफॉर्म हुआ करते थे वे पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और हमारे ठीक सामने जो छत है ऊंचा मचान है ऐसे ही हालातों के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर महज एक बार में 200 ही अंतिम संस्कार किए जा सकते हैं, जिसको लेकर शव यात्रियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी, तंग रास्ते, सकरे रास्ते से होकर शव यात्रियों को आना पड़ रहा है और काफ़ी इंतजार भी करना पड़ रहा है। देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी किस तरह से गंगा घाटों को डुबोने के बाद अब इस मणिकर्णिका घाट के रास्ते गलियों में घुसना शुरू कर दिया है।
1: भारी बारिश और बाढ़ की वजह से यूपी के कई जिले परेशान हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं, लोगों को आगाह कर रही हैं कि नदियों के किनारे न जाएं, लहरों से दूर रहें। बिजनौर से संजीव शर्मा, कानपुर से सिमर चावला के साथ रोशन जायवाल, वाराणसी आज तक।
0: और अब बात पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश की और उसकी वजह से आई आफत की। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में भी नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में बहुत बुरे हालात हैं क्योंकि बारिश का पानी शहर के अलग अलग इलाकों में घुस चुका है। ये रिहायशी इलाके भी हैं। वहीं हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक फ्लैश फ्लड से लोग सहम गए। और इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे ज्यादा बुरे हालात इस वक्त प्रयागराज में बताए जा रहे हैं क्योंकि संगम नगरी में लगातार पिछले 3 से 4 दिन से बारिश हो रही है और इसकी वजह से रेलवे ट्रैक डूब गए हैं, पौश इलाकों तक पे पानी घुस गया है। गंगा यमुना जो उफान पर है उसका भी मुश्किल बढ़ा रही है। बाढ़ का पानी अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि शहर तक घुस चुका है और बारिश का पानी शहर से निकल ही नहीं रहा है। जल निकासी के सारे दावे कागजी साबित हो रहे हैं।
1: ये प्रयागराज है, संगम नगरी प्रयागराज। कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है लेकिन अभी तो एक्वा सिटी प्रयागराज बनी हुई है। बादल आए, बरसे और चले गए लेकिन स्मार्ट सिटी का सिस्टम देखिए कि पानी जहां के तहां जमा है। ये प्रयागराज का सिवाय चिंतामणि रोड है। कहने को ये पौश इलाका है लेकिन पौश इलाके की मूलभूत व्यवस्था यही है कि पानी की वजह से बिजली पानी सब बंद है।
5: सामने देखिए पानी है, लहरें हैं और इसी पानी और लहरों की वजह से लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। उनके सामने समस्याएं हैं, लाइट उनको 3 दिन से नहीं मिल रही, घर में पानी नहीं मिल रहा है और हर एक शख्स अपने घरों में इस वक्त कैद है। वजह यह है कि यहाँ प्रयागराज में बारिश हुई, उस बारिश की वजह से घरों के सामने सड़कें हैं, वहाँ जलभराव की स्थिति है और ये पानी जो बारिश का पानी है सड़कों के अलावा घर में भी घुस गया है। आलम यह है कि लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं बारिश के पानी ने इन सभी लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट कर लिया है।
1: लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि घर के बाहर निकले तो रोड पर पानी, घर पर रहें तो कमरे में पानी। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा दिक्कत उन बच्चों को हो रही है जिनकी परीक्षाएं हैं, क्योंकि जल भराव की वजह से बिजली कट गई है, पीने के पानी तक का संकट हो गया है।
6: भैया इसीलिए कैद होना पड़ रहा है, पहली बात तो हम लोग के घर में बहुत सारा पानी घुस चुका है तो हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, मेरे स्कूल में दो बार छुट्टी हो चुकी है, हम लोग के 2 एग्जाम कैंसिल हो चुके और हम लोग के एग्जाम लगातार होने वाले थे लेकिन अब दो दिन उसमें और लगेगा, जो कि हम लोग के लिए बहुत घातक चीज होती है, जानते हैं बच्चों के लिए। और हम लोग को बिल्कुल क्या ही बोले भैया, इतना गंदा पानी है, हम लोग उसी में चल रहे हैं, हम लोग को उसमें चलना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना भैया, ऐसे कि सामान आ पाए घर का।
7: दिक्कतें बहुत है भैया, हम लोग समझिए घर में बंद हो गए, कैद हो गए हैं, जिसको कहते हैं जेल, हम लोग जेल में बंद है। ना हमारे पास पानी है, ना लाइट, हम लोग रात रात भर नहीं सोए, पंखा पुराना दिया बत्ती अगरबत्ती यही सब कर रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है, किसी तरह जो जरा से इकट्ठा पानी हुआ तो उसको उबाल के ठंडा करके वही पी रहे हैं।
8: वजह सरकार का भ्रष्टाचार है, वर्तमान भाजपा सरकार का। हम लोग भाजपा के वोटर रहे हैं लेकिन अगर अब नहीं बोलेंगे तो ये पानी हमारे सर पे चढ़ जाएगा और जिसको हम लोगों ने सर से उठा के जमीन से ऊपर बैठाया है उसके नेता बेअंदाज हो गए हैं। हम लोग जो लगातार सबसे इलीट क्लास है, भाजपा को सपोर्ट करता रहा, उन्होंने बाहर के टेंडर को, बाहर के ठेकेदारों को ठेका दिया है, सारे नाले अंडरग्राउंड हुए हैं जो कि चौक है और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना सभासद आए, ना विधायक आए, ना सांसद, तीनों भाजपा के।
1: आसमान से मानो आफत बरस रही है, बादल मानो इस संकट से बेफिक्र हैं। संकट काल की ये तस्वीरें प्रयागराज की, व वहां रामबाग रेलवे स्टेशन के हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बारिश हुई है। पिछले तीन दिनों से प्रयागराज में मूसलाधार बारिश जारी है। इस वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रयागराज में अधिकतर जगहों पर बारिश का पानी भर चुका है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर समंदर जैसे हालात, तो लोगों के घरों तक बारिश का पानी पहुंच गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इस संकट के बीच हाउस अरेस्ट जैसे हालात, जरूरी काम से बाहर निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। वहीं घर की महिलाओं का कहना है, पिछले तीन दिनों से घर के अंदर बाहर बारिश का पानी भर गया है। ये प्रयागराज के जॉर्ज टाउन का यूनियन बैंक है। जलभराव की वजह से बैंक बंद है। बैंक ही नहीं, शहर के कई प्रमुख अस्पतालों के आसपास भी पानी भरा हुआ है।
9: जहां पर जल भराव की वजह से बंद किया, दूसरे दिन भी पानी यहां पर भरा हुआ है। ऐसा ही नजारा बैंक के अलावा अगर आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो कुछ नजारा बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप देखिए सामने जो घर हैं, उन घरों के सामने भी वही स्थिति है, और दूसरी तरफ देखेंगे तो यहां पर जो है एक हॉस्पिटल है, प्रीति नर्सिंग होम, उसकी तरफ भी देखेंगे तो वहां भी पानी भर गया है और गाड़ियां डूबी हुई है, लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। और आलम यह है कि देखिए पहले हॉस्पिटल, उसके बाद बैंक, यानी बैंक तो डूबा ही डूबा, हॉस्पिटल भी देखिए पूरी तरीके से पानी से भर गया।
1: गंभीर स्थिति के बीच प्री प्राइमरी से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आनंद राज के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
0: और बाढ़ की क्या स्थिति है अब ये भी जान लेते हैं, क्योंकि संगम नगरी में गंगा यमुना का पानी तेजी से बढ़ रहा है लेकिन अभी भी पानी खतरे के निशान से नीचे है। संगम तट पर बने प्रसिद्ध बड़े हनुमान जी मंदिर के पास पानी पहुंच गया है लेकिन अभी तक गंगा जी ने हनुमान जी को स्नान नहीं कराया है।
4: प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं और हनुमान मंदिर के पास हैं। यहाँ पर ये गंगा का पानी आ गया है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे हनुमान मंदिर की जो दीवार है यहाँ तक ये पानी आ गया है। अब इन रास्तों पर जहाँ गाड़ियाँ चला करती थी, आज उन रास्तों पर नाव चल रही। आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और संगम जाने का रास्ता है, इन सड़कों पर अब नाव चल रही है। जो यात्री हैं, जो तीर्थयात्री हैं और श्रद्धालु हैं, इन सड़कों पर ही स्नान कर रहे हैं। और ये आप जब अंदर की तरफ आएंगे तो ये संगम जाने का रास्ता है, इन रास्तों पर अब ये बाढ़ का पानी आ गया है। अब नाव इन रास्तों पर चल रही है। जो यहाँ पर भिक्षा मांग करके लोग रहते थे, उनकी जो झोपड़ियाँ हैं वो डूब रही हैं। तीर्थ पुरोहित अपना सामान बाहर सुरक्षित निकाल रहे हैं।
0: बात अब पहाड़ों की। यहाँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड है। हिमाचल कांगड़ा में नेशनल हाईवे पर अचानक पानी आने से कई लोग फंस गए। वहीं शोपियां अनंतनाग में फ्लैश फ्लड की वजह से लोग सहम गए।

0: कांगड़ा घाटी में लगातार बारिश और बारिश के साथ बढ़ता खतरा। ये तस्वीरें कांगड़ा के प्रागपुर इलाके की हैं, जहां फ्लैश फ्लड से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। बहाव इतना तेज था कि कांगड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे तक पानी पहुंच गया। पानी के तेज बहाव के बीच में एक कार सवार फंस गया। कार ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज थी कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और कार में सवार लोगों को बाहर निकाला, लेकिन कार पानी में बह गई। एक पल पहले जो कार सड़क पर थी, अगले ही पल वो बाढ़ के पानी में बहती दिखाई दी। ये तस्वीरें बताती हैं कि पहाड़ी इलाकों में अचानक बढ़ता जलस्तर कितना खतरनाक हो सकता है। कांगड़ा में सिर्फ पानी ही परेशानी नहीं बना, भारी बारिश के बीच कांगड़ा शहर में एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया। होशियारपुर रोड पर गिरे इस पेड़ की वजह से नेशनल हाईवे 503 पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पेड़ की चपेट में बिजली की लाइनें भी आ गईं, जिससे इलाके की बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। लाहौल स्पीति के दूर दराज इलाके में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। चौखंग इलाके की पहाड़ियों पर हुई तेज बारिश के बाद गौरी नाला अचानक उफान पर आ गया। पहाड़ों से आया पानी अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाया, बल्कि मलबा, बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी का सैलाब सड़क तक पहुंच गया। तेज बहाव की वजह से चौखंग नाइंगर लिंक रोड को भी भारी नुकसान हुआ। अब जरा जम्मू कश्मीर का हाल देखिए। दक्षिण कश्मीर में आसमान आफत बनकर बरसा। शोपियां में भारी बारिश के बीच खीरपोरा इलाके में क्लाउड बस्ट के बाद फ्लैश फ्लड की खबरें सामने आई। पहाड़ों से अचानक पानी नीचे की तरफ आया और देखते ही देखते नाले ओवरफ्लो करने लगे। पानी की रफ्तार बढ़ी तो निचले इलाकों के गांवों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया, लेकिन अलर्ट से मुसीबत अपना रास्ता नहीं बदलती। शोपिया के जिन गांवों से ये सैलाब गुजरा, अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। कुछ देर बाद पानी तो निकल गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया मलबे का ढेर। अब जरा अनंतनाग की तस्वीरें भी देखिए। घरों के बीच में पानी ऐसा आ गया मानो ये मकान किसी नदी पर बनाए गए हों। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आंगन तक पानी भर गया। ऊंचाई वाले इलाकों में जब मूसलाधार बरसात होती है तो निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी इन दिनों फ्लैश फ्लड की घटनाएं बढ़ गई हैं। नालों में उफान, सड़कों पर पानी और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश। इन तस्वीरों में एक बात कॉमन है, पहाड़ों में बारिश जितनी तेजी से होती है, खतरा उतनी ही तेजी से बढ़ता है। और ऐसे में जरूरत है सावधानी की, जरूरत है सतर्कता की, और सबसे बढ़कर तेज बहाव वाले पानी से दूरी बनाए रखने की। आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात स्मार्ट सिटी सतना की करेंगे, क्योंकि यहां पर विकास के दावों की पोल लगातार खुल रही है। 12 घंटे की झमाझम बारिश ने स्मार्ट सिटी के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। शहर के निचले इलाकों से लेकर मुख्य मार्ग तक पानी दिखाई दे रहा है। सड़क हो या फिर कॉलोनियां हो, हालात ये हो गए हैं कि सड़कें स्विमिंग पूल की तरह दिखाई दे रही हैं। प्रेम नगर रेलवे अंडरब्रिज के पास पानी में वाहन बंद होने से वहां पर निकलना दूभर हो गया है। 1100 करोड़ खर्च करने के बाद भी थोड़ी सी बारिश में शहर के जलमग्न होने से जनता में नगर निगम और प्रशासन खिलाफ भारी गुस्सा है। ये हाल एमपी के सतना का है, जिसे स्मार्ट सिटी बताया जाता है, लेकिन हाल देखिए 12 घंटे की बारिश में क्या हो गया है। सड़कों पर पानी है और वहां पर वाहन एक एक करके खराब हो रहे हैं। बात पंचकुला की करेंगे, जहां बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद रेलवे लाइन के नीचे बना अंडरपास पानी से डूब गया। एक कार भी पानी में फंस गई। कार को निकालने के लिए स्थानीय लोगों को आगे आना पड़ा। इसमें दरअसल बच्चे शामिल थे, जिन्होंने आगे आकर मोर्चा संभाला और पानी के बीच जो अटकी हुई कार थी उसे धक्का देकर बाहर निकाला। घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो ये पंचकुला की तस्वीर, जहां पर इस कार का रेस्क्यू इन बच्चों ने किया, धक्का देकर इस कार को इस अंडरपास से बाहर निकाला। कुछ ही घंटों की बारिश में इस अंडरपास में जल जमाव हो गया था, इसके बावजूद कोई निकासी पानी की नहीं हो रही थी। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर इस वक्त बाढ़ का कहर जारी है। बंगाल के कई इलाके इस वक्त मॉनसून की मार झेल रहे हैं। आसनसोल के अलावा पश्चिम मेदिनीपुर में बाढ़ के चलते कई इलाके जलमग्न हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एरियल सर्वे कर हालात का जायजा लिया। आसनसोल में भारी बारिश के बाद नदी का पानी लोगों के घरों तक घुस चुका है। 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। कई घरों में लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। वहीं पुरुलिया में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात है। देखिए रिपोर्ट। तो शुभेंदु अधिकारी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया है। हवाई सर्वे में आप देख सकते हैं कि ज्यादातर इलाके जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं जो आसपास के इलाके हैं, जो राज्य हैं, असम है, वो भी बाढ़ से प्रभावित है। छतों पर शरण लेने को लोग मजबूर हैं। वक्त एक ब्रेक का उछला, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का,
3: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
2: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
4: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
5: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है,
6: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
7: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
2: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम मेलो केंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा। आज तक
8: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: We are with you, friends.
1: इस तरह का कोई भी कृत्य वो गैर कानूनी भी है, कानून के तहत कार्रवाई करने के योग्य भी है। इस तरह की गतिविधियां हरकतें अगर कोई करता है और पार्टी किसी नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, ऐसे पार्टी के मुखिया की उपस्थिति में अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति और देश के मानबिंदुओं के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, उनकी कितनी आस्था है, उनकी कितना उनके मन में पवित्रता का भाव है, देश के सामने प्रकट हो जाता है।
2: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। नहीं, मैंने पहले भी नहीं गाया, अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।

0: वंदे मातरम के सर दो छंद गाने के कांग्रेस के फैसले पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने रखी विभाजन की नींव, ये शहीदों का अपमान। तुष्टिकरण के खिलाफ देश को एकजुट होने का आह्वान। मुंबई के ठाणे में मराठी सीखने की डेडलाइन खत्म होने के बाद ऑटो टैक्सी ड्राइवरों से मराठी में सवाल पूछ रहे हैं आरटीओ अफसर। ड्राइवरों का छलका दर्द, कहा जवाब न देने पर नोटिस मिलने का दावा। जनजी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, यूपी में स्कूलों की बद इंतजामी के लिए डीएम कमिश्नर होंगे जिम्मेदार। सीएम योगी का सख्त निर्देश, आरएसएस की मीटिंग में भी जनजी पर मंथन। राजस्थान में मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव कर स्कूलों में फोटोग्राफी पर रोक के फरमान का विरोध, कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। भारत का अंग है कश्मीर, अमेरिका के बयान पर बौखलाए पाकिस्तान के कब्जे वाले घाटी में उठी विद्रोह की चिंगारी। शहबाज मुनीर के खिलाफ पीओजेके की बेटियों की खुली बगावत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत की।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज गए न्यूज रूम लाइव में, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा न्यूज रूम लाइव में होता है, बड़ी खबरें आपको बता देते हैं कि किन बड़ी खबरों पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे वंदे मातरम की लड़ाई अब विभाजन पर आ गई है। गृहमंत्री अमित शाह आते हैं, मोर्चा खोल देते हैं, राहुल गांधी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा देते हैं। दूसरी बड़ी खबर जो आज हम बात करने जा रहे हैं, वो स्कूलों के बारे में बात करेंगे। जेन जी जेन अल्फा प्रदर्शन करने के मूड में आ गए हैं, सरकारों की नींद उड़ा दी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर वो हम आपको बता दें, तीसरी बड़ी खबर आज क्या होने वाली है। गंगा में उफान है और प्रयागराज से लेकर काशी तक हर आम इंसान परेशान है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि बारिश की वजह से क्या चेतावनियां जारी की गई लोगों के लिए। और ठीक आधे घंटे बाद आपको बताएंगे अमेरिकी राजदूत का एक बयान आता है कश्मीर को लेकर, जो भारत का अंग बताते हैं, उसके बाद कैसे पाकिस्तान तिलमिला गया है। ठीक ढाई बजे हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद, कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार का निधन हो गया है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बताया जा रहा है कि अचेत होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस के सांसद सज्जन कुमार पूर्व कांग्रेस सांसद नहीं रहे, सफदरजंग अस्पताल में मृत घोषित किए गए हैं और डॉक्टर्स की टीम ने उनको मृत घोषित किया। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बेहोश होने के बाद अस्पताल लाया गया था उनको। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल पाई है?
2: देखिए, जो सज्जन कुमार है, 80 साल से ज्यादा इनकी उम्र थी और बीमार चल रहे थे काफी लंबे वक्त से, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सज्जन कुमार की अगर बात करें तो कांग्रेस के ये पूर्व नेता थे हिमांशु, और 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उसमें इनकी बड़ी भूमिका पाई गई थी, कई आरोप लगे थे, जिसके बाद इनको गिरफ्तार भी किया गया था और हाईकोर्ट ने इनको उम्र कैद की कही थी। दिल्ली के पालम और सुल्तान पूरी इलाके में जो 1984 में दंगे हुए थे उसमें भीड़ को भड़काने का इन पर आरोप था, जिसके बाद सज्जन कुमार को लेकर काफी विवाद होता था, उसमें सजा सुनाई गई थी, तिहाड़ जेल में थे जहाँ तबीयत बिगड़ी, उसके बाद
0: तो बिल्कुल देखिए, बेहोश होने के बाद उनको अस्पताल लाया गया था और ये बताया जा रहा है कि उसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने उनको मृत घोषित किया है और काफी लंबे वक्त से बीमार भी बता रहे थे, ऐसा बताया जा रहा था। तिहाड़ जेल में बंद थे सज्जन कुमार, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया था। और अब एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ, और लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के गोमती नगर में एक बैंक कर्मचारी की हत्या का मामला सामने आया है और उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर सनसनी फैली हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर में आईसीआईसीआई बैंक के बाहर महिला दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिव्या मिश्रा आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर तैनात थी, लखनऊ की रहने वाली थी और जो लोग वहां पर मौजूद थे और बैंक कर्मचारियों के मुताबिक आरोपित महिला का पति बताया जा रहा है। आरोपित टेम्पो से बैंक के बाहर पहुंचा और दिव्या मिश्रा से कुछ देर बातचीत की। बातचीत के दौरान आरोपित ने अचानक से पिस्टल निकाली और उसके बाद दिव्या मिश्रा पर दो गोलियां चला दी। आशीष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, और क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है इस पूरे केस से जुड़ी हुई? आशीष,
3: सबसे बड़ी बात है कि तीनों लोगों की मौत हो गई है। इसमें मानस वाजपेयी जो इसमें मेन आरोपी है, जिसने गोली मारी है, पहले उसने अपने पत्नी को गोली मारी, फिर उसने बहन को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली है। ये वो जगह है जहां पर मानस वाजपेयी मौजूद था, क्योंकि पत्नी से काफी समय से विवाद चल रहा था और वो यहां पर नहीं मिलता था, यानी कि उसके साथ नहीं रह रहा था। और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं इस विवाद को देखा गया, जिसके बाद आज जब वो, क्योंकि बैंक भी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है और इसी रेस्टोरेंट के पास में वो मौजूद थी, इसके बाद यहाँ पर पहुंचता है मानस वाजपेयी जो आरोपी था। इसमें कह सकते हैं एक तरीके से पहले जब उसने गोली मारी, ये पति था, उससे काफी दिनों से विवाद चल रहा था पत्नी से, जो दिव्या मिश्रा थी, और इसको लेकर वो अलग अलग भी रह रहे थे। इस दौरान उसने अपनी बहन को भी गोली मारी। बहन को, चूंकि माता पिता थे, बहन इकलौती थी, माना जा रहा था कि अगर भाई की मौत हो जाएगी तो आखिर उसका कौन देखरेख करने वाला होगा, इस तरीके की बात अभी सामने आ रही है पहली स्थिति में, तो इस वजह से भी बहन को गोली मारने की बात सामने आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो रेस्टोरेंट है जहां पर आप देख रहे हैं, ये उसी का रेस्टोरेंट है जो चलता था, यहीं पर वो आया था, यहीं से उसने जो पिस्टल थी उससे गोली मारी थी। और उसके बाद पति जो साथ में नहीं रहता था पत्नी के, कह सकते हैं दिव्या मिश्रा के, वो मेन इसमें था। तीन मर्डर ये कह सकते हैं कि एक दो लोगों को गोली मारने के बाद तीसरा खुद अपने आप सुसाइड कर लेना, ये गोमती नगर क्षेत्र के हुसड़िया चौराहे का मामला है जहां पर ये सभी एक तरीके से ये कांड पूरा गोली का हुआ है।
0: आशीष, बेहद गंभीर मामला है जिसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर आता है, सबसे पहले महिला को गोली मारता है, यानी अपनी पत्नी को गोली मारता है, फिर उसकी बहन को गोली मारता है, दो लोगों की हत्या करने के बाद फिर वो खुदकुशी कर लेता है। लेकिन क्या शुरुआती जानकारी में पता पड़ पाया कि वजह क्या रही कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो भी बीच राह पर?
3: देखिए हिमांशु, काफी समय से पति पत्नी अलग रह रहे थे, क्योंकि जो पति है वो लगातार पत्नी से अपने विवाद की स्थिति बनी हुई थी, और इसको लेकर ये वजह सामने आ रही कि कई बार समझाने की कोशिश की गई थी लेकिन बात नहीं बन रही थी, इसी को लेकर अनबन हो रही थी, क्योंकि वो बैंक कर्मचारी थी, काम भी करती थी रिलेशनशिप मैनेजर पे, और यही पास में उसड़िया चौराहे पर ये ईटिंग प्वाइंट जो बना हुआ इसी पर वो आया था, यहीं पर मौजूद था, और उसके बाद उसने किसी बहाने से बुलाने के बाद गोली मारी है। यानी कि पूरी तरीके से ये एक स्टेज आई थी जब उसने सारी सिचुएशन को पार करने के बाद, बातचीत करने के बाद, यहाँ पर उसको लगा होगा कि शायद अब आगे बात नहीं बनेगी, इसके बाद ही गोली मारकर हत्या कर दी। और दूसरा, उसने बहन को, जो उसकी बहन थी, वो भी चूंकि माँ बाप है लेकिन इकलौती बहन होने के नाते जब उसका कोई ख्याल नहीं रख सकेगा, अभी शुरुआती जांच में आ रहा है कि उसको भी कहीं ना कहीं इसी वजह से भी गोली मार दिया गया कि जब वो मर जाएगा और उसका कोई रखने वाला भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन समझ में आ रहा है। और बहन से, यानी बहन और जो पत्नी थी उसकी बातचीत भी होती थी, ये दूसरी वजह भी सामने आ रही। तो इस पूरे मामले पर तीनों के, दो की हत्या, उसके बाद खुद सुसाइड करना, ये एक पूरा ट्रिपल मर्डर का जो ये पूरा कांड है, ये लखनऊ के ही उसड़िया का है। और यहाँ पर अब पुलिस ने तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको अगर मैं बताऊं तो ये सारी स्थिति इस चौराहे की है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर चौकी है, यहीं से कुछ दूरी पर ही अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी पर थाना होगा, और यहीं पर ये जो शॉप है ईटिंग प्वाइंट, यहीं पर वो मौजूद थे, ये उसी की शॉप है, ये उसने एक तरीके से रेंट पे दी थी, कहते हैं कि चल रही थी उस तरीके से, यहाँ पर काम करते थे दूसरे लोग, और इसी शॉप के अंदर ये घटना हुई है जहाँ पर और लोग भी मौजूद थे। हम पूछने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं आखिर वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, लेकिन क्योंकि अभी पुलिस अंदर मौजूद है और किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो पा रही है, किसी से यहाँ पर
4: तो घुस जाएंगे अंदर
5: यहाँ पे कौन है, यहाँ के नहीं है
3: अंदर पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मौजूद है, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो हम देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पिस्टल से गोली मारी गई उसको भी बरामद किया है पुलिस ने। साथ ही साथ दिव्या मिश्रा जो पत्नी थी उससे जो विवाद था पुराना उसके बारे में शुरुआती जांच मिली है कि काफी समय से पति अलग रह रहा था और इस तरीके की जो खटपट थी अनबन थी वो चल रही थी और बहन को भी गोली मारने का वजह कहीं ना कहीं ये था कि उसके मन में पूरी तरीके से प्लान बनाया था कि हम गोली मारने के बाद बहन का आखिर क्या होगा, तो उससे पहले ही बहन को गोली मार दी थी। तो ये हिमांशु ट्रिपल मर्डर एक तरीके से कह सकते हैं जिसमें से दो हत्याएं और एक खुद उसने अपने आप को गोली मारी है, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन जांच कर रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन जो मामला सामने आया बीच चौराहे का है, मैं आपको बताऊं यहीं से ये चौराहा है अगर आप देखेंगे तो पास में ही और चलता हुआ रोड है यानी रिहायशी इलाका है और इसी इलाके के पास ये ईटिंग शॉप मौजूद है, यहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया है और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर बैंक भी मौजूद है जहाँ पर वो काम करती थी। और ऐसे में इतना दिन दहाड़े इस तरीके से गोली मारना, आसपास के लोग भी दहशत में, आप बताइए आसपास के लोग हैं कितना आवाज़ क्या हुआ था?
4: आवाज़ बिल्कुल नहीं आई, आवाज़
3: नहीं थी। कैसे आप लोग क्या एकदम पता लगा क्या हो गया है?
5: हम नहीं थे सर,
3: आप नहीं थे यहाँ पर। क्या कौन इसमें कौन चलाता था शॉप को?
4: शॉप किराए पे है,
3: किराए पे है। हाँ। और ये मानस वाजपेयी जो है ये इसके
4: मालिक थे, मकान मालिक।
3: और किराए पे किसको दी थी?
4: किराए पे है।
3: अच्छा,
4: भैया है उनको दिया
3: था। जब ये हत्या हुई तो सब लोग अंदर ही मौजूद थे?
4: नहीं, सब लोग अपनी दुकान चला रहे थे तब तो।
3: अच्छा।
4: हाँ।
3: और हत्या कहाँ पर?
4: दरवाजा बंद है।
3: हाँ।
4: दरवाजा के अंदर हुआ जो हुआ,
3: हुआ।
4: हाँ।
3: तो क्या उसकी बहन और पत्नी तीनों अंदर मौजूद थे?
4: नहीं, बहन और भाई थे।
3: बहन और भाई और पत्नी
4: वो यहाँ नहीं रहते, दूसरी जगह कहीं रहते हैं।
3: यानी कि दो लोग यहीं ऊपर ही रहते हैं?
4: ऊपर नहीं, नीचे ये दरवाजा लगा हुआ है, ये दरवाजा लगा हुआ है।
3: और उसकी बहन?
4: हाँ,
6: सीबा वाजपेयी।
3: सीबा वाजपेयी, तो वो दोनों लोग अंदर ही थे, किराए पे दे रखी थी।
6: जी जी।
3: और अब माता पिता कहाँ रहते हैं?
6: माता पिता एक्सपायर हो गए काफी समय पहले।
3: एकलौती बहन थी और वो थे, और पत्नी उनकी कहाँ रहती?
6: पत्नी भी यहीं रहती थी?
7: नहीं
6: रहती थी,
7: तीन महीने से नहीं, तीन चार महीने से।
3: बिल्कुल, देखिए हिमांशु, तीन महीने से पत्नी, चार महीने से लगभग, जो लोगों ने यहाँ देखा प्रत्यक्षदर्शियों ने बता रहे हैं कि नहीं रहती थी, ना ही बातचीत होती, बहन और भाई दोनों अंदर थे इसी में और यहीं पर गोली चलाई मारी क्योंकि माता पिता थे नहीं, ये भी बात अब निकलकर सामने आ रही है। अब बहन का कौन ख्याल रखेगा, अगर पत्नी को गोली मार दी है खुद सुसाइड कर लेगा, तो भाई के मन में यही था और यही वजह कि उसने बहन को गोली मारकर हत्या कर दी पहले और फिर सुसाइड किया। तो अपने आप में ही काफी खौफनाक और चौंकाने वाला मामला है कि किस तरीके से दो मर्डर करने के बाद में।
8: अच्छा आशीष, अपनी बहन हमारे साथ, आशीष आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि देखिए वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, जिस महिला की हत्या कर दी गई, उनकी बहन की भी हत्या कर दी गई और उसके बाद इस डबल मर्डर के बाद जो आरोपित था जिसने दिन दहाड़े पिस्टल निकालकर फायरिंग करी उसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। और जिनको आप देख रहे हैं ये वही तस्वीर है, इन्हीं की हत्या कर दी गई, बीच सड़क पर हत्या कर दी गई, बहन को भी गोली मार दिया गया और उसके बाद दो हत्याएं करने के बाद आरोपित ने यानी पति ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आशीष हमारे साथ में बने हुए आशीष, लेकिन बीच सड़क पर जिस वक्त पर दोपहर में इतनी भीड़ के बीच में इस वारदात को अंजाम दिया गया, बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े कर दिए गए हैं। पुलिस की तरफ से ऑफिशियल जवाब या आधिकारिक बयान कब तक जारी किया जा सकता है इस पूरे मामले में?
3: अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि घटना अभी हुई है जस्ट, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसी के अंदर वो दोनों लोग मौजूद थे और पुलिस की अगर हम चौकी और थाने की बात करें तो थोड़ी दूर पर यहाँ से मौजूद है, उसके बावजूद सड़क की बात है, दिन जो है बीच सड़क है। पुलिस का आखिर बयान जो है, हमने अभी बातचीत की है तो उसमें बताया है पुलिस ने कि काफी समय से खटपट चल रही थी उनकी पत्नी और उसके बीच में, और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक पहला रीजन अभी हम मान सकते हैं शुरुआती कि ये आ रहा है कि जिससे अनबन की वजह से गोली चलाई गई और हत्या की गई। दूसरा, बहन चूंकि कोई नहीं है घर में अब बचा, वो इकलौता भाई था और बहन थी।
8: आशीष एक बात और क्लियर कीजिए, एक बात और क्लियर कीजिए, क्या बैंक के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है या कहीं और पर?
3: जी बिल्कुल, देखिए बैंक थोड़ी दूरी पर है यहाँ से, यहाँ पर एक ईटिंग पॉइंट है जो मानस वाजपेयी का ही था जिसको उसने किराए पे दे रखा था, अंदर ही रूम है, उसी रूम में बहन और भाई मौजूद थे और उसके बाद यहीं पर हत्या की गई है। यानी कि ये जो पॉइंट है वो ये है जहाँ पर सुसाइड और हत्या की गई है, बैंक यहाँ से कुछ दूरी पर है जहाँ पर पत्नी कार्य करती थी। तो कहने का साफ मतलब है कि बैंक के बाहर थोड़ी दूर रोड पर ही इस हत्या को अंजाम दिया गया है और जिसमें पूरी तरीके से मंसूबे थे कि हत्या करनी है, फिर बहन की हत्या करनी और उसके बाद कुछ सुसाइड करना है। ये पूरा मानस वाजपेयी ने पूरा प्लान बना के रखा था और इसी वजह से उसने पहले जब यहाँ पर पहुंचा बहन के साथ बातचीत करी थोड़ी देर और उसके बाद चूंकि परिवार में और कोई नहीं है ना माता है ना पिता है इस वजह से भी ये मामला सामने निकल कर आ रहा है कि बहन को मारने की वजह जो है वो यही है कि कहीं ना कहीं अब उस बहन का क्या होगा तो उसने इस वजह से उसकी हत्या भी कर दी शुरुआती जांच में। लेकिन ये तो जरूर है कि जिस तरीके से हत्या की गई दिन दहाड़े बीच ये रोड है
8: इस वक्त वहाँ पर क्या तस्वीर है पुलिस किस तरह से जांच कर रही है और अगर कुछ लोग जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे अगर उनसे बातचीत हो सके ताकि पता चल सके कि क्या पहले से कोई विवाद चला आ रहा था क्योंकि आपने बताया यहाँ पर रह रहे थे भाई बहन
3: यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद थे मैं उनसे भी पूछूंगा। आप बताइए आपके यहाँ पर ब्लड लगा हुआ है आप क्या हुआ
9: स्थिति में हुआ ये था कि वो आए अपना मुझसे उन्होंने मेरा नाम पूछा उन्होंने आए उन्होंने कहा लोकुश क्या हाल चाल मैंने ठीक है तो मैंने कहा भैया बहुत परेशान हो क्या बात है बहुत पसीने में भीगे हो कहने यार भाई ऑफिस की टेंशन इतना कह के अंदर गए लॉक किया वो हमेशा यही करते थे अंदर जाते थे लॉक कर लेते थे फिर निकलते थे हाँ उसके बाद क्या हुआ अंदर को नहीं पता। फिर एक दोस्त का कॉल आया कि उन्होंने व्हाट्सएप पे ये क्या मैसेज डाल रखा तुम्हारे मालिक ने मैंने कहा क्या डाल रखा मैंने निकाला मैंने चेक किया अरे मैंने कहा ये मैसेज तो फिर मैंने कॉल मिलाना शुरू किया उनको उन्होंने कॉल नहीं रिप्लाई किया तब तक उनके मामा का लड़का आया वो भी टेंशन में था। फिर हम छत पे गए छत पे आवाज देर नहीं आया फिर हम लोगों ने सबने मिल के लातों से दरवाजा तोड़ा तो देखा अंदर वो खुद को भी गोली मार चुका था और अपनी बहन को भी
3: यानी दोनों लोग अंदर ही रहते थे बहन भाई
9: हाँ हमेशा अंदर
3: कहाँ गोली मारी है
9: पत्नी का नहीं पता हमें पत्नी का नहीं पता
3: वो कहाँ पर रहती थी वो कहाँ रहती थी
9: पत्नी अपने घर पे अपने मायके में
3: डाइवोर्स
9: हो चुका नहीं था डाइवोर्स अप्लाई था ये तो ऑडिट का काम करते हैं ऑडिट का काम
3: देखिए मानसी यहाँ पर मौके पे जो मौजूद है इनके जो काम करते हैं इस दुकान पर वो उनका कहना है इनके
8: अच्छा मैं आशीष आपको कुछ देर के लिए रोकता हूँ। इस वक्त अपर्णा जी हमारे साथ में लखनऊ जॉइंट सीट पे जुड़ चुकी हैं। अपर्णा जी बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है दो महिलाओं की हत्या के बाद खुद को भी आरोपित ने गोली मारकर अपनी जान दे दी इस मामले में अभी तक और क्या जानकारी आप तक पहुंच पाई है।
10: अभी पुलिस वहाँ मौके पे जांच पड़ताल भी कर रही है और क्या है ये पूरा पारिवारिक मामला है तो

0: अभी तो खत्म वही चल रहा है, अभी तो इसमें अभी जांच करने की आवश्यकता है, तो पुलिस पूरा सबसे बात करके जांच पड़ताल करके तभी कुछ निर्णय पे आएगा।
1: अपर्णा जी, ये भी खबर आई कि आईसीआईसीआई बैंक के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या बैंक के बाहर बीच रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया या घर में कमरे में जहाँ वो रहते थे?
0: नहीं, ये जो मृतका है पत्नी वो बैंक एम्प्लॉय है, आईसीआईसीआई बैंक एम्प्लॉय है, वो बैंक से बाहर आई है उनके कहने पर, हस्बैंड के शायद कहने पर, तो बाहर गेट पे ये घटना हुई है। और उसके बाद जो है जो हस्बैंड है वो फिर वापस घर जाके अपनी बहन को भी वो किया है एंड देन सुसाइड कर लिया है।
1: शुक्रिया, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। जॉइंट सीपी अपर्णा जी जानकारी दे रही थी कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, और इस पूरे मामले में अभी डिटेल में जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद काफी कुछ सामने आएगा। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष, आप सुन रहे होंगे अपर्णा जी को, जो जॉइंट सीपी थी और उन्होंने काफी कुछ इस मामले में बताया है।
2: बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है बैंक के बाहर पत्नी को गोली मारी गई, जो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर होगा, और 500 मीटर की दूरी के बाद यहाँ पर जो घर है, ये कह सकते हैं जो ये पूरा दुकान है, ईटिंग पॉइंट सेंटर है, इसी के अंदर वो रहता था। पहले बहन को गोली मारता है अंदर और फिर अपने आप को गोली मारता है, तो यहाँ से कुछ दूरी पर, चूंकि यहाँ पर जो काम कर रहे होते लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर दरवाजा क्यों बंद किया गया है, और ना ही समझ पाते क्योंकि ये दुकान किराए पर दी हुई थी और यहाँ पर काम होता है, रेस्टोरेंट टाइप का है। अब ऐसे में जब अंदर कमरे में बंद करके गोली मारी तो उस दौरान किसी को एहसास नहीं था। व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने स्टेटस देखा कि इस तरीके से वो लिख रहे हैं, तब जब लोग यहाँ दौड़कर आए और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तब देखा कि अंदर दोनों खून से लथपथ पड़े हुए थे। यानी कि पहले बैंक के पास में पत्नी को गोली मारते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो अपना घर है यहाँ पर अपनी बहन और खुद को गोली, क्योंकि विवाद काफी समय से चल रहा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चौराहा है, जो यातायात पुलिस भी बहुत कम ही दूरी पर है, पुलिस का बूथ भी यही पास में है, और जो अगर आप बात करें गोमती नगर थाना भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, और ऐसे में इस भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरीके से गोलीकांड होना ये अपने आप में ही बड़ा सवाल भी है कि आखिर किस तरीके से।
1: आशीष एक बात बताइए, आशीष एक बात बताइए, अभी आप जिस प्रत्यक्षदर्शी चश्मदीद से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि उनकी बात हुई थी, जिसने गोली चलाई उससे बात हुई थी, और मैसेज भी कुछ किया गया था, क्या मैसेज किया था जिसको लेकर अफरा तफरी मची और उसके बाद वो देखने गए कि अंदर क्या हो रहा है?
2: देखिए ये मैसेज व्हाट्सएप पे किसी तरीके का स्टेटस इससे पहले लगाया गया कि सुसाइड करने जा रहा हूँ, इस तरीके से कुछ मामला था, उसको लेकर ये सभी चिंतित हुए कि सुसाइड करने की बात सामने आ रही है, तब जाके लोग थोड़ा सा जागरूक, जो उनके मौसी के लड़के थे यानी जो उनके रिश्तेदार थे वो यहाँ पर पहुँचते हैं, और उसके बाद यहाँ पर दौड़ के आते हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है, चूंकि बहुत सारी जानकारी तुरंत फोन पर नहीं मिल पाई, ना ही फोन किसी का उठा रहे थे उस दौरान, फोन भी उन्होंने बंद कर लिया था, तो दौड़कर लोग जब तक यहाँ पर पहुंचे देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था, इसी ईटिंग पॉइंट के अंदर जो आप देख रहे हो तस्वीरें, इसके अंदर दरवाजा बंद था और दरवाजे पे लात मार के तोड़ने की कोशिश की, तब पता चला कि
1: पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, जल्दी इस पर निष्कर्ष भी निकलेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं उस खबर की जिसको लेकर कोहराम सा बचा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वंदे मातरम के दो छंद गाए जाएंगे, ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया सीडब्ल्यूसी की तरफ से। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से निशाना साधा गया, आज आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनकी तरफ से कहा गया कि तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है राहुल गांधी की कांग्रेस की तरफ से, जनता से अपील करते हैं और वो कहते हैं कि बीजेपी तो इसका विरोध करेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से निशाना साधा गया वंदे मातरम पर कांग्रेस का जो स्टैंड है, तो कांग्रेस ने घोर तुष्टीकरण के लिए 1937 के अपने प्रस्ताव के जरिए वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया था, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। यह भी कहा कि यहीं से देश विभाजन की नींव पड़ी, और इसीलिए कहा जा रहा है वंदे मातरम का विवाद विभाजन तक आ गया।
3: कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर

0: लड़ गई, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है, आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
1: और ये विवाद अभी लगता नहीं है कितनी आसानी से यहां पर थम जाएगा। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Hey Maya, let's go.
2: The new BE6 Sportage.
3: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आसमान से मानो आफत बरस रही है, बादल मानो इस संकट से बेफिक्र है। संकट काल की ये तस्वीरें प्रयागराज की है। वहाँ रामबाग रेलवे स्टेशन के हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बारिश हुई है। पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में मूसलाधार बारिश जारी है। इस वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रयागराज में अधिकतर जगहों पर बारिश का पानी भर चुका है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है, सड़कों पर समंदर जैसे हालात है, तो लोगों के घरों तक बारिश का पानी पहुंच गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस संकट के बीच हाउस अरेस्ट जैसे हालात है, जरूरी काम से बाहर निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। वहीं घर की महिलाओं का कहना है कि पिछले 3 दिनों से घर के अंदर बाहर बारिश का पानी भर गया है और ऊपर से लाइट नहीं आ रही, न ही कहीं जा पा रहे हैं। जलभराव की वजह से काफी परेशानी हो रही है। हम लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं।
1: आप समझिए कि हालात बहुत बुरी है। देखिए बोर्ड तक डूब गए हैं, मेमोरियल हॉस्पिटल तक, यानी प्रयागराज बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हॉस्पिटल बैंक इसलिए बंद है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है और किसी को कहीं से नहीं नजर आ रही है।
0: प्रयागराज में अस्पताल बैंक तक में पानी भर गया है। गंभीर स्थिति के बीच आज प्री प्राइमरी से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आनंद राज के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।

0: वंदे मातरम के सर दो छंद गाने के कांग्रेस के फैसले पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने रखी विभाजन की नींव, ये शहीदों का अपमान, तुष्टीकरण के खिलाफ देश को एकजुट होने का आह्वान। लखनऊ में दिनदहाड़े आईसीआईसीआई बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर समेत दो महिलाओं की हत्या, पति ने मारी पत्नी और बहन को गोली, एक साल से चल रहा था तलाक का केस। ठाणे में मराठी सीखने की डेडलाइन खत्म होने के बाद ऑटो टैक्सी ड्राइवरों से मराठी में सवाल पूछ रहे हैं आरटीओ अफसर, ड्राइवरों को छलका दर्द, का जवाब ना देने पर नोटिस मिलने का दावा। जेन जी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, यूपी में स्कूलों की बद इंतजामी के लिए जीएम कमिश्नर होंगे जिम्मेदार, सीएम योगी का सख्त निर्देश, आरएसएस की मीटिंग में भी जेन जी पर मंथन। भारत का अंग है कश्मीर, अमेरिका के बयान पर बौखलाए पाकिस्तान के कब्जे वाली घाटी में उठी विद्रोह की चिंगारी, शहबाज मुनीर के खिलाफ पीओजे की बेटियों की खुली बगावत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: देखिए कई खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको लिए चलता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है और ये बताया जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, पत्नी की भी, पत्नी को पहले गोली मारता है एक शख्स, उसके बाद उनकी बहन को गोली मारता है और फिर खुद को गोली मार के जान दे देता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, डबल मर्डर और सुसाइड से सनसनी फैल गई, और ये बताया जा रहा है कि घर जाकर अपनी बहन को गोली मारी, अपनी पत्नी को गोली मारी, फिर बहन को गोली मारी और उसके बाद आरोपित मानस ने आत्महत्या कर ली। खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है, सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है, पुराना विवाद बताया जा रहा है हत्या के पीछे, लेकिन स्पष्ट क्या वजह थी इसको लेकर अभी जांच की जा रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का भी कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है, जांच करने के बाद इस मामले का खुलासा होगा कि आखिर क्या वजह थी कि मानस ने, यह बताया जा रहा है, जिसका नाम बताया जा रहा है कि हत्या कर दी अपनी पत्नी और पत्नी की बहन की, तो मानस ने आखिर क्यों डबल मर्डर को अंजाम दिया और उसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस डाला, व्हाट्सएप स्टेटस डालते हुए सबको जानकारी दी, और जब वो व्हाट्सएप स्टेटस सबने देखा उसके बाद बताया गया, और उसके बाद कमरा जब खोला गया तो पता पड़ा कि वहां पर जान जा चुकी थी। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशीष, बेहद सनसनीखेज मामला, व्हाट्सएप पर स्टेटस भी अपडेट होता है, अब और क्या जानकारी अभी तक आ पाई आपके पास, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं।
2: देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी बात है जो जानकारी हमारे पास आई है उसमें, जब ये अंदर मौजूद थे, जब इसने बहन को गोली मारी है, उस दौरान बताया गया कि टीवी पर हनुमान चालीसा चल रहा था और दोनों लोगों ने उससे पहले टीवी पर चलाया और उसके बाद बहन को गोली मारी और फिर अपने आप को गोली मारी, और इससे पहले यहां से तकरीबन 500 मीटर दूर जो बैंक है, बैंक के बाहर पत्नी दिव्या मिश्रा उसको गोली मारी। व्हाट्सएप पे जो स्टेटस लगाया वो चीट करने का लगाया, जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया भी साफ तौर से, कई लोगों ने, जो परिवार के लोगों ने स्टेटस देखा भी, और ये कहीं ना कहीं पूरे अकेले भाई और बहन थे, पत्नी से शादी के 10 वर्ष हो गए थे और लगातार तब से कहीं ना कहीं अलगाव चल रहा था, और ये जो जगह है इसी में मकान में रहते थे वो अपनी बहन के साथ में, और इस दौरान जब जिस तरीके से गोली मारी किसी को कानो कान खबर नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक रूम है, ये रेस्टोरेंट जो है इसी के अंदर रूम है, उसी के अंदर जाते हैं, पिस्टल से गोली पहले बहन को मारता है फिर अपने आप को गोली मार के सुसाइड करता है, यानी कि बहन का, चूंकि ये भी बताया गया कि कोई रख रखाव मतलब इसके बाद नहीं देखभाल करने वाला था, तो माना जा रहा है कि अगर वो सुसाइड खुद कर लेता तो बहन का क्या होता, तो ये भी एक विचार था मन में, ऐसा परिजनों का मानना है, और इसी को लेकर गोली मारी बहन को, पत्नी को पहले गोली मारी उसके बाद यहाँ, तो ट्रिपल मर्डर। हिमांशु, पुलिस सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ पर जो बैंक है, बैंक के बाहर गोली मारी जाती है, आराम से वो यहाँ तक आते हैं, उसके बाद पुलिस छानबीन कर रही होती इस पूरे मामले को कि आखिर बैंक के बाहर गोली किसने मारी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पता लगता है पुलिस को कि
0: अच्छा, दूसरी एक बार फिर से जरा कड़ियों को जोड़ देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के बाहर वो अपनी पत्नी को गोली मारता है और गोली मारने के बाद मानस घर पे आता है, वहां पर उसकी बहन होती है और वहां पर हनुमान चालीसा ये लोग सुनते हैं टीवी पर, फिर अपनी बहन को गोली मारता है और उसके बाद वो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने के बाद वो फिर खुद को गोली मारता है और उसके बाद जब ये पता पड़ता है तो लोग आते हैं, वो दरवाजा तोड़ते हैं, दरवाजा तोड़ने के बाद अंदर पता पड़ता है कि दो डेड बॉडी वहां पर मौजूद हैं। कैसी तरह से पूरी वारदात हुई?
2: बिल्कुल ठीक हिमांशु, बिल्कुल यही सीक्वेंस है हत्या का, सुसाइड का और बहन का, क्योंकि बताया गया कि बहन थोड़ा सा शारीरिक रूप से ठीक नहीं थी फिजिकली, तो माना जा रहा था कि मेरे मरने के बाद उसका क्या होगा, इस वजह से भी इसके मन में ये विचार था और इसी वजह से बहन की हत्या की जाती है। और ये रेस्टोरेंट जो आप देख रहे हैं ये किराए पर दे रखा था, यहाँ पर चलता था और ऐसे में अंदर उस रूम में जहाँ पर अकेले लॉक कर लिया था, लॉक करने के बाद जब बहन को गोली मारते उसके बाद स्टेटस लगाता है, तब लोगों को जानकारी होती है इस बारे में कि आखिर हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी भी है उनसे
0: बिल्कुल बात की।
2: भाई साहब ये बताइए कि क्या जानकारी लगी थी आप लोगों को?
3: जानकारी कुछ नहीं थी, व्हाट्सएप का स्टेटस देखा गया था, बाद उसी से पता चला कि कुछ होने वाला है तो हम लोग ने दरवाजा खटखटाया, फोन किया गया, फोन करने पर फोन उठाया नहीं गया, फिर हम लोग ने दो तीन लोग मिलके दरवाजा तोड़ा गया, जब दरवाजा तोड़ के जब हम लोग अंदर गए उनके मामा के लड़के भी आए हुए थे सब साथ में, अंदर जब गए देखा अंदर तो दोनों लोग लेटे हुए थे और पिस्टल पड़ी हुई थी और टीवी पे गाना हनुमान चालीसा चल रहा था।
2: स्टेटस में क्या लगाया था इन्होंने, लिखा था
3: कि आई किल और माय वाइफ चीट और यही सब लिखा था। हाँ जी,
2: क्या शादी के लगभग कितना समय हो गया था?
3: लगभग 10-12 साल हो चुके थे।
2: आप लोगों को आवाज गोली उली की आई कभी?
3: इतना शोर होता बाहर, इतना कहाँ सुनाई देगा, ऊपर से अंदर गाना भी चल रहा था तो कुछ सुनाई नहीं दिया।
2: वाजपेयी जो थे क्या बैंक में करते थे, कैसे स्वभाव
3: था? क्या स्वभाव तो उनका अच्छा था, जब भी वो अपने जाते थे ऑफिस के लिए तो अगर देखते थे तो दुआ सलाम हमेशा, या शाम को भी जब भी ऑफिस से आते दुआ सलाम हमेशा करते थे।
0: ऐसा लगता था कि किसी तरह के तनाव में है, किसी तरह की परेशानी में है
3: तो जल्दी, कभी जल्दी कभी देर, उनका हमेशा ये चलता
2: था। परेशानी में थे, तनाव में थे?
3: तनाव में क्या, उनकी सिस्टर मेंटली थी तो उस वजह से थोड़ा सा उनके लिए देख रेख में ज्यादा ध्यान देते थे बस वो।
2: आपने?
3: हाँ, उनके पहले फादर एक्सपायर हुए वो भी बैंक में थे, उसके बाद उनकी मदर एक्सपायर हुई फिर उनके जॉब लगी।
2: पत्नी से विवाह चलता रहा?
3: हाँ, उनका साल डेढ़ साल से तो
0: अच्छा। आशीष आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए मामला बेहद गंभीर है, डबल मर्डर, उसके बाद खुद सुसाइड करता है मारा। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है, तो पुलिस के आला अधिकारी इस मामले पर क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं।
4: आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया, उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पर मौके पर जो लोग मौजूद थे इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी देर बाद गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पर वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है।
0: देखिए अब आपने देखिए मामला बेहद गंभीर है, पुलिस भी जांच की बात कर रही है, आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अब कड़ियों को जोड़ा जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि पहले से कौन सा विवाद चला आ रहा था, कौन सा मनमुटाव था, तनाव था या फिर कोई और क्या वजह थी। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इतना बातचीत में ऐसा लगता नहीं था कि बहुत ज्यादा तनाव है, तो क्या कोई और वजह भी हो सकती है, ऐसा कहा गया लोगों की तरफ से?
2: बिल्कुल हिमांशु, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हत्या करने के बाद तकरीबन 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर चलकर आना और यहाँ पर पूरी तरीके से बहन से बातचीत करना, यहाँ पे और भी एम्प्लॉय रहते थे यानी कि काम चलता था अगर आप देखेंगे तस्वीरों में, और उसके बाद बहन को गोली मारना, क्या विचार चल रहा था दिमाग में, क्योंकि पत्नी से विवाद था और पत्नी से विवाद था इसी वजह सड़क पर गोली मारी गई, वहां पर स्टेटस लगाया गया, तो ये तो जरूर था कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये परेशान थे, मन के अंदर थे इन्होंने मानस।
0: आशीष एक बात तो वहां पर पूछेगा कि क्या ये लाइसेंसी पिस्टल अपने पास रखते थे या फिर ये पिस्टल कहीं और से अवैध तरीके से लेकर आए थे, ऐसी कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई? पहले से रखते थे पिस्टल अपने पास?
2: बिल्कुल हिमांशु, जानकारी मिल पाई है कि ये लाइसेंसी पिस्टल नहीं थी, ये पिस्टल अवैध तरीके से लाई गई थी, कहीं से अरेंज की गई थी और इसी मर्डर के लिए ली गई थी, क्योंकि माना जा रहा था कि अगर हत्या करनी है तो इन्होंने पिस्टल कहीं से भी अवैध तरीके से अर्जित की थी और उसके बाद इसी पिस्टल से पहले पत्नी को गोली मार दी, फिर बहन को गोली मारी और उसके बाद फिर अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर ले। ट्रिपल मर्डर एक तरीके से कहेंगे। और इसी को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे जो पीछे ये पॉइंट है, इसी के अंदर बाहर चूंकि सड़क चल रही है तो आवाज बहुत लोगों को नहीं आ पाई कि आखिर गोली चली है, क्योंकि इससे पहले पुलिस जब तक पहले वाली हत्या की जांच कर पाती
0: है। आप हमारे साथ अब वो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बीच में जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही वो शख्स मानस है जिसने पहले दो हत्या की। पहले आईसीआईसीआई बैंक के बाहर अपनी पत्नी की हत्या करता है, फायर करता है, गोली मारता है, उसके बाद वो अपने घर पर आता है, रूम पर आता है और वहां पर अपनी बहन की हत्या करता है और उसके बाद खुद की जान ले लेता है। लेकिन पत्नी को मारने के बाद वो जब घर पे आता है तो उसके बाद एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है। व्हाट्सएप स्टेटस में वो इस बात की जानकारी देता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, अब मैं अपनी बहन की और खुद की जान लेने जा रहा हूं। और उसके बाद वो फायर करता है, अपनी बहन को मार देता है और उसके बाद खुद की भी जान ले लेता है। व्हाट्सएप स्टेटस देखने के बाद बाकी लोगों को मालूम पड़ता है कि ये सब हो रहा है। उसके बाद घर का दरवाजा तोड़ा जाता है, अंदर देखा गया तो फिर दो डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी, जगह जगह सब जगह खून था। अब फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई है, लेकिन जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि लाइसेंसी पिस्टल नहीं थी, यानी मन में था पिस्टल कहीं से जुगाड़ करके लेकर आया था ये शख्स मानस, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। आशीष
2: या हिमांशु बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि ये प्लानिंग पहले से थी और पत्नी से बातचीत इससे पहले भी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पत्नी ने बातचीत नहीं की, इसी बात से काफी ज्यादा परेशान भी था और कहीं ना कहीं उसके जो इस वजह से भी ये वजह आ रही है कि पत्नी की हत्या करने के बाद उसको ये ख्याल था कि अब वो जेल चला जाएगा या फिर हत्या मर्डर के केस में उसको आगे फांसी भी हो सकती, इस तरीके के मन में था। और दूसरी वजह बहन को लेकर थी कि बहन आखिर क्या होगा उसकी बहन का अगर वो जेल चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति में चूंकि लोगों ने बताया कि फिजिकली रूप से और मेंटली थोड़ा सा बहन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से भी उसने गोली मारकर हत्या कर दी। और ये वजह साफ थी कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन जरूर कर रही है, लेकिन ये तो जरूर है कि 1 किलोमीटर के दायरे में ये ट्रिपल मर्डर होना और रिहायशी इलाके
0: अच्छा,
2: में
0: एक बात और बताइए आशीष, एक बात और बताइए, पहली जगह जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया, यहां पर जहां पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की, उस जगह से दूसरी जगह जहां पर खुद खुदकुशी की, अपनी बहन को गोली मारी, वो जगह कितनी दूरी पर है? और पहली बार जब वारदात को अंजाम दिया उसके बाद ये शख्स आसानी से आ जाता है, किसी ने देखा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चला कि एक की हत्या करके ये वहां तक चल के 500 मीटर दूर पहुंच रहा है।
2: बिल्कुल देखिए, एक तकरीबन 500 से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थिति होगी, पुलिस को पता ही नहीं चल पाता है। जब हत्या होती है पुलिस तो पहली हत्या नहीं पत्नी की हत्या होती है और उसके पीछे पड़ जाती है, सूचना मिलती है पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसके पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया बढ़ाने लगती है, आगे आने लगती है, लेकिन उस दौरान वो हत्या करके जब तक पुलिस पता करती, सर्विलांस लगाती, जांच करती, तब तक वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करके इसी जगह पर, आप देखिए ये जो जगह है ओम फास्ट प्लाजा पर, यहाँ पर पहुंच गया। और यहाँ पर पहुंचते ही उसने जो है सबसे पहले अंदर गया रूम के और बातचीत की, बहन से बातचीत की, टीवी पर हनुमान चालीसा लगाया, उसके बाद सुनाया, बहन को गोली मारने से पहले उससे ये भी कहा कि वो थोड़ी देर के लिए सो सकती है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं जो उसने कही थी, यानी कि कहीं ना कहीं जानकारी ऐसी लगी है जो लोग कह रहे थे कि हम जा रहे हैं अंदर और बोलेंगे कि बहन से आराम करे, इस तरीके की बात, तो ये भी जानकारी आई है कि सोने के लिए बोला गया था, उसके बाद उसने गोली मारी, फिर अपने स्टेटस लगाया और उसके बाद फिर अपने आप को गोली मार ली, तो ये मामला बड़ा निकल कर आ रहा है हिमांशु। आखिर पुलिस को इस पूरे बारे में जानकारी क्यों नहीं लग पाई, पुलिस इस पूरे मामले पर सर्विलांस लगाकर आरोपी को जब तक पकड़ती तब तक दूसरे दो और मर्डर हो गए, एक तरीके से माने एक सुसाइड और एक मर्डर। अब ऐसे में पुलिस के ऊपर भी सवाल है कि इतनी कम दूरी में अगर 3 हत्याएं हो जा रही हैं तो पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे पूरी जानकारी की वजह से। यहां तक जब यहां भी हत्या होती है तो पुलिस पहले नहीं पहुंचती है, पहले यहां पर लोगों के द्वारा दरवाजा तोड़ा जाता है, यानी कि पुलिस बाद में पहुंचती है, पहले लोग पहुंचते हैं स्टेटस देखने के बाद, उसके घर वाले पहुंचते हैं तब जाके यहाँ पर, तो पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। और सबसे पहली बात है कि इनके जो घर वाले हैं वही दरवाजा तोड़कर बॉडी के पास पहुंचते हैं और देखते हैं, ऐसे हालात में एक मर्डर ऑलरेडी हो जा चुका होता है, फिर दूसरा यहाँ पर 3 मर्डर ये हो रहे थे, और ऐसी स्थिति में इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल है। दूसरा कि जिस तरीके से हत्या हुई है उसमें पहले सुनियोजित एक प्लानिंग की गई थी कि कैसे आज बात करना है, बात करने के बाद अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो हत्या करनी है। इस बात को पूरी तरीके से वो माइंड मेकअप करके गया था और इसी वजह से मानस के अंदर ये बात थी कि मानस जानता था कि आज मैं गोली अगर मारूंगा तो मेरे हत्या के केस में पकड़ा जाएगा, और यही वजह है कि उसने खुद को गोली मारी और बहन को गोली मारी, उसके बाद उसने खुद को गोली मार ली। तो ये सबसे बड़ी बात है कि स्टेटस भी लगाया, स्टेटस इसलिए भी लगाया कि लोग जो उसके जानने वाले हैं, जो उसके
0: अच्छा आशीष आप बने रहिए, देखिए कड़िया बहुत सारी जुड़ रही हैं, कड़िया जुड़ रही हैं तो बड़ी खबर भी सामने आ रही है। और जैसा कि हम बता रहे हैं व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट किया गया, यानी पहले बताया गया कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया, अब आगे क्या करने जा रहा हूं ये भी मानव ने बताया, बड़ी खबर। अब ये देखिए, ये है वो व्हाट्सएप स्टेटस जिसमें वो लिखता है टुडे आई किल्ड माय वाइफ, और जिसमें वो जिक्र करता है कि वो मेरे पे चीट कर रही थी। Now I have to kill myself and my sister. Her sister Pragya and Bharat knows everything. ये status डाला गया है।

बात करेंगे एक मुद्दे की जो दशकों से चला आ रहा है और वो है पीओजेके का। पाकिस्तान देखिए कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है, पाकिस्तान खुद जानता है कि पीओजेके भारत का अभिन्न अंग था, है और आगे भी रहेगा। अब अमेरिकी राजदूत का बयान आ गया। अब अमेरिकी राजदूत का जब बयान आया तो पाकिस्तान को तिल मिलाना था ही, तो पाकिस्तान तिल मिला गया। अब हालांकि पाकिस्तान कितना भी तिल मिला ले, लेकिन अब आप समझिए कि पीओजेके में यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में अब आक्रोश की लहर देखी जा रही है, क्योंकि वहां पर आम लोगों की हक को दबाया जाता है, वहां पर आम लोगों की अनदेखी की जाती है और इसी के चलते अब विरोध की आवाज बुलंद है। लेकिन देखिए हकीकत यह भी है कि जब अमेरिकी राजदूत की तरफ से बयान आया तो उस बयान के बाद अब जो मामला है वो आगे तूल पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त माहौल बेहद खराब है, क्योंकि वो आग बबूला है। अमेरिकी राजदूत की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है। गोर ने जम्मू कश्मीर को लेकर वो सच बयां किया जो जानते तो सभी थे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा उसे नकारता था।

0: वाकई ये कश्मीर है, इतनी खूबसूरत है कि देखकर किसी का भी दिल यहीं का हो जाने को मचल जाए। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर भी कश्मीर आए, डल झील में शिकारा का लुत्फ उठाया। कश्मीर की खूबसूरती सर्जियो को इतना मंत्रमुग्ध कर गई कि उनकी जुबान से एक बड़ा सच निकल ही गया, वो सच जिसे सुनकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने लगा। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा है।
1: Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi, but a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward.
0: जरा गौर से अमेरिकी राजदूत के बयान को सुनिए। हम आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि आखिर सर्जियो गौर ने क्या कहा।
2: यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, ये भारत का एक अहम हिस्सा है, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आकर और इस जगह को देखकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। हमारी अभी एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, कुछ बातें आगे बढ़ानी है जिन्हें हम वॉशिंगटन और दिल्ली ले जाएंगे। बातचीत बहुत गर्म जोशी भरी और दोस्ताना रही और हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं।
0: गौर कीजिए, गौर कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, यानी गौर ने कश्मीर के भारत का हिस्सा होने की पुष्टि कर दी है और ये पाकिस्तान के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। सर्जियो गौर ने ऐसे वक्त में कश्मीर का दौरा किया जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब चल रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान से अपने सभी रिश्ते तोड़ रखे हैं। ऐसे वक्त में गौर श्रीनगर में शिकारा राइड कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर पर भारत से संवाद बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं।
3: We had an opportunity to discuss relations between our two countries with a specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir.
0: श्रीनगर की सरजमी से अमेरिकी राजदूत ने सिर्फ सच और सच कहा, लेकिन इस सच को सुनना पाकिस्तान को गवारा नहीं। गौर के बयान से पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला गया है, इतना कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को तलब कर दिया। सर्जियो गौर के बयान को लेकर अपनी नाराजगी जताई है, यानी वही पुराना रवैया, वही सच से दूर भागने की कोशिश। एक बार फिर से पाकिस्तान भूल गया कि बार बार चिल्लाने से सच बदलता नहीं है।
4: जो जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववादी और आतंकवादियों के समर्थक जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा साजिशें और षड्यंत्र करते थे, उनको अमेरिका के राजदूत ने आज बेनकाब किया है। जम्मू कश्मीर हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है और जम्मू कश्मीर में अगर कोई विवाद है वो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है जो कि भारत का हिस्सा है।
0: पाकिस्तान बीते कुछ सालों से ट्रंप प्रशासन को खुश करने में लगा है। ईरान अमेरिका जंग में भी ये बात दिखी और उससे पहले भी ये दिखा कि पाकिस्तान अमेरिका से बेहतर रिश्ते के लिए किस कदर एड़ियां रगड़ रहा है। लेकिन गौर के बयान से ये साफ हो गया है कि कश्मीर पर पाकिस्तान की दाल नहीं गलने वाली। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
5: देखिए, पाकिस्तान से तनाव जारी है ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। पाकिस्तान अभी तिलमिलाया हुआ ये भी आप जानते हैं, लेकिन इस दौरान भारत ने बहुत करारा जवाब दिया है, बहुत करारा जवाब। और आप सोच रहे होंगे क्या जवाब दिया, तो वो हम आपको बता देते हैं। दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर अवैध स्ट्रक्चर को एजेंसियों ने हटा दिया। ये कार्रवाई पाकिस्तान के उस फैसले के बाद की गई है जिसमें उसने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर से पार्किंग पोल हटा दिए थे, उसी के बाद भारत ने ये कार्रवाई की।
6: दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के बाहर से इलीगल इंक्रोचमेंट को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि एक ये रेसिप्रोकल एक्शन है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के बाहर से बैरिकेड्स को हटाया गया और कहीं ना कहीं सुरक्षा को कम किया गया, उसी का रेसिप्रोकल एक्शन आज दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, जहां पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से जो ट्रैफिक बैरिकेड्स लगे हुए थे, जो इलीगल इंक्रोचमेंट था, उसे पूरी तरीके से बुलडोजर्स की मदद पदक से हटा दिया गया है। याद रखिए पिछले साल जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसी टाइम जो सिक्योरिटी थी, जो पुलिस वाले यहां तैनात थे, उनको कम कर दिया गया था, सिक्योरिटी में यहां कमी कर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब होते ही दिख रहे हैं, उसी में ये रेसिप्रोकल एक्शन सामने आया है, जहां पहले पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास के बाहर से सिक्योरिटी हटाई और बैरिकेड्स हटाए, तो उसके ही बदले अब भारतीय अथॉरिटीज ने भी पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर से जो सिक्योरिटी अपरेटस था, जो इलीगल इंक्रोचमेंट था, जो ट्रैफिक बैरिकेड्स यहां लगे हुए थे, उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अब किसी भी तरह का जो सिक्योरिटी दायरा है वो देखने को नहीं मिल रहा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
5: देखिए भारत का बहुत क्लियर कट है कि मोहब्बत हो या तकरार हो, आप जैसा करेंगे हम उससे ज्यादा करेंगे। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाली का आरोप लगाते हुए जयपुर में कांग्रेस की तरफ से जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, विधानसभा का घेराव भी किया गया और इस विधानसभा घेराव में कांग्रेस के विधायक सहित और भी कई कांग्रेस के नेता शामिल थे। और कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि सरकार की तरफ से जो सरकारी स्कूल है उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूलों की बदहाली को दिखाने को लेकर सरकार ने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर भी बैन लगा दिया गया है, जो सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश है।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
1: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
2: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पीवा आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लद से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक नहीं।
0: गुलटनिया और कलखनिया।

कांग्रेस के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने रखी विभाजन की नींव, ये शहीदों का अपमान। तुष्टीकरण के खिलाफ देश को एकजुट होने का आह्वान भी किया। लखनऊ में दिन दहाड़े आईसीआईसी बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर समेत दो महिलाओं की हत्या। पति ने पहले पत्नी को मारी गोली, फिर बहन को भी मारी गोली। एक साल में चल रहा था तलाक का केस। मुंबई के थाने में मराठी सीखने की डेडलाइन खत्म होने के बाद ऑटो टैक्सी ड्राइवरों से मराठी में सवाल पूछ रहे हैं आरटीओ अफसर। ड्राइवर का छल का दर्द, कहा जवाब ना देने पर नोटिस मिलने का है दावा। जनजी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री। यूपी में स्कूलों की बद इंतजामी के लिए डीएम और कमिश्नर होंगे जिम्मेदार। सीएम योगी का सख्त निर्देश। आरएसएस की मीटिंग में भी जनजी पर मंथन। भारत का अंग है जम्मू कश्मीर। अमेरिका के बयान पर बौखलाए पाकिस्तान के कब्जे वाले घाटी में भी उठी विद्रोह की चिंगारी। शहबाज और मुनीर के खिलाफ पीओके जेके में बेटियों की खुली बगावत।

लखनऊ में दिनदहाड़े मर्डर, गोमती नगर में आईसीआईसी बैंक के बाहर पति ने पत्नी को गोली मारकर उसकी की हत्या। शख्स ने घर जाकर बहन को मारा, फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। लखनऊ में तीन लोगों की मौत से हड़कंप। पिछले एक साल से दंपति के तलाक का केस चल रहा था, तब से दोनों ही अलग रह रहे थे। पहले व्हाट्सएप स्टेटस में लिखी सुसाइड की बात, फिर पत्नी को गोली मारी, पुलिस ने दी जानकारी। वंदे मातरम पर सियासी संग्राम तेज, दो छंदों के फैसले पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। वंदे मातरम के सिर्फ दो छंद गाने के कांग्रेस के फैसले पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा कि कांग्रेस ने रखी विभाजन की नींव, कई शहीदों का किया अपमान। अमित शाह ने कहा कि 1937 में कांग्रेस ने जो फैसला लिया उसे पीएम मोदी ने सुधारा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के दो टुकड़े किए, संसद के पास कानून को नकारा, तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ एकजुट हो पूरा देश। इनका कांग्रेस पर हमला, बोले वंदे मातरम में कि सिर्फ दो छंद गाने का फैसला राष्ट्र का अपमान। सीडब्ल्यूसी में युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा हमला, पेपर लीक और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा, राहुल गांधी बोले राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं मोदी। 800 शहरों तक पहुंचेंगे छात्रों की गूंज अभियान, पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को अनुमति, पुलिस ने 30 शर्तें लगाई, आपत्तिजनक बैनर पर रोक लगाई गई। कांग्रेस के फैसले के बाद बीजेपी का जोरदार पलटवार, कहा कि आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। मेरठ में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा की कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि संसद में पारित कानून को नहीं मानने वालों को अपनी पहले सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमिश्नर के बाहर बुलडोजर एक्शन, इस्लामाबाद की कार्रवाई के जवाब में अवैध ढांचों और अतिक्रमण को हटाया गया। तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, दक्षिणी क्षेत्र परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास और औद्योगिक निवेश और साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। झारखंड में सीजीएल के सफल उम्मीदवार पहुंचे, हाईकोर्ट परीक्षा रद्द करने के सरकारी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाई। राजस्थान में मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, स्कूलों में फोटोग्राफी पर रोक के फरमान का विरोध किया, खराब शिक्षा व्यवस्था को बनाया है मुद्दा। राजस्थान विधानसभा का आज से मानसून सत्र, यूसीसी बिल पेश करेगी राजस्थान में बीजेपी सरकार। राम मंदिर चंदे की सुप्रीम कोर्ट में निगरानी की जांच की मांग, चीन और E20 पर भी कांग्रेस ने उठाया सवाल। एनसीईआरटी का बड़ा कदम, क्लास 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की नई किताबें तैयार करने के लिए 20 सदस्यीय टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम को पुनर्गठन का किया गया है मांग। टीम के 4 सदस्य आरएसएस से जुड़े हैं, नई किताब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2023 के अनुसार तैयार की जाएगी। आज विशाखापट्टनम में आरएसएस की मीटिंग में दूसरा दिन है, जेंजी के जुड़े मुद्दों पर चर्चा की संभावनाएं, नितिन नवीन और बीएल संतोष भी इसमें शामिल होंगे। आज से श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है, अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बोले हैं कि 30 सितंबर तक राम मंदिर परिसर में अधिकांश निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। श्रीराम मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाएगा मंदिर का प्रतीक चिन्ह, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी है इसकी जानकारी। यूपी में जैन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार सख्त, बोले जैन अल्फा प्रदर्शनों के लिए निपटने के लिए लाठीचार्ज नहीं, बातचीत होगी। सोशल मीडिया या अन्य किसी भी माध्यम से स्कूलों की अव्यवस्थाओं की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच के निर्देश दिए गए, तुरंत उचित कार्रवाई पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी के दफ्तर से होगी सीधी निगरानी, सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम कमिश्नर।
उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को साफ और सुरक्षित वातावरण देने पर भी जोर। ऑपरेशन कार्यकल्प के तहत स्कूलों में पानी, शौचालय और बिजली की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। अयोध्या में सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री पर रोक लगा दी गई। बेसिक शिक्षा अधिकार का आदेश दिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में पहले पारंपरिक वोटरों के साथ समाजवादी पार्टी का जेन ज़ी पर भी फोकस। एआई मीम्स और शॉर्ट वीडियो से युवाओं को साधने की रणनीति है। कल पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मनाया जाएगा गौरव दिवस। यूपी के सभी जिलों में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजन किया जा रहा कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग के महापुरुषों के साथ के सम्मान का मुद्दा उठाएगी ओबीसी मोर्चा। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल का एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। पिछड़ों के अपमान का आरोप लगाया। कहा कि राजनीतिक दलों का वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, पर मन पर का भेद होना हमारी संस्कृति नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का अखिलेश यादव पर बोला हमला। बोले झूठे फोटो वीडियो से जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी की साइकिल की हो गई पंचर। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का अखिलेश यादव पर हमला। कहा कि 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, लेकिन एसपी के पास जिताऊ चेहरे भी नहीं है और कुनबा मॉडल पर भी उठाए सवाल। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला। प्रयागराज से जल भराव को लेकर बोले भ्रष्ट काम और नियत बदले वरना जनता बदल देगी सरकार। लखनऊ में डीआरआई का बड़ा एक्शन। हाथीदांत की 54 कलाकृतियों के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। नेपाल के रास्ते विदेश भेजने की तैयारी थी। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। भड़काऊ टिप्पणी के आरोप में ये कृष्णानगर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर को बड़ा बयान। बोले हैं कि भारत का अहम अंग है जम्मू कश्मीर, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। गौर के बयान को बौखलाया पाकिस्तान। अमेरिका की राजनीति को किया गया तलब। मोदी सरकार शुरू करेगी जनजी से संपर्क का अभियान। हर रोज एक यूनिवर्सिटी जाएंगे एक केंद्रीय मंत्री, छात्रों से सीधे बातचीत भी करेंगे। मोदी कैबिनेट के 9,450 करोड़ रुपए की 4 मल्टीकिंग परियोजनाओं की 2 मंजूरी दे दी है। 4 राज्यों के 8 जिलों की मिलेगा सैलाब। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करेगी परियोजना। रेल नेटवर्क करीब 410 किलोमीटर लंबा होगा। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला। बक्सर भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। आज पटना में सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई है। यह बैठक 3-4 के से जुड़े विरोध के बीच हो रही है। पीपल लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ। बीपीएससी और एडो परीक्षा में धांधली का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी नए नियमों को लाएगी। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली है सुनवाई। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे जापान के रक्षा मंत्री। शहीदों को दी श्रद्धांजलि और अर्पित की पुष्प चक्र। शहीदों को नमन के बाद किया गया गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती है। दिल्ली के नेताओं ने वीरभूमि जाकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी है। राजीव गांधी के समाधि स्थल पर वीरभूमि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे समेत कई नेता। सद्भावना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को किया याद। एक्स पर पोस्ट में लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का 80 साल की उम्र में निधन। तिहाड़ जेल में स्वस्थ बिगड़ने से के बाद सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
बुजुर्ग के सम्मान और सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। माता पिता बच्चों की कुसंपत्ति से कर सकते हैं बेदखल अगर बच्चे नहीं करते सम्मान और सुरक्षा। माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 23वें संस्थापक दिवस का आयोजन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज सिन्हा हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ पुरी श्रद्धा के साथ जारी की गई है। 12 दिवसीय धार्मिक यात्रा में भक्तों का जोश हाई है। रामनगरी अयोध्या में धाम के पूर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है प्रसिद्ध सावन झूला उत्सव। 28 अगस्त तक चलेगा ये 14 दिवसीय धार्मिक उत्सव। हिमाचल में लगातार जारी बारिश की जगह जगह भूस्खलन हो गया। सोलन में नेशनल हाईवे 5 का एक लेन पूरी तरीके से बंद हो गया। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और भारी मलबा अचानक हाईवे पर आ गिरा। भूस्खलन की वजह से सड़क पर यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। सड़क धंसने से एक ट्रक असंतुलित होकर नाले की तरफ लटका है। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर जारी है। लैंडस्लाइड से 11 सड़कें बंद कर दी गई है। 3 दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया है। कई जगह ग्रामीण खुद मलबा हटाने में जुट गए हैं। मार्ग अवरोध को हटाने में ग्रामीण आवागमन में भारी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रयागराज से बड़ा गंगा यमुना का जलस्तर, लेटे हनुमान मंदिर पहुंचा है पानी। निचले इलाके में कराया गया है खाली। रामबन में मगलिहा डैम के कई गेट खोले गए हैं। डैम में जमा मिट्टी और गंदगी बाहर निकालने के लिए छोड़ा गया है यह पानी। डैम के आसपास रहने वाले लोगों से नदी पानी के से तेज बहाव से दूर रहने के लिए सलाह भी दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। बिजनौर में बाढ़ के हालातों का जायजा लेने सेक्टर पर पहुंचे डीएम जसजीत कौर। सीओ ने संभाली है स्टेयरिंग। चंद्रपुर मेरठ मार्ग समेत कई रास्ते बंद कर दिए गए। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते भगत सिंह चौक और रानीपुर मोड़ पर भरा है पानी। वाहन चालकों की बड़ी परेशानियां। शिलांग में एक दिन पहले खांसी स्टूडेंट यूनियन काले झंडों के साथ निकाली बाइक रैली। इस दौरान शहर के कई जगहों पर हिंसा भी हुई। हिंसक रैली के बाद केएसयू अध्यक्ष समेत 4 नेताओं को पुलिस ने कार्रवाई की है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आम नागरिकों को पर हमला समेत कई अपराधों के आरोप केस दर्ज किए गए। गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हो गई है। 2 की हालत गंभीर है। मामले में मुख्य तस्कर समेत 21 पर FIR दर्ज की गई है। 12 गिरफ्तार किए गए। 4 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए। नवादा में थाने में 50 मीटर दूर दिन दहाड़े फायरिंग। मोबाइल छीनने के विरोध में युवक ने लहराई बंदूक। 20 लोगों पर FIR। पटना में जेईई मेंस की तैयारी कर रहे छात्रों का हॉस्टल में फंदे से लटका मिला शव। पिता ने लगाया हत्या का आरोप। सहारनपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को ग्रामीणों ने पीट कर मुंह काला कर चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के झांसी में ललितपुर हाईवे पर हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार परिवार को रौंदा। करीब 150 मीटर तक घसीटता रहा। 3 की मौत हो गई। यूपी के झांसी में लूट के आरोपी 4 बदमाशों को पुलिस ने किया है एनकाउंटर। 2 के को लगी है गोली। 4th गिरफ्तार हो गया। यूपी के फतेहपुर में मदरसे में छात्रों ने पिछले 1 साल में मौलवी पर रेप का आरोप लगाया है। फरुखाबाद ले जाते समय परिजनों ने आरोपी को पकड़ा। मनचला गिरफ्तार। कानपुर के 1 बीघा जमीन के विवाद में बहन की हत्या। 1 साल बाद खुला सड़क हादसे का झूठा राज। आरोपी भाई गिरफ्तार। वैशाली में ट्रांसपोर्टर एजेंसी के 800 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। अनुमित कीमत करीबन 13 लाख रुपए बताई जा रही है। कन्नौज में विवाद सुलझाने गए सिपाही को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। चंदौली में वन विभाग की जमीन को खाली कराने गई पुलिस। वन विभाग की टीम से ग्रामीणों की भिड़ंत। कई पुलिसकर्मी घायल। ग्रेटर नोएडा की वुडन डाई कंपनी में भीषण आग। 10 दमकल गाड़ियों ने 3 घंटे में पाया काबू। उज्जैन के महाकाल लोक खाद्य उद्यान विभाग के कार्रवाई। गंदगी मिलने पर दुकान सील की गई।
इंदौर में छात्र संघ चुनाव की मांग पर बवाल, टीवीवी का गेट तोड़ा, 10 छात्रों पर एफआईआर। मुंबई थाने राशनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10,600 लीटर चोरी का पेट्रोल जब्त किया है, टैंकर को भी जब्त कर दिया गया है। आपूर्ण में मामूली कहा सुनी गिर जाकर खूनी संघर्ष हो गया, महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हरिद्वार में कुत्ते ने बचाए मालिक की जान, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक जारी है, कई जिलों की स्पेशल टीमें उतारी गई हैं, जंगल खेतों में मॉबिंग जगह जगह लगाए गए हैं पिंजरे। बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने आ रहे हैं यश, कल से टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग शुरू की गई है, दर्शकों में उत्साह है। सिनेमा घरों के बाद ओटीटी पर दस्तक दे रही है फिल्म वेलकम टू द जंगल, जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी अक्षय कुमार, जैकलीन रवीना टंडन, सुनील शेट्टी।

0: जी5 पर होगी स्ट्रीम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जननायक ओटीटी पर भी स्ट्रीम की जाएगी, कल से जी5 पर होगी उपलब्ध। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी तमिल रोमांटिक फिल्म प्यार प्रेमा कल्याणम, हिंदी तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में होगी रिलीज। एक्ट्रेस यामिनी गौतम की अपकमिंग फैंटेसी फैमिली फिल्म नई नवेली का आया टीजर, 16 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म महाकाली के असुरों के शक्तिशाली गुरु शंकराचार्य का किरदार निभाएंगे अभिनेता अक्षय खन्ना, 24 अगस्त को सामने आएगी फिल्म की कहानी पहली झलक। मिर्जापुर द मूवी का नया गाना रिलीज किया गया, जिसमें पुराने पसंदीदा गाने वारुण फॉर एवर एक नए और इमोशनल अंदाज में पेश किया गया। महाकाव्य श्री रामायण कथा का पहला पोस्टर टीजर जारी कर दिया गया, श्री राम की भूमिका में देव शर्मा जबकि माता सीता के किरदार में फीचर फिल्म में कदम रख रही हैं अंजलि अरोड़ा। बॉक्स ऑफिस पर चला आवारापन 2 का जादू, लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने की ओर बढ़ रही है फिल्म।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माह का।
0: और अब खबरें के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं राजस्थान के जयपुर की, जहां पर सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस नेताओं ने पैदल मार्च निकालकर विधानसभा का घेराव किया और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य गेट पर भी चढ़ गए कांग्रेस विधायक। इसके अलावा इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्कूल की बदहाली दिखाने को लेकर सरकार ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है।
2: बैठे हुए हैं हमारे साथ हैं, बाहर क्यों आप मुद्दा उठा रहे हो, अंदर भी तो उठा सकते हो।
3: सरकार ना तो मुद्दे को उठाने देना चाहती है और ना अपनी गलती को स्वीकार कर रही है। जब पूरे प्रदेश में इतने बच्चों की जान चली गई, छतें गिर रही हैं, बाढ़ आ रही है, व्यवस्था चरमरा गई है, बजाय उस वास्तविकता को एक्सेप्ट करके उस पर कदम उठाएं, सरकार ने आदेश जारी कर दिया, कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई रील नहीं बनाएगा, कोई मीडिया नहीं जाएगा, सरकारी स्कूलों पे लोगों को पाबंद कर दिया, अगर आप जाएंगे अंदर आप पे पॉस्को कानून लगा दिया जाएगा। तो ये सरकार को जो एक तानाशाह रवैया है और शिक्षा मंत्री जो एक बेवजह इस प्रकार के आदेश जारी किए, उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। हम चाहते हैं कि स्कूलों में जो हालात हैं पूरे प्रदेश और देश में, लेकिन राजस्थान के अंदर विशेष रूप से अनेक जिलों के अंदर जर्जर हालत में स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं।
2: ये 2.5 साल में जर्जर हो गए, आपके समय सब ठीक थे।
3: ये 2.5 साल की बात ही नहीं है, आज जो स्थिति है उसका जवाब कौन देगा, जिनको सत्ता जनता ने बिठाया है। आप नेहरू जी का नाम लो, इंदिरा गांधी का नाम लो, कांग्रेस सरकार 12 साल पहले केंद्र में थी, लेकिन 2.5 साल में जब हालत बिगड़ गई है, हाईकोर्ट ने लताड़ मारी है और हाईकोर्ट ने निर्देशित सरकार को किया, फिर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।
4: अगर एमएलए को विधानसभा में नहीं जाने देंगे तो कहां जाने देंगे, आप बताइए। एमएलए आज नहीं जाए, उसका विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनेगा। हम तो कल विशेषाधिकार हनन का मामला बनाएंगे इनके खिलाफ। अगर हमको नहीं जाने देंगे तो हम विशेषाधिकार हनन का मामला बनाएंगे कि साहब आप कैसे नहीं जाने दे रहे हो, एमएलए को ताला कैसे लगा सकते हो। हम पब्लिक को लेकर के जाए हम दोषी हैं, हम मारपीट करें हम दोषी हैं, हम कोई अवांछित गतिविधियों में शामिल हों हम दोषी हैं, लेकिन अगर एमएलए अपनी बात रखने के लिए विधानसभा में आउट होने के बाद में उन्होंने निमंत्रण दिया विधानसभा ने और उस निमंत्रण पे नहीं जाने देंगे तो क्या करेंगे फिर, आप बताओ कहां जाएंगे, और इनके भ्रष्टाचार की कलई कहां खोलेंगे, कहां चर्चा करेंगे हम। शिक्षा मंत्री महाभ्रष्ट व्यक्ति है, आरएसएस का पूरी तरीके से एजेंट है और आरएसएस के कहने से राजनीतिक द्वेषता से और भ्रष्टाचार करके और काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि देश में किसी भी स्टेट में इतना जो है वो क्या क्या शब्द लूं इसके लिए, मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं हो सकता दे।
0: और अब बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में एसएफआई और एबीवीपी के बीच में झड़प के बाद तनाव खबरें मिल रही। एसएफआई पर एबीवीपी के समर्थकों के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया गया। खबरों के मुताबिक दोनों गुटों के बीच यह टकराव यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कल रात हुआ है। इस घटना में दोनों पक्षों के कई समर्थकों के घायल होने की भी खबर है। फिलहाल जादवपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। एसएफआई और अन्य वामपंथी संगठनों ने बुधवार को जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई थी। एबीवीपी

0: बीजेपी का कहना है कि अभी कोई एक्टिव स्टूडेंट यूनियन नहीं है और ना ही सरकार ने स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर कोई निर्देश या नोटिफिकेशन जारी किया है। उनका सवाल है कि ऐसे हालातों में वामपंथी संगठन जनरल बॉडी मीटिंग कैसे बुला सकता है। आरोप है कि 70 से 80 लोगों के एक ग्रुप ने मीटिंग का विरोध कर रहे थे और एबीवीपी समर्थकों का हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद लेफ्ट स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि एबीवीपी ने बाहर के लोगों को लाकर उन पर हमला करवाया है।
1: कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन और एबीवीपी के बीच तनाव के बाद आज सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती भी कर दी गई है। गेट के बाहर, ये कैंपस के ठीक बाहर आप देख सकते हैं सेंट्रल फोर्सेस की जो महिला जवान है उनको तैनात किया गया है और आसपास भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है, क्योंकि आज दोनों ही पक्ष एसएफआई और लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन वो रैली निकाल रहे हैं, अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर एबीवीपी के लोगों ने आक्रमण किया। वहीं एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आज एकत्रित होंगे, रैली निकालने की उनकी योजना है। उनका भी आरोप है कि उन पर हमला किया गया। दरअसल कल रात ये जो तनाव हुआ यहां पर हुआ और इसके बाद ही ये झमेला शुरू हुआ और दोनों ही पक्षों का आरोप है कि एक दूसरे के ऊपर हमला किया गया। लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन का आरोप है कि बाहर के लोगों को लाकर एबीवीपी के लोगों ने उन पर हमला किया। वहीं एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आरोप है कि एसएफआई और लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों ने उन पर हमला किया। कई स्टूडेंट्स दोनों ही पक्षों के घायल हुए, स्थानीय अस्पताल में इलाज भी चल रहा है और इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है।
0: चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: सॉरी यार गलती हो गई है,
4: ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का
5: सब कैशलेस हो गया
4: है। हाँ ला भाई मेरा बैट,
6: वो अभी तो ठीक हुआ। तो
7: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। Hey Maya, let's go.

0: The new BE6 Sportage.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: In association with
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: लखनऊ में निर्णय आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर समेत दो महिलाओं की हत्या, पति ने मारी पत्नी और बहन को गोली, एक साल से चल रहा था तलाक का केस। वंदे मातरम के सिर्फ दो छंद गाने के कांग्रेस के फैसले पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने रखी विभाजन की नींव, ये शहीदों का अपमान, तुष्टिकरण के खिलाफ देश को एकजुट होने का आह्वान। साउदर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग में अमित शाह के साथ शामिल हुए दक्षिण के सभी राज्यों के सीएम, साथ किया लंच तमिलनाडु के विजय और कर्नाटक से डी के शिवकुमार के साथ, आंध्र से चंद्रबाबू नायडू भी शामिल। सीडब्ल्यूसी में मल्लिकार्जुन खड़गे का छलका दर्द का, उत्तराखंड में मेरे मंच के शुद्धिकरण को बनाना चाहिए था देशव्यापी मुद्दा, कांग्रेस के बड़े नेताओं को बतानी चाहिए थी दलित अपमान की व्यथा। मुंबई के ठाणे में मराठी सीखने की डेडलाइन खत्म होने के बाद ऑटो टैक्सी ड्राइवरों से मराठी में सवाल पूछ रहे हैं आरटीओ अफसर, ड्राइवरों का छलका दर्द, कहा जवाब न देने पर नोटिस मिलने का दावा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ मानशो दीक्षित, बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और ये खबर लखनऊ से आ रही है जहां गोमती नगर में डबल मर्डर और सुसाइड से सनसनी फैल गई। आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा को उसके ही पति ने गोली मार दी, हत्या कर दी, दिन दहाड़े मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। अब लखनऊ पुलिस की टीम पड़ताल कर रही है कि आखिर हत्या और आत्महत्या की वजह क्या है, और देखिए पूरा मामला बहुत पेचीदा है। पहले आईसीआईसीआई बैंक के बाहर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है शख्स, गोली मार देता है, फिर वहां से 500 से 1 किलोमीटर दूर अपने कमरे पर जाता है, वहां पर अपनी बहन को गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार देता है और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। और उससे पहले व्हाट्सएप पर स्टेटस भी अपलोड किया गया। हत्या के पीछे पति पत्नी के बीच क्या विवाद था, फिलहाल इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन व्हाट्सएप स्टेटस और कई सूत्रों को जोड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। घटना की खबर मिली, पुलिस के अधिकारी पहुंचे, फॉरेंसिक टीम पहुंची, गोली के खोखे बरामद किए, और यह भी बताया जा रहा है कि लाइसेंसी पिस्टल नहीं थी, पिस्टल भी कहीं से ये शख्स लेकर आया था। साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीच में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वो व्हाट्सएप स्टेटस है जो इस शख्स ने लगाया था, जिसमें उसने लिखा था कि आई किल्ड माई वाइफ क्योंकि वो मेरे को चीट कर रही, शी चीटेड ऑन मी, और फिर उसने लिखा कि अब मैं खुद को और मैं अपनी बहन को मार रहा हूं, जान ले रहा हूं, और वो ये भी कह रहा है कि प्रज्ञा और भारत इस मामले के बारे में सब कुछ जानते हैं, घर जाकर बहन को भी मार दिया, मतलब दो मर्डर और उसके बाद आत्महत्या। सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के बाहर पहले बातचीत होती है, विवाद होता है, उसके बाद पत्नी की हत्या करता है, फिर वहां से हत्या करने के बाद वो घर जाता है जो कई दूरी काफी दूरी पर था, और उसके बाद फिर वो अपनी बहन की हत्या करता है जो कि बताया जा रहा है कि शारीरिक रूप से मजबूत नहीं थी। आशीष मौके से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, और क्या जानकारी अभी तक इस मामले में आ पा रही है?
2: देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी बात है कि इस समय मैं जहां पर मौजूद हूँ ये वो बैंक है आईसीआईसी जहां पर वो काम करती थी, यानी कि पत्नी मानव वाजपेयी की, और इसी बैंक से जब वो यहां पर पहुंचता है, और मैं आपको घटना स्थल दिखाता हूं, इसी रिहायशी इलाके में बैंक थी गोमती नगर के, और ये वो स्पॉट है जहां पर उसको गोली मारी जाती है, यानी कि बाहर निकालकर पत्नी को बातचीत करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम घर चलोगे कि नहीं, इस तरीके की बात होती है, हालांकि उस दौरान मना होता है और कई बार जो आर्ग्यूमेंट होने के बाद इसी जगह पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यहां पर ही पूरी तरीके से नहीं रुकता है वो, जब गोली मारता है तो कई आसपास के लोग हैं वो इस बात को देखते हैं और पुलिस को सूचना भी देते हैं, लेकिन वो इस दौरान यहाँ से सीधा चला जाता है और जाके तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका अपना घर है जहाँ पर उसकी बहन रहती थी, और वह खुद यानी मानव वाजपेयी उसकी बहन रहती थी, पहले वो बहन को गोली मारता है और फिर खुद को सुसाइड कर लेता है। इस दौरान स्टेटस लगाता है भरत और प्रज्ञा का नाम लेता है और कहता है कि उनको सब जानकारी है, चीट किया है पत्नी ने, तो ये बड़े सवाल हैं। आखिर भरत और प्रज्ञा कौन है, किस तरीके से, क्योंकि वो बहन है उसकी बताया गया, और उनमें भी कहीं ना कहीं साजिश करने की बात कही गई है, जानकारी कही गई कि उनको है इस पूरे बात की, काफी समय से प्रताड़ित होने की बात भी सामने आ रही है। अब ऐसे में पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन तो जरूर कर रही है, लेकिन अगर आप एक तस्वीर देखेंगे हिमांशु की, रोड ये चलती हुई रोड है, यहाँ से आप देखिए कि कितना भारी ट्रैफिक चल रहा है, और इसी ट्रैफिक चलने के दौरान लोग यहाँ पर रुकते नहीं है, यहीं पर स्थिति पे गोली मार दी जाती है। तो एक तरफ ट्रैफिक, दूसरी तरफ ये बैंक है, और यहीं मौजूदा गोली मारी जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि दिन दहाड़े ये पहले तो हत्या होती है, उस दौरान कोई कुछ नहीं समझ पाता है, और जब वो बारिश वाजपेयी पिस्टल निकालता है, गोली मारता है कान के पास में, उस दौरान भी कोई नहीं समझ पाता है कि क्या हुआ, और वो सीधा यहाँ से चलता चला जाता है। तो ये तो जरूर है कि उसके मन में पूरी तरीके से था कि हत्या करनी है, और उसके बाद वो जब घर पर बहन की हत्या करता है, फिर खुद सुसाइड करता है, तब भी कोई नहीं समझ पाता है। ये भी यहाँ से कुछ दूरी पर थाना है, आग पे मानेंगे 500 मीटर आगे जाएंगे तो गोमती नगर थाना है, थाने को भी सूचना मिलती है लेकिन वो भी देर में पहुंचती है। पुलिस पर भी कई सवाल है कि आखिर क्यों उसने दो हत्याएं करी, खुद सुसाइड की, दूसरा पुलिस को कितनी देर में जानकारी मिली, ना यहाँ पर पहुंच पाती है पुलिस ना ही उस जगह पर पहुंच पाती है, तो आखिर वजह क्या है इतना लेट आने का, क्योंकि यहाँ पर भी लोग देखते हैं, राजगीर देखते हैं, वो सूचना देते हैं पुलिस को, और वहां पर भी जो है लोग दरवाजा तोड़ते हैं पैर से, उसके बाद अंदर घुसते हैं, उसके बाद पुलिस। तो ये पूरी घटना कहीं ना कहीं ट्रिपल मर्डर है एक तरीके से मानेंगे, जिसमें दो हत्याएं और एक सुसाइड है, ये अपने आप को साबित करती है कि रिहायशी इलाके में दिन दहाड़े जो हत्या हुई उसमें कौन कौन साजिश करता है, किसकी लापरवाही है, ये भी बड़ा सवाल है। ये जो बैंक है दिन में खुली थी, लोग कस्टमर अंदर थे, बाहर बातचीत चल रही थी, और वो अंदर काम कर रही थी, रिलेशनशिप मैनेजर थी अंदर, वो उसके बाद बातचीत करने के लिए बाहर बुलाया जाता है, चूंकि अंदर बातचीत तो यही पे हत्या कर दी जाती है इस रिहायशी इलाके में। तो सवाल कही है कि आखिर किस तरीके से इसमें लापरवाही किसकी है, क्या पुलिस की कितनी लापरवाही है जो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूरी पर थाना मौजूद है, इसके अलावा यहीं से तकरीबन पास में अगर हम बात करें तो चौकी मौजूद है, साथ ही साथ सब लोग चल रहे हैं जिन्होंने सूचना दी थी रास्ते में। अब ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो आसपास के रहने वाले, उनको भी जानकारी इस बारे में नहीं लग पाई कि आखिर हुआ कैसे, ये क्यों इतना ऑल सडन हुआ। बैंक के अंदर अगर आप देखेंगे तो बैंक को बंद कर दिया गया है, और अभी इस समय किसी को भी आने की मनाही कर दी गई, बैंक कर्मचारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम कोशिश करते हैं पूछने की, शायद ये कुछ बात कर पाए। यहाँ पर आप लोग बताइए कि जब हत्या हुई थी यहाँ पर आप थे मौजूद, क्या हुआ था यहाँ पर? नहीं थे आप यहाँ पर, ये काम आप नहीं करते हैं?
3: नहीं,
2: मैं इस बैंक के अंदर है, गार्ड है, गार्ड आप बताइए, आप बाहर रहते थे यहाँ पर, क्या हुआ था जब हत्या हुई?
4: सर हमारी शिफ्ट 3 बजे चेंज हो जाती है।
2: तो पहले वाले कहाँ गए, छुट्टी पे?
4: हाँ सर।
2: तो क्या आप लोग को जानकारी मिली किसकी हत्या हुई?
4: नहीं,
2: देखिए कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
0: एक बात बताइए, देखिए एक बात तो बहुत तय है कि लाइसेंसी पिस्टल थी नहीं, पिस्टल लेकर आया था, यानी बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी। लेकिन अगर पत्नी से विवाद था तो पत्नी की हत्या करता, लेकिन पत्नी की हत्या करने के बाद फिर वो अपने घर पर आता है, रूम पर आता है, हनुमान चालीसा चलाता है, और उसके बाद फिर वो अपनी बहन की हत्या कर देता है। तो क्या इन तारों को अभी तक पुलिस जोड़ पाई है शुरुआती जांच में कि बहन की हत्या क्यों करी है? व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, चीटिंग की बात वहां पर की जा रही थी।
2: हिमांशु देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट आपने जो कहा कि बहन की हत्या, ये सवाल शायद पुलिस के लिए भी और उसके लिए भी, क्योंकि ये बताया गया कि ये जो हत्या हुई वो क्योंकि माता पिता नहीं है, बहन मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं थी, इस वजह से भी उसका मानना था कि शायद कौन रहेगा उसके बाद देखरेख करेगा, इसको लेकर भी ये उसने गोली मार के हत्या कर दी। और उससे पहले बहन को हनुमान चालीसा टीवी पे चूंकि चल रहा था, दिखाया गया, बताया गया, सोने के लिए कहा गया, इस तरीके से अंदर का माहौल था एक तरीके से। दूसरा, जब उसने हत्या की स्टेटस लगाया तो उसने ये भी जाहिर किया कि इन सब कांड के पीछे कौन कौन जानकार है, यानी कि अगर हत्या हुई है और मैं हत्या कर रहा हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ, तो इसके पीछे उसने दो लोगों का नाम लिखा है, एक उसकी जो मृतक है यानी कि जो पत्नी थी उसकी बहन का नाम लिखा है और बहनों का नाम लिखा है, इस तरीके से भी नाम लिखे हैं। तो ये भी बड़ा सवाल है कि क्या जानकारी थी इन लोगों को, किस तरीके से, तो पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है, जानकारी कर रही है कि क्या वो प्रताड़ित हो रहा था जिस तरीके से ये हत्या हुई, क्या इतने, क्योंकि 10 वर्ष शादी के हो गए थे और 1 साल से पत्नी साथ में नहीं रह रही थी, तो ये तो जरूर माना जा रहा था कि आखिर बार बार ये प्रयास किया जा रहा था कि पत्नी साथ में रहे, ऐसा उसका कहना, जो लोग थे जानने वाले उसका कहना था, तो जो साथ में नहीं रह रही थी यही वो मनाने के लिए आज भी आया था मौके पर।
0: अच्छा आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, जैसा आप बता रहे हैं कि मनाने की कोशिश की गई थी, ये कहा जा रहा था कि चलो मेरे साथ चलो, लेकिन नहीं गई तो उसके बाद गोली मार दिया। लेकिन यहाँ जिस जगह पर आप मौजूद है वहां पर अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद वो घर जाता है 500 से 1000 मीटर दूर, यानी लगभग आप मान के चलिए कि आधा एक किलोमीटर दूर वो घर होगा। तब तक पुलिस एक्शन में नहीं आ पाई, पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। पुलिस की तरफ से क्या कहा गया इस मुद्दे पर वो सुनते हैं।
5: आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया, उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पर मौके पर जो लोग मौजूद थे इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद इसी घटनाक्रम के थोड़ी देर बाद गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पर वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है।
0: पुलिस का बयान आपने सुन लिया। हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव उस जगह पर मौजूद थे जहां पर पहली बार उसने वारदात को अंजाम दिया, जहां पर अपनी पत्नी की हत्या की, वहां पर आशीष मौजूद थे। लेकिन वहां से वो जाता है अपने घर जहां वो अपनी बहन की हत्या करता है और खुद को भी गोली मार के जान ले लेता है, सुसाइड कर लेता है। उस जगह से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव की।
6: हाँ, मतलब जहां से लोग एंट्री करते हैं घर वाले हैं, ये पूरा देखे किराए का एक मकान था जहां वो अपनी बहन के साथ रहता था। हालांकि जब इनकी शादी हुई थी तो दोनों के बीच रिश्ते जो थे वो मधुर थे, लेकिन समय के साथ चीजें खराब होती चली गई। अब आप यहाँ पर आए ये देख सकते हैं आप, तो तमाम पुलिसकर्मी आपको भारी संख्या में यहाँ जो फोर्स है वो डिप्लॉयड नजर आएगी, भारी संख्या में पुलिसकर्मी आपको यहाँ नजर आएंगे क्योंकि इस तरह की वारदात यहाँ पर कुल मिलाकर हुई है और एक के बाद एक पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनका आना भी यहाँ पर लगातार जो है वो लगा हुआ है। तो बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कुल मिलाकर 3 मौतें चंद आधे पौन घंटे के बीच हो गई हैं और जिसमें वजह क्या है कोई नहीं जानता। आरोप एक तरफ से आए हैं, क्या इसमें निकलता है, लेकिन इतना तो साफ है जो भी है पारिवारिक आपसी रंजिश इस पूरे मामलात की वजह बताई जा रही है। लेकिन जरूर ये एक बड़ी घटना है और जिस तरीके से पति ने पत्नी को मारा फिर बहन और फिर खुद को, कहीं ना कहीं राजधानी में इस वक्त माहौल गर्मा गया है।
0: महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में अब ऑटो टैक्सी चलाने के लिए मराठी का इम्तिहान। ठाणे से शुरू हुई आरटीओ की चेकिंग अब पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गई है। आरटीओ की टीमें ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों से मराठी की प्रैक्टिकल जानकारी परख रही हैं। टेस्ट हो रहा है। ठाणे में कई जगहों पर चेकिंग चल रही है और मराठी की जानकारी कम मिलने पर ड्राइवरों को 1 महीने का नोटिस दिया जा रहा है। अब आरटीओ के मुताबिक ड्राइवरों से 15 सवालों वाला मौखिक टेस्ट लिया जा रहा है। मसलन यात्री जिस जगह जाना चाहता है उसका पता समझना मराठी में जवाब देना, यात्रा में कितना वक्त लगेगा ये भी मराठी में बताना, पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है ताकि पता चल सके। नियमों का पालन नहीं करने पर बैच 3 महीने के लिए निलंबित हो सकता है और लगातार इनकार करने पर बैच और परमिट रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है। कुछ ड्राइवरों का कहना है कि बुनियादी मराठी उन्हें आती है लेकिन किसी एक भाषा को बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
7: और एक नोटिस आरटीओ की तरफ से तैयार किया गया है उन लोगों को और 1 महीने की मोहलत देने के लिए है जो अभी भी इस ओरल टेस्ट में फेल हो रहे हैं।
8: हाँ जी, वैसा ही है जैसे रूल में हमारा वैसा प्रावधान किया जा चुका है कि जिसको नहीं आता है तो उनको 1 महीने का नोटिस सर्व करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये चल रहा है।
7: इसमें ऐसी कुछ बात नहीं कि आज से नहीं मराठी आती है तो टैक्सी ऑटो चलाने नहीं मिला जाएगा, जो मुद्दत है वो देने के लिए तैयार है। मराठी सीखने की इच्छा होनी चाहिए, इतना ही इस रूल का प्रावधान।
8: हाँ, उतना ही है। वैसे अभी 15 अगस्त तक हमारे ऑफिस ने 3767 लोगों को भी ट्रेनिंग दे चुका है। मराठी प्रसारण मंडल के हिसाब में गवर्नमेंट ने भी उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, उतने लोग सीखे हैं। तो जो नहीं सीखे हैं तो उनका भी हम रोड ऑन रोड अभी सब खरारे का चेक कर रहे हैं, सर्टिफिकेट है या नहीं है, उसको वर्किंग नॉलेज है या नहीं है, तो उसके हिसाब से हम आगे का एक्शन डिसाइड कर रहे हैं।
7: धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आरटीओ इंस्पेक्टर सुत्रावे साहब हैं, उनके जो टीम है वो आरटीओ की यहाँ पर आपको दादर में जगह जगह दिखेंगी कि इंस्पेक्शन जो है वो टैक्सी ड्राइवर्स के साथ हो रहा है। उनको 15 जो क्वेश्चन हैं बेसिक क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं, उसका बिल्कुल भी मराठी का अगर नॉलेज नहीं है तो एक नोटिस दिया जा रहा है जिसमें 1 महीने के लिए 1 महीने के अंदर मराठी सीखने की मुद्दत है। अगर रिपीटेड नोटिस देने के बाद भी अगर बेसिक मराठी नहीं प्रोफिशिएंट होती है तो लाइसेंस सस्पेंशन पर बात जा सकती है, इसमें लॉ में प्राविधान है। सचिन सावंत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: महाराष्ट्र से लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की बात करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज बारिश के पानी में डूब गई, हैरान मत होइए। 3 दिन हो गए हैं प्रयागराज के पौष इलाकों में पानी भरा हुआ, अभी नीचे नहीं हुआ। गंगा यमुना जी उफान पर हैं और वो तो है ही, बाढ़ का पानी अभी इतना नहीं बढ़ा है कि शहर में घुस जाए, लेकिन बारिश का पानी शहर से निकल नहीं रहा। जल निकासी के सारे दावे कागजों तक साबित हो रहे हैं।
9: ये प्रयागराज है, संगम नगरी प्रयागराज। कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन अभी तो एक्वा सिटी प्रयागराज बनी हुई है। बादल आए, बरसे और चले गए, लेकिन स्मार्ट सिटी का सिस्टम देखिए कि पानी जहां के तहां जमा है। ये प्रयागराज का सिवाय चिंतामणि रोड है, कहने को ये पौश इलाका है, लेकिन पौश इलाके की मूलभूत व्यवस्था यही है कि पानी की वजह से बिजली पानी सब बंद है।
2: सामने देखिए पानी है, लहरें हैं, और इसी पानी और लहरों की वजह से लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, उनके सामने समस्याएं हैं। लाइट उनको 3 दिन से नहीं मिल रही, घर में पानी नहीं मिल रहा है, और हर एक शख्स अपने घरों में इस वक्त कैद है। वजह यह है कि यहाँ प्रयागराज में बारिश हुई, उस बारिश की वजह से घरों के सामने सड़कें हैं, वहाँ जलभराव की स्थिति है, और ये पानी जो बारिश का पानी है सड़कों के अलावा घर में भी घुस गया है। आलम यह है कि लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं बारिश के पानी ने इन सभी लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट कर लिया है।
9: लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि घर के बाहर निकले तो रोड पर पानी, घर पर रहें तो कमरे में पानी। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा दिक्कत उन बच्चों को हो रही है जिनकी परीक्षाएं हैं, क्योंकि जलभराव की वजह से बिजली कट गई है, पीने के पानी तक का संकट हो गया है।
10: भैया इसीलिए कैद होना पड़ रहा है, पहली बात तो हम लोग के घर में बहुत सारा पानी घुस चुका है तो हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, मेरे स्कूल में दो बार छुट्टी हो चुकी है, हम लोग के 2 एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, और हम लोग के एग्जाम लगातार होने वाले थे, लेकिन अब दो दिन उसमें और लगेगा, जो कि हम लोग के लिए घातक चीज होती है, जानते हैं बच्चों के लिए। और हम लोग को बिल्कुल क्या ही बोले भैया, इतना गंदा पानी है, हम लोग उसी में चल रहे हैं, हम लोग को उसमें चलना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना भैया, ऐसे कि सामान आ पाए घर का।
11: दिक्कतें बहुत है भैया, हम लोग समझिए घर में बंद हो गए, कैद हो गए हैं, जिसको कहते हैं जेल, हम लोग जेल में बंद है। ना हमारे पास पानी है, ना लाइट, हम लोग रात रात भर नहीं सोए, पंखा पुराना दिया, बत्ती अगरबत्ती यही सब कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है, किसी तरह जो जरा से इकट्ठा पानी हुआ तो उसको उबाल के ठंडा करके वही पी रहे हैं।
12: वजह सरकार का भ्रष्टाचार है, वर्तमान भाजपा सरकार का, हम लोग भाजपा के वोटर रहे हैं, लेकिन अगर अब नहीं बोलेंगे तो ये पानी हमारे सर पे चढ़ जाएगा, और जिसको हम लोगों ने सर से उठा के जमीन से ऊपर बैठाया है उसके नेता बेअंदाज हो गए हैं। हम लोग जो लगातार सबसे इलीट क्लास है, भाजपा को सपोर्ट करता रहा, उन्होंने बाहर के टेंडर को, बाहर के ठेकेदारों को ठेका दिया है, सारे नाले अंडरग्राउंड हुए हैं जो कि चोक है, और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना सभासद आए, ना विधायक आए, ना सांसद, तीनों भाजपा के।
9: आसमान से मानो आफत बरस रही है, बादल मानो इस संकट से बेफिक्र है। संकट काल की ये तस्वीरें प्रयागराज की है, वहाँ रामबाग रेलवे स्टेशन के हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बारिश हुई है। पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में मूसलाधार बारिश जारी है, इस वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रयागराज में अधिकतर जगहों पर बारिश का पानी भर चुका है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर समंदर जैसे हालात, तो लोगों के घरों तक बारिश का पानी पहुंच गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इस संकट के बीच हाउस अरेस्ट जैसे हालात, जरूरी काम से बाहर निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। वहीं घर की महिलाओं का कहना है पिछले 3 दिनों से घर के अंदर बाहर बारिश का पानी भर गया है। ये प्रयागराज के जॉर्ज टाउन का यूनियन बैंक है, जलभराव की वजह से बैंक बंद है। बैंक ही नहीं, शहर के कई प्रमुख अस्पतालों के आसपास भी पानी भरा हुआ है।
2: जहां पर जलभराव की वजह से बंद किया, दूसरे दिन भी पानी यहां पर भरा हुआ है। ऐसा ही नज़ारा बैंक के अलावा अगर आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो कुछ नज़ारा बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप देखिए सामने जो घर हैं उन घरों के सामने भी वही स्थिति है, और दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक हॉस्पिटल है, प्रीति नर्सिंग होम,
13: उसके तरफ भी देखेंगे तो वहाँ भी पानी भर गया है और गाड़ियाँ डूबी हुई है, लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। और आलम यह है कि देखिए, पहले हॉस्पिटल, उसके बाद बैंक, यानी बैंक तो डूबा ही डूबा, हॉस्पिटल भी देखिए पूरी तरीके से पानी से भर गया।
9: गंभीर स्थिति के बीच प्री प्राइमरी से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आनंद राज के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
0: प्रयागराज से आगे बढ़ेंगे, यूपी के कुछ और इलाकों की बात करते हैं। बिजनौर से बनारस तक गंगा की लहरें उफान मार रही हैं। सबसे बुरे हाल है बिजनौर के, यहां गंगा का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। अब बिजनौर में तो छोटी छोटी नदियां भी उफान मार रही हैं, तो वहीं कानपुर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बनारस के सभी घाट पानी में डूब गए हैं।
9: पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी दिख रहा है। उत्तराखंड से सटा ये यूपी का जिला बिजनौर है, जहां गंगा नदी उफान पर है। गंगा के रास्ते में जो भी आ रहा है वो इसी तरह लहरों के साथ बहता चला जा रहा है। बिजनौर में इस समय सिर्फ गंगा नहीं बल्कि उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां भी उफान पर है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते बिजनौर में बाढ़ आ गई है। गंगा खतरे के निशान के करीब है, सहायक नदियां भी पूरे उफान पर हैं। बिजनौर में बिजनौर हरिद्वार रोड पर मालन नदी का पानी सड़क पर 2 से 3 फीट ऊपर बह रहा है। सबसे बुरे हालात नगीना तहसील में है, जहां पर खो नदी कहर बरपा रही है। खो नदी के कटान में कई खेत बह गए, नदी किनारे बना मंदिर और हैंडपंप भी पानी में बह गया।
14: बिजनौर में हालात इतने खराब है कि गंगा खतरे के निशान पर है, तो सहायक नदियां भी उफान पर है। इस समय बिजनौर में गंगा और खो नदी अपने पूरे उफान पर है।
9: बाढ़ के चलते चांदपुर मवाना रोड को बंद करना पड़ा। चांदपुर के लपुर में तो गंगा का पानी कई गांवों में घुस गया है। स्टेट हाईवे पानी में डूबा है। मजबूरी में लोग अपने वाहनों को ट्रैक्टर ट्राली पर रखकर अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। बाढ़ की वजह से हजारों बीघा जमीन जलमग्न हो गई। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर है। पौड़ी गढ़वाल से निकलने वाली इस नदी में पहाड़ों से पानी आ रहा है, जिसकी वजह से इसके मैदानी इलाके सतर्क हो गए हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी चेतावनी बिंदु को पार कर गई है। कानपुर के गंगा घाटों पर इसी तरह से पुलिस की टीमें नावों से गश्त कर रही हैं, लोगों को आगाह कर रही हैं कि गंगा तट से दूर रहें, गंगा किनारे ना जाएं, क्योंकि गंगा जी में पानी तेजी से बढ़ रहा है। कानपुर के कई घाट पानी में डूब गए हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीमें संवेदनशील इलाकों की पहचान कर रही हैं, जहां खतरा ज्यादा है।
15: बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के खतरे के बीच में प्रशासन द्वारा कमर कस ली गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह मौके पर जाकर घाटों के पास निरीक्षण करने पाए और अगर सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लेने पाए। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, जो खुद बोट के जरिए अपने बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं घाटों का। स्पीकर के जरिए लोगों को चेताया जा रहा है कि वह किस तरीके से सावधान रहे, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो डेंजरस मार्क पे लगभग पहुंच चुका है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर द्वारा उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है, जहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। घाटों के पास से गुजरते हुए आप देखेंगे यहां पर लोगों के घर भी है जो वहां पर रहते हैं, और ठीक 2 से 3 फीट दूर ही अब गंगा रह गई है। और किसी भी वक्त जो वाटर लेवल है जो नरोरा बैंक से जो है छोड़ा जा चुका है, वो इन घरों के ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कैसे लोगों को यहां से शिफ्ट करने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ेगी तो यहां से उनको दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा। इसी को देखने के लिए पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर मौजूद।
9: गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए कानपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कानपुर के आला अफसर खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कानपुर बैराज पर अपस्ट्रीम जलस्तर 113.570 मीटर और डाउनस्ट्रीम जलस्तर 113.420 मीटर दर्ज किया गया। वहीं बैराज से करीब 2,91,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी जल स्तर चेतावनी स्तर से नीचे है, लेकिन प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। हरिद्वार बैराज से 1,18,000 622 क्यूसेक और नरौरा बैराज से 115,137 क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया है, जिस वजह से आने वाले दिनों में जल स्तर और बढ़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए कानपुर में गंगा किनारे के इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। अब जरा वाराणसी की भी तस्वीरें देखिए। काशी के सभी घाट जल समाधि ले चुके हैं। गंगा का पानी अब बनारस की गलियों में घुसने लगा है। घाटों पर बने मंदिर डूब गए हैं। बनारस में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन की टीमें भी अलर्ट हैं। मणिकर्णिका घाट भी पानी में डूब गया है। अब घाट की बजाय छत पर चिताएं जल रही हैं।
16: बाढ़ की विभीषिका ने डराना शुरू कर दिया है। वाराणसी में पक्के घाटों को डूबो।
0: और देखिए इसी दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। हरियाणा के हिसार में कोर्ट के अंदर गोली चलती है। एक हिस्ट्री शीटर जो पेशी पर आता है उस पर फायर किया जाता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हिसार में कोर्ट में फायरिंग और एक शख्स की मौत हो गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पेशी पर आए गैंगस्टर विनोद काना को गोली मार दी गई कोर्ट परिसर में। और ये बताया जा रहा है कि 12 राउंड फायरिंग हुई कोर्ट परिसर में। बदमाशों की तरफ से 12 राउंड फायरिंग की गई, जबकि कोर्ट परिसर वो जगह है जहां भारी संख्या में पुलिस मौजूद रहती है, पुलिस बल मौजूद रहता है। और पुलिस के सामने पेशी पर आए गैंगस्टर विनोद काना को गोली मारी गई और एक दो फायर नहीं हुए, करीब 12 फायर हुए हैं। यह और कहेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
18: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
19: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
20: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: in association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी.
2: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का.
3: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे.
2: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है. वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए.
4: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है.
5: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है.
6: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को. और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
7: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है.
2: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं. जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मैनेजर समेत दो महिलाओं की हत्या। बहन और पत्नी को गोली मारने के बाद शख्स ने की खुदकुशी। चल रहा था तलाक का केस। वंदे मातरम के सिर्फ दो छंद गाने के कांग्रेस के फैसले पर भड़के गृहमंत्री अमित शाह। कहा, कांग्रेस ने रखी विभाजन की नींव, ये शहीदों का अपमान।

0: दक्षिण के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद, तमिलनाडु के विजय और कर्नाटक के डीके शिवकुमार के साथ आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू भी शामिल। सीडब्ल्यूसी में मल्लिकार्जुन खड़गे का छल का दर्द, कहा उत्तराखंड में मेरे मंच के शुद्धिकरण को बनाना चाहिए था देशव्यापी मुद्दा, कांग्रेस के बड़े नेताओं को बतानी चाहिए थी दलित अपमान की व्यथा। हिसार कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग से हड़कंप, विनोद काना नाम के शख्स की मौत, एक घायल, गैंग वॉर की आशंका।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो गुड।

0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। जम्मू कश्मीर पर अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर के बयान से पाकिस्तान बौखला गया है और इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को तलब कर पाकिस्तान ने कड़ा विरोध जताया है। लेकिन अमेरिका के इस रुख ने एक बात साफ कर दी है कि पाकिस्तान का जो झूठा नैरेटिव था जम्मू और कश्मीर को लेकर, जो पाकिस्तान दशकों से चला रहा था, अब पूरी तरह वो चकनाचूर हो गया है, ध्वस्त हो गया है। दूसरी तरफ गुलाम कश्मीर यानी पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा जनाक्रोश भड़क उठा है। जी हां, पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर, गुलाम कश्मीर में जो आवाम है वो इस समय सड़कों पर है। सड़कों पर उतरी उग्र जनता ने गोली के कानून को नकारते हुए पाकिस्तान के हुक्मरानों को यानी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सीधी चेतावनी दे दी। इधर दिल्ली में पाकिस्तान का जो उच्चायोग है उसके बाहर भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा से पाकिस्तान में खिलवाड़ किया। उसके जवाब में देखिए, भारत अब नया भारत है और हर ईंट का जवाब पत्थर से देता है। तो क्या किया भारत ने, जब पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के सामने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो जवाब में चाणक्यपुरी में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, उच्चायोग है, उसके बाहर जो अवैध ढांचे बने हुए थे, बुलडोजर चल गया राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान पर, उसकी एम्बेसी के सामने, हाई कमीशन के सामने बुलडोजर चल गया। रणभूमि की चौथी बड़ी खबर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लेकर है। दरअसल वो अपने लिए एक और शक्ति कवच ले लेना चाहते हैं। जी हां, कैबिनेट ने नए डिफेंस एक्ट को पाकिस्तान में मंजूरी दे दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के निर्विरोध सैन्य तानाशाह अब बन चुके हैं। तीनों सेनाओं से लेकर परमाणु बटन तक अब सब कुछ आसिम मुनीर के नियंत्रण में है। शाबाश शरीफ, पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं शाबाश शरीफ अब केवल बूट पॉलिश करने के लिए वहां रह गए। इन तमाम बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे जब अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गौर, जो साउथ एंड सेंट्रल एशिया में भी अमेरिका के ओनवॉय हैं या राजदूत हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं, यानी लगातार व्हाट्सएप पर दोनों संपर्क में रहते हैं, देर रात तक बातचीत होती रहती है, आखिर जब सर्जियो गौर ने कश्मीर पर एक बयान दिया उससे पाकिस्तान को इतनी मिर्ची क्यों लगी, क्यों पाकिस्तान बौखला गया, देखिए यह रिपोर्ट।
1: I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here to visit.
2: ये सुनते ही पाकिस्तान बौखला गया, कश्मीर पर उसका प्रोपेगेंडा औंधे मुंह गिर गया। ट्रंप के बेहद करीबी और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर न केवल श्रीनगर पहुंचे बल्कि इसे भारत का बेहद अहम हिस्सा भी बता दिया।
1: And we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi.
2: सर्जियो गौर का ये बयान महज इसलिए अहम नहीं क्योंकि वो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि ट्रंप ने उन्हें दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका का विशेष दूत भी बनाया है। इस लिहाज से उनके बयानों का प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर पड़ता है। उनके कश्मीर आने से पहले महबूबा मुफ्ती ने ये मांग उठाई थी कि अमेरिका कम से कम कश्मीर के लिए अपनी एडवाइजरी को हटा ले, जिसमें उसने अमेरिकी लोगों को कश्मीर ना जाने की सलाह दे रखी है। इस पर भी सर्जियो गौर ने कश्मीर के पक्ष में बड़ा बयान दे दिया।
1: The chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. Because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
2: अमेरिका ने इस सच्चाई को कबूल कर लिया कि भारत का जम्मू कश्मीर न केवल सुरक्षित है बल्कि इसे और महफूज बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज लाशें बिछा रही है, जबकि श्रीनगर में अमेरिका के राजदूत बेखौफ होकर शिकारा की सवारी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद सर्जियो गोर के बयानों से पाकिस्तान बौखला गया। उसने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास की प्रभारी राजनयिक नताली बेकर को विदेश मंत्रालय तलब किया। उसके विदेश मंत्रालय ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने की कड़ी निंदा करता है और इसे पूरी तरह से खारिज करता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने ट्रंप के बेहद करीबी सर्जियो गोर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बता दिया। पाकिस्तान में मची खलबली अभी खत्म नहीं हुई है। उसके पूर्व राजनयिक मसूद खान कह रहे हैं कि सर्जियो गोर को जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी नहीं। दरअसल पाकिस्तान इतिहास में जी रही है और उसे ये समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका का रुख एक बार फिर कैसे बदल गया। ऐसे में उसे अब यही समझ लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा तभी सुलझेगा जब उसके कब्जे वाला कश्मीर भी भारत के जम्मू कश्मीर के साथ मिल जाएगा। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
0: तो भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर के बयान से पाकिस्तान बौखला गया, लेकिन उसने अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी गुलाम कश्मीर और भारत में जो जम्मू और कश्मीर है उसके जो हालात हैं और जो तस्वीरें हैं, हम आपको दोनों तस्वीर दिखाना चाहते हैं क्योंकि दुनिया के सामने अब दोनों तस्वीरें साफ है। एक तरफ अब डल झील देखिए, श्रीनगर की डल झील में अमेरिका के राजदूत लगभग एक घंटे से ऊपर शिकारा में नौकायन करते रहे, नौका विहार करते रहे और उसका जो आनंद था, अमेरिका के राजदूत, अमेरिका के कई राजनयिक, कुछ यंग डिप्लोमैट्स, वो सब इस नौकायन शिकारा में बैठे हुए थे। जो दूसरी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, हजारों की संख्या में गुलाम कश्मीर यानी पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में लोग सड़कों पर आए हैं। एक बात महत्वपूर्ण है, अमेरिका के राजदूत ने भी, जो भारत लगातार कह रहा था कि कश्मीर भारत का अहम और अभिन्न अंग है, उन्होंने कह दिया, माना कि कश्मीर भारत का अहम अंग है, शांति यहां है, समृद्धि यहां है, तरक्की यहां है और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कदम उठाए उससे जो स्थिति है बेहद उसमें सुधार आया। इस बीच एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के फैसले पर रोक लगा दी है। जो जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल के परीक्षाएं थी जिनको कैंसिल, जिन सिलेक्शंस को, नौकरियों को परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है जेपीएससी और जेएसएससी। हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के फैसले पर अब रोक लगा दी है क्योंकि अभ्यर्थी वो कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा ये जो निर्णय लिया गया है ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी न्याय के विरुद्ध है, जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सभी के खिलाफ कार्रवाई गलत है। मेहनत की है छात्रों ने, बहुत मेहनत से कुछ छात्रों ने परीक्षा पास भी की थी, कुछ लोगों को अन्य जगह नौकरी भी मिली थी और अब अगर सब कुछ कैंसिल कर दिया जाएगा तो उनके साथ ये अन्याय होगा। जिसने गलत किया पड़ताल की जाए, जिसने या रिश्वत दी, जिसने पेपर खरीदे, जिसने कुछ गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो हेमंत सोरेन सरकार का निर्णय है, अभ्यर्थियों का, पेटिशनर्स का यह मानना था कि ये दबाव में लिया गया निर्णय है और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है यानी जिस तरह से न्याय होना चाहिए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए, उसके विरुद्ध ये फैसला था। वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, विस्तार से सुनेंगे, लेकिन फिलहाल झारखंड में परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। जेपीएससी, जेएसएससी, परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि दोनों ही तरफ से कानूनी दलीलें बहुत ताकतवर हैं और अब अदालत अब दोनों पक्षों को सुनेगा। लेकिन हम लौटते हैं जम्मू और कश्मीर और गुलाम कश्मीर यानी पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में इस समय क्या हो रहा है। एक तरफ तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अमेरिका के राजदूत डल झील में नौका विहार कर रहे थे शिकारों में, दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो हजारों की संख्या में पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के लोग वो सड़कों पर है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। एक परिस्थिति थी 2014 से पहले की, एक तस्वीर है 2016 या यूं कहें 2019 के बाद। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल कर उसका अलग स्टेटस खत्म किया गया और उसके बाद से कश्मीर एक तरह से वहां आतंकवाद के ताबूत में एक बड़ी कील ठोक दी गई। पिछले 12 वर्षों में डर का नामो निशान आतंक पर एक के बाद एक करारा प्रहार हो रहा है। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर और उनकी टीम सुकून से शिकारा पर सवार दिख रहे हैं। दूसरी तरफ गुलाम कश्मीर यानी पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान सरकार और उनके जो हुक्मरान हैं उनके खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से इसको कहा जा रहा है पाक अधिकृत कश्मीर में, बगावत एक तरह से जम्मू कश्मीर जो आवामी एक्शन कमेटी है JAAC उसके नेतृत्व में आवाम सड़कों पर है और पाकिस्तान फौज और शाबाज शरीफ की ईंट से ईंट बजा दी है। वो पाकिस्तान से अब आजादी चाहते हैं जिसने उनका इस्तेमाल सिर्फ भारत के खिलाफ किया है और इसीलिए पालंदरी में आवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन कश्मीरी ने पाकिस्तानी सेना को अब खुली चुनौती देते हुए दहाड़ लगाई है। हम तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते, तुमने निहत्थे कश्मीरियों की 100 से ज्यादा लाशें गिराई हैं। ये हम नहीं, ये पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में खुले तौर पर अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने 100 से ज्यादा कश्मीरियों को मार दिया। अमन कश्मीरी ने पाकिस्तान के उस झूठे कश्मीर नैरेटिव की धज्जियां उड़ाते हुए आर्मी चीफ पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी पोल खोल दी और याद दिलाया कि जिसने बाजवा ने कबूला था कि पाकिस्तान के टैंकों ने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए उन टैंकों में ईंधन नहीं था। सुनिए,
3: हम इनसे कहते हैं कि आपके बस में नहीं है, ना ना ना ना ना कमियों आपके बस में नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं और हम आपसे कहते भी नहीं है। कश्मीर की नौजवान नस्ल ये मर्द और खवातीन आपसे ये कहते हैं कि हम आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करते कि आप कश्मीर आजाद करवाएं, इसलिए कि 2019 में बाजवा ने कहा था कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है, इसलिए हम हिंदुस्तान से जंग नहीं लड़ सकते। हम आपसे कहते हैं आप पीछे दफा हो जाएं, हम खुद लड़ लेंगे, हमारी जमीन है। और यही वो एक बात है
0: पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आजादी की बुलंद हो रही है आवाज और इस आवाज को बुलंद कर रहे सरदार अमन कश्मीरी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल खोल दी। बड़ी बात की है, अमन कश्मीरी ने खुलकर कहा है कि पाकिस्तान ने ही भारत के खिलाफ आसिया अंदराबी से नारे लगवाए थे। सोचिए, दुख्तराने मिल्लत की आसिया अंदराबी, पाकिस्तान ने ही यासीन मलिक से भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के नेता कह रहे हैं। उन्होंने भारत के कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को तार तार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर में 1.5 लाख लोगों को हिंसा की आग में झोंक दिया। ये है पाकिस्तान की असलियत।
3: हुक्मरानों ने हमारे साथ मायदा करने के बाद मायदा किया, उन्होंने हमारे साथ क्या हम ये मुतालबात मानेंगे, उन्होंने मायदा किया हमारे साथ और मायदा करने के बाद निहत्ते कश्मीरियों की 100 लाशें गिरा दी गई, 100 से जायद लाशें निहत्ते कश्मीरियों की गिरा दी गई और उन पर गोलियां बरसाई गई और इल्जाम लगाते हैं, सबसे ज्यादा इल्जाम लगाते हैं, मुझ पर लगाते हैं इल्जाम कि ये जो है वो इश्तियाल अंगेज तकरीरें करता है। मेरा इश्तियाल अंगेजी क्या है, हमारी इश्तियाल अंगेजी क्या है, मैं आपको वजाहत करना चाहता हूँ कि हमारी इश्तियाल अंगेजी क्या है। हमारी इश्तियाल अंगेजी ये है कि हम इनसे पूछते हैं कि 78 साल आपने कश्मीर वैली के अंदर कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान आबाद करवाए, लोगों को 1.5 लाख लोग आपने शहीद करवाए, आसिया इंद्राबी से आपने नारे लगवाए, आज वो उम्र कैद काट रही है। यासीन मलिक आज हिंदुस्तान की जेल में उम्र कैद काट रहा है। आपके पास रियासत पाकिस्तान के पास उन्हें छुड़ाने का कोई प्लान है? ریاست پاکستان کو ان کو چھڑانے کا کوئی پلان ہے؟ آج آپ کا نیشنل میڈیا آسیہ اندرابی کو دکھاتا ہے، آج آپ کا باقی میڈیا جو ہے وہ ان کشمیر کی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جنہیں آپ نے جیل میں پہنچایا انہیں دکھاتا ہے۔
0: بے نقاب کر دیا اس نے پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی آرمی کو، وہ پاکستان کی آرمی جس نے آسیہ اندرابی، دختران ملت نام کے ایک آتنکی سنگٹھن کی آسیہ اندرابی سے بھارت ورودی نعرے لگوائے، یاسین ملک نے جو آتنگ کیا وہ پاکستان کے اشارے پر کیا، پاکستان کے ٹکڑوں پر پل کر کیا، اب یہ پاک ادھکرت جموں کشمیر کے لوگ کھل کر پاکستان کی سینا کو اور آتنکوادیوں کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ ویسے بھارت میں پردھان منتری نریندر مودی نے ایک سدھانت بنا دیا کہ پاکستان کی طرف سے اگر گولی آئے گی تو بھارت کی طرف سے گولا جائے گا، اور یہ سدھانت ہر روپ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اگر پاکستان نے پہلگام میں بے گناہوں کی ہتیا کروائی، ہندوؤں سے نام پوچھ پوچھ کر ان کی ہتیا کروائی، تو آپریشن سندور میں پاکستان کے آتنکی ٹھکانے ہی نہیں ملٹری بیسز بھی تباہ کیے گئے۔ اسی سدھانت کے تحت نئی دلی میں بھی جو پاکستان کا اچایوگ ہے اس کے غیر قانونی کنسٹرکشن پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے۔ دراصل کچھ دنوں پہلے پاکستان کی راجدھانی

0: चौक के बाहर जो सुरक्षा बैरिकेड और गाड़ियों की पार्किंग के लिए जो कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, पोल लगाए गए थे, उसे मनमाने ढंग से हटा दिया, गिरा दिया। इस हरकत के जवाब में भारत सरकार ने जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ये रुख अपनाते हुए कल देर रात नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग के बाहर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। दूतावास या वीजा, जो पाकिस्तान का उच्चायोग है उसके पीछे वीजा सेक्शन है, वीजा सेक्शन के पास जो अस्थाई टिन के शेड बने थे, शेल्टर बने थे, कंक्रीट की दीवारें और लोहे के फ्रेम बने थे, वो सब गैर कानूनी थे। कल रात को जेसीबी पहुंचा, जिसको जेसीबी मशीन पूरी तरह से जब आगे बढ़ी, एक एक करके हर गैर कानूनी स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया। वीजा के लिए आने वाले लोगों की लाइन व्यवस्थित करने के लिए सड़क की लेन में अवैध रूप से बनाए गए लोहे के क्यू लाइनर्स को उखाड़ दिया गया। बाहरी सुरक्षा के लिए लंबे समय से लगे ट्रैफिक बुलाज और सुरक्षा बैरिकेड्स को दिल्ली पुलिस ने वहां से हटाकर बाहरी सुरक्षा घेरा पूरी तरह से साफ कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के प्रशासन की कार्रवाई का यह जवाब है जो सोमवार को भारत के उच्चायोग के खिलाफ पाकिस्तान में हुई थी। अतिक्रमण और नियमों के उल्लंघन को निशाना बनाकर या उसको बहाना बनाकर भारतीय उच्चायोग के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल्स को पाकिस्तान ने हटा दिया था। अब उसका जवाब भारत ने सूद समेत चुका दिया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर मेरी सहयोगी शिवानी शर्मा पहुंची, देखिए उनकी ये रिपोर्ट।
1: दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से इस अतिक्रमण को हटाया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर है। ये वो इलाका है जहां पर टीन शेड्स लगाकर निर्माण किया गया था। ये अनधिकृत निर्माण था, पिछले कई दिनों से ये यहां पर मौजूद था। ये वीजा विंडो है जिसके ऊपर ये कवर कर दिया गया था जिसको, और इसे अब हटा दिया गया है। ये अवैध निर्माण था और खास बात ये है कि ये एक्शन भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान में एक्शन हुआ लगभग तीन दिन पहले, वहां पर पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में जो भारत का दूतावास था वहां से सिक्योरिटी बैरिकेड्स हटाए गए, पार्किंग पोल्स हटाए गए, और उसके लगभग तीन दिन बाद यहां ये एक्शन हुआ है नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं ये जो अतिक्रमण था इसको हटा दिया गया है। ये हाई सेंसिटिव जोन है और ये एक्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के डिप्लोमैट को समन किया और आपत्ति जताई क्योंकि सर्जियो गौर जो अमेरिकी अम्बेसडर हैं भारत में, वो श्रीनगर गए, उन्होंने कश्मीर के को भारत का एक महत्वपूर्ण अंग कहा और उसके बाद पाकिस्तान की खीज साफ दिखाई दी। पाकिस्तान ने अमेरिकी अम्बेसडर को वहां पर न सिर्फ समन किया बल्कि एक लंबा चौड़ा फरमान जारी कर दिया और भारत को कश्मीर का एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान लगातार इस पूरे मुद्दे पर बार बार उसको इंटरनेशनलाइज करता रहा है और अमेरिका की तरफ से जब ये एक बार कह दिया गया कि कश्मीर जो है अभिन्न अंग है भारत का, तो पाकिस्तान खींच गया। और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से यहां पर एक अतिक्रमण जारी था पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जिसको अब हटा दिया गया है और ये निर्माण पिछले कई दिनों से यहां पर मौजूद था। आप देखिए पूरी विंडो को कवर किया गया था, हाई सेंसिटिव जोन है यहां पर और अब इस पूरे निर्माण को हटा दिया गया है। यहाँ पर पिलर्स हैं, पोल्स हैं और टीन शेड्स आपको बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारा निर्माण अब पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से हटा दिया गया है। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक।
0: अच्छा, पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है और पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ सरकार है, उन्होंने एक बार फिर घुटनों के बल रेंग रेंग कर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आगे सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी संशोधन को हरी झंडी दे दी है और इसके साथ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में निर्विरोध तानाशाह, सैन्य तानाशाह या मिलिट्री डिक्टेटर अब बन चुके हैं। इस कानून के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF के पद को कानूनी और प्रशासनिक तौर पर असीमित शक्तियां दे दी गई हैं। ये क्या शक्तियां हैं? पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, तीनों सेनाएं अब पूरी तरह से मुनीर के अधीन, मुनीर के आसे ऑर्डर पर काम करेंगी। इतना ही नहीं, जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है

0: कानून में संशोधन किया गया है कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं उनका कंट्रोल नए सैन्य ढांचे के जरिए आसिम मुनीर को थमा दिया गया है। यानी पाकिस्तान में अब जो न्यूक्लियर हथियार है वो प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के कंट्रोल में नहीं है। तख्ता पलट की अब कोई जरूरत नहीं बची क्योंकि आसिम मुनीर ने संविधान के 27वें संशोधन को करवाकर लोकतंत्र की जो बची कुची लाश थी अब तानाशाही के शासन पर लीगल मुहर उस पर लगवा ली है। सिविल सरकार अब वैसे पहले कहने को कठपुतली थी, अब पूरी तौर पर कठपुतली हो गई है। पाकिस्तान का असली हुक्मरान एक घोषित डिक्टेटर आसिम मुनीर है और पाकिस्तान में अब कोई आसिम मुनीर को चैलेंज नहीं कर सकता। इस वक्त बड़ी खबर बलूचिस्तान से आ रही है, सनसनीखेज खबर। बलूच विद्रोही संगठन बलूच राजी ओजाए संगर ने पाकिस्तान की सेना पर घात लगाकर एक भीषण हमला करने का दावा किया है। खबर यह आ रही है कि यह हमला जो हुआ है यह नुश्की इलाके में कचकी स्थित लेवी स्टेशन के पास हुआ है। बलूच लड़ाकों ने 17 अगस्त को पाकिस्तानी सैन्य काफिले को निशाना बनाकर एक बड़ा हमला किया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कॉन्वॉय मूवमेंट जो हो रहा है। संगठन का दावा है कि इस हमले में पाकिस्तान की सेना के कम से कम 7 जवान मारे गए हैं, 8 से अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। हमले के दौरान बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने, बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की एक निगरानी क्वाड कॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना का कंट्रोल अब न के बराबर है। अपने कंटोनमेंट से बाहर निकलने में पाकिस्तान की सेना डरती है। इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: आगे आगे,
3: अरे उधर
2: उधर की यार, करेक्ट करेक्ट,
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: In association with
4: E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
5: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के फैसले पर लगाई रोक। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा को किया था रद्द, तत्काल प्रभाव से काम पर लौटेंगे याचिकाकर्ता।

विभाजन की नींव, ये शहीदों का है अपमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर देशभर में सेवा संकल्प महोत्सव मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। 17 सितंबर से 15 दिन अलग अलग कार्यक्रम, अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे समीक्षा। सीडब्ल्यूसी में मल्लिकार्जुन खड़गे का छलका दर्द, कहा उत्तराखंड में मेरे मंच के शुद्धिकरण को बनाना चाहिए था देशव्यापी मुद्दा, कांग्रेस के बड़े नेताओं को बतानी चाहिए थी दलित अपमान की व्यथा। लखनऊ में दिन दहाड़े आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजर समेत दो महिलाओं की हत्या, बहन की और पत्नी की गोली मारने के बाद शख्स ने की खुदकुशी, दरअसल चल रहा था तलाक का केस।

0: आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। इस वक्त की तीन बड़ी और बारूदी खबरें दुनिया को महाविनाश के मुहाने पर खड़ा करने कर रही हैं इस समय। जो पहली खबर है ये यूक्रेन की राजधानी कीव से आ रही है, जहां रूस का अब तक का सबसे भीषण प्रहार हुआ है। उत्तरी कोरियाई मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियारों के साथ कीव पर, यूक्रेन की राजधानी पर लगातार 5 घंटे तक मौत बरसती रही। दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में जो जंग है, इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आर्थिक डीडे की घोषणा कर दी है। उनका दावा यह है कि ईरान की चौतरफा नाकेबंदी और आर्थिक नाकेबंदी इस तरह से होगी कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा। तीसरी और खौफनाक खबर उत्तर कोरिया और जापान के बीच तनाव और तकरार की है। दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने जापान को मिटा देने और तत्काल विनाशकारी हमले की सीधी चेतावनी जारी कर दी। यूरोप से लेकर मिडल ईस्ट तक और मिडल ईस्ट से लेकर एशिया के पूर्वी एशिया के भाग तक, आप सोचिए तीन अलग अलग मोर्चों पर यह जंग की आग कैसे भड़क रही है या भड़कने वाली है, यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। वहीं सुपर पावर अमेरिका के एकाधिकार को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है, कहां? रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में। सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए भीषण हमले की। यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास 12 से ज्यादा जगहों पर रूस के भीषण हमले में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस की मिसाइलों ने स्कूलों को, अस्पतालों को, घरों को, सभी को निशाना बनाया, ऐसा दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। कल का दिन शोक दिवस के रूप में मनाने का औपचारिक ऐलान यूक्रेन की सरकार ने कर दिया है। दरअसल कल कीव में मनोरंजन का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन देखिए आखिर कैसे 6 बमवर्षक विमानों और उत्तर कोरिया की जो KN-23 मिसाइल है उससे यूक्रेन की राजधानी कीव और कीव के आसपास के इलाके दहल गए, जब एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हुए। देखिए ये रिपोर्ट।
1: तबाही की रात, 5 घंटे 25 मिसाइलें। किम की मिसाइलों से थदका यूक्रेन। मौत बनकर बरसी उत्तर कोरियाई मिसाइलें। मॉस्को के पास वाइल्ड बेरीज गोदाम पर यूक्रेन का विनाशकारी हमला हो या रूसी रिफाइनरीज पर यूक्रेन के ड्रोन हमले, रूस ने बीती रात की पर ऐसा खौफनाक पलटवार किया, मानो वो यूक्रेन से सूट समेत बदला चुकाने पर आमादा हो। आधी रात के बाद कीव पर शुरू हुए हमले 5 घंटे तक जारी रहे। 20 से ज्यादा घातक बैलिस्टिक मिसाइलें कीव पर बिना किसी रोक टोक के गिरती रही। कमरे में दुबके एक शख्स की जुबानी सुनिए दहशत का क्या आलम था।
2: This is insane. I'm in Slamansky. The bombing is the craziest ever. It's intense. It is incredibly loud. You can hear it. You just don't know if you're going to be dead the next second. You have no idea. Everything is like, wow, nearly dead. This is almost hitting us.
1: 5 लोगों के मारे जाने की खबर तो तुरंत ही आ गई थी और ये आंकड़ा हर बार की तरह बढ़ता चला गया। इस हमले की चौंकाने वाली बातें समझिए। रूस ने कीव पर हमले का चक्रव्यूह पहले ही रच लिया था। उसने अपने सुदूर पूर्वी एयरबेस से 6 TU-95 बमवर्षकों को ओलेनिया एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा उसने अपनी मिसाइलें कुर्स्क एयरबेस से दागी, जो यूक्रेन के बेहद करीब है। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। बीती रात कीव पर हुए भीषण रूसी हमले में उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। पहले 20 मिनट में कम से कम 15 से 16 मिसाइलों को कीव की तरफ आते हुए ट्रैक किया गया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने रूस को 120 KN-23 मिसाइलें दी हैं। उनमें से 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कम से कम 13 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और 10 इस्कंदर M मिसाइलें हमले में शामिल थी। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन को लगातार किम जोंग का साथ मिला है। वो लगातार उत्तर कोरियाई मिसाइलें यूक्रेन पर दाग रहे हैं उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस के पश्चिमी सीमावर्ती हिस्से कुर्द क्षेत्र को यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाने के लिए जंग लड़ी थी। कल उसी कुर्द से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इस हमले से ठीक पहले राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में रूसी सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक हाल के दिनों में यूक्रेन के हमलों से मॉस्को और दूसरे इलाकों में मची तबाही के बाद बुलाई गई थी। पुतिन ने इस बैठक में कहा कि यूक्रेन के हमले रूस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये नुकसान न कभी गंभीर थे और न ही होंगे।
3: Не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
1: इसके ठीक बाद कीव पर रूस का विनाशकारी हमला हुआ। रात के 2 बजे लोग बम शेल्टर में जान बचाते नजर आए। बीती रात कीव पर 4.5 साल से चल रहे युद्ध का सबसे भीषण हमला हुआ। दूसरी तरफ यूक्रेन के पास रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाली पेट्रियट मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। उनके लॉन्चर खामोश खड़े हैं। ऐसे में यूक्रेन लगातार रूस पर ड्रोन हमले कर रहा है ताकि वो शांति समझौते के लिए मजबूर हो जाए। बुधवार को ही तातारस्तान में तेल रिफाइनरी पर यूक्रेनी ड्रोन का हमला हुआ। ये रिफाइनरी रूस के सबसे बड़े, सबसे नए और तकनीकी रूप से सबसे एडवांस प्रोसेसिंग प्लांट्स में से एक है। यूक्रेन ने अपनी सीमा से 750 मील दूर स्थित रिफाइनरी को निशाना बनाकर दिखा दिया कि वो रूस में कहीं भी हमला करने की क्षमता रखता है। यूक्रेन के सामने वजूद का सवाल है, क्योंकि 4.5 साल से जारी जंग में वो अपना 20% हिस्सा रूस के हाथों गंवा चुका है। अमेरिका ने शांति की कोशिशों को अधर में छोड़ दिया है। वहीं यूक्रेन और रूस लाखों सैनिक गंवाने के बाद अब भी नई भर्तियां कर इस वॉर मशीन में इंसानी जानों को झोंकते जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: लेकिन खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है कि यूक्रेन पर रूस और उत्तर कोरिया की मिलीजुली ताकत से तबाही मचाई जा रही है। यह खबर उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आपको याद होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि युद्ध के दौरान कभी भी किसी के साथ संकट आ सकता है। आज नहीं तो कल आपको यह महसूस होगा। अब आप देखिए कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच ये जो गर्मा गर्मी हुई थी, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे पुतिन और किम जोंग के हमले का मतलब अमेरिका के लिए इस समय क्या है, क्योंकि ये अमेरिका के एक तरह से अमेरिका की शक्ति को बहुत बड़ी चुनौती रूस और उत्तर कोरिया की तरफ से हो दी जा रही है, जिसमें चीन को भी शामिल बताया जाता है।
4: During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You will not have a war.
5: Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
4: I'm not.
0: आपके लिए कभी भी बड़ी मुसीबत आ सकती है, इस समय तो एक समुद्र आपकी रक्षा कर रहा है, कुछ इस तरह की बातें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए की थी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो आर्थिक महाशक्ति या सामरिक महाशक्ति है अमेरिका, उसका भी जो बनता बिगड़ता संतुलन है कैसे। समुद्र पार बैठी जिस महाशक्ति अमेरिका को कभी लगता था कि यूरोप की आग उस तक कभी नहीं पहुंचेगी, आज उसी अमेरिका की नींद उत्तर कोरिया और रूस के गठजोड़ ने मिलकर उड़ा दी है। कैसे, आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। यूरोप में जो इस समय रूस के हमले यूक्रेन पर हो रहे हैं, उसे पूरे यूरोप की नींद उड़ी हुई है। ये हमले नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स की बदौलत हो रहे हैं। सोचिए किस किम जोंग उन वॉशिंगटन डीसी को दशकों से अमेरिका ने जिन पर कड़े प्रतिबंध लगाए, प्रतिबंधों की जंजीरों में जिस तरह से किम जोंग उन को अमेरिका ने बांध कर रखा, आज वही मिसाइलें, और केवल यह लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं है, उत्तर कोरिया से 155 मिलीमीटर टैंक के तोपों के गोले, छोटे हथियारों की गोलियां, 155 मिलीमीटर तोपे और युद्ध का और साजो सामान सब रूस को सौंपा जा रहा है। रूस के जिस इलाके में सबसे ज्यादा ऑपरेशंस चल रहे थे बॉर्डर एरिया में, वहां पर नॉर्थ कोरिया की मिसाइल यूनिट अब तैनात हो चुकी है। उत्तर कोरिया के हजारों सैनिक रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं। अब यह सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध सीमित नहीं है, बल्कि आप ये सोचिए, नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस अगर ये तीनों देश एक साथ आते हैं तो पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। ये अमेरिका के एकाधिकार को सीधे चुनौती देने की एक सोची समझी वैश्विक रणनीति है। किम जोंग उन अपने सैनिकों को आधुनिक ड्रोन दे रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स दे रहे हैं और उनको ऑपरेट करने की लाइव ट्रेनिंग उन्हें मिल रही है। इसके साथ साथ आप ये सोचिए, युद्ध के मैदान में हजारों यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है उसमें नॉर्थ कोरिया के सैनिक ट्रेनिंग पा रहे हैं, परमाणु और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी उनको मिल रही है रूस जैसे देश से। जो पाबंदियां अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से लगी हुई थी नॉर्थ कोरिया के ऊपर, रूस और नॉर्थ कोरिया ने एक साथ आके उन सभी पाबंदियों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं ईरान ने सब लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें फूंक चुके अमेरिका के पास अब हथियारों का संकट मंडरा रहा है। वहीं उत्तर कोरिया के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार हैं। तो अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बनाने के लिए जो मिसाइलें हैं वो अब नॉर्थ कोरिया के पास है। किसी वक्त किम जोंग उन की अगर नजर अमेरिका की तरफ टेढ़ी हुई तो जो समंदर अभी अमेरिका की रक्षा कर रहा है, क्या वो समंदर रक्षा कर पाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है इस समय। संभवतः यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन से मिलना चाह रहे हैं, अपने सलाहकारों से कह रहे हैं कि किम जोंग उनके साथ उनकी मुलाकात अगले कुछ महीनों में करा दे ताकि अमेरिका की सुरक्षा के लिए कोई चुनौती आने वाले समय में न खड़ी हो। और यही है अमेरिका जैसे सुपर पावर की सच्चाई जो किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की जोड़ी के वजह से हैरान और परेशान है। अच्छा, एक इसका मैं आपको पहलू और बताऊं। उत्तर कोरिया ने जहां एक तरफ यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है, यूरोप इस समय सकपकाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसियों में भी भय का माहौल पैदा कर दिया है। बड़ी खबर इस समय आ रही है किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग को लेकर जो खबर आ रही है, किम यो जोंग ने जापान को सिरे से मिटा देने की अब धमकी दे दी है। किम यो जोंग के बाद यानी किम जोंग उनके बाद नंबर टू की हैसियत रखने वाली उनकी बहन किम यो जोंग ने जापान को तत्काल और विनाशकारी हमले इमीडिएट एनहाइलेटिंग अटैक की सीधी चेतावनी दे दी है। किम यो जोंग ने कहा है कि अगर जापान कोई भी गलत कदम उठाता है या सैन्य विस्तार की कोशिश करता है तो वो सीधे उत्तर कोरिया के निशाने पर आ जाएगा। जापान ने हाल ही में प्रशांत महासागर में अपनी एजीज डिस्ट्रॉयर से अमेरिका में निर्मित टोमहॉक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। उत्तर कोरिया इसी बात से भड़का हुआ है। इसके अलावा उसने मई में फिलीपींस में अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में भी हिस्सा लिया था। उत्तर कोरिया ने जापान को अब सीधी चेतावनी दे दी है कि वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति के रास्ते को छोड़कर आक्रामक देश होने की कोशिश ना करे, वरना किम यो जोंग का दावा है कि जापान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब तक के सबसे खतरनाक और विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अब आर्थिक स्ट्राइक करते हुए इसे आर्थिक डी डे करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है, जो देश या जो भी संस्थान अब तेहरान का साथ देंगी, तेहरान के साथ व्यापार करेंगी, तो उन्हें अमेरिका के प्रचंड आर्थिक प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद ईरान का पहला और बेहद तीखा पलटवार सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराची ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए ट्रंप के आर्थिक डीडे और अमेरिका के अपने आर्थिक संकट और रिकॉर्ड कर से ध्यान भटका देने वाला कदम करार दिया है, स्टंट करार दिया है। सैयद अब्बास अराची ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का यह आर्थिक आतंकवाद केवल अमेरिका की नाकाम नीतियों का नतीजा है जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ ईरान से दुश्मन। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का आर्थिक परमाणु बम तो दूसरी तरफ तेहरान की दो टूक चुनौती। क्या ये जो अब तनातनी का नया दौर है वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला सबसे बड़े महायुद्ध का रूप ले सकता है? उस पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट।

0: डोनाल्ड ट्रंप का आर्थिक डी डे। ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा महायुद्ध। पश्चिम एशिया में 6 महीने से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे विनाशकारी और आक्रामक फैसले का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ आर्थिक डी डे शुरू हो चुका है और अब जो भी देश ईरान का साथ देगा अमेरिका उसे भी आर्थिक रूप से तबाह कर देगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान को आर्थिक तौर पर तबाह करने का सिग्नल दे दिया है। ट्रंप ने लिखा, ईरान को डील करने का जितना बड़ा मौका मैंने दिया है उतना किसी और ने नहीं दिया। अफसोस की बात है कि वो इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए, इसीलिए आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे जबरदस्त आर्थिक कार्रवाई का ऐलान कर रहा हूँ। ये अभूतपूर्व स्तर पर आर्थिक युद्ध और अलग थलग करने की कार्रवाई होगी। ट्रंप का ये संदेश ईरान के लिए किसी आर्थिक परमाणु बम से कम नहीं है। सुनिए ट्रंप ने इस पूरे अभियान और होर्मुज की स्थिति पर क्या कहा है।
1: Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. Right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down a little bit at some point. But right now, a lot of boats are coming through. The naval blockade has been extremely effective.
0: ट्रंप की सीधी चेतावनी का असर भी दिखने लगा है। यूएई ने ईरान के साथ अपने सभी कारोबारी रिश्ते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। दूसरी तरफ चीन, जो ईरान का 80% से ज्यादा तेल खरीदता है, उस पर भी अमेरिकी दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार मोहम्मद बोकबर ने पलटवार करते हुए कहा है कि सैन्य दबाव और कड़े प्रतिबंध ईरान के इरादों को तोड़ नहीं सकते, लेकिन असली कहानी तो समंदर के बीचों बीच रची जा रही है। जहां एक तरफ आर्थिक घेराबंदी सख्त हो रही है, वहीं अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गुपचुप तरीके से एक विशाल सीक्रेट ऑयल कॉरिडोर चालू कर दिया है। अमेरिका ने ओमान के तट से लगी दक्षिणी लेन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। हर रात 15 से 20 अमेरिकी सुरक्षा प्राप्त टैंकर गुजर रहे हैं, जिससे वैश्विक बाजार में हर दिन 1 करोड़ बैरल तेल पहुंच रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हमलों में ईरानी रडार नष्ट हो चुके हैं। अमेरिकी वायुसेना के फाइटर जेट्स और डिस्ट्रॉयर ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही खत्म कर रहे हैं। अमेरिकी सेना अब तक 65 जहाजों का रास्ता बदलवा चुकी है और कई ड्रोन ढेर कर चुकी है। अमेरिका और इसराइल की संयुक्त रणनीति ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। सैन्य मोर्चे पर ईरान की नौसेना और वायुसेना पस्त हो चुके हैं और अब आर्थिक डी डे के जरिए ट्रंप उनकी बची खुची सांसों को भी उखाड़ने पर आमादा हैं। जानकारों की नजर अब इस पर है कि जो ईरान 50 साल से अमेरिकी पाबंदियों के आगे नहीं झुका, क्या वो ट्रंप की नई आर्थिक धमकी और पाबंदी के आगे झुक जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: एक बड़ा प्रश्न इस समय यह भी है कि अगर अमेरिका का जो सैंक्शंस की धमकी है वो अमेरिका की धमकियां हैं या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सैंक्शन लगेंगे, क्योंकि दुनिया के कई देश अमेरिका की धमकी के आगे झुकने को तैयार होंगे या नहीं, इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह बिहार में सुपौल के जिस लक्की चंद साहू उच्च माध्यमिक विद्यालय में दाखिल हो रहे हैं वो साल 1958 में बना और पिछले 70 वर्षों से यहां पर 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है। लेकिन इसी स्कूल परिसर में एक 2 मंजिला नई इमारत भी है जहां ना छात्र है और ना ही टीचर। स्कूल की इमारत वीरान पड़ी है। सवाल है कि स्कूल की बिल्डिंग बन जाने पर भी यहां पढ़ाई इतने वर्ष बीत जाने पर भी शुरू क्यों नहीं हुई। यहीं पर हमें इस स्कूल में पढ़ चुके मयंक मिलते हैं जिन्होंने स्कूल की पुरानी इमारत में पढ़ाई की है। नई बिल्डिंग का काम इनके सामने शुरू हुआ लेकिन सरकारी लापरवाही पर इन्हें रोना आता है। तो सवाल सीधा सा, जिस मॉडल स्कूल की इमारत 8 साल पहले बनकर तैयार हो गई वहां योजना के मुताबिक 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई क्यों शुरू नहीं हो पाई? आखिर स्कूल की इस नई इमारत के इस तरह जर्जर हालत में पहुंचने का जिम्मेदार कौन है? आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा कैसे स्कूल के चारों तरफ जंगल और झाड़ियां उगाई, इमारत की खिड़की और दरवाजे चोरी हो गए, खिड़कियों के ग्रिल तक निकाल लिए गए, बिजली के तार और दूसरे सामान भी गायब। सबसे बड़ी विडंबना ये कि यहां से शिक्षा की रोशनी फैलनी थी वहां नशे का बोलबाला है। हमें इस स्कूल के अंदर कई जगह इस्तेमाल की गई सुइयां, नशीले सिरप की बोतल और नशीली दवाओं से जुड़ा सामान इधर उधर बिखरा मिला। इलाके की वार्ड पार्षद स्मृति कुमारी आज तक को बताती हैं कि स्कूल की इमारत बनने के बाद भी से सरकार को हैंडओवर नहीं किया गया और स्कूल की इमारत खंडहर हो गई। तो ये है बिहार में शिक्षा की बदहाली से खबरदार करती हमारी रिपोर्ट का निचोड़। तस्वीर बिहार के सुपौल से है जहां एक तरफ बच्चे 70 साल पुराने स्कूल की इमारत में पढ़ने को मजबूर हैं, तो वहीं लाखों रुपए खर्च करके स्कूल की नई बिल्डिंग पढ़ाई शुरू हुए बिना ही खंडहर में तब्दील हो गई। मतलब बच्चे जोखिम में पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं उसी स्कूल में बनी नई इमारत खंडहर कर दी गई है। सवाल है क्यों, किसने इसका पैसा बर्बाद किया, बच्चों के हक के साथ खिलवाड़ किया? इस सवाल का जवाब हमें यहाँ 20 साल से पढ़ाने वाले टीचर अजय कुमार ने दिया। बताया कैसे सरकारी लापरवाही ने आम आदमी के लाखों करोड़ रुपए बर्बाद किए हैं। यानी जिस नई इमारत में बच्चों को पढ़ना था वो इसलिए हैंडओवर नहीं हो सकी क्योंकि बनाने वाले शौचालय बनाना भूल गए। लेकिन सवाल है कि इस गलती के लिए क्या किसी को सजा मिली? शौचालय ही बनाना था तो बाद में उसे बनाकर पूरा क्यों नहीं किया गया?
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के फैसले पर लगाई रोक। सीएम हेमंत ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा को किया था रद्द। तत्काल प्रभाव से काम पर लौटेंगे याचिकाकर्ता। जंतर मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों की जांच। बैलेट गन के इस्तेमाल का भी मामला जांचा जाएगा। वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाने के कांग्रेस के फैसले पर भड़के अमित शाह। कहा, कांग्रेस ने रखी विभाजन की नींव, ये शहीदों का अपमान। पीएम मोदी की जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर देश भर में सेवा संकल्प महोत्सव मनाएगी बीजेपी। 17 सितंबर से 15 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम। अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे समीक्षा। लखनऊ में दिन दहाड़े आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर समेत 2 महिलाओं की हत्या। बहन और पत्नी को गोली मारने के बाद शख्स ने की खुदकुशी। चल रहा था तलाक का केस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। दंगल में हम देश में इन दिनों की सियासत के सबसे बड़े मुद्दे के असर पर चर्चा कर रहे हैं। ये मुद्दा जेन जी का है, ये मुद्दा जेन अल्फा का है और उनसे जुड़ी समस्या का भी है, और उसके साथ साथ देश की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग इस नई पीढ़ी ने सरकारों और राजनीतिक दलों की राजनीति का जो फॉर्मूला बदल दिया है उसका भी है। अब देश के कैबिनेट की बैठक में जेन जी कनेक्ट के लिए नीतियां बन रही है। अब देश के राजनेता जाति जनगणना से आगे बढ़कर छात्रों की गूंज करते नजर आ रहे हैं। अब स्कूली बच्चों की लगातार उठ रही मांगों ने यूपी के सरकारी सिस्टम को ऑन टो रख दिया है, और यह फर्क कम से कम अब नजर आने लगा है, क्योंकि कल ही कैबिनेट की बैठक हुई है और सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को कहा है कि हर मंत्री अब एक पूरा दिन यूनिवर्सिटी में बिताएगा, विद्यार्थियों से बात करेगा, उनकी जरूरतें समझेगा, सरकारी कोशिशों के बारे में उनको बताएगा। और खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी गई नसीहतों में सबसे जरूरी यह भी रखी गई है कि हर मंत्री अब सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट, रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, ग्राफिक्स, सेल्फी वगैरह भी डालेगा, और जो नहीं डालेगा उसका परफॉर्मेंस रिव्यू में नंबर कटेगा। बल्कि खबर यह है कि कल की बैठक में सारे मंत्रियों का सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया गया और उन्हें ज्यादा सक्रिय होने को भी कहा गया। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी इसमें इस चार्ट में सबसे नंबर वन पर थे। उधर यूपी में पिछले एक हफ्ते में 7 जिलों में स्कूली बच्चे मामूली मांगों के साथ सड़क पर उतरते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने इसे गंभीरता से लिया है, उन्हें लेना पड़ा है, और निर्देश है कि मंडल युक्तों, जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी अगर वही स्कूल शिक्षा में बद इंतजामी की खबर उनसे मिली तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी। सरकारी और सत्ता की इस जागरूकता को न्यू इंडिया और 2047 की थर्ड इकोनॉमी के लिहाज से अच्छा माना जा सकता है, लेकिन इस जागरूकता के पीछे कहां सच्ची नीयत है और कहां सियासत भी है? जेन जी और जेन अल्फा के दर पर किसकी झोली भरने वाली है? इन्हीं सभी मुद्दों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: उम्मीदों और आकांक्षाओं से भरे हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी सुख बुगाई तो मुल्क की सियासत को उनकी सुध आई। अब दिल्ली से लेकर रांची तक, रांची से पटना, पटना से लखनऊ तक सरकारों के कान खड़े हुए हैं। और सरकारें ही नहीं, देश में अरसे से सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी अब जेन जी और जेन अल्फा के मुद्दों के जरिए जमीनी आधार दोबारा हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। आने वाले शनिवार 22 अगस्त को एक बार फिर राहुल गांधी महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि दरअसल ये कांग्रेसी संस्थानों के बच्चों से राहुल का मोनोलॉग है।
2: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे, ये तो मैं नहीं जानता।
1: जेन जी से सोशल कनेक्ट करने की होड़ में बीजेपी की सरकारें दो कदम आगे निकलती दिख रही हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जेन जी और जेन अल्फा को लेकर चिंतन मंथन, आदेश निर्देश तैयारी सब शुरू हो चुके हैं। मोदी सरकार ने जेन जी और जेन अल्फा के बुनियादी मुद्दों को संज्ञान में लाने और उनसे कनेक्ट करने के लिए बड़ा रोड मैप कैबिनेट के सामने रखा है। बाकायदा मंत्रियों की ड्यूटी भी लगा दी है।
3: पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चलाने की बात की है, यानी कि अब सभी मंत्रियों को एक दिन यूनिवर्सिटी में बिताना होगा, छात्रों से सीधा संवाद करना होगा, उनकी मांगों, उनकी जरूरतों, उनकी परेशानियों को सुनना होगा, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना होगा और सरकार के कामकाज का फीडबैक लेना होगा।
1: इसे लेकर सिर्फ जुबानी चर्चा नहीं हुई, बाकायदा प्लान बना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं, इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 522 राज्य विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है। किस मंत्री को कब किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का ये दौरा दिन भर का होगा जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री बहुत गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को ये भी सलाह दी है कि पारंपरिक तरीके छोड़कर अब जेंजी और युवा वोटर्स के पसंदीदा तरीकों से संवाद स्थापित करें। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा।
3: बैठक में सभी मंत्रियों के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड दिया गया। 1 मई से 15 अगस्त यानी 3.5 महीने का इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन के परफॉर्मेंस का जिक्र था, लेकिन सोशल मीडिया पर रीच और एंगेजमेंट के मामले पे प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन था। वहीं एनडीए के घटक दलों के मंत्रियों का रिकॉर्ड औसत दर्जे का था।
1: दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया है, उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था। खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आंकी गई, उनमें ये था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स यानी कुल एंगेजमेंट कितनी हुई, मंत्री की प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं, कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। देश में जेंजी तो यूपी में जेन अल्फा ने सरकार को अलर्ट पर डाल रखा है। जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरते दिखे, तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे, तो मुख्यमंत्री ने सख्ती की। स्कूली बच्चों की परेशानियों को फौरन दूर करने के लिए सीएम दफ्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी, उन्हें फौरन दूर करने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट से मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को भी कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने तय की है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में एमडीएम, किचन, ब्लैक बोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉकवार निर्देश दिए गए। सियासत की सजगता और सरकारों की सतर्कता हिंदुस्तान की नई पीढ़ी की चिंताओं और मुद्दों को कितना दूर करती है, ये देखना है, क्योंकि जेंजी और जेन अल्फा खालिस नियत और खाली सियासत का फर्क बहुत अच्छे से बखूबी समझते हैं।
0: एक वक्त था कि जब नेताओं के पीछे सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे देने के लिए इस युवा पीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इस युवा पीढ़ी से बातचीत करने के लिए राजनीतिक दलों को और राजनीतिक पार्टियों को सरकार को मजबूर कर दिया है। उनकी मांगे सुनने के लिए भी उन्हें मजबूर कर दिया गया है। यह कहां तक जाएगा, इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ गुरुप्रकाश पासवान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, रोहित सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये भी चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, एक दिन एक यूनिवर्सिटी अभियान से मोदी सरकार का जेंजी से संवाद क्या सुधर जाएगा, क्योंकि कैबिनेट के बैठक में इस बात की चर्चा हो रही है कि जेंजी से संवाद बढ़ाना चाहिए और सिर्फ भाषण नहीं चलेगा तो उनसे बातचीत होनी चाहिए, उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। दूसरा सवाल, जेंजी जैन अल्फा प्रति सियासी नवजागरण राजनीति की मजबूरी क्या बन चुका है, और एक वक्त था कि नवजागरण के नाम पर जब युवा सड़क पर उतरते थे तो बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती थी, तो क्या अब यह राजनीति की मजबूरी बन चुका है कि उनसे बातचीत करनी पड़ रही है। तीसरा सवाल, सोशल मीडिया पर मंत्रियों की रील्स, मीम्स, शॉर्ट्स डालने से क्या जेंजी के बुनियादी मुद्दे सुलझ पाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि सिर्फ रील्स बनाने से कुछ फर्क पड़ेगा। हेमंत सोरेन कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री है झारखंड के, थोड़ी देर पहले उनका फैसला पलट दिया है अदालत ने, तो हाईकोर्ट की रोक के बाद सीएम सोरेन का यह बयान आया हुआ है, केंद्र के फैसले से पूरा देश प्रभावित है। हाईकोर्ट की रोक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बयान है।
4: आप सबको पता है झारखंड विगत वर्षों में बड़ी तेजी से अपने आप को विकसित राज्यों की ओर ले जाने के लिए अग्रसर रहा है, जिसको लेके दुनिया के बड़े इकोनॉमिक फोरम से लेकर छोटे बड़े नवाचार राज्य सरकार के माध्यम से हुए हैं, कई नीतियों के माध्यम से शिक्षा कैसे बेहतर हो, स्वास्थ्य कैसे हर आदमी को एक समान मिले, रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, हमारी महिलाएं सशक्तिकरण की कदम पर कितने तेजी से आगे बढ़ पाए, ये सभी कार्य चल रहे हैं। अचानक बिना किसी सलाह मशवरे का विगत मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने MMDR कानून में ऐसा बदलाव किया है जहां बहुत ही प्रतिकूल।
0: तो हेमंत सोरेन यहां पर बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले हाईकोर्ट ने उनके फैसले पर रोक लगा दी थी जिसके तहत उन्होंने दो परीक्षाएं रद्द की थी और उस परीक्षाओं को पास करके जो सरकारी सर्विसेज ज्वाइन की थी और उनको एक बार फिर बहाली के आदेश दे दिए गए हैं। तो कई बार ये आदेश भी झारखंड सरकार की तरफ से तब लिया गया था जब झारखंड में रांची में 15 से 20 दिन तक आंदोलन चलता रहा और उनके दबाव में आखिरकार वहां की सरकार को ये आदेश देने पड़े थे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात, गुरुप्रकाश पासवान, कैबिनेट के भीतर चर्चा होती है, कैबिनेट में कहा जाता है कि इस बार अब आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, पूरा दिन वहां बिताना पड़ेगा और इस बार भाषण नहीं चलेगा, तो छात्रों की बात भी सुननी पड़ेगी, उनके सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये दबाव तो नहीं बन रहा है सरकार पर, क्योंकि कांग्रेस वहां पर देख रहे हैं हम कि छात्रों की गूंज का प्रोग्राम कर रही है, CJP के नेता अलग अलग गांव गली में जाकर स्कूलों को चेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी एक आउटरीच होना चाहिए जेंजी के साथ में, इस दबाव में तो कहीं नहीं हो रहा है, और इसे क्या हासिल होगा?
5: नहीं नहीं देखिए साहिल जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। ये दबाव नहीं है, प्रभाव है और इस प्रभाव का हम स्वागत करते हैं और हम लोग तो कोई आज से कर रहे हैं ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की परीक्षा की बात बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। परीक्षा एक मेंटल स्ट्रेस का, मानसिक तनाव का मौका नहीं होना चाहिए, परीक्षा एक निखार का मौका होना चाहिए। और बिल्कुल ही आज की तारीख में, मैं तो खुद विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं आप जानते हैं, और विश्वविद्यालय में लोगों से, छात्रों से लगातार संवाद करता हूं, तो ये संवाद की परंपरा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने कहा कि बिहार में नव जागरण के माध्यम से तो सत्ता की परिवर्तन हुई थी, सिंहासन खाली करोगी जनता आती है, तो बहुत ही स्वागत योग्य है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि छात्रों से, जेनजी से, जेन अल्फा से लगातार एक संवाद की प्रक्रिया शुरू हो, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से भी। और आज की तारीख में ये बोलना बहुत आवश्यक है। आज पिछले 12 वर्ष और आने वाले 20 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है। आने वाले 20 साल में विकसित भारत का रोडमैप कैसे बनेगा? आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन का है। आज हमारे यहां जो 2016 में मैं देख रहा था डेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मात्र 400 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज देश में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 21 लाख नौकरियां मिल रही है। RBI का क्लेम्स का डेटा देखिए, IITs देखिए, IIMs देखिए, आज एक ऐतिहासिक वृद्धि हुई है इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में। छात्रों का समग्र विकास कैसे हो, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कैसे हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, हमारी ये चिंता, हमारी ये प्राथमिकता है। और आज का युवा क्या सोचता है, आज
0: ये बात तो ठीक है,
5: उसके मन में क्या क्या एस्पिरेशन,
0: ये सब चीजें तो ठीक है। प्रधानमंत्री का लाल किले के प्राचीर से भाषण मैंने भी सुना है और ये सारी उपलब्धियां प्रधानमंत्री भी गिनवा रहे थे और कई बार पार्लियामेंट के भीतर भी जब भाषण दिया जाता है तब भाषणों में तो उपलब्धियां गिनवाई जाती है, ये बात तो मैंने भी देखी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्ट तो छूट गया है ना, और वो कनेक्ट छूट गया था, इसी के वजह से जंतर मंतर का आंदोलन हुआ, इसी के वजह से छात्रों का रोष नहीं समझ में आया और इसीलिए छात्रों में जाना अब जरूरी हो गया है। इसीलिए अब मंत्रियों को कहा जा रहा है कि भाई आपको जाना पड़ेगा, आपको कंटेंट क्रिएटर भी बनना पड़ेगा। ये भी तो कहीं ना कहीं इसकी कड़ी हम देख सकते हैं।
5: देखिए साहिल जी, पॉलिटिक्स एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। कल की पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स में बड़ा ही जमीन आसमान का अंतर होता है कि लोगों से बात करनी होगी, उनके एस्पिरेशन समझने होंगे, आज की अपॉर्चुनिटी क्या है, आज एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा क्या है, आज इनोवेशन की परिभाषा क्या है। प्रश्न यह है कि हम अपने कैंपस को, मैं खुद एक कैंपस में बिलोंग करता हूं, हम अपने कैंपस को आइडियोलॉजी का अखाड़ा बनाना चाहते हैं या इनोवेशन का लॉन्च पैड बनाना चाहते हैं, यह सवाल तो आज इसको जवाब देने की आवश्यकता है। कैंपसेस शुड नॉट बी दी पॉलिटिक्स ऑफ हॉटबेड, कैंपसेस में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कैंपसेस में इनोवेशन होना चाहिए। आज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करिए साहिल जी, आज बात करिए ड्रोन्स की, आज बात करिए एआई की, हमारा युवा एस्पिरेशनल हो गया है। आज बड़ा सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि पिछले महीने अगस्त में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात हुई थी, हमारे देश के युवाओं ने उसको किया था। हमारे देश के युवाओं में लिमिटलेस पोटेंशियल है, एक बिल्कुल ही असीमित पोटेंशियल है, उसको निखारने की आवश्यकता है। और उसको निखारने की दिशा में यदि सरकार के मंत्री, सरकार का महकमा लगातार उनसे संवाद करता है तो अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार के पक्ष से, हमारी
0: अच्छी बात है, और एक पोटेंशियल तो मैं अपने युवाओं में यह भी देख रहा हूं, छात्र में वो नए भारत की नींव रखने की कोशिश भी कर रहा है, और वो युवा अपने मांग को लेकर इतना सजग है कि वो राजनीति से परे भी उसको देख सकता है और उस बात को लेकर सड़क पर उतर सकता है और वो सीधे सवाल भी पूछ सकता है। वो सिर्फ एक तरफा संवाद सुनने को तैयार नहीं है, वो इस बात पे भी सजग है कि उसको लगता है कि अगर उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाए या कोई दे नहीं पाया तो उस पर कितना भरोसा करना है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल अब उस युवा को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। जो बात आपकी है वही बात कांग्रेस की है, जाति जनगणना से उठकर अब जाति से हटकर युवाओं से सीधे बातचीत की करने की कोशिश हो रही है छात्रों की गूंज के नाम से। आलोक शर्मा जी, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि कुछ महीने पहले तक जाति जनगणना की बात हुआ करती थी, एक विशिष्ट वर्ग से बात करने की कोशिश हुआ करती थी, लेकिन अब छात्रों की गूंज की बात की जा रही है, ये भी जंतर मंतर का ही असर हम मानकर चले। आलोक शर्मा जी,
6: देखिए मुझे लगता है जातिगत जनगणना की मांग साहिल जी पहले भी की गई और वो मांग आज भी है। कल के CWC रेजोल्यूशन की बैठक जो हुई थी उसमें भी इसके बारे में जिक्र हुआ, और छात्रों की बात तो हम हमेशा से करते ही रहे हैं। और जो आज आप बता रहे हैं, जो आज का प्रकरण है कि मोदी जी ने अपने तमाम मंत्रियों को ये निर्देश आदेश संवाद करने के लिए दिए हैं, ये कोई संवाद नहीं, ये कोई प्रभाव नहीं, ये मजबूरी है। इनको लग गया है कि अब युवाओं को हम बहुत लंबे समय तक गुमराह नहीं कर सकते, 2047 में ये होगा, 2057 में ये होगा, 2068 में ये होगा, अब वो चीज नहीं चल पा रही है। दूसरी तरफ बच्चों का डर समाप्त हो गया है, जो 56 इंच के सीने का और विश्वगुरु का गुब्बारा फूला हुआ था वो गुब्बारा अब फूट चुका है। युवा तो हमेशा से हमारे एस्पिरेशनल थे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विकसित भारत की बात करने वाले लोग ये बताएं कि शिक्षा का बजट 4.6% से GDP का घटाकर 2.6 कर दिया, इससे कैसे एस्पिरेशंस बच्चों की पूरी होंगी। आपने परीक्षा पे चर्चा तो की लेकिन पेपर लीक पर आपने एक शब्द नहीं बोला। एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री तो ले ली लेकिन बच्चों को बताया कि पकौड़े तलना रोजगार है और नाले से गैस निकाल के चाय बन सकती है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो जरा बता दें कि ये 1,00,000 स्कूल बंद करके देश के अंदर किस तरह से बच्चों का भविष्य मजबूत होगा। हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए, AICT की वेबसाइट देख लीजिए आप, तमाम काउंसिल्स, चाहे वो NCT हो, AICT हो, जो डेंटल काउंसिल हो, सब काउंसिल में निकम्मे और बोगस RSS के और भाजपा के लोग भर्ती कर दिए आपने। SSC हो, UPSC हो, CBSE हो, NTA हो, पूरा का पूरा दागदार जो लोग RSS के कांड करने वाले थे शिक्षा के क्षेत्र में उनको भर्ती कर दिया। चौतरफा प्रहार किया है इन्होंने शिक्षा जगत के ऊपर, चौतरफा प्रहार करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस किया है। मुझे बताइए मिड डे मील के अंदर अगर नमक की जगह सर्फ डाल के बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें लाल किले से साफा बांधकर की जाती हैं। दुख होता है कि प्रेस के लोग अब स्कूल में नहीं जाएंगे, आज तक के पत्रकार एक गए थे उनको बाहर कर दिया गया। अरे भाई, अभी आपके सांसद ने गटर जनरेशन इनको कहा, क्या एक भाजपा के किसी निकम्मे व्यक्ति ने भी माफी मांगी? पैलेट गन से आप वार कर रहे हैं, केसेस वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है कि बच्चों के ऊपर से केसेस वापस ले लीजिए। आप में से कोई किसी की हिम्मत

0: कोर्ट में चल रहा है, आप बता दीजिए मुझे, मैं चुप हो जाऊंगा, या बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा रुकिए। मैंने केवल ये कहा कि AK-47 से गोलियां चलाने
1: मैं,
0: के बाद
1: बीच में बोलने की बात नहीं है। आलोक शर्मा जी, आपकी चार्जशीट बड़ी लंबी है और छात्रों की भी चार्जशीट है। नहीं सुनिए
0: साहिल जी, सुनिए तो सही। साहिल जी, मेलोडी पे हमने बहुत चर्चा कर लिया।
1: मोनोलॉग तो आजकल जेनजी भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है, आपको भी मालूम है कि मोनोलॉग तो जेनजी भी बर्दाश्त नहीं करता है, आपको भी मालूम है, मैंने भी आपको समय दिया है।
0: साहिल जी, आप यहाँ से इस मंच के माध्यम से एक बार कहिए कि भारत के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आप ये ऐसा चाहते हैं, बोलिए।
1: सियासी नियत भी तो जेनजी पहचान रहा है।
0: फिर वही बात,
1: सवाल मेरा सवाल तो सुन लीजिएगा, सवाल तो सुन
0: लीजिएगा, क्या है वो सब समझ। एक मिनट प्लीज सुनिए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। साहिल भाई, केसेस वापस लेने की
1: आपकी मंशा भी मुझे समझ में आ रही है, मुझे आपसे इस बारे में डिबेट नहीं करनी आलोक शर्मा जी, दोबारा उस पे नहीं जाना।
0: सुनिए ना प्लीज भाई साहिल जी, आप बीच में बोलते हैं, ये गलत बात है। AK-47 चली,
1: कितनी देर सुन, अच्छा आप बता दीजिए कितनी देर आपकी बात सुननी है, आप मुझे बताइए कितनी देर आपकी बात सुननी है, मैं उतनी देर शांत बैठता हूं, उसके बाद में सवाल।
0: 50 चलिए
1: बोलिए,
0: 50 सेकंड,
1: एक मिनट हो गया।
0: देखिए मैं कहता हूँ,
1: 10 सेकंड,
0: उन्होंने जिस सांसद ने कहा गटर जनरेशन है, क्या उसके किसी ने माफी मांगी? अरे भाई, नफरत फैलाने वाले लोग कहते हैं, एक आरएसएस का व्यक्ति कहता है अगर मैं वहां होता तो गोली मरवा देता जनजी को, पंचर लगाने वाले लोग हैं जनजी। और मोदी जी तो बिहार के चुनाव में कह के ही आए हैं कि रील्स बनाओ और पूरा रोजगार मिलेगा, पकौड़े तलो, पकौड़े तलना ही रोजगार है। अखाड़ा यूनिवर्सिटीज का मेरे छोटे भाई ने, गुरु प्रकाश ने कहा अखाड़ा नहीं बनना चाहिए, लेकिन जामिया को भूल गए आप लोग, जेएनयू को भूल गए। वो कोमल शर्मा एक लड़की थी आरएसएस की, उसने किस तरह से तांडव किया था जामिया में, जेएनयू में, वो कहां है पूरे देश को नहीं पता है। अगर किसी को पता हो तो जरा मुझे बताइएगा। सुसाइड रेट युवाओं का एनसीआरबी के आंकड़े के माध्यम से 43% बढ़ गया, लेकिन 2047 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे। 30 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो गए, रोज 800 पासपोर्ट सरेंडर होते हैं, 500 जेंजी के हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि साहब हम तो विश्व गुरु बन जाएंगे। SC ST की स्कॉलरशिप आपने,
1: लेकिन दूसरी तरफ
0: शेड्यूल से नॉन शेड्यूल में ले गए आपने,
1: जो छात्रों की गूंज यहां पर होने जा रहा है पूना के भीतर। नहीं, आपके चार्जशीट का जवाब तो गुरु प्रकाश पासवान देंगे, वो भी वहां पर उपलब्धियां गिनवा रहे थे, आपकी एक लंबी चार्जशीट है, लेकिन आज की स्थिति में नियत सब लोग समझ रहे हैं, राजनीतिक नियत जेंजी अच्छे से समझ लेता है, और वो ये भी पूछता है कि आपके पास अल्टरनेटिव मॉडल क्या है उनके सुधार के लिए और उनके लिए। जो स्थिति किसी एक प्रदेश में होगी स्कूलों की, वही स्थिति पूरे देश भर में है, उसकी भी लिस्ट लेकर मैं बैठा हूं, वो भी लिस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन आलोक शर्मा जी, एक आरोप यह भी लग रहा है, जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हो रहा है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उस छात्रों की गूंज में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेताओं की जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो शिक्षा संस्थाएं हैं, वहीं से बच्चे आएंगे और मोनोलॉग वहां पर उनको दिया जाएगा। मैं आपको वही कहने की कोशिश कर रहा था सर, कि आज की स्थिति में जेंसी भी मोनोलॉग सुनने को तैयार नहीं है, वहां सरकार को भी मंत्रियों को यह कहना पड़ रहा है कि भाषण नहीं देना यूनिवर्सिटी में जाके, बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे सवाल जवाब करना पड़ेगा। और यही बात आपके लिए भी लागू होती है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छा आपने बात उठाई, अभी आपके आज तक पे स्क्रीन पे राहुल गांधी एक बच्ची से हाथ मिला रहे हैं और सब बच्चों के हाथ में मोबाइल वो है, माइक है, सब बोलते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, कहां मोनोलॉग है इसमें, क्या मोनोलॉग दिखाई देता है इसमें। और कांग्रेस की संस्था किसी की नहीं होती है, लेकिन इतना जरूर है, जब देहरादून के अंदर छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ तो तमाम स्कूलों की बसों के जो है चालान काटे गए, RTO स्कूलों में जाके बैठ गए, RTO कॉलेजेस में जाकर बैठ गए कि कोई भी स्कूल की और कॉलेज की बस नहीं जानी चाहिए, राहुल गांधी का प्रोग्राम फेल होना चाहिए। एक गायक का प्रोग्राम, एक नर्तकी का प्रोग्राम वहां पर देहरादून में उस ग्राउंड में कराया गया जहां पर पहले हमें अलॉटमेंट मिली थी। ये सरकार तो इतनी डरी हुई है कि चाहती नहीं, राहुल गांधी जी का प्रोग्राम जिस हॉल में, जिस ग्राउंड में होता है उसकी परमिशन को कैंसिल कर दो। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं भाई जॉब्स के
1: मैं
0: लिए,
1: आपको एक सबसे छोटा सा उदाहरण पेश करता हूं कि जेंजी कैसे आंख बूंदकर भाषण नहीं सुनता है, वो जवाब भी कैसे तुरंत दे देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आज ही का हम दे देते हैं, जरा सुना देते हैं और उसके बाद गुरु प्रकाश पासवान जवाब देंगे।
2: तो हमारे स्टूडेंट्स 24 घंटा इसको देखते रहते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपको जूम में बंद कर दिया गया है, ये पिंजरा है
3: सर, आपको ही देखते हैं।
2: मगर वो तो है, बट ये पिंजरा है, ये 21वीं सदी का, और इसकी जरूरत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है।
1: आप उन्हें गुमराह नहीं कर सकते, ये बच्चे बड़े स्मार्ट है और वो किसी को भी जवाब देने के लिए

0: यहां पर तैयार बैठे हुए हैं और ये सभी राजनीतिक पार्टियों को ये बात समझनी चाहिए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ ही दिन पहले हमने एक सर्वे किया था, एक मिनट आलोक शर्मा जी, कुछ ही दिन पहले एक सर्वे हमने किया था और उस सर्वे के भीतर भी ये दिखाई दिया कि ज्यादातर युवा ये कहते हैं राजनीतिक पार्टियां उनके मुद्दे समझने को तैयार ही नहीं है, उनको समझने को तैयार नहीं है। ये सभी पार्टियों के लिए लागू होता है, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। पहले गुरुप्रकाश पासवान आपने जो चार्जशीट रखी है उसका जवाब देंगे। और यहीं पर सवाल उठता है गुरुप्रकाश जी, सिर्फ रील बनाने से क्या यूथ कनेक्ट हो जाएगा?
1: नहीं देखिए साहिल जी, मैं सुन रहा था, आलोक जी हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, इनकी बातों को बहुत ध्यान से हम सुनते हैं और ये भी लगातार युवाओं से संवाद करते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, ये बेचारे जहां फंसे हुए हैं इनको कुछ करना पड़ता है, चलिए अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन किस प्रकार सिलेक्टिवली इन्होंने डेटा को उठाया, जो डेटा इनके काम का है वो डेटा ये उठाते हैं, जो डेटा इनके काम का है उसको नहीं उठाते हैं। आईआईटी कितनी थी आलोक जी आपके समय में? 16। आज कितनी है? 23। आईआईएम कितना था आपके समय में? 13। आज कितना है? 21। एम्स कितना था आपके समय में? 7। आज कितना है? 20। मैं पूछना चाहता हूं, आप गरीबी की बात कर रहे थे, आप देश की स्थिति की बात कर रहे थे, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, राम मनोहर लोहिया जी का भाषण है, जवाहरलाल नेहरू के पालतू कुत्ते पे 19 पैसे, जब देश के 27 करोड़ लोग 19 पैसे पे जी रहे थे, जवाहरलाल नेहरू के पालतू कुत्ते पे 3 रुपए प्रतिदिन का खर्चा आता था, आप वैसा देश चाहते हैं क्या? आप जेंजी की बात कर रहे थे ना, एक सीरीज आया है गवर्नर, जाकर के देख के आइएगा, उस सीरीज में बताया गया कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ गया था आपके शासनकाल में, आज देश के पास 880 टन सोना है, आज देश के पास $700 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है, आपके समय में कितना था? आपके समय में देश की जो आर्थिक स्थिति थी और आज जो आर्थिक स्थिति है, जमीन आसमान का अंतर है। आज का जेंजी साहिल जी पॉलिटिक्स नहीं चाहता है, आज का जेंजी पॉसिबिलिटीज चाहता है, वो चाहता है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए, वो चाहता है कि ड्रोन बनाए, वो चाहता है कि एआई से लाभ हो। इनको झारखंड के जेंजी नहीं दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते पता है आपको? क्योंकि झारखंड के जेंजी आदिवासी हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मैं मेरे मुंह में उंगली डालेंगे तो बोलना पड़ेगा, केरला का इनको बालिकाएं नहीं दिखती हैं, केरल में हमारी बहनाएं हैं वो घास खाकर के आंदोलन कर रही हैं, केरल की लड़कियां हटाइए यहां से, झारखंड के आदिवासी हटाइए यहां से, पंजाब के दलित समाज के छात्र हैं, छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, वो नहीं दिखते हैं आपको? बिहार के जेंजी ने जवाब दिया था आपको, 2025 का विधानसभा चुनाव याद रखिए, बिहार देश का सबसे युवा राज्य है और यहां बता दिया, यहां पटना में साहिल जी ये कार्यक्रम होने वाला था, छात्रों की गुंज, राहुल गांधी जी आने वाले थे, गायब हो गए। पता है क्यों गायब हो गए? जो छात्रों की गुंज कार्यक्रम करने वाला था वो अपहरण में अंदर था, उसके ऊपर डकैती फिरौती के इल्जाम लगे हुए थे। तो आप कांग्रेस के लोग, आप ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, हम अवसर की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं।
0: दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को मुझे एक बात कहनी है,
2: आने वाले 20 सालों में, भारत विकसित भारत बनेगा और विकसित भारत का स्टेक होल्डर हमारा युवा होगा, हमारे यंगस्टर्स होंगे।
0: ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो आपने भी नहीं दिया गुरुप्रकाश, मेरे ओरिजिनल सवाल का जवाब तो आपने भी नहीं दिया। मुझे यह बात जेन्युइनली समझने की कोशिश करनी है कि कैसे युवाओं की वो समस्याएं हल होगी कि मंत्री वहां पर जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी के भीतर रील बनाएंगे, एक अच्छा सा प्रोमो बनेगा, म्यूजिक उस पर लगेगा, बातचीत के वीडियोस डालेंगे, उस पर व्यूज भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पेपर लीक की समस्या कैसे हल होगी, उससे जो आज की स्थिति में रोजगार की समस्या युवाओं के सामने है वो कैसे हल होगी, आज की स्थिति में क्या उनको नौकरी इस रील्स के जरिए मिल पाएगी, ये सारे सवालों के जवाब कैसे मिल पाएंगे? मेरा ओरिजिनल सवाल ये था कि रील्स से ये मुद्दे कैसे, ये कैसे चीजें हल हो पाएगी,
3: और सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में ये है, टैक्स पेयर्स का ही पैसा होगा, टैक्स पेयर्स के पैसे पे ये मौज करेंगे, अब ये मंत्री जो है ये रील भी टैक्स पेयर्स के पैसे पे ही बनेगी।
1: सवाल पूछा है ना, समय बर्बादी नहीं करनी है ना साहिल जी, लगातार ये देखिए, मैं आपको डेटा देना चाहता हूं, आरबीआई का डेटा है, आलोक जी पढ़े लिखे प्रवक्ता है, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, आरबीआई का डेटा है क्लेम्स का, कैपिटल लेबल एनर्जी मटेरियल और सर्विसेज का, आरबीआई का डेटा देखकर क्या आएगा, 2014 में कितने ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब थे, 47 करोड़ आज कितने, 65 करोड़ जॉब हैं और आपके तुलना में 22 करोड़ ज्यादा जॉब क्रिएट हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, लगातार झूठ बोल करके कांग्रेस पार्टी के युवराज अपनी राजनीति करना चाहते हैं, राहुल गांधी बेरोजगार हो गए हैं, आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो, IIIT हो, आज सारे के सारे इंस्टीट्यूशन हमारी सरकार में बन रहे, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी को झारखंड के आदिवासी बच्चे नहीं दिखेंगे, पंजाब के दलित बच्चे नहीं दिखेंगे, केरल में घास काती हुई लड़कियां नहीं दिखेंगी, क्योंकि आज भी आपको पॉलिटिक्स करना है, जेंजी पॉसिबिलिटीज चाहता है, जेंजी पॉलिटिक्स नहीं चाहता है, अभी भी मौका है, चार साल में आपके नेता वरिष्ठ नागरिक
2: होने वाले हैं, सीनियर सिटीजन होने वाले हैं, सीनियर सिटीजन होने वाले हैं आपके नेता, उनको भारतीय रेल में कंसेशन मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आप तैयार हो जाइए, सीनियर सिटीजन की वॉइस बनिए, जेन जी की वॉइस मत बनिए आप।
3: सीनियर सिटीजन का कंसेशन मोदी जी ने खत्म
0: कर दिया, समझना किसी के भी समझ से परे है।
3: रेलवे में सीनियर,
0: ये बात समझना किसी भी समझ से परे है, किसी को भी समझ से परे है इस बात को कि 12 साल के बाद इतनी बड़ी उपलब्धियां गिनवाने के बाद भी आज की स्थिति में एक नया डेटा सामने आता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर रोज किसी ना किसी स्कूल में छात्र आकर खड़े होते हैं, वो अपना एक रील बना देते हैं और वो दिखाते हैं कि हमारे यहां पर छत टपक रही है, वो दिखा देते हैं कि हमारे यहां पर टीचर नहीं है, और यही बात देश के अलग अलग राज्यों में भी दिखाई देती है, भले सरकार किसी की भी हो, छात्र अचानक इस बात को लेकर रील बना रहे हैं और इस बात को लेकर उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री कहना शुरू कर देते हैं कि भाई इस पर कार्रवाई करिएगा, अगर नहीं कार्रवाई होगी तो हम आपको पकड़ेंगे और कहेंगे कि ये कैसे हो गया। ये देखिए, ये डेटा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक डेटा मेरे पास भी है, अगस्त 13 को सर्वोदय विद्यालय लखनऊ बॉयज हाई स्कूल, टीचर नहीं थे, पुअर फूड, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज, रील बनाकर डाली, काम करना पड़ा। अगस्त 14 और 15 सर्वोदय विद्यालय लखनऊ गर्ल्स स्कूल, टीचर का शॉर्टेज, अगेन पुअर फूड, इनएडिक्वेट मेडिकल केयर, एक बार फिर रील बना के डालना पड़ा, कार्रवाई करनी पड़ी। अगस्त 20 सर्वोदय विद्यालय उन्नाव, वहां पर भी एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम्स, एक बार फिर रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया, उसका असर लेना पड़ा। और जुलाई 28 सर्वोदय इंटर कॉलेज फतेहपुर, क्या समस्याएं थी, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, डैमेज क्लासरूम्स, लीकिंग रूफ्स यानी छत टपक रही थी, फैंस और फर्नीचर वहां पर नहीं था, एक बार फिर वहां पर कार्रवाई करनी पड़ी। अगस्त 11 स्कूल स्टूडेंट्स हमीरपुर में, स्कूल स्टूडेंट सड़क पर उतर आए और फिर जाके उनसे बातचीत करनी पड़ी, डैमेज्ड अनमोटरेबल रोड्स यानी सड़क उनके स्कूल के सामने जो थी उस पर कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती, उसका वीडियो डालना पड़ा। महाराष्ट्र के भी 3-4 उदाहरण है मेरे पास में। अगस्त 14 को जवाहर नवोदय विद्यालय कनौज, वहां पर भी है, ये एक अलग से लिस्ट बन रही है यहां पर। तो बात यहां पर आकर अटक जाती है कि छात्र राजनीतिक परिभाषा या भाषा नहीं सुनना चाहते, भाषण नहीं सुनना चाहते आलोक जी भी, वो देखना चाहते हैं कि सरकार कर क्या रही है, ये समस्याएं अभी भी वहां की वहां क्यों है।
3: भाई जी, मैं बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा सा उत्तर दे देता हूं। देखिए, इन्होंने स्किल इंडिया एक कार्यक्रम चलाया था, स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है कि 0.06% स्किल की डेवलप जो लोग थे उनको जॉब मिला, 0.06%। मेन जॉब्स थे रेलवेज में, बैंक्स में, टीचिंग में, डिफेंस में। आज हालत यह है कि अग्निवीर योजना आने के बाद 60,000-70,000 बच्चा पूरी तरह से गायब,
2: आदिवासी छात्रों के बारे में
3: बात। अरे भाई देखिए, मैं देखिए, आप छोटे भाई हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, देखो गुरु प्रकाश,
2: नहीं आप भी बीच में बोल रहे थे,
3: आपका मैं सम्मान करता हूँ, आपकी जगह कोई और प्रवक्ता होता तो मैं पूरे शो को बोलने नहीं देता। प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए,
0: चलिए,
3: एक भी डाटा गलत नहीं दिया।
0: देखिए, एक दूसरे पर फेंकना
3: गलत बात है, मैं किसी
0: आपका राज्य मेरा राज्य, आपकी सरकार मेरी सरकार, ये सारी चीजें छात्र देख चुके हैं।
3: साहिल जी, केवल मैं अगर इतना ही,
0: ठीक है, गुरु प्रकाश जी, जरा उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए।
3: नहीं, एक मिनट साहिल जी, मुझे केवल गुरु प्रकाश भाई, मेरे छोटे भाई हैं, स्टार्टअप की डेफिनेशन बता के चले जाए, मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं हार गया, स्टार्टअप की डेफिनेशन बता जाए केवल, या बीच में बोलना बंद कर दे।
0: चलिए
3: बताइए स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या,
2: पार्टी हार चुकी है सर,
3: फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ शांत रहिए, आपको नहीं पता
2: है
3: स्टार्टअप की डेफिनेशन, इसलिए शांत रहिए, क्योंकि हर स्टेट की स्टार्टअप की डेफिनेशन अलग है और केंद्र सरकार की स्टार्टअप की
0: चर्चा आगे बढ़ाते हैं,
3: 7 बार
0: ये बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई होती रहेगी, लेकिन इससे युवा इसको देख रहे हैं और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके उनसे जुड़े मुद्दों पर कोई ना कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा है।
3: एक मिनट साहिल जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, मंत्रियों का यूनिवर्सिटी में स्वागत है और मंत्री यूनिवर्सिटी में जाएं और वहां पर कितनी वैकेंसी है उनकी अनाउंसमेंट करके आए कि अगले 3 महीने में हम इस यूनिवर्सिटी में 60%, 70%, 50% जो वैकेंसीज है उनको भर देंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, आप वैकेंसीज को भरिए, हम आपका स्वागत करेंगे, रील बनाने मत जाइए मोदी जी की तरह, रील बनाएंगे तो जैन जी आपको जवाब देगा,
0: यही बात भी पूछी जाएगी। जो बीजेपी यहां पर सवाल उठा रही है, कि जो छात्र जाएंगे वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो शिक्षा संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, वहीं के छात्र वहां पर लेके जाए जाएंगी, तो ये राजनीतिक डिबेट तो इस तरीके से चलती रहेगी। लेकिन आशुतोष, जो मुद्दा मैंने ओरिजिनली यहां पर रखा था, बिल्कुल जाएंगे, सभी लोग जाएंगे और चर्चा राजनीतिक भी होगी इसमें। लेकिन आशुतोष, जो मुद्दा मैंने उठाया था, राजनीतिक पार्टियों पर युवाओं का भरोसा खत्म होता जा रहा है। युवाओं की भाषा समझने के लिए रील्स की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। युवाओं तक पहुंचने के लिए अलग अलग कंटेंट क्रिएटर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उनके असली मुद्दों पर जब तक बात नहीं होगी, तब तक क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दलों पर युवाओं का भरोसा रहेगा, क्या जेंजी का भरोसा रहेगा?
2: देखिए साहिल, आपके सवाल के दो जवाब हैं। पहला जवाब तो इसी बात को लेकर यह है कि क्या यह सरकार अपने मंत्रियों को यूनिवर्सिटीज में भेजती अगर जंतर मंतर पर इतनी बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा होते तो? इसका मतलब क्या है कि चाहे जंतर मंतर हो, चाहे आपके हमीरपुर हो या फतेहपुर हो या कन्नौज हो, जिस तरीके से छात्र सड़कों पर उतरे हैं, इसने इस सरकार को बुरी तरीके से अंदर से हिला दिया है और इनको अपने नीचे की जमीन पूरी तरीके से खिसकती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। ये असली कारण है और इसका जवाब सरकार बड़े पैमाने पर शिक्षा रिफॉर्म ना करके, बल्कि उसको लगता है कि पीआर एक्सरसाइज करके हम जरूर इसका उसकी कमी पूरा कर लेंगे, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको अपना शिक्षा मंत्री इसलिए नहीं गंवाना पड़ गया, इस्तीफा दिलाना पड़ गया क्योंकि आप जो पीआर एक्सरसाइज कर रहे थे, इसलिए गंवाना पड़ा क्योंकि आप शिक्षा के मामले में छात्रों की नजर में बुरी तरीके से असफल हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में पेपर लीक हो रहे हैं। और जो आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, वो नौकरियां आज की तारीख में गायब है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका बुरी तरीके से बैठा हुआ है। तो पहला कारण यह है कि अगर ये जंतर मंतर का आंदोलन नहीं होता तो कोई मंत्री कहीं नहीं जाता। दूसरा प्रश्न जो है उसका जवाब क्या है कि अगर मंत्री महोदय को इसलिए कैबिनेट में रखा गया क्योंकि यूनिवर्सिटीज में जाके पीआर एक्सरसाइज करें, तो उनका मंत्रालय यहां कौन संभालेगा? कौन उनका मंत्रालय देखेगा यहां बैठ के? ये मंत्री का काम है। तो ये जिसे कहते हैं ना कि डिस्प्लेस्ड फोकस है इस सरकार का। सीधी सी बात यह है कि आज की तारीख में विकास विकास विकास पिछले 12 सालों में सरकार चिल्ला रही थी, अगर विकास हुआ होता तो ये छात्र हमीरपुर पर नहीं उतर रहे होते, सड़कों पर नहीं उतर रहे होते, पानी टपकने की बात नहीं कर रहे होते, जंतर मंतर छात्र इकट्ठा नहीं हो रहे होंगे। और मंत्रियों का यह काम नहीं है क्या? मंत्री अब कंटेंट क्रिएटर बन, मतलब ये हास्यास्पद स्थिति है।
0: लेकिन आशुतोष, ये असर तो सभी राजनीतिक पार्टियों पर पड़ा है, ये असर तो सभी राजनीतिक पार्टियों पर पड़ा है।
2: साहिल देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, केंद्र में सरकार किसकी? नरेंद्र मोदी की सरकार है। कितने साल से सरकार है? 12 साल से सरकार है। राज्यों के अंदर किसकी सरकार है? 22 राज्यों में बीजेपी। तो छात्र किससे नाराज है? क्या वो राहुल गांधी से नाराज है? क्या वो अखिलेश यादव से नाराज है? क्या वो मायावती से नाराज है?
0: अरे भाई, सीधे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टियों से भी नाराज है। सरकार से नाराज है वो तो सड़क पर उतरने से समझ में ही आ रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है, ये भी बात यहां पर नजर आ रही है। दूसरी बात जो मुझे आपसे पूछनी है, देखिए डेविल्स एडवोकेट, क्या आज की स्थिति में ये कैच 20 सिचुएशन नहीं है सरकार के लिए कि अगर सरकार छात्रों से बातचीत नहीं करती तब भी हम ये शायद कहते कि भाई ये तो सरकार अपने दिल्ली में लुटिंस में बैठी हुई है और छात्रों से बात नहीं कर रही है। अगर वो यूनिवर्सिटी जाती है तब भी आप सवाल उठा रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में जाके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा पॉलिसी बना दीजिएगा। तो दोनों तरफ से सरकार पर सवाल उठा रहे हैं इस पर।
2: साहिल देखिए, अगर आप सरकार में है तो सरकार से सवाल ही पूछे जाएंगे ना। अगर नाराजगी है तो इसलिए क्योंकि सरकार उनको उन छात्रों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा नहीं कर रही। सीधी सी बात है ना भाई, कल राहुल गांधी के साथ मनमोहन सिंह की सरकार थी, नहीं उन्होंने काम किया, लोगों ने भगा दिया उनको, 44 पे आ गया, कांग्रेस पे अटक गई। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है? दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि आप जहां आपको सर्जरी करने की जरूरत है वहां आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और यह इस सरकार के विजन की सबसे बड़ी खामी है। आज की तारीख में छात्रों के शिक्षा रिफॉर्म में आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। आप ये बताइए कि अगले 6 साल के अंदर एक रोड मैप बनाइए, हम ये शिक्षा के लिए 3 कदम उठाने वाले, हम प्राइवेटाइजेशन को रोकने वाले हैं, हम शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहते हैं, हम शिक्षा का स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहते हैं, हम शिक्षा को जॉब से जोड़ना चाहते हैं, हम शिक्षा को इंडस्ट्री से जोड़ना चाहते हैं, हम ये कोचिंग
0: खत्म करना। सरकार किसी की भी आए, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन रुकने वाला है नहीं, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन के जरिए ही बड़ी बड़ी राजनीति चलती है, ये तो आपने भी देखा हुआ है। ये बात तो हमें अभी समझ लेनी चाहिए कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन तो सालों से चल रहा है आज की स्थिति में, और वो किसी एक पार्टी की देन नहीं है।
2: साहिल, ये जो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्यूशन जो चल रहे हैं, ये दरअसल बेसिकली दलितों और पिछड़ों और जो कमजोर तबका है उसको शिक्षा से दूर करने की एक साजिश है।
4: मैं साफ तौर पे कहता हूं भाई, कौन कौन गरीब का बच्चा जो 10,000 कमाता है 20,000 कमाता है वो कहां कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी बच्चे को रख पाएगा, कहां प्राइवेट इंस्टीट्यूट में रख पाएगा जहां 1-1.5 लाख की सैलरी
0: सही बात है की फीस है। सबसे ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और जिसकी शुरुआत जहां पर हुई है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्य है दलित और वो 80 के दशक में यहां पर शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही है,
4: इसलिए मैं कह रहा हूं
0: गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर रखने में प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, बात तो सही है, लेकिन वो कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और उनके इर्द गिर्द कई बार शिक्षा नीति भी बनाई जाती है, ये बात भी हमने कई बार देखी है और वो आज की बात नहीं है, 80 के दशक से लगातार इस बात को हमने देखा हुआ है। लेकिन रोहित सिंह जो सवाल मैंने पूछा था कि आज की स्थिति में राजनीतिक दलों की ये कमजोरी है कि वो युवाओं के मुद्दे उस तरीके से नहीं उठा पाए और इसीलिए छात्र अपने हाथ में वो सोशल मीडिया का हथियार उठा रहे हैं और हमारे अपनी स्कूलों की या कॉलेजेस की स्थिति सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भाई अगर कोई गलती हो रही है तो उस पर उनको सजा मिलनी चाहिए, अगर कोई मंत्री गलती करता है तो उसे भी हटना चाहिए। यह सिस्टम का फेल्योर है, राजनीतिक सिस्टम का।
5: साहिल जी, अब आखिरी दौर में मुझे समय मिला है, मुझे पूरी बात रख लेने दीजिएगा, नहीं तो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जिस प्रकार से जो आम नौजवान हैं, जिनके माता पिता किसी राजनीतिक विरासत की चाबी अपने संतानों को देने में सफल नहीं हैं, जिनके माता पिता राजनीति में कोई स्थान नहीं रखते हैं, वैसे 95-98% लोग राजनीति के क्षेत्र में देश निर्माण, राज्य निर्माण, समाज निर्माण, व्यवस्था निर्माण का सपना लेकर आते हैं। उनका सपना पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उस कॉम्पिटेटिव मार्केट में एक सिंडिकेट बैठ गया है अक्रॉस दी पार्टी लाइन, जो अपने बीच में गठबंधन करके अपने राजकुमार और अपने राजकुमारियों की स्थापना के लिए एक हो गया है। ऐसी परिस्थिति में इस वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक नया अरे टॉपिक पर आ रहे हैं, लगे आलोक शर्मा बड़बड़ाने, चुप रहिए, अभी आप बोल रहे थे बोलने नहीं देंगे, हम बोलेंगे तो आप नहीं बोल पाइएगा, चुप रहिए, आपका सम्मान करते हैं,
0: चुप रहिए।
5: राहुल गांधी नवासे हैं तो आपको बुरा लगता है, राहुल गांधी राजकुमार है तो बुरा लगता है सुनने में,
6: कहां से आदमी आया हुआ
5: है, बात करते हैं आप
6: इसको लेके आते हैं,
3: ये भाजपा का प्लांटेड आदमी है, मीडिया सपोर्ट करता है इसको।
5: साहिल जी सुनिए, और आप क्या
0: रोहित सिंह, आप बोलिए, आपको छेड़ रहे, आप ध्यान मत दीजिए, आप बोलिए, आपकी बात रखिएगा,
5: देश के नौजवानों की बात करते हैं तो प्लांटेड है। मूल मुद्दा पर आइए, देखिए, एक सिंडिकेट सक्रिय हो गया है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारतीय राजनीति में एक नए सूर्य का उदय हो रहा था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, तुम परिवारवाद करना छोड़ दो, मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा, एक पैर पर देश का नौजवान उनके लिए खड़ा हो गया और आज भी नौजवान उनके साथ है। देखिए, इस देश का नौजवान अभिमन्यु को, श्रवण कुमार को और प्रहलाद को अपना हीरो मानता है, इस देश का नौजवान पाकिस्तानी जंजी अजमल कसाब को अपना हीरो नहीं मानता है, राहुल गांधी और संपूर्ण विपक्ष कसाब जैसे जंजी को भारतीय समाज में हीरो बनाना चाहते हैं, जो कभी स्वीकार नहीं होगा।
0: लेकिन रोहित सिंह जी,
5: अगर विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करके,
0: लेकिन रोहित सिंह जी,
5: जी जी,
0: वो जिनको भी हीरो मानता हो, रोहित सिंह जी, वो जिनको भी हीरो मानता हो, हर किसी का अपना हीरो होता है, नहीं नहीं, हर किसी का अपना हीरो होता है भाई, जेंजी का हीरो कौन है उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मेरे ख्याल से जेंजी का कोई हीरो नहीं होता है, जेंजी अपने मुद्दे पर बात करता है और उसे कोई पड़ी नहीं है कि कौन नेता कितना बड़ा है, वो अपने सवाल सीधे सीधे पूछ लेता है। हमारी पीढ़ी में शायद 10 बार सोचेंगे कि भाई किसको क्या पूछना है, लेकिन वो इसकी मर्यादा नहीं रखता है, उसे अगर लगता है कि दिक्कत है तो सवाल पूछ लेता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आज की स्थिति में जेंजी जो सड़क पर नजर आ रहा है वो क्यों नजर आ रहा है? अगर इतनी बड़े पैमाने पर उन्होंने नेतृत्व को मान लिया था तो ऐसी कौन सी समस्या है जेंजी को कि वो सड़क पर उतर कर कह रहा है कि भाई कुछ चीजें अभी भी ठीक नहीं हुई है, उस पर काम करना जरूरी है, ये क्यों हो रहा है?
5: साहिल जी, आपको 10 बार सोचने में लगा होगा, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को चैलेंज कर दिया था 5 साल की उम्र में। इस देश का जेंजी हमेशा चैलेंज करता है और 14 साल से लेकर 22 साल के जो नौजवान बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, पहले अपने माता पिता से बागी होते हैं, फिर विद्यालय की व्यवस्था से बागी होते हैं, फिर समाज में बागी होते हैं और बगावत विद्यार्थियों और नौजवानों के खून में है और इसी बगावत के कारण भगत सिंह ने शहादत अर्जित की थी और देश को आजादी दिलाई थी और इंदिरा गांधी के हिटलर शाही के खिलाफ देश का नौजवान बागी हुआ था और झारखंड की सड़कों पर हेमंत सोरेन को
0: नानी
5: दिया, केरल में विद्यार्थी
0: तो वही बगावत आपको आज नहीं नजर आ रही है। वही बगावत आपको आज नहीं नजर आ रही है,
5: वही
0: बगावत आपको आज नहीं नजर आ रही है। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की जो बगावत थी वो बगावत आपको आज नहीं नजर आ रही है।
5: दरबारी कभी ये कांग अब बोल तो रहा हूँ सुनिए तो, ये कांग्रेस के दरबारी कवि और अरविंद केजरीवाल के निष्कासित कवि,
0: ठीक है चलिए हो गया,
5: दोनों जो हंसी ठिठोली कर रहे हैं
3: साहिल जी ये बागी,
0: लेकिन असलियत में
3: उछालने के लिए लोगों को आज तक बैठे हैं ऐसे व्यक्ति को,
0: ठीक है
4: फुल कॉमेडी शो है,
0: इसमें जरा राजनीति भी देखनी होगी,
4: फुल कॉमेडी शो है
3: ये मोदी जी के,
0: नहीं भाई ठीक है एक मिनट एक मिनट एक एक मिनट जरा एक चीज पर मुझे मुझे मुझे सभी से जवाब चाहिए, एक चीज पर मुझे सभी से जवाब चाहिए, एक एक करके लेंगे एक एक करके लेंगे एक एक करके लेंगे। आशुतोष जी सबसे पहले आपके पास, उसके बाद आलोक शर्मा और आखिर में गुरुप्रकाश, जरा जल्दी से संक्षेप में जवाब दीजिए, समय खत्म हो रहा है। देखिए सबसे ज्यादा जेंजी वोटर बढ़ रहे हैं, 20-25% की आबादी में जेंजी वोटर नजर आ रहे हैं आशुतोष, और इसी के वजह से आने वाले चुनाव में इनकी भूमिका बहुत अहम रहेगी। अब तक शायद कांग्रेस पार्टी को उतने वोट वो नहीं मिल पा रहे होंगे, लेकिन अभी उनको लगता है कि यह मौका है। क्या आपको लगता है कि इसी के वजह से यह जेंजी आउटरीच अचानक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उनका असर पहले देख चुके हैं सभी राजनीतिक पार्टियां?
4: देखिए साहिल, मैं बीजेपी के प्रवक्ता और उनके समर्थक क्या कहते हैं मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, अमित शाह बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो इस बात को समझ गए हैं कि जो गुस्सा जो सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है वो पार्टी प्रवक्ताओं के टेलीविजन चैनल पर आके चिल्लाने से नहीं संभलने वाला है, वो वाकई में नाराज है और इसलिए उसका आउटरीच करने की कोशिश करें। कि फिर भी मैं कह रहा हूं ये सिर्फ बैंडेड लगाने की कोशिश है, सर्जरी की जरूरत है और उसके लिए आपको शिक्षा के बुनियादी जो उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है।
0: गुरुप्रकाश
1: जी देखिए मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि जेंजी जो है आज की तारीख में जो जेंजी है वो स्टेक होल्डर है, वो नींव है विकसित भारत की, और इसमें कोई भ्रम नहीं है, किसी को कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले 20 वर्षों में IITs IIM जितने कैंपसेस हैं वो इनोवेशन के लॉन्चपैड बनेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि भाई भारत की तीव्रता से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए, भारत को कमजोर किया जाए। ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस भारत के बाहर भी है और ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस भारत के अंदर भी है। राहुल गांधी जी उसके सरगना है, उनको मुबारक हो, लेकिन मैं पूरी की पूरी आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं आज का जेंजी मजबूती से सशक्त भारत को खड़ा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा है और कोई भ्रम में नहीं है। आज राहुल गांधी जी जाति के नाम पे, आदिवासी के नाम पे, झारखंड के आदिवासी छात्रों के मुद्दों पे चुप हो जाते हैं, पंजाब के दलित छात्रों के मुद्दों पे चुप हो जाते हैं, केरला की बच्चियों के नाम पे चुप हो जाते
0: हैं। रोहित सिंह अपना जेंजी, गुरुप्रकाश पासवान अपना जेंजी, आप अपना जेंजी तैयार कर रहे हैं।
3: बिल्कुल जेंजी किसी का नहीं है, मैं केवल 2-3 पॉजिटिव नोट के सुझाव देना चाहूंगा। GDP को 5% तक लेकर के जाइए। दूसरा NTA को जैसी संस्थाओं को भंग कीजिए, CBSE SSC UPSC और यूनिवर्सिटीज को RSS मुक्त कीजिए, अग्निवीर जैसी योजना को तुरंत समाप्त कीजिए, शिक्षा स्तर सुधर जाएगा, RSS और भाजपा से एजुकेशन को दूर कीजिए, RSS वालों से मुक्त कर दीजिए, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा, कोई सड़क पे नहीं आएगा।
0: कुछ कर्नाटक झारखंड हिमाचल प्रदेश के लिए भी कुछ सलाह है तो दे दीजिएगा।
3: बिल्कुल सलाह है वहाँ के,
0: हिमाचल कर्नाटक के लिए भी कुछ सलाह होगी तो दे दीजिएगा।
3: आलोक शर्मा सबसे पहले सवाल उठाएगा और वहाँ पर भी जो पुराने टाइम के RSS के संघी हैं उनको निकालो। मैं अपनी सरकार को सलाह देना चाहूंगा कि
0: इसी उम्मीद के साथ मुझे लगता है कि जो नए भारत की बात की जा रही है वो नए भारत की बात जेंजी ने करना शुरू कर दिया है और वो ये कह रहा है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, और जो सोशल मीडिया का हथियार उनके हाथ में दिया है उसके जरिए अपने नेताओं से सवाल पूछते रहेंगे, और इसीलिए सवाल पूछना हमेशा जरूरी रहेगा। फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ। ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
3: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: in association with Hind, Bade Aram Se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।

0: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
1: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
0: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
2: प्रोटेस्टर है, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
3: विधानसभा के करीब ये पहुँच चुका है।
4: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
5: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है लड़के सबको।
0: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
6: सड़कों पर उड़ती धूल, गाड़ियों की लंबी कतारें और टोल प्लाजा पर रेंगता ट्रैफिक, हाईवे के सफर में ये परेशानी लगभग हर ड्राइवर की कहानी बन चुकी है। लेकिन आने वाले समय में टोल गेट पर रुकने की मजबूरी काफी हद तक खत्म हो सकती है। दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय देश भर में मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF टोलिंग सिस्टम लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इस तकनीक के जरिए गाड़ियां बिना रुके टोल पार कर सकेंगी और सफर पहले से ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल देश में 1150 से ज्यादा टोल प्लाजा मौजूद हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के इन टोल प्लाजा से हर साल 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टोल कलेक्शन होता है, जिसमें फास्टैग के जरिए टोल वसूली का हिस्सा 98% से ज्यादा पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार का लक्ष्य टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम को कम करना और सफर को ज्यादा सुगम बनाना है। इसी दिशा में मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम को अलग अलग फेज में लागू किया जा रहा है। इस MLFF सिस्टम में बैरियर की जरूरत नहीं होगी जिससे गाड़ियां बिना रुके टोल प्वाइंट से गुजर सकेंगी। वहीं फास्टैग और नंबर प्लेट पहचान तकनीक के जरिए टोल अपने आप कट जाएगा। इससे पहले की बचत के साथ ईंधन की खपत भी कम होगी। अभी देश के कुछ टोल प्लाजा पर ये तकनीक लागू की जा चुकी है और कई दूसरी जगहों पर इसके विस्तार की तैयारी चल रही है। टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए मौजूदा व्यवस्था को आसान बनाने पर भी मंथन चल रहा है। मंत्रालय स्थानीय यात्रियों के लिए सालाना पास जैसी व्यवस्था पर विचार कर रहा है, जिससे बार बार पास रिन्यू कराने की जरूरत कम हो सके। वैसे भी मासिक पास का खर्च 350 रूपए है, जिससे साल भर का कुल खर्च 4,200 रूपए हो जाता है। वहीं सालाना टोल पास करीब 3,000 रूपए का है। टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए सरकार पहले ही फास्टैग एनुअल पास जैसी सुविधा शुरू कर चुकी है, जिसका फायदा हाईवे का नियमित इस्तेमाल करने वालों को मिल रहा है। इस फास्टैग एनुअल पास की मदद से एक तय शुल्क पर 200 टोल यात्रियों या एक साल तक की सुविधा मिलती है। जानकारों का मानना है कि फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू होने के बाद हाईवे पर लगने वाले जाम में कमी आएगी, यात्रा का समय घटेगा और ईंधन की बचत होगी। आने वाले वर्षों में देश का टोल नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा डिजिटल और ऑटोमेटेड होने जा रहा है, यानी हाईवे पर सफर करते समय टोल प्लाजा पर रुकने की झंझट धीरे धीरे बीते दौर की बात बन सकती है। आज तक ब्यूरो।
7: अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: झारखंड हाई कोर्ट ने सुरेंद्र सरकार के फैसले पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री हेमंत ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा को किया था रद्द। तत्काल प्रभाव से काम पर लौटेंगे याचिकाकर्ता। जंतर मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों की जांच। पैलेट गन के इस्तेमाल का भी मामला। वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाने के कांग्रेस के फैसले पर भड़के अमित शाह। कहा, कांग्रेस ने रखी विभाजन की नींव, ये शहीदों का अपमान। प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर देश भर में सेवा संकल्प महोत्सव मनाएगी बीजेपी। 17 सितंबर से 15 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम। अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे समीक्षा। लखनऊ में दिन दहाड़े आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजर समेत 2 महिलाओं की हत्या। बहन और पत्नी को गोली मारने के बाद शख्स ने की खुदकुशी। चल रहा था तलाक का केस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
1: तुम जो बोलते वही राष्ट्र गीत, आप जो कहते वही होगा। 90 साल से जो चल रहा है वही हम की।
2: मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती।
3: वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजा गाने का विवाद आज और गहरा हो गया। कांग्रेस कार्य समिति में पहले की तरह सिर्फ 2 पद गाने के फैसले के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर दी। कांग्रेस पर निशाना साधने की अगुवाई खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। उन्होंने कहा कि 1937 की ऐतिहासिक गलती को मोदी सरकार ने सुधारा है, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस संसद का कानून नकार रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। 15 अगस्त से कांग्रेस ने वंदे मातरम पर अपना रुख कड़ा किया है। संपूर्ण वंदे मातरम रोकने की कोशिश को लेकर सोनिया गांधी बीजेपी के आरोपों के घेरे में है, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा के बाद पार्टी सिर्फ 2 पद गाने पर अड़ गई है, जबकि 13 अगस्त को ही लोकसभा में संपूर्ण वंदे मातरम के गायन में राहुल गांधी समेत जो कांग्रेस के तमाम नेता थे वो मौजूद रहे थे। ये उसी दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 13 अगस्त को जब अंत हुआ उसके बाद से उसमें सभी लोग मौजूद थे, सभी की मौजूदगी में वंदे मातरम का पूरा जो संपूर्ण वंदे मातरम है 6 स्टैंजा वाला वो गाया गया था। वैसे जब वंदे मातरम पर नए सिरे से हंगामा मचा है तो सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी ये मुद्दा क्यों बना है? क्या ये दोनों ओर से तुष्टिकरण का दाव है? क्या ऐसे भावनात्मक मुद्दों से मौजूदा समस्याओं को टालने की कोशिश का आरोप सही है? अमित शाह की ललकार, वंदे मातरम पर तकरार, वंदे मातरम के 2 पैरा, विवाद का फेरा। पहले ये रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा की शुरुआत। संपूर्ण वंदे मातरम इस राष्ट्र का स्वर है। इस भावना के साथ बने संसद के कानून और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बावजूद कांग्रेस पहले की तरह सिर्फ 2 पदों के गायन पर अड़ गई है। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुए विवाद के बाद पार्टी की वर्किंग कमेटी ने जब अपना निर्णय दोहराया तो जोरदार पलटवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया।
1: कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
0: वैसे ये महत्वपूर्ण है कि 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था। तब राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा, मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ सांसद मौजूद थे और उन्होंने वंदे मातरम का सामूहिक पाठ किया था। लेकिन पहले 15 अगस्त पर कांग्रेस मुख्यालय पर संपूर्ण वंदे मातरम बजने पर सोनिया गांधी कुछ निर्देश देती नजर आईं। उसी दिन केरल सरकार के आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम का गायन ही नहीं हुआ। हालांकि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारों ने 15 अगस्त के आधिकारिक कार्यक्रमों में संपूर्ण वंदे मातरम का पाठ किया, जबकि 17 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी। फिर CWC में बाकायदा चर्चा के बाद निर्णय सुनाया गया।
2: 1937 का रेसोल्यूशन, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट वट एवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबाइड दैट डिसीजंस। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट अवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली, दिस इज अवर डिसीजन।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पोस्ट में लिखा, कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। उसकी कार्यसमिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। जब कुछ दिन पूर्व यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया था। आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन चुका है। कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप है कि राहुल गांधी जी जिन्ना के असली वारिस हैं।
3: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई।

0: है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
1: बीजेपी के इस हमले के जवाब में कांग्रेस का पलटवार भी तैयार है।
2: आपने पास कर दिया, संख्या बल आपके पास है, आप मेरे अधिकार से मुझे कैसे वंचित कर दोगे? मेरा अधिकार है कि मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं, मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं जो मुझे संविधान ने दिया है। मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया, इन्होंने राष्ट्रगान।
3: कांग्रेस पार्टी और पूरा देश मानती है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, महात्मा गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, मौलाना आजाद जी को, आचार्य नरेंद्र देव जी को, पुरुषोत्तम टंडन जी को, ये जितने भी लोग 1937 के CWC मीटिंग में मौजूद थे और ये फैसला लिया गया था कि दो स्टैंजा गाया जाएगा, ये देश को यूनाइट करने वाला है और दो गाया जाएगा, उस स्टैंड पे कांग्रेस पार्टी कायम है। बयानबाजी हो रही है अमित शाह जी के द्वारा या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, ये सिर्फ डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं।
1: वंदे मातरम पर दोनों ओर से खिंची तलवारें बता रही हैं कि अभी इस पर सियासत लंबी चल सकती है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ अमिक जमाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ अमितोष पारिक जो कि प्रवक्ता है VHP के, वो इस पर जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, अब वंदे मातरम पर तो प्रतिक्रियाएं परसों तरसों भी आई थी, फिर उस पर बहस भी हुई, अब ये नए सिरे से क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो क्लियर दिख रहा है, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में सिर्फ दो स्टांजा गाए जा रहे हैं तो उनका तो ठीक है, अब तो गेंद पूरी तरह से आपके पाले में है। अगर ये कानून का नए कानून के संशोधन के बाद उल्लंघन है तो फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो फिर क्या सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है?
4: देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जिन्ना कांग्रेस है, और जो जिन्ना की मानसिकता थी वही आज राहुल गांधी की मानसिकता है। अमित शाह जी ने आज जो बात कही, क्या ये लाखों शहीदों का अपमान नहीं है जो वंदे मातरम गाते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए, और क्या ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है? क्योंकि हमें यह समझना होगा कि क्या चाहते थे जिन्ना। जिन्ना बात करते थे कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिले, वही बात कांग्रेस पार्टी करती है। आज सवाल क्या यह नहीं पूछा जाएगा, संविधान संविधान संविधान राहुल गांधी कहते हैं। अंजना जी, मेरा पहला सवाल है और मेरे काबिल प्रवक्ता कांग्रेस के अखिलेश जी उत्तर दें। आप ये बताइए, अगर संसद में एक कानून पारित होता है अनुच्छेद 245 और 246 पढ़ लीजिएगा, और ये कहा जाता है कि आपको वंदे मातरम का सम्मान करना है, ये एक कानून है भारत का, आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, आप ये कोई नहीं होते कहने वाले कि हम 6 छंद इसके जो है वो नहीं गाएंगे या हम सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि ये एक अपराध है। तो पहली बात तो जो शपथ इन्होंने ली है संविधान की रक्षा करने की और संविधान के तहत कार्य करने की, उसका उल्लंघन सोनिया गांधी कर रही है, राहुल गांधी खड़गे जी कर रहे हैं, इमरान मसूद कर रहे हैं। दूसरी बात जो बड़ी आती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में ये बात आई और क्या कहा गया, ये कहा गया कि राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान क्या होगा। तो राष्ट्र गीत के लिए ये कहा गया कि इसका सम्मान भी राष्ट्रगान की तरह होगा। तो आज ये पूछा जाना चाहिए कि जब तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात आ गई और उसी को हमने स्वीकारा और उसने संविधान की शक्ल ले ली, तो आज उस पर ये लोग आपत्ति क्यों कर रहे हैं? तीसरी बड़ी बात मैं कहता हूं, बड़े भावुक होकर कहता हूं, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, तमाम मुसलमान हैं जिन्होंने राष्ट्र गीत को गाया है, राष्ट्र गीत को गाया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, वो भी मुसलमान थे, इसको धर्म से जोड़ के क्यों

0: देखा जा रहा है। और मुझे चिंता क्या है, मैं ये कह के अंत करूंगा, इमरान मसूद को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते हैं। तो ये भारत है, ये संविधान से चलेगा ना, ये कुरान से तो नहीं चल सकता है, शरिया कानून से तो नहीं चल सकता है। आप मुझे बताइए अंजना जी, ये बड़ा प्रश्न है। अगर इनको
1: मेरे सवाल का आपने गौरव जी जवाब नहीं दिया
0: तो देश के लिए कौन भक्ति दिखाएगा?
1: मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया।
0: आप पूछ सकते
1: कि अगर कानून में संशोधन के बाद कानूनी मामला बनता है तो फिर वो कानूनी मामला करने में आप लोग क्यों डर रहे हैं? आपको लग रहा है कि बैकलैश होगा इसका?
0: किस बात का बैकलैश होगा अंजना जी? 15 अगस्त को आपने देखा था क्या हुआ था? सोनिया गांधी कैसे घबरा गई थी कि अगर पूरे वंदे मातरम में वो खड़ी रह जाएंगी तो उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक ना जाए, और उन्होंने सम्मान नहीं दिया। और बिल्कुल कानूनी मामला बनता है, इस पे इंक्वायरी चल रही है, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, कानून से ऊपर संविधान से ऊपर तो कोई भी नहीं है,
1: ठीक है।
0: और उन पे कार्रवाई, अगर हमारे पास सारे साक्ष्य आएंगे जरूर होगी, वो भी आम नागरिक है।
1: अखिलेश जी वो कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई भी होगी अगर ऐसे साक्ष्य आते हैं सामने। आपकी पार्टी हालांकि इसको डिनाई कर रही है, कह रही है कि वो कुर्सी मांग रही थी सोनिया जी। लेकिन 1896 कांग्रेस पार्टी के ही ऐसे तमाम दिग्गज नेता जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, रहमतुल्ला सयानी, उन्होंने पूरा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में संपूर्ण वंदे मातरम उन्होंने गाया था सभी सांसा के साथ। 1913 नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर जो कि पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रह चुके, कराची अधिवेशन में भी उन्होंने आजादी के पहले 13 में गाया था। फिर 18 में गाया था कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन में सैयद हसन इमाम पूर्व अध्यक्ष ने। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि पूर्व अध्यक्ष आपकी पार्टी के रहे हैं, उन्होंने 1920 में गाया था। हालांकि मुझे लगता है कि उसके बाद वो अध्यक्ष बने आपकी पार्टी के, लेकिन अनेकों ऐसे नाम हैं, एम ए अंसारी हों, और ये कांग्रेस पार्टी के ही सब नेताओं के हम नाम दे रहे हैं, ये लोग आ सकते थे। तो फिर 2026 आते आते इतना परहेज क्यों हो गया है?
2: देखिए अंजना जी, आपने कई उदाहरण दिए, ये सही बात है। कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम गाती थी, वंदे मातरम जब गाया जाता था तो लाठियां चलती थी। आपत्ति किसको थी वंदे मातरम से? तब अंग्रेजों को थी, आरएसएस को थी, हिंदू महासभा को था और मुस्लिम लीग को थी। फिर से दोहरा दे रहा हूं, जब कांग्रेस पार्टी जंगे आजादी की लड़ाई लड़ती थी तो वंदे मातरम गीत गाया जाता था और इस गीत को गाए जाने पे आपत्ति करती थी आरएसएस, हिंदू महासभा, अंग्रेज और मुस्लिम लीग। तब इस देश के लोग लाठियां खाते थे वंदे मातरम गाने पे, गोलियां खाते थे, फांसी के तख्ते चूम लेते थे, तब तो ये अंग्रेजों से यारी करते थे। और आज ये बड़े अपने आप को खैर खा बन रहे हैं। 1937 में इस वंदे मातरम के कितना गाया जाना चाहिए इसके लिए बाकायदे हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अध्यक्षता में समिति ने सुझाव दिया कि कितना गाया जाना चाहिए, और उसको उस वर्किंग कमेटी में सुभाष चंद्र बोस जी, गोविंद वल्लभ पंत जी और नेहरू जी, पटेल साहब, आजाद साहब, ये पंत जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के इस सुझाव पे नेहरू जी के साथ इसको प्रस्ताव को पारित किया कितना गाया जाना चाहिए। आज ये लोग सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की खिलाफत कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा सुझाए गए उस गीत को कितना गाया जाना चाहिए वो बात तय हुई थी और उस पर चलते चले आ रहे हैं। भैया पहले तो तुम एक दो काम कर लो, भाजपाइयों, आरएसएस वालों, अगर इतना ही वंदे मातरम से प्यार है सच्चे में तो पहले राष्ट्र से क्षमा मांग लो कि जब पूरा देश गाता था तो तुम लोग कहते थे नहीं गाना जो अंग्रेजों के साथ थे, इसके लिए पहले राष्ट्र से क्षमा मांग लो कि तुम्हारे पुरखों ने इस वंदे मातरम का जब विरोध किया था, अंग्रेजों से यारी की थी, तो इसके लिए हमें क्षमा कर दिया जाए। और दूसरी बात, ये जो राष्ट्रीय सरेंडर संघ है सुबह जो गाना अपना गाता है उसके जगह पे वंदे मातरम और जनगणमन गाना शुरू कर दो।
1: आपने भी मेरा जवाब नहीं दिया अखिलेश जी, आपने भी मेरा जवाब नहीं दिया।
2: पूरा जवाब दिया मैंने, क्या सुना?
1: मैं ये मेरा सवाल ये फिर से पूछ रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि जब पहले गाते थे बाद में परहेज क्यों हो गया? 1936 में जो आप बता रहे हैं कुछ स्टैंजा हटाए गए, 35 में कुछ स्टैंजा हटाए गए, वो सबको पता है कि 37 में हटाए गए। वो हटाएंगे वो सबको पता है, लेकिन अब जब

0: कानून सरकार बनाती है, जब जब कानून नया सरकार बना रही है, तो भाई इस देश में तो उस कानून को मानना होगा ना। अनेकों ऐसे कानून है जिसमें संशोधन हुआ, तो 2026 में
1: मैंने,
0: और सुनिए ना, पार्लियामेंट में जो आखिरी दिन था उस दिन भी राहुल जी खड़े थे वहां पर, मणिकम टैगोर थे, सब थे, सबके सामने पूरा गाना गाया गया।
1: अब देखिए, जब ये 37 में जो सबसे इस गीत के सबसे बड़े पुरोधा थे हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी और उनके साथ के लोगों ने सुझाव दिया कि कितना गाया जाना चाहिए, उसको सबने कांग्रेस ने माना, तो हमने तो उनकी बात मानी। दूसरी बात, आप पहले खेद तो व्यक्त करिए, तब आपका बहाना जगह कि आप नेक नियति से हैं, क्षमा मांगिए राज से। तीसरी बात, यदि आपके पास ताकत है तो आप कोई भी कानून बना लें, तो ये तो नहीं चलेगा ना। लॉ ऑफ जस्टिस होता है, नेचुरल लॉ होता है। अंग्रेज भी तो काला कानून बनाते थे, काला था, काला कानून है, नहीं स्वीकारता था देश।
0: ठीक है गौरव जी, एक जवाब दीजिए, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। हाँ
1: जी, देखिए आज पहले बीजेपी को राष्ट्र से माफी मांगनी होगी कि जब जंगे आजादी के दौरान वंदे मातरम नहीं गाते थे, हमने बड़ी गलती की, हमें माफ कर दो देशवासियों। और शाखा में ये दोनों गाना गाएं गीत
0: पहले देश, ठीक है वही पूछ रहे हो अखिलेश जी, वो कह रहे हैं कि जंगे आजादी के वक्त यही गाना नहीं गाने के लिए पहले माफी मांगे देश से।
2: देखिए सबसे पहले तो मैं नहीं जानता, इन्होंने हो सकता है इटली में जानकारी ली हो आरएसएस और भाजपा के बारे में। अगर सच्ची देशभक्ति किसी के कड़कड़ में है तो वो आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ही। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, हम सब जानते हैं किस तरह से उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट में स्थान दिया, क्यों इसीलिए दिया ना कि देशभक्त या जवाब बीच में ना बोले। अंजना जी शांत कर,
0: बीच में नहीं गुरु जी
2: शांत कर।
0: देखिए अखिलेश बाबू,
2: ओछी ओछी हरकतें ना करें, जिन्ना जिन्ना की आत्मा ना आ जाए इनमें, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जिन्ना शांत हो जाओ, जिन्ना शांत, अंजना जी शांत कराइए। देखिए घटिया प्रवक्ताओं को फिर मैं कहूंगा मत बुलाया करिए, अच्छा नहीं।
0: फिर देखिए आप भी अपशब्द मत बोलिए, मैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ बीच में मत बोलिए। आप हाथ उठाइए अखिलेश जी, फौरन आएंगे, जल्दी से अपनी बात
2: बोल रहे हैं। मैं तो नहीं बोला था उनके बीच में,
0: बोलिए।
2: मैं जल्दी नहीं, मैं अपना समय लेके बात पूरी करूंगा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देश का कानून है तो क्या, यही तो सोनिया गांधी की मानसिकता है, देश के कानून से मैं ऊपर हूं, मैं सोनिया गांधी इटालियन लेडी हूं। अरे पहला सवाल है, चुनी हुई सरकार है, संविधान के हिसाब से संसद में कोई भी कानून बना सकती है, उसको संविधान की दृष्टि से सही होना चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए केंद्र सरकार के पास, और दूसरी बात मूल अधिकारों के विपरीत नहीं होना चाहिए। संविधान पढ़ते तो अखिलेश जी को पता चलता। मेरा सवाल बहुत ही सरल था, मैंने कहा आप बताइए क्यों नहीं पालन करेंगे जब कानून बन गया, क्या ये उनकी शपथ का उल्लंघन नहीं है? इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप अंजना जी इस पे ध्यान दीजिए, इमरान मसूद ने जो कहा है, जो तमाम और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, मान लीजिए कोई इस्लामिक मुल्क है, वहां से हम पे भारत पे हमला करता है, कहता है अल्लाह हू अकबर, क्या एक नागरिक के सामने यह सवाल नहीं आएगा कि पहले हमारे लिए राष्ट्र प्रेम है, पहले हमारे लिए भारत माता है, उसके बाद धर्म है? बिल्कुल आएगा। और तभी यहां पे जो कांग्रेसी बैठे हैं इनको मीर जाफर बुलाया जाता है, क्योंकि पहले ये देश के साथ नहीं खड़े होते, पहले ये अपने तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए वोट बैंक के साथ खड़े होते हैं, चाहे संविधान तार तार हो जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंत करूंगा एक बात कह के, जवाहरलाल नेहरू जब जिन्ना के सामने घुटने टेक के रेंग रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बात स्पष्टता से कही थी कि वंदे मातरम जो है ये हमारे ये प्रेरणा का स्रोत है और देशभक्ति का प्रतीक है, हमें वंदे मातरम पूरा गाना चाहिए और जो जिन्ना ने मांग करी है उसे ठुकराना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है, जवाहरलाल नेहरू ने देश का बंटवारा तो कराई, साथ में तुष्टिकरण करते हुए वो जिन्ना के सामने रेंगने लगे, और उसी का परिणाम है कि भूल करी कांग्रेस पार्टी ने और उसका सुधार किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, अनुच्छेद 370 इनसे इनका स्टैंड पूछिए, टेम्पररी था हटा नहीं पाए थे, सीएए का हम विरोध करेंगे, संसद में पारित कानून है,

0: एनआरसी का हम विरोध करेंगे, आर्टिकल 44 यूसीसी की बात करता है, हम पालन नहीं करेंगे क्योंकि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। ये राजनीति जो संविधान के विपरीत जाके कर रहे हैं, राहुल गांधी को चाहिए पूरे देश से माफी मांगे और नेता प्रतिपक्ष के
1: अखिलेश जी अब इसका जवाब दे। और आपको हिंदुओं का वोट चाहिए इसीलिए ये स्टैंजा आप ऐड कर रहे हैं गौरव जी, इसमें भी कोई गलती तो है नहीं कहने में, आपको भी हिंदुओं का वोट चाहिए इसलिए।

0: का वोट चाहिए इसलिए आप ये संसार कर रहे हैं।
1: अच्छा
0: इतना जोर इस
1: पर, एक मिनट, हाँ मैं बताता हूँ। अशफाकुल्ला खान एक मिनट, डॉक्टर अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद खान, अब्दुल गफ्फार खान, ये लोग गाते थे, देशभक्त थे। अब आप मुझे बताइए, हिंदुओं को वोट चाहिए मतलब सिख ईसाई, आप सब पे आरोप लगा रही है कि वंदे मातरम सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र गीत है और किसी का नहीं
0: है।
1: मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन्ना की जो औलादे हैं राहुल गांधी जैसी, उनको दिक्कत है।
0: ठीक है अमित जी, हम आपसे इसके बाद पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अखिलेश जी जवाब दे दें।
2: अंजना जी
0: बोलिए,
2: अंजना जी
0: जल्दी से,
2: ये आदमी बोल रहा है जिन्ना की औलादे राहुल गांधी और आप सुन रही हैं। मैं इतना नहीं गिर सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारे पिताजी मेरे भाई के समान थे।
1: नहीं जो आपने बोला था
2: कुछ लिहाज नहीं, प्लीज कुछ लिहाज किया, सुन लो मेरे भाई, सुन लो, भाषा पे थोड़ा संयम रख लो,
1: जिन शब्दों काम का आएगा भविष्य में किया, वो भी
2: हाँ सुन लो। जब कांग्रेस पार्टी,
1: सुन रहा हूँ,
2: 1905 से वंदे मातरम और जनगण मन को अपने हर कार्यक्रम में गाती थी, तुम्हारे पुरखे आरएसएस बीस हिंदू परिषद तब मुस्लिम लीग के साथ विरोध करते थे। सुनते जाओ, ये जो अंग्रेजों की यारी करते थे ना मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और कहते थे कि इसी देश पे अंग्रेजों, मेरे माई बाप आका आप ही हैं इस देश में राज करने लायक, कांग्रेसियों को तो इस तरह पीटिए उस तरह मारिए, मैं आपके साथ हूं। यहां आके सिर्फ जिसका इतिहास इतना दागदार है, सिर्फ गद्दारी की जिसकी दास्ताने हैं, और जब पूरा देश जंग आजादी में वंदे मातरम गा रहा था और अंग्रेजों के चमचे ही में ये खड़े होके अंग्रेजों के साथ वंदे मातरम गाने वालों के खिलाफ लाठीचार्ज और गोली चलाने की बात करती थी, उसके लोग यहां बैठ करके आज बता रहे हैं वंदे मातरम गालो। गवा दो ना आरएसएस को अपनी शाखाओं में सुबह वंदे मातरम जनगण मन, अगर राष्ट्र प्रेमी है तो गा के दिखा दें,
1: तो गाते ही हैं
2: हम, और ना गाए तो तुम भी छोड़ दो अपनी पार्टी, पहले अपने आरएसएस में गवा के दिखा दो, भ्रम तुम्हें भी दूर हो जाएगा कि बीजेपी राष्ट्रभक्त पार्टी है, आपको भी भ्रम दूर हो जाएगा।
1: तुम्हारी तरह
2: अब सुन लो अंजना जी, आपको भी याद होगा कुछ ही दिन पहले
1: जाफर कहीं
2: राज्यसभा में, राज्यसभा में बाकायदे गाइडलाइन जारी की गई थी कि वंदे मातरम जय हिंद इस तरह का संबोधन नहीं किया जाएगा, इसी मोदी जी की सरकार ने अभी 8-10 महीने पहले जारी किया था।
1: गलत बोल रहे हैं,
2: याद है ना, ये है, ये वो राज्यसभा की नोटिफिकेशन है, कब पढ़ दूं,
1: चलिए
2: पार्लियामेंट्री कस्टम्स एंड एटिक्वेट पैरा 3, द डेकोरम एंड सीरियसनेस ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस रिक्वायर द 3, देयर शुड बी नो थैंक यू, जय हिंद वंदे मातरम एंड अदर्स, ये आप ही की सरकार ने लाई थी अभी कुछ ही महीनों पहले।
0: अच्छा, इसलिए नहीं गा रहे हैं आप लोग
2: वंदे,
0: इसलिए नहीं गा रहे हैं, इतना बात मान रहे हैं मोदी सरकार का, इसीलिए नहीं गा रहे हैं पाकिस्तान से
2: हम ये। अरे अंजना जी हमसे पूछ रहे क्यों, हम लोगों तो सैकड़ों साल से गा रहे हैं।
0: अरे सर नॉन इशू था
2: ये तो तब विरोध
0: नॉन इशू था, अगर हिमाचल में गाया जा सकता है तो तेलंगाना में गाया जा सकता है, तो हर जगह गाया जा सकता है कि नहीं, ये नॉन इशू बन जाता ना।
2: रविन्द्रनाथ, आप सारे लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के उस भावना को आप विरोध कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की भावना का विरोध कर रहे हैं, इन लोगों ने कहा था इतना गाया जाने चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग कमेटी में वही प्रस्ताव पास किया था 1937 में। आज जो भी इसके बारे में विरोध कर रहा है वो सुभाष
0: अमित जी
2: भावना का
0: नॉन इशू है।
1: अखिलेश जी
0: इतने सारे इशूज हैं जिस पर विपक्ष, गौरव जी थोड़ा सा रुक जाइए,
2: सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए,
0: यही तो हम कह रहे हैं
2: छात्रों के मुद्दे पे ये सरकार के पास
0: छात्रों का इतना
2: बड़ा जवाब नहीं है, राम जन्मभूमि लूट में इनके पास कोई जवाब नहीं है, मुद्दा नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें लाई जा रही हैं।
0: अच्छा मैं सवाल पूछ लूं अखिलेश जी, अब मैं सवाल पूछ लूं, धन्यवाद, वो तो बोल ही रहे हैं हम। अमित जमई जी आपके बगल में ही बैठे हैं, आप लगातार बोलिएगा तो जमई जी को हम लोग सुन नहीं पाएंगे, मुझे बताया गया कि आप लोग दोनों एक ही जगह एक ही स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अमित जमई जी नॉन इश्यू है ये, मतलब अगर आप देखिए तो ऐसे वक्त पर जब बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर तेलंगाना में गाया जा सकता है तो केरल में

0: भी गाया जा सकता है, लेकिन केरल में हम नहीं गाएंगे, हम गोवा में नहीं गाएंगे। हिमाचल में गाया गया है 6 स्टैंजा, वहां भी कांग्रेस की सरकार है। क्या आपको नहीं लगता है कि बेवजह के ऐसे, मतलब अंग्रेजी में कहावत है ना कि यू हैव टू पिक योर बैटल्स, कौन सी जंग आप लड़ना चाहते हैं, कौन सा वॉर। जब छात्रों का इतना बड़ा मुद्दा है, उसके पीछे आवाज बुलंद है, तो फिर ऐसे में इसको क्यों इशू बनाया? जब कानून में बदलाव हुआ है तो संविधान की बात करते हैं, उसको मानना भी तो पड़ेगा।
1: आंजना जी, सच्चाई सिर्फ इतनी है कि राष्ट्रीय मुद्दों पे जिस तरह से एनडीए पूरी भारत की संसद में, पूरे देश ने उनको देखा कि किस तरह से एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, चाहे देश में आर्थिक संकट हो, चाहे देश में बेरोजगारी का चरम मुद्दा हो, चाहे गरीबी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जिस तरह से मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव ने भारत की संसद में इनको घेरा, छात्रों का पूरे देश में आज आक्रोश सड़कों पर है, भारतीय जनता पार्टी विचलित हो गई है। और आप जानती हैं जब दक्षिणपंथी पार्टियां विचलित होती हैं तो वो राष्ट्रवाद का आड़ लेती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद पर चर्चा करने का अधिकार भी है? क्या यह बात सच नहीं है कि जनसंघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिन्ना के परिवार से चंदा लिया? महाराष्ट्र का जो सम्मेलन था जनसंघ का, जिसमें अटल बिहारी साहब, मरहूम अटल बिहारी साहब से लेकर आडवाणी जी तक मौजूद थे, अरे जिन्ना से फंडिंग लेने वाले लोग, उनके प्रवक्ता यहां बैठे हैं, उसका जवाब दें कि जिन्ना से, नुसलीवाडिया से, चर्च से इन्होंने चंदा क्यों लिया था? मुख्य मुद्दा सिर्फ इतना है कि हमारे देश में उस जमाने में, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी रहे हो, सरदार पटेल जी का बड़ा फोटो लगाते हैं ये लोग, बड़ा बड़ा फोटो पीछे पीछे लगाते हैं। ये उन्हीं बड़ों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने तय किया था कि कौन सी ऐसी चीज है जो देश के, हमारे बड़ी राष्ट्रीय एकता को एक करती है, और ये सरदार पटेल जी ने तय किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने तय किया। अब अलग बात है कि सुभाष चंद्र बोस से बड़े बड़े क्रांतिकारी आजकल बैठे हुए हैं भारत की संसद में, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलत कर दिया था, हम गलती सुधार लें। अरे आपको अगर वंदे मातरम से कोई भी लगाव था, समाजवादियों ने गाया, कम्युनिस्टों ने गाया, सभी ने वंदे मातरम की इज्जत की और उसको उसको उसको रिस्पेक्ट दिया, आरएसएस ने क्यों आज से आज तक उसको जरूरत पड़ी कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पढ़ेंगे? वंदे मातरम आरएसएस ने क्यों नहीं पढ़ा? पहला चार्ज मेरे ऊपर यह है कि फाउंडेशन से लेकर आपने नमस्ते सदा वत्सले संगी साथी पढ़ते रहे, वंदे मातरम नहीं पढ़ा। अब आज सरदार पटेल जी से एक बड़े नेता हमारे देश में हो गए हैं, उन्हें लगता है कि राष्ट्रीय गलती कर दी थी पटेल जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उन्होंने यह तय कर लिया कि यह चार छंद नहीं होने चाहिए। अरे राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम, इंटीग्रेशन, फ्रीडम स्ट्रगल, इससे क्या ताल्लुक है? क्या यह बात सही नहीं है कि नाना साहब पेशवा के सबसे बड़े कमांडर, 1857 क्रांति के सबसे बड़े रणनीतिकार अजीमुल्ला खान ने यह नारा दिया था, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। और इस नारे ने, अंजना जी, इस नारे ने ब्रिटिश राज की चूल्हे हिला दी थी। आरएसएस ने वंदे मातरम इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि यह क्रांतिकारियों का गीत था, ये अंग्रेजों के खिलाफ एक आह्वान था। ना आरएसएस ने, ना हिंदू महासभा ने, ना जनसंघ ने, ना आज की भारतीय जनता पार्टी ने। आज आप नारा लगा रहे हो, वंदे मातरम कर रहे हो, विरोध करने वाले आप लोग थे। आरएसएस नेवर एक्सेप्टेड वंदे मातरम। हम आदमी तो कहते हैं
0: अमितोष जी,
1: मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया ये पूरे देश को बताओ?
2: इंदिरा जी, इनका हो जाए फिर मैं जवाब देता हूँ।
0: बोलिए, जवाब दीजिए। और सवाल यही है कि क्या, मतलब आज हम देख रहे हैं जेंजी का मुद्दा है, स्कूल्स का मुद्दा है, क्या डाइवर्जन करने के लिए सब किया जा रहा है?
2: धन्यवाद अंजना जी। मेरे सामने दो प्रवक्ता बैठे हैं, कुछ दिनों पहले ये दोनों प्रवक्ता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इमरान मसूद और एक एमएलए आपस में लड़ते हुए दिखे थे, लेकिन देश के विरुद्ध आज एक खड़े होते हुए दिखे हमारे को, ये अलग इनकी अपनी पहचान है। दूसरी बात, इन्होंने दो गलत कोट फैक्ट करे, उन दोनों कोट को मैं कहता हूँ। पहली बात तो ये कि आरएसएस संघ ने वंदे मातरम नहीं गाया 1907, मैं कोट कर रहा हूं, उसको चैलेंज करे, कॉन्ट्रारी प्रूफ करे, सिर्फ बातें नहीं करे। नोटिवली 1907 द चैंटिंग ऑफ वंदे मातरम एट पब्लिक प्लेसेस वाज बैंड अंडर द रिसली सर्कुलर एट द टाइम केशव बालरंग हेडगेवर देन स्कूल स्टूडेंट लेटर द फाउंडर एंड संचालक डेफिनेटली स्टूड अप एंड कॉल इंडिया डिक्टेट एंड सेइंग वंदे मातरम। ये उनका पहला तो क्लॉज है जिसको ये काउंटर रुकिए अभी मैं चालू कर रहा हूं, मेरे बात बोलिएगा। बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, यही अखिलेश जी तो मेरे बीच में बोलने का प्रयास कर रहे थे। मैं एक चुनौती से देता हूं, कौन किस देश को ही अपना मानेंगे? जय पलिस्तीन के तो नारे लगाते हैं, खामिनाई की छाती टोकते हैं, लेकिन अगस्त लाहौर का अगस्त 6, 1947 का एक लेटर है और मैं कोट कर रहा हूं, दिस कोट वॉज बीन फाउंड इन द वॉल्यूम 96 ऑफ द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। राष्ट्रीय ध्वज में यूनियन जैक को लाओ नहीं तो मैं राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट नहीं करूंगा। ये उनकी किताब में लिखा गया था, उसको ये चैलेंज करे, द वन हु टेक वॉर्स फॉर द यूनियन जैक कैन नॉट स्टैंड फॉर द वंदे मातरम सिक्स स्टैंडर्ड। दिस इज हाउ द नेशनल कम इनटू पिक्चर।
3: ये रूमरिस्ट का जवाब देने दीजिएगा।
2: अरे सुनिए, अरे सुनिए, आपको मेरे पुरखों के बारे में पता है,
3: रूमरिस्ट का जवाब देने दीजिएगा।
2: तीसरी बात, दो स्टैंडर्ड तक इनको कुर्सी की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही तीसरा स्टैंड आने लगता है आपस में खलबली मच जाती है, अब किसको कुर्सी की जरूरत थी वो तो इन्हें देखना पड़ेगा। मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, मद्रास हाईकोर्ट कहता है वंदे मातरम सब जगह बजाना चाहिए, शुड बी मेड मैंडेटरी टू द स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस। कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है अंजना जी, कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है कि वंदे मातरम अगर मदरसे में बज जाएगा तो स्वर्ग नहीं गिर जाएगा, हेवन विल नॉट फॉल इन द सिक्स स्टैंडर्ड ऑफ वंदे मातरम कैन बी सेंग, लेकिन उसको नहीं मानते। बिजो एनवल के अंदर में लिखा है कि आप खड़े हुई है, This is a respect. It's not a violation. It's a respect to the national integrity.
3: जवाब देंगे यार।
0: हाँ हाँ, बोल लेने दीजिए।
2: चौथी बात, फिस्को मैं लास्ट बार अपनी बात कहता हूँ, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान 2006 आउटलुक के अंदर में लिखते हैं, आई हैव नो डाउट दैट अपोजिशन टू वंदे मातरम इज नॉट रूट इन द रिलीजियस बट इन डिविजिव पॉलिटिक्स दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। आप बताइए, फिस्कोल भट्ट, आरिफ मोहम्मद खान, मौलाना आजाद, जब इन सब की बात करते हैं तो मेरे को लगता है जिन्ना से पहले वंदे मातरम का कभी अपोज हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद में अपोज होने वाला, ये साफ दर्शाता है एक पॉलिटिकल माइंडसेट है, ना कि नेशनल इंटीग्रिटी को।
0: चलिए चलिए, उन्होंने पॉइंट पॉइंट वाइज बोला है, अखिलेश जी जवाब दीजिए।
3: हाँ, पॉइंट वाइज बता रहा हूँ अंजना जी। राम जन्मभूमि का पैसा खाने वाली, चंदा खाने वाली, चढ़ावा खाने वाली, जमीन का चोरी करने वाली, ये विश्व हिंदू परिषद का अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को ये संभवतः ज्ञान होगा कि इसी तिरंगे का विरोध गोलवर्कर ने किया, सबने किया, सावरकर ने किया, तो अपने अपने बीच में ना, इसका म्यूट कर दो, इस BHP को इसको म्यूट कर दो, थोड़ा इसको समझा दूं मैं। इसी पार्टी ने 52 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, संविधान को नहीं स्वीकारा, अभी भी कहते हैं बदल दूंगा, उसके प्रतियां जलाए, सब कुछ किया। अरे इतने लगा हुआ तो शाखा में पढ़ो ना, पढ़ लो, है हैसियत कि हाँ शाखा में पढ़ा जाएगा, सुबह शाखा में गाया जाएगा, उस कोर्ट में फैसला हुआ है। अरे तो तुम अपने शाखा में गा के सुना दो वंदे मातरम हो जनगणमन, चलो देखते हैं कितने राष्ट्रभक्त हो, अभी भाग लोगे, निकल लोगे तुरंत।
0: अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा रुक जाइए। अभी तो नहीं,
3: पूरा जिसका इतिहास रहा है अंग्रेजों से यारी का, वो आए हैं दूसरों का देश को समझाने कि कौन सच्चा है और कौन गलत है। पूरा अतीत जिसका दागदार रहा हो, इस देश के खिलाफ रहा हो, वो यहाँ ज्ञान बघारने आते हैं।
0: अखिलेश जी, एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। क्या सुखू साहब ने या रेवंत रेड्डी ने गलत किया 6 स्टैंजा गाकर?
3: देखिए अंजना जी, संसद से भी बहुत से बिल पास होते हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आप पहले, आपका इंटेंशन क्या है, आप चाहते क्या है, प्राप्त क्या होने वाला है, नुकसान क्या करने वाले हैं, हर चीज का मूल्यांकन होता है। और क्यों आप कर रहे हैं? आपका अतीत भरा पड़ा है कि आपने इसका विरोध किया था और आज इस बात
0: ये
3: को
0: तो
3: ला रहे हैं,
0: इसका मतलब
3: आप ध्यान हटाना चाहते हैं।
0: ये तो मैं समझ गई कि आप हटाना चाहते हैं ध्यान की नजर में, कांग्रेस पार्टी की नजर में जो किया गया है वो गलत है, मैं समझ रही हूँ। मेरा सवाल कुछ और था, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और रेवंत रेड्डी ने गलत किया 6 स्टैंजा गाकर?
3: अब जवाब दे रहा हूं।
0: बोला
3: 17 तारीख की कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के निर्णय के बाद सारी स्थितियां क्लियर हो गई कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर हो गया। वही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है जो 1937 में था, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने, नेहरू ने, गांधी ने बैठ करके पास किया था कि कितना वंदे मातरम गाया जाएगा। वही उस समय के जो रिजोल्यूशन CWC का था, उसी को 17 को दोहराया गया। यही अब फाइनल कांग्रेस का स्टैंड है।
0: ठीक है, एक छोटा सा जवाब अमितोष जी दे दें, फिर गौरव जी आपके पास आ रही हूँ। अमितोष जी, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा वो सीधा हमला कर रहे हैं, वो क्या देशभक्ति पर पाठ सिखाएंगे? हाँ,
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या है इनकी एक आदत है, जब इनका जवाब नहीं होता तब ये राम की बात करने लग जाएंगे, और जब इनको किसी और की बात, जब चुनाव आएंगे तब इनको राम दिखने लग जाएंगे, राम भक्त बन जाएंगे। मुझे उन लोगों का जवाब नहीं देना जो 2007 को एफिडेविट लेके जाते हैं या जो कोर्ट के अंदर में कहते हैं कि चुनाव आ रहे हैं,
3: अंजना जी, अंजना जी पहली बार है बीच में,
2: अगर ये बीच में बोलेंगे तो फिर मैं कैसे
3: लाल किले से राम,
2: आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अंजना जी मैं मेरा पॉइंट रखूंगा, ये अगर इनको
0: बारी बारी से, अखिलेश जी रुक जाइए, अखिलेश जी अब फिर देखिए, अब आप बीच में बोलने लगे बारी बारी से, जल्दी पूरा कीजिए अमितोष जी, मुझे गौरव जी के पास जाना।
2: हाँ धन्यवाद अंजना जी। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी राम को अपना मिथ्या मानती है वो आज देश के अंदर में राम विरोधी की बात ही करेगी और राम के साथ खड़े होने का प्रयास करेगी, लेकिन देश जानता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको आरिफ मोहम्मद खान का मैंने आपको बताया, उसी के साथ फिस्कॉल बहुत एजुकेशनलिस्ट हुए थे जवाहर नेहरू की सरकार में, उन्होंने भी वंदे मातरम को सपोर्ट करा था, और नेहरू जी जिन्ना को लिखते एक लेटर के अंदर में सुनिए, जिन्ना को लिख रहे हैं द वंदे मातरम सॉन्ग वाज नेवर कंसीडर्ड एज हैविंग एनी रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ये तो नेहरू जी लिख रहे हैं। मुझे बताइए सदन से पारित हुआ बिल या इनके रिजोल्यूशन किसको ऊपर रखेंगे, पारित कानून होता है ना कि रिजोल्यूशन में, रिजोल्यूशन तो इनका बांग्लादेश के खिलाफ था, रिजोल्यूशन तो
0: गौरव जी मैं चाहती हूँ कि अमित जमाई ने जो कहा वहां पर इस बहस को ले जाया जाए, वो ये कह रहे हैं कि जो दक्षिण पंथी जो राइट विंगर पार्टीज होती हैं, जब भी वो असल मुद्दों पर फंसती हैं तो राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों को वो उठाकर उसकी आड़ में पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश करती हैं, और कई लोग इसको उसी का एक हिस्सा देख रहे हैं कि वंदे मातरम और कांग्रेस उसका 6 स्टैंजा नहीं गा रही है, तो इस पर पूरा बहस ले आई जाए।
4: अंजना जी, कोई मुद्दा अगर उठाया जाता है तो उसको उसकी गुणवत्ता पे या वो संवैधानिक है इसको देख के तय करना चाहिए सही है या नहीं। पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का उत्तर देता हूं। आज चर्चा का विषय है वंदे मातरम, 6 छंद गाया जाना। कांग्रेस के प्रवक्ता की हालत इतनी खराब है उनको ये भी नहीं पता उत्तर क्या दें। देखिए संविधान की मैंने बात करी, जब संविधान में कानून बन गया, संसद में पारित हो गया तो क्यों नहीं गाएंगे, कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उनसे भूल क्या हुई, उन्होंने कहा कानून बनता है सुप्रीम कोर्ट जाता है फिर हमें देखना होता है अच्छा है कि बुरा है। बिल्कुल गलत, कानून बनता है, जिस दिन कानून नोटिफाई हो जाता है देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य है उसका पालन हो। सुप्रीम कोर्ट वैसे तो स्टे करता नहीं है, अगर कानून स्टे नहीं हुआ तो उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात, इन्होंने कही गद्दारी, गद्दारी तो वो होती है जो जाकिर नायक से घूस ले ले, चीन से MOU करे लेकिन सार्वजनिक ना करे, गद्दारी तो ये होती है कि डोकलाम हो रहा हो, देश की सेना लड़ रही हो और राहुल गांधी जो है एम्बेसडर के साथ बैठ के हक्का नूडल खा रहे हो चीन के, तो ये गद्दारी होती है। तीसरी बात, प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का नाम बैग में लिख के आ सकती हैं लेकिन अपने देश में जो कानून है वंदे मातरम गाने में उनको दिक्कत है। अब आप मुझे बताइए इनकी निष्ठा कहां पे है, क्या ये पूछा नहीं जाएगा, और समाजवादी पार्टी पे आ जाते हैं। कौन सी पार्टी, आप देखिए 2022 के चुनाव थे, अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया था, अखिलेश यादव ने जिन्ना से तुलना करी थी सरदार पटेल जी की, सरदार पटेल कहां हमारे आदर्श, और जिन्ना से तुलना कर दी क्योंकि मुसलमान वोट चाहिए। दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है आजम खान ने कहा भारत माता डायन है, अब आप बताइए बीच में ना बोले अंजना जी,
5: बोलो,
4: दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग,
5: बोलो।
4: मैं समझता हूँ करोड़ों दर्शक देखते हैं, किसी को ये अच्छा नहीं लगता,
5: आई एम प्राउड ऑफ यू,
4: इनको चुप कराइए अंजना जी, दिस इज नॉट,
0: अमित जी पूरा करने दीजिए,
4: इसीलिए
0: अमित जमाई जी पूरा करने दीजिए, बीच में चिल्ला के फायदा नहीं होगा, जल्दी पूरा कीजिए ना गौरव जी। हाँ
4: हाँ अब हाँ धन्यवाद। आजम खान कहते हैं भारत माता डायन है, आजम खान का ही है कि हम कट जाएंगे बंदूक की नाल पर भी नहीं गाएंगे, क्यों, अगर देश का कानून है तो गाना पड़ेगा। तीसरी बात, ये वो पार्टी है जो देश में कहती है मुस्लिम इलाके हैं, हिंदू इलाके हैं, और हिंदू मुस्लिम इलाके में नहीं जाएंगे, तो देश को बांटता कौन है। ये समाजवादी पार्टी जो असली में जिन्ना की वंशज है, और बांटता है तो हम जोड़ने का काम करते हैं, जब हम कहते हैं अनुच्छेद 370 को हमने हटा दिया, जब हम कहते हैं वंदे मातरम के 6 छंद गाए जाएंगे क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी यही कहते थे और महात्मा गांधी भी यही कहते थे। दिक्कत केवल उनको है जिनको ये लगता है कि मुसलमान जो वोट बैंक है इनका वो कहीं खिसक ना जाए। मैं समझता हूं जो मुसलमान भारतीय है उसको पूरे 6 छंद गाने में और खड़े होकर सम्मान दिखाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इटालियन सोनिया गांधी को जरूर दिक्कत आती है।
0: ठीक है, मुझे नहीं पता उन्होंने ज्यादा हमला किस पर किया है, आप ही पर किया अखिलेश जी, बोल लीजिए फिर मैं अमित जी के पास जाऊंगी। हाँ।
3: जल्दी, ये बार बार मुसलमान मुसलमान करते हैं, बताते हैं, अरे भैया तीन राज्यों में जंग आजादी के समय अंग्रेजों के साथ मिलके तुम लोग सरकार बनाए थे, अपने पुरखों के क्यों मुखा क्यों आप शब्द निकाल रहे हो अपने पुरखों के खिलाफ, तीन राज्यों में जिनके
0: गौरव जी पूरा करने दीजिए उनको, अब आप बीच में बोल रहे हैं।
3: पहले आपके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे हिंदू महासभा के, उन्होंने जनसंघ के, उन्होंने अंग्रेजों के साथ जिन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी ना तीन राज्यों में, और अंग्रेजों की चमचाई के लिए बनाई थी, अब फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ बनाई थी, सुभाष बाबू के खिलाफ बनाई थी, उसमें भर्ती मत हो, तुम लोग अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो, अंग्रेज बड़े अच्छे हैं, यही मेरे आका है, मेरे माई बाप हैं, इनकी सेवा करो, फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ लाठियां बरसाओ, संविधान से चलेगा, भूल गए से चलेगा, अरे भाई मेरे भाई
4: ये बताओ, सुनते संविधान से चलेगा, शरिया कानून से चलेगा,
3: सुनते तो जाओ, संविधान से चल रहा है, उसी संविधान से चलते में एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है, अंग्रेज बड़े अच्छे हैं, यही मेरे आका है, मेरे माई बाप हैं, इनकी सेवा करो, फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ लाठियां बरसाओ, संविधान से चलेगा, भूल गए, अरे भाई मेरे भाई
4: ये बताओ, सुन

0: आपने चाची का बयान नहीं सुना था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
1: अच्छा अब अखिलेश जी बोल रहे हैं, अब गौरव जी उसके बाद आप बोलिएगा।
2: देखिए अंजना जी
1: बोलिए,
2: यही ये लोग हैं जो 12 से 11 साल तक बोलते रहे ये बीजेपी है, यहाँ त्यागपत्र नहीं होता है। भाग भाग करके त्यागपत्र दे के भागे, जान बचा कर इसको बोलते हैं। अरे लो यार जल्दी जान छोड़ो, लेकिन जान नहीं छूटने वाली है। उसके बाद भी 19 दिन सदन चलती रही, सदन में नहीं आए। दो दो बिल गृह मंत्री का प्रोड्यूस हुआ सदन में, दो दो बिल। वो नकल वाला जो बिल हुआ था जिसमें संशोधन वाला और FCRA वाला, अब मंत्री गायब। पहली बार दुनिया के इतिहास में हुआ अंजना जी, जिस मंत्री का बिल प्रोड्यूस हो रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा सदन में, वो मंत्री सदन में नहीं आ रहा है। बताएंगे अपने आप को विश्व गुरु, 56 इंची, पता लग गया इसी से
1: उनका मंत्री का इस्तीफा हुआ, उससे आपकी सरकार थोड़ी बन गई। सरकार तो उन्हीं की चल रही है, चुनाव से ही जीत के आना पड़ेगा। आप लोग को चुनाव जीत के ही आना पड़ेगा ना अखिलेश जी, अगर ऐसे कानून को पास करने से, जी अगर ऐसे कानून आपको पास होने से रोकने हैं, है ना, तो उसके लिए तो आपको चुनाव जीत के आना होगा, नहीं आना होगा अमित जमाई जी? और अब तो यूपी का भी चुनाव है
2: जी, लूट अमित जी करके कब तक चुनाव ये जीत लेंगे? ये कोई चुनाव नहीं जीते हैं। चुनाव आयोग पैसे और मशीनरी के बल पे, भले कुछ सीटें पा गए बैसाखियों के बल पे हैं, वो भी 12 महीने राहुल जी ने बोला, 2 महीना निकल गया, 10 महीने में दिल्ली की सरकार गिर जाएगी, लिखते रहिए हर महीना बताऊंगा।
1: जमाई जी आप बगल में ही बैठे हैं, उनको बोल ही दीजिए ना बगल में कि थोड़ा आपको भी बोलने दे आज, पता नहीं अखिलेश जी क्या खा के आए।
2: नहीं सुना, हमारे चुप हो गया था,
3: हमारे बड़े भी हैं अखिलेश जी,
2: मुझको नहीं सुना।
3: देखिए हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 जिसमें आपने अमेंड किया है, इसका मूल मकसद ये है कि भारत का संविधान, हमारा ध्वज और वंदे मातरम, अब आपने राष्ट्रगीत शामिल किया है, कि अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है, अगर कोई अनादर करता है, एक लाइन इस पे एनडीए को भाजपा को और जोड़ लेना चाहिए था कि ये हर नागरिक को पढ़ना ही पड़ेगा, सबको मानना ही पड़ेगा, वो ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, समस्या मानने की नहीं। मैंने कहा कि अजीब
1: मतलब अब कानून में भी धर्म का नाम लिखा जाएगा। अमित जी क्या कह रहे हैं,
3: इतना बड़ा क्रांतिकारी नहीं, इतना बड़ा
1: कानून में लिखा जाएगा कि कौन कौन से धर्म के लोग,
4: शर्म आनी चाहिए।
3: नहीं, मैं ये कह रहा हूं मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिसे देश इकट्ठा हुआ, लेकिन जो डिवाइडर इन चीफ, कौन था डिवाइडर इन चीफ, एक किताब के कवर पे उनका फोटो आया था, मैं सुबह सुबह उनको प्रणाम करता हूं आजकल।
1: चलिए वक्त इतने की इजाजत देता है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में जरूर रहिएगा मेरे साथ, आपको बताएंगे कैसे भारत में ट्रंप के दूत सर्जियो गौर ने कश्मीर जाकर पाकिस्तान को आईना दिखाया, जिससे पाकिस्तान बौखला उठा। इसके बाद आपको बताएंगे बीमार इमरान खान का इलाज रुकवाने पर क्यों अड़ी है पाकिस्तान सरकार। आखिर में आपको योगी राज में एनकाउंटर पर सियासी मुठभेड़ दिखाएंगे, देखते रहिए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: आगे आगे,
8: अरे उधर
7: उधर, करेक्ट करेक्ट,
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बिजली का बिल पेड
3: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
4: इतना माही वे।

0: दिखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया
6: है। ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ। तो
9: चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Hey Maya, let's go.

0: The new BE6 Sportec.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पैसे ज्यादा कभी थे नहीं, लेकिन फिर भी पैसे की भूख इतनी थी। न्यूज़पेपर डिलीवरी करता था, फिर कुछ दुकानों में सफाई करता था, फिर दुकान में सेल्समैन बना। कॉलेज के सालों में एक बेटिंग शॉप में कैशियर था।
3: पर क्या इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट टेस्ट मैच, बहुत लंबी सोच चाहिए, बहुत ही लंबी अवधि में ही पैसा बनता है।
2: मुझे दुनिया में हर चीज चैलेंज करने में बहुत मजा आता है, राइट?
3: कॉफी कैन इन्वेस्टिंग,
2: हाँ जी।
3: इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे आपकी क्या मंशा थी?
2: इंडिया छोटा सा मार्केट है, दुनिया का 3%, सो मुझे लगा यार विदेश में निवेश तो सोचना चाहिए। AI का प्रहार शुरू हो चुका है,
3: तो क्या मिडिल क्लास गरीबी की ओर जा रहा है? भारतीय मिडिल क्लास,
2: इस प्रकार का टेक्नोलॉजी घातक है दुनिया भर के मिडिल क्लास के लिए।
4: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
5: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
6: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

0: नमस्कार, मैं उन्हें। अब आज हम शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वंदे मातरम के छंद पर सियासत प्रचंड, शाह ने बताया देश विरोधी, कहा मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति, इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। पीएम मोदी की जनसेवा के 25 साल को सेलिब्रेट करेगी बीजेपी, सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम, जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के फैसले पर कोर्ट का हथौड़ा, झारखंड हाईकोर्ट ने सुरेंद्र सरकार के निर्णय पर लगाई रोक, 11वीं और 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर, संघ ने भी किया मंथन, संसद मार्च के दौरान ज्यादा बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। लखनऊ में दिन दहाड़े आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजर समेत 2 महिलाओं की हत्या, बहन और पत्नी की गोली मारने के बाद शख्स ने की खुदकुशी, चल रहा था तलाक का केस। शो की शुरुआत वंदे मातरम पर बचे घमासान के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जहां कांग्रेस अब वंदे मातरम के पहले 2 पैरा पे अड़ गया है, तो वहीं बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है, जिसे लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
1: कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ कर दिया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम के 2 पैरा ही गाएगी।
2: टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट व्हाट एवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबाइड दैट डिसीजंस, वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली, दिस इज अवर डिसीजन। फर्स्ट 2 चांस था।
1: अमित शाह इसे वंदे मातरम का अपमान बता रहे हैं।
3: इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
1: 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था, जिसके बाद 15 अगस्त को पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। 17 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी।
4: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं।
1: अब कांग्रेस जहां 2 पद गाने पर अड़ी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है।
5: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
6: मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया, इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया।
1: अब सवाल यह है कि क्या जिस वंदे मातरम को लेकर बिल पास किया गया है, क्या उसके अपमान के मुद्दे पर सरकार का एक्शन होगा या फिर ये सिर्फ सियासत तक सीमित रह जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात झारखंड की, जहां प्रदर्शनकारी छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यहां सोरेन सरकार के फैसले पर रोक के बाद नौकरी खोने वाले सरकारी कर्मचारी खुशियां मना रहे हैं।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों के जश्न को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आज हाईकोर्ट से प्रदर्शनकारियों को बड़ा झटका लगा। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है।
7: प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की धज्जी उड़ाई गई है सरकार के द्वारा, इसलिए हमने आ रहा ये बहस था कि इस तरह का ऑर्डर रातों रात नहीं पारित किया जा सकता है। टेंटेड और अनटेंटेड में फर्क करना पड़ेगा सरकार का, सरकार को।
1: अब मामले में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है,
8: शायद इसी वजह से विलंब हो रहा होगा जिसके लिए, लेकिन इतना दबाव और इतना मतलब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में।
9: सरकार ने पहले से ही ऐसा षड्यंत्र कर दिया था आंदोलन को समाप्त करने के लिए और एक बहुत ही कमजोर ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला था जो सबको पता था कि संभवतः ये जुडिशियल स्क्रूटनी के सामने टिकने वाला नहीं है, और हुआ भी वही। अदालत ने आज ये इंटरिम रोक लगा दी, सरकार से जवाब मांगा।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर के इम्तिहान को भी कैंसिल कर दिया था, जिससे एक झटके में 56 लोगों की नौकरी चली गई थी जो कि आज प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है
10: और जज सर भी हमारी प्रॉब्लम को समझे। वो उन्होंने खुद बोला कि अगर ये मेरे साथ आप लोग कर देते, मेरे साथ ये इंसिडेंट हो जाता, रातों रात मेरा कुर्सी आप लोग छोड़वा देते तो हम क्या बोलते। वो खुद शर्मिंदा थे कि इस तरह डिसीजन सरकार कैसे ले सकती है। ये सीधा सीधी एक नेचुरल जस्टिस का हनन है।
1: बहरहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: और बात जेनजी की, जिसे लेकर हर पार्टी ने अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अब जेनजी वोटर को टारगेट करने का मन बना चुकी है।
1: सरकारें ही नहीं, देश में अरसे से सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी अब जेनजी और जेन अल्फा के मुद्दों के जरिए जमीनी आधार दोबारा हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चालू करने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। किस मंत्री को कब और किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का ये दौरा दिन भर का होगा जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए पीएम बेहद गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों को ये भी सलाह दी है कि पारंपरिक तरीके छोड़कर अब जेन जी और युवा वोटर्स के पसंदीदा तरीकों से संवाद स्थापित करें। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया, उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था। खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए थे। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आकी गई, उसमें ये था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल एंगेजमेंट कितनी हुई, मंत्री के प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। उधर राहुल गांधी भी 22 अगस्त को पुणे में छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
11: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है, अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता।
1: बहरहाल जेन जी के मुद्दे ने हर पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर यूपी में जेन अल्फा बुनियादी समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ मामले को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं, जहां अब नए सिरे से किसी भी तरह की लापरवाही के खिलाफ एक्शन के आदेश दे दिए गए।
1: जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे, तो सीएम योगी ने सख्ती की। स्कूली बच्चों की परेशानियों को फौरन दूर करने के लिए सीएम दफ्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा, तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी उन्हें फौरन दूर करने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने दी है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में एमडीएम, किचन, ब्लैक बोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉकवार निर्देश दिए गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने जेन जी को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी जेन जी वोटरों को एआई, मीम और शॉर्ट वीडियो के जरिए साध रही है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक हैंडल से एआई जनरेटेड वीडियो और ग्राफिक्स साझा किए जा रहे हैं। पार्टी के राजनीतिक संदेश, नीतियां और उपलब्धियां भी एआई कंटेंट के रूप में जेन जी तक पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि यूपी में करीब 21% वोटर 18 से 29 वर्ष की उम्र के हैं, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का खास फोकस है।
12: अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का व्यवहार किसी ट्रोलर की तरह हो गया है। झूठे चित्र, झूठे वीडियो लाकर समाज को भ्रम में पैदा करो।
13: समाजवादियों ने ही इनको कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप देने का काम किया। वही लैपटॉप समाजवादी द्वारा दिए लैपटॉप को, जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात है तो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए लैपटॉप और आईपैड से ही छात्रों ने अपनी पढ़ाई की।
1: समाजवादी पार्टी ही नहीं, अब कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक की नजर भी जेन जी क्लास के वोट बैंक की ओर घूम रही है। यूपी कांग्रेस भी डिजिटल मोर्चे पर सक्रिय हो चुकी है। हर जोन के लिए सोशल मीडिया और आईटी सेल की टीमें मजबूत की जा रही हैं। कांग्रेस मीम, व्यंग, ग्राफिक्स और विजुअल कंटेंट के जरिए सरकार विरोधी मुद्दों को युवाओं तक पहुंचा रही है। उधर मायावती के निर्देश पर बीएसपी भी बूथवार समीक्षा बैठकें कर रही है। इसमें भी जेन जी कनेक्ट का आधार तलाशा जा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बात अब राजस्थान की करेंगे, जहां जेन अल्फा की समस्याओं को लेकर सरकार ने एक अनोखा आदेश जारी किया। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने हल्ला बोला है।
1: राजस्थान में मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस का ये प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश पर बैन लगा दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज मार्च निकाला और विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।
14: इतने बच्चों की जान चली गई, छतें गिर रही हैं, बाढ़ आ रही है, व्यवस्था चरमरा गई है, बजाय उस वास्तविकता को एक्सेप्ट करके उस पे कदम उठाएं, सरकार ने आदेश जारी कर दिया। कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई रील नहीं बनाएगा, कोई मीडिया नहीं जाएगा, सरकारी स्कूलों पे लोगों को पाबंद कर दिया। अगर आप जाएंगे अंदर, आप पे पॉस्को कानून लगा दिया जाएगा। तो ये सरकार को जो एक तानाशाह रवैया है और शिक्षा मंत्री जो एक बेवजह इस प्रकार के आदेश जारी किए, उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं।
1: कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की, जो कि हंगामे में तब्दील हो गए।
15: किसको बचा रहे हैं? कब तक बचाएंगे? कब तक बचाएंगे इस चोर मंत्री को? 15 दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष आए थे, इन्होंने वादा करा था कि स्कूल को सही कर देंगे, आज तक एक कमरा नहीं बना पाए, ऊपर से नोटिस लगा दिया कि अंदर नहीं जा सकते, बेशर्म कहेंगे।
1: बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल कर रही है।
16: उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल और केवल मात्र हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था। उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से इसको स्पष्ट कर दिया।
1: दरअसल पिछले काफी वक्त से राजस्थान के स्कूलों की हालत को लेकर घमासान चल रहा था। सीजेपी ने स्कूलों के मुद्दे पर मोर्चा संभाला तो अलवर के एक स्कूल में प्रवक्ता आशुतोष रांका के जाने पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसके बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए ये निर्देश जारी किया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और बात मौसम की करेंगे, क्योंकि नदियों में उफान ने शहरों का बुरा हाल कर दिया है। यूपी के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों की ओर रुख किया है।
1: ये प्रयागराज है, संगम नगरी प्रयागराज। कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन अभी तो एक्वा सिटी प्रयागराज बनी हुई है। ये प्रयागराज की सिवाई चिंतामणि रोड है। कहने को ये पौश इलाका है, लेकिन पौश इलाके की मूलभूत व्यवस्था यही है कि पानी की वजह से बिजली पानी सब बंद है।
17: घरों के सामने सड़कें हैं, वहाँ जलभराव की स्थिति है, और ये पानी जो बारिश का पानी है सड़कों के अलावा घर में भी घुस गया है। आलम यह है कि लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं बारिश के पानी ने इन सभी लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट कर लिया है।
1: लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि घर के बाहर निकले तो रोड पर पानी, घर पर रहे तो कमरे में पानी।
18: तो हम लोग के घर में बहुत सारा पानी घुस चुका है, तो हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, मेरे स्कूल में दो बार छुट्टी हो चुकी है, हम लोग के दो एग्जाम कैंसिल हो चुके,
19: जिसको कहते हैं जेल। हम लोग जेल में बंद है, ना हमारे पास पानी है, ना लाइट। हम लोग रात रात भर नहीं सोए, पंखा पुराना दिया बत्ती अगरबत्ती यही सब कर रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है। किसी तरह जो जरा से इकट्ठा पानी हुआ तो उसको उबाल के ठंडा करके वही पी रहे हैं।
20: और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, न सभासद आए, न विधायक आए, न सांसद, तीनों भाजपा के।
1: वाराणसी का हाल भी देख लीजिए, बड़े बड़े घाटों को गंगा नदी ने अपने आगोश में ले लिया है।
21: वाराणसी में गंगा का जल स्तर पक्के घाटों को डुबोने के बाद अब गलियों और सड़कों के जरिए शहर के अंदर पहुंचने के लिए आमादा है। गंगा के अलावा वरुणा के भी काफी तटीय इलाकों में बढ़ता हुआ जल स्तर पहुंच चुका है।
1: कानपुर में भी गंगा नदी के विकराल रूप की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीमें संवेदनशील इलाकों की पहचान कर रही हैं, जहां खतरा ज्यादा है।
22: पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहां पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, जो खुद बोट के जरिए अपने बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं घाटों का। स्पीकर के जरिए लोगों को चेताया जा रहा है कि वह किस तरीके से सावधान रहें, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो डेंजरस मार्क पे लगभग पहुंच चुका है।
1: यूपी के 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और बात पहाड़ों की करेंगे, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड की स्थिति है। हिमाचल कांगड़ा में तो नेशनल हाईवे पर अचानक पानी आने से कई लोग वहां पर फंस गए।
23: ये तस्वीरें कांगड़ा के प्रागपुर इलाके की है, जहां फ्लैश फ्लड से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। बहाव इतना तेज था कि कांगड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे तक पानी पहुंच गया। पानी के तेज बहाव के बीच में एक कार सवार फंस गया। कार ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज थी कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और कार में सवार लोगों को बाहर निकाला, लेकिन कार पानी में बह गई। अब जरा अनंतनाग की तस्वीरें भी देखिए, घरों के बीच में पानी ऐसा आ गया मानो ये मकान किसी नदी पर बनाए गए हों। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आंगन तक पानी भर गया। ऊंचाई वाले इलाकों में जब मूसलाधार बरसात होती है तो निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी इन दिनों फ्लैश फ्लड की घटनाएं बढ़ गई हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आज शेयर बाजार की करेंगे। निफ्टी में लगातार 7 दिन की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हो रहा। इस दौरान सेंसेक्स 628 अंक चढ़कर 77,538 के स्तर पर, निफ्टी 154 अंक की बढ़त के साथ 24,232 के स्तर पर बंद हुआ है। अमेरिकी ट्रेजरी की तरफ से लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड की बायबैक बढ़ाने के ऐलान के बाद ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में नरमी देखने को मिली है। इससे दुनिया भर के बाजार में सेंटिमेंट बेहतर हुआ और घरेलू शेयर बाजार में भी खरीदारी बढ़ी। विदेशी निवेशकों की खरीदारी से भी बाजार को सहारा मिला है। इसके अलावा निचले स्तरों पर खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग से भी बाजार को सपोर्ट मिला है। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी ने तेजी को और मजबूत किया है। शेयर बाजार में तेजी के बीच रुपए में भी मामूली मजबूती देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 95.7 के स्तर पर बंद हुआ है। अमेरिकी डॉलर में कमजोरी से रुपए को सहारा मिला। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते रुपए की मजबूती सीमित रही। वहीं सराफा बाजार में आज तेजी का रुख रहा। सोना 3,519 रुपए बढ़कर 1,57,387 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 9,260 रुपए बढ़कर 2,38,485 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बॉन्ड यील्ड में नरमी और डॉलर में कमजोरी के चलते सोने को सपोर्ट मिला है, जबकि भू राजनीतिक अनिश्चितता के चलते सुरक्षित निवेश की मांग भी बनी रही है। और अब बात पाकिस्तान की करेंगे, जिसके कश्मीर पर प्रोपोगंडा के अमेरिका ने हवा निकाल दी है। अमेरिका के भारतीय राजदूत ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है।
2: ट्रंप के बेहद करीबी और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर न केवल श्रीनगर पहुंचे बल्कि इसे भारत का बेहद अहम हिस्सा भी बता दिया।
3: Knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi.
2: सर्जियो गोर का ये बयान महज इसलिए अहम नहीं क्योंकि वो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि ट्रंप ने उन्हें दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका का विशेष दूत भी बनाया है। इस लिहाज से उनके बयानों का प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर पड़ता है। उनके कश्मीर आने से पहले महबूबा मुफ्ती ने ये मांग उठाई थी कि अमेरिका कम से कम कश्मीर के लिए अपनी एडवाइजरी को हटा ले, जिसमें उसने अमेरिकी लोगों को कश्मीर न जाने की सलाह दे रखी है। इस पर भी सर्जियो गोर ने कश्मीर के पक्ष में बड़ा बयान दे दिया।
3: The chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. Because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exists here.
2: दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज लाशें बिछा रही है, जबकि श्रीनगर में अमेरिका के राजदूत बेखौफ होकर शिकारा की सवारी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद सर्जियो गोर के बयानों से पाकिस्तान बौखला गया। उसने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास की प्रभारी राजनयिक नताली बेकर को विदेश मंत्रालय तलब किया। उसके विदेश मंत्रालय ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने की कड़ी निंदा करता है और इसे पूरी तरह से खारिज करता है।

0: जिम्मेदाराना बता दिया। पाकिस्तान में मची खलबली अभी खत्म नहीं हुई है। उसके पूर्व राजनयिक मसूद खान कह रहे हैं कि सरजू गोर को जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी नहीं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
1: 7 बजे की खबरों में मेरे साथ अभी लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
2: Money, money, money, money, every month.
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: पापा.
5: सॉरी यार, गलती हो गई है. ये चोट खर्चा वर्चा.
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा.
5: छक्का
6: सब कैशलेस हो गया.
5: हाँ ला भाई मेरा बैट. वो अभी तो ठीक हुआ. तू
4: चार्ज हुआ यार.
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है.
9: बिजली का बिल पेड
10: तो है. मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया.
11: कैसे?
10: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने. भीम ऐप से करो
11: इतना माही वे.

0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: In association with Hind, बड़े आराम से
5: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
6: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
4: विमल, बोलो जुबां केसरी।
7: जितनी गाड़ियां हैं, ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
8: जब तक वो CBI जांच नहीं कराएंगे, तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
7: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की।

0: जा रही है, वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए,
1: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
2: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है,
3: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
4: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है लड़के सब।
0: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बिजली का बिल पेड
1: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
2: पे।
3: क्लिनिक पे दैट इज द मोस्ट कॉमन यू नो सिम्टम। डॉक्टर, बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं इस मौसम में, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, द स्किन गेट्स ग्रीजी बिकॉज ऑफ विच एक्निफॉर्म इरप्शंस स्टार्ट। बार बार फेस वॉश नहीं करना है, दैट विल वॉश अवे ऑल द नेचुरल मॉइस्चर अदरवाइज।
4: कौन से स्किन को किस टाइप के प्रोडक्ट्स किस तरीके से चूज करना चाहिए?
3: विटामिन सी फॉर एन एक्नी प्रोन स्किन is not a good idea.
4: Hair treatments भी लोग बहुत करवाते हैं जिसकी वजह से hair बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। आपके हिसाब से इन treatments का क्या असर होता है बालों में?
3: We cannot be so strict. हम नहीं बोल सकते कि आप ये मत करना, ये तो obviously, but then you'll have to take care.
4: How to choose the serum according to your skin type.
5: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
6: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग ट्रेड नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे एक बल्तिस्तान भी बनता।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: वंदे मातरम के छंद पर सियासत प्रचंड। शाह ने बताया देश विरोधी का मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति, इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। पीएम मोदी की जनसेवा के 25 साल को सेलिब्रेट करेगी बीजेपी, सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम, जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के फैसले पर कोर्ट का हथौड़ा, झारखंड हाईकोर्ट ने सुरेंद्र सरकार के निर्णय पर लगाई रोक, 11वीं और 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर, संघ ने भी किया मंथन, संसद मार्च दौरान ज्यादा बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। लक्ष्मण दाड़े आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर समेत दो महिलाओं की हत्या, बहन और पत्नी को गोली मारने के बाद शख्स ने की खुदकुशी, चल रहा था तलाक का केस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज विशेष बात लखनऊ में हुए सनसनी केस हत्याकांड की। लखनऊ में एक डबल मर्डर हुआ है और सुसाइड की वारदात हुई है, कैसी वारदात जिससे हर कोई हैरान है। एक बैंक कर्मी ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर घर आकर अपनी बहन का मर्डर किया और अंत में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस पूरे हत्याकांड का राज छिपा एक व्हाट्सएप स्टेटस में। इस व्हाट्सएप स्टेटस में ऐसा क्या लिखा है, हमारी रिपोर्ट देखिए।

0: पहले पत्नी का मर्डर, फिर अपनी ही बहन की हत्या और अंत में खुद को भी गोली से उड़ा दिया। लखनऊ में आज डबल मर्डर और सुसाइड की ऐसी वारदात हुई है कि हर कोई हैरान है। सवाल पूछ रहा है कि SBI जैसे बैंक में काम करने वाले मानस ने ICICI बैंक में काम करने वाली पत्नी की हत्या क्यों की? मानस वाजपेयी ने पत्नी की हत्या के बाद अपनी ही बहन को क्यों मार दिया? मानस वाजपेयी ने पत्नी और बहन को मारने के बाद आत्महत्या क्यों की? लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर का ये प्राइवेट बैंक आज एक क्राइम सीन बन गया। इस बैंक में दिव्या मिश्रा नाम की एक महिला असिस्टेंट मैनेजर के पद पर थी। बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर का काम देखती थी। दोपहर में महिला के पास उनके पति का फोन आया और बैंक के बाहर मिलने के लिए बुलाया। चश्मदीदों के मुताबिक पति मानस ने दिव्या से पहले बात की और फिर अचानक से उसे गोली मार दी। इसके बाद पति वहां से भाग गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बैंक से पीड़िता दिव्या को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इधर छानबीन कर ही रही थी कि अचानक से खबर आई कि इस घटना स्थल से थोड़ी ही दूरी पर एक शख्स ने खुद को और अपनी बहन को गोली मार दी। पता चला कि ये वही शख्स है जिसने कुछ देर पहले इस प्राइवेट बैंक के बाहर पत्नी की हत्या की।
1: हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जो क्राइम सीन है। यूं तो ये प्राइवेट बैंक है, लेकिन अब इसकी बाहरी जगह क्राइम सीन में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरों में देखें तो ये वो जगह है जहां पर कुल मिलाकर ये हत्या की गई है। पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कुछ बातचीत की और उसके बाद यहीं पर इस जगह पर हत्या कर दी। और ये वो क्राइम सीन जगह है जहां पर ये पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। अब मैं आपको यहां लेकर चलता हूं। ये जो बैंक है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये वो बैंक है जहां उसकी पत्नी असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत थी। और इस बैंक को अगर आप देखें यहां पर, तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल तो ये बैंक बंद कर दिया गया है, लेकिन इसी गेट से बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी बाहर निकली थी और इसी गेट से बाहर निकलकर वो पत्नी यहाँ पहुंची बात करने के लिए अपने पति से। एक साल से सब कुछ ठीक नहीं था, याचिका पड़ी थी डाइवोर्स की। तो आखिर ऐसा क्या एकदम से हुआ कि पति मानस, जो खुद एक अच्छी पोस्ट पर SBI में था, उसे इस हत्या को अंजाम देना पड़ा? ये सवालों के घेरे में है। उसने मृत्यु यानी कि मर्डर के बाद एक व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दिया और अपनी पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया। क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन एक विवाद ने तीन जाने लखनऊ में फिलहाल ले ली।
0: पता चला कि मानस ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर बाकायदा ये घोषणा की, लिखा था कि आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। आस पड़ोस के लोग जब तक ये व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते, तब तक मानस वारदात को अंजाम दे चुका था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। लोगों ने पहले दरवाजा पीटा, दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर गए तो देखा कि दो लाशें पड़ी हैं, एक मानस की और दूसरी उनकी बहन की। टीवी पर भक्ति गीत चल रहे थे।
2: मेरे भाई का पास उसके दोस्त का फोन आया कि तुम्हारे मकान मालिक ने क्या स्टेटस लगाया, देखो। जब हम लोग ने स्टेटस देखा तब पता चला कि भैया अंदर हैं। हम लोग को पता चला स्टेटस लगा, तो हम लोग उनके रिलेशन में उनके मामा के लड़के आए जल्दी जल्दी, तो हम लोग बेल बजाए, फोन करें, फोन भी नहीं उठाए, घटखटाए, वो भी नहीं उठाए। फिर हम लोग बगल से गए छत से कि देखे, वहां से देखे तो वहां से भी अंदर बंद था। फिर तीन चार लोग मिलके, वहां के सब लोग मिलके दरवाजा तोड़े। जब दरवाजा तोड़े तब देखे वो गोली मार चुके थे अपने आप।
1: अच्छा, जब वो यहाँ आए थे ICICI बैंक से, तो क्या पसीना पसीना छूट रहा था, क्या माहौल था, वो कैसे लग रहा है?
3: जैसे हमेशा आते थे, वो वैसे
1: रिएक्ट नहीं कर रहे थे कुछ,
3: कोई ऐसा कुछ नहीं। मुझसे नॉर्मल जैसे हमेशा पूछते थे, मुझसे पूछा उन्होंने
1: क्या पूछा
3: कि लोग कैसे हो, मैंने कहा ठीक है बस।
1: अच्छा, मतलब मर्डर करके आया तो नॉर्मली पूछा कैसे हो?
3: हाँ, नॉर्मल, वो हमेशा ही पूछते थे, कोई याद नहीं था
1: उनके पास। कोई गन थी, पिस्टल थी?
3: नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं मुझे नजर में ऐसा कुछ नहीं था।
0: लेकिन सवाल यह है कि मानस ने पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया तो पत्नी की हत्या की, खुद को भी मार डाला, लेकिन अपनी बहन की हत्या क्यों की? बताया जा रहा है कि मानस के माता पिता की मौत हो चुकी थी और वो अपनी बहन के साथ अकेले रहते थे। पहले पत्नी भी साथ रहती थी, लेकिन पिछले लगभग एक साल से दोनों अलग थे। दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया भी चल रही थी। बताया जा रहा है कि मानस की बहन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, इसीलिए शायद मानस को ये लगा होगा कि उनके बाद बहन की देखभाल कौन करेगा। यही वजह रही कि मानस ने इतना बड़ा कदम उठाया, पत्नी को मारने के बाद बहन की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मार दी।
4: हुआ कि मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने मानस का स्टेटस देखा, तो मैंने कहा नहीं, तो अचानक से मैंने स्टेटस देखा, तो उसमें मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि मेरी वाइफ को लेके मैंने स्टेटस देखा उसमें। फिर मैं बाहर आया, देखा तो जो किराएदार है वो दरवाजा जो है खटखटा रहे थे, खुल नहीं रहा था। फिर हम भी आए, हम भी खोलने लगे, तो पूरी मेहनत करी, उनके मामा के लड़के आए हुए थे, फिर एक साथ दरवाजा खोला तो देखा अंदर, जब उसे एंट्री किया तो देखा दोनों लोग मरे हुए पड़े हुए थे।
5: तो क्या वजह कुछ समझ में आ रही है?
4: नहीं, वजह कोई नहीं, बस उसकी बहन में
5: इस पे दो लिखा था, चीट किया।
4: हाँ, उनकी वाइफ ने चीट किया, ऐसे में स्टेटस लिखा हुआ था।
5: बहन को क्यों मारा?
4: ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ बहन को क्यों मारा, उसकी बहन तो वैसे भी मेंटली थी। हाँ,
5: अच्छा, ये गोली पिस्टल की आवाज आई है?
4: कुछ नहीं है, जब लोग एंट्री किए तो टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। हाँ, बस और कुछ नहीं था।
5: अंदर और क्या क्या पड़ा था बहन के?
4: कुछ नहीं, सब ऐसे दोनों लोग लेटे हुए थे, पिस्टल पड़ी हुई थी, हम लोगों ने देखा, तुरंत पुलिस आई, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई हुई।
5: तो वो दोनों लोग अंदर ही थे, किराए पे दे रखी थी?
4: जी जी।
5: और अब माता पिता कहाँ रहते हैं?
4: माता पिता एक्सपायर हो गए काफी समय पहले।
5: इकलौती बहन थी और वो थे, और पत्नी उनकी कहाँ रहती?
4: पत्नी भी यही रहती थी?
6: नहीं रहती थी, 3 महीने से नहीं, 3-4 महीने।
7: ये हत्याकांड और सुसाइड केस भले ही सनसनीखेज जरूर रहा, लेकिन पुलिस के सामने पूरा चैप्टर ही क्लोज हो चुका है। पुलिस अभी छानबीन कर रही है, सारी गुत्थियां तो सुलझी हुई लग रही हैं, बस ये पता नहीं चल पा रहा कि वो क्या बात थी जिसकी वजह से मानस ने पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या की, क्योंकि दोनों करीब 1 साल से साथ में नहीं रहते थे, और मानस ने जो चीटिंग का आरोप लगाया है उनकी सच्चाई क्या है।
8: देखिए, ये आज बहुत ही एक दुखद घटना थाना गोमती नगर में हुई। प्रारंभिक रूप से जो सूचना मिली कि गोमती नगर के ICICI बैंक के कर्मी को गोली मार दी गई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी छानबीन टीम हमारी कर ही रही थी कि यहां हुसैरिया से एक सूचना मिली कि गोली चलने की आवाज और किसी व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने की बात हुई। टीम यहां भी पहुंची तो ये ज्ञात हुआ कि जो उस महिला पीड़िता मृतका के पति थे, उसने अपने सिस्टर का हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है।
9: और इस बीच बड़ी खबर इस पूरे हत्याकांड मामले में आ रही है कि आरोपी की पत्नी के माता पिता ने कहा है कि उसका पति दरअसल साइको था, यानी कि मानसिक रूप से वो ठीक नहीं था। ये मृतका के घर वालों का आरोप है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था और यही वजह बनी हत्या की। संतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, क्या डिटेल्स हैं? क्योंकि अब और इस बीच बड़ी खबर इस पूरे हत्याकांड मामले में आ रही है कि आरोपी की पत्नी के माता पिता ने कहा है कि उसका पति दरअसल साइको था, यानी कि मानसिक रूप से वो ठीक नहीं था। ये मृतका के घर वालों का आरोप है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था और यही वजह बनी हत्या की।
10: बीमार बहन थी वो, उसकी पागलपन की हरकतों की वजह से दिव्या मिश्रा बाहर रह रही थी, अलग रह रही थी पति से, और संभवतः यही एक कारण था। इसके अलावा जो पोस्ट में एक बहुत अहम बात है कि आज जो पति जो आरोपी था मानस वाजपेयी, उसने ऑटो से उसका पीछा कर रहा था, रेकी कर रहा था, और जैसे ही दिव्या मिश्रा अपने साथी के साथ बैंक पहुंचती है, वो चेक कलेक्ट करने का काम के लिए

0: बैंक के ही काम से बाहर गई हुई थी और वहीं पर उसका विवाद हुआ जो प्रज्ञा मिश्रा ने अपने
1: सोशल मीडिया पोस्ट से दरअसल काफी चीजें मृतका के परिवार वालों ने अब क्लैरिफाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संतोष। सवाल ये है कि मानस ने अपनी पत्नी दिव्या पर धोखा देने का आरोप क्यों लगाया, वो भी तब जब दोनों के बीच पिछले एक साल से तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। दोनों की शादी को 12 साल हो गए थे और ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद से दोनों साथ नहीं रहते थे। तो फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि मानस ने गुस्से में आकर पहले पत्नी की हत्या की, फिर बहन को मारा और अंत में खुदकुशी कर ली।
2: इस पूरे केस में नया मोड़ अब ये आया है कि मृतका दिव्या के परिवार वालों की तरफ से उनके पति मानस को भी मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है। मानस ने पहले प्राइवेट बैंक के बाहर पत्नी की हत्या की और फिर अपनी बहन को और खुद को भी मार डाला।
3: तो मानस जी हैं, उनकी बहन, उनकी भी मौत हो गई है। मानस जी ने पहुंच के वहां पे हमारी सिस्टर पे हमला किया जिसमें उनकी मौत हो गई। फिर उसके बाद वो अपने घर गए, अपनी बहन की उन्होंने हत्या की और खुदकुशी कर ली। उस एक मीडिया के द्वारा ये खबर पता चली थी हम लोगों को, तो उन्होंने कुछ स्टेटस लगाया था कि उसमें हमारी छोटी बहन प्रज्ञा और हमारे बहनोई भरत जी के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है कि उनको कुछ पता, मगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उनका पुराना इतिहास केरा की कुछ मानसिक रोगी थे वो और उनके सिस्टर भी मानसिक रोगी थे।
4: ये जो आपसे ये बात चल रहा था
3: जी, ये बहुत सालों से चल रहा था, करीब 4-5 साल से। कोरोना के बाद ही से हमारी सिस्टर दिव्या जी अलग रह रही थी और पिछले साल जब उनकी माता जी की देहांत हो गया तो उसके बाद से तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब उसके बाद ये घटना हुई।
2: मानस लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर में रहते थे। यहाँ उनका अपना घर था, घर का एक हिस्सा कमर्शियल भी था। यहाँ एक फास्ट फूड जॉइंट चलता था जिसे उन्होंने किराए पर दिया हुआ था और इसी में अंदर वो रहते थे।
5: लखनऊ में डबल मर्डर और सुइसाइड की वारदात, ये वारदात हुई है लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर में बसे हुसड़िया चौराहे के ठीक पास, और जहां ये घटना हुई है इस वक्त हमारी मौजूदगी ठीक वहीं पर है। आपको पहले हम मार्ग दिखा देते हैं, ये पूरा हुसड़िया चौराहे के आगे का मार्ग है और ये वो किराए का घर है जहां पर कुल मिलाकर वो रहता था, जो पति है वो रहता था। आइए आपको करीब लेकर चलते हैं, एक बार दिखाते हैं। यहां बाहर उसने एक फास्ट फूड शॉप रेंट पर दे रखी थी जिसको यहां पर हम कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं, ओम फास्ट फूड सेंटर है। और यहां आपको लेकर एक बार चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये जो है कुल मिलाकर एक क्राइम सीन में तब्दील हो गया है। आप यहां पर आएंगे तो ये पूरा जो फास्ट फूड शॉप है उसका हम सेटअप आपको दिखा रहे हैं। ये फास्ट फूड शॉप है, यहाँ काफी कस्टमर्स आते थे। ये एंट्रेंस एंट्री पॉइंट है उस घर का जहां पर मानस गया और उसने पहले अपनी बहन को मारा और फिर खुद को खुद की गोली मारकर हत्या कर ली।
2: बताया जा रहा है कि जब मानस अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मौकाए वारदात से फरार हुआ तो सीधे अपने घर पहुंचा। पड़ोसियों का कहना है कि घर आने के बाद उन्होंने हालचाल भी पूछा और फिर घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद मानस के व्हाट्सएप स्टेटस से ही पता चला कि इतनी बड़ी वारदात हो गई।
5: आए थे यहाँ पर
6: 12:30-12:30 बजे के करीब।
5: कैसा लग रहा था, रिलैक्स लग रहे थे, टेंस लग रहे थे?
6: नॉर्मल।
5: कुछ बात की आप लोगों से?
6: नहीं, हमसे तो हमेशा की तरह जैसे आते थे हमेशा पूछते थे लवकुश क्या हाल चाल है, वैसे आज भी बोला उन्होंने लवकुश क्या
5: नॉर्मल।
6: हाँ, नॉर्मल।
5: फिर जब अंदर से कुछ देर कोई नहीं आया तो 1-2 घंटे बाद आप लोगों ने फिर डोर तोड़ा?
6: 1-2 घंटे नहीं, मुश्किल था 20-20 घंटे बाद तो हमें स्टेटस का पता चल गया कि स्टेटस लगा है। फिर हम लोगों ने पीटना शुरू किया दरवाजा,
5: कोई नहीं खोल रहा था।
6: फिर जब दरवाजा नहीं खुला ऊपर से चिल्ला के बुलाया गया, दरवाजा पीटा गया, नहीं हुआ। फिर जब
5: आप लोग क्या इस वाले एंट्री से गए थे, उधर वाले एंट्री
6: उनका नहीं है,
5: इधर वाला है, उस वाले एंट्री पॉइंट से गए आप?
6: उसी से ही गए थे, मेन एक ही दरवाजा ही घर में जाने का है।
5: डोर तोड़ दिया वही वाला आपने?
6: हाँ, डोर हम लोगों ने।
5: तो जब अंदर पहुंचे तो क्या देखा अपनी आंखों
6: से? वो दोनों लोग एक्सपायर हो चुके थे।
5: टीवी पर गाने वगैरह चल रहे थे?
6: गाने नहीं चल रहे थे, भक्ति गाने चल रहे थे। वो अब तो बहन चला रही थी, वो चला रही, भगवान जाने कोई पता नहीं।
5: बहन के बारे में बता रहे हैं कि मेंटली थोड़ी सी अनस्टेबल,
6: हल्का था, ऐसा इतना भी ज्यादा नहीं था कि मतलब नहीं, पर थी वो। कभी कभी होता क्या था कि अचानक उसको गुस्सा आ जाता था, बस इतना था उसके।
5: चल रहा था
6: काफी टाइम से चल रहा था।
5: मानस कमाई सोर्स क्या, बैंक में थे?
6: बैंक में थे, एसबीआई में थे।
2: असली गुत्थी यही उलझी है कि मानस ने पत्नी पर धोखा देने का आरोप क्यों लगाया, क्योंकि मृतका के घर वालों का कहना है कि कोरोना के बाद से ही दोनों के बीच में अनबन चल रही थी, अलग रह रहे थे और पिछले एक साल से तलाक का केस भी चल रहा था, तो फिर मानस ने पत्नी पर चीटिंग का आरोप क्यों लगाया।
5: और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये घटनाक्रम करने के बाद उसने अपने मोबाइल पर एक स्टेटस भी लगाया जिस स्टेटस में उसने अपनी पत्नी पर चीट करने का आरोप भी लगाया है। और इस रास्ते को अब मैं आपको दिखाऊं तो इस रास्ते में आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे एक आध किलोमीटर आगे तो एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, वहां पर उसकी पत्नी कार्यरत थी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर। वो पिछले एक साल से साथ नहीं रह रहे थे, वो अलग रह रही थी, ये अलग रह रहे थे, डायवोर्स को लेकर भी एक याचिका डाली गई थी, तो संबंध दोनों के बीच में बेहतर नहीं थे। कि ये जो छोर है यहां पर वो प्राइवेट बैंक है जहां पर वो पत्नी कार्यरत थी और उसने फोन कर बात करने के लिए उसे बाहर बुलाया, कुछ देर बातचीत की और फिर उसे गोली मार दी और गोली मारकर वो वहां से सीधा पहुंचा इस जगह पर यानी कि अपना घर। और ये फास्ट फूड सेंटर जो कि उसने बाहर दे रखा था यहां वो ठीक पहुंचता है। और जो लोग यहां बताते हैं कि जब वो ये वारदात को अंजाम देकर पहुंचता है तो उसके पसीने आ रहे होते हैं और फिर यहीं पर वो बहन को गोली मारता है और फिर खुद को गोली मारता है।
2: लखनऊ की इस वारदात ने कई सवाल खड़े किए। क्या ये वारदात अचानक गुस्से में हुई या फिर पहले से इसकी साजिश रची गई? क्या व्हाट्सएप स्टेटस में लिखी बातें ही इस खूनी खेल की वजह थी या कहानी के पीछे कुछ और भी है? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और इन तीन मौतों के पीछे की पूरी कहानी सामने आना अभी बाकी है।
7: नगर क्षेत्र में ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है जिसमें एक पति द्वारा आईसीआईसीआई बैंक गोमती नगर में कार्यरत अपनी पत्नी जो कि एक रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में वहां कार्य करती थी उसकी गोली मारकर बैंक के बाहर हत्या की गई है।
1: वक्त इस से ब्रेक का उजला बने रहिए हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: Wake up wearing some

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: इस तरह का कोई भी कृत्य वो गैर कानूनी भी है, कानून के तहत कार्रवाई करने के योग्य भी है। इस तरह की गतिविधियां हरकतें अगर कोई करता है और पार्टी किसी नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, ऐसे पार्टी के मुखिया की उपस्थिति में अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति और देश के मानबिंदुओं के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, उनकी कितनी आस्था है, उनकी कितना उनके मन में पवित्रता का भाव है, देश के सामने प्रकट हो जाता है।
5: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। नहीं, मैंने पहले भी नहीं गाया, अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।

0: That's my moment of Sarah.
1: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
2: Money, money, money, money, every month.
3: सोच बदलो और बैंक भी.

0: 15 अगस्त को सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान के आरोपों की तपिश अभी कम भी नहीं हुई थी कि गोवा से तस्वीर आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने कल अपनी कार्य समिति में आधिकारिक रूप से ये तय कर दिया कि वो दो पद ही गाएगी।
1: वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज आवर डिसीजन। फर्स्ट टू चांस था
2: 28 अक्टूबर 1947 को वंदे मातरम सॉरी 37 को वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में जब पारित किया गया CWC की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेता आचार्य नरेंद्र देव मौजूद थे और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था और आज उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है।
0: इसी साल फरवरी में सरकार ने आधिकारिक मौकों पर वंदे मातरम के 6 पद वाले संस्करण को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया था, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट और 10 सेकंड की है। संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम को मंजूरी दी गई, जिसमें वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या अपमान को एक दंडनीय अपराध माना गया है। इसमें पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अपराध दोबारा दोहराने पर कम से कम 1 साल की अनिवार्य जेल होगी। क्या कांग्रेस संसद से पास कानून को नहीं मानेगी?
3: कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
0: जी हाँ, बड़ा सवाल यही है कि देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी का रुख संसद से पास कानून से अलग क्यों है? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक की रिपोर्ट।

0: पागल तो बना दूंगा देश को। अभी तो बस पेश किया है। अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
1: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
2: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पियो आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लद से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक नहीं।
0: गुलटनिया और कलखनिया,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
3: आज तक देश का सबसे

0: फ्रेश न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति, इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। पीएम मोदी की जनसेवा के 25 साल को सेलिब्रेट करेगी बीजेपी, सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम, जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के फैसले पर कोर्ट का हथौड़ा, झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के निर्णय पर लगाई रोक, 11वीं और 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेंजी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर, संघ ने भी किया मंथन, संसद मार्च के दौरान ज्यादा बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। लखनऊ में दिन दहाड़े आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजर समेत दो महिलाओं की हत्या, बहन और पत्नी को गोली मारने के बाद शख्स ने की खुदकुशी, चल रहा था तलाक का केस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: है वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। जेन जी और जेन अल्फा, इस वक्त ये वो दो शब्द हैं जिसे सुनकर सत्ता और प्रशासन सबके कान खड़े हो जाते हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर डीएम से लेकर मंत्री तक दौड़े चले आते हैं। जे है इस जेनरेशन की ताकत, और उसी ताकत का फायदा केवल एक पक्ष न उठा सके, इसीलिए सबके जहन में केवल जेन जी चल रहा है। यहां तक कि अब तो प्रधानमंत्री अपने हर मंत्री को हर दिन एक एक नया टास्क पूरा करने को दे रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री कहते हैं कि जेन जी के पास सारे मंत्री पहुंचे।
2: हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: कांग्रेस पार्टी कहती है जेन जी के पास पूरी पार्टी पहुंचे।
3: 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा, और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे।
1: योगी आदित्यनाथ कहते हैं जेन जी से जेन अल्फा तक की समस्या हर अफसर तुरंत सुने।
4: क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है।
1: अखिलेश यादव कहते हैं युवाओं और बच्चों की वजह से अब सरकार जाने वाली है।
5: जब से बच्चों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना शुरू किया है, बीजेपी के लोग घबरा गए हैं।
1: तेजस्वी यादव युवाओं के साथ सड़क पर उतरते हैं।
6: नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ सरकार जो है खिलवाड़ करने का काम कर रही है।
1: बीजेपी का वन डे वन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, जेन जी चौपाल और तिरंगा यात्रा,

0: संगठन में युवाओं को तरजीह, सोशल मीडिया कनेक्ट पर फोकस। कांग्रेस का छात्रों की गूंज कार्यक्रम, युवा छात्राओं के बीच पहुंच बढ़ाना। समाजवादी पार्टी का जेंजी के लिए डिजिटल कैंपेन। बीएसपी का दावा, टिकट बंटवारे में जेंजी यानी युवा पर फोकस करेंगे। मोटा मोटी कहानी ये कि जो जेंजी की बात करेगा क्या वही सत्ता पर राज करेगा, यही रणनीति अब सबको क्या अपनानी पड़ रही है। जहां इस वक्त सबसे पहले सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, जिन्होंने जंतर मंतर आंदोलन के बाद पिच, पेस, लाइन लेंथ सब कुछ एकदम जेंजी के लिए बदल दिया है।
1: आज दुनिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन बहुत तेजी से बदल रही है। ग्लोबल पावर बैलेंस भी प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं।
0: जंतर मंतर आंदोलन के बाद से पैदा हुई चुनौतियों को नए अवसर में बदलना प्रधानमंत्री शुरू कर चुके हैं, जिन्होंने पहले खुद वो टास्क करके दिखाया जिसे अब अपने हर मंत्री को प्रधानमंत्री पूरा करने के लिए कह चुके हैं।
2: पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चलाने की बात की है, यानी कि अब सभी मंत्रियों को एक दिन यूनिवर्सिटी में बिताना होगा, छात्रों से सीधा संवाद करना होगा, उनकी मांगों, उनकी जरूरतों, उनकी परेशानियों को सुनना होगा, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना होगा और सरकार के कामकाज का फीडबैक लेना होगा।
1: मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे।
0: आईआईटी दिल्ली में जो बात प्रधानमंत्री ने इसी महीने कही है, उसी में मानो उनके मंत्रियों और सरकार संगठन से जुड़े एक एक व्यक्ति के लिए सार छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि नौकरी, स्किल, स्कूल, शिक्षा और परीक्षा, मुद्दा कोई भी हो, अब देश के 1300 विश्वविद्यालय, 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 522 स्टेट यूनिवर्सिटी के अलावा जो डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, हर जगह लगातार एक दिन एक एक मंत्री को पहुंचकर मुद्दों का सामना करना होगा, सवालों का जवाब देना होगा। इतना ही नहीं, मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाना होगा, बच्चों से भी बात करनी होगी, जहां खुद इंस्टा मोड में प्रधानमंत्री पहले आ चुके हैं।
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं।
0: वहीं अब नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए भी प्रधानमंत्री गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को यह सलाह दी, पारंपरिक तरीके छोड़िए, जेंजी युवा वोटर के पसंदीदा तरीकों से कनेक्ट होकर बात करिए। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए कहा गया। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की सिर्फ खाना पूर्ति वाली सरकारी भाषा वाली पोस्ट की बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को भी परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा बनाया जाएगा।
2: बैठक में सभी मंत्रियों के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड दिया गया। 1 मई से 15 अगस्त यानी 3.5 महीने का इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन के परफॉर्मेंस का जिक्र था, लेकिन सोशल मीडिया पर रीच और एंगेजमेंट के मामले पे प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन था। वहीं एनडीए के घटक दलों के मंत्रियों का रिकॉर्ड औसत दर्जे का था।
0: दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया है, उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था, खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए, जिन पैमानों पर मंत्रियों की परफॉर्मेंस देखी गई। ये देखा गया कि मंत्री रोज कितनी पोस्ट कर रहे हैं, उनकी पोस्ट पर कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल कितनी एंगेजमेंट मंत्रियों की सोशल मीडिया पोस्ट पर हो रही है, मंत्रियों की हर पोस्ट पर औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, और मंत्रियों ने सरकारी योजनाओं और कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है।

0: असल में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो संवादहीनता पहले रही वो दूर हो, सरकार की स्कीम युवाओं तक पहुंचे और जेन जी की समस्या सरकार तक आसानी से आए, इसीलिए लगातार पीएम अब खुद ही मंत्रियों के सामने टास्क रख कर दे रहे हैं।
1: जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे
2: तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। आपने खुद देखा है कैसे लैब में कोई प्रॉब्लम डेड एंड तक यानी लगने लगती थी, सिमुलेशन में सॉल्यूशन खोजने में घंटे या दिन निकल जाते थे, लेकिन फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी की और कुछ नया लेकर भी आए। इसी तरह लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है।
3: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से हर दल और नेता जेन जी का नाम जप रहा है। हर दल चाहता है कि जेन जी उसके साथ हो जाए। कांग्रेस को लगता है कि अगले चुनाव में जेन जी को उसका साथ लेकर वो बाजी पलट सकती है। जेन जी को लुभाने के लिए कांग्रेस 800 शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाएगी। लेकिन सवाल यह है कि झारखंड जैसे राज्य की मिसाल जब सामने हो तब देश का जेन जी विपक्षी दलों पर भरोसा कैसे करेगा, जहां आज जेपीएससी की दो परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, जबकि तीन दिन पहले हेमंत सोरेन सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द की थी, जिसके खिलाफ जबरदस्त विरोध रांची में हो रहा है।
4: हरासमेंट तो नहीं हो रहा आप लोगों का? क्योंकि आप कोई वायलेंस नहीं कर रहे थे, आप किसी को नहीं मार रहे थे, आप तो अपना मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसी को मारा
0: जा रहा है। जेन जी को हर सियासी दल लुभाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है, जो जेन जी से करीबी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि आने वाले समय में जेन जी एक अहम वोट बैंक साबित होने जा रहा है।
5: सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है, ये आप देखिए।
0: लेकिन सवाल है कि जिस जेन जी ने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, क्या उसे कांग्रेस और राहुल गांधी रिझा पाएंगे? क्या जेन जी राहुल की बात सुनेंगे?
6: तो हमारे स्टूडेंट्स 24 घंटा इसको देखते रहते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपको जूम में बंद कर दिया गया है, ये पिंजरा है।
7: सर आपको ही देखते हैं।
6: मगर वो तो है, बट ये पिंजरा है, ये 21वीं सदी का, और इसकी जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है।
0: तो राहुल जेन जी को बताते हैं कि वो जिस मोबाइल से रील्स के बलबूते सरकार से अपनी बात मनवाते, वही मोबाइल और सोशल मीडिया उन्हें कैद करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सवाल है कि जेन जी को राहुल की बातचीत का अंदाज क्या भाएगा?
5: देखना चाहते हो,
4: ये डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, इनका पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक किसी और का हुआ है, बट ये कह रही है कि वो मेरा भाई है, देशवासी है, उसके साथ अन्याय हुआ है तो मैं भी खड़ी हो जाऊंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सामने अन्याय देखते हैं, किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गाली दी जा रही है, बट वो चुप होके अपना काम करते हैं, तो मैं इसको नेशनहुड मानता हूं।
0: 27 साल की रिया आहिर के साथ राहुल का खड़ा होना जेन जी से रूबरू होने की वो कोशिश है, जिसमें राहुल बाकी जेन जी से भी रिया की तरह मुद्दों को लेकर खड़ा होने की अपील करते हैं। लेकिन सवाल है कि जेन जी राहुल और उनकी पार्टी को क्यों सुनेगा, जब वो देखता है कि झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन से राहुल गांधी ने दूरी बनाकर रखी। कांग्रेस की गठबंधन सरकार भी पेपर लीक और भर्तियों को लेकर फुल प्रूफ तरीका ढूंढने में कामयाब नहीं दिखती। सवाल कि झारखंड के छात्रों के साथ हो रहे इस अन्याय का देश के बाकी जेन जी पर क्या असर होगा?
8: सड़क पे हम लोग को बैठना पड़ रहा है, क्योंकि जैसी चल रही है राज्य की तंत्र व्यवस्था, उस हिसाब से लग रहा है कि सारा फैसला सड़क पे ही होगा, सारा फैसला आपका प्रदर्शन के माध्यम से ही होगा। यहाँ पे ना जुडिशियरी है, ना एग्जीक्यूटिव ढंग से काम कर रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। प्योर मोबोक्रेसी है ये, डेमोक्रेसी तो दिख ही नहीं रही है यहाँ पे कहीं पे भी हमें। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर मोबोक्रेसी ही चलेगी तो मोबोक्रेसी ही की तरह से चलेंगे, प्रदर्शन करके ही चलाएंगे हम लोग।
0: जो काम देश का विपक्ष साल 2014 के बाद अपने दम पर नहीं कर पाए उसे जेंजी के विरोध ने आसानी से कर दिया। इस बात से भले राहुल गांधी उत्साहित हों और इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन क्या झारखंड समेत विपक्षी राज्यों में पेपर लीक और भर्तियों में होने वाली गड़बड़ी को जेंजी भूलकर 2029 में कांग्रेस से जुड़ेगा?
8: हम जो कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमने कोर्ट पे लड़ा, हमने हर तरह से लड़ा, हमने अच्छे से मेहनत करके एग्जाम निकाला, उसके बावजूद हमें आज रोड पे आना पड़ रहा है। क्यों आना पड़ रहा है? अगर सरकार मजबूत होती, जो कि है, मेजोरिटी है उनके पास, उसके बाद भी पता नहीं कैसे दबाव आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये दबाव क्यों आ रहा है? तो ये डेमोक्रेसी तो नहीं हुई ना। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी किसी के दबाव पे आके अपने डिसीजंस, वो भी जो प्योरली इलीगल डिसीजंस है, कैसे ले रही है, ये सरासर अन्याय है हमारे साथ, ये नहीं होना चाहिए।
0: इंडिया गठबंधन के झारखंड से आती नवाजों के बीच कांग्रेस ने जेंजी से जुड़ने के लिए देश के 800 शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने महीने भर के अंदर शिक्षा से रोजगार पर बड़ी सुधार योजना तैयार करने का प्लान बनाया है।
9: छात्रों की गूंज अब तक पिछले दो महीने में कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है, 22 तारीख को पुणे में होगा और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे।
0: जेंजी का मतलब बोलो जिनका जन्म 1997 और 2012 के बीच हुआ, इसीलिए 2029 में वोट देने की उम्र वाले जेंजी सदस्यों की उम्र लगभग 18 से 32 साल के बीच होगी। माना जा रहा है कि अगले चुनाव में जेंजी लोगों की संख्या 36 करोड़ के आसपास हो सकती है, जो चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए हर दल जेंजी को लुभाने में लगा है, लेकिन जेंजी हर दल और नेता को देख और तौल रहे हैं।
3: प्रशासन को भी हर राज्य में समझने की जरूरत आ पड़ी है कि जिन मांगों को वो अब तक अनसुना करते रहे या फिर डांट डपट कर शिकायत करने वालों को चुप करा देते रहे, भगा देते रहे, ऐसा अब नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए ये अहम निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी उन्हें फौरन दूर करने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट से मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को भी कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने तय की है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में एमडीएम किचन, ब्लैकबोर्ड, विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए भी निर्देश दिए गए। इसका असर भी दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के महोबा में जहां सड़क की मांग को लेकर कल छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने थोड़ा सख्ती दिखाई। आज वहां खुद डीएम और एसपी पहुंचे, बच्चों से बात की, उनकी समस्या दूर करने का भरोसा दिया।
10: कोई अधिकारी नहीं आ रहा, दो तीन दिन से हम लोग रोज कह रहे हैं मिल वालों को, सबको कोई सुनी नहीं रहा है, इसलिए हम लोगों ने जाम लगा लिया। पूरी रोड, आधे से ज्यादा रोड रास्ता खराब है, यहाँ से कोई देखते नहीं है, जहाँ तक मिल आनी है वहाँ तक रास्ता खराब ही है।
11: क्या चाहती है आप प्रशासन से?
10: हम ये चाहते हैं हमारी रास्ता सही करवा दे।
11: आप जैन अल्फा है, छोटे छोटे बच्चे हैं,
10: हम लोग अपनी रास्ता सही करवानी, बाकी हमें कुछ मतलब नहीं है सरकार से। माई रास्ता सही करवा दे, बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ होती है।
12: सही आश्वासन मिला है और डीएम मैम भी आई थी, उन्होंने हम लोगों की बात सुनी और उन्होंने कहा कि आपकी बात को पूरा किया जाएगा।
0: गुलाबी सूट वाली स्कूली छात्रा जो साथियों का हाथ थामकर बुधवार को महोबा की सड़क पर धरना देती है, नारे लगाती है कि हमारी मांगे पूरी करो। 19

0: अगस्त को जो बच्ची पुलिस के सामने लड़कर अपने लिए साफ सुरक्षित सड़क का अधिकार चाहती है, वही स्कूली छात्रा जब गुरुवार को मेज पर तमाम मीडिया के माइक के सामने बैठकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताती है कि हमारी मांगे प्रशासन ने सुन ली है, तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी सबसे ताकतवर तस्वीर है। कुमकुम का आत्मविश्वास देखिए और आज आप इसे सुनिए।
1: सड़क नहीं है, लाइब्रेरी भी गांव में नहीं है और स्टेडियम भी नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। मैम ने एक महीने की मोहलत दी है, आपके कह रहे सब कुछ होगा आप लोगों की। डीएम मैम आई थी,
2: क्या बोली डीएम मैम?
1: बोल के कहीं आपकी बात सुनी जाएगी और आप पूरे भी की जाएगी आपकी मांगे, रोड सही भी करवाएंगी और लाइब्रेरी की भी बोल के कही है, स्टेडियम गाँव पानी के लिए भी बोला उनने।
0: सुन रहे ना, यही वो जेन अल्फा का आत्मविश्वास है जो सरकारों को त्वरित कार्रवाई के लिए जगा रहा है। वरना महोबा के रायपुर कला गांव को जोड़ने वाला लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता जहां सड़क नहीं गड्ढे हैं, उसी को तो सुधारने के लिए जब छात्रों ने बुधवार को धरना दिया सड़क जाम की, तो वायरल हुई थी महोबा पुलिस की गुंडागर्दी जो छात्रों को हटाने के लिए लात मारने लगे, बच्चों को खींच कर हटाने लगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर योगी सरकार के निर्देश के बाद वही प्रशासन गांव तक पहुंचता है। डीएम गजल भारद्वाज आती है, एसपी शशांक सिंह गांव पहुंचते हैं, छात्रों के साथ बात करते हैं, उनको भरोसा देते हैं हर समस्या को दूर किया जाएगा।
3: संवाद के दो कारण थे। सबसे पहला कारण तो यही था कि एक जिलाधिकारी के तौर पर हमें इस बात का बहुत बुरा लगा कि हमारे बच्चे बच्चियों को जाम लगाने की नौबत आई, क्योंकि निरंतर हमारे यहाँ के जो बच्चे बच्चियां हैं महोबा जिले के, वो बहुत ही पढ़ाई में तेज बच्चे हैं और निरंतर उनकी समस्याओं पर एक्शन लिया जाता है। तो बच्चों से आज हमने यही संवाद किया कि जो भी समस्या आ रही थी, चाहे वो सड़क की है या स्कूल की है, उसके बारे में प्रॉपर चैनल से वो अपने शिक्षक के साथ, या आगे भी कोई समस्या आए तो अपने शिक्षक शिक्षिका के साथ वो हमारे या कप्तान साहब के ऑफिस आकर अपनी बात बता सकते हैं। हम लोग यही संवाद का मेन रीजन यही था कि रोड जाम करने से क्या होता है कि आवागमन में किसी को एम्बुलेंस में किसी की जान जा सकती है, समस्या हो सकती है। तो बच्चों को काउंसिल किया हमने कि कोई भी समस्या जो है वो सही प्लेटफॉर्म पे वो रखें और उसका बिल्कुल हम लोग कार्रवाई उस पर कराएंगे। जहां तक वीडियोज की बात थी तो उस पर ऑलरेडी कप्तान साहब जो है वो एक्शन ले रहे हैं,
1: बोल के गई हैं कि अब कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। हमारी गलती है कि हमने रोड जाम किया, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। यदि सुनी बात सुनते हमारी, तो हमें जरूरत नहीं थी रोड पे जाने की, प्रदर्शन करने की, तो हम लोगों की बात नहीं सुनी गई, इसलिए हमने प्रदर्शन किया। उन लोगों ने बदतमीजी की, वो प्यार से भी तो समझा सकते थे, क्योंकि हम छोटे हैं उनसे, उनका फर्ज बनता है कि अपने छोटे बच्चों को सही से समझाएं। उन्हें ना सही समझाने की वजह से बच्चों के साथ बदतमीजी की, मारा पीटा उन्हें, धमकी भी दी, उन गार्जियन के खिलाफ कार्रवाई होगी।
0: सच्चाई यही है कि संवाद ही लोकतंत्र की सबसे बुनियादी जरूरत। जहां संवाद समय से नहीं हुआ तो बच्चों ने प्रदर्शन किया, संवाद करने बड़े अधिकारी जब महोबा पहुंचे तो बच्चे मान गए, उस रास्ते पर काम होने लगा जहां की समस्या है। और ये बुलडोजर की असली ताकत है, जहां संवाद के बाद बुलडोजर रास्ता सुधारने का काम करने लगा है।
4: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और एनकाउंटर, ये दो कार्रवाई ऐसी हैं जिनके दम पर सरकार कानून व्यवस्था की मजबूती और अपराधियों पर लगाम का दावा करती है। वहीं विपक्ष इन दोनों तरीकों से चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई का आरोप लगाता है। इन सब के बीच 15 महीने पुराने एक हाफ एनकाउंटर से जुड़ी खबर पर कोर्ट ने ही खबरदार कर दिया, जहां एनकाउंटर की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए अदालत ने तत्कालीन पुलिस अधिकारी की निशानेबाजी की क्षमता तक जांचने के लिए कहा।
0: 12 मई 2025 जगह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, अलाउद्दीन उर्फ छुटकाऊ नाम के आरोपी को गोली मारकर हाफ एनकाउंटर किया जाता है। यूपी में हाफ एनकाउंटर का मतलब है पैरों में गोली लगना। मई 2025 में श्रावस्ती पुलिस की टीम आरोपी अलाउद्दीन को नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस कहती कि तभी इसने फायर किया और दोबारा जब रात के अंधेरे में पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हथियार लोड करना चाहा। तो ये है तत्कालीन SHO इकोना अश्विनी कुमार दुबे, जो बहुत बहादुरी से कहा जाता है कि उसी रात के अंधेरे में केवल हथियार लोड होने की आवाज सुनकर ऐसी गोली चलाते हैं जो सीधे आरोपी के पैर में लगती है, किसी और को नहीं।
5: के पास वहां घेराबंदी की गई और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पर फायर किया और

0: पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।
1: मई 2025 के इस हाफ एनकाउंटर पर 23 पुलिस वालों को

0: 23 पुलिस वालों को पुरस्कार मिला, लेकिन अब एनकाउंटर से लेकर पुरस्कार तक पर सवालों का नया एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हाफ एनकाउंटर के 15 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मई 2025 के श्रावस्ती के एकौना में अलाउद्दीन वाले हाफ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने कहा है कि 23 पुलिस वालों से घिरे होने के बावजूद आरोपी ने फायरिंग की, जिसमें एक भी पुलिस वाला घायल नहीं होता। वहीं रात 11 बजे सुनसान इलाके में 15 मीटर की दूरी से एसएचओ ने गोली चलाई और वो सीधे आरोपी के दोनों पैर में लगी। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच का आदेश लखनऊ की अदालत ने दिया है और कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी जांच के दौरान तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे की निशानेबाजी और शूटिंग क्षमता का भी जरा परीक्षण कर ले।
1: कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की जीप में कैसे 23 लोग बैठ सकते हैं और वहीं रात के अंधेरे में एसएचओ जिसने इस पूरी एनकाउंटर की कहानी बताई, एफआईआर दर्ज करवाई, वो रात के 11 बजे कैसे असलाह को लोड करने की आवाज से उसने फायरिंग की और जिसमें जो आरोपी था उसके दोनों पैर में सटीक जाकर गोली लगी है।
2: इतना सटीक निशाना बहुत सव्यसाची तो है नहीं, सव्यसाची तो मैंने सुना था कि राजा दशरथ थे जो किसी की आवाज पे तीर मार देते थे, उसी में शायद श्रवण कुमार भी मरा था। सव्यसाची नहीं है ये, अगर इन्हें ये बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने ऐसा अनुमान में लगाया तो अनुमान से भी चलाया तो किसी अन्य को भी गोली लग सकती थी ना, कोई और भी तो मर सकता था। सटीक इनकाउंटर होना चाहिए, किसी अन्य की जनहानि नहीं होना चाहिए, किसी का अन्य घायल भी हो सकता था, ये मुझे गले से उतरने वाली बात नहीं। कोर्ट ने बिल्कुल सही ये जांच के आदेश दिए हैं और मैंने बहुत पहले भी कहा है कि जिस दिन एनकाउंटर इस तरह के फंसेंगे जवाब देते नहीं बनेगा, सजा हो जाएगी लोगों को।
3: जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है छुटकाऊ का गोली लगने के बाद, उसमें जो वून का साइज आता है वो है 0.5 सेंटीमीटर, और जो गोली एसएचओ के माध्यम से पता, केस डायरी के माध्यम से पता चली है कि चलाई गई है वो है 0.9 mm की। तो गोली जब 9 mm की है और एंट्री वूंड है 0.5 mm का, तो ये बहुत ही इम्प्रोबेबल चीज़ें हैं जो कोर्ट को लगी हैं। एक बहुत ही कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई है पुलिस के द्वारा और जो कि मानने के योग्य नहीं है।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत से एनकाउंटर पर सियासी सवाल जवाब होता आया है। श्रावस्ती एनकाउंटर अपने आप में शायद ऐसा पहला केस है जहां एनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले की निशानेबाजी क्षमता के परीक्षण तक का आदेश दे दिया गया है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
4: देश भर के स्कूलों की हकीकत से हम आपको लगातार खबरदार कर रहे हैं। कल हमने पंजाब के स्कूलों का रियलिटी चेक किया था, आज हम गुजरात के दाहोद के स्कूलों का हाल आपको दिखाएंगे।
0: देश भर के स्कूलों का रियलिटी चेक करके सरकारों को खबरदार करती सीरीज में बुधवार को पंजाब के बाद अब बारी गुजरात की है, जहां के 4 स्कूलों में जाकर आज तक संवाददाता अतुल तिवारी ने पड़ताल की। गुजरात के आदिवासी बाहुल्य दाहोद में 1 से लेकर 8 तक के 1645 और 9वीं से 12वीं के 65 सरकारी तो 195 ग्रांटेड स्कूल मौजूद है। आखिर स्कूलों की क्या हालत है, इसी को लेकर हमने पड़ताल की। आज तक संवाददाता अतुल तिवारी सबसे पहले दाहोद के खंगेला गांव के प्राइमरी स्कूल पहुंचे, जिसे गुजरात का अंतिम स्कूल भी कहा जा सकता है क्योंकि इसके बाद सीमा पार मध्य प्रदेश शुरू होता है। स्कूल में दाखिल होते ही सामना खस्ता हाल हो चुके वाटर कूलर से होता है, जिसकी हालत देखकर पता चल गया यहां पीने के पानी का इंतजाम कैसा होगा। बच्चों के पीने के पानी की जगह पर हमें चप्पल दिखाई दी। पीने के पानी के जो नल भी लगे उसमें भी पानी नहीं मिला। पीने के पानी के लिए बच्चे पास के हैंडपंप पर निर्भर है। यहाँ के शिक्षक से पता चला कि प्राइमरी स्कूल की इमारत में ही जैसे तैसे 9वीं और 10वीं की पढ़ाई तक करवाई जा रही है, जिसकी वजह से कई छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं।
5: कि हमारी जो सरकारी बिल्डिंग है वह अभी काम चालू है, बराबर बनी नहीं हुई है, इसीलिए हमें यहाँ पर किसी दूसरे का घर लेकर पढ़ाना पड़ रहा है।
6: अभी 10वीं में करीब 350 जितने छात्र अभी भी आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन 11वीं में आते आते वही छात्रों की संख्या करीब 50 हो गई है। तो कितने ऐसे छात्र हैं जो पिछले साल 10वीं में तो थे लेकिन 11वीं में एनरोल नहीं हो पाए?
5: हाँ, पिछले साल हमारे विद्यालय में, मतलब हमारी शाला में 106 छात्र थे, लेकिन 10वीं पास करने के बाद बहुत ऐसे छात्र है कि हमारे यहाँ क्लास की सुविधा नहीं थी तो दूसरी जगह एडमिशन लेकर वहाँ दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ 11वीं में आते आते बच्चे, लड़के लड़कियाँ मिलाकर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी।
0: लेकिन सबसे खबरदार करने वाली बात शिक्षकों की कमी का आंकड़ा है।

0: सोचिए जिस खंगेला प्राइमरी स्कूल के पहले से आठवीं क्लास में 607 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ 607 बच्चों के लिए 17 टीचर की जगह 12 टीचर से ही काम चलाया जा रहा है, यहाँ 5 टीचर की कमी है। यहाँ हमें क्लासरूम की भी कमी मिली, जहाँ 18 की जगह 12 क्लास में किसी तरह पढ़ाई कराई जा रही है।
1: 600 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कितने शिक्षकों की कमी है और कब तक ये कमी पूरी होगी?
2: 50% कमी है अभी, 5 शिक्षक की कमी है।
1: तो 5 शिक्षकों से 600 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है?
2: नहीं, ऐसे तो 12 शिक्षक है, पर प्राइमरी में एक थी 5 में वो 5 ही है, 10 की जगह।
1: मतलब 50% शिक्षकों की कमी,
2: शिक्षक की कमी है अभी।
1: तो खंगेला प्राथमिक स्कूल की जब हम बात करते हैं तो 50% शिक्षकों की कमी के साथ ये स्कूल चलाई जा रही है। विद्या सहायकों की बात करें तो उसकी भी अभी पूर्ति यहाँ पे नहीं की गई है।
0: आज तक की टीम इसके बाद दाहुक के इटावा प्राइमरी स्कूल पहुँचती है, यहाँ पर हमें बच्चे स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ते दिखे, लेकिन यहाँ भी क्लास की कमी दिखी।
1: दाहोद के इटावा गांव में स्थित प्राथमिक स्कूल में मेरी मौजूदगी है और इस प्राथमिक स्कूल की बात करें तो करीब 750 जितने छात्र इस स्कूल में पढ़ते हैं। अगर एक वर्गखंड के अंदर अगर 40 बच्चे पढ़ते हों, ऐसा अगर हम मान लेते हैं, तो लगभग 20 से ज़्यादा वर्गखंड की इस स्कूल को ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर मात्र 8 वर्गखंड हैं और इसी के पास में एक दूसरा बिल्डिंग बन रहा है जहाँ पर दूसरे 8 वर्गखंड बनाए गए हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अलग अलग जो क्लासरूम्स हैं उसमें जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर लैब्स भी यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई हैं।
0: इस स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम नहीं है, इसलिए इन बच्चों को प्राइमरी की बिल्डिंग में पढ़ाया जा रहा है। 10वीं के बच्चे तो कंप्यूटर क्लास में जमीन पर ही बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। दाहोद के इटावा गांव के इस प्राइमरी स्कूल में पहली से 8वीं तक के 747 छात्र पढ़ाई करते हैं। नियम के मुताबिक स्कूल में 21 टीचर और 18 क्लासरूम की जरूरत है, लेकिन स्कूल के पास केवल 14 टीचर हैं, 60 टीचर की कमी है। शिक्षक की कमी भरने के लिए 3 विद्या सहायकों को नियुक्त किया गया है।
1: आपके स्कूल में लगभग 750 जितनी संख्या है, उसके मुताबिक कौन से सेक्शन में शिक्षकों की कमी है फिलहाल?
3: 1 से 5 में 5 टीचर की कमी है और 6 से 8 में 3 टीचर की कमी है। टोटल 8 टीचर की कमी है।
1: सर, एक शिक्षक के प्रति कितने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अभी बन रही है फिलहाल?
3: 35 से 40 समथिंग।
1: अच्छा, ये हम पीछे देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर क्लास है लेकिन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना पड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है?
3: क्लास की कमी है, अभी जगह नहीं है, इसलिए जो रूम है उसमें पढ़ाना पड़ा। नई जगह है हाई स्कूल की, वो जगह मंजूर हो गई लेकिन वो भी टेंडर नहीं होगा, तो टेंडर लेने के बाद वो नई जगह बन जाएगी।
0: अब दाहोद के कोटड़ा के सरकारी स्कूल को देखिए, जिसकी इमारत इस हद तक जर्जर हो चुकी है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने क्लासरूम में ताला लगाकर स्कूल का सामान जर्जर रूम में ही रख दिया है। स्कूल के प्रिंसिपल मनोज परमार ने आज तक को बताया कि पहली से आठवीं तक के यहाँ 309 बच्चे पढ़ते हैं, 10 टीचर की जगह 60 टीचर से काम चलाया जा रहा है।
1: शिक्षकों की परिस्थितियाँ क्या है, क्योंकि हम जहाँ भी देख रहे हैं शिक्षकों की कमी हमें देखने को मिल रही है, आपके यहाँ कितने शिक्षक होने चाहिए, कितने हैं?
4: हमारे यहाँ कुल 6 शिक्षक है और एक लीव पे है, और होने चाहिए 10। एक मुख्य शिक्षक प्रिंसिपल होना चाहिए पर वो नहीं है, पर 2 की कमी है।
1: अच्छा, कब तक आपको बताया गया है कि यहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 1 से 5 के बच्चों को आप 2 ही कमरों में पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे हैं उसमें?
4: 182-180 तकरीबन। तो आगे से क्या है, इंजीनियर ने कहा है कि 6 महीने से कह रहे हैं कि बन जाएगा पर कोई प्रोसेस नहीं हो रही आगे।
0: तो स्कूलों में टीचर कम है, इमारतें जर्जर हैं, 5 साल तक शिकायत करने के बावजूद बदलाव नहीं हुआ, जिसके बाद 2 साल पहले टीचरों ने ही 6ठी 7वीं और 8वीं के छात्रों को पास के पंचायत घर के कमरों में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहीं पहली से 5वीं तक के 182 छात्रों को 300 मीटर की दूरी पर मौजूद 2 कमरों में बैठकर पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में 15 कंप्यूटर हैं लेकिन उन्हें तिजोरी में बंद करके रख दिया गया क्योंकि उन्हें रखने की जगह नहीं। ऐसे में कंप्यूटर होते हुए भी बच्चे इसकी शिक्षा से दूर हैं। अतुल तिवारी, दाहोद, आज तक।
5: दाहोद की अगर हम बात करें तो वहां पहली से आठवीं तक के 1645 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें छात्रों की संख्या 3,33,498 है। इन पर 11,195 शिक्षकों की जगह 9,879 सरकारी शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इस तरह दाहोद में प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों के कुल रिक्त पद 1,316 है। दाहोद में ही 9वीं से 12वीं के 65 सरकारी स्कूल में 9,045 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन यहां 82 शिक्षकों की कमी है। वहीं 195 ग्रांटेड स्कूल में 89,566 छात्र पढ़ रहे हैं और यहां 913 शिक्षकों की कमी है। तो हमारी पड़ताल में आपने देखा कि टीचरों की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गुजरात के बाद अब आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं, जिसके सोलन में हमें स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर जाते हुए मिले, जबकि सोलन में मॉनसून में कहर बरपा रखा है। बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन हिमाचल के सोलन में बच्चे स्कूल जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है।
0: हिमाचल प्रदेश का सोलन, जिसके अश्वनी खड्ड की एक तस्वीर स्थानीय व्यवस्था और प्रशासन की बदहाली से खबरदार करने के लिए काफी। सुन्नू टिकरी गांव के छोटे छोटे स्कूली बच्चे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए यहां मजबूर है, क्योंकि यहां जाने के लिए कोई पक्का पुल नहीं। पुल के अभाव में मासूम बच्चे लोहे के दो कबाड़ पाइपों पर वायर टिकाकर स्कूल जाते हैं। इसके अलावा रस्सी से बंधी एक काम चलाऊ ट्रॉली के सहारे उफनती नदी को पार करना सोलन के इन बच्चों की मजबूरी है। सोचिए, ये बच्चे बारिश में उफनते नाले को अपनी जान दांव पर लगाकर पार करते हैं, क्योंकि इनके पास स्कूल पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। बच्चों के परिजनों की मजबूरी देखिए, वो रस्सी से बंधी एक काम चलाऊ ट्रॉली पर अपने बच्चों को बैठाकर इस नदी को पार करा के स्कूल भेजते हैं।
6: बहुत सालों से जी ऐसा ही चल रहा है, और हमने पंचायत और इसमें भी कई बार रजिस्ट्रेशन बुलाए थे कि ये यहाँ पे पुल वगैरह या कोई ऐसी वो लगाया जाए, लेकिन उसका कुछ नहीं होता है।
7: अच्छा, आप बताएंगे कितने बच्चे आते हैं कोई इस तरह से यहाँ पार से?
6: तो आते हैं कोई 30-40 बच्चे आता है।
7: 30-40 बच्चे, तो सभी लोग इसी क्रेन में आते हैं पार से?
6: नहीं, कुछ बच्चे तो हाँ जी, बाकी लोकल भी सारे आते हैं, इसी क्रेन में आते हैं।
0: गांव वालों का कहना है कि पिछली सरकार में सुन्नू टिकरी, ग्योरा और क्यार में 3 पुलों का एस्टिमेट तैयार किया गया, 2 पुल तो बन गए, लेकिन सुन्नू टिकरी का ये पुल सिर्फ कागज पर ही बन पाया है।
8: स्कूल्स की बात भी आती है, अगर हम सरकारी क्षेत्र में करेंगे, लगभग 14,000 से अधिक स्कूल है और ये मामला संज्ञान में आया है, तो इसमें जिला प्रशासन, क्योंकि अधिकतर रास्ते पुल ये सब बातें जिला प्रशासन देखता है, उनके संज्ञान में लाया जाएगा, ताकि अगर इस तरह की यहाँ भी इसके अलावा और भी कोई इस तरह की सुविधा विशेषकर जो मानसून सीजन के दौरान होती है उसको दूर किया जाए, ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को कहा गया है।
0: इस गांव के बच्चों का ये खतरनाक सफर सुन्नू टिकरी का सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद होने से और बढ़ गया। ये स्कूल यहाँ 1949 से चल रहा था, लेकिन छात्रों की कम संख्या की वजह से इसे पिछले साल जुलाई में एक दूसरे स्कूल में मिला दिया गया। इसके बाद से अब पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए रोजाना इसी तरह खतरनाक खड्ड को पार करके 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
7: बताओ कि स्कूल कैसे पहुँचते हो आप यहाँ पे?
9: झूले से जाकर।
7: झूले से? तो झूले में क्या डर नहीं लगता आपको?
9: लगता है।
7: अच्छा, फिर क्या कैसे आते हो आप, मतलब झूले में बैठते हो किस तरह का डर लगता है?
9: कि नीचे ना गिर जाए।
7: नीचे ना गिर जाए? नीचे तो काफी पानी होता है, पानी होता है ना नीचे नदी में?
9: यस सर।
7: कितने बहुत सारे बच्चे आते हैं वहाँ से ऐसे?
9: यस सर।
7: अच्छा, तो क्या डिमांड रखेंगे आप सरकार से?
9: कि पुल बना दे नीचे नदी में।
0: हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से लेकर फ्लैश फ्लड तक के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसने बच्चों के स्कूल पहुंचने के रास्तों को और कठिन बना दिया। सोलन की ये तस्वीर इस बात की गवाही देती है। राजेश शर्मा, सोलन आज तक।
5: आप जब खबरदार करते हैं ना तो असंभव संभव हो जाता है। कल इसी वक्त हमने आपको जयपुर की मंगलम सिटी में खराब सड़कों को लेकर जनता का दर्द दिखाया था। हमारी रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे जयपुर के इस इलाके में अपार्टमेंट के जाल बिछे हैं, लेकिन सड़क के नाम पर ऐसे गड्ढे हैं जिस पर चलना आसान नहीं। वहां पर बारिश में कोई नाव चला रहा था, कोई एस्ट्रोनॉट बनकर प्रदर्शन कर रहा था। आज तक ने कल जब सरकार को खबरदार किया तो सरकार की नींद टूटी। रिपोर्ट चलने के कुछ ही घंटों बाद सड़क बनाने का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया।
0: जयपुर की कालावाड़ रोड पर बनी मंगलम सिटी, जहां रहने वाले हजारों लोग खराब सड़कों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। सरकार का ध्यान खींचने के लिए यहां के लोग एस्ट्रोनॉट तक बन गए, गड्ढे में नाव चलाए, भूख हड़ताल की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं सुनी। जयपुर के ऐसे ही लोगों की आवाज बना आज तक, और खबरदार शो में रिपोर्ट दिखाने के कुछ ही घंटों के अंदर जयपुर में सरकार जनता की सुनने लगी। रात में ही सड़क बनाने का आदेश देने से लेकर काम तक शुरू हो जाता है। ये वर्क ऑर्डर नगर निगम की तरफ से जयपुर रात में निकलता है और तुरंत काम शुरू हो जाता है। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से चंद घंटे पहले वर्क ऑर्डर शुरू कर दिया जाता है। सोचिए, जिस विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण में पैसे जमा है, फिर भी सड़क नहीं बनी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट घोषणा की थी, लेकिन उसका फायदा भी यहाँ के हजारों लोगों को नहीं मिल रहा था। इसी से तंग आकर देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मांगों पे होते आंदोलनों से सीख लेकर यहाँ के लोगों ने अनोखे आंदोलन शुरू किए। फिर भी किसी ने नहीं सुनी तो भूख हड़ताल शुरू करके बेटियां बैठ गई। आज तक ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और स्थानीय विधायक मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर तक इनकी पीड़ा पहुंचाई तो रात में ही सड़क बनाने का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा और जयपुर नगर निगम की तरफ से पहली किश्त 2,19,00,000 रुपए का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। यहाँ के लोगों में बहुत खुशी है। सब ने आज तक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और स्थानीय विधायक मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का धन्यवाद किया।
10: सीएम साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे
0: अपनी माँ को खोने के बाद भूख हड़ताल पर बैठी दीपमाला के लिए ये सपने के सच होने जैसा है।
11: जयपुर के मंगलम सिटी में सड़कों की हालत बेहद खराब है। लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, आज तक ने इसकी रिपोर्ट कल दिखाई। उसके बाद ये घोषणा हुई है कि यहाँ पर सड़क बनेगी और धरना जो है काफी लंबे दिनों से चल रहा था वो खत्म हो गया है। विक्रम हमारे साथ हैं। विक्रम, ये खुशी की बात है।
12: सर देखो, खुशी की बात तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी खुशी की है। और हम भजनलाल जी शर्मा का जी जब सीएम साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि साहब उन्होंने हमारी आवाज सुनी, आपके थ्रू वहाँ आवाज पहुंची और हमारे जो बजट रुका हुआ था वो बजट भी पास हुआ।
11: माला, आपकी कल जो बात थी वो बिल्कुल रुला देने वाली थी, आज आपके चेहरे पर खुशी है।
10: हाँ, खुशी तो ऑब्वियसली होगी। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि शरद कुमार जी ने जो हेल्प करी है वो बहुत ही अच्छी हेल्प थी। और आज तक का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि पूरे राजस्थान में जो हमारी मंगलम सिटी को कोई जानता तक नहीं था, जिन लेडीजों को कोई पहचानता नहीं था, तो उनका नाम हुआ है कि हाँ, मंगलम सिटी की कोई लेडीजे हैं जिन्होंने आवाज उठाई है। और मैं सीएम साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारे मंत्री जी का, कि जिन्होंने हमारी मांगों को पूरी करने का आश्वासन दिया है। और मैं यही उम्मीद करती हूं कि चुनाव के बाद वो हमारा आश्वासन पूरा करेंगे।
0: लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि इनके इलाके में सड़क भी बनेगी। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। खुशी जताते हुए लोगों ने कहा कि इस इलाके का करोड़ों का विकास शुल्क भी जयपुर विकास प्राधिकरण में करीब 20 सालों से ज्यादा समय से जमा पड़ा है, वो भी सरकार को विकास के काम के लिए जारी करना चाहिए। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
5: अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां बालाघाट के आदिवासी बैंगा अंचल में पिछले दिनों 19 बच्चों की मौत के बाद शुरुआत में उंगली इस सवाल पर उठी कि क्या कुपोषण की वजह से जान गई। शुरुआती जांच में फिर मलेरिया और खसरा संक्रमण से मौत की बात पता चली। बालाघाट में मौत की वजह भले संक्रमण निकली हो, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में कुपोषण अब भी एक बड़ी चुनौती है। दावा है कि 300 दिन का जरूरी पोषण आहार तक नहीं बंट पाया है।
0: मध्य प्रदेश का बालाघाट आदिवासी इलाका, जहां खबरदार करता सवाल उठता है कि क्या झाड़ फूक के अंधविश्वास के सहारे बच्चों की जान बचाने की कोशिश हो रही है? अगर हाँ तो क्यों? मध्य प्रदेश का आदिवासी इलाका जहां 19 बच्चों की मौत के बाद सवाल उठा है, क्या कुपोषण जान ले रहा है? लेकिन ICMR और दूसरे प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों की जांच रिपोर्टों ने मौतों की वजह में मलेरिया और खसरा से मौत का दावा किया। जहां दावा है कि खसरे के टीके से बच्चे छूटे थे, तो कहानी सिर्फ 19 मौतों की नहीं, क्योंकि आदिवासी इलाके में संक्रमण के साथ कुपोषण भी बच्चों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के आंकड़े कहते हैं कि ग्रामीण मध्य प्रदेश में अंडरवेट बच्चों का आंकड़ा 33% से बढ़कर 42% से ज्यादा हो गया, यानी 10 में से 4 से ज्यादा बच्चे उम्र के हिसाब से कम वजन के। इसीलिए खबरदार करना जरूरी है कि आखिर आदिवासी बच्चों को बीमारी से बचाने वाली वैक्सीन और कुपोषण से बचाने वाला पोषण का आहार, दोनों की व्यवस्था में कमी कहां रह जा रही है? केंद्र के मिशन पोषण 2.0 के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उसके साथ 6 साल तक के बच्चों को साल में कम से कम 300 दिन पोषण आहार देना जरूरी है। लेकिन मध्य प्रदेश की 97,000 आंगनबाड़ियों को एक साल में जुलाई तक करीब 170 दिन ही नियमित पोषण आहार मिलने के आरोप। प्रदेश में पोषण आहार बनाने वाले रीवा, सागर, देवास, शिवपुरी और होशंगाबाद समेत जिले के सभी 7 प्लांट भारी घाटे के चलते बंद हो चुके हैं और नई व्यवस्था के लिए अब तक टेंडर भी जारी नहीं हुआ।
13: बीच में थोड़ा सा ये हुआ था कि जो THR था वो कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब तो लगातार हम लोग दे रहे हैं। लेकिन जो गर्म पका भोजन जो सुबह दिया जाता है वो तो हमारा लगातार चालू था, और THR कुछ समय के लिए हो लगता है, लेकिन लगातार हम लोग उसको दे रहे हैं। व्यवस्थाएं अब हमारे हाथ में आ गई हैं, तो हम अब सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं और कर चुके हैं हम लोग। तो बीच में व्यवस्था परिवर्तन हुई और होती रहती है व्यवस्थाएं परिवर्तन, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं चल रहा है या सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि भाई विभाग फिर से करेगा, और वो हम लोग अब सुचारू रूप से हमारे सभी कलेक्टर को ये निर्देश दे दिया है कि जहां तक नया टेंडर नहीं हो जाता है वहां तक वो अपने वहां जो SHGs हैं उनके माध्यम से यहां पूरी व्यवस्था करें और सुचारू रूप से अभी चालू है सारी व्यवस्थाएं।
0: पोषण आहार की सप्लाई उस मध्य प्रदेश में कुछ दिन रुक गई जहां कमजोर जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा रहता है। देश की कमजोर जनजातीय आबादी में लगभग हर चौथा व्यक्ति मध्य प्रदेश में रहता है। वहां अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि उन तक ही पोषण का पूरा आहार समय रहते क्यों नहीं पहुंच पाया।
14: बड़े दुख की बात है कि 19 बच्चों की मौत हो गई। सरकार जवाबदारी नहीं लेना चाहती, ना प्रशासन की मौतों के आंकड़े छुपा रहा है। क्यों छुपाना चाहता है? क्या आपकी नौकरी पे आ जाएगी? क्या उन परिवारों के जो बच्चे शांत हुए उनकी माओ से पूछो, उनकी कोख आपने सुनी करी, और आपकी लापरवाही के कारण उनकी कोख सुनी हुई है।
0: बालाघाट में 19 बच्चों की मौत की जांच ने ये तो साफ कर दिया कि मौतों की मुख्य वजह मलेरिया और मीजल संक्रमण था, लेकिन इस खुलासे के साथ एक और बड़ा सवाल आया। जब खसरे से संक्रमित मिले सभी बच्चे नियमित टीका लगने से छूटे हुए थे और ग्रामीण इलाके में 42% से ज्यादा बच्चे अंडरवेट, तो चुनौती सिर्फ बीमारी का इलाज करने की नहीं बल्कि बीमारी और कुपोषण से पहले बच्चों तक सुरक्षित पोषण आहार पहुंचाने की भी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
5: और अब बात भारत के दुश्मनों को खबरदार करने वाले रक्षा समझौते की। भारत और जापान के बीच आज बड़ा रक्षा समझौता हुआ। इस समझौते में कई खास बातें हैं, लेकिन सबसे अहम बात भारत और जापान का मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़ना। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत की नौसेना न केवल आत्मनिर्भर होगी बल्कि मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा।
0: पहली बार मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़े भारत और जापान। पहली बार भारत आएंगे जापान के लड़ाकू विमान। भारत के थिएटर कमांड में भी मदद करेगा जापान। भारत और जापान के बीच बढ़ता दोस्ताना दुश्मनों को खबरदार कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजो कोइज़ुमी को कोनिचिवा और अरिगातो कहकर विदाई दी है। जिसके जवाब में कोइज़ुमी ने जवाब में नमस्ते कहकर भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों के गहरे रिश्तों का साफ साफ संकेत दे दिया। रक्षा मंत्रियों के बीच दिखी ये गर्मजोशी भारत और जापान के बीच हुए बड़े रक्षा समझौते में भी नजर आती है, जो देश के दुश्मनों के लिए जोरदार झटके से कम नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक में इन दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था संबंधी समझौते को लेकर हस्ताक्षर किए गए।
15: नमस्ते।
0: इसकी जानकारी खुद देश के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर दी है। और लिखा है कि इंडो पैसिफिक में स्थिरता के लिए एक अहम पड़ाव। नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमो के साथ बहुत सार्थक बैठक हुई है। हमारी बातचीत समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया रक्षा तकनीक और रणनीतिक भरोसे को बढ़ाने पर केंद्रित रही है।
15: अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा समझौते में नौसेनाओं के बीच सहयोग, सूचना का आदान प्रदान, खोज और बचाव, मानवीय सहायता, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। लेकिन सबसे अहम बात, भारत और जापान का नौसेना के जहाजों को मिलकर बनाने और डिजाइन करने को लेकर बनती एक राय है। जापान के एडवांस तकनीक और भारत की उत्पादन क्षमता का मेल मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। जापान के मोगामी क्लास फ्रिगेट जैसे आधुनिक जहाजों की तकनीक भारत के लिए उपयोगी हो सकती है। इससे पहले दोनों देशों के बीच नेवल रेडियो एंटीना सिस्टम को मिलकर बनाने का समझौता कर लिया गया था, लेकिन मिलकर नौसैनिक जहाज बनाने का कदम भारत की नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। इनका सीधा असर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के इरादों पर होगा, जो जापान, फिलीपींस जैसे अपने पड़ोसियों को डराने के साथ ही हिंद महासागर में भी अपना शिकंजा कस रहा है। लेकिन इस समुद्री समझौते के बाद दोनों देश हर तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे।
5: रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: The new BE6 Sportec.
2: Papa.
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में
10: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
11: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
10: क्रॉसबॉन सुपर स्ट्रॉन्ग और मॉइस्चर प्रूफ।
11: वारंटी
10: 15 साल की।
11: कदम
10: सर प्लीज
11: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन से ही बनेंगे।
12: क्रॉसबॉन HDMR मैक्स फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
13: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
14: AU
15: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
4: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
5: इट्स द माय वे।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
3: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा, कल के दिन दूसरी सरकार आएगी वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर भारत का बुलडोजर एक्शन दिखाएंगे। अपनी फितरत के अनुसार पाकिस्तान यहां भी अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। ये सब तब हुआ जब ट्रंप के विशेष दूत सर्गियो गौर कश्मीर के दौरे पर थे। उन्होंने श्रीनगर की डल झील में शिकारा की सवारी की, जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया और यहां तक कह दिया कि कश्मीर में अमेरिकी नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा की जाएगी। बस फिर क्या था, पाकिस्तान इस कदर बौखला उठा कि उसने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर अपना रोना रोना शुरू कर दिया। जी हां, मामला यहां तक पहुंच गया। इसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार बीमार इमरान खान को जेल से बाहर इलाज क्यों नहीं कराने देना चाहती। आखिर क्यों वो इस बात पर अड़ गई है कि जेल से इमरान खान को नहीं निकाला जाएगा, और वो भी जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको अस्पताल में भर्ती कराना था, लेकिन पाकिस्तान सरकार उन्हें जेल में ही रोकने के लिए जल्द ही नई याचिका दायर कर सकती है। दरअसल 18 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इमरान खान गंभीर श्रेणी की, मतलब हाई ग्रेड एंग्जाइटी, सीने में दर्द, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, जिसके चलते अदालत ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने, परिवार के तय शर्तों के तहत मिलने की इजाजत दी थी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार अड़ गई है। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर का वो वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर ये पूछा जा रहा है कि क्या ये किसी फिल्म की शूटिंग है। दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ऑन द स्पॉट पट्टी बांधने और कैमरे पर नोट गिनने का ये वीडियो लीक हुआ तो सियासत गर्मा गई। पुलिस भले ही इसे कानूनी प्रक्रिया बता रही हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर एनकाउंटर के बाद सारे सीन तो परफेक्ट मिलते हैं, पर कार्रवाई से पहले का एक्शन कैमरे में कैद क्यों नहीं होता। और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या हमारी नई पीढ़ी सोशल मीडिया के दिखावे के लिए इतनी बेचैन हो चुकी है, अब अपनों का खून करने से भी नहीं हिचकिचा रही है। केरल में एक 13 साल की बच्ची ने सिर्फ आईफोन और रील्स के लिए अपने ही दादा की बेरहमी से हत्या की साजिश रची। तेलंगाना में आरोपों के मुताबिक 10वीं के छात्रों ने पैसों के लिए अपनी ही प्रिंसिपल की हत्या कर दी। तमिलनाडु में आरोपों के मुताबिक एक बेटे ने सिर्फ इसलिए अपनी बीमार मां को ट्रेन से के ट्रैक पर फेंक दिया, अपने बेटे ने अपनी मां को ट्रेन के ट्रैक पर फेंक दिया क्योंकि वो उसका खर्च नहीं उठाना चाहता। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भारत ने पाकिस्तान को बुलडोजर वाली भाषा में क्या समझाने की कोशिश की है। आज दिल्ली में ये पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लगे क्यू लाइन बैरियर, पार्किंग पोल, टिन के ढांचे और स्थाई टेंट्स को, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, हटा दिया गया। ये कार्रवाई खासतौर पर उस इलाके में हुई जहां पाकिस्तान हाई कमीशन ने वीजा सेक्शन के पास इकट्ठा होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ खास इंतजाम किए थे। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी कॉरपोरेशन यानी एनडीएमसी का आरोप है कि ये सारे इंतजाम निर्धारित सीमा से बाहर थे और सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके इन क्यू लाइन बैरियर्स और टिन शेड्स को लगाया गया था। और जानते हैं इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने क्या किया। एनडीएमसी की टीम ने बुलडोजर और जेसीबी मशीन्स पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर खड़ी कर दी और इसके बाद इस अवैध कब्जे को वहां से हटा दिया गया। अब इस खबर के दो पहलू हैं और इन दोनों पहलुओं को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला और औपचारिक पहलू तो यह है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने जिस पर अवैध कब्जा किया था उस जगह को भारत ने बुलडोजर चलाकर खाली करा लिया। लेकिन दूसरा और अनऑफिशियल अनौपचारिक पहलू यह है कि भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब देने की कोशिश की है। 3 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे पार्किंग पोल को वहां के प्रशासन ने हटा दिया था और इस कार्रवाई के पीछे कोई ठोस कारण भी नहीं बताया था। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने यह पहली बार किया है, पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहा है और वहां भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों की जासूसी के आरोप भी हमेशा लगते रहे, ये कोई छिपी हुई बात है नहीं। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ 3 दिन में पाकिस्तान को उसी का खाना वापस उसकी थाली में परोसकर दे दिया। और पाकिस्तान ने तो सिर्फ भारतीय हाई कमीशन के बाहर से पार्किंग पोल्स हटाए थे, भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चलाकर उसे यह बता दिया कि वो टिट फॉर टैट के लिए तैयार रहे और जो भी अवैध निर्माण है कानूनन गलत था
हटा दिया गया। देखिए

ये एक्शन भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान में एक्शन हुआ लगभग 3 दिन पहले, वहां पर पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में जो भारत का दूतावास था वहां से सिक्योरिटी बैरिकेड्स हटाए गए, पार्किंग पोल्स हटाए गए, और उसके लगभग 3 दिन बाद यहां ये एक्शन हुआ है नई दिल्ली में, आप देख सकते हैं।

0: अब इस बुलडोजर एक्शन की टाइमिंग को भी जरा देखिए। ये बुलडोजर उस वक्त चला जब भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौर जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। न सिर्फ दौरे पर थे बल्कि उन्होंने श्रीनगर में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब पहले इस बयान को सुनिए और फिर हम आपको इसके मायने बताएंगे।
1: Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi, but a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward.
0: अब ये बात क्यों अहम है? आखिर सर्गियो गौर को इतना महत्व देने की जरूरत क्या है, वो हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप से सर्गियो गौर का क्या रिश्ता है। वो एम्बेसडर तो है भारत में, लेकिन अब ये बात हमारे लिए कोई नई नहीं है। हम तो हमेशा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। हमने कश्मीर पर कभी भी दूसरे देशों से सर्टिफिकेट लेने की कोशिश की नहीं है। लेकिन यहां सवाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर फिर सिर्फ आतंकवाद का सहारा नहीं लेता, वो कूटनीतिक ढोंग साजिशें रचता है, आतंकवाद फैलाता है। पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति ट्रंप की खूब चापलूसी की, और इस चापलूसी का मकसद यही रहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में भी कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताकर पाकिस्तान इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल कर सके। पहले शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन मुनीर ने अब शहबाज शरीफ को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो तो इंटरनेशनल बूट पॉलिश मास्टर बन गए हैं। सीधे डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए, ये सब बोलने में मुनीर बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन 19 अगस्त को जब सर्गियो गौर जम्मू कश्मीर आए, तब पूरे पाकिस्तान में राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके गुपकार स्थित आवास पर बहुत गर्मजोशी के साथ मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलने पहुंचे। और ये तस्वीरें पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाता कि सर्गियो गौर ने पाकिस्तान को 3 बड़े सरप्राइजेस दे दिए। पहला सरप्राइज, उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। दूसरा सरप्राइज, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी की भी समीक्षा करने की बात कही है। ये लेवल 4 यानी सबसे खतरनाक श्रेणी की वही ट्रैवल एडवाइजरी है जिसके तहत अमेरिका अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर ना जाने की सलाह देता है। और सर्गियो गौर ने पाकिस्तान को तीसरा सरप्राइज भी दिया, और वो इन तस्वीरों से। उन्होंने श्रीनगर की मशहूर डल झील में वहां के पारंपरिक शिकारा की सवारी की। ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर है जो एक बार फिर से पर्यटकों को भी आकर्षित करेगी। आतंकी घटनाओं के बाद कई बार देखा गया कि

पर्यटकों की जो संख्या है उसमें थोड़ी गिरावट आई थी। जानते हैं ये वही डल झील है जिसे लेकर पाकिस्तान ने कई गलत फहमियां पाल कर रखी हैं। साल 1965 का जब युद्ध हुआ तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने कहते थे कि उनकी सेना डल झील में नाश्ता करेगी और कश्मीर पाकिस्तान का हो जाएगा। तो अब देखिए नाश्ता कौन कर रहा है। लेकिन उस वक्त भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह धूल चटाई और अब इसी डल झील में जब सर्गियो गौर ने शिकारा की सवारी की तो पाकिस्तान इन तस्वीरों को सह नहीं पाया। फिर उसने क्या किया है वो बताएंगे, पहले ये देखिए।

जम्मू कश्मीर को लेकर सर्गियो गौड़ ने सच बोला तो पाकिस्तान इस कदर भड़क गया कि जानते हैं उसने क्या किया। उसने इस्लामाबाद में अमेरिका की प्रमुख राजनयिक नैटली ए बेकर को तलब कर खूब कड़ा विरोध जताया है और यह भी कह दिया कि सर्गियो गौड़ ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। हालांकि ये खबर पाकिस्तान का मीडिया गढ़ रहा है और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका को फटकार लगाई हो, जबकि ये बात हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की अपनी हैसियत क्या है, वो अमेरिका से कितना कह सकता है और कितना नहीं कह सकता है सबको पता है। जब शाहबाज शरीफ से लेकर मुनीर अब डोनाल्ड ट्रंप के जूते की पॉलिश कर रहे हैं तो सबको पता है कि वो क्या कह सकता है अमेरिका को। पाकिस्तान की असली परेशानी क्या है जानते हैं? इस बात को अच्छी तरह से वो जानता है कि सर्गियो गौड़ का जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी बयान देना एक संकेत भी है। सर्गियो गौड़ सिर्फ भारत में अमेरिका के राजदूत नहीं है, वो दक्षिण और मध्य एशिया में राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत है, पूरे इलाके में, दक्षिण और मध्य एशिया में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बयान देते हैं तो उसका मतलब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहता। ये बयान कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे पर मौजूदा वक्त में अमेरिका के रुख को भी स्पष्ट करता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर्गियो गौड़ के लिए ऐसा माना जाता है कि वो वही बात कहते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक होती है। राष्ट्रपति ट्रंप उन पर इतना भरोसा करते हैं कि उन्हें मेयर ऑफ मार-ए-लागो कहा जाता है। मार-ए-लागो फ्लोरिडा में मौजूदा राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनका बहुत बड़ा आलिशान बंगला है जहां वो अपनी राजनीतिक बैठकें करते हैं। और सोचिए उस घर के लिए सर्गियो गौड़ को राष्ट्रपति ट्रंप के इस बंगले का मेयर कहा जाता है, मेयर ऑफ मार-ए-लागो। पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने सर्गियो गौड़ को व्हाइट हाउस का ऐसा गेटकीपर बनाया था जिसका काम था राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के लिए ऐसे लोगों को चुनना जो उनके लिए 100% वफादार रहे। उस वक्त सर्गियो गौड़ ने 4,000 लोगों को राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के लिए खुद चुना था। सर्गियो गौड़ की इसी वफादारी और ईमानदारी को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें पूरे दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अपना विशेष दूत बनाया, इसीलिए भेजा क्योंकि वो यहां इस पूरे क्षेत्र में भारत भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। और ये माना जाता है कि सर्गियो गौड़ उनके इतने करीबी हैं कि वो हमेशा हॉटलाइन पर रहते हैं, वो जब चाहे उनको कोई भी जानकारी दे सकते हैं। यही नहीं, जो चुनिंदा लोग राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे संपर्क में रहते हैं, जैसा हमने आपको बताया, सर्गियो गौड़ का नाम सबसे ऊपर आता है और आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। इसी साल 24 मई 2026 को जब दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हुआ था तब मंच पर अपने भाषण के दौरान सर्गियो गौड़ ने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को फोन लगा दिया था। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी वो कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में मंच से सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को फोन मिला चुके हैं। और इसे आप ये भी समझ पाएंगे कि अगर सर्गियो गौड़ ने जम्मू कश्मीर को लेकर यह बयान दिया है तो इसके कई मायने हैं और यही कारण भी है कि इस बयान से पाकिस्तान अभी बुरी तरह बौखलाया हुआ है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे मसूद खान ने कहा है कि सर्गियो गौड़ को जम्मू कश्मीर के इतिहास की सही जानकारी नहीं है और उन्हें जम्मू कश्मीर जाने से पहले अमेरिका की अपनी पुरानी कश्मीर नीति की अच्छी से ब्रीफिंग मिलनी चाहिए थी। सोचे इतिहास की ये बातें वो पाकिस्तान कर रहा है जो कश्मीर के एक हिस्से पर 1947 से अवैध कब्जा करके बैठा है। और जानते हैं कि पाकिस्तान अपने इस प्रोपेगेंडा की पोल खुद ही खोल रहा है। जिस वक्त

0: अगयो गौर जम्मू कश्मीर आए, वो डल झील और परी महल गए, तब उसी दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जन विद्रोह की आग में पूरी तरह सुलग रहा है। अब तो कई दिनों से आप देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। इस वक्त जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने पाकिस्तानी फौज और शहबाज सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है। आंदोलनकारियों के नेता सरदार अमन कश्मीरी ने पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती देते हुए यह कहा है कि वो आसिम मुनीर की सेना से नहीं डरते, मुनीर की सेना पीओके में जितने लोगों का खून बहाएगी उतना ही ये विद्रोह अपने अंजाम तक पहुंचता जाएगा। सुनिए,
1: देखिए लगातार फायरिंग हो रही है, ये देखिए पीछे जाओ लगातार यहाँ पे फायरिंग हो रही है। ये मुजफ्फराबाद की आपको हालत बता रहे हो, पहले आपको दिखाई जा रहे हो, ये पुलिस की टेलिंग बगैरत के बच्चे लगातार फायरिंग कर रहे हैं।
2: नारायण नारायण नारायण कश्मीर,
3: सारों से ये गुजारिश है कि जहाँ जहाँ पे आप मौजूद हैं, इस बर्बरियत के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, इस जारियत के खिलाफ बाहर निकलिए। आप ओवरसीज हैं या रियासत के अंदर मौजूद हैं, जितनी माएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग मौजूद हैं, उन सारे से गुजारिश है बाहर निकलें और इस हुक्मरान तबके को सबक सिखाएं।

0: कितना गिरना चाहती है रियासत पाकिस्तान और कितना गिरना चाहते हैं।
1: पीओके के प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया है कि उसी ने भारत के खिलाफ अलगाववादी आसिया अंद्राबी से नारे लगवाए थे और पाकिस्तान ने ही यासीन मलिक से भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दिलाया। सुनिए,
0: गोली के कानून को मानते हैं, गोली के कानून को मानते हैं, हम इस गोली के कानून को नहीं मानते, हम तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते हैं और जब अगर तुम गोलियों की हुक्मरानी चाहते हो तो फिर आवाम भी गोलियां इकट्ठी करेगी इंशाल्लाह ताला, आवाम भी करेगी इंशाल्लाह ताला, फिर वही कानूनों का जो आप चाहेंगे। 70 साल आपने कश्मीर वैली के अंदर कब्रस्तानों के कब्रस्तान आबाद करवाए, लोगों को 1.5 लाख लोग आपने शहीद करवाए, आसिया इंद्राबी से आपने नारे लगवाए, आज वो उम्र कैद लौट रही है, यासीन मलिक आज हिंदुस्तान की जेल में उम्र कैद लौट रहा है।
1: अब एक बार इन दोनों तस्वीरों को साथ रखकर देखिए और ये समझिए कि पाकिस्तान कैसे खुद एक्सपोज हो रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर है जहां सर्ज गौर निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर चर्चा करते हैं और कश्मीर की खूब तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है जहां असिम मुनीर और उसकी सेना सैकड़ों लोगों का खून बहाती है। लाइव वीडियोज में कैसे लोगों को शूट करके मारा जा रहा है वो आप देख रहे हैं, जनता सड़कों पर निकली है वो आप देख रहे हैं, कई लोग वहां पर लापता बताए जाते हैं। यानी पाकिस्तान के पाप का घड़ा इन तस्वीरों से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। और जानते हैं सर्जो गौर के कश्मीर दौरे को लेकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकायत क्या है? सर्जो गौर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते पहले से जरा मजबूत माने जा रहे हैं, जब पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश की, जब राष्ट्रपति ट्रंप लगातार आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं, लंच पर उनको बुलाते हैं, और जब राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान को यह बात हजम नहीं हो रही है कि आखिर ऐसी परिस्थितियों में सर्जो गौर ने कश्मीर पर उसके प्रोपेगेंडा की पोल कैसे खोल दी। यहां हम इस बात को भी फिर से दोहराना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पर सर्जो गौर का बयान भारत के लिए कूटनीतिक जीत जरूर है, लेकिन अगर यह बयान ना भी आता तो हमारे लिए कश्मीर के मुद्दे पर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। यहां अगर कुछ समझना है तो वो है कश्मीर पर अब तक अमेरिका का रुख कैसे कैसे बदलता रहा है। 1947 के बंटवारे के बाद जब जम्मू कश्मीर को लेकर पहली बार विवाद हुआ और भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर गया, तब अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा दिखा था, और इसके पीछे कारण यह नहीं था कि अमेरिका कश्मीर पर पाकिस्तान के गलत दावों को सही मानता था। इसका कारण यह था कि उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के बीच

कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध चल रहा था और इस शीत युद्ध में अमेरिका को ऐसे देशों की जरूरत थी जो सोवियत संघ के खिलाफ उसके साथ मजबूती से खड़े रहे। और इनमें भी पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जो सोवियत संघ चाइना मिडल ईस्ट के देशों के करीब था। और इसी बात को देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध मजबूत किए और उसे हथियार भी दिए, आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी। और पाकिस्तान जो अमेरिका की तरफ झुक रहा था, इस बीच भारत को माना जाता था कि वो सोवियत संघ के साथ है। अब पाकिस्तान ने भी इस चीज का फायदा उठाया, कश्मीर को अमेरिका की मदद से कूटनीतिक मुद्दा बनाने की खूब कोशिश की। आपने देखा होगा अनेकों प्रोपोगंडा कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिकी मीडिया ने भी चलाए भारत के खिलाफ। साल 1961 में जब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से मिले, तब उन्होंने ये दबाव बनाया कि जॉन एफ कैनेडी भारत को कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार करें। उस वक्त जॉन एफ कैनेडी पाकिस्तान से सहमत भी हो गए और पाकिस्तान और भारत के बीच 6 दौर की बातचीत भी हुई थी। हालांकि इसी दौरान 62 का जंग हुआ, 1962 का भारत चाइना युद्ध हुआ, जिसमें पहली बार अमेरिका ने भारत की मदद की। ये वो मौका था जब अमेरिका ने पाकिस्तान से आगे बढ़कर ये सोचा कि भारत भी उसके लिए जरूरी है। यानी उसके बाद से धीरे धीरे चीजें पलटने लगी और इसके बाद साल 1971 का युद्ध हुआ। और पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद शिमला में भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ कि दोनों ही देश कश्मीर को द्विपक्षीय बायलैटरल इशू मानेंगे और किसी तीसरे का इसमें कोई भी दखल नहीं होगा। उस वक्त धीरे धीरे अमेरिका भी इस समझौते के तहत कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का मुद्दा मानने लगा और समस्या अलग हो गए। लेकिन फिर 1979 जब सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में आई तो एक बार फिर अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। इस बार भी पाकिस्तान ने अमेरिका की जरूरत का फायदा उठाया और उसे कश्मीर के मुद्दे पर कूटनीतिक समर्थन देने की मांग की। यानी पूरी कहानी ऐसी है कि जब जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तब तब अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ दिखाई दिया। साल 1982 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका के दौरे पर गई और इसके बाद दिसंबर महीने में जनरल जियाउल हक ने राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से मुलाकात की। और जानते हैं इस मुलाकात के बाद क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान ने अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत की शुरुआत की। 24 दिसंबर 1982 से 21 मई 1984 तक 4 दौर की बातचीत हुई। लेकिन इसके बाद जब पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर प्रोपेगेंडा करने लगा तो इसी बीच बातचीत रोक दी गई। अब आइए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तमाम देश अलग हो गए, खंड खंड हो गया, रूस अलग हो गया रशिया। तो इस विघटन के बाद जब अमेरिका का पाकिस्तान से मतलब निकल गया, क्योंकि सोवियत संघ का जो पावर था, जो उसकी ताकत थी, वो वैसे ही टूट चुकी थी, तब उसने कश्मीर पर पाकिस्तान की कूटनीतिक चालों का ज्यादा साथ देना बंद कर दिया। उल्टा 1999 के करगिल युद्ध के लिए अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान की आलोचना की और साल 2000 में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने नहीं आए, बल्कि भारत और पाकिस्तान को अपने विवाद खुद ही सुलझाने होंगे। इसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत हुए और अमेरिका ने लगातार कहा कि भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत से अपने मुद्दों का हल निकालें। यानी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को अमेरिका से जो ऑक्सीजन मिलता था वो ऑक्सीजन साल 2000 के बाद बंद हो गया और कश्मीर पर अमेरिका का रुख यही रहा कि ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है। लेकिन 2019 में ये रुख फिर से बदला। इस बार जुलाई 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की और तब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान तैयार हों तो वो कश्मीर पर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करा सकते हैं। अब उस वक्त भारत ने बिना देर के राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान का विरोध किया और सीधा सीधा कहा कि बायलैटरल इशू है। लेकिन जानते हैं अमेरिका इस मुद्दे पर इधर उधर होता रहा है। उदाहरण के लिए इसी साल फरवरी महीने में जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने का ऐलान हुआ, तब अमेरिका के एक विभाग ने भारत का सही नक्शा सोशल मीडिया

पर पोस्ट किया था, लेकिन जब इस पर विवाद हुआ तो अमेरिका ने इस नक्शे को हटा लिया, जबकि यह सही नक्शा था। इसी तरह जून का महीना जब यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदला गया, तब अमेरिका ने भारत का गलत नक्शा अपनी वेबसाइट पर दिखाया और भारत ने उस वक्त इसका विरोध भी किया। संक्षेप में कहें तो कश्मीर पर सर्गियो गौड़ ने जो बात कही वो इससे पहले अमेरिका की तरफ से किसी ना किसी

संक्षेप में कहें तो कश्मीर पर सर्ग्यो गौर ने जो बात कही वो इससे पहले अमेरिका की तरफ से किसी ना किसी तरीके से अगर आप सोचिए तो किसी ने नहीं कही थी। पहली बार डायरेक्ट लाइन उन्होंने बोली है। जुलाई 2018 और जनवरी 2020 में भारत में अमेरिका के राजदूत रहे केनेथ जस्टर लद्दाख और जम्मू कश्मीर गए थे, तब उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही थी। लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जब सर्ग्यो गौर का बतौर अमेरिकी राजदूत पहला स्वतंत्र दौरा हुआ और वो श्रीनगर आए तो उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खैर, इन तमाम घटनाओं के बीच जरा पाकिस्तान में इमरान खान, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर क्या हो रहा है वो बताते हैं, क्योंकि वहां राजनीतिक घमासान मचा है। आज ही शाम को ये खबर आई कि पाकिस्तान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी उस याचिका को वापस ले लिया है जिसमें इमरान खान को इलाज के लिए रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद के एक निजी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का विरोध किया गया था। हालांकि ये याचिका इमरान खान को राहत देने के लिए वापस नहीं ली गई है, इसे इसलिए वापस लिया गया है क्योंकि इसमें कई गलतियां थी। अब पाकिस्तान है और अब संभव है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो इमरान खान को जेल में रखने के लिए एक नई याचिका फिर से दायर कर सकती है। ये याचिका उस फैसले के खिलाफ होगी जिसमें 18 अगस्त को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पर चिंता जताई थी। 1 अगस्त 2026 की इस मेडिकल रिपोर्ट में लिखा था कि इमरान खान इस वक्त गंभीर श्रेणी की एंग्जाइटी, हाई ग्रेड सीरियस ग्रेड एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं जिसके कारण उन्हें बेचैनी होती है, सीने में दर्द होता है, उनको बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। इसी रिपोर्ट में उनकी दिल की धड़कन प्रति मिनट 50 दर्ज हुई थी और ब्लड प्रेशर 140/100 मापा गया था, जो थोड़ा सा ज्यादा है। डॉक्टर्स का कहना था कि इमरान खान को जेल में उनके परिवार और पत्नी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो तनाव और चिंता से घिर गए। और कोर्ट ने इसी वजह से कहा कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इस्लामाबाद भेजे। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर 18 अगस्त को कोर्ट ने ये फैसले दिए और चार बातें कोर्ट ने कही थी। पहला, इमरान खान को 2 दिनों के अंदर अदियाला जेल से निकाला जाए और इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। उन्हें 16 सितंबर की अगली तारीख तक अस्पताल में ही रहने दिया जाए। दूसरा, अदालत ने इमरान खान को हर हफ्ते अपने परिवार से मुलाकात करने की इजाजत भी दी और ये कहा कि इमरान खान लंदन में रहने वाले अपने बेटों से हफ्ते में 2 बार फोन पर बात कर सकते हैं, सुलेमान और कासिम, और ये उनकी 4 बहनें जो हैं और पहली पत्नी जमायमा हो या बुशरा बीबी उनकी मौजूदा पत्नी, उनसे बात करने की इजाजत मिले। तो ये पूरा उनका फैमिली ट्री है जो हमने आपके लिए दिखा दिया है। इन सब से बात करने के लिए भी कोर्ट ने कहा कि उनको इजाजत मिलनी चाहिए। तीसरा, अदालत ने यह शर्त रखी कि अगर परिवार से मुलाकात के दौरान राजनीतिक चर्चा होती है तो इस राहत को खत्म कर दिया जाएगा। और चौथा, कोर्ट ने इमरान खान के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का ऐलान किया जिसमें उनकी बहन उज्मा खान, निजी डॉक्टर फैसल सुल्तान भी शामिल हो सकते हैं। इस फैसले के बाद 19 अगस्त को इमरान खान ने अदियाला जेल में 9 महीने बाद अपने परिवार के लोगों से मुलाकात की और इनमें उनकी पत्नी बुशरा बीबी, बहन नूरीन नियाजी शामिल रहे। ये मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान के बीच 30 से 35 मिनट तक बताया जा रहा बातचीत हुई। और अब जब शहबाज शरीफ की सरकार ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है तब ऐसी उम्मीद बनी है कि इमरान खान जेल से अस्पताल शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि हो सकता है वो नई याचिका दायर करें। अगर ऐसा होता है तो 5 अगस्त 2023 के बाद वो पहले 2023 में जेल में डाला गया था, पहली बार इतने दिनों के बाद वो जेल से बाहर निकलेंगे। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में जब पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे तब उनमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार उन्हीं के समर्थकों से जीते थे और कायदे से शहबाज शरीफ के लिए सरकार बनाना आसान नहीं था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जनरल आसिम मुनीर को शुरुआत में यह टास्क दिया गया कि वो इमरान खान के खिलाफ आपराधिक मुकदमों को दर्ज करना शुरू करें और यहीं से इमरान खान कई मुकदमों में फंसते गए और आज स्थिति यह है कि अगर उन्हें किसी मामले में कोर्ट से जमानत मिल जाती है तब भी वो किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यह यानी अगर आप देखिए तो इमरान खान की लड़ाई इस वक्त शरीफ परिवार से भी है और जनरल आसिम मुनीर से भी है।
शरीफ पर।

0: विस्तार से इसलिए है क्योंकि इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब शहबाज शरीफ को दो बार जेल में भेजा गया था और नवाज शरीफ के खिलाफ नए मुकदमे दर्ज हुए थे, जबकि आसिम मुनीर की इमरान खान से इसलिए दुश्मनी मानी जाती है क्योंकि इमरान खान ने मुनीर को 2018 में ISI का चीफ बनाया था और बाद में जून 2019 में ही इस पद से मुनीर को हटाकर किनारे कर दिया था।
1: अल्लाह का शुक्र है इमरान खान का मुआयना हो जाएगा अस्पताल में और इलाज हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र है। हम शुक्र गुजार हैं अदालत का, इस वक्त जब हम मायूस हो गए थे अल्लाह ताला ने इन लोगों ने हमें इमरान खान को रिलीफ दिया। इमरान खान को
0: यहाँ आपको इमरान खान का ये बयान भी सुनना चाहिए जिसमें अप्रैल 2022 में उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार विदेशी ताकतों की मदद लेकर गिराई गई है और इसके पीछे इमरान खान ने अमेरिका की भूमिका को भी संदिग्ध बताया था। सुनिए,
2: पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी इसमें से बैरून मुल्की इंटरफेरेंस थी। उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का। वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए उसके। उन मिनट्स के अंदर ये चीज कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी।
0: तो इमरान खान के लिए कहा जाता है कि उनकी किस्मत ने अब तक उन्हें दूसरा चांस जरूर दिया है। साल 1987 में जब इमरान खान 35 साल के थे तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट सीरीज हारने के बाद निराश होकर संन्यास की घोषणा कर दी थी। उस वक्त सबको यही लगा कि इमरान खान की कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बाद साल 1988 में वेस्टइंडीज के दौरे से पहले पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने इमरान खान को मिलने के लिए बुलाया और उनसे ये कहा कि अपना संन्यास वापस ले लें। यही वो मौका था जब इमरान खान को उनके क्रिकेट करियर में दूसरा चांस मिला और वो वापस पाकिस्तान की टीम में आए और अपनी कप्तानी में 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को दिलाया था। और पाकिस्तान के कई लोग ऐसा मानते हैं कि क्रिकेट की तरह राजनीति के करियर में भी इमरान खान को दूसरा चांस जरूर मिलेगा, वो जेल से निकलकर सक्रिय राजनीति में जरूर लौटेंगे। खैर, जिस वक्त पाकिस्तान में बदले की ये राजनीति हो रही है तब उसी वक्त सर्गियो गौर जम्मू कश्मीर के बाद अब लद्दाख के लेह भी पहुंच गए हैं, यानी पाकिस्तान के बाद अब चाइना चिंता में है और कारण है लेह से आई सर्गियो गौर की ये तस्वीरें। आज सर्गियो गौर श्रीनगर से लद्दाख के लेह पहुंचे जहां दूरदर्शन के मुताबिक उन्होंने सिंधु और जांस्कर नदियों के संगम पर रिवर राफ्टिंग की है और कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। हालांकि रिवर राफ्टिंग करने की अब तक कोई तस्वीर या सर्गियो गौर की तरफ से बयान वहां से नहीं आया। बड़ी बात यह है कि 2020 में गलवान हिंसा के बाद ये किसी अमेरिकी राजदूत का पहला दौरा है जो लद्दाख के लेह पहुंचे हैं। देखिए,

0: क्या आप जानते हैं पाकिस्तान और चाइना में समानता क्या है? दोनों ही देश भारत के सही नक्शे को नहीं मानते। पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को गलत तरीके से अपने नक्शे में दिखाता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश लद्दाख की सीमा पर विवाद करता है। और आप ये खबरें सुनते रहते होंगे कि चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाकर कई जगहों के नाम भी बदल रहा है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे थाईलैंड और कंबोडिया का सीमा विवाद है और हम चाहते हैं कि आज आप इसे बहुत ध्यान से सुने। 100 साल पहले थाईलैंड देश की को सियाम कहा जाता था, SIAM, जबकि कंबोडिया देश पर फ्रांस का शासन था। अब शुरुआत से ही दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर बहुत विवाद था। 90-100 के दशक में सियाम और फ्रांस शासन, माफ कीजिएगा, 1900 के दशक में सियाम और फ्रांस शासित कंबोडिया के बीच सीमा निर्धारण को लेकर कई समझौते हुए, जिनमें 1904 का समझौता सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसमें तय किया गया कि दोनों देश पहाड़ों की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर वॉटरशेड लाइन के आधार पर एक सीमा रेखा खींचेंगे, और अगर उस वक्त इसी आधार पर सीमा रेखा खींची जाती तो प्रेह विहार मंदिर थाईलैंड के पास जाता। लेकिन 1907 में जब फ्रांस के कुछ अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच नई सीमा रेखा का नक्शा तैयार किया तो उन्होंने पहाड़ों के सबसे ऊंची चोटी पर इसे प्रेह विहार मंदिर के पास से थोड़ा सा घुमा दिया। इससे हुआ ये कि ये मंदिर कंबोडिया के नक्शे में चला गया। अब जब ये नक्शा उस वक्त थाईलैंड को दिया गया तो उसने इस पर आपत्ति नहीं जताई। करीब 50 सालों तक थाईलैंड ने कभी भी इस नक्शे पर एतराज नहीं जताया। और जब इस मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध हुआ और थाईलैंड ने इस पर कब्जा कर लिया, तब कंबोडिया इस मामले को यूएन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर पहुंच गया। कोर्ट में सुनवाई हुई तो कंबोडिया ने यही बात उठाई कि अगर नक्शा गलत था और ये प्रे विहार मंदिर थाईलैंड को मिलना चाहिए था तो उसने गलत नक्शे पर आपत्ति क्यों नहीं जताई इतने सालों तक। इस सवाल का थाईलैंड के पास कोई जवाब नहीं था और यही बात उसके खिलाफ गई और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सिर्फ इसी आधार पर इस मंदिर को कंबोडिया का मान लिया। इसी फैसले के बाद दुनिया में कई देश अपने नक्शे को लेकर सजग हुए और आज भी अगर चाइना गलत तरीके से अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाता है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा करके अपना कानूनी पक्ष मजबूत करना चाहता है। जबकि भारत भी बिना देर किए चाइना की इस हरकत का कड़ा विरोध करता है, क्योंकि हम मानते हैं कि गलत नक्शे को स्वीकार करके थाईलैंड ने क्या कीमत चुकाई। खैर, जब चाइना और उसके साथ सीमा विवाद को लेकर ये बातें हो रही हैं, तब हम आपको अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से आया एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो एक बच्ची का है जो खुद को चाइनीज या चीनी ये कहने पर नाराजगी जताती है। ये कहती है कि वो इंडियन है, इंडिया से है, और उसे चाइनीज ना कहा जाए। आप एक बार इस बच्ची को की तकलीफ को सुनिए और इसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं उनके लोगों को कभी चाइनीज कभी नेपाली कहने वाले इस सोच का विश्लेषण करेंगे। पहले देखिए।
1: हेलो गाइस, हमको एक आदमी ना हम कैसे बोले एक आप चाइनीज से कैसे बोले, मेरा वो इंडिया है, हम भी इंडिया है, आप लोग कैसे मत बोलो, हम लोग इंडिया है, आप हम लोग को चाइनीज बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, प्लीज हमको ऐसे मत बोलो, हम बहुत दुखी होगा, तो हमको इंडिया बोलो, इंडिया हमको चाइनीज मत बोलो, हम बहुत दुखी लगते चाइनीज बोलने से, हम इंडिया का है, हम ईटानगर में बैठते हैं, तो आप लोग ऐसे मत बोलो प्लीज। बाय बाय।
0: बोला है बच्चे ने। आज बड़ा सवाल यह है कि कब तक नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस तरह से हम चाइनीज मोमो नेपाली ऐसे शब्द बोलेंगे। इस बच्ची का यह कहना कि मुझे इंडियन बोलो, यह बताता है कि आज इस बच्ची को अपने ही देश में अपने भारतीय पहचान साबित करनी पड़ रही है, जबकि उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। भारत में भारतीय होने का कोई एक चेहरा नहीं है। अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अगर आप देखिए तो अलग अलग जगहों की अलग चेहरे पहचान, मतलब कई बार आप चेहरे से किस राज्य से लोग हैं वो बता सकते हैं, थोड़ी सी बस मेहनत करने की जरूरत है। दक्षिण हो, उत्तर भारत हो, कश्मीर हो, और इसी में हम आगे बढ़ते हुए अब आपको बताना चाहते हैं कि कौन कैसा दिखता है, इससे भारतीयता कम नहीं होती है। खासकर अरुणाचल जैसे सीमावर्ती राज्य में जहां खुद चाइना दावा करता है, वहां बच्ची को ये बताना पड़ रहा है कि हम इंडियन हैं, हमको इंडिया मानो, हमको ऐसे मत बोलो, बुरा लगता है। ये जो नस्लीय रूढ़िवादी यानी रेशियल स्टीरियोटाइपिंग का कड़वा सच है, उसकी पोल खोल दी इस बच्ची ने। कई बार जो लोग नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों के लिए अलग अलग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नस्लीय शब्द कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बहुत गलत है, लेकिन हकीकत में ये मजाक एक कैजुअल रेसिज्म है। कैजुअल रेसिज्म मतलब आपको लगता है कि जैसे मैं कोई गुनाह तो कर नहीं रहा, मैंने ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया। ऐसे वाले लोग भी हैं इस देश में, वो ऐसी गंभीर नस्लीय टिप्पणी कर देते हैं, फिर हंसते भी हैं और ये सोचते हैं कि उन्होंने क्या गलत कर दिया। नॉर्थ ईस्ट के राज्य अपने देश के लिए इतना कुछ करते हैं, घोर अपमान है इस तरह के शब्दों का, और वो भी चाइनीज जैसे शब्द बोलना। कच्चे तेल गैस के उत्पादन से लेकर देश के घर घर में पी जाने वाली चाय का आधे से ज्यादा उत्पादन इन्हीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से आता है। धरोहर है ये भारत के लिए, लेकिन कुछ लोग इन्हीं राज्यों के लोगों के चेहरे की बनावट पर उन्हें क्या कहते हैं और यही पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं और वहां के इटावा से आया ये वीडियो दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि ये पुलिस की रियल शूटिंग यानी गोलीबारी है या फिर किसी फिल्म की शूटिंग। ये ऐसा वीडियो है जिसने पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष को भी सियासत का मौका दिया है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो के जरिए सरकार पर तंज कसा है। इस वीडियो की लोकेशन है इटावा, जहां भरथना इलाके की एक सुनसान कच्ची पक्की सड़क पर ऐसा लग रहा है कि दो खेतों के बीच किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। जमीन पर एक शख्स बेसुध लेटा हुआ है, उसके दाहिने पैर पर एक पुलिस वाला बड़ी शालीनता से सफेद पट्टी बांध रहा है। सामने दूसरा खाकीधारी मोबाइल थामे इसे रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरामैन एंगल सेट करता है, सीनियर अधिकारी अपने मातहत को फ्रेम से हटने का इशारा करता है ताकि जमीन पर पड़े कट्टे का क्लोजअप शॉट मिस ना हो जाए। लेटा हुआ अभियुक्त भी कमाल का कलाकार है, बिना किसी रीटेक के बेहतरीन एक्सप्रेशन दे रहा है। जैसे ही पट्टी बनती है, पुलिसकर्मी उसका हाथ पकड़कर उसे सहलाते हुए उठाता है और बाद में शुरू होता है ऑन द स्पॉट पूछताछ का सिलसिला, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि थाने तक पहुंचते पहुंचते चार्जशीट पर साइन भी हो जाएगा। देखिए,
2: क्या नाम है?
3: मुकेश यादव।
2: मुकेश
3: जी सर।
2: पिताजी का?
3: रामनेश यादव। रामनेश यादव।
2: क्या हुआ था चनेटी में?
3: मर्डर हुआ सर।
2: किसका? किसका?
3: वो दो लड़के, दो लेडीज का।
2: हाँ। और इधर दिखा भाई, इधर दिखा। ये तो अंचा तुम्हारा है?
3: जी सर।
2: हाँ
3: जी सर।
2: इसमें क्या है? मोबाइल किसकी है? तुम्हारी?
3: जी सर।
2: ले चलो। पैसा है? कितना है? खड़ी करो तो। कितना रुपया है ये?
3: 2.5 लाख होगा सर, उसमें खर्च हो गया कुछ।
2: कितना खर्च हुआ होगा? कितना होगा?
3: 10-15 लाख खर्च हुए होंगे सर।
2: बाकी होंगे अभी गिनवा लेते हैं। क्या करने से किया था? वहाँ तो गांव वाले देखे भी होंगे।
3: हाँ सर।
0: इसी पुलिस या शूटिंग के पीछे की असल कहानी दोहरे मर्डर से जुड़ी है। 17 अगस्त को भरथना के चंदेठी गांव में 55 साल की मां और 38 साल की बेटी का मर्डर हुआ था। इस मर्डर के पीछे बेटी का अपने पति से विवाद था। अदालत ने जब गुजारा भत्ता का आदेश दिया तो पति सत्येंद्र यादव ने अपने एक रिश्तेदार मुकेश यादव के साथ मिलकर अपनी पत्नी और सास की हत्या की साजिश रच डाली। इसके बाद पुलिस ने SOG और सर्विलेंस टीम की मदद से मुख्य आरोपी मुकेश यादव को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक लाल रंग की स्कूटी पर भाग रहे मुकेश ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में यूपी पुलिस का वही पारंपरिक निशाना सीधे उसके दाहिने पैर पर जा लगा, ठीक वैसे ही जैसे राज्य के सैकड़ों अपराधियों के पैरों में लगता है। लेकिन असली तमाशा इसके बाद शुरू हुआ और फिर देखिए कैसे ये मामला बढ़ा। जिक्र भी उसमें है, तो अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं कि पुलिस ने असली तमाशा शुरू हुआ क्योंकि पुलिस ने मौके पर ही घायल आरोपी की जेब से कारतूस निकाले, स्कूटी की डिक्की और सीट के नीचे पॉलिथीन में रख के 2,31,000 रुपए निकाल कर कैमरे के सामने गिने। सोचिए, ये पूरा गोपनीय वीडियो इंटरनेट पर फिर लीक हो गया, जिसके बाद इसने सोशल मीडिया पर हास्य और कटाक्ष शुरू कर दिए। अब अखिलेश यादव ने इस पर एक्स पर पोस्ट किया है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर तंज कसा है। अमेरिका के टेक्सास में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि टेक्सास में शरिया शहर बसाए जा रहे हैं जो अमेरिकी सभ्यता को खतरे में डाल रहे हैं। अब स्थिति यह है कि टेक्सास में मुस्लिम्स को बसाए जाने का विरोध शुरू हो गया है जो अमेरिका की राजनीति पर गहरा असर डालने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने टेक्सास में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया पर एक रिपोर्ट छापी है जिसके मुताबिक इस अमेरिकी राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी, मस्जिदें, शरिया नियम, मुस्लिम्स के लिए बसाए जा रहे रिहायशी इलाके स्थानीय अमेरिकियों के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि मुस्लिम्स के लिए अलग इलाके बसाने से कुछ ऐसे छोटे छोटे शहर बन जाएंगे जहां शरिया कानून चलेगा और आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए ये शरिया शहर मुसीबत की वजह बनेंगे। उदाहरण के तौर पर टेक्सास के डैलस में एपिक सिटी नाम से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। ये रिहायशी प्रोजेक्ट खासतौर से मुस्लिम्स को ध्यान में रखकर तैयार करवाया जा रहा है। 400 एकड़ में फैले इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में करीब 20,000 मुस्लिम्स को बसाए जाने की योजना है। यहां मुस्लिम्स के लिए घर के अलावा बड़ी मस्जिदें हैं, मदरसे सब बनाए जा रहे हैं। अब आरोप यह लग रहा है कि साजिश के तहत ये किया जा रहा है जिससे आगे चलकर इन इलाकों में शरिया कानून लागू होने लगेंगे। टेक्सास को रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी रिपब्लिकन पार्टी की मूल विचारधारा अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने, कट्टर इस्लाम का विरोध करने की रही है। पिछले कुछ समय में यह मुद्दा कमजोर हुआ है और यही वजह है कि टेक्सास में मुस्लिम्स की बढ़ती आबादी को अब सांस्कृतिक खतरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। टेक्सास के कई रिपब्लिकन नेताओं ने मुस्लिम्स के लिए बनाई जा रही एपिक सिटी को शरिया सिटी कहना शुरू कर दिया है और स्थानीय लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका में अभी करीब 45,00,000 मुस्लिम रहते हैं। इस्लाम यहाँ का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। पहले नंबर पर ईसाई है जिनकी आबादी लगभग 21 करोड़ है। दूसरे नंबर पर यहूदी है जिनकी आबादी 58,00,000 है। मुस्लिम आबादी के हिसाब से टेक्सास अमेरिका में 5वें नंबर पर आता है। यहाँ 3,13,000 मुस्लिम रहते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर न्यूयॉर्क शहर है, 7,24,000 मुस्लिम रहते हैं। दूसरे पर कैलिफोर्निया है जहां करीब 5,00,000। तीसरे पर है इलिनॉय जहां पर करीब 4,70,000 और चौथे नंबर पर न्यू जर्सी है जहां 3,21,000 मुस्लिम्स रहते हैं। अब प्यू रिसर्च सेंटर का यह कहना है, उनका यह अनुमान है कि साल 2050 तक अमेरिका में मुस्लिम्स की संख्या करीब 51,00,000 पहुंच जाएगी और ऐसा होने पर इस्लाम अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। मुस्लिम्स की बढ़ती आबादी को लेकर जो विचार पनपने लगे हैं वो अमेरिकी राजनीति में एक नई चिंगारी सुलगाने जैसा है। आप सोचिए कि जिस टेक्सास में मुस्लिम्स की आबादी वहां की कुल आबादी की 1-2% थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बढ़ती मुस्लिम आबादी, शरिया नियमों का पालन चिंता बन गई है। इसे अमेरिकी नागरिकों के लिए खतरे के तौर पर पेश किया जाने लगा है। स्थिति यह है कि टेक्सास अमेरिका का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी स्कूलों में बाइबल पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। कई नेताओं ने तो भाषणों में यह कहना शुरू कर दिया है कि टेक्सास जल्दी ही यूरोप बन जाएगा जहां मुस्लिम आबादी मुसीबत बन गई है। लोग मांग कर रहे हैं कि कानून को सख्त बनाकर शादी, तलाक, शरिया से जुड़ी इस्लामिक प्रथाओं को खत्म कर दिया जाए। मुस्लिम्स की बढ़ती आबादी, अलग अलग शहर बसाने की खबरें और शरिया शहर जैसे शब्द रिपब्लिकन पार्टी का एक नए तरह का राजनीतिक मुद्दा है और इस साल अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है तो आप समझ रहे होंगे। 3 नवंबर 2026 को तो टेक्सास में गवर्नर, यूएस सेनेट के चुनाव है। इसके अलावा राज्य में यूएस हाउस और रिप्रेजेंटेटिव्स की 38 सीटों पर, राज्य विधानसभा की चुनाव वाली सीटों पर वोटिंग होनी है और इसीलिए माना जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता टेक्सास में मुस्लिम आबादी को सांस्कृतिक खतरा मान रही जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगे। खबर सोशल मीडिया में आए उस तूफान से जुड़ी है जो सिर्फ एक मिनट में इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब पर लगभग 90,000 पोस्ट कर देता है। बताइए अंजना 2.0। बिल्कुल अंजना, जब घड़ी की सुई एक मिनट चलती है तो आपने कभी सोचा है कि भारत डिजिटल दुनिया में क्या गुल खिलाता है? लोकल आईक्यू के आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो भारत के लोग सिर्फ ऑनलाइन रहते नहीं है बल्कि यहाँ जमकर कॉन्टेंट जनरेट कर रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि भारत में हर 60 सेकेंड में फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स को मिलाकर करीब 90,000 पोस्ट जनरेट हो जाते हैं। जरा ठहरिए और सोचिए, इन 90,000 पोस्ट में सिर्फ क्लिक नहीं होता, इसके पीछे लोगों का बेशकीमती वक्त और मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। फेसबुक पर एक मिनट में 66,000 स्टेटस और तस्वीरें अपलोड होती हैं। जरा सोचिए, उन तस्वीरों को क्लिक करना, फिल्टर चुनना, कैप्शन सोचना और फिर अपलोड करना, इसमें कितना वक्त लगता होगा। एक्स पर हर मिनट अपलोड होने वाले 14,500

0: होती है। फेसबुक पर एक मिनट में 66,000 स्टेटस और तस्वीरें अपलोड होती हैं। जरा सोचिए, उन तस्वीरों को क्लिक करना, फिल्टर चुनना, कैप्शन सोचना और फिर अपलोड करना, इसमें कितना वक्त लगता होगा। एक्स पर हर मिनट अपलोड होने वाले 14,500 पोस्ट ऐसे ही थोड़ी टाइप हो जाते हैं। इसके पीछे सोच विचार, बहस और टाइपिंग, और इंस्टाग्राम की तो बात ही मत पूछिए, हर मिनट 8,200 नई तस्वीरें।
1: वो नकल वाला
2: एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
3: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: आगे आगे
4: करेक्ट
3: करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
7: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
8: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
7: क्रॉसबॉन सुपर स्ट्रॉन्ग।
8: सुपर स्ट्रॉन्ग
7: और मॉइस्चर प्रूफ।
8: वारंटी
7: 15 साल की।
8: कदम
7: सर प्लीज
8: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन से ही बनेंगे।
9: क्रॉसबॉन डीजीएमआर मैक्स, फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।

0: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
1: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
2: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
3: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
1: मतलब
3: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
2: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
3: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इन एसोसिएशन विद हिंट बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

0: विमल बोलो जुबां केसरी।
1: इस तरह का कोई भी कृत्य वो गैर कानूनी भी है, कानून के तहत कार्रवाई करने के योग्य भी है। इस तरह की गतिविधियां हरकतें अगर कोई करता है और पार्टी किसी नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, ऐसे पार्टी के मुखिया की उपस्थिति में अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति और देश के मानबिंदुओं के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, उनकी कितनी आस्था है, उनकी कितना उनके मन में पवित्रता का भाव है, देश के सामने प्रकट हो जाता है।
2: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। नहीं मैंने पहले भी नहीं गाया, अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. और कभी चाल, कभी मकसद, कभी मंसूबे यार होते हैं. इस दौर में नमस्कार के भी मतलब हजार होते हैं. नमस्कार. देखते रहिए आज तक.
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स. भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स टंकी मतलब वेक्टर. Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

0: वंदे मातरम के छंद पर राजनीतिक प्रचंड, शाह ने बताया देश विरोधी, कहा मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति, इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। पीएम मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष को सेलिब्रेट करेगी बीजेपी, सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम, जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से स्वास्थ्य तक के कार्यक्रम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर कोर्ट का हथौड़ा, झारखंड सरकार हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के निर्णय पर लगाई रोक, 11वीं 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर, संघ ने भी किया मंथन, संसद मार्च के दौरान अधिक बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। और लखनऊ में दिन दहाड़े आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजर समेत दो महिलाओं की हत्या, बहन पत्नी को गोली मारने के बाद व्यक्ति ने की आत्महत्या, चल रहा था तलाक का केस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर। आप देख रहे हैं दस्तक, और आज दस्तक में बात जेंजी है तो संभव है, मुमकिन है। जब से जेंजी ने जंतर मंतर से अपनी पावर दिखाई, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जेंजी की तरफ घूम गया। नई पीढ़ी ने सरकारों और राजनीतिक दलों की राजनीति का फॉर्मूला बदल दिया है। 2027 में हमारे देश में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो 2029 का लोकसभा चुनाव का रास्ता भी युवा पीढ़ी की सीढ़ी से सत्ता तक जाता है। जब राहुल गांधी छात्रों की गूंज से जेंजी को अपने पाले में खींचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में मोदी सरकार ने भी अब जेंजी को साधने का नया प्लान बना लिया है। जहां मोदी सरकार ने जेंजी से जुड़ने के लिए वन डे वन यूनिवर्सिटी, यानी कि रोज एक यूनिवर्सिटी में एक केंद्रीय मंत्री को भेजने की योजना बना ली है। ये मंत्री छात्रों से उनकी चिंताओं पर बात करेंगे और देश से जुड़े मुद्दों पर छात्रों का दृष्टिकोण समझेंगे। तो आइए दिखाएं आपको, जेंजी है जहां पावर है वहां।
1: जेंजी से सरकार करेगी बात, वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान। छात्रों की गूंज की राजनीति, मोदी सरकार बना रही है नई नीति। कैसे जेंजी को लुभाने में लगा देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। जंतर मंतर से युवा पीढ़ी ने दिखाया दम, जेन जी है तो मुमकिन है। जेन जी साथ आएगा तो चुनाव जिताएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर जेन जी के आंदोलन ने पावर सिस्टम को हिला दिया। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया, तो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेन जी के आंदोलन ने हेमंत सरकार को झुका दिया। और अब बिहार की राजधानी पटना में भी नौजवान शिक्षक भर्ती के लिए धरने पर बैठे हैं। ऐसे में जेन जी को लेकर सरकारों और सियासी पार्टियों के कान खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी इंस्टा से लेकर अलग अलग कार्यक्रमों में जेन जी को साधने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 15 अगस्त पर लाल किले से पीएम मोदी ने युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया।
2: गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: तो आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह से देश के युवाओं को संबोधित किया।
3: जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए।
1: और मोदी सरकार ने जेन जी से जुड़ने के लिए नया प्लान बनाया है। मोदी सरकार वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान की योजना बना रही है, जिसके तहत रोज एक यूनिवर्सिटी में एक केंद्रीय मंत्री जाकर छात्रों से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वो छात्रों की राय सुनेंगे और खासकर युवाओं और छात्रों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य स्तर के विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। किस मंत्री को कब और किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का ये दौरा दिन भर का होगा, जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे।
4: पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेंजी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चलाने की बात की है, यानी कि अब सभी मंत्रियों को एक दिन यूनिवर्सिटी में बिताना होगा, छात्रों से सीधा संवाद करना होगा, उनकी मांगों, उनकी जरूरतों, उनकी परेशानियों को सुनना होगा, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना होगा और सरकार के कामकाज का फीडबैक लेना होगा।
1: जेंजी से कनेक्शन बढ़ाने के लिए पीएम मोदी बेहद गंभीर हैं, और इसीलिए मंत्रियों को जेंजी से सीधा संवाद करने के लिए कहा जा रहा है। मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग के अंदर मंत्रियों का सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड रखा गया, जिसमें मंत्रियों के सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था। खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए थे। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आकी गई, उसमें ये था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल कितनी एंगेजमेंट हुई, यानी मंत्री के प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं कामयाबी को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है।
0: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की अगुवाई में जेन जी का जोश और आक्रोश आपने हमारे पूरे देश ने देखा, और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को जेन जी में संजीवनी नजर आने लगी। अब कांग्रेस को यह लगता है कि अगले चुनाव में जेन जी का साथ और साथ लेकर वो बाजी पलट सकती है। जेन जी को लुभाने के लिए कांग्रेस 800 शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाएगी। आइए दिखाएं आपको जेन जी को लेकर कांग्रेस का क्या है पूरा प्लान।
1: मोदी सरकार जेन जी से कनेक्ट होने का ये नया प्लान बना रही है, तो कांग्रेस और राहुल गांधी एक तरफ तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए जेन जी को अपने पाले में खींचने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं।
5: क्या आपको सचमुच में दिखाई दे रहा है कि आप कर क्या रहे हो? मगर वो तो है, बट ये पिंजड़ा है।
6: और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा, और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय था, युवाओं को लेकर इस पर काफी लंबी चर्चा हुई, और राहुल जी ने और खड़गे जी ने हमारे चार मुख्यमंत्री को कहा है कि अगले एक महीने के अंदर अपने राज्यों में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार की जरूरत है, जो आज का माहौल को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को वो पेश करेंगे।
1: आपको बता दें कि आने वाले शनिवार यानी 22 अगस्त को एक बार फिर राहुल गांधी महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेसी संस्थानों के बच्चों से राहुल का मोनोलॉग है।
7: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है, अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता। अभी पूना और पूना के आसपास जितने कांग्रेसियों की संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, उन संस्थाओं की ही लड़कियों को रजिस्टर करना, इस प्रकार का आदेश दिया गया है।
1: दूसरी तरफ हर कार्यक्रम में जेन जी को उनकी ताकत याद दिला रहे हैं और मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान पर अटैक किया है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने उन बच्चों को माफ कर दिया जिन्होंने उनको अपशब्द कहे थे।
8: मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
9: When Mr. Narendra Modi says, I forgive the students. Yeah, please, I forgive you. Meaning what? You are a bunch of jokers. I am very smart. I know everything. You don't understand everything. And I forgive you. Then suddenly they got scared. And Mohan Bhagwatji says, No, we should not attack the students. You are attacking the students every day because you believe you know the truth. If a student comes to me, in my mind, he knows or she knows her truth better than I will ever know their truth. My job is to listen to it. My job is to appreciate it. My job is to try and understand it. But I don't know it. I will never know it. That is really the political fight that is taking place. इसको देखते रहते हैं।
1: इस बीच राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में जेन जी को स्मार्टफोन को लेकर भी हिदायत दी है और बताया कि स्मार्टफोन 21वीं सदी का पिंजरा है।
9: जू गए हो आप? जू में जानवरों को केज में डाल दिया जाता है। उसी जानवर को अगर आप जंगल में देखो तो स्व पर राज करता है, राइट? शेर को आप, शेर अपने स्व पर राज करता है और वही शेर जू में कोलैप्स कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से काट दिया है। तो हमारे स्टूडेंट्स 24 घंटा इसको देखते रहते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपको जू में बंद कर दिया गया है, ये पिंजरा है। मगर वो तो है, बट ये पिंजरा है, ये 21वीं सदी का, और इसकी जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है, ये आपको बहुत इंफॉर्मेशन देता है, बिजनेस में आपको फायदा देगा, कम्युनिकेशन में फायदा देगा, मगर स्व पे राज नहीं करवाएगा।
1: सियासत की सजगता और सरकारों की सतर्कता हिंदुस्तान की नई पीढ़ी की चिंताओं और मुद्दों को कितना दूर करती है, ये देखने की बात होगी, क्योंकि जेन जी और जेन अल्फा सियासत को भी अच्छे से परख रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे योगी सरकार और समाजवादी पार्टी भी जेन जी और जेन अल्फा को साधने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक रहे हैं। योगी जहां जाते हैं युवा पीढ़ी जेन जी और उनके लिए योजनाओं की बात करते हैं, और अब योगी सरकार ने जेन अल्फा के मुद्दों को लेकर अधिकारियों को सतर्क कर दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी जेन जी को साधने के लिए अपना एक नया प्लान तैयार कर लिया है। आइए दिखाएं आपको जेन जी जेन अल्फा कैसे राजनीतिक दलों की अब बन गए हैं मजबूरी।
1: के यूपी विधानसभा चुनाव में अब करीब 5 महीने का वक्त रह गया है, और जिस तरह से जेन जी और जेन अल्फा ने अपनी ताकत दिखाई है, सीएम योगी का पूरा फोकस युवा पीढ़ी की तरफ घूम गया है।
10: उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज घोषणा करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी।
11: जब से बच्चों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना शुरू किया है, बीजेपी के लोग

0: घबरा गए हैं, घबराए हुए हैं, जो सरकार बच्चों से घबरा जाए और 10 साल में उनके पास कुछ काम करने का ना हो, रिकॉर्ड ना हो उनको बताने का, ये सरकार जाने वाली है।
1: जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में हुए प्रदर्शनों को गंभीरता से लिया है। चीफ सेक्रेटरी ने शिक्षकों की कमी और दूसरी प्रशासनिक खामियों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा, तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी उन्हें फौरन दूर करने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट से मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को भी कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने तय की है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों और अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में मिड डे मील, किचन, ब्लैक बोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉक वार निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार जेन जी और जेन अल्फा को साधने में जुट गई है तो 2027 के चुनाव में जेन जी को साथ लाने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी नया प्लान तैयार किया है। समाजवादी पार्टी पारंपरिक वोटरों के साथ अब जेन जी को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए पार्टी की ओर से जेन जी संवाद आयोजित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और सपा के आधिकारिक हैंडल से एआई जनरेटेड वीडियो और ग्राफिक साझा किए जा रहे हैं। पार्टी के राजनीतिक संदेश, नीतियां और उपलब्धियां एआई आधारित छोटे और प्रभावशाली वीडियो के जरिए युवाओं तक पहुंचाई जा रही है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय युवा वर्ग पारंपरिक भाषणों और पोस्टरों की तुलना में शॉर्ट वीडियो और विजुअल कंटेंट से ज्यादा जुड़ता है। आपको बता दें कि यूपी में करीब 21% वोटर 18 से 29 वर्ष की उम्र के हैं, जिन्हें साधने पर समाजवादी पार्टी का खास फोकस है।
2: आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था, ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं। आपके हितों के लिए जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया।
3: समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे।
1: चुनाव में वक्त कम है, लिहाजा योगी का मिशन जेन जी फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। कई मोर्चों पर युवाओं को साधने की कोशिशें जारी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक नई युवा नीति का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। योगी के मंत्री को अपने अपने क्षेत्र में जेन जी के साथ चौपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन की तरफ से स्कूल कॉलेजों में छात्रों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। हर विधानसभा सीट पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं से संवाद करेगी स्पेशल टीम। आला अफसरों को छात्रों से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान निकालने का आदेश। आपको बता दें कि भारत में जेन जी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है। ऐसे में जेन जी को साधना सियासी पार्टियों की जरूरत और मजबूरी दोनों बन गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वंदे मातरम के सभी स्टैंजा गाने का विवाद आज और गहरा गया। कांग्रेस कार्य समिति में पहले की तरह सिर्फ दो पद यानी कि दो स्टैंजा गाने के निर्णय के बाद आज बीजेपी ने कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर दी। कांग्रेस पर निशाना साधने की अगुवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। अमित शाह ने कहा कि 1937 की ऐतिहासिक गलती को मोदी सरकार ने सुधारा है, लेकिन तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस संसद का कानून

0: कर रही है। आइए दिखाएं आपको कैसे वंदे मातरम एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है।
1: संपूर्ण वंदे मातरम इस राष्ट्र का स्वर है। इस भावना के साथ बने संसद के कानून और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बावजूद कांग्रेस पहले की तरह सिर्फ दो पदों के गायन पर अड़ गई है। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुए विवाद के बाद पार्टी की वर्किंग कमेटी ने जब अपना निर्णय दोहराया तो जोरदार पलटवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा न गाने का फैसला हैरान करने वाला और देश विरोधी है।
2: कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
1: वैसे ये महत्वपूर्ण है कि 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था। तब राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा, मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ सांसद मौजूद थे और उन्होंने वंदे मातरम का सामूहिक पाठ किया था। लेकिन पहले 15 अगस्त पर कांग्रेस मुख्यालय पर संपूर्ण वंदे मातरम बजने पर सोनिया गांधी कुछ निर्देश देती नजर आईं। उसी दिन केरल सरकार के आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम का गायन ही नहीं हुआ। हालांकि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारों ने 15 अगस्त के आधिकारिक कार्यक्रमों में संपूर्ण वंदे मातरम का पाठ किया, जबकि 17 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी। फिर CWC में बाकायदा चर्चा के बाद निर्णय सुनाया गया।
3: 1937 का रेसोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट व्हाट एवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबाइड दैट डिसीजंस। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First two chance था।
1: वंदे मातरम पर कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। उसकी कार्य समिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल पहले दो छंद ही गाए जाएंगे। जब कुछ दिन पूर्व यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था तब कांग्रेस ने उसे सहयोग बताकर टाल दिया था। आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन चुका है। कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप है कि राहुल गांधी जी जिन्ना के असली वारिस हैं।
4: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
1: बीजेपी के इस हमले के जवाब में कांग्रेस का पलटवार भी तैयार है।
5: आपने पास कर दिया, संख्या बल आपके पास है, आप मेरे अधिकार से मुझे कैसे वंचित कर दोगे? मेरा अधिकार है कि मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं जो मुझे संविधान ने दिया है। मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने राष्ट्रगान,
6: कांग्रेस पार्टी और पूरा

0: जीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया, इन्होंने राष्ट्रगान।
1: कांग्रेस पार्टी और पूरा देश मानती है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, महात्मा गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, मौलाना आजाद जी को, आचार्य नरेंद्र देव जी को, पुरुषोत्तम टंडन जी को, ये जितने भी लोग 1937 के CWC मीटिंग में मौजूद थे और ये फैसला लिया गया था कि दो स्टैंजा गाया जाएगा, ये देश को यूनाइट करने वाला है और दो गाया जाएगा, उस स्टैंड पे कांग्रेस पार्टी कायम है। बयानबाजी हो रही है अमित शाह जी के द्वारा या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, ये सिर्फ डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं।
2: वंदे मातरम पर दोनों ओर से खिंची तलवारें बता रही हैं कि इस पर सियासत अभी रुकने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो।
3: दशक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के हाथ से पीओके तो गया। आप देखते रहिए दशक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: आगे आगे
7: उधर
6: करेक्ट करेक्ट
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: The new BE6 Sportec.
1: Papa.
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
1: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ, ओले ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
3: वो अभी तो चार्ज हुआ यार।
4: ओले बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते है। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: बिजली का बिल पेड,
14: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
15: कैसे?
14: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
15: इतना माही वे।

0: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
1: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
2: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता है।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: EMI पर मोबाइल या लैपटॉप खरीदना आजकल आम बात हो गई है, लेकिन कभी कभी EMI डिफॉल्ट करते ही ग्राहकों को फोन लॉक होने या डिवाइस के फीचर बंद होने का डर सताने लगता है। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने डिवाइस फाइनेंसिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत लोन पर खरीदे गए मोबाइल और लैपटॉप को तुरंत लॉक नहीं किया जा सकेगा। डिवाइस फाइनेंसिंग से जुड़े नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इसके बाद लोन पर खरीदे गए मोबाइल या लैपटॉप को तुरंत लॉक नहीं किया जा सकेगा। दरअसल RBI ने डिवाइस डिसेबल करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया तय की है, जिसमें ग्राहकों की प्राइवेसी और अधिकारों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि डिवाइस लॉकिंग का इस्तेमाल रिकवरी के दबाव के तौर पर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से बैंक और फाइनेंस कंपनियों के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। डिफॉल्ट के बाद पहले 30 दिन तक डिवाइस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकेगा। 60 दिन के बाद कुछ फीचर्स सीमित किए जा सकते हैं। 90 दिन बाद ही डिवाइस डिसेबल करने की कार्रवाई संभव होगी और इनकमिंग कॉल, SMS और SOS जैसी जरूरी सुविधाएं चालू रखनी होंगी। RBI ने ये भी साफ किया है कि डिवाइस लॉकिंग के लिए मनमाने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल लेंडिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ग्राहकों की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर भी नए सुरक्षा उपाय जोड़े गए हैं। डिवाइस लॉकिंग के लिए प्रमाणित OEM या OS आधारित सिस्टम का इस्तेमाल होगा। वहीं थर्ड पार्टी अनाधिकृत सॉफ्टवेयर की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कर्जदार और गारंटर की सीमित निजी जानकारी ही साझा की जा सकेगी और रिकवरी एजेंट तय समय के भीतर ही संपर्क कर सकेंगे। नए नियमों का मकसद रिकवरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाना और ग्राहकों को अनावश्यक दबाव से बचाना है। साफ है कि EMI पर मोबाइल या लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों को नए नियम से बड़ी राहत मिलने वाली है। डिवाइस लॉकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के दायरे में होगी और ग्राहकों के जरूरी अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक। भारत में अमेरिकी राजदूत गोर जब से कश्मीर की वादियों की सैर करके आए हैं, तब से पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहा है। दरअसल उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, ये शांति, समृद्धि और विकास की मिसाल है। बस ये बात नापाक पाकिस्तान को नागवार गुजरी और उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को तलब कर लिया। दूसरी तरफ गुलाम जम्मू कश्मीर यानी कि POK में पाकिस्तान सरकार और उसके शासन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और खौफनाक बगावत भड़क उठी। इस बीच पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्वघोषित सैन्य तानाशाह बन गया।
4: अगर तुम गोलियों का गोलियों की हुक्मरानी चाहते हो तो फिर आवाम भी गोलियां इकट्ठी करेगी। आपके दोहरे कानून को, दोहरे मेयार को कबूल नहीं करेंगे। हम इस गोली के कानून को नहीं मानते, हम इस गोली के कानून को नहीं मानते।
5: पाकिस्तान में खत्म होगा संविधान। तानाशाह आसिम मुनीर चलाएंगे पाकिस्तान। शहबाज सरकार का मुनीर के सामने सरेंडर। पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी संशोधन को हरी झंडी दे दी है। इनके साथ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के निर्विरोध सैन्य तानाशाह बन चुके हैं। इस नए कानून के तहत पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF के पद को कानूनी और प्रशासनिक तौर पर असीमित शक्तियां दे दी गई हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों पूरी तरह मुनीर के इशारे पर पलक झपकाएंगी। इतना ही नहीं, नेशनल कमांड अथॉरिटी कानून में संशोधन करके पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी नए सैन्य ढांचे के जरिए मुनीर के प्रभाव में ला दिया गया है। यानी पाकिस्तान में तख्ता पलट की अब कोई जरूरत ही नहीं बची, क्योंकि आसिम मुनीर ने संविधान में 27वां संशोधन करवा कर लूटे पिटे लोकतंत्र पर अपने तानाशाही शासन की लीगल मोहर लगवा ली है। अब पाकिस्तान में शहबाज सरकार सिर्फ एक कठपुतली है और पाकिस्तान का असली हुक्मरान है सैन्य तानाशाह आसिम मुनीर।
6: पाकिस्तान में सत्ता का रिमोट कहां से और कैसे चलता है ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आज एक बार फिर ये साबित हुआ कि पाकिस्तान में यदि फौज चाह ले तो क्या नहीं हो सकता और कितने फटाफट नहीं हो सकता। तो हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई के अंदर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इस बैठक के अंदर ताबड़तोड़ दो बिल्स को मंजूरी दे दी गई और ये दोनों बिल न केवल कैबिनेट से मंजूर हुए बल्कि आज ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पेश भी हुए और पारित भी हो गए। और ये दोनों बिल थे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, जो कि अब फील्ड मार्शल और फील्ड मार्शल से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन चुके हैं, उनको संवैधानिक ताकत देने वाले। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में सेना प्रमुख के पास अब उस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की भी चाबी आ चुकी है जो तय करती है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण किसका होगा और कितना होगा।
5: इधर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो बोर के बयान से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लेकिन उसे अपने कब्जे वाले कश्मीर और भारत के कश्मीर के हालातों में जो अंतर है उसे गौर से देख लेना चाहिए। कश्मीर की वादियों की सैर पर निकले अमेरिकी राजदूत सर्जियो बोर ने दो टूक कहा कि कश्मीर भारत का अहम और अभिन्न अंग है, वहाँ शांति है, समृद्धि है, तरक्की है। वो डल झील जहाँ यूपीए की सरकार के दौरान खौफ का आलम था, वहीं पिछले 12 साल में दूर दूर तक डर का नामो निशान नहीं है। देखिए सर्जियो बोर और उनकी टीम कितने सुकून से शिकारा की सवारी कर रहे हैं।
6: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर की जमीन से जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा क्या बताया कि पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया। तिलमिलाए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिका के मिशन प्रमुख नेटली बेकर को बुलाया, इस मामले के ऊपर अपना सख्त एतराज दर्ज कराया, लेकिन पाकिस्तान करे तो क्या करे, क्योंकि अमेरिका अब ये साफ कर चुका है कि इस पूरे मामले के ऊपर उसका रुख और रवैया क्या है, क्योंकि सर्जियो गोर केवल भारत के अंदर अमेरिका के राजदूत नहीं हैं बल्कि वो दक्षिण और मध्य एशिया के मामलों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत भी हैं। हालांकि पाकिस्तान इस समय ये दिखाने और जताने में लगा हुआ है कि वो अमेरिका का कितना खास है और अमेरिका को उसकी कितनी ज़रूरत है, लेकिन इस समय उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी आवाम को क्या बताए, क्या समझाए। ये बात अलग है कि इस समय पाकिस्तान की सेना का सारा जोर और फोकस इसी बात को लेकर है कि किस तरीके से आसिम मुनीर की ताकत को बढ़ाया जाए और केवल वहां पर सत्ता का खेल चलाया जाए।
5: लेकिन अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताए जाने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक विवाद गहरा गया है। इस बयान पर मिर्ची लगने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को तलब किया है। सर्जियो गोर के कश्मीर पर दिए बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
7: अमेरिका के एम्बेसडर ने ये कहा कि वो जो ट्रैवल एडवाइजरी है जम्मू कश्मीर के मुतलक उसको वो रिव्यू करेंगे, मुझे उम्मीद है वो रिव्यू करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिकली ज्यादा इंगेज करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर वो यहाँ के हॉर्टिकल्चर, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, जिससे जॉब क्रिएशन हो, जिससे इकोनॉमिकली हमारा फायदा हो, मुझे लगता है उसको देखने की जरूरत है। क्या अगर उन्होंने, अमेरिका ने जो बात कही कि वो जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिकली इंगेज करने के लिए तैयार है, एडवाइजरी ट्रैवल एडवाइजरी को खत्म करने के लिए तैयार है, वो मुझे लगता है वो देखने की जरूरत है।
8: इनको तो समझ नहीं किया वहाँ जो चार्ट दे अफेयर्स हैं उनको, ये तो पाकिस्तान और अमेरिका का मामला है, इसमें ना आप कोई कुछ कर सकते हैं ना मैं। अमेरिकन एम्बेसडर ने जो कहा सो कहा, अब वो उन दोनों मुल्कों के दरमियान।
5: अमेरिकी राजदूत के कश्मीर घूमने और उसकी खूबसूरती का बखान करने से स्थानीय लोगों को भी उम्मीद है कि इससे पर्यटन में इजाफा होगा।
9: मैं उस चीज को वेलकम करता हूं क्योंकि वेरीनाग जो है एक टूरिज्म का इलाका है, यहां पे मुगल गार्डन है, तो मैं उनकी बात के साथ सहमत हूं, यहां पे टूरिस्ट आने चाहिए और जो है यहां पे वेरीनाग में जो टूरिस्ट का फ्लो या कश्मीर का फ्लो जो है वो बढ़ना चाहिए, फॉरेनर भी यहाँ आने चाहिए, हम भी उस चीज के साथ खुश है ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़े, यहाँ के जो यूथ बैठे हुए हैं घरों में उनका भी जो है रोजगार बढ़े। कश्मीर तो खूबसूरत है ही, कश्मीर की खूबसूरती को क्या कहना है, कश्मीर तो जन्नत है ही, दुनिया में अगर देखेंगे कहीं जन्नत तो वो तो कश्मीर है ही बिल्कुल।
5: कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद घाटी सैलानियों से लगातार गुलजार हो रही थी।
10: देश विदेश से पर्यटक जन्नत देखने आ रहे थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद फिर सैलानियों की संख्या काफी घटने लगी थी, पर एक बार फिर डल झील समेत पूरी घाटी सैलानियों से शराबोर है। अमेरिकी राजदूत के दौरे और उनके बयान से कश्मीर में पर्यटन बढ़ने की उम्मीद स्थानीय युवाओं के साथ कारोबारियों को भी है।
11: भारत में अमेरिका के उच्चायुक्त सर्जियो गोर की तरफ से कश्मीर में दिए गए बयान के बाद जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में पर्यटन से जुड़े लोग काफी गदगद हैं, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही आतंकवाद शुरू होते ही कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही पर गाइडलाइन शुरू की थी, लेकिन अब अमेरिका के एम्बेसडर की तरफ से कश्मीर आकर ये बयान देना कि कश्मीर के हालात न सिर्फ बेहतर है बल्कि कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो कहीं ना कहीं देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी कश्मीर की ओर जो है रागिब कराएगा और कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बड़ा फायदा मिल सकता है।
10: दूसरी तरफ गुलाम जम्मू कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान सरकार और उसकी हुकूमत के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और खौफनाक बगावत भड़क उठी है। जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने पाकिस्तानी फौज और शहबाज सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है। वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं जिसने उनका इस्तेमाल सिर्फ भारत के खिलाफ किया है, और इसीलिए पालंदरी में आवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन कश्मीरी ने पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती देते हुए दहाड़ लगाई है और कहा है कि हम तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते, तुमने निहत्ते कश्मीरियों की 100 से ज्यादा लाशें गिराई हैं। अमन कश्मीरी ने पाकिस्तान के उस झूठे कश्मीरी नैरेटिव की धज्जियां उड़ाते हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा का पोल खोल बयान याद दिलाया, जिसमें बाजवा ने कबूला था कि पाकिस्तान के टैंकों में भारत से लड़ने के लिए तेल तक नहीं है।
12: निहत्ते कश्मीरियों की 100 लाशें गिरा दी गई, 100 से ज्यादा लाशें निहत्ते कश्मीरियों की गिरा दी गई और उन पर गोलियां बरसाई गई।
10: पीओके में आजादी की आवाज को बुलंद कर रहे सरदार अमन कश्मीरी ने आतंकवाद को लेकर भी पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतार दिया। अमन कश्मीरी ने खुलकर कहा कि पाकिस्तान ने ही भारत के खिलाफ आसिया अंद्राबी से नारे लगवाए, पाकिस्तान ने ही यासीन मलिक से भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम दिलवाया, उन्होंने भारत के कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को तार तार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर में 1.5 लाख लोगों को हिंसा की आग में झोंक दिया।
12: आसिया इंद्राबी से आपने नारे लगवाए, आज वो उम्र कैद काट रही है। यासीन मलिक आज हिंदुस्तान की जेल में उम्र कैद काट रहा है।
10: वहीं बलूचिस्तान में बलूच विद्रोही संगठन बलूच राजी अजोई संगठन ने पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर एक भीषण हमला करने का दावा किया है। ये हमला नुश्की इलाके में कचकी के देवी स्टेशन के पास हुआ है। बलूच लड़ाकों ने 17 अगस्त को पाकिस्तानी सैन्य काफिले को निशाना बनाकर अचानक हमला बोला था। संगठन का दावा है कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना के कम से कम 7 जवान मारे गए हैं और 8 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से जख्मी हैं। बलूच विद्रोही संगठन ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि जब तक पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान से पूरी तरह हट नहीं जाती, उनके सशस्त्र अभियान इसी तरह जारी रहेंगे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तानी फौज ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि अपने फौजियों की मौत से इनकार करना और उनके शव तक न लेना पाकिस्तानी फौज की पुरानी आदत है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के नए हमलों से कैसे महायुद्ध का खतरा अब और बढ़ गया। कीव पर रूस के मिसाइल हमले में वैसे तो 15 लोगों की मौत हुई और 35 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन हवाई हमलों में उत्तर कोरियाई मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों के साथ कीव पर लगातार 5 घंटों तक मौत बरसती रही। विश्वास कीजिए, ये दिन पहले मॉस्को पर हुए हमले का जवाब था, जिसने रूस ने यूक्रेन पर ब्रिटिश ड्रोन इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और अब रूस ने उत्तर कोरिया की मिसाइलें दाग दी हैं। तो क्या ये महायुद्ध का सिग्नल है? क्या अब यूक्रेन के समर्थन में नेटो उतरने वाला है? वैसे नेटो के विमानों ने बाल्टिक सागर में रूस को चेतावनी तो दे ही दी है। देखिए रूस और यूक्रेन में आगे अब क्या होने वाला है।
10: चीन पर उत्तर कोरिया की मिसाइलों से हमला, महायुद्ध भड़केगा।
13: कीव में 5 घंटे तक बरसी तबाही, अब जंग में होगी नाटो की एंट्री। यूक्रेन की ब्रिटिश ड्रोन से बमबारी, अब दिखी पुतिन किम की यारी। रूस और यूक्रेन में फिर से भड़का युद्ध, महायुद्ध की बज गई घंटी। बाल्टिक सागर में उड़े नाटो के विमान, रूस की कड़ी चेतावनी। सत्रह अगस्त की रात मॉस्को पर 600 ड्रोन की ऐसी सुनामी आई कि यूक्रेन की बमबारी से रूस की राजधानी दहल उठती है, और अब रूस ने भी सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे घातक पलटवार किया है। जी हां, कीव पर 5 घंटे तक मिसाइलें बरसती रहीं। मॉस्को पर ड्रोन हमले को लेकर पुतिन ने आरोप लगाया था कि जिन ड्रोन से यूक्रेन ने मॉस्को पर बमबारी की वो मेड इन ब्रिटेन थे, और अब कीव पर जिन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है वो मेड इन नॉर्थ कोरिया है। अब दुनिया में कीव पर हमले को लेकर महायुद्ध की चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आधी रात के बाद कीव पर शुरू हुए हमले 5 घंटे तक जारी रहे। 20 से ज्यादा घातक बैलिस्टिक मिसाइलें कीव पर बिना किसी रोक टोक के गिरती रहीं। कमरे में दुबके एक शख्स की जुबानी सुनिए दहशत का क्या आलम था।
14: This is insane. I'm in Slamansky. The bombing is the craziest ever. It's intense. It is incredibly loud. You can hear it. You just don't know if you're going to be dead the next second. You have no idea. Everything is breaking. Wow. Nearly dead. This is almost hitting us.
13: 5 लोगों के मारे जाने की खबर तो तुरंत ही आ गई थी, और ये आंकड़ा हर बार की तरह बढ़ता चला गया। इस हमले की चौंकाने वाली बातें समझिए। रूस ने कीव पर हमले का चक्रव्यूह पहले ही रच लिया था। उसने अपने सुदूर पूर्वी एयरबेस से 6 TU-95 बमवर्षकों को ओलेनिया एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा उसने अपनी मिसाइलें कुर्स्क एयरबेस से दागी, जो यूक्रेन के बेहद करीब हैं। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। बीती रात कीव पर हुए भीषण रूसी हमले में उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पहले 20 मिनट में कम से कम 15 से 16 मिसाइलों को कीव की तरफ आते हुए ट्रैक किया गया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने रूस को 120 KN-23 मिसाइलें दी हैं। उनमें से 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल इस हमले में किया गया। इसके अलावा कम से कम 13 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और 10 इस्कंदर एम मिसाइलें हमले में शामिल थीं। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन को लगातार किम जोंग का साथ मिला है। वो लगातार उत्तर कोरियाई मिसाइलें यूक्रेन पर दाग रहे हैं। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस के पश्चिमी सीमावर्ती हिस्से कुर्स्क क्षेत्र को यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाने के लिए जंग लड़ी थी। कल उसी कुर्स्क से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इस हमले से ठीक पहले राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में रूसी सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक हाल के दिनों में यूक्रेन के हमलों से मॉस्को और दूसरे इलाकों में मची तबाही के बाद बुलाई गई थी। पुतिन ने इस बैठक में कहा कि यूक्रेन के हमले रूस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये नुकसान न कभी गंभीर थे और न होंगे।
15: Не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
13: इसके ठीक बाद कीव पर रूस का विनाशकारी हमला हुआ। रात के 2 बजे लोग बम शेल्टर में जान बचाते नजर आए। बीती रात कीव पर 4.5 साल से चल रहे युद्ध का सबसे भीषण हमला हुआ। दूसरी तरफ यूक्रेन के पास रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाली पैट्रियट मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, उनके लॉन्चर खामोश खड़े हैं। ऐसे में यूक्रेन लगातार रूस पर ड्रोन हमले कर रहा है ताकि वो शांति समझौते के लिए मजबूर हो जाए। बुधवार को ही तातारस्तान में तेल रिफाइनरी पर यूक्रेनी ड्रोन का हमला हुआ। ये रिफाइनरी रूस के सबसे बड़े, सबसे नए और तकनीकी रूप से सबसे एडवांस प्रोसेसिंग प्लांट्स में से एक है। यूक्रेन ने अपनी सीमा से 750 मील दूर स्थित रिफाइनरी को निशाना बनाकर दिखा दिया कि वो रूस में कहीं भी हमला करने की क्षमता रखता है। यूक्रेन के सामने वजूद का सवाल है, क्योंकि 4.5 साल से जारी जंग में वो अपना 20% हिस्सा रूस के हाथों गंवा चुका है। अमेरिका ने शांति की कोशिशों को अधर में छोड़ दिया है, वहीं यूक्रेन और रूस लाखों सैनिक गंवाने के बाद अब भी नई भर्तियां कर इस वॉर मशीन में इंसानी जानों को झोंकते जा रहे हैं। अब जिस तरह से रूस और उत्तर कोरिया यूक्रेन के लिए नया खौफ बनकर सामने आए हैं, ऐसे में यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ नाटो की तरफ देख रहा है। आपको याद होगा, जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि युद्ध के दौरान सभी के साथ संकट होता है और आज नहीं तो कल आपको ये महसूस होगा।
16: This is something maybe less in two weeks. Of course,
17: during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless.
18: You don't know that.
17: God bless.
18: You don't
17: God
18: know
17: bless.
18: That.
17: You will not have war.
18: Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
17: I'm not.
3: एक बड़ी खबर इस समय पाकिस्तान से आ रही है और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर यह खबर है। इमरान खान को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस सूत्रों के हवाले से खबर आई है। इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस के सीनियर अधिकारी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। सुरक्षा इंतजामों के तहत शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी वहां से हटाया जा रहा है। मतलब ये कि इमरान खान को अब जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है और यह आदेश पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वहां की सरकार को, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को, कि इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन उसके बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी थी पाकिस्तान सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो रिव्यू पिटीशन भी खारिज करते हुए सरकार को यह आदेश दिया कि आप पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हॉस्पिटल में भर्ती करें, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके घर वाले, उनकी बहनें, लगातार उनकी पार्टी के लोग, उनकी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि इमरान खान की तबीयत खराब है। इमरान खान के बारे में इस तरह की खबरें भी उड़ी थी कि इमरान खान की मौत हो चुकी है, इमरान खान को मार डाला गया है। लेकिन अब अदालत ने यह कह दिया कि इमरान खान को जेल से अदालत के आदेश पर हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और लग ये रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, वहां उन्होंने सुरक्षा का निरीक्षण किया है और वहां बाहर खड़ी गाड़ियों को भी हटा दिया गया है। दर्शक में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं, अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा, कल के दिन दूसरी सरकार आएगी वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: हमारे साथ पीडीटी आचार्य साहब हैं। आचार्य साहब, विवाद ये है कि क्या पूरे 6 स्टैंजाज में आपको खड़ा होना, अगर कोई 2 स्टैंजा पहले की तरह गाता है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में आएगा?
3: देखिए ना, ये एक कानून है, वो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। उसके अंदर पहले नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग, इन तीनों का जिक्र हुआ था। तो इसको डिसऑनर करेंगे आप, अनादर करेंगे, तो उसमें दंड मिलेगा, 3 साल तक का दंड का प्रोविजन है उसमें। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन को आप पब्लिक के सामने होना, पब्लिक के सामने होना चाहिए, आप घर के अंदर कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक के सामने अगर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लात मारें या उसको फाड़ें और जलाएं और नेशनल फ्लैग को नीचे फेंक करके उसके ऊपर पर खड़े हो जाए, इस तरह की चीज़ें जो हैं, और नेशनल एंथम गाने में उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको मतलब किसी को रोकते हैं आप, या जो गाने वाली सभा में आप गड़बड़ करते हैं उसको ताकि वो गाएं ना गाएं, ये सारी चीज़ें ऑफेंसेस हैं, मतलब दंडनीय अपराध है। अब ये कंट्रोवर्सी आ गई है, उन्होंने पूरा गाने के लिए हमें बात करते हैं, लेकिन कानून में तो है नहीं, वो जहाँ तक मैंने देखा है उसमें है नहीं। अब सवाल ये है कि जो पहले वाला जो 2 स्टैंजा अगर गाएंगे तो इसको आप कह सकते हैं कि आपने प्रिवेंट किया है पूरा गाने के लिए, तो यही एक सवाल है इसमें, क्योंकि उसमें कानून में ये इसका प्रोविजन ये है कि अगर आप ये जो गाते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको रोकते हैं, और जब लोग गाते हैं उसमें आप गड़बड़ करते हैं ताकि ना गा पाए वो, इस हालत में वो एक ऑफेंस बन जाता है, मतलब प्रिवेंटिंग वर्ड
2: उसमें। अगर सर गाना शुरू किया तो पूरा गाने के 2 स्टैंजा के बाद अगर किसी ने प्रिवेंट किया, किसी ने उसको रोकने की कोशिश की 2 स्टैंजा गाने के बाद, तो वैसी स्थिति में क्या?
3: देखो ना, इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि पूरा गाना चाहिए, तो पूरा क्या है आधा क्या है इसके बारे में कोई डेफिनेशन तो है नहीं कानून में, तो किस आधार पर आप आगे बढ़ेंगे इसमें, यही प्रॉब्लम है।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ, आप देखते रहिए आज तक।
5: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मातरम के छंद पर राजनीति प्रचंड, शाह ने बताया देश विरोधी, कहा मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति, इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। पीएम मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष को सेलिब्रेट करेगी बीजेपी, सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम, जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर कोर्ट का हथौड़ा, झारखंड हाईकोर्ट ने सुरेंद्र सरकार के निर्णय पर लगाई रोक, 11वीं 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर, संघ ने भी किया मंथन, संसद मार्च के दौरान अधिक बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। और इमरान खान को लेकर बैकफुट पर शहबाज सरकार, जेल से शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करने की तैयारी, रोड खाली कराने में जुटी पाक पुलिस, सूत्रों की खबर।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक सरकारी बैंक का मुलाजिम गुरुवार दोपहर करीब 12:15 बजे अपने मोबाइल पर एक व्हाट्सएप स्टेटस डालता है। स्टेटस में वो लिखता है कि आज उसने अपनी पत्नी को मार डाला, अब वो अपनी बहन को मारने जा रहा है और उसके बाद खुद भी मर जाएगा। इसके बाद इससे पहले कि उसके करीबी रिश्तेदार या दोस्त उसके इस व्हाट्सएप स्टेटस को पढ़ पाते, अगले आधे घंटे में लखनऊ में 3 मौत हो जाती है। यानी जो कुछ उसने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था वो सब सच हो चुका था।

0: मैंने आज अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। मेरी पत्नी की बहन प्रज्ञा और भरत को सब कुछ पता है। ये जो ऊपर आपने पढ़ा, ये एक व्हाट्सएप स्टेटस है। जिस शख्स ने ये व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ा, उसने मानस भैया के नाम से नंबर सेव कर रखा है। ये व्हाट्सएप स्टेटस जब पढ़ा गया, तब तक इसे डाले हुए 49 मिनट हो चुके थे। गुरुवार 20 अगस्त की दोपहर 12:15 बजे से लेकर 1:45 बजे के दरमियान, यानी अगले आधे घंटे में जो कुछ व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था, हूबहू वैसा और वही हुआ। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को गोली मारी, फिर घर गया, इसके बाद बहन को गोली मारी और आखिर में खुद को गोली मारी। इस तरह आधे घंटे के अंदर लखनऊ में 2 मर्डर और 1 सुसाइड हो चुका था। ये लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद ICICI बैंक की एक शाखा है। इस बैंक में दिव्या मिश्रा नाम की एक महिला रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर काम करती थी। गुरुवार दोपहर करीब 12:15 बजे एक शख्स टेम्पो से बैंक के बाहर आता है। बैंक के गार्ड से वो दिव्या मिश्रा को बैंक के बाहर बुलाता है। दिव्या के बाहर आने के बाद वो कुछ देर तक उससे बात करता है, फिर बातचीत के दौरान अचानक ही जेब से पिस्टल निकालता है और बेहद करीब से दिव्या को 2 गोली मारता है। दिव्या वहीं गिर पड़ती है, फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो मौके से भाग जाता है।
1: और पत्नी का आपसी विवाद और पूरे परिवार का अंत। पति ने, मानस ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जो क्राइम सीन है। यूं तो ये प्राइवेट बैंक है, लेकिन अब इसकी बाहरी जगह क्राइम सीन में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरों में देखें तो ये वो जगह है जहां पर कुल मिलाकर ये हत्या की गई है। पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कुछ बातचीत की और उसके बाद यहीं पर इस जगह पर हत्या कर दी।
0: इधर लोग दिव्या को उठाकर उसे फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां उसकी मौत हो जाती है। पुलिस अभी मामले की जांच शुरू भी नहीं कर पाती है कि तभी गोमती नगर के इस बैंक से करीब 2 किलोमीटर दूर एक घर से गोली चलने की आवाज आती है। लोग जब घर में दाखिल होते हैं तो खून से लथपथ 2 लोग पड़े थे, एक लड़की और एक लड़का। दोनों को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मुर्दा करार देते हैं।
2: ये वो जगह है जहां पर मानस वाजपेयी मौजूद था, क्योंकि पत्नी से काफी समय से विवाद चल रहा था और वो यहां पर नहीं मिलता था, यानी कि उसके साथ नहीं रह रहा था। और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं इस विवाद को देखा गया, जिसके बाद आज जब वो, क्योंकि बैंक भी यहां से थोड़ी ही दूर पर है और इसी रेस्टोरेंट के पास में वो मौजूद थी, इसके बाद यहां पर पहुंचता है मानस वाजपेयी, जो आरोपी था। इसमें कह सकते हैं एक तरीके से पहले जब उसने गोली मारी, पति था उससे काफी दिनों से विवाद चल रहा था, पत्नी से जो दिव्या मिश्रा थी, और इसको लेकर वो अलग अलग भी रह रहे थे। इस दौरान उसने अपनी बहन को भी गोली मारी। बहन को, चूंकि माता पिता थे, बहन इकलौती थी, माना जा रहा था कि अगर भाई की मौत हो जाएगी तो आखिर उसका कौन देखरेख करने वाला होगा। इस तरीके की बात अभी सामने आ रही है पहली स्थिति में, तो इस वजह से भी बहन को गोली मारने की बात सामने आ रही है।
0: आधे घंटे के अंदर हुई इन 2 अलग अलग वारदातों के बाद ही कुछ लोगों की नजर एक व्हाट्सएप स्टेटस पर पड़ती है। तब कहीं जाकर 2 कत्ल और खुदकुशी का सच सामने आता है। दरअसल ये व्हाट्सएप स्टेटस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करने वाले मानस मिश्रा ने डाला था। ICICI बैंक के बाहर जिस दिव्या मिश्रा को गोली मारी गई, वो मानस मिश्रा की ही पत्नी थी। दिव्या को गोली मारने के बाद मानस अपने घर पहुंचा और फिर उसने अपनी बहन को गोली मारी और आखिर में खुद को भी गोली मारी।
3: आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया, उसके बाद महिला को RML अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पर मौके पर जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। इसी घटनाक्रम के थोड़ी देर बाद गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पर वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है, और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल इसमें मिला हुआ है, जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है।
0: शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक मानस और दिव्या की करीब 12 साल पहले शादी हुई थी, मगर पिछले कुछ सालों से दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे। साल भर पहले दिव्या ने मानस से तलाक लेने के लिए कोर्ट में मुकदमा तक कर रखा था। दिव्या मानस से अलग रहती थी, जबकि मानस अपनी बहन के साथ रहता था। दिव्या मिश्रा जर्नलिस्ट और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बड़ी बहन थी। व्हाट्सएप में उसी प्रज्ञा और प्रज्ञा के पति भरत का नाम लिखा है। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। समर्थ श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
4: और अब पत्नियों के हाथों मारे जा रहे पति के कत्ल की सबसे ताजा दास्तान। जयपुर में एक पति की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, फिर कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। पति के मौत से पत्नी सदमे में चली जाती है। फिर अंतिम संस्कार के बाद अंत्येष्टि को गंगा में प्रवाहित करने के लिए वही पत्नी हरिद्वार जाती है। लेकिन जैसे ही वो हरिद्वार से वापस लौटती है, एक कैमरा सारी कहानी पलट चुका था।
0: सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तस्वीरों में दिख रही इस लड़की का नाम है कविता। कविता किसी से बात कर रही है, हालांकि उसे पता नहीं है कि उससे बातचीत करने वाला शख्स ही उसे शर्ट की जेब में रखे मोबाइल फोन से चोरी छिपे शूट कर रहा है। लिहाजा कविता मुस्कुराते हुए सब बता रही है। वो कहती है, मैं तो मर गई, अब घर वाले मुझे मार देंगे। अब आइए इसी कविता का एक दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो भी कविता को बताए बगैर ही शूट हुआ है। वो नीचे बैठी है और मोबाइल फोन से फेसबुक कॉलिंग के जरिए किसी से बात कर रही है। थोड़ी बातचीत के बाद वो किसी का नाम लेकर कहती है, वो कितना छुपेगा, पकड़ा तो वो भी जाएगा।
5: उन्हें पूछवे कतरोग लू कर लो तू, पकड़ा तो यहाँ भी आओ लो।
0: इन दोनों ही वीडियो में कविता कहीं भी न तो दुखी नजर आती है और न ही डरी हुई, जबकि हकीकत ये है कि कविता के ये दोनों वीडियो उसके पति के कत्ल के महज हफ्ते भर के अंदर शूट किए गए हैं। और पैरों तले जमीन खिसका देने वाला खुलासा ये है कि उसके पति की कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद यही लड़की यानी कविता है। जी हाँ, इल्जाम है कि कविता ने न सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि कत्ल के बाद अफसोस का ड्रामा भी करती रही। और तो और, पति के अंतिम संस्कार के बाद खुद अपने हाथों से उसकी अस्थियां हरिद्वार के गंगा जी में प्रवाहित भी कराई। इन दोनों ही वीडियोस को देखकर शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर पति का कत्ल करने की ये सच्चाई कविता बिना डरे कैसे कबूल कर रही है। क्या उसे पुलिस, कानून या जेल का कोई खौफ नहीं है? तो जवाब है कि जब तक ये वीडियो शूट किया जा रहा था, तब तक कविता को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके घर वाले अब उसे पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। और चोरी छिपे शूट किए जा रहे ये वीडियो असल में उसके खिलाफ जुटाए जा रहे सबूतों का हिस्सा है। दिमाग घुमा देने वाली इस मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत होती है 5 अगस्त से, जब जयपुर के विश्वकर्मा इलाके का रहने वाला महेश मीणा अपनी पत्नी कविता को लेकर डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकलता है। दोनों बाइक पर सुबह ही बगरू के लिए रवाना होते हैं, लेकिन जब देर दोपहर तक लौट कर नहीं आते तो फिर घर वालों को फिक्र होती है। इसके बाद वो अपने बेटे महेश को फोन करते हैं, मगर फोन महेश नहीं उसकी पत्नी कविता उठाती है और बताती है कि वो कुछ ही देर में घर लौटने वाले हैं। लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद कविता फिर से अपने ससुराल में फोन कर एक डरावनी खबर देती है। वो बताती है कि उसके पति महेश की तबीयत अचानक रास्ते में ही खराब हो गई है और वो फिलहाल महेश के साथ 14 नंबर पुलिया के पास रुकी हुई है। वो बताती है कि वो किसी तरह बीमार महेश को बाइक पर बांध कर यहाँ तक पहुंची है। ये खबर सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आनन फानन में मौके वारदात पर पहुंचते हैं और फौरन महेश को उठाकर सीकर रोड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मुर्दा करार देते हैं। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि घर वालों को समझ ही नहीं आता कि जवान जहान महेश को आखिर अचानक क्या हुआ, उसकी जान इतनी जल्दी कैसे चली गई। अस्पताल की तरफ से ही पुलिस को इत्तला दी जाती है और इस सिलसिले में पुलिस अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर महेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है, मगर पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ नहीं होती। महेश की मौत से कविता को गहरा सदमा लगता है। वो कभी कभी रोती तो है, लेकिन कई बार उसे देखकर लगता है कि कविता को महेश के जाने का ज्यादा गम नहीं है। ऐसे में महेश के पिता बाबूलाल मीणा खुद अपने बेटे की मौत की वजह जानने और इस मामले की तफ्तीश करने का फैसला करते हैं। घर के कुछ सदस्य जब महेश के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाते हैं तो महेश के पिता बाबूलाल कविता को भी हरिद्वार भेज देते हैं। इधर कविता के जाने के बाद बाबूलाल मीणा सच्चाई जानने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां घर वालों ने पहली बार महेश को बीमार हालत में देखा, यानी 14 नंबर पुलिया के पास। इत्तेफाक से वहां उन्हें एक सीसीटीवी कैमरा नजर आता है। अब वो खुद ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने का फैसला करते हैं और कैमरे के मालिक से 5 अगस्त की फुटेज दिखाने की गुजारिश करते हैं। ये रहा वो पूरा सीसीटीवी फुटेज। इस फुटेज में उन्हें जो कुछ दिखता है वो बेचैन करने वाला है। यहाँ उनकी बहू कविता अकेले ही बीमार महेश के साथ नजर नहीं आती, बल्कि 2 बाइक पर 3 अजनबियों के साथ दिखती है। एक बाइक पर 2 लड़के महेश को बीच में बिठाकर लाते हैं, जबकि दूसरी बाइक पर कविता एक अजनबी के साथ आती हुई नजर आती है। कविता ने इससे पहले तक यही बताया था कि वो महेश के बीमार पड़ने के बाद अकेली ही उसे लेकर 14 नंबर पुलिया तक पहुंची थी। उसने कभी भी उन 3 लोगों का जिक्र अपने ससुराल वालों से नहीं किया था जो महेश और कविता के साथ यहाँ दिख रहे थे।
6: सर जब हमारे को पता जब चला, जब वो हमारे मेरी सिस्टर को ऐसे बताया उसने कि मैं महेश को बांध कर लेके आई हूँ 200 फीट से। उसके बाद में हमने उस टाइम कुछ भी नहीं बोला, हमने पोस्टमार्टम के लिए महेश को दे दिया। महेश को पोस्टमार्टम के लिए देने के बाद में जब हम उसको तीसरे के दिन गंगा जी भेज दी, गंगा जी भेजने के बाद में चौथे दिन मैं गया वहां पे 14 नंबर जहाँ पे ये हादसा हुआ था। मैंने वहां की फुटेज खंगा ली, वहां पे फुटेज में मेरे को ये 3 लड़के और दिखाई दिए।
7: शक ऐसा हुआ कि जैसे वो उसका दुकान के सामने डाल के रखी थी, उसका फुटेज निकाल के लाए हम, तो वो मुंह में से झाग आ रहे थे और लाके हॉस्पिटल में भर्ती करवाए थे, तो वो बोल दिया भाई 2 घंटे पहले ही खत्म हो चुका था।
8: अच्छा,
7: जहर तो मुंह में से झाग आने से हमारे ये शक हुआ है भाई, जहर दे दिया इसको।
8: कौन है सीसीटीवी में, कौन कौन आए?
7: तो उसके एक तो उसकी वाइफ थी और 3 लड़के थे।
0: अब मीणा परिवार बड़ी खामोशी से बाइक से आए इन 3 लड़कों की पहचान पता करने में लग जाता है और उन्हें जो पता चलता है वो काफी हैरानी भरा है। इसमें एक लड़का कविता का करीब 9 साल पुराना बॉयफ्रेंड गणेश मीणा है, जबकि बाकी के 2 लड़के गणेश के 2 दोस्त अजय मीणा और गोलू प्रजापत हैं। इस सीसीटीवी वीडियो को देखने से ये साफ होता है कि उन्हें महेश को अस्पताल ले जाने की कोई जल्दी नहीं है, बल्कि वो तो 14 नंबर पुलिया के पास एक दुकान के सामने महेश को पटक कर शायद उसके मरने का ही इंतजार कर रहे होते हैं। और बस इसी सीसीटीवी फुटेज से कत्ल के इस सनसनीखेज मामले का खुलासा होता है।
7: एक तो गणेश मीणा है, एक अजय मीणा, एक गोलू प्रजापत।
8: अच्छा, इसमें बॉयफ्रेंड कौन सा है?
7: गणेश।
8: कैसे पता आपको?
7: वो उस पे आ रही है, फुटेज पे आ रही है उसका, वो जो जुड़ रहा है आईडी पे उस पे।
8: पहले कभी ऐसा कुछ हुआ इनका आपस में?
7: नहीं, अपने सामने तो कोई बात नहीं आई उसकी पहले, ये मरने के बाद में ही आई है।
8: अच्छा, बॉयफ्रेंड और ये वाला एंगल कब पता चला आपको?
7: ये मरने के बाद में चला।
8: अच्छा, क्या पता चला आपको?
7: कि इसका गर्लफ्रेंड है वो मरवाया गया है इसको, वो मिलके और वो दवाई ये जहर पिला दिया।
6: फिर उनके भी रिश्तेदारों के पास पता किया मैंने, तो उन लड़कों ने बताया कि ये गणेश है, इसका नाम अजय मीणा है, इसका नाम गोलू प्रजापत है। ठीक है, और उन्हीं के रिश्तेदारों के थ्रू मेरे को पता लगा है कि गणेश से 9 साल से इसका अफेयर था। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे सभी घर वालों को आके बता दिया। बताने के बाद में घर वालों ने 9 तारीख को थाने में चले गए। थाने में जाने के बाद में उस लड़की के रिएक्शन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मतलब मुस्कुरा रही थी, उसके मुंह पे कुछ भी नहीं था, वो भगने की कोशिश की थी, लेकिन लड़कों हमारे सब पूरी रात जगे, सारे घर वाले पूरी रात जगे 9 तारीख से लेके 16 तारीख तक।
9: जिस तरह से घटना का विवरण दिया गया था, पुलिस को भी इस चीज पर पूर्णतः विश्वास नहीं था कि जैसा बताया जा रहा वैसा हुआ है, तो हमने इंडिपेंडेंटली उस पर की जांच की और साथ के साथ हमें कुछ सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी परिवार वालों ने बताया कि यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं, उसको भी इकट्ठा किया गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए परिवार वालों का शक गहरा है और उन्होंने बताया कि उनको शक है कि उनके पुत्र महेश मीणा की मृत्यु प्राकृतिक ना होकर किसी के द्वारा हत्या किए जाने की हो सकती है। इस पर इन्होंने एक मुकदमा बीकेआई थाने में दर्ज कराया। उस मुकदमे में उन्होंने उनकी पत्नी और उनके पत्नी के अलावा तीन और लोग हैं जिनके नाम जद्द करके उन्होंने मुकदमा दिया है।
0: अब घर वाले कविता के हरिद्वार से लौटने का इंतजार करने लगते हैं और फिर उसकी वापसी के बाद न सिर्फ रात दिन जगकर उसकी पहरेदारी करते हैं ताकि वो घर से फरार न हो जाए, बल्कि उसे बातों ही बातों में भरोसे में लेकर पूछताछ भी करते हैं और ये दोनों ही वीडियो उसी पूछताछ का हिस्सा है। पूछताछ में कविता ये कबूल करती है कि 5 अगस्त की दोपहर को पहले वो अपने पति को मंदिर लेकर गई और फिर धोखे से उसे जूस में सल्फास की गोली मिलाकर पिला दी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और जान ही चली गई।
8: उसके पिताजी ने उससे पूछताछ की तब क्या बोला उसने?
6: उसके पिताजी ने जब पूछताछ की उस टाइम तो उसने मना ही किया था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब मैंने फुटेज दिखाया ना उसके बाद में उसने बोलना चालू किया था।
8: आपने उनको फोटोज दिखा दिया?
6: हाँ, मैंने फोटोज दिखा दी कि आपने क्या, आप बोल रहे हो कि आप अकेले बांध के लेके आई हो, तो आप इसमें देखो इसमें कौन कौन आया है साथ में।
8: तो फिर क्या बोला?
6: फिर उसने बता दिया पूरी बात हमारे को कि गणेश के साथ मिलकर इसमें किया
8: बात।
6: उसने बता दिया उसने बस्सी में पंडित जी कचोरी वाला है, वहां से गणेश ने स्टॉल भी खरीदा है, मतलब मुंह लपेटने के लिए ब्लैक कलर का जो इसमें वीडियो में पहन रखा है वो।
8: मारा कैसे?
6: मारा जहर दे के मारा है ना, बता रही है ना वो खुद।
8: अच्छा, खुद बोल रही है?
6: हाँ, खुद बोल रही थी।
0: कविता अपने जेठ से बातचीत करते हुए एक वीडियो में ये कहती है कि जहर देने के बाद उसे लगा कि अब तो वो फंस गई। इससे पहले उसने ये नहीं सोचा था कि एक तरफ उसे पुलिस वाले लेकर जाएंगे और दूसरी तरफ उसे घर वाले मार देंगे।
10: मैं तुम पर लाख बाबा इंजे दे दियो बाद में तुम्हारी सोची भाई आप काई करने।
11: मैं तो कर जाऊंगी फंसी
10: हूँ। तू यही सोच? मैं
11: यही सोच, मैं यहाँ पर सोची पुलिस वाले जो मैं गेट घर का मार दे रहा हूँ मुझे मार
10: दे। ए बाबरी,
11: तू
8: की बात है
0: ठीक इसी तरह एक दूसरे वीडियो में वो फेसबुक कॉलिंग के जरिए अपने बॉयफ्रेंड गणेश की दोस्त से बात करते हुए कहती है कि वो गणेश को ये बता दे कि ज्यादा दिन छिपने का फायदा नहीं है, पकड़ा तो वो भी जाएगा। हालांकि सिर्फ ये दो वीडियोज ही नहीं हैं, बाद में जब खुद लड़की के पिता उसके ससुराल वालों के साथ मिलकर अपनी बेटी से पूछताछ करते हैं तो वो रोती हुई न सिर्फ अपनी पूरी बात कबूल करती है बल्कि गणेश मीणा के साथ मिलकर रची गई पति के कत्ल की पूरी साजिश का खुलासा भी करती है।
12: कौन बुलाई थी पापा जोगन कार के छु में कौन बुलाई वाला
13: के आ गए
12: वो गणेश जी आई छु में कौन बुलाई वाला
13: तो सारा कौन सा
12: तो वो नाम कौन जानू
13: तू अंडा से फोन करियो नहीं जल्दी तो आए लोग उनका इधर
12: मेरे पास फोन भी कौन मैं फोन
13: कर लिया था
12: डिटेल कौन करी
13: तीन छोरा कौन कौन जावे।
0: अपनी तफ्तीश पूरी कर अब महेश के घर वाले जयपुर पुलिस के पास पहुंचते हैं और सारे सबूतों के साथ अपनी बहू की पूरी कारस्तानी बयान करते हैं। बस फिर क्या था, पुलिस सारे तथ्यों को वेरीफाई करती है और उन्हें सही पाती हुई आखिरकार कातिल बहू और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लेती है।
14: साजिश थी उसके अनुसार उनको एक जूस पिलाती है और जूस में जो सेल्फोस की टेबलेट्स आती हैं वो उनको पिला देती हैं। पति को कोई भी अपने पति पर शक नहीं था और वो जूस पी लेते हैं। जूस पीने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद वो पूर्व जो पूर्व की साजिश थी उसके अनुसार वो अपने जो उनके एक प्रेमी जो इस पूरे सुनाम में सामने आए हैं गणेश मीणा, उनको बुला लेती हैं। उसके बाद इनको हॉस्पिटल में ले जाकर वो 2-3 घंटे तक इधर उधर घुमाते हैं, और उसके बाद जब तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है, जब इन्हें लगता है कि बचने की स्थिति नहीं है, तो शक दूर करने के लिए और अपने पर शक नहीं पाने के लिए ये इसको यहाँ आके 14 नंबर के पास छोड़ देते हैं और फिर

0: जो इनको ऐसा बताते हैं इनकी तबियत खराब होगी, इनको हॉस्पिटल लेके चलो।
1: जाहिर है ये कत्ल लव ट्रायंगल यानी प्रेम त्रिकोण का ही नतीजा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कविता को अपने पति महेश का कत्ल करने की ऐसी क्या जरूरत थी, जब वो शादी से पहले और शादी के बाद भी चोरी छुपे अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी और इसके बारे में घर में किसी को कुछ पता भी नहीं था। ऐसे में शक यही है कि शायद दोनों महेश को रास्ते से हटाकर आने वाले दिनों में एक दूसरे से शादी करना चाहते थे।
2: पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, वादा किया जाता है, लेकिन यदि वही पत्नी इसी जीवन में उसी पति के पीछे पड़ जाए तो क्या कहिएगा। ठीक ऐसा ही जयपुर के विद्याधर नगर में एक मामला सामने आया है, जहां पर पत्नी ने कथित रूप से अपने बॉयफ्रेंड और उसके दो दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, कविता नाम की पत्नी जो कि अपने पति महेश के पीछे इस कदर पड़ गई कि बॉयफ्रेंड गणेश के साथ मिलकर जहर दे दिया। ऐसा परिजनों का दावा है कि वो काफी समय से गणेश के संपर्क में थी, यानी कि बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर महेश की पत्नी ने महेश को ही मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद इस तरह की नौटंकी रचाई कि परिवार वालों की भी पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार वालों को उसने आभास तक नहीं होने दिया और उसके बाद वो हरिद्वार यानी कि गंगा जी भी उसकी अस्थियां डालने तक की चली गई।
1: विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
3: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: दिमागी नक्सल, ये शब्द आजकल आप खूब सुन रहे होंगे और दिमागी नक्सली शब्द पर राजनीतिक हंगामा भी मचा है। अब बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो के द्वारा दिमागी नक्सल शब्द का मतलब समझाने का प्रयास किया गया है।

0: same old game.
1: थोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन मुंबई मेट्रो लेकर कुछ ही क्षणों में दोबारा आपके साथ होंगे। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
3: रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का,
4: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
3: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
5: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
6: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
7: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को, और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
8: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
3: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में केंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: B.R. अम्बेडकर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है?
1: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना ना ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

0: वंदे मातरम के छंद पर राजनीतिक प्रचंड अमित शाह ने कहा देश विरोधी मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति, इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेस ने किया पलटवार। पीएम के जनसेवा के 25 वर्ष का उत्सव मनाएगी बीजेपी, सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम, जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर अदालत का हथौड़ा, झारखंड हाईकोर्ट ने सुरेंद्र सरकार के निर्णय पर लगाई रोक, 11वीं 12वीं 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर, संघ ने भी किया मंथन, संसद मार्च के दौरान अधिक बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। और इमरान खान को लेकर बैकफुट पर शहबाज सरकार, सूत्रों के अनुसार जेल से अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारी, पाक पुलिस का जमावड़ा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: मुंबई जमीन सौदों पर आदित्य का आरोप, अंधेरी का खेल मैदान, 21 लाख में लीज, बोले हजारों करोड़ की जमीन में बड़ा भ्रष्टाचार। मुंबई में जमीन कब्जे के आरोप पर आदित्य ठाकरे का प्रदर्शन का ऐलान, 23 अगस्त को बांद्रा में जुटने की अपील, ठाणे शहर में। आरटीओ द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों की चेकिंग थाने में शुरू, 6 जगहों पर चेकिंग, जिन ऑटो वालों को मराठी नहीं आती उन्हें नोटिस। वसई विरार मीरा रोड भयंदर में मराठी नहीं बोलने वाले ऑटो चालकों पर कार्रवाई, 1 महीने की मोहलत, भाषा नहीं सीखी तो लाइसेंस परमिट रद्द। महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर एफडीए का शिकंजा, पुराने डिब्बों में तेल भरकर बेच ली, इस्तेमाल किए गए तेल को दोबारा बेचने पर कार्रवाई, तेल कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर भी कार्रवाई। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे का सख्त आदेश, मिलावट घटिया तेल पर कार्रवाई, 25% से अधिक टीपीसी वाला इस्तेमाल, दोबारा नहीं बिकेगा, 10 लाख तक का जुर्माना। मुंबई में विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर सितारों को नोटिस, तुकाराम बोले अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया किसी ने। पुणे में अमित शाह के एंटी नेशनल वाले बयान पर विजय वेट्टीकर का पलटवार, हमें राष्ट्र विरोधी कहने वाले अपनी विचारधारा का इतिहास देखें। मुंबई में 600 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन सौदे पर ईओडब्ल्यू की नजर, लोन ट्रांसफर, संपत्तियों की कीमत तय करने में गड़बड़ी का आरोप। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार अगस्त के पहले 2 सप्ताह में दुनिया में गोल्ड 9 और भारत में करीब 7% उछला, महंगे दाम के बावजूद बड़ा स्टॉक। मेमोरी चिप्स की बढ़ती लागत के असर से वन प्लस ओप्पो सैमसंग ने अपने दाम बढ़ाए, 8 महीने में 9वीं बार दाम बढ़ाए। बैंक ऑफ अमेरिका के सर्वे में दावा किया गया कि एशिया में भारत सबसे कम पसंदीदा मार्केट, कंपनियों की कमाई उम्मीद से बेहतर रहने के बावजूद निवेशकों का भरोसा कम हुआ। E20 से परेशान पुराने वाहन मालिकों को सरकार ऑयल कंपनीज दे सकती है राहत, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुझाव के बाद पुराने व्हीकल्स के लिए E10 पेट्रोल लाने पर चर्चा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि तेल दाम में महंगाई बढ़ने से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती करना जरूरी, अगस्त एमपीसी के मिनट्स ऑफ मीटिंग से मिले संकेत। बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने आ रहे हैं यश, आज से टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग शुरू, दर्शकों में उत्साह। सनावा घरों के बाद ओटीटी पर दस्तक दे रही है फिल्म वेलकम टू द जंगल, जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम, अक्षय कुमार, जैकलीन, रवीना, सुनील शेट्टी, अर्शद और 30 से अधिक सितारों की फिल्म। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो भी ओटीटी पर उपलब्ध, आज से G5 पर होगी स्ट्रीम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की सबसे चर्चित फिल्म जन नायकन ओटीटी पर, आज से G5 पर। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी तमिल रोमांटिक फिल्म प्यार प्रेमा कल्याणम, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। जेन जी को हर पार्टी आजकल रिझाने में जुटी हुई है। मोदी सरकार ने भी युवाओं के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की है, तो विपक्ष ने भी अपनी तैयारी को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में राहुल गांधी 22 अगस्त को पुणे में छात्राओं महिलाओं से संवाद करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राहुल गांधी छात्रों के बहाने अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन मौजूदा राजनीति का सच ये है कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अब जेन जी वोटर्स को टारगेट करने का मन बना चुके हैं।
2: सरकारें ही नहीं, देश में अरसे से सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी अब जेन जी और जेन अल्फा के मुद्दों के जरिए जमीनी आधार दोबारा हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चालू करने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। किस मंत्री को कब और किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का यह दौरा दिन भर का होगा, जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए पीएम बेहद गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों को ये भी सलाह दी है कि पारंपरिक तरीके छोड़कर अब जेन जी और युवा वोटर्स के पसंदीदा तरीकों से संवाद स्थापित करें। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया, उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था। खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए थे। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आकी गई, उसमें ये था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल एंगेजमेंट कितनी हुई, मंत्री के प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। उधर राहुल गांधी भी 22 अगस्त को पुणे में छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
3: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है, अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता। अभी पूना और पूना के आसपास जितने कांग्रेसियों की संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, उन संस्थाओं की ही लड़कियों को रजिस्टर करना, इस प्रकार का आदेश दिया गया है।
2: बहरहाल जेन जी के मुद्दे ने हर पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: मुंबई में ओपन ग्राउंड को लेकर राजनीतिक तनातनी बढ़ गई। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बड़े बड़े खेल के मैदान अब निजी ट्रस्ट के हाथों में दे रही है। हजारों करोड़ के ये ग्राउंड रिजर्वेशन बदलकर कन्वेंशन सेंटर में बदले जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने इस कथित जमीन घोटाले के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उन्होंने मुंबई वालों से आह्वान किया कि 23 अगस्त को शाम 5 बजे बांद्रा के रंग शारदा ऑडिटोरियम के बाहर जन प्रदर्शन के लिए जुटें।

0: क्या मुंबई में ओपन ग्राउंड के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष फडणवीस सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि महायुति अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बांद्रा तक मुंबई की जमीनों को लेकर बड़ा घोटाला कर रही है। मुंबई शहर में ऐसे कई ग्राउंड हैं जिनकी मौजूदा कीमत अरबों रुपए में है। शिवसेना, यूपीटी और कांग्रेस का आरोप है कि बड़े बड़े खेल के मैदान अब निजी ट्रस्टों के हाथों में जा रहे हैं।
1: ये तो भ्रष्टाचार चल रहा है, आपकी आंखों के सामने ये सारे मैदान, ओपन स्पेसेस, रिक्रिएशन ग्राउंड, प्लेग्राउंड सीएम साहब लेके अपने दोस्तों के पॉकेट्स में डाल रहे हैं। हमने तो विरोध किया है, सिर्फ निंदा पे नहीं रहेंगे लेकिन रास्ते पे उतर के विरोध करेंगे। तो दूसरा प्लॉट जो है नेविल डिसूजा फुटबॉल टर्फ, वहाँ हर एक टूर्नामेंट में हजारों खिलाड़ी खेलते हैं। हमारा युवा प्रेसिडेंट्स लीग होता है, उसमें लगभग 7,000 से ज्यादा बच्चे बच्चियां खेलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स, बहुत सारे लोग वहां खेलते हैं। वो भी प्लॉट लेके वहां उनको एग्जीबिशन सेंटर बनाना है और बीजेपी वालों का नाम देना है, किसी बीजेपी के नेता का नाम देना है। आज जिसका नाम है वहां नेविल डिसूजा करके, जो हमारे भारत को रिप्रेजेंट करने वाले ओलंपियन थे, उनका नाम हमने दिया था। बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं मुंबई में जो सीएम साहब प्लेग्राउंड या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रिजर्वेशन, जैसे मुलुंड का है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रिजर्वेशन है, वहां पेट्रोल पंप बनाना चाहते हैं। अभी इथेनॉल कितना मिक्सिंग होगा पता नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार का तो मिक्सिंग बहुत हो रहा है इसमें और हम इसका विरोध करेंगे।
0: मुंबई का ऐतिहासिक अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 12 एकड़ में फैला यह मैदान अब आम जनता के लिए बंद हो रहा है। आदित्य ठाकरे का आरोप है कि कुल 16 एकड़ जमीन बीजेपी एमएलसी अमरीश पटेल के ट्रस्ट को दे दी गई है। हजारों करोड़ की इस प्राइम प्रॉपर्टी की लीज सिर्फ 21 लाख रुपए महीना तय की गई है। पहले जहां आम नागरिक खेलते थे वहां अब नो ट्रेसपासिंग के बोर्ड लग चुके हैं। आदित्य ठाकरे ने इस कथित जमीन घोटाले के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। उन्होंने मुंबईकर से आह्वान किया कि 23 अगस्त को शाम 5 बजे बांद्रा के रंग शारदा ऑडिटोरियम के बाहर जन प्रदर्शन के लिए जुटे।
1: विरोध करने के लिए मैं आप ही के माध्यम से सारे मुंबईकरों को विनती कर रहा हूं कि आइए नेविल डिसूजा टर्फ बांद्रा में रंग शारदा के सामने संडे को 5 बजे, कोई पॉलिटिकल फ्लैग नहीं रहेगा, सारे लोग मुंबईकर और हाथों में तिरंगा करके सामने आएंगे और मुख्यमंत्री महोदय के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई शुरू करेंगे। अगर तिरंगा पे प्यार हो, भारत देश पे प्यार हो और भारत के भविष्य पे प्यार हो तो मुख्यमंत्री ने ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मैं साफ आज आरोप कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री और भाजपा जेन जी विरोधी है। इस देश में अगर आप ओपन स्पेसेस छीन रहे हो, खेल के मैदान छीन रहे हो, तो भारत के भविष्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। ये मेरा साफ आरोप सीएम साहब पे है।
0: वहीं मुंबई की मेयर रितु तावड़े विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं।
2: आपने उसको पूरा कमर्शियल हब वो बना दिया है, पूरा मैदान बना दिया है, हम क्या बोलते हैं टर्फ बना के उसको कमर्शियल उसका यूज कर रहे हैं। तो ये जो है ये सब करना, हम क्या करते हैं, हम सर्वसामान्य घर के जो बच्चे हैं उनको खेलने के लिए मैदान करते हैं। अगर इसको कमर्शियल आपने पूरा टर्फ बना के फुटबॉल का पूरा मैदान बना दिया है तो उधर तो पैसा दे के ही बच्चे आने वाले हैं, जो हमारे गरीब बच्चे नहीं आ सकते। तो ये जो विषय था, लेकिन इसका जो रिजर्वेशन है जो पहले का था उसको चेंज करने का था काम जो है वो आदित्य ठाकरे जी ने किए।
0: बीएमसी में बीजेपी पार्षदों के नेता गणेश खनकर ने भी कहा कि बीजेपी सरकार और बीएमसी मुंबई के विकास को और गति देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन विपक्ष अपनी सियासत चमकाने के लिए जनता को गुमराह कर रहा है।
3: कल 5 स्कूलों के रिलेटेड भी जो प्रपोजल है वो लाया गया था, कोस्टल रोड की बात हुई जहाँ पे 15% रिलायंस लेने वाला, तो क्या इस तरीके की बात की जा रही है कि ओपन स्पेसेस जो है उससे कहीं ना कहीं वो एक रेवेन्यू जनरेशन सोर्स बन गया है, ये बात कितनी सही?
4: देखिए ये बेबुनियादी बातें हैं। कोस्टल रोड पे साहब आप देख सकते हो, कोस्टल रोड बनने के बाद पूरे दक्षिण मुंबई की ट्रैफिक नील हो गई। पहले के ज़माने में मुंबई को दिखाते थे तो गेटवे ऑफ इंडिया दिखाने के बाद मुंबई की आइडेंटिटी खत्म होती थी। आज आप देख सकते हो मुंबई के कोई भी मानचित्र में अब मेट्रो दिखाई देती है, कोस्टल रोड दिखाई देता है, पूरे भारत से लोग इस कोस्टल रोड को देखने अब आते हैं। यही कोस्टल रोड अब उत्तन भाईंदर तक जाने वाला है। आप देख सकते हो वहाँ पर ग्रीनरी आ रही है और मुझे थोड़ा अजीब इस बात का लगता है कि विरोधक पार्टी जब आरोप करती है तो कुछ तथ्य तो दे। नेविल डिसूजा ग्राउंड के बारे में भी बेबुनियादी बातें बताई जा रही है। वहाँ पर मूलतः कन्वेंशन सेंटर का ही आरक्षण है ना वहाँ पर। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब उभाटा के मंत्री वहाँ पर थे, आदित्य ठाकरे जी खुद मंत्री थे, खुद पालक मंत्री रहे, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं किया?
0: इसी कड़ी में बीएमसी ने बांद्रा रिक्लेमेशन के मशहूर नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड का रिजर्वेशन भी बदल दिया है। इस फुटबॉल ग्राउंड को अब एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर बनाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट के कई डिपो की जमीनों को भी निजी हाथों में सौंपने का आरोप लग रहा है। लेकिन 23 अगस्त को ये जन आंदोलन मुंबई की जमीनों को बचाने में कितना असरदार साबित होता है, इसका इंतजार रहेगा।
5: मुंबई के प्राइम लोकेशंस पर ओपन स्पेसेस और प्लेग्राउंड हड़पने की कोशिश यहां पर महायुति सरकार की तरफ से हो रही है, ऐसा आरोप शिवसेना के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने लगाया है। आज अंधेरी के एक प्लेग्राउंड में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली। यहाँ के स्थानिक शिवसेना यूबीटी के विधायक हरुण खान हमारे साथ है। आखिरकार क्या मसला है, क्योंकि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी आदित्य ठाकरे आरोप कर रहे हैं कि बीजेपी के एमएलसी से जुड़े हुए एक ट्रस्ट को कुल मिलाकर मुंबई की 16 एकड़ जमीन दी जा रही है, उसमें से यहाँ जो प्लेग्राउंड है वो कितने एकड़ का हिस्सा है और इसकी आज की मार्केट वैल्यू क्या है?
6: ये जिस वक्त हमने आज से 12 साल पहले इसका काम हाथ में लिया था 2017 में, तभी हम लोगों ने 5.5 करोड़ में महानगर पालिका ने ये जमीन वीएन देसाई हॉस्पिटलिटी से खरीदी थी। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि ये किसी प्राइवेट आमदार को के ट्रस्ट को, जो एक आमदार है, उनको देकर ये 21 लाख हर साल के हिसाब से उनको ये स्टेडियम दिया जा रहा है। अभी एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब कोई प्राइवेट एनजीओ या प्राइवेट ट्रस्ट अगर कोई जगह लेता है, वो 21 लाख रुपए अगर उसको हर साल देना है, तो वो 21 लाख का 21 करोड़ बनाने की कोशिश करेगा। तो फिर जो यहाँ पर जो बच्चों के खेलने के, जो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, जो यहाँ पे टेनिस है, हमारा जो एम था, जो हमारा दिमाग में बैठा हुआ था कि हमारे नगर सेविका आज वो दिवंगत है, उनके और हमारे जो दिमाग में थे कि ये आम लोगों के लिए, यहाँ के अतराप में रहने वाले लोगों के लिए इसका फायदा होना चाहिए, वो फायदा नहीं होगा।
5: बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुंबई के ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर इस तरह की ओपन स्पेसेस बची नहीं है, और जो बची है वो अब ट्रस्ट मांग कर रही है कि उन्हें दी जाए, वो भी बीजेपी से जुड़े हुए एक एमएलसी द्वारा ये मांग की गई है। अब शिवसेना यूबीटी हो या तो फिर दूसरी अन्य विपक्षी पार्टियां हो, सब मिलकर इस मुद्दे को उठा रही है और हाल फिलहाल में इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा होने जा रहा है, सड़क पर उतर कर इसका विरोध किया जाएगा। आदित्य ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसका ऐलान भी किया है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
7: महाराष्ट्र में मराठी भाषा की अनिवार्यता पर मचे घमासान के बीच आज से परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। जो गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालक मराठी नहीं बोल पाए, उन्हें अधिकारियों ने नोटिस दे दिया। अब ये लोग एक महीने में मराठी अगर नहीं सीख पाए तो इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, और इसके बावजूद ड्राइवर मराठी नहीं सीखते हैं तो सरकार ये मानेगी कि वो मराठी भाषा से नफरत करते हैं, जिसके बाद इन ड्राइवर्स का लाइसेंस और परमिट हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

0: आज से महाराष्ट्र में परिवहन विभाग ने मराठी भाषा वाला अभियान शुरू कर दिया है। मुंबई समेत पूरे राज्य में आरटीओ ने गैर मराठी टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की मराठी की वर्किंग नॉलेज चेक करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। जिन ड्राइवरों को मराठी की प्रैक्टिकल जानकारी की कमी पाई गई, उन्हें नोटिस दिया गया और मराठी भाषा सीखने के लिए एक महीने का समय दिया गया।
1: और एक नोटिस आरटीओ की तरफ से तैयार किया गया है, ये उन लोगों को और एक महीने की मोहलत देने के लिए है जो अभी भी इस ओरल टेस्ट में फेल हो रहे हैं।
2: हाँ जी, वैसा ही है, जैसे रूल में हमारा वैसा प्रावधान किया जा चुका है कि जिसको नहीं आता है तो उनको एक महीने का नोटिस सर्व करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये चल रहा है।
1: इसमें ऐसी कुछ बात नहीं कि आज से नहीं मराठी आती है तो टैक्सी ऑटो चलाने नहीं मिला जाएगा, जो मुद्दत है वो देने के लिए तैयार है, मराठी सीखने की इच्छा होनी चाहिए, इतना ही इस रूल का प्रावधान।
2: हाँ, उतना ही है। वैसे अभी 15 अगस्त तक हमारे ऑफिस ने 3,767 लोगों को भी ट्रेनिंग दे चुका है। मराठी प्रसारण मंडल के हिसाब में गवर्नमेंट ने भी उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, उतने लोग सीखे हैं, तो जो नहीं सीखे हैं तो उनका भी हम रोड ऑन रोड अभी सब खरारी का चेक कर रहे हैं, सर्टिफिकेट है या नहीं है, उसका वर्किंग नॉलेज है या नहीं है, तो उसके हिसाब से हम आगे का एक्शन डिसाइड कर रहे हैं।
1: धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आरटीओ इंस्पेक्टर सुत्रावे साहब हैं, उनके जो टीम है वो आरटीओ की यहाँ पर आपको दादर में जगह जगह दिखेंगी कि इंस्पेक्शन जो है वो टैक्सी ड्राइवर्स के साथ हो रहा है। उनको 15 जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं, उसका बिल्कुल भी मराठी का नॉलेज नहीं है, तो एक नोटिस दिया जा रहा है जिसमें एक महीने के अंदर मराठी सीखने की मुद्दत है। अगर रिपीटेड नोटिस देने के बाद भी अगर बेसिक मराठी नहीं प्रोफिशियंट होती है तो लाइसेंस सस्पेंशन पर बात जा सकती है, इसमें लॉ में प्राविधान है।
0: आरटीओ अधिकारियों ने उन लोगों को भी नोटिस दिया जो मौखिक मराठी टेस्ट में फेल हो गए थे। उनके पास 15 क्वेश्चन पेपर हैं, जिनमें आने जाने के दौरान ड्राइवर और यात्री के बीच बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे मराठी में पूछना कि क्या आप किसी खास जगह पर जाएंगे, मराठी में जवाब देना कि इसमें कितना समय लगेगा।
1: कहीं ना कहीं बेसिक मराठी अगर आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात ये बात सही।
3: बेसिक मराठी मतलब मराठी आती है, आना अच्छी बात है, आदमी को हर भाषा का ज्ञान रहे और अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो क्या है, किसी के दिमाग की बात है, नहीं बैठता है उसके समाज, समझ नहीं आ रहा है, उसको जोर जबरदस्ती न किया जाए, जो सीख ले अच्छी बात है, क्योंकि 90% मान के चलिए कि टैक्सी ड्राइवर अनपढ़ मिलते हैं। हमारे जैसे हम भी पढ़े नहीं, हाई स्कूल पास किए थे हमारे समय में, तो हम लोग तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान होके भी हम लोग सीख लिए। कुछ लोग ऐसे हैं सर कि ज्ञान उनको आता ही नहीं, बैठता ही नहीं, एक बार उनको बोलो भूल जाएंगे। और हम लोग को क्या है सर, हमें एक बार दो बार अगर कोई बोल दिया तो उसको हम ज्ञान अपने अंदर डाल देते हैं, हाँ इसका मतलब ये होता है। हाँ, और हमारा सब समय था, आज लागू किया गया, जब मैं बैच और लाइसेंस बनाया था ये सब कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, आज लागू किया गया है तो इसको ठीक है। जो जैसे मान लीजिए कि 45 साल 60 साल की उम्र है तो आदमी खत्म हो चुका है, 45 साल वालों तक को लागू किया जाए, 45 के ऊपर वालों को न लागू किया जाए, क्योंकि वो मंदबुद्धि हो जाता है, इसलिए 45 साल के अंदर है तो उसको अनिवार्य किया जाए, इसके बाद अनिवार्य न किया जाए।
1: क्या बाकी ड्राइवरों में ऐसा लगता है कि आप नहीं काम कर पाएंगे अगर मराठी नहीं आती है?
3: ड्राइवर में नहीं काम कर पाएंगे ये तो अच्छी बात नहीं है। ड्राइवर
1: आते होंगे ना, आप एक्सपीरियंस हो, आपसे पूछते होंगे क्या करे, क्या कल गाँव चले जाए क्या, वापस खेती बाड़ी करे?
3: हाँ नहीं, वो उनका विचार है, क्या करेंगे वो समझेंगे।
4: मुंबई मेट्रो में एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे क्यों सास ने बहू का मर्डर किया। देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: इस तरह का कोई भी कृत्य वो गैर कानूनी भी है, कानून के तहत कार्रवाई करने के योग्य भी है। इस तरह की गतिविधियां हरकतें अगर कोई करता है, और पार्टी किसी नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, ऐसे पार्टी के मुखिया की उपस्थिति में अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति और देश के मानबिंदुओं के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, उनकी कितनी आस्था है, उनकी कितना उनके मन में पवित्रता का भाव है, देश के सामने प्रकट हो जाता है।
1: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। नहीं, मैंने पहले भी नहीं गाया, अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: मुंबई में एक बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू की बेरहमी से हत्या कर दी। पहले मर्डर की सुपारी उसने अपनी नौकरानी को 3 लाख रुपए में दी और उसके बाद नौकरानी के साथ मिलकर बहू का गला दबाकर मर्डर कर दिया। पुलिस ने बुजुर्ग महिला समेत 5 को गिरफ्तार किया है।
2: यकीन आए ना आए, लेकिन ये कहानी पूरी फिल्मी है। इस वारदात में मुंबई में एक महिला ने अपनी बहू की हत्या कर दी। सास ने अपनी बहू के मर्डर के लिए काम छोड़ चुकी नौकरानी और उसके परिवार वालों को बाकायदा सुपारी दी थी। 17 अगस्त को घाटकोपर में 60 साल की धनलक्ष्मी भिक्षापति गंजी नाम की महिला अपनी बहू को हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां उसने बताया कि वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब पुलिस को शरीर पर कई चोट के निशान मिले तो शक के आधार पर जांच शुरू हुई।
3: 35 वर्षीय सपना गंजी कुछ ही महीनों पहले दुबई से अपने बेटे के साथ घर पर छुट्टियां मनाने आई थी। 17 अगस्त को उनकी बॉडी मिलती है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उन्हें मृत घोषित किया गया। पुलिस को शक हुआ क्योंकि सपना गंजी के सर पर एक जख्म का निशान मिला, जिससे रक्त स्राव हो रहा था और इसके अलावा गले पर भी कुछ नीले और काले निशान मिले। धनलक्ष्मी गंजी, जो कि सपना गंजी की सास है, उनसे पूछताछ की गई। लगातार पूछताछ करने के बाद धनलक्ष्मी गंजी ने यह कहा कि पिछली रात उनकी सपना गंजी से झगड़ा हुआ था और उन्होंने उसे ढकेल दिया और ढकेलने की वजह से वो गिरकर मर गई है।
2: जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो खुलासा हुआ कि सास ने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपनी बहू की गला दबाकर हत्या की थी। उससे पहले लाल मिर्च पाउडर उसकी आंखों में डाला था। इतना ही नहीं, उसके गले पर खड़े होकर गला दबाया गया था। पुलिस ने आरोपी सास समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद आरोपी महिला ने नौकरानी और उसके परिवार को 3 लाख रुपए देने का वादा किया था।
4: इनिशियली 17 तारीख को हमको रात को एक मैसेज मिला था कि सपना प्रमोद गंजी नाम की एक 35 साल की जो महिला है, वो बाथरूम में गिर करके उसको चोट पहुंची है और उसको राजेवाड़ी अस्पताल लेके गया है। राजेवाड़ी अस्पताल के डॉक्टर ने जब उनको बेसिक ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, तब ध्यान में आया कि वो ब्रॉड डेड है। और ब्रॉड डेड होने के बाद में हमने अपने जो ऑफिसर्स थे घटनास्थल पे, और उन्होंने जांच चालू की कि इतने फास्ट कैसे क्या डेथ हो सकती है। तो उसमें ऐसे उनके सास के पास, जिनका नाम धनलक्ष्मी गंजी है, आरोपी है, उनके पास इंट्रोगेट करने के बाद पता चला कि उनका और उनका झगड़ा था और 2024 में उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और 498 के तहत भी जो बहू थी जो मर गई, उन्होंने भी मुकदमा दाखिल किया था। इसके बाद और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये ध्यान में आया कि दिस इज नॉट अ नेचुरल डेथ, और उसमें ये जो सास है उन्होंने, आरोपी क्रमांक एक, उन्होंने अपनी पहले वाली जो एक मेड सर्वेंट थी, उनका नाम था मंगला जाधव, उसका हस्बैंड सुरेश जाधव, उसका बेटा साजन जाधव और उनकी बेटी शिवानी जाधव, इन सबको लेकर के उनको प्लान किया। 3 लाख रुपए से उनका ये सौदा तय हुआ और दोपहर के वक्त 4:30-5 बजे के करीब ये लोग घर में घुसे और घर में घुस करके उसको गला दबा करके मारहाण करके उसका मर्डर किया है।
2: बहू की हत्या करने वाली सास और बाकी 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 24 अगस्त तक पूछताछ के लिए आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया।
3: सर, कुछ मिर्ची पाउडर वगैरह भी इस्तेमाल हुआ है?
4: मिर्ची पाउडर ये की है, कुछ हाथापाई की है, गला दबाया है, जितने सारे उनको ये कर सकते थे टू इंश्योर द मर्डर, उन्होंने सब प्रयास किए। उसके आँख में भी मिर्ची पाउडर डाली और ग्लास भी उसके सर पे मारा है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दरमियान बरामद हुई है, जब्त हुई है और ये 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन पंतनगर पुलिस थाने के अधिकारी कर रहे हैं।
2: वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।
3: आगे और भी शक हुआ, उन्होंने सीसीटीवी देखा। सीसीटीवी में कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें धनलक्ष्मी गंजी की पूर्व नौकरानी मंगलाबाई जाधव और उनके परिवार के लोग, उनके पति, उनका बेटा, उनकी बेटी भी शामिल थे। ये सारे लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके ये सब लोग सपना गंजी के घर में गए। उसके बाद सपना गंजी को इन्होंने मारा, इन्होंने उसका गला दबाने की कोशिश की, उसकी ओढ़नी से उसका गला दबाया, एक शीशे का ग्लास उसके सर पर दे मारा। इसके बाद भी जब सपना गंजी मरी नहीं तो उनके गले पर पैर से दबाकर उसका दम घोट दिया गया, उसे मार दिया गया। अब ये सारे ही आरोपी, ये पांचों आरोपी जिसमें धनलक्ष्मी गंजी ये भी शामिल है, और इसके अलावा उनकी पूर्व नौकरानी मंगलबाई जाधव, उनके पति, उनका बेटा, उनकी बेटी, ये सारे ही आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है और 24 अगस्त तक पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया गया है। कैमरा पर्सन राजेश रेवनकर के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
1: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

वंदे मातरम के छंद पर राजनीतिक प्रचंड अमित शाह ने बताया देश विरोधी मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति। इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष का उत्सव मनाएगी बीजेपी। सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम। जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर अदालत का हथौड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के निर्णय पर लगाई रोक। 11वीं 12वीं 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर। संघ ने किया मंथन। संसद मार्च के दौरान अधिक बलप्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। और इमरान खान को लेकर बैकवर्ड पर शहबाज सरकार। जेल से अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारी। पाक पुलिस का जमावड़ा।

वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक घमासान जारी। अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले वंदे मातरम के दो छंद गाने का निर्णय देश विरोधी। 1937 में कांग्रेस ने गीत को बांटकर विभाजन की रखी नींव। अमित शाह का राहुल पर निशाना, बोले तुष्टीकरण की राजनीति फिर से तेज। कांग्रेस ने वंदे मातरम के दो टुकड़े किए। आंदोलन के दबाव में जेपीएससी परीक्षाएं रद्द करने के निर्णय पर हाईकोर्ट की रोक। सोरेन सरकार को झटका, 11वीं 13वीं जेपीएससी के नियुक्त अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। जेपीएससी पर हाईकोर्ट की रोक के बाद देवेंद्र महतो बोले सरकार ने धोखा दिया तो आंदोलन फिर होगा। पेपर लीक और अनियमितताओं से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद। महतो ने सरकार को दी चेतावनी, सीआईडी रिपोर्ट कार्ड में ठीक से क्यों नहीं रखी, पर्दा डालने की कोशिश हुई तो नहीं सहेंगे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर, संघ ने भी किया मंथन। संसद मार्च के दौरान अधिक बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। राहुल का महिलाओं से संवाद, समाज की नहीं अपनी आवाज बताइए। 22 अगस्त को पुणे में महिला विशेष, छात्रों की गूंज कार्यक्रम। बंगाल के 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, एसएसबी में करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। शनिवार को पहाड़ी जिलों के मुद्दों पर मंथन। पीएम ने दिल्ली में सचिवों के साथ बैठक की, देश के भविष्य के लिए मिलकर काम करने, नई सोच अपनाने पर जोर दिया। बागपत में अखिलेश यादव के चवन्नी को रुपया बनाने वाले बयान पर आरएलडी नेता दिलनवाज खान का बयान, बोले वो अल्पसंख्यकों को अछूत समझते हैं, उनके समय में गुंडों की सरकार थी। लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होगी, अमित शाह बोले दूरदराज के लोगों को मिलेगा न्याय तक आसान और तेज पहुंच का लाभ। लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच को स्वीकृति को लेकर अमित शाह ने कहा संवैधानिक सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पीएम के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी मनाएगी सेवा संकल्प महोत्सव, 15 दिन तक देशभर में कार्यक्रम। सेवा संकल्प महोत्सव में स्वच्छता, रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविरों के साथ विकास, सुशासन पर कार्यक्रम। 22 को बीजेपी अध्यक्ष तैयारियों की समीक्षा करें। योगी सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर फोकस, यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सीधे अभिभावकों के खाते में पैसा भेज रही है। मुंबई जमीन सौदों पर आदित्य ठाकरे का आरोप, अंधेरी का खेल मैदान 21 लाख में लीज, बोले हजारों करोड़ की जमीन में बड़ा भ्रष्टाचार। मुंबई में जमीन कब्जे के आरोप पर आदित्य ठाकरे का प्रदर्शन का ऐलान, 23 अगस्त को बांद्रा में जुटने की अपील। थाने में आरटीओ द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों की चेकिंग शुरू, 6 जगहों पर चेकिंग जारी, जिन ऑटो वालों को मराठी नहीं आती उन्हें दिया जा रहा है नोटिस। वसई विरार मेरा भाईंदर में मराठी नहीं बोलने वाले पर आरटीओ की कार्रवाई, 1 महीने की मोहलत, भाषा सीखो वरना लाइसेंस परमिट रद्द। महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर एफडीए का शिकंजा, पुराने डिब्बों में तेल भरकर बेचने, इस्तेमाल किए तेल को दोबारा बेचने पर सख्त कार्रवाई। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे का सख्त आदेश, मिलावट घटिया तेल पर कार्रवाई, 25% से अधिक टीपीसी वाला इस्तेमाल तेल दोबारा नहीं बिकेगा, 10 लाख रुपए का जुर्माना। मुंबई में विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर एफडीए ने सितारों को भेजा नोटिस, तुकाराम बोले अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। पुणे में अमित शाह के एंटी नेशनल वाले बयान पर विजय वडेट्टीकर का पलटवार, हमें राष्ट्रविरोधी कहने वाले अपनी विचारधारा का इतिहास देखें। मुंबई में 600 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन सौदे पर ईओडब्ल्यू की नजर, लोन ट्रांसफर, संपत्तियों की कीमत तय करने में गड़बड़ी के आरोप। धर्मेंद्र प्रधान ने द भारत मॉडल किताब लॉन्च की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों से विकसित भारत, भविष्य के युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। आज तक की खबर का असर, जैन अल्फा स्कूली बच्चों के आगे झुका महोबा प्रशासन, डीएम एसपी ने गांव पहुंचकर सुनी समस्या, कोतवाल पर कार्रवाई का आश्वासन। मणिपुर के में प्रदर्शन के दौरान तनाव, आंसू गैस के इस्तेमाल से 4 घायल। अन्नपूर्णा भंडार का पैसा नहीं मिलने पर महिलाओं का प्रदर्शन, आसनसोल एसडीओ कार्यालय के बाहर दूसरे दिन भी हंगामा। पटना पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, अधीक्षक की सुरक्षा के आश्वासन के बाद काम पर लौटे। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का 80 वर्ष की उम्र में निधन, तिहाड़ जेल में बंद थे, अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। पश्चिमी मेदिनीपुर में बाढ़ से 2 की मौत, परिवारों को 9-9 लाख रुपए का मुआवजा, सीएम
शुभेंदु का ऐलान। प्रयागराज में बाढ़ से डूबने लगे सामान और दुकानें, संगम जलमग्न, सड़कों पर चलने लगी नाव। मिर्जापुर में बारिश का कहर, मिट्टी की दीवार गिरने से 3 की मौत, 1 घायल। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन कटाव। सहारनपुर में हवा में झूले डिवाइडर, सो रहा है NHAI प्रशासन। पन्ना में आफत की बारिश, उफनते नदी नालों में बही महिला, लोगों ने रेस्क्यू कर मुश्किल से बचाई जान। गोंडा के 5 गांव के 12,000 की आबादी बाढ़ से पीड़ित, नाव सहारा। बाढ़ पीड़ितों के लिए आवागमन के लिए 87 नावें गांव में लगाई गई। रीवा में बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति, शहर के कई स्थानों में घरों में पानी घुसा, लोग घरों में कैद, राहत बचाव दल ने लोगों को बचाया। रोहतास सोन नदी में जलस्तर बढ़ा, सोन नदी के टीले पर रहने वाले लोगों को छोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश। चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर, सड़क पर दौड़ रही नाव। मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ चौकिया रेस्क्यू टीमें तैनात। लखनऊ में SBI के फील्ड ऑफिसर ने बैंक रिलेशनशिप मैनेजर पत्नी और अपनी बहन की गोली मारकर हत्या की। दिव्या मिश्रा यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। बहन पत्नी की हत्या कर मानस वाजपेयी ने फिर खुद को मार ली गोली, आत्महत्या कर ली। पत्नी दिव्या के घर वालों को मानस ने बताया सन की। मानस कार से ICICI बैंक पहुंचा, फोन करके पत्नी दिव्या मिश्रा को ऑफिस में बाहर बुलाया, थोड़ी देर बातचीत की और फिर गोली मार दी। बैंक से मानस सीधे 2 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचा, कमरे का दरवाजा बंद किया, बहन को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मार ली। आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे, दरवाजा तोड़ा, लाशें मिली। हत्या का कारण साफ नहीं, मानस के व्हाट्सएप स्टेटस में दिखा। मानस ने लिखा, धोखेबाज पत्नी की हत्या की, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। सूरत के सरकारी स्कूल में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, सिक्योरिटी गार्ड समेत 4 गिरफ्तार। पुणे में चलती स्कूल वैन में भीषण आग लगी, छात्रों के नहीं होने से टला हादसा। सूरत में सिक्योरिटी गार्ड पर आवारा कुत्तों का हमला, CCTV में कैद घटना। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक पर जानलेवा स्टंट, चलती कार से आधा शरीर बाहर निकालकर सेल्फी लेते नजर आया व्यक्ति। सूरत में दुकानदार से पुलिस की मारपीट का CCTV, मुफ्त पानी, नाश्ता न देने पर पिटाई। मालदा में घास काटने गई महिला की रेप के बाद हत्या, गिरफ्तारी के लिए लोगों ने बिहार स्टेट हाईवे जाम किया, टायर में आग लगाई। वडोदरा में बस के दरवाजे में फंसने से 7 वर्ष के मासूम की मौत हुई, पुलिस ने हर एंगल से जांच करने की बात कही। पुणे के एक हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला और नवजात की मौत, परिजनों ने लापरवाही के गंभीर आरोप डॉक्टर्स पर लगाए। दक्षिण 24 परगना की चंपाहाडी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 3 गंभीर रूप से घायल। शामली में DM की फटकार के बाद किसान ने आग लगा ली, 10 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। सफदरजंग में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। शाहजहांपुर में पुलिस दबिश के दौरान सराफा व्यापारी की मौत, परिजनों ने धक्का देने का लगाया आरोप। सोनीपत में नगर निगम के सीवरेज ट्रैक्टर ने 11 वर्ष की बच्ची को कुचला, मौके पर मौत। इंदौर में 3 वर्ष की बच्ची से प्रताड़ना का आरोप, बैग में छिपे वॉइस रिकॉर्डर से खुलासा, टीचर पर केस। लखनऊ में पुलिस चेकिंग से बचने का खतरनाक स्टंट, सफारी चालक ने बैक गियर में तोड़ी बैरिकेडिंग। चंद्रपुर में नशे में कार चालक का तांडव, 5 किलोमीटर तक तबाही, 1 की मौत, 4 घायल। वाराणसी में 3 दिन से लापता छात्रा का शव प्रेमी के किराए के कमरे में मिला, फरार प्रेमी को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमें गठित की। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में चलती ट्रेन के आगे 71 वर्ष की मां को धक्का दिया, 45 वर्ष का बेटा गिरफ्तार। मसूरी में 20 सड़क 2 गुटों में जमकर मारपीट, हाथ लात घूसों से वार, पुलिस जांच में जुटी। मंडी में टनल में 2 ट्रकों की भिड़ंत, 4 की मौत, 7 घायल। नवादा में थाने से 50 मीटर दूर दिनदहाड़े फायरिंग, मोबाइल छीनने के विरोध में युवक ने लहराई बंदूक, 20 पर FIR। आज तक की खबर का असर, झांसी में जर्जर, आवागमन बंद, पानी के तेज बहाव में बच्चों के नदी पार करने पर प्रशासन हुआ सख्त। हिसार कोर्ट परिसर में गैंगस्टर विनोद काड़ा की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में बीच सड़क ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 घायल, CCTV में कैद। विशाखापट्टनम के निजी स्कूल में बच्चे की संदिग्ध मौत, शिक्षक पर पिटाई का आरोप, CCTV में डांटते दिखे शिक्षक।
जयपुर में वीडियो पोस्ट कर युवक ने ट्रेन के आगे दी जान। वीडियो में कहा, मेरी मौत के लिए माता पिता और भाई जिम्मेदार। रामनगरी अयोध्या धाम में पूर्ण श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है प्रसिद्ध सावन झूला उत्सव। 28 अगस्त तक चलेगा 14 दिवसीय धार्मिक उत्सव। भगवान श्री राम के करोड़ों भक्तों के लिए अच्छी खबर। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र बोले, सितंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा मंदिर का निर्माण कार्य। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ जारी। 28 अगस्त तक रहेगी यात्रा, 12 दिन यात्रा का समापन। बुजुर्गों के सम्मान सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। माता पिता बच्चों को संपत्ति से कर सकते हैं बेदखल अगर बच्चे नहीं करते सम्मान और सुरक्षा। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का निर्णय। 2027 से पेट्रोल डीजल सीएनजी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार अगस्त के पहले दो सप्ताह में दुनिया में गोल्ड 9 और भारत में करीब 7% उछला। महंगे दाम के बावजूद पहले से अधिक बिका। मेमोरी चिप्स की बढ़ती लागत के असर से वन प्लस ओप्पो सैमसंग ने बढ़ाए दाम। वन प्लस ने 9 महीने में 5वीं बार, सैमसंग ने 9वीं बार दाम बढ़ाए। बैंक ऑफ अमेरिका की सर्वे में दावा किया गया एशिया में भारत सबसे कम पसंदीदा मार्केट। कंपनियों की कमाई उम्मीद से बेहतर रहने के बावजूद भरोसा कमजोर। E20 से परेशान पुराने वाहन मालिकों को सरकार और ऑयल कंपनीज दे सकती हैं राहत। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुझाव के बाद पुराने व्हीकल्स के लिए E10 पेट्रोल वापस लाने पर चर्चा। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि तेल कीमतों में महंगाई बढ़ने पर मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती करना जरूरी। अगस्त की MPC के मिनट्स ऑफ मीटिंग से मिले संकेत। बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने आ रहे यश, आज से एडवांस बुकिंग शुरू, दर्शकों में उत्साह। सिनेमाघरों के बाद OTT पर दस्तक दे रही है फिल्म वेलकम टू द जंगल। जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम, अक्षय, जैकलीन, रवीना, सुनील, अर्शद की फिल्म। जैकी श्रॉफ की द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो भी अब OTT पर। 5G5 पर होगी स्ट्रीम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की सबसे चर्चित फिल्म जन नायकन OTT पर स्ट्रीमिंग को तैयार, आज से उपलब्ध। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी तमिल रोमांटिक फिल्म प्यार प्रेमा कल्याणम। हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में देख सकेंगे आप। यामी गौतम की अपकमिंग फैंटेसी फिल्म नई नवेली का टीजर 16 अक्टूबर को होगी रिलीज। फिल्म महाकाली में असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाएंगे अक्षय खन्ना। 24 अगस्त को मिलेगी झलक। मिर्जापुर द मूवी का नया गाना रिलीज। इमोशनल अंदाज में पेश किया गया गाना। महाकाव्य श्री रामायण कथा का पहला पोस्टर टीजर जारी। श्री राम की भूमिका में देव शर्मा मां सीता के किरदार से फीचर फिल्मों में कदम रख रही हैं अंजलि अरोड़ा। बॉक्स ऑफिस पर चला आवारापन 2 का जादू। लगातार मजबूत पकड़ बनाए रखते हुए 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने की तरफ बड़ी फिल्म। यूक्रेनी राजधानी कीव पर बैलिस्टिक क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइलों से बड़ा हमला। रूसी एयर स्ट्राइक में 12 की मौत, 30 से अधिक घायल। रिहायशी इमारतें तबाह, कुछ हिस्सों में बिजली सप्लाई प्रभावित। कल शोक दिवस। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट की आखिरी बाहरी बिजली लाइन बंद, अब इमरजेंसी डीजल जनरेटर्स के भरोसे प्लांट। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर को मॉस्को दौरे को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। रूस ने कहा था दोनों के साथ बातचीत को हैं तैयार। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने तुर्की को दी चेतावनी, सीरिया में सैन्य मौजूदगी इजरायल के लिए खतरा पैदा कर सकती है। तुर्की ने कहा बेअसर। वेस्ट बैंक में कार्रवाई को लेकर इजरायल में अमेरिका के राजदूत की सख्त चेतावनी। फिलिस्तीन अमेरिकी नागरिकों की संपत्ति पर इजरायली बाशिंदों द्वारा जबरन कब्जा, डराने की कार्रवाई नहीं की जाएगी स्वीकार। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को दागी संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल। कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्र में दागने का जापान दक्षिण कोरिया ने किया दावा। चीन ने अमेरिकी ड्रोन टैरिफ के निर्णय का कड़ा विरोध किया। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता बोले, अमेरिका को ड्रोन उपकरणों पर लगाए गए टैरिफ तुरंत वापस लेने चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान को लेकर बड़ा बयान, जेल से रिहाई के बाद सेना प्रमुख से नहीं टकराएंगे इमरान,
आसिम मुनीर इमरान के बीच लंबे समय से तनाव, 2023 से जेल में है इमरान। प्रिंस हैरी मेगन की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ब्रिटिश पीएम ने कहा निजी, कहा सरकार नहीं उठाएगी सुरक्षा खर्च, 2020 में शाही जिम्मेदारियां छोड़ दी थी। दुनिया की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी अरिना सबालंका को सिनसिनेटी ओपन में लगा बड़ा झटका, चेक गणराज्य की 20 वर्षीय सारा बेजलेक ने 7-6, 6-4 से हराया

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर भारत का बुलडोजर एक्शन दिखाएंगे। अपनी फितरत के अनुसार पाकिस्तान यहां भी अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। ये सब तब हुआ जब ट्रंप के विशेष दूत सर्गियो गौर कश्मीर के दौरे पर थे। उन्होंने श्रीनगर की डल झील में शिकारा की सवारी की, जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया और यहां तक कह दिया कि कश्मीर में अमेरिकी नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा की जाएगी। बस फिर क्या था, पाकिस्तान इस कदर बौखला उठा कि उसने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर अपना रोना रोना शुरू कर दिया। जी हां, मामला यहां तक पहुंच गया। इसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार बीमार इमरान खान को जेल से बाहर इलाज क्यों नहीं कराने देना चाहती। आखिर क्यों वो इस बात पर अड़ गई है कि जेल से इमरान खान को नहीं निकाला जाएगा, और वो भी जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको अस्पताल में भर्ती कराना था, लेकिन पाकिस्तान सरकार उन्हें जेल में ही रोकने के लिए जल्द ही नई याचिका दायर कर सकती है। दरअसल 18 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इमरान खान गंभीर श्रेणी की, मतलब हाई ग्रेड एंग्जाइटी, सीने में दर्द, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, जिसके चलते अदालत ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने परिवार के तय शर्तों के तहत मिलने की इजाजत दी थी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार अड़ गई है। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर का वो वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर ये पूछा जा रहा है कि क्या ये किसी फिल्म की शूटिंग है। दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ऑन द स्पॉट पट्टी बांधने और कैमरे पर नोट गिनने का ये वीडियो लीक हुआ तो सियासत गर्मा गई। पुलिस भले ही इसे कानूनी प्रक्रिया बता रही हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर एनकाउंटर के बाद सारे सीन तो परफेक्ट मिलते हैं, पर कार्रवाई से पहले का एक्शन कैमरे में कैद क्यों नहीं होता। और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या हमारी नई पीढ़ी सोशल मीडिया के दिखावे के लिए इतनी बेचैन हो चुकी है, अब अपनों का खून करने से भी नहीं हिचकिचा रही है। केरल में एक 13 साल की बच्ची ने सिर्फ आईफोन और रील्स के लिए अपने ही दादा की बेरहमी से हत्या की साजिश रची। तेलंगाना में आरोपों के मुताबिक 10वीं के छात्रों ने पैसों के लिए अपनी ही प्रिंसिपल की हत्या कर दी। तमिलनाडु में आरोपों के मुताबिक एक बेटे ने सिर्फ इसलिए अपनी बीमार मां को ट्रेन से के ट्रैक पर फेंक दिया, क्योंकि वो उसका खर्च नहीं उठाना चाहता। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भारत ने पाकिस्तान को बुलडोजर वाली भाषा में क्या समझाने की कोशिश की है। आज दिल्ली में ये पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लगे क्यू लाइन बैरियर, पार्किंग पोल, टिन के ढांचे और स्थाई टेंट्स को, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, हटा दिया गया। ये कार्रवाई खासतौर पर उस इलाके में हुई जहां पाकिस्तान हाई कमीशन ने वीजा सेक्शन के पास इकट्ठा होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ खास इंतजाम किए थे। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी कॉरपोरेशन यानी NDMC का आरोप है कि ये सारे इंतजाम निर्धारित सीमा से बाहर थे और सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके इन क्यू लाइन बैरियर्स और टिन शेड्स को लगाया गया था। और जानते हैं इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने क्या किया। एनडीएमसी की टीम ने बुलडोजर और JCB मशीन्स पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर खड़ी कर दी और इसके बाद इस अवैध कब्जे को वहां से हटा दिया गया। अब इस खबर के दो पहलू हैं और इन दोनों पहलुओं को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला और औपचारिक पहलू तो यह है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने जिस पर अवैध कब्जा किया था उस जगह को भारत ने बुलडोजर चलाकर खाली करा लिया। लेकिन दूसरा और अनऑफिशियल अनौपचारिक पहलू यह है कि भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब देने की कोशिश की है। 3 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे पार्किंग पोल को वहां के प्रशासन ने हटा दिया था और इस कार्रवाई के पीछे कोई ठोस कारण भी नहीं बताया था। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने यह पहली बार किया है। पाकिस्तान इस तरह की

दे दिया। और पाकिस्तान ने तो सिर्फ भारतीय हाई कमीशन के बाहर से पार्किंग पोल्स हटाए थे, भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चलाकर उसे ये बता दिया कि वो टिट फॉर टैट के लिए तैयार रहे और जो भी अवैध निर्माण है कानूनन गलत था हटा दिया गया। देखिए

ये एक्शन भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान में एक्शन हुआ लगभग 3 दिन पहले, वहां पर पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में जो भारत का दूतावास था वहां से सिक्योरिटी बैरिकेड्स हटाए गए, पार्किंग पोल्स हटाए गए, और उसके लगभग 3 दिन बाद यहां ये एक्शन हुआ है नई दिल्ली में, आप देख सकते हैं।

0: अब इस बुलडोजर एक्शन की टाइमिंग को भी जरा देखिए। ये बुलडोजर उस वक्त चला जब भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौर जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। न सिर्फ दौरे पर थे बल्कि उन्होंने श्रीनगर में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब पहले इस बयान को सुनिए और फिर हम आपको इसके मायने बताएंगे।
1: Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi, but a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward.
0: अब ये बात क्यों अहम है? आखिर सर्गियो गौर को इतना महत्व देने की जरूरत क्या है, वो हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप से सर्गियो गौर का क्या रिश्ता है। वो एम्बेसडर तो है भारत में, लेकिन अब ये बात हमारे लिए कोई नई नहीं है। हम तो हमेशा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। हमने कश्मीर पर कभी भी दूसरे देशों से सर्टिफिकेट लेने की कोशिश की नहीं है। लेकिन यहां सवाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर फिर सिर्फ आतंकवाद का सहारा नहीं लेता, वो कूटनीतिक ढोंग साजिशें रचता है, आतंकवाद फैलाता है। पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असिम मुनीर ने राष्ट्रपति ट्रंप की खूब चापलूसी की, और इस चापलूसी का मकसद यही रहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में भी कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताकर पाकिस्तान इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल कर सके। पहले शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन मुनीर ने अब शहबाज शरीफ को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो तो इंटरनेशनल बूट पॉलिश मास्टर बन गए हैं। सीधे डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए, ये सब बोलने में मुनीर बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन 19 अगस्त को जब सर्गियो गौर जम्मू कश्मीर आए तब पूरे पाकिस्तान में राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके गुपकार स्थित आवास पर बहुत गर्मजोशी के साथ मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलने पहुंचे। और ये तस्वीरें पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाता कि सर्गियो गौर ने पाकिस्तान को 3 बड़े सरप्राइजेस दे दिए। पहला सरप्राइज, उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। दूसरा सरप्राइज, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी की भी समीक्षा करने की बात कही है। ये लेवल 4 यानी सबसे खतरनाक श्रेणी की वही ट्रैवल एडवाइजरी है जिसके तहत अमेरिका अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर ना जाने की सलाह देता है। और सर्गियो गौर ने पाकिस्तान को तीसरा सरप्राइज भी दिया, और वो इन तस्वीरों से। उन्होंने श्रीनगर की मशहूर डल झील में वहां के पारंपरिक शिकारा की सवारी की। ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर है जो एक बार फिर से पर्यटकों को भी आकर्षित करेगी। आतंकी घटनाओं के बाद कई बार देखा गया कि पर्यटकों की जो संख्या है उसमें थोड़ी गिरावट आई थी। जानते हैं ये वही डल झील है जिसे लेकर पाकिस्तान ने कई गलत फहमियां पाल कर रखी हैं। साल 1965 का जब युद्ध हुआ तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने कहते थे कि उनकी सेना डल झील में नाश्ता करेगी और कश्मीर पाकिस्तान का हो जाएगा। तो अब देखिए नाश्ता कौन कर रहा है। लेकिन उस वक्त भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह धूल चटाई, और अब इसी डल झील में जब सर्गियो गौर ने शिकारा की सवारी की तो

पाकिस्तान इन तस्वीरों को सह नहीं पाया। फिर उसने क्या किया है वो बताएंगे, पहले ये देखिए।

0: जम्मू कश्मीर को लेकर सर्गियो गौड़ ने सच बोला तो पाकिस्तान इस कदर भड़क गया कि जानते हैं उसने क्या किया। उसने इस्लामाबाद में अमेरिका की प्रमुख राजनयिक नैटली ए बेकर को तलब कर खूब कड़ा विरोध जताया है और यह भी कह दिया कि सर्गियो गौड़ ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। हालांकि ये खबर पाकिस्तान का मीडिया गढ़ रहा है और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका को फटकार लगाई हो, जबकि ये बात हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की अपनी हैसियत क्या है, वो अमेरिका से कितना कह सकता है और कितना नहीं कह सकता है सबको पता है। जब शहबाज शरीफ से लेकर मुनीर अब डोनाल्ड ट्रंप के जूते की पॉलिश कर रहे हैं तो सबको पता है कि वो क्या कह सकता है अमेरिका को। पाकिस्तान की असली परेशानी क्या है जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह से वो जानता है कि सर्गियो गौड़ का जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी बयान देना एक संकेत भी है। सर्गियो गौड़ सिर्फ भारत में अमेरिका के राजदूत नहीं है, वो दक्षिण और मध्य एशिया में राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत है, पूरे इलाके में, दक्षिण और मध्य एशिया में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बयान देते हैं तो उसका मतलब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहता, ये बयान कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे पर मौजूदा वक्त में अमेरिका के रुख को भी स्पष्ट करता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर्गियो गौड़ के लिए ऐसा माना जाता है कि वो वही बात कहते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक होती है। राष्ट्रपति ट्रंप उन पर इतना भरोसा करते हैं कि उन्हें मेयर ऑफ मार-ए-लागो कहा जाता है। मार-ए-लागो फ्लोरिडा में मौजूदा राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनका बहुत बड़ा आलिशान बंगला है जहां वो अपनी राजनीतिक बैठकें करते हैं। और सोचिए उस घर के लिए सर्गियो गौड़ को राष्ट्रपति ट्रंप के इस बंगले का मेयर कहा जाता है, मेयर ऑफ मार-ए-लागो। पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने सर्गियो गौड़ को व्हाइट हाउस का ऐसा गेटकीपर बनाया था जिसका काम था राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के लिए ऐसे लोगों को चुनना जो उनके लिए 100% वफादार रहे। उस वक्त सर्गियो गौड़ ने 4,000 लोगों को राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के लिए खुद चुना था। सर्गियो गौड़ की इसी वफादारी और ईमानदारी को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें पूरे दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अपना विशेष दूत बनाया, इसीलिए भेजा क्योंकि वो यहां इस पूरे क्षेत्र में भारत भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। और ये माना जाता है कि सर्गियो गौड़ उनके इतने करीबी हैं कि वो हमेशा हॉटलाइन पर रहते हैं, वो जब चाहें उनको कोई भी जानकारी दे सकते हैं। यही नहीं, जो चुनिंदा लोग राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे संपर्क में रहते हैं, जैसा हमने आपको बताया, सर्गियो गौड़ का नाम सबसे ऊपर आता है और आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। इसी साल 24 मई 2026 को जब दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हुआ था तब मंच पर अपने भाषण के दौरान सर्गियो गौड़ ने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को फोन लगा दिया था। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी वो कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में मंच से सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को फोन मिला चुके हैं। और इसे आप ये भी समझ पाएंगे कि अगर सर्गियो गौड़ ने जम्मू कश्मीर को लेकर यह बयान दिया है तो इसके कई मायने हैं और यही कारण भी है कि इस बयान से पाकिस्तान अभी बुरी तरह बौखलाया हुआ है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे मसूद खान ने कहा है कि सर्गियो गौड़ को जम्मू कश्मीर के इतिहास की सही जानकारी नहीं है और उन्हें जम्मू कश्मीर जाने से पहले अमेरिका की अपनी पुरानी कश्मीर नीति की अच्छी से ब्रीफिंग मिलनी चाहिए थी। सोचे इतिहास की ये बातें वो पाकिस्तान कर रहा है जो कश्मीर के एक हिस्से पर 1947 से अवैध कब्जा करके बैठा है। और जानते हैं कि पाकिस्तान अपने इस प्रोपेगेंडा की पोल खुद ही खोल रहा है। जिस वक्त सर्गियो गौड़ जम्मू कश्मीर आए, वो डल झील और परी महल गए, तब उसी दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जन विद्रोह की आग में बुरी तरह सुलग रहा है। अब तो कई दिनों से आप देख रहे हैं लेकिन ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। इस वक्त जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने पाकिस्तानी फौज और शहबाज सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है। आंदोलनकारियों के नेता सरदार अमन कश्मीरी ने पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती देते हुए यह कहा है कि वो आसिम मुनीर की सेना से नहीं डरते, मुनीर की सेना पीओके में जितने लोगों का खून बहाएगी उतना ही ये विद्रोह अपने अंजाम तक पहुंचता जाएगा। सुनिए,
1: सारों से ये गुजारिश है कि जहाँ जहाँ पे आप मौजूद हैं इस बर्बरियत के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, इस जारियत के खिलाफ बाहर निकलिए। आप ओवरसीज हैं या रियासत के अंदर मौजूद हैं, जितनी माएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग मौजूद हैं, उन सारे से गुजारिश है बाहर निकलें और इस हुक्मरान तबके को सबक सिखाएं।

0: कितना गिरना चाहती है रियासत पाकिस्तान और कितना गिरना चाहते हैं।
1: पीओके के प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया है कि उसी ने भारत के खिलाफ अलगाववादी आसिया अंद्राबी से नारे लगवाए थे और पाकिस्तान ने ही यासीन मलिक से भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दिलाया। सुनिए,
0: गोली के कानून को मानते हैं हम इस गोली के कानून को नहीं मानते, हम तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते हैं। और जब अगर तुम गोलियों की हुक्मरानी चाहते हो तो फिर आवाम भी गोलियां इकट्ठी करेगी इंशाल्लाह ताला, आवाम भी करेगी इंशाल्लाह ताला। फिर वही कानून होगा जो आप चाहेंगे। 71 साल आपने कश्मीर वैली के अंदर कब्रस्तानों के कब्रस्तान आबाद करवाए, लोगों को 1.5 लाख लोग आपने शहीद करवाए, आसिया इंद्राबी से आपने नारे लगवाए, आज वो उम्र कैद लौट रही है। यासीन मलिक आज हिंदुस्तान की जेल में उम्र कैद लौट रहा है।
1: अब एक बार इन दोनों तस्वीरों को साथ रखकर देखिए और ये समझिए कि पाकिस्तान कैसे खुद एक्सपोज हो रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर है जहां सर जो गौर निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर चर्चा करते हैं और कश्मीर की खूब तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है जहां आसिम मुनीर और उसकी सेना सैकड़ों लोगों का खून बहाती है। लाइव वीडियोज में कैसे लोगों को शूट करके मारा जा रहा है वो आप देख रहे हैं, जनता सड़कों पर निकली है वो आप देख रहे हैं, कई लोग वहां पर लापता बताए जाते हैं। यानी पाकिस्तान के पाप का घड़ा इन तस्वीरों से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। और जानते हैं सर्जो गौर के कश्मीर दौरे को लेकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकायत क्या है। सर्जो गौर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते पहले से जरा मजबूत माने जा रहे हैं, जब पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश की, जब राष्ट्रपति ट्रंप लगातार आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं, लंच पर उनको बुलाते हैं, और जब राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान को यह बात हजम नहीं हो रही है कि आखिर ऐसी परिस्थितियों में सर्जो गौर ने कश्मीर पर उसके प्रोपेगेंडा की पोल कैसे खोल दी। यहां हम इस बात को भी फिर से दोहराना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पर सर्जो गौर का बयान भारत के लिए कूटनीतिक जीत जरूर है, लेकिन अगर यह बयान ना भी आता तो हमारे लिए कश्मीर के मुद्दे पर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। यहां अगर कुछ समझना है तो वो है कश्मीर पर अब तक अमेरिका का रुख कैसे कैसे बदलता रहा है। 1947 के बंटवारे के बाद जब जम्मू कश्मीर को लेकर पहली बार विवाद हुआ और भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर गया, तब अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा दिखा था। और इसके पीछे कारण ये नहीं था कि अमेरिका कश्मीर पर पाकिस्तान के गलत दावों को सही मानता था, इसका कारण यह था कि उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध चल रहा था, और इस शीत युद्ध में अमेरिका को ऐसे देशों की जरूरत थी जो सोवियत संघ के खिलाफ उसके साथ मजबूती से खड़े रहें, और इनमें भी पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जो सोवियत संघ चाइना मिडल ईस्ट के देशों के करीब था। और इसी बात को देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध मजबूत किए और उसे हथियार भी दिए, आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी, और पाकिस्तान जो अमेरिका की तरफ झुक रहा था, इस बीच भारत को माना जाता था कि वो सोवियत संघ के साथ है। अब पाकिस्तान ने भी इस चीज का फायदा उठाया, कश्मीर को अमेरिका की मदद से कूटनीतिक मुद्दा बनाने की खूब कोशिश की। आपने देखा होगा अनेकों प्रोपोगेंडा कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिकी मीडिया ने भी चलाया भारत के खिलाफ। साल 1961 में जब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से मिले, तब उन्होंने ये दबाव बनाया कि जॉन एफ कैनेडी भारत को कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार करें। उस वक्त जॉन एफ कैनेडी पाकिस्तान से सहमत भी हो गए और पाकिस्तान और भारत के बीच 6 दौर की बातचीत भी हुई थी। हालांकि इसी दौरान 62 का जंग हुआ, 1962 का भारत चाइना युद्ध हुआ जिसमें पहली बार अमेरिका ने भारत की मदद की। ये वो मौका था जब अमेरिका ने पाकिस्तान से आगे बढ़कर यह सोचा कि भारत भी उसके लिए जरूरी है। यानी उसके बाद से धीरे धीरे चीजें पलटने लगी और इसके बाद साल 1971 का युद्ध हुआ। और पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद शिमला में भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ कि दोनों ही देश कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बायलैटरल इशू मानेंगे और किसी तीसरे का इसमें कोई भी दखल नहीं होगा। उस वक्त धीरे धीरे अमेरिका भी इस समझौते के तहत कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का मुद्दा मानने लगा और समस्या अलग हो गए। लेकिन फिर 1979 जब सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में आई तो एक बार फिर अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। इस बार भी पाकिस्तान ने अमेरिका की जरूरत का फायदा उठाया और उसे कश्मीर के मुद्दे पर कूटनीतिक समर्थन देने की मांग की। यानी पूरी कहानी ऐसी है कि जब जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तब तब अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ दिखाई दिया। साल 1982 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका के दौरे पर गई और इसके बाद दिसंबर महीने में जनरल जियाउल हक ने राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से मुलाकात की। और जानते हैं इस मुलाकात के बाद क्या हुआ। भारत और पाकिस्तान ने अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत की शुरुआत की। 24 दिसंबर 1982 से 21 मई 1984 तक चार दौर की बातचीत हुई। लेकिन इसके बाद जब पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर प्रोपेगेंडा करने लगा तो इसी बीच बातचीत रोक दी गई। अब आइए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। तमाम देश अलग हो गए, खंड खंड हो गया, रूस अलग हो गया रशिया। तो इस विघटन के बाद जब अमेरिका का पाकिस्तान से मतलब निकल गया क्योंकि सोवियत संघ का जो पावर था, जो उसकी ताकत थी, वो वैसे ही टूट चुकी थी, तब उसने कश्मीर पर पाकिस्तान की कूटनीतिक चालों का ज्यादा साथ देना बंद कर दिया। उल्टा 1999 के करगिल युद्ध के लिए अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान की आलोचना की और साल 2000 में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने नहीं आए बल्कि भारत और पाकिस्तान को अपने विवाद खुद ही सुलझाने होंगे। इसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत हुए और अमेरिका ने लगातार कहा कि भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत से अपने मुद्दों का हल निकालें। यानी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को अमेरिका से जो ऑक्सीजन मिलता था वो ऑक्सीजन साल 2000 के बाद बंद हो गया और कश्मीर पर अमेरिका का रुख यही रहा कि ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है। लेकिन 2019 में ये रुख फिर से बदला। इस बार जुलाई 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की और तब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान तैयार हों तो वो कश्मीर पर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करा सकते हैं। अब उस वक्त भारत ने बिना देर के राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान का विरोध किया और सीधा सीधा कहा कि बायलैटरल इशू है। लेकिन जानते हैं अमेरिका इस मुद्दे पर इधर उधर होता रहा है। उदाहरण के लिए इसी साल फरवरी महीने में जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने का ऐलान हुआ तब अमेरिका के एक विभाग ने भारत का सही नक्शा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। लेकिन जब इस पर विवाद हुआ तो अमेरिका ने इस नक्शे को हटा लिया जबकि यह सही नक्शा था। इसी तरह जून का महीना जब यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदला गया तब अमेरिका ने भारत का गलत नक्शा अपनी वेबसाइट पर दिखाया और भारत ने उस वक्त इसका विरोध भी किया। संक्षेप में कहें तो कश्मीर पर सर्गियो गौड़ ने जो बात कही वो इससे पहले अमेरिका की तरफ से किसी ना किसी तरीके से अगर आप सोचिए तो किसी ने नहीं कही थी। पहली बार डायरेक्ट लाइन उन्होंने बोली है। जुलाई 2018 और जनवरी 2020 में भारत में अमेरिका के राजदूत रहे केनेथ जस्टर लद्दाख और जम्मू कश्मीर गए थे तब उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही थी। लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जब सर्गियो गौड़ का बतौर अमेरिकी राजदूत पहला स्वतंत्र दौरा हुआ और वो श्रीनगर आए तो उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खैर इन तमाम घटनाओं के बीच जरा पाकिस्तान में इमरान खान, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर क्या हो रहा है वो बताते हैं क्योंकि वहां राजनीतिक घमासान मचा है। आज ही शाम को ये खबर आई कि पाकिस्तान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी उस याचिका को वापस ले लिया है जिसमें इमरान खान को इलाज के लिए रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद के एक निजी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का विरोध किया गया था। हालांकि ये याचिका इमरान खान को राहत देने के लिए वापस नहीं ली गई है, इसे इसलिए वापस लिया गया है क्योंकि इसमें कई गलतियां थी। अब पाकिस्तान है और अब संभव है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो इमरान खान को जेल में रखने के लिए एक नई याचिका फिर से दायर कर सकती है। ये याचिका उस फैसले के खिलाफ होगी जिसमें 18 अगस्त को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पर चिंता जताई थी। 1 अगस्त 2026 की इस मेडिकल रिपोर्ट में लिखा था कि इमरान खान इस वक्त गंभीर श्रेणी की एंग्जाइटी, हाई ग्रेड सीरियस ग्रेड एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बेचैनी होती है, सीने में दर्द होता है, उनको बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। इसी रिपोर्ट में उनकी दिल की धड़कन प्रति मिनट 50 दर्ज हुई थी और ब्लड प्रेशर 140/100 मापा गया था, जो थोड़ा सा ज्यादा है। डॉक्टर्स का कहना था कि इमरान खान को जेल में उनके परिवार और पत्नी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो तनाव और चिंता से घिर गए। और कोर्ट ने इसी वजह से कहा कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इस्लामाबाद भेजे। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर 18 अगस्त को कोर्ट ने ये फैसले दिए और चार बातें कोर्ट ने कही थी। पहला, इमरान खान को 2 दिनों के अंदर अदियाला जेल से निकाला जाए और इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। उन्हें 16 सितंबर की अगली तारीख तक अस्पताल में ही रहने दिया जाए। दूसरा, अदालत ने इमरान खान को हर हफ्ते अपने परिवार से मुलाकात करने की इजाजत भी दी और यह कहा कि इमरान खान लंदन में रहने वाले अपने बेटों से हफ्ते में 2 बार फोन पर बात कर सकते हैं, सुलेमान और कासिम, और ये उनकी 4 बहनें जो हैं और पहली पत्नी जमायमा हो या बुशरा बीवी उनकी मौजूदा पत्नी, उनसे बात करने की इजाजत मिले। तो ये पूरा उनका फैमिली ट्री है जो हमने आपके लिए दिखा दिया है। इन सब से बात करने के लिए भी कोर्ट ने कहा कि उनको इजाजत मिलनी चाहिए। तीसरा, अदालत ने यह शर्त रखी कि अगर परिवार से मुलाकात के दौरान राजनीतिक चर्चा होती है तो इस राहत को खत्म कर दिया जाएगा। और चौथा, कोर्ट ने इमरान खान के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का ऐलान किया जिसमें उनकी बहन उज्मा खान, निजी डॉक्टर फैसल सुल्तान भी शामिल हो सकते हैं। इस फैसले के बाद 19 अगस्त को इमरान खान ने अदियाला जेल में 9 महीने बाद अपने परिवार के लोगों से मुलाकात की और इनमें उनकी पत्नी बुशरा बीबी, बहन नूरीन नियाजी शामिल रहे। ये मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान के बीच 30 से 35 मिनट तक बताया जा रहा बातचीत हुई। और अब जब शहबाज शरीफ की सरकार ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है तब ऐसी उम्मीद बनी है कि इमरान खान जेल से अस्पताल शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि हो सकता है वो नई याचिका दायर करें। अगर ऐसा होता है तो 5 अगस्त 2023 के बाद वो पहले 2023 में जेल में डाला गया था, पहली बार इतने दिनों के बाद वो जेल से बाहर निकलेंगे। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में जब पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे तब उनमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार उन्हीं के समर्थकों से जीते थे और कायदे से शहबाज शरीफ के लिए सरकार बनाना आसान नहीं था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जनरल आसिम मुनीर को शुरुआत में यह टास्क दिया गया कि वो इमरान खान के खिलाफ आपराधिक मुकदमों को दर्ज करना शुरू करें और यहीं से इमरान खान कई मुकदमों में फंसते गए। और आज स्थिति यह है कि अगर उन्हें किसी मामले में कोर्ट से जमानत मिल जाती है तब भी वो किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यह यानी अगर आप देखिए तो इमरान खान की लड़ाई इस वक्त शरीफ परिवार से भी है और जनरल आसिम मुनीर से भी है। शरीफ परिवार से इसलिए है क्योंकि इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब शहबाज शरीफ को 2 बार जेल में भेजा गया था और नवाज शरीफ के खिलाफ नए मुकदमे दर्ज हुए थे। जबकि आसिम मुनीर की इमरान खान से इसलिए दुश्मनी मानी जाती है क्योंकि इमरान खान ने मुनीर को 2018 में ISI का चीफ बनाया था और बाद में जून 2019 में ही इस पद से मुनीर को हटाकर किनारे कर दिया था।
2: अल्लाह का शुक्र है इमरान खान का मुआयना हो जाएगा अस्पताल में और इलाज हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, हम शुक्र गुजार हैं अदालत का। इस वक्त जब हम मायूस हो गए थे अल्लाह ताला ने इन लोगों ने हमें इमरान खान को रिलीफ दिया। इमरान खान को
1: यहाँ आपको इमरान खान का ये बयान भी सुनना चाहिए जिसमें अप्रैल 2022 में उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार विदेशी ताकतों की मदद लेकर गिराई गई है और इसके पीछे इमरान खान ने अमेरिका की भूमिका को भी संदिग्ध बताया था। सुनिए,
3: पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس پوشن تھی اس میں سے بیرون ملک کی انٹرفیرنس تھی. ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکے تھا پاکستان کے امبیسڈر امریکہ میں اور ان کا جو ڈونلڈ لو جو بھی ان کا ریپرزینٹیو تھا اس کے سارے یہ آفیشیل میٹنگ تھی ہمارے امبیسڈر اور ان کے آفیشیل کا. وہ سارا کانورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں تو پھر ایک اس کے بعد منٹس جاری کیے گئے. اس کے ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا جس میں انٹرفیئر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں, اور یہ جو نو کانفیڈنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی.
1: تو عمران خان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی قسمت نے اب تک انہیں دوسرا چانس ضرور دیا ہے. سال 1987 میں جب عمران خان 35 سال کے تھے تب انہوں نے آسٹریلیا سے کرکٹ سیریز ہارنے کے بعد نراش ہو کر سنیاس کی گھوشنا کر دی تھی. اس وقت سب کو یہی لگا کہ عمران خان کی کہانی اب ختم ہو چکی ہے. لیکن اس کے بعد سال 1988 میں ویسٹ انڈیز کے دورے سے پہلے پاکستان کے تتکالین راشٹرپتی جنرل ضیاء الحق نے عمران خان کو ملنے کے لیے بلایا اور ان سے یہ کہا کہ اپنا سنیاس واپس لے لیں. یہی وہ موقع تھا جب عمران خان کو ان کے کرکٹ کریئر میں دوسرا چانس ملا اور وہ واپس پاکستان کی ٹیم میں آئے اور اپنی کپتانی میں 1992 کا ورلڈ کپ پاکستان کو دلایا تھا. اور پاکستان کے کئی لوگ ایسا مانتے ہیں کہ کرکٹ کی طرح راجنیتی کے کریئر میں بھی عمران خان کو دوسرا چانس ضرور ملے گا, وہ جیل سے نکل کر سکریہ راجنیتی میں ضرور لوٹیں گے. خیر, جس وقت پاکستان میں بدلے کی یہ راجنیتی ہو رہی ہے تب اسی وقت سرگیو گور جموں کشمیر کے بعد اب لداخ کے لے بھی پہنچ گئے ہیں, یعنی پاکستان کے بعد اب چائنا چنتا میں ہے. اور کارن ہے لے سے آئی سرگیو گور کی یہ تصویریں. آج سرگیو گور شری نگر سے لداخ کے لے پہنچے جہاں دوردرشن کے مطابق انہوں نے سندھو اور جانسکر ندیوں کے سنگم پر ریور ریفٹنگ کی ہے اور کئی ورشٹھ ادھیکاریوں سے بھی ملاقات کی. حالانکہ ریور ریفٹنگ کرنے کی اب تک کوئی تصویر یا سرگیو گور کی طرف سے بیان وہاں سے نہیں آیا. بڑی بات یہ ہے کہ 2020 میں گلوان ہنسا کے بعد یہ کسی امریکی راجدوت کا پہلا دورہ ہے جو لداخ کے لے پہنچے ہیں. دیکھیں

0: क्या आप जानते हैं पाकिस्तान और चाइना में समानता क्या है? दोनों ही देश भारत के सही नक्शे को नहीं मानते। पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को गलत तरीके से अपने नक्शे में दिखाता है, चाइना अरुणाचल प्रदेश लद्दाख की सीमा पर विवाद करता है। और आप ये खबरें सुनते रहते होंगे कि चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाकर कई जगहों के नाम भी बदल रहा है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे थाईलैंड और कंबोडिया का सीमा विवाद है और हम चाहते हैं कि आज आप इसे बहुत ध्यान से सुने। 100 साल पहले थाईलैंड देश की को सियाम कहा जाता था, SIAM, जबकि कंबोडिया देश पर फ्रांस का शासन था। अब शुरुआत से ही दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर बहुत विवाद था। 90-100 के दशक में सियाम और फ्रांस शासन, माफ कीजिएगा, 1900 के दशक में सियाम और फ्रांस शासित कंबोडिया के बीच सीमा निर्धारण को लेकर कई समझौते हुए, जिनमें 1904 का समझौता सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसमें तय किया गया कि दोनों देश पहाड़ों की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर वॉटरशेड लाइन के आधार पर एक सीमा रेखा खींचेंगे, और अगर उस वक्त इसी आधार पर सीमा रेखा खींची जाती तो प्रेह विहार मंदिर थाईलैंड के पास जाता। लेकिन 1907 में जब फ्रांस के कुछ अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच नई सीमा रेखा का नक्शा तैयार किया तो उन्होंने पहाड़ों के सबसे ऊंची चोटी पर इसे प्रेह विहार मंदिर के पास से थोड़ा सा घुमा दिया। इससे हुआ ये कि ये मंदिर कंबोडिया के नक्शे में चला गया। अब जब ये नक्शा उस वक्त थाईलैंड को दिया गया तो उसने इस पर आपत्ति नहीं जताई। करीब 50 सालों तक थाईलैंड ने कभी भी इस नक्शे पर एतराज नहीं जताया। और जब इस मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध हुआ और थाईलैंड ने इस पर कब्जा कर लिया, तब कंबोडिया इस मामले को यूएन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर पहुंच गया। कोर्ट में सुनवाई हुई तो कंबोडिया ने यही बात उठाई कि अगर नक्शा गलत था और ये प्रे विहार मंदिर थाईलैंड को मिलना चाहिए था तो उसने गलत नक्शे पर आपत्ति क्यों नहीं जताई इतने सालों तक। इस सवाल का थाईलैंड के पास कोई जवाब नहीं था और यही बात उसके खिलाफ गई और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सिर्फ इसी आधार पर इस मंदिर को कंबोडिया का मान लिया। इसी फैसले के बाद दुनिया में कई देश अपने नक्शे को लेकर सजग हुए। और आज भी अगर चाइना गलत तरीके से अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाता है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा करके अपना कानूनी पक्ष मजबूत करना चाहता है, जबकि भारत भी बिना देर किए चाइना की इस हरकत का कड़ा विरोध करता है, क्योंकि हम मानते हैं कि गलत नक्शे को स्वीकार करके थाईलैंड ने क्या कीमत चुकाई। खैर, जब चाइना और उसके साथ सीमा विवाद को लेकर ये बातें हो रही हैं, तब हम आपको अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से आया एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो एक बच्ची का है जो खुद को चाइनीज या चीनी ये कहने पर नाराजगी जताती है। ये कहती है कि वो इंडियन है, इंडिया से है, और उसे चाइनीज ना कहा जाए। आप एक बार इस बच्ची को की तकलीफ को सुनिए और इसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं उनके लोगों को कभी चाइनीज कभी नेपाली कहने वाले इस सोच का विश्लेषण करेंगे। पहले देखिए।
1: हेलो गाइस, हमको एक अमीना, हम कैसे बोले एक आप चाइनीज से कैसे बोले, मेरा वो इंडिया है, हम भी इंडिया है। आप लोग ऐसे मत बोलो, हम लोग इंडिया है। आप हम लोग को चाइनीज बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। प्लीज हमको ऐसे मत बोलो, हम बहुत दुखी होगा। तो हमको इंडिया बोलो, इंडिया, हमको चाइनीज मत बोलो, हम बहुत दुखी लगते हैं चाइनीज बोलने से। हम इंडिया का है, हम ईटानगर में बैठते हैं, तो आप लोग ऐसे मत बोलो प्लीज। बाय बाय।
0: क्या बोला है बच्चे ने? आज बड़ा सवाल यह है कि कब तक नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस तरह से हम चाइनीज, मोमो, नेपाली ऐसे शब्द बोलेंगे। इस बच्ची का ये कहना कि मुझे इंडियन बोलो, ये बताता है कि आज इस बच्ची को अपने ही देश में अपने भारतीय पहचान साबित करनी पड़ रही है, जबकि उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। भारत में भारतीय होने का कोई एक चेहरा नहीं है। अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अगर आप देखिए तो अलग अलग जगहों की अलग चेहरे पहचान, मतलब कई बार आप चेहरे से किस राज्य से लोग हैं वो बता सकते हैं, थोड़ी सी बस मेहनत करने की जरूरत है। दक्षिण हो, उत्तर भारत हो, कश्मीर हो, और इसी में हम आगे बढ़ते हुए अब आपको बताना चाहते हैं कि कौन कैसा दिखता है, इससे भारतीयता कम नहीं होती है। खासकर अरुणाचल जैसे सीमावर्ती राज्य में जहां खुद चाइना दावा करता है, वहां बच्ची को यह बताना पड़ रहा है कि हम इंडियन हैं, हमको इंडिया मानो, हमको ऐसे मत बोलो, बुरा लगता है। ये जो नस्लीय रूढ़िवादी यानी रेशियल स्टेरियोटाइपिंग का कड़वा सच है, उसकी पोल खोल दी इस बच्ची ने। कई बार जो लोग नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों के लिए अलग अलग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नस्लीय शब्द कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बहुत गलत है, लेकिन हकीकत में यह मजाक एक कैजुअल रेसिज्म है। कैजुअल रेसिज्म मतलब आपको लगता है कि जैसे मैं कोई गुनाह तो कर नहीं रहा, मैंने ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया। ऐसे वाले लोग भी हैं इस देश में, वो ऐसी गंभीर नस्लीय टिप्पणी कर देते हैं, फिर हंसते भी हैं और ये सोचते हैं कि उन्होंने क्या गलत कर दिया। नॉर्थ ईस्ट के राज्य अपने देश के लिए इतना कुछ करते हैं, घोर अपमान है इस तरह के शब्दों का, और वो भी चाइनीज जैसे शब्द बोलना। कच्चे तेल गैस के उत्पादन से लेकर देश के घर घर में पी जाने वाली चाय का आधे से ज्यादा उत्पादन इन्हीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से आता है। धरोहर है ये भारत के लिए, लेकिन कुछ लोग इन्हीं राज्यों के लोगों के चेहरे की बनावट पर उन्हें क्या कहते हैं और यही पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं और वहां के इटावा से आया ये वीडियो दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि ये पुलिस की रियल शूटिंग यानी गोलीबारी है या फिर किसी फिल्म की शूटिंग। ये ऐसा वीडियो है जिसने पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष को भी सियासत का मौका दिया है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो के जरिए सरकार पर तंज कसा है। इस वीडियो की लोकेशन है इटावा, जहां भरथना इलाके की एक सुनसान कच्ची पक्की सड़क पर ऐसा लग रहा है कि दो खेतों के बीच किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। जमीन पर एक शख्स बेसुध लूटा है, लेटा हुआ है। उसके दाहिने पैर पर एक पुलिस वाला बड़ी शालीनता से सफेद पट्टी बांध रहा है। सामने दूसरा खाकीधारी मोबाइल थामे इसे रिकॉर्ड कर रहा है। कैमरामैन एंगल सेट करता है। सीनियर अधिकारी अपने मातहत को फ्रेम से हटने का इशारा करता है ताकि जमीन पर पड़े कट्टे का क्लोजअप शॉट मिस ना हो जाए। लेटा हुआ अभियुक्त भी कमाल का कलाकार है, बिना किसी रीटेक के बेहतरीन एक्सप्रेशन दे रहा है। जैसे ही पट्टी बनती है, पुलिसकर्मी उसका हाथ पकड़कर उसे सहलाते हुए उठाता है और बाद में शुरू होता है ऑन द स्पॉट पूछताछ का सिलसिला, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि थाने तक पहुंचते पहुंचते चार्जशीट पर साइन भी हो जाएगा। देखिए,
2: क्या नाम है?
3: मुकेश यादव।
2: मुकेश
3: जी सर।
2: पिताजी का?
3: रामनरेश यादव। रामनरेश यादव।
2: क्या हुआ था चनेटी में?
3: मर्डर हुआ सर।
2: किसका? किसका?
3: वो दो लड़के, दो लेडीज का।
2: हाँ। और इधर दिखा भाई, इधर दिखा। ये तो अंचा तुम्हारा है?
3: जी सर।
2: हाँ
3: जी सर।
2: इसमें क्या है भाई? मोबाइल किसकी है? तुम्हारी?
3: जी सर।
2: ले चलो। पैसा है? कितना है? खड़ी करो तो। कितना रुपया है ये?
3: 2.5 लाख होगा सर, उसमें खर्च हो गया कुछ।
2: कितना खर्च हुआ होगा? कितना होगा?
3: 10-15 लाख खर्च हो गया सर।
2: बाकी होंगे और गिनवा लेते हैं। क्या करने से गया था?
3: हाँ।
2: वहां तो गांव वाले देखे भी होंगे।
3: हाँ सर।
0: इसी पुलिस या शूटिंग के पीछे की असल कहानी दोहरे मर्डर से जुड़ी है। 17 अगस्त को भरथना के चंदेठी गांव में 55 साल की मां और 38 साल की बेटी का मर्डर हुआ था। इस मर्डर के पीछे बेटी का अपने पति से विवाद था। अदालत ने जब गुजारा भत्ता का आदेश दिया तो पति सत्येंद्र यादव ने अपने एक रिश्तेदार मुकेश यादव के साथ मिलकर अपनी पत्नी और सास की हत्या की साजिश रच डाली। इसके बाद पुलिस ने SOG और सर्विलेंस टीम की मदद से मुख्य आरोपी मुकेश यादव को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक लाल रंग की स्कूटी पर भाग रहे मुकेश ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में यूपी पुलिस का वही पारंपरिक निशाना सीधे उसके दाहिने पैर पर जा लगा, ठीक वैसे ही जैसे राज्य के सैकड़ों अपराधियों के पैरों में लगता है। लेकिन असली तमाशा इसके बाद शुरू हुआ और फिर देखिए कैसे यह मामला बढ़ा। जिक्र भी उसमें है, तो अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं कि पुलिस ने असली तमाशा शुरू हुआ क्योंकि पुलिस ने मौके पर ही घायल आरोपी की जेब से कारतूस निकाले, स्कूटी की डिक्की और सीट के नीचे पॉलिथीन में रख के 2,31,000 रुपए निकाल कर कैमरे के सामने गिने। सोचिए, ये पूरा गोपनीय वीडियो इंटरनेट पर फिर लीक हो गया जिसके बाद इसने सोशल मीडिया पर हास्य और कटाक्ष शुरू कर दिए। अब अखिलेश यादव ने इस पर एक्स पर पोस्ट किया है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर तंज कसा है। अमेरिका के टेक्सास में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि टेक्सास में शरिया शहर बसाए जा रहे हैं जो अमेरिकी सभ्यता को खतरे में डाल रहे हैं। अब स्थिति यह है कि टेक्सास में मुस्लिम्स को बसाए जाने का विरोध शुरू हो गया है जो अमेरिका की राजनीति पर गहरा असर डालने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने टेक्सास में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया पर एक रिपोर्ट छापी है जिसके मुताबिक इस अमेरिकी राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी, मस्जिदें, शरिया नियम, मुस्लिम्स के लिए बसाए जा रहे रिहायशी इलाके स्थानीय अमेरिकियों के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि मुस्लिम्स के लिए अलग इलाके बसाने से कुछ ऐसे छोटे छोटे शहर बन जाएंगे जहां शरिया कानून चलेगा और आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए ये शरिया शहर मुसीबत की वजह बनेंगे। उदाहरण के तौर पर टेक्सास के डैलस में एपिक सिटी नाम से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। ये रिहायशी प्रोजेक्ट खासतौर से मुस्लिम्स को ध्यान में रखकर तैयार करवाया जा रहा है। 400 एकड़ में फैले इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में करीब 20,000 मुस्लिम्स को बसाए जाने की योजना है। यहां मुस्लिम्स के लिए घर के अलावा बड़ी मस्जिदें हैं, मदरसे सब बनाए जा रहे हैं। अब आरोप यह लग रहा है कि साजिश के तहत ये किया जा रहा है जिससे आगे चलकर इन इलाकों में शरिया कानून लागू होने लगेंगे। टेक्सास को रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी रिपब्लिकन पार्टी की मूल विचारधारा अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने, कट्टर इस्लाम का विरोध करने की रही है। पिछले कुछ समय में यह मुद्दा कमजोर हुआ है और यही वजह है कि टेक्सास में मुस्लिम्स की बढ़ती आबादी को अब सांस्कृतिक खतरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। टेक्सास के कई रिपब्लिकन नेताओं ने मुस्लिम्स के लिए बनाई जा रही एपिक सिटी को शरिया सिटी कहना शुरू कर दिया है और स्थानीय लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका में अभी करीब 45,00,000 मुस्लिम रहते हैं। इस्लाम यहाँ का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। पहले नंबर पर ईसाई है जिनकी आबादी लगभग 21 करोड़ है। दूसरे नंबर पर यहूदी है जिनकी आबादी 58,00,000 है। मुस्लिम आबादी के हिसाब से टेक्सास अमेरिका में 5वें नंबर पर आता है। यहाँ 3,13,000 मुस्लिम रहते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर न्यूयॉर्क शहर है, 7,24,000 मुस्लिम रहते हैं। दूसरे पर कैलिफोर्निया है जहाँ करीब 5,00,000। तीसरे पर है इलिनॉय जहाँ पर करीब 4,70,000 और चौथे नंबर पर न्यूजर्सी है जहां 3,21,000 मुस्लिम्स रहते हैं। अब प्यू रिसर्च सेंटर का ये कहना है, उनका ये अनुमान है कि साल 2050 तक अमेरिका में मुस्लिम्स की संख्या करीब 51,00,000 पहुंच जाएगी और ऐसा होने पर इस्लाम अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। मुस्लिम्स की बढ़ती आबादी को लेकर जो विचार पनपने लगे हैं वो अमेरिकी राजनीति में एक नई चिंगारी सुलगाने जैसा है। आप सोचिए कि जिस टेक्सास में मुस्लिम्स की आबादी वहां की कुल आबादी की 1 या 2% थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बढ़ती मुस्लिम आबादी, शरिया नियमों का पालन चिंता बन गई है। इसे अमेरिकी नागरिकों के लिए खतरे के तौर पर पेश किया जाने लगा है। स्थिति यह है कि टेक्सास अमेरिका का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी स्कूलों में बाइबल पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। कई नेताओं ने तो भाषणों में यह कहना शुरू कर दिया है कि टेक्सास जल्दी ही यूरोप बन जाएगा जहां मुस्लिम आबादी मुसीबत बन गई है। लोग मांग कर रहे हैं कि कानून को सख्त बनाकर शादी, तलाक, शरिया से जुड़ी इस्लामिक प्रथाओं को खत्म कर दिया जाए। मुस्लिम्स की बढ़ती आबादी, अलग अलग शहर बसाने की खबरें और शरिया शहर जैसे शब्द रिपब्लिकन पार्टी का एक नए तरह का राजनीतिक मुद्दा है और इस साल अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है तो आप समझ रहे होंगे। 3 नवंबर 2026 को तो टेक्सास में गवर्नर, यूएस सेनेट के चुनाव है। इसके अलावा राज्य में यूएस हाउस और रिप्रेजेंटेटिव्स की 38 सीटों पर, राज्य विधानसभा की चुनाव वाली सीटों पर वोटिंग होनी है और इसीलिए माना जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता टेक्सास में मुस्लिम आबादी को सांस्कृतिक खतरा मान रही जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगे। ये खबर सोशल मीडिया में आए उस तूफान से जुड़ी है जो सिर्फ एक मिनट में इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब पर लगभग 90,000 पोस्ट कर देता है। बताइए अंजना 2.0। बिल्कुल अंजना, जब घड़ी की सुई एक मिनट चलती है तो आपने कभी सोचा है कि भारत डिजिटल दुनिया में क्या गुल खिलाता है? लोकल आईक्यू के आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो भारत के लोग सिर्फ ऑनलाइन रहते नहीं हैं, बल्कि यहां जमकर कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि भारत में हर 60 सेकंड में फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स को मिलाकर करीब 90,000 पोस्ट जनरेट हो जाते हैं। जरा ठहरिए और सोचिए, इन 90,000 पोस्ट में सिर्फ क्लिक नहीं होता, इसके पीछे लोगों का बेशकीमती वक्त और मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। फेसबुक पर एक मिनट में 66,000 स्टेटस और तस्वीरें अपलोड होती हैं। जरा सोचिए, उन तस्वीरों को क्लिक करना, फिल्टर चुनना, कैप्शन सोचना और फिर अपलोड करना, इसमें कितना वक्त लगता होगा। एक्स पर हर मिनट अपलोड होने वाले 14,500 पोस्ट ऐसे ही थोड़ी टाइप हो जाते हैं, इसके पीछे सोच विचार, बहस और टाइपिंग। और इंस्टाग्राम की तो बात ही मत पूछिए, हर मिनट 8,200 नई तस्वीरें और रील्स ग्रिड पर जुड़ जाती हैं। असली खेल तो YouTube पर होता है, जहां एक मिनट में 94 घंटे यानी सीधे शब्दों में कहें तो लगभग 4 दिन के बराबर वीडियो कंटेंट अपलोड हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि एक मिनट में YouTube पर जितना कंटेंट अपलोड होता है उसे एक व्यक्ति देखने लगे तो उसमें 4 दिन लग जाएंगे। अब सवाल ये है कि एक मिनट में 4 दिन का कंटेंट अपलोड करने वाले ये लोग कौन है? ये हम और आप हैं, जो अपनी क्रिएटिविटी, अपने जीवन के पल और अपना सबसे कीमती संसाधन यानी समय इस डिजिटल मशीन को सौंप रहे हैं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और कभी चाल, कभी मकसद, कभी मंसूबे यार होते हैं, इस दौर में नमस्कार के भी मतलब हजार होते हैं। नमस्कार, देखते रहिए आज तक।

0: मातरम के छंद पर राजनीतिक प्रचंड अमित शाह ने बताया देश विरोधी मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति। इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष का उत्सव मनाएगी बीजेपी। सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम। जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर अदालत का हथौड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के निर्णय पर लगाई रोक। 11वीं 12वीं 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर। संघ ने किया मंथन। संसद मार्च के दौरान अधिक बलप्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। और इमरान खान को लेकर बैकफुट पर शहबाज सरकार। जेल से अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारी, पाक पुलिस का जमावड़ा। खबर वंदे मातरम पर मचे घमासान की। जहां कांग्रेस अब वंदे मातरम के पहले दो पैरों पर अड़ी है, तो बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है, जिसे लेकर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
1: कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ कर दिया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम के दो पैरा ही गाएगी।
2: टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट व्हाटएवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबाइड दैट डिसीजंस। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज अवर डिसीजन। फर्स्ट टू चांस था।
1: अमित शाह इसे वंदे मातरम का अपमान बता रहे हैं।
3: इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
1: 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था, जिसके बाद 15 अगस्त को पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। 17 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी।
4: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं।
1: अब कांग्रेस जहां दो पद गाने पर अड़ी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है।
5: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
6: मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया।
1: अब सवाल यह है कि क्या जिस वंदे मातरम को लेकर बिल पास किया गया है, क्या उसके अपमान के मुद्दे पर सरकार का एक्शन होगा या फिर ये सिर्फ सियासत तक सीमित रह जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। सोरेन सरकार के निर्णय पर रोक के बाद नौकरी खोने वाले सरकारी कर्मचारी अब खुशियां मना रहे हैं।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों के जश्न को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आज हाईकोर्ट से प्रदर्शनकारियों को बड़ा झटका लगा। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है।
7: प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की धज्जी उड़ाई गई है सरकार के द्वारा, इसलिए हमारा ये बहस था कि इस तरह का ऑर्डर रातों रात नहीं पारित किया जा सकता है। टेंटेड और अनटेंटेड में फर्क करना पड़ेगा सरकार को।
1: अब मामले में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है,
8: शायद इसी वजह से विलंब हो रहा होगा जिसके लिए, लेकिन इतना दबाव और इतना मतलब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में।
9: सरकार ने पहले से ही ऐसा षड्यंत्र कर दिया था आंदोलन को समाप्त करने के लिए और एक बहुत ही कमजोर ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला था जो सबको पता था कि संभवतः ये जुडिशियल स्क्रूटनी के सामने टिकने वाला नहीं है, और हुआ भी वही। अदालत ने आज ये इंटरिम रोक लगा दी, सरकार से जवाब मांगा है।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर के इम्तिहान को भी कैंसिल कर दिया था, जिससे एक झटके में 56 लोगों की नौकरी चली गई थी जो कि आज प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है।
10: और जज सर भी हमारी प्रॉब्लम को समझे, वो उन्होंने खुद बोला कि अगर ये मेरे साथ आप लोग कर देते, मेरे साथ ये इंसिडेंट हो जाता, रातों रात मेरा कुर्सी आप लोग छोड़वा देते तो हम क्या बोलते। वो खुद शर्मिंदा थे कि इस तरह डिसीजन सरकार कैसे ले सकती है, ये सीधा सीधी एक नेचुरल जस्टिस का हनन है।
1: बहरहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: जेन जी को लेकर हर पार्टी ने अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अब जेन जी वोटर्स को टारगेट करने का मन बना चुके हैं।
1: सरकारें ही नहीं, देश में अरसे से सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी अब जेन जी और जेन अल्फा के मुद्दों के जरिए जमीनी आधार दोबारा हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चालू करने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है। किस मंत्री को कब और किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का यह दौरा दिन भर का होगा जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए पीएम बेहद गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों को ये भी सलाह दी है कि पारंपरिक तरीके छोड़कर अब जेन जी और युवा वोटर्स के पसंदीदा तरीकों से संवाद स्थापित करें। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था, खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए थे। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आकी गई उसमें ये था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल एंगेजमेंट कितनी हुई, मंत्री के प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। उधर राहुल गांधी भी 22 अगस्त को पुणे में छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
11: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता।
1: बहरहाल जेन जी के मुद्दे ने हर पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में जैन अल्फा बुनियादी समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी मामले को लेकर सख्त हैं, जहां अब नए सिरे से किसी भी तरह की लापरवाही के विरोध में एक्शन के आदेश उन्होंने दे दिए हैं।
1: जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे, तो सीएम योगी ने सख्ती की। स्कूली बच्चों की परेशानियों को फौरन दूर करने के लिए सीएम दफ्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा, तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी उन्हें फौरन दूर करने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव SP गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही DM और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने दी है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में MDM, किचन, ब्लैक बोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉक वार निर्देश दिए गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने जेंजी को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी जेंजी वोटरों को AI, मीम और शॉर्ट वीडियो के जरिए साध रही है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक हैंडल से AI जनरेटेड वीडियो और ग्राफिक्स साझा किए जा रहे हैं। पार्टी के राजनीतिक संदेश, नीतियां और उपलब्धियां भी AI कंटेंट के रूप में जेंजी तक पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि यूपी में करीब 21% वोटर 18 से 29 वर्ष की उम्र के हैं, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का खास फोकस है।
12: अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का व्यवहार किसी ट्रोलर की तरह हो गया है। झूठे चित्र, झूठे वीडियो लाकर समाज को भ्रम में पैदा करो।
13: समाजवादियों ने ही इनको कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप देने का काम किया। वही लैपटॉप समाजवादी द्वारा दिए लैपटॉप को, जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात आई तो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए लैपटॉप और आईपैड से ही छात्रों ने अपनी पढ़ाई की।
1: समाजवादी पार्टी ही नहीं, अब कांग्रेस से लेकर BSP तक की नजर भी जेंजी क्लास के वोट बैंक की ओर घूम रही है। यूपी कांग्रेस भी डिजिटल मोर्चे पर सक्रिय हो चुकी है। हर जोन के लिए सोशल मीडिया और IT सेल की टीमें मजबूत की जा रही हैं। कांग्रेस मीम, व्यंग, ग्राफिक्स और विजुअल कंटेंट के जरिए सरकार विरोधी मुद्दों को युवाओं तक पहुंचा रही है। उधर मायावती के निर्देश पर BSP भी बूथवार समीक्षा बैठकें कर रही है। इसमें भी जेंजी कनेक्ट का आधार तलाशा जा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एनकाउंटर, ये दो कार्रवाई ऐसी हैं जिनके दम पर सरकार कानून व्यवस्था की मजबूती, अपराधियों पर लगाम का दावा करती है। विपक्ष इन दोनों ढंगों से चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई का आरोप लगाता है। इस सब के बीच 15 महीने पुराने एक हाफ एनकाउंटर से जुड़ी खबर पर कोर्ट ने ही आदेश दिया, जहां एनकाउंटर की CBI जांच का आदेश देते हुए अदालत ने पुलिस अधिकारी की निशानेबाजी की क्षमता तक जांचने को कह दिया।
14: 12 मई 2025 जगह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, अलाउद्दीन उर्फ छुटकाऊ नाम के आरोपी को गोली मारकर हाफ एनकाउंटर किया जाता है। यूपी में हाफ एनकाउंटर का मतलब है पैरों में गोली लगना। मई 2025 में श्रावस्ती पुलिस की टीम आरोपी अलाउद्दीन को नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस कहती कि तभी इसने फायर किया और दोबारा जब रात के अंधेरे में, पुलिस के मुताबिक

0: किसी और को नहीं।
1: राप्ती पुल के पास वहां घेराबंदी की गई और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।
0: मई 2025 के इस हाफ एनकाउंटर पर 23 पुलिस वालों को पुरस्कार मिला, लेकिन अब एनकाउंटर से लेकर पुरस्कार तक पर सवालों का नया एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हाफ एनकाउंटर के 15 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मई 2025 के श्रावस्ती के एकौना में अलाउद्दीन वाले हाफ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने कहा है कि 23 पुलिस वालों से घिरे होने के बावजूद आरोपी ने फायरिंग की जिसमें एक भी पुलिस वाला घायल नहीं होता। वहीं रात 11 बजे सुनसान इलाके में 15 मीटर की दूरी से एसएचओ ने गोली चलाई और वो सीधे आरोपी के दोनों पैर में लगी। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच का आदेश लखनऊ की अदालत ने दिया है और कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी जांच के दौरान तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे की निशानेबाजी और शूटिंग क्षमता का भी जरा परीक्षण कर ले।
2: कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की जीप में कैसे 23 लोग बैठ सकते हैं और वहीं रात के अंधेरे में एसएचओ जिसने इस पूरी एनकाउंटर की कहानी बताई, एफआईआर दर्ज करवाई, वो रात के 11 बजे कैसे असलाह को लोड करने की आवाज से उसने फायरिंग की और जिसमें जो आरोपी था उसके दोनों पैर में सटीक जाकर गोली लगी है।
3: इतना सटीक निशाना बहुत सव्यसाची तो है नहीं, सव्यसाची तो मैंने सुना था कि राजा दशरथ थे जो किसी की आवाज पे तीर मार देते थे, उसी वजह से श्रवण कुमार भी मरा था। सव्यसाची नहीं है ये, अगर इन्हें ये बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने ऐसा अनुमान में लगाया तो अनुमान से भी चलाया तो किसी अन्य को भी गोली लग सकती थी ना, कोई और भी तो मर सकता था। सटीक इनकाउंटर होना चाहिए, किसी अन्य की जनहानि नहीं होना चाहिए, किसी का अन्य घायल भी हो सकता था। ये मुझे गले से उतरने वाली बात नहीं, कोर्ट ने बिल्कुल सही ये जांच के आदेश दिए हैं और मैंने बहुत पहले भी कहा है कि जिस दिन एनकाउंटर इस तरह के फंसेंगे जवाब देते नहीं बनेगा, सजा हो जाएगी लोगों को।
4: जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है छुटकाऊ का गोली लगने के बाद, उसमें जो वुंड का साइज आता है वो है 0.5 सेंटीमीटर और जो गोली एसएचओ के माध्यम से पता, केस डायरी के माध्यम से पता चली है कि चलाई गई है वो है 0.9 mm की। तो गोली जब 9 mm की है और एंट्री वुंड है 0.5 mm का, तो ये बहुत ही इम्प्रोबेबल चीज़ें हैं जो कोर्ट को लगी हैं। एक बहुत ही कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई है पुलिस के द्वारा और जो कि मानने के योग्य नहीं है।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत से एनकाउंटर पर सियासी सवाल जवाब होता आया है। श्रावस्ती एनकाउंटर अपने आप में शायद ऐसा पहला केस है जहां एनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले की निशानेबाजी क्षमता के परीक्षण तक का आदेश दे दिया गया है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
5: खबर पाकिस्तान की जिसके कश्मीर प्रोपेगेंडा की अमेरिका ने हवा निकाल दी। अमेरिका के भारतीय राजदूत ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है।
6: ट्रंप के बेहद करीबी और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर न केवल श्रीनगर पहुंचे बल्कि इसे भारत का बेहद अहम हिस्सा भी बता दिया।
7: Knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi.
6: सर्जियो कोर का ये बयान महज इसलिए अहम नहीं क्योंकि वो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि ट्रंप ने उन्हें दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका का विशेष दूत भी बनाया है। इस लिहाज से उनके बयानों का प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर पड़ता है। उनके कश्मीर आने से पहले महबूबा मुफ्ती ने ये मांग उठाई थी कि अमेरिका कम से कम कश्मीर के लिए अपनी एडवाइजरी को हटा ले, जिसमें उसने अमेरिकी लोगों को कश्मीर न जाने की सलाह दे रखी है। इस पर भी सर्जियो कोर ने कश्मीर के पक्ष में बड़ा बयान दे दिया।
7: The chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. Because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
6: दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज लाशें बिछा रही है, जबकि श्रीनगर में अमेरिका के राजदूत

0: बेखौफ होकर शिकारा की सवारी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद सर्जियो गोर के बयानों से पाकिस्तान बौखला गया। उसने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास की प्रभारी राजनयिक नताली बेकर को विदेश मंत्रालय तलब किया। उसके विदेश मंत्रालय ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने की कड़ी निंदा करता है और इसे पूरी तरह से खारिज करता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने ट्रंप के बेहद करीबी सर्जियो गोर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बता दिया। पाकिस्तान में मची खलबली अभी खत्म नहीं हुई है। उसके पूर्व राजनयिक मसूद खान कह रहे हैं कि सर्जियो गोर को जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी नहीं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
1: तो ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: मातरम के छंद पर राजनीतिक प्रचंड अमित शाह ने बताया देश विरोधी मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति। इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष का उत्सव मनाएगी बीजेपी। सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम। जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर अदालत का हथौड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के निर्णय पर लगाई रोक। 11वीं 12वीं 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर। संघ ने किया मंथन। संसद मार्च के दौरान अधिक बलप्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। और इमरान खान को लेकर बैकवर्ड पर शहबाज सरकार। जेल से अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारी। पाक पुलिस का जमावड़ा। खबर वंदे मातरम पर मचे घमासान की। जहां कांग्रेस अब वंदे मातरम के पहले दो पैरों पर अड़ी है, तो बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है, जिसे लेकर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
1: कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ कर दिया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम के दो पैरा ही गाएगी।
2: टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट व्हाटएवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबाइड दैट डिसीजंस। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज अवर डिसीजन। फर्स्ट टू चांस था।
1: अमित शाह इसे वंदे मातरम का अपमान बता रहे हैं।
3: इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
1: 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था, जिसके बाद 15 अगस्त को पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। 17 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी।
4: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गाया। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं।
1: अब कांग्रेस जहां दो पद गाने पर अड़ी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है।
5: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
6: मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया।
1: अब सवाल यह है कि क्या जिस वंदे मातरम को लेकर बिल पास किया गया है, क्या उसके अपमान के मुद्दे पर सरकार का एक्शन होगा या फिर ये सिर्फ सियासत तक सीमित रह जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। सोरेन सरकार के निर्णय पर रोक के बाद नौकरी खोने वाले सरकारी कर्मचारी अब खुशियां मना रहे हैं।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों के जश्न को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आज हाईकोर्ट से प्रदर्शनकारियों को बड़ा झटका लगा। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है।
7: प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की धज्जी उड़ाई गई है सरकार के द्वारा, इसलिए हमने आ रहा ये बहस था कि इस तरह का ऑर्डर रातों रात नहीं पारित किया जा सकता है। टेंटेड और अनटेंटेड में फर्क करना पड़ेगा सरकार का, सरकार को।
1: अब मामले में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है,
8: शायद इसी वजह से विलंब हो रहा होगा जिसके लिए, लेकिन इतना दबाव और इतना मतलब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में।
9: सरकार ने पहले से ही ऐसा षड्यंत्र कर दिया था आंदोलन को समाप्त करने के लिए और एक बहुत ही कमजोर ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला था जो सबको पता था कि संभवतः ये जुडिशियल स्क्रूटनी के सामने टिकने वाला नहीं है, और हुआ भी वही। अदालत ने आज ये इंटरिम रोक लगा दी, सरकार से जवाब मांगा।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर के इम्तिहान को भी कैंसिल कर दिया था, जिससे एक झटके में 56 लोगों की नौकरी चली गई थी जो कि आज प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है।
10: और जज सर भी हमारी प्रॉब्लम को समझे, वो उन्होंने खुद बोला कि अगर ये मेरे साथ आप लोग कर देते, मेरे साथ ये इंसिडेंट हो जाता, रातों रात मेरा कुर्सी आप लोग छोड़वा देते तो हम क्या बोलते। वो खुद शर्मिंदा थे कि इस तरह डिसीजन सरकार कैसे ले सकती है, ये सीधा सीधी एक नेचुरल जस्टिस का हनन है।
1: बहरहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: जेन जी को लेकर हर पार्टी ने अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अब जेन जी वोटर्स को टारगेट करने का मन बना चुके हैं।
1: सरकारें ही नहीं, देश में अरसे से सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी अब जेन जी और जेन अल्फा के मुद्दों के जरिए जमीनी आधार दोबारा हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चालू करने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है। किस मंत्री को कब और किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का यह दौरा दिन भर का होगा जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए पीएम बेहद गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों को ये भी सलाह दी है कि पारंपरिक तरीके छोड़कर अब जेन जी और युवा वोटर्स के पसंदीदा तरीकों से संवाद स्थापित करें। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था, खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए थे। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आकी गई उसमें ये था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल एंगेजमेंट कितनी हुई, मंत्री के प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। उधर राहुल गांधी भी 22 अगस्त को पुणे में छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
11: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता।
1: बहरहाल जेन जी के मुद्दे ने हर पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में जैन अल्फा बुनियादी समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी मामले को लेकर सख्त हैं, जहां नए सिरे से किसी भी तरह की लापरवाही के विरोध में एक्शन के आदेश उन्होंने दे दिए हैं।
1: जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे तो सीएम योगी ने सख्ती की। स्कूली बच्चों की परेशानियों को फौरन दूर करने के लिए सीएम दफ्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा, तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी उन्हें फौरन दूर करने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने दी है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में एमडीएम, किचन, ब्लैकबोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉक वार निर्देश दिए गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने जेंजी को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी जेंजी वोटरों को एआई, मीम और शॉर्ट वीडियो के जरिए साध रही है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक हैंडल से एआई जनरेटेड वीडियो और ग्राफिक्स साझा किए जा रहे हैं। पार्टी के राजनीतिक संदेश, नीतियां और उपलब्धियां भी एआई कंटेंट के रूप में जेन जी तक पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि यूपी में करीब 21% वोटर 18 से 29 वर्ष की उम्र के हैं, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का खास फोकस है।
12: अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का व्यवहार किसी ट्रोलर की तरह हो गया है। झूठे चित्र, झूठे वीडियो लाकर समाज को भ्रम में पैदा करो।
13: समाजवादियों ने ही इनको कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप देने का काम किया। वही लैपटॉप समाजवादी द्वारा दिए लैपटॉप को, जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात है तो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए लैपटॉप और आईपैड से ही छात्रों ने अपनी पढ़ाई की।
1: समाजवादी पार्टी ही नहीं, अब कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक की नजर भी जेन जी क्लास के वोट बैंक की ओर घूम रही है। यूपी कांग्रेस भी डिजिटल मोर्चे पर सक्रिय हो चुकी है। हर जोन के लिए सोशल मीडिया और आईटी सेल की टीमें मजबूत की जा रही हैं। कांग्रेस मीम, व्यंग, ग्राफिक्स और विजुअल कंटेंट के जरिए सरकार विरोधी मुद्दों को युवाओं तक पहुंचा रही है। उधर मायावती के निर्देश पर बीएसपी भी बूथवार समीक्षा बैठकें कर रही है। इसमें भी जेन जी कनेक्ट का आधार तलाशा जा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एनकाउंटर, ये दो कार्रवाई ऐसी हैं जिनके दम पर सरकार कानून व्यवस्था की मजबूती, अपराधियों पर लगाम का दावा करती है। विपक्ष इन दोनों ढंगों से चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई का आरोप लगाता है। इस सब के बीच 15 महीने पुराने एक हाफ एनकाउंटर से जुड़ी खबर पर कोर्ट ने ही आदेश दिया, जहां एनकाउंटर की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए अदालत ने पुलिस अधिकारी की निशानेबाजी की क्षमता तक जांचने को कह दिया।
14: 12 मई 2025 जगह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, अलाउद्दीन उर्फ छुटकऊ नाम के आरोपी को गोली मारकर हाफ एनकाउंटर किया जाता है। यूपी में हाफ एनकाउंटर का मतलब है पैरों में गोली लगना। मई 2025 में श्रावस्ती पुलिस की टीम आरोपी अलाउद्दीन को नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस कहती कि तभी इसने फायर किया और दोबारा जब रात के अंधेरे में पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हथियार लोड करना चाहा, तो ये है तत्कालीन एसएचओ इकोना अश्विनी कुमार दुबे, जो बहुत बहादुरी से कहा जाता है कि उसी रात के अंधेरे में केवल हथियार लोड होने की आवाज सुनकर ऐसी गोली चलाते हैं जो सीधे आरोपी के पैर में लगती है, किसी और को नहीं।
15: रात के पास वहां घेराबंदी की गई और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया, जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।
14: मई 2025 के इस हाफ एनकाउंटर पर 23 पुलिस वालों को पुरस्कार मिला, लेकिन अब एनकाउंटर से लेकर पुरस्कार तक पर सवालों का नया एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हाफ एनकाउंटर के 15 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मई 2025 के श्रावस्ती के कौना में अलाउद्दीन वाले हाफ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने कहा है कि 23 पुलिस वालों से घिरे होने के बावजूद आरोपी ने फायरिंग की, जिसमें एक भी पुलिस वाला घायल नहीं होता। वहीं रात 11 बजे सुनसान इलाके में 15 मीटर की दूरी से एसएचओ ने गोली चलाई और वो सीधे आरोपी के दोनों पैर में लगी। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच का आदेश लखनऊ की अदालत ने दिया है और कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी जांच के दौरान तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे की निशानेबाजी और शूटिंग क्षमता का भी जरा परीक्षण कर ले।
16: कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की जीप में कैसे 23 लोग बैठ सकते हैं और वहीं रात के अंधेरे में एसएचओ जिसने इस पूरी एनकाउंटर की कहानी बताई, एफआईआर दर्ज करवाई, वो रात के 11 बजे कैसे असलाह को लोड करने की आवाज से उसने फायरिंग की और जिसमें जो आरोपी था उसके दोनों पैर में सटीक जाकर गोली लगी है।
17: इतना सटीक निशाना बहुत सव्यसाची तो है नहीं, सव्यसाची तो मैंने सुना था कि राजा दशरथ थे जो किसी की आवाज पे तीर मार देते थे, उसी में शायद श्रवण कुमार भी मरा था। सव्यसाची नहीं है ये, अगर इन्हें ये बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने ऐसा अनुमान में लगाया तो अनुमान से भी चलाया तो किसी अन्य को भी गोली लग सकती थी ना, कोई और भी तो मर सकता था। सटीक इनकाउंटर होना चाहिए, किसी अन्य की जनहानि नहीं होना चाहिए, किसी का अन्य घायल भी हो सकता था। ये मुझे गले से उतरने वाली बात नहीं, कोर्ट ने बिल्कुल सही ये जांच के आदेश दिए हैं और मैंने बहुत पहले भी कहा है कि जिस दिन एनकाउंटर इस तरह के फंसेंगे जवाब देते नहीं बनेगा, सजा हो जाएगी लोगों को।
18: जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है छुटकाऊ का गोली लगने के बाद, उसमें जो वून का साइज आता है वो है 0.5 सेंटीमीटर और जो गोली एसएचओ के माध्यम से पता, केस डायरी के माध्यम से पता चली है कि चलाई गई है वो है 0.9 mm की। तो गोली जब 9 mm की है और एंट्री वूंड है 0.5 mm का, तो ये बहुत ही इम्प्रोबेबल चीज़ें हैं जो कोर्ट को लगी हैं। एक बहुत ही कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई है पुलिस के द्वारा और जो कि मानने के योग्य नहीं है।
14: उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत से एनकाउंटर पर सियासी सवाल जवाब होता आया है। श्रावस्ती एनकाउंटर अपने आप में शायद ऐसा पहला केस है जहां एनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले की निशानेबाजी क्षमता के परीक्षण तक का आदेश दे दिया गया है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: खबर राजस्थान की, जहां जेन अल्फा की समस्याओं को लेकर सरकार ने अनोखा आदेश जारी किया। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने हल्ला बोला है।
1: राजस्थान में मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस का ये प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है जिसमें राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश पर बैन लगा दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज मार्च निकाला और विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।
19: इतने बच्चों की जान चली गई, छतें गिर रही हैं, बाढ़ आ रही है, व्यवस्था चरमरा गई है, बजाय उस वास्तविकता को एक्सेप्ट करके उस पे कदम उठाएं, सरकार ने आदेश जारी कर दिया, कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई रील नहीं बनाएगा, कोई मीडिया नहीं जाएगा, सरकारी स्कूलों पे लोगों को पाबंद कर दिया, अगर आप जाएंगे अंदर आप पे पॉस्को कानून लगा दिया जाएगा। तो ये सरकार को जो एक तानाशाह रवैया है और शिक्षा मंत्री जो एक बेवजह इस प्रकार के आदेश जारी किए उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं।
1: कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की जो कि हंगामे में तब्दील हो गई।
20: किसको बचा रहे हैं? कब तक बचाएंगे? कब तक बचाएंगे इस चोर मंत्री को? 15 दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष गए थे, इन्होंने वादा करा था कि स्कूल को सही कर देंगे, आज तक एक कमरा नहीं बना पाए, ऊपर से नोटिस लगा दिया कि अंदर नहीं जा सकते, बेशर्म कहेंगे।
1: बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल कर रही है।
21: उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल और केवल मात्र हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था, उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से इसको स्पष्ट कर दिया।
1: दरअसल पिछले काफी वक्त से राजस्थान के स्कूलों की हालत को लेकर घमासान चल रहा था। सीजेपी ने स्कूलों के मुद्दे पर मोर्चा संभाला तो अलवर के एक स्कूल में प्रवक्ता आशुतोष रांका के जाने पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसके बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए ये निर्देश जारी किया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर पाकिस्तान की, जिसके कश्मीर प्रोपोगंडा की अमेरिका ने हवा निकाल दी। अमेरिका के भारतीय राजदूत ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है।
2: करीबी और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर न केवल श्रीनगर पहुंचे बल्कि इसे भारत का बेहद अहम हिस्सा भी बता दिया।
3: Knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi.
2: सर्जियो कोर का ये बयान महज इसलिए अहम नहीं क्योंकि वो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि ट्रंप ने उन्हें दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका का विशेष दूत भी बनाया है। इस लिहाज से उनके बयानों का प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर पड़ता है। उनके कश्मीर आने से पहले महबूबा मुफ्ती ने ये मांग उठाई थी कि अमेरिका कम से कम कश्मीर के लिए अपनी एडवाइजरी को हटा ले, जिसमें उसने अमेरिकी लोगों को कश्मीर न जाने की सलाह दे रखी है। इस पर भी सर्जियो गोर ने कश्मीर के पक्ष में बड़ा बयान दे दिया।
3: The chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. Because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
2: दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज लाशें बिछा रही है, जबकि श्रीनगर में अमेरिका के राजदूत बेखौफ होकर शिकारा की सवारी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद सर्जियो गोर के बयानों से पाकिस्तान बौखला गया। उसने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास की प्रभारी राजनयिक नताली बेकर को विदेश मंत्रालय तलब किया। उसके विदेश मंत्रालय ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने की कड़ी निंदा करता है और इसे पूरी तरह से खारिज करता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने ट्रंप के बेहद करीबी सर्जियो गोर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बता दिया। पाकिस्तान में मची खलबली अभी खत्म नहीं हुई है। उसके पूर्व राजनयिक मसूद खान कह रहे हैं कि सर्जियो गोर को जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी नहीं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
0: लखनऊ में डबल मर्डर और आत्महत्या की वारदात हुई। एक ऐसी वारदात हर कोई हैरान है। एक बैंक कर्मी ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर आकर अपनी बहन का मर्डर कर दिया और अंत में खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हत्याकांड का राज छिपा है व्हाट्सएप स्टेटस में।

0: पत्नी का मर्डर, फिर अपनी ही बहन की हत्या और अंत में खुद को भी गोली से उड़ा दिया। लखनऊ में आज डबल मर्डर और सुसाइड की ऐसी वारदात हुई है कि हर कोई हैरान है, सवाल पूछ रहा है कि SBI जैसे बैंक में काम करने वाले मानस ने ICICI बैंक में काम करने वाली पत्नी की हत्या क्यों की। मानस वाजपेयी ने पत्नी की हत्या के बाद अपनी ही बहन को क्यों मार दिया। मानस वाजपेयी ने पत्नी और बहन को मारने के बाद आत्महत्या क्यों की। लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर का ये प्राइवेट बैंक आज एक क्राइम सीन बन गया। इस बैंक में दिव्या मिश्रा नाम की एक महिला असिस्टेंट मैनेजर के पद पर थी। बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर का काम देखती थी। दोपहर में महिला के पास उनके पति का फोन आया और बैंक के बाहर मिलने के लिए बुलाया। चश्मदीदों के मुताबिक पति मानस ने दिव्या से पहले बात की और फिर अचानक से उसे गोली मार दी। इसके बाद पति वहां से भाग गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बैंक से पीड़िता दिव्या को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इधर छानबीन कर ही रही थी कि अचानक से खबर आई कि इस घटना स्थल से थोड़ी ही दूरी पर एक शख्स ने खुद को और अपनी बहन को गोली मार दी। पता चला कि ये वही शख्स है जिसने कुछ देर पहले इस प्राइवेट बैंक के बाहर पत्नी की हत्या की।
1: हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जो क्राइम सीन है। यूं तो ये प्राइवेट बैंक है, लेकिन अब इसकी बाहरी जगह क्राइम सीन में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरों में देखें तो ये वो जगह है जहां पर कुल मिलाकर ये हत्या की गई है। पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कुछ बातचीत की और उसके बाद यहीं पर इस जगह पर हत्या कर दी। और ये वो क्राइम सीन जगह है जहां पर ये पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। अब मैं आपको यहां लेकर चलता हूं। ये जो बैंक है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये वो बैंक है जहां उसकी पत्नी असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत थी। और इस बैंक को अगर आप देखें यहां पर, तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल तो ये बैंक बंद कर दिया गया है, लेकिन इसी गेट से बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी बाहर निकली थी और इसी गेट से बाहर निकलकर वो पत्नी यहाँ पहुंची बात करने के लिए अपने पति से। एक साल से सब कुछ ठीक नहीं था, याचिका पड़ी थी डाइवोर्स की। तो आखिर ऐसा क्या एकदम से हुआ कि पति मानस, जो खुद एक अच्छी पोस्ट पर SBI में था, उसे इस हत्या को अंजाम देना पड़ा। ये सवालों के घेरे में है। उसने मृत्यु यानी कि मर्डर के बाद एक व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दिया और अपनी पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया। क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन एक विवाद ने तीन जाने लखनऊ में फिलहाल ले ली।
0: पता चला कि मानस ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर बाकायदा ये घोषणा की, लिखा था कि आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। आस पड़ोस के लोग जब तक ये व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रहे, तब तक मानस वारदात को अंजाम दे चुका था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। लोगों ने पहले दरवाजा पीटा, दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर गए तो देखा कि दो लाशें पड़ी हैं, एक मानस की और दूसरी उनकी बहन की। टीवी पर भक्ति गीत चल रहे थे।
2: मेरे भाई का पास उसके दोस्त का फोन आया कि तुम्हारे मकान मालिक ने क्या स्टेटस लगाया, देखो। जब हम लोग ने स्टेटस देखा तब पता चला कि भैया अंदर हैं। हम लोग को पता चला स्टेटस लगा, तो हम लोग उनके रिलेशन में उनके मामा के लड़के आए जल्दी जल्दी, तो हम लोग बेल बजाए, फोन करें, फोन भी नहीं उठाए, घटखटाए, वो भी नहीं उठाए। फिर हम लोग बगल से गए छत से कि देखे, वहां से देखे तो वहां से भी अंदर बंद था। फिर तीन चार लोग मिलके, वहां के सब लोग मिलके दरवाजा तोड़े। जब दरवाजा तोड़े तब देखे वो गोली मार चुके थे अपने आप।
1: अच्छा, जब वो यहाँ आए थे ICICI बैंक से, तो क्या पसीना पसीना छूट रहा था, क्या माहौल था, वो कैसे लग रहा है?
3: जैसे हमेशा आते थे, वो
1: रिएक्ट नहीं कर रहे थे
3: कुछ, कोई ऐसा कोई नहीं। मुझसे नॉर्मल जैसे हमेशा पूछते थे, मुझसे पूछा उन्होंने
1: क्या पूछा
3: कि लगुस कैसे हो, मैंने कहा ठीक है बस।
1: अच्छा, मतलब मर्डर करके आया तो नॉर्मली पूछा कैसे हो?
3: हाँ, नॉर्मल। वो हमेशा ही पूछते थे, कोई याद नहीं था
1: उनके पास, कोई गन थी, पिस्टल थी?
3: नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नजर में ऐसा कुछ नहीं था।
0: लेकिन सवाल यह है कि मानस ने पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया तो पत्नी की हत्या की, खुद को भी मार डाला, लेकिन अपनी बहन की हत्या क्यों की? बताया जा रहा है कि मानस के माता पिता की मौत हो चुकी थी और वो अपनी बहन के साथ अकेले रहते थे। पहले पत्नी भी साथ रहती थी, लेकिन पिछले लगभग एक साल से दोनों अलग थे। दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया भी चल रही थी। बताया जा रहा है कि मानस की बहन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, इसीलिए शायद मानस को ये लगा होगा कि उनके बाद बहन की देखभाल कौन करेगा। यही वजह रही कि मानस ने इतना बड़ा कदम उठाया, पत्नी को मारने के बाद बहन की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मार दी।
4: हुआ कि मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने मानस का स्टेटस देखा, तो मैंने कहा नहीं, तो अचानक से मैंने स्टेटस देखा तो उसमें मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि मेरी वाइफ को लेके मैंने स्टेटस देखा उसमें। फिर मैं बाहर आया, देखा तो जो किराएदार है वो दरवाजा जो है खटखटा रहे थे, खुल नहीं रहा था। फिर हम भी आए, हम भी खोलने लगे, तो पूरी मेहनत करी, उनके मामा के लड़के आए हुए थे, फिर एक साथ दरवाजा खोला तो देखा अंदर, जब उसे एंट्री किया तो देखा दोनों लोग मरे हुए पड़े हुए थे।
5: तो क्या वजह कुछ समझ में आ रही है?
4: नहीं, वजह कोई नहीं, बस उसकी बहन में
5: इस पे दो लिखा था, चीट किया।
4: हाँ, उनकी वाइफ ने चीट किया, ऐसे में स्टेटस लिखा हुआ था।
5: बहन को क्यों मारा
4: ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बहन को क्यों मारा, उसकी बहन तो वैसे भी मेंटली थी। हाँ,
5: अच्छा, ये गोली पिस्टल की आवाज आई है?
4: कुछ नहीं है, जब लोग एंट्री किए तो टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। हाँ, बस और कुछ नहीं था।
5: अंदर और क्या क्या पड़ा था बहन के?
4: कुछ नहीं, सब ऐसे दोनों लोग लेटे हुए थे, पिस्टल बड़ी हुई थी, हम लोगों ने देखा, तुरंत पुलिस आई, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई हुई।
5: तो वो दोनों लोग अंदर ही थे, किराए पे दे रखी थी?
6: जी जी।
5: और अब माता पिता कहाँ रहते हैं?
6: माता पिता एक्सपायर हो गए काफी समय पहले।
5: इकलौती बहन थी और वो थे, और पत्नी उनकी कहाँ रहती?
6: पत्नी भी यही रहती थी?
7: नहीं
6: रहती थी,
7: 3 महीने से नहीं, 3-4 महीने।
8: यह हत्याकांड और सुसाइड केस भले ही सनसनीखेज जरूर रहा, लेकिन पुलिस के सामने पूरा चैप्टर ही क्लोज हो चुका है। पुलिस अभी छानबीन कर रही है, सारी गुत्थियां तो सुलझी हुई लग रही हैं, बस ये पता नहीं चल पा रहा कि वो क्या बात थी जिसकी वजह से मानस ने पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या की, क्योंकि दोनों करीब 1 साल से साथ में नहीं रहते थे, और मानस ने जो चीटिंग का आरोप लगाया है उनकी सच्चाई क्या है।
9: देखिए, ये आज बहुत ही एक दुखद घटना थाना गोमती नगर में हुई। प्रारंभिक रूप से जो सूचना मिली कि गोमती नगर के ICICI बैंक के कर्मी को गोली मार दी गई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी छानबीन टीम हमारी कर ही रही थी कि यहां हुसैरिया से एक सूचना मिली कि गोली चलने की आवाज और किसी व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने की बात हुई। टीम यहां भी पहुंची तो ये ज्ञात हुआ कि जो उस महिला पीड़िता मृतका के पति थे, उसने अपने सिस्टर का हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है। टीमें यहां पहुंचकर जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा के लिए भेज दिया है। हमारी फील्ड यूनिट यहां आकर सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है, और हमारे थाने की और सर्विलांस टीम जो है पूरी डिटेल जानकारी कर रही है कि किस पॉइंट पे किस बात के कारण आज की ये घटना ट्रिगर हुई।
8: आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
10: तो ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: वंदे मातरम के छंद पर राजनीतिक प्रचंड अमित शाह ने बताया देश विरोधी मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति। इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष का उत्सव मनाएगी बीजेपी। सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम। जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर अदालत का हथौड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के निर्णय पर लगाई रोक। 11वीं 12वीं 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर। संघ ने किया मंथन। संसद मार्च के दौरान अधिक बलप्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। और इमरान खान को लेकर बैकफुट पर शहबाज सरकार। जेल से अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारी। पाक पुलिस का जमावड़ा। खबर वंदे मातरम पर मचे घमासान की। जहां कांग्रेस अब वंदे मातरम के पहले दो पैरों पर अड़ी है, तो बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है, जिसे लेकर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
1: कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ कर दिया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम के दो पैरा ही गाएगी।
2: टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट व्हाटएवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबाइड दैट डिसीजंस। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज अवर डिसीजन। फर्स्ट टू चांस था।
1: अमित शाह इसे वंदे मातरम का अपमान बता रहे हैं।
3: इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
1: 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था, जिसके बाद 15 अगस्त को पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। 17 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी।
4: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं।
1: अब कांग्रेस जहां दो पद गाने पर अड़ी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है।
5: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
6: मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया।
1: अब सवाल यह है कि क्या जिस वंदे मातरम को लेकर बिल पास किया गया है, क्या उसके अपमान के मुद्दे पर सरकार का एक्शन होगा या फिर ये सिर्फ सियासत तक सीमित रह जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। सोरेन सरकार के निर्णय पर रोक के बाद नौकरी खोने वाले सरकारी कर्मचारी अब खुशियां मना रहे हैं।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों के जश्न को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आज हाईकोर्ट से प्रदर्शनकारियों को बड़ा झटका लगा। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है।
7: प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की धज्जी उड़ाई गई है सरकार के द्वारा, इसलिए हमारा ये बहस था कि इस तरह का ऑर्डर रातों रात नहीं पारित किया जा सकता है। टेंटेड और अनटेंटेड में फर्क करना पड़ेगा सरकार को।
1: अब मामले में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है,
8: शायद इसी वजह से विलंब हो रहा होगा जिसके लिए, लेकिन इतना दबाव और इतना मतलब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में।
9: सरकार ने पहले से ही ऐसा षड्यंत्र कर दिया था आंदोलन को समाप्त करने के लिए और एक बहुत ही कमजोर ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला था, जो सबको पता था कि संभवतः ये जुडिशियल स्क्रूटनी के सामने टिकने वाला नहीं है, और हुआ भी वही। अदालत ने आज ये इंटरिम रोक लगा दी, सरकार से जवाब मांगा है।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर के इम्तिहान को भी कैंसिल कर दिया था, जिससे एक झटके में 56 लोगों की नौकरी चली गई थी जो कि आज प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है।
10: और जज सर भी हमारी प्रॉब्लम को समझे, वो उन्होंने खुद बोला कि अगर ये मेरे साथ आप लोग कर देते, मेरे साथ ये इंसिडेंट हो जाता, रातों रात मेरा कुर्सी आप लोग छोड़वा देते तो हम क्या बोलते। वो खुद शर्मिंदा थे कि इस तरह डिसीजन सरकार कैसे ले सकती है, ये सीधा सीधी एक नेचुरल जस्टिस का हनन है।
1: बहरहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: जेन जी को लेकर हर पार्टी ने अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अब जेन जी वोटर्स को टारगेट करने का मन बना चुके हैं।
1: सरकारें ही नहीं, देश में अरसे से सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी अब जेन जी और जेन अल्फा के मुद्दों के जरिए जमीनी आधार दोबारा हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चालू करने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है। किस मंत्री को कब और किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का यह दौरा दिन भर का होगा जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए पीएम बेहद गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों को ये भी सलाह दी है कि पारंपरिक तरीके छोड़कर अब जेन जी और युवा वोटर्स के पसंदीदा तरीकों से संवाद स्थापित करें। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था, खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए थे। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आकी गई उसमें ये था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल एंगेजमेंट कितनी हुई, मंत्री के प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। उधर राहुल गांधी भी 22 अगस्त को पुणे में छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
11: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता।
1: बहरहाल जेन जी के मुद्दे ने हर पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में जैन अल्फा बुनियादी समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी मामले को लेकर सख्त हैं, जहां अब नए सिरे से किसी भी तरह की लापरवाही के विरोध में एक्शन के आदेश उन्होंने दे दिए हैं।
1: जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे तो सीएम योगी ने सख्ती की। स्कूली बच्चों की परेशानियों को फौरन दूर करने के लिए सीएम दफ्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा, तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी उन्हें फौरन दूर करने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने दी है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में एमडीएम, किचन, ब्लैक बोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉक वार निर्देश दिए गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने जेंजी को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी जेंजी वोटरों को एआई, मीम और शॉर्ट वीडियो के जरिए साध रही है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक हैंडल से एआई जनरेटेड वीडियो और ग्राफिक्स साझा किए जा रहे हैं। पार्टी के राजनीतिक संदेश, नीतियां और उपलब्धियां भी एआई कंटेंट के रूप में जेंजी तक पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि यूपी में करीब 21 फीसदी वोटर 18 से 29 वर्ष की उम्र के हैं, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का खास फोकस है।
12: अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का व्यवहार किसी ट्रोलर की तरह हो गया है। झूठे चित्र, झूठे वीडियो लाकर समाज को भ्रम में पैदा करो।
13: समाजवादियों ने ही इनको कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप देने का काम किया। वही लैपटॉप समाजवादी द्वारा दिए लैपटॉप को, जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात है तो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए लैपटॉप और आईपैड से ही छात्रों ने अपनी पढ़ाई की।
1: समाजवादी पार्टी ही नहीं, अब कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक की नजर भी जेन जी क्लास के वोट बैंक की ओर घूम रही है। यूपी कांग्रेस भी डिजिटल मोर्चे पर सक्रिय हो चुकी है। हर जोन के लिए सोशल मीडिया और आईटी सेल की टीमें मजबूत की जा रही हैं। कांग्रेस मीम, व्यंग, ग्राफिक्स और विजुअल कंटेंट के जरिए सरकार विरोधी मुद्दों को युवाओं तक पहुंचा रही है। उधर मायावती के निर्देश पर बीएसपी भी बूथवार समीक्षा बैठकें कर रही है। इसमें भी जेन जी कनेक्ट का आधार तलाशा जा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एनकाउंटर ये दो कार्रवाई ऐसी हैं जिनके दम पर सरकार कानून व्यवस्था की मजबूती, अपराधियों पर लगाम का दावा करती है। विपक्ष इन दोनों ढंगों से चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई का आरोप लगाता है। इस सब के बीच 15 महीने पुराने एक हाफ एनकाउंटर से जुड़ी खबर पर कोर्ट ने ही आदेश दिया, जहां एनकाउंटर की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए अदालत ने पुलिस अधिकारी की निशानेबाजी की क्षमता तक जांचने को कह दिया।
14: 12 मई 2025 जगह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, अलाउद्दीन उर्फ छुटकऊ नाम के आरोपी को गोली मारकर हाफ एनकाउंटर किया जाता है। यूपी में हाफ एनकाउंटर का मतलब है पैरों में गोली लगना। मई 2025 में श्रावस्ती पुलिस की टीम आरोपी अलाउद्दीन को नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस कहती कि तभी इसने फायर किया और दोबारा जब रात के अंधेरे में पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हथियार लोड करना चाहा, तो ये है तत्कालीन एसएचओ इकोना अश्विनी कुमार दुबे, जो बहुत बहादुरी से कहा जाता है कि उसी रात के अंधेरे में केवल हथियार लोड होने की आवाज सुनकर ऐसी गोली चलाते हैं जो सीधे आरोपी के पैर में लगती है, किसी और को नहीं।
15: के पास वहां घेराबंदी की गई और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया, जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।
14: मई 2025 के इस हाफ एनकाउंटर पर 23 पुलिस वालों को पुरस्कार मिला, लेकिन अब एनकाउंटर से लेकर पुरस्कार तक पर सवालों का नया एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हाफ एनकाउंटर के 15 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मई 2025 के श्रावस्ती के कौना में अलाउद्दीन वाले हाफ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने कहा है कि 23 पुलिस वालों से घिरे होने के बावजूद आरोपी ने फायरिंग की जिसमें एक भी पुलिस वाला घायल नहीं होता। वहीं रात 11 बजे सुनसान इलाके में 15 मीटर की दूरी से एसएचओ ने गोली चलाई और वो सीधे आरोपी के दोनों पैर में लगी। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच का आदेश लखनऊ की अदालत ने दिया है और कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी जांच के दौरान तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे की निशानेबाजी और शूटिंग क्षमता का भी जरा परीक्षण कर ले।
16: कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की जीप में कैसे 23 लोग बैठ सकते हैं और वहीं रात के अंधेरे में एसएचओ जिसने इस पूरी एनकाउंटर की कहानी बताई, एफआईआर दर्ज करवाई, वो रात के 11 बजे कैसे असलाह को लोड करने की आवाज से उसने फायरिंग की और जिसमें जो आरोपी था उसके दोनों पैर में सटीक जाकर गोली लगी है।
17: इतना सटीक निशाना बहुत सव्यसाची तो है नहीं, सव्यसाची तो मैंने सुना था कि राजा दशरथ थे जो किसी की आवाज पे तीर मार देते थे, उसी में शायद श्रवण कुमार भी मरा था। सव्यसाची नहीं है ये, अगर इन्हें ये बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने ऐसा अनुमान में लगाया तो अनुमान से भी चलाया तो किसी अन्य को भी गोली लग सकती थी ना, कोई और भी तो मर सकता था। सटीक इनकाउंटर होना चाहिए, किसी अन्य की जनहानि नहीं होना चाहिए, किसी का अन्य घायल भी हो सकता था, ये मुझे गले से उतरने वाली बात नहीं। कोर्ट ने बिल्कुल सही ये जांच के आदेश दिए हैं और मैंने बहुत पहले भी कहा है कि जिस दिन एनकाउंटर इस तरह के फंसेंगे जवाब देते नहीं बनेगा, सजा हो जाएगी लोगों को।
18: जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है छुटकाऊ का गोली लगने के बाद, उसमें जो वुंड का साइज आता है वो है 0.5 सेंटीमीटर और जो गोली एसएचओ के माध्यम से पता, केस डायरी के माध्यम से पता चली कि चलाई गई है वो है 0.9 mm की। तो गोली जब 9 mm की है और एंट्री वुंड है 0.5 mm का, तो ये बहुत ही इम्प्रोबेबल चीज़ें हैं जो कोर्ट को लगी हैं। एक बहुत ही कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई है पुलिस के द्वारा और जो कि मानने के योग्य नहीं है।
14: उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत से एनकाउंटर पर सियासी सवाल जवाब होता आया है। श्रावस्ती एनकाउंटर अपने आप में शायद ऐसा पहला केस है जहां एनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले की निशानेबाजी क्षमता के परीक्षण तक का आदेश दे दिया गया है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: खबर राजस्थान की, जहां जेन अल्फा की समस्याओं को लेकर सरकार ने अनोखा आदेश जारी किया। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई जिससे लेकर अब कांग्रेस ने हल्ला बोला है।
1: राजस्थान में मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस का ये प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है जिसमें राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश पर बैन लगा दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज मार्च निकाला और विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।
19: इतने बच्चों की जान चली गई, छतें गिर रही हैं, बाढ़ आ रही है, व्यवस्था चरमरा गई है, बजाय उस वास्तविकता को एक्सेप्ट करके उस पे कदम उठाएं, सरकार ने आदेश जारी कर दिया। कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई रील नहीं बनाएगा, कोई मीडिया नहीं जाएगा, सरकारी स्कूलों पे लोगों को पाबंद कर दिया। अगर आप जाएंगे अंदर आप पे पॉस्को कानून लगा दिया जाएगा। तो ये सरकार को जो एक तानाशाह रवैया है और शिक्षा मंत्री जो एक बेवजह इस प्रकार के आदेश जारी किए उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं।
1: कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की जो कि हंगामे में तब्दील हो गए।
20: किसको बचा रहे हैं? कब तक बचाएंगे? कब तक बचाएंगे इस चोर मंत्री को? 15 दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष गए थे, इन्होंने वादा करा था कि स्कूल को सही कर देंगे, आज तक एक कमरा नहीं बना पाए, ऊपर से नोटिस लगा दिया कि अंदर नहीं जा सकते, बेशर्म कहीं के।
1: बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल कर रही है।
21: उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल और केवल मात्र हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था, उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से इसको स्पष्ट कर दिया।
1: दरअसल पिछले काफी वक्त से राजस्थान के स्कूलों की हालत को लेकर घमासान चल रहा था। सीजेपी ने स्कूलों के मुद्दे पर मोर्चा संभाला तो अलवर के एक स्कूल में प्रवक्ता आशुतोष प्रांका के जाने पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसके बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए ये निर्देश जारी किया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर पाकिस्तान की, जिसके कश्मीर प्रोपोगंडा की अमेरिका ने हवा निकाल दी। अमेरिका के भारतीय राजदूत ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है।
2: बेहद करीबी और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर न केवल श्रीनगर पहुंचे बल्कि इसे भारत का बेहद अहम हिस्सा भी बता दिया।
3: Knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi.
2: सर्जियो गोर का ये बयान महज इसलिए अहम नहीं क्योंकि वो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि ट्रंप ने उन्हें दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका का विशेष दूत भी बनाया है। इस लिहाज से उनके बयानों का प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर पड़ता है। उनके कश्मीर आने से पहले महबूबा मुफ्ती ने ये मांग उठाई थी कि अमेरिका कम से कम कश्मीर के लिए अपनी एडवाइजरी को हटा ले, जिसमें उसने अमेरिकी लोगों को कश्मीर न जाने की सलाह दे रखी है। इस पर भी सर्जियो गोर ने कश्मीर के पक्ष में बड़ा बयान दे दिया।
3: The chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. Because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
2: दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज लाशें बिछा रही है, जबकि श्रीनगर में अमेरिका के राजदूत बेखौफ होकर शिकारा की सवारी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद सर्जियो गोर के बयानों से पाकिस्तान बौखला गया। उसने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास की प्रभारी राजनयिक नताली बेकर को विदेश मंत्रालय तलब किया। उसके विदेश मंत्रालय ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने की कड़ी निंदा करता है और इसे पूरी तरह से खारिज करता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने ट्रंप के बेहद करीबी सर्जियो गोर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बता दिया। पाकिस्तान में मची खलबली अभी खत्म नहीं हुई है।

0: खबर मौसम की, जहां नदियों में उफान ने शहरों का बुरा हाल कर दिया। यूपी के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर लिया है।
1: ये प्रयागराज है, संगम नगरी प्रयागराज। कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन अभी तो एक्वा सिटी प्रयागराज बनी हुई है। ये प्रयागराज की सिवाई चिंतामणि रोड है। कहने को ये पौश इलाका है, लेकिन पौश इलाके की मूलभूत व्यवस्था यही है कि पानी की वजह से बिजली पानी सब बंद है।
2: घरों के सामने सड़कें हैं, वहाँ जलभराव की स्थिति है, और ये पानी जो बारिश का पानी है सड़कों के अलावा घर में भी घुस गया है। आलम यह है कि लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं बारिश के पानी ने इन सभी लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट कर लिया है।
1: लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि घर के बाहर निकले तो रोड पर पानी, घर पर रहे तो कमरे में पानी।
3: हम लोग के घर में बहुत सारा पानी घुस चुका है, तो हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, मेरे स्कूल में दो बार छुट्टी हो चुकी है, हम लोग के दो एग्जाम कैंसिल हो चुके,
4: जिसको कहते हैं जेल। हम लोग जेल में बंद है, ना हमारे पास पानी है, ना लाइट। हम लोग रात रात भर नहीं सोए, पंखा पुराना दिया बत्ती अगरबत्ती यही सब कर रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है। किसी तरह जो जरा से इकट्ठा पानी हुआ तो उसको उबाल के ठंडा करके वही पी रहे हैं।
5: और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना सभासद आए, ना विधायक आए, ना सांसद, तीनों भाजपा के।
1: वाराणसी का हाल भी देख लीजिए। बड़े बड़े घाटों को गंगा नदी ने अपने आगोश में ले लिया है।
6: वाराणसी में गंगा का जल स्तर पक्के घाटों को डुबोने के बाद अब गलियों और सड़कों के जरिए शहर के अंदर पहुंचने के लिए आमादा है। गंगा के अलावा वरुणा के भी काफी तटीय इलाकों में बढ़ता हुआ जल स्तर पहुंच चुका है।
1: कानपुर में भी गंगा नदी के विकराल रूप की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीमें संवेदनशील इलाकों की पहचान कर रही हैं, जहां खतरा ज्यादा है।
7: पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहां पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, जो खुद बोट के जरिए अपने बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं घाटों का। स्पीकर के जरिए लोगों को चेताया जा रहा है कि वह किस तरीके से सावधान रहें, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो डेंजरस मार्क पे लगभग पहुंच चुका है।
1: यूपी के 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आज तक ब्यूरो।
0: पहाड़ों पर जमकर बरसात हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में मूसलाधार बारिश से फ्लैश फ्लड आ गया कई इलाकों में। हिमाचल के कांगड़ा में नेशनल हाईवे पर अचानक पानी आने से कई लोग फंस गए।
8: ये तस्वीरें कांगड़ा के प्रागपुर इलाके की हैं, जहां फ्लैश फ्लड से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। बहाव इतना तेज था कि कांगड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे तक पानी पहुंच गया। पानी के तेज बहाव के बीच में एक कार सवार फंस गया। कार ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज थी कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और कार में सवार लोगों को बाहर निकाला, लेकिन कार पानी में बह गई। अब जरा अनंतनाग की तस्वीरें भी देखिए। घरों के बीच में पानी ऐसा आ गया मानो ये मकान किसी नदी पर बनाए गए हों। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आंगन तक पानी भर गया। ऊंचाई वाले इलाकों में जब मूसलाधार बरसात होती है तो निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी इन दिनों फ्लैश फ्लड की घटनाएं बढ़ गई हैं। आज तक ब्यूरो।
0: भारत और जापान के बीच आज एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ। इस समझौते में कई विशेष बातें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात भारत और जापान का मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़ना। और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत की नौसेना न सिर्फ आत्मनिर्भर होगी बल्कि मेक इन इंडिया को भी इससे मिलेगा बढ़ावा।
9: पहली बार मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़े भारत और जापान। पहली बार भारत आएंगे जापान के लड़ाकू विमान। भारत के थिएटर कमांड में भी मदद करेगा जापान।

0: भारत और जापान के बीच बढ़ता दोस्ताना दुश्मनों को खबरदार कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजो कोइजुमी को कोनिचिवा और अरिगातो कहकर विदाई दी है, जिसके जवाब में कोइजुमी ने जवाब में नमस्ते कहकर भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों के गहरे रिश्तों का साफ साफ संकेत दे दिया। रक्षा मंत्रियों के बीच दिखी ये गर्मजोशी भारत और जापान के बीच हुए बड़े रक्षा समझौते में भी नजर आती है, जो देश के दुश्मनों के लिए जोरदार झटके से कम नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक में इन दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था संबंधी समझौते को लेकर हस्ताक्षर किए गए।
1: नमस्ते।
2: एक्सेलेंसी कोइजुमी-शान, कोनिचिवा।
0: इसकी जानकारी खुद देश के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर दी है और लिखा है कि इंडो पैसिफिक में स्थिरता के लिए एक अहम पड़ाव। नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी के साथ बहुत सार्थक बैठक हुई है। हमारी बातचीत समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया रक्षा तकनीक और रणनीतिक भरोसे को बढ़ाने पर केंद्रित रही है।
2: अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा समझौते में नौसेनाओं के बीच सहयोग, सूचना का आदान प्रदान, खोज और बचाव, मानवीय सहायता, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। लेकिन सबसे अहम बात, भारत और जापान का नौसेना के जहाजों को मिलकर बनाने और डिजाइन करने को लेकर बनती एक राय है। जापान के एडवांस तकनीक और भारत की उत्पादन क्षमता का मेल मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। जापान के मोगामी क्लास फ्रिगेट जैसे आधुनिक जहाजों की तकनीक भारत के लिए उपयोगी हो सकती है। इससे पहले दोनों देशों के बीच नेवल रेडियो एंटीना सिस्टम को मिलकर बनाने का समझौता कर लिया गया था, लेकिन मिलकर नौसैनिक जहाज बनाने का कदम भारत की नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। इनका सीधा असर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के इरादों पर होगा, जो जापान, फिलीपींस जैसे अपने पड़ोसियों को डराने के साथ ही हिंद महासागर में भी अपना शिकंजा कस रहा है। लेकिन इस समुद्री समझौते के बाद दोनों देश हर तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे।
1: तो ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: वंदे मातरम के छंद पर राजनीतिक प्रचंड अमित शाह ने बताया देश विरोधी मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति। इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष का उत्सव मनाएगी बीजेपी। सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम। जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर अदालत का हथौड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के निर्णय पर लगाई रोक। 11वीं 12वीं 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर। संघ ने किया मंथन। संसद मार्च के दौरान अधिक बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। और इमरान खान को लेकर बैकवर्ड पर शहबाज सरकार। जेल से अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारी, पाक पुलिस का जमावड़ा। खबर वंदे मातरम पर मचे घमासान की। जहां कांग्रेस अब वंदे मातरम के पहले दो पैरा पर अड़ी है, तो बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है, जिसे लेकर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
1: कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ कर दिया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम के दो पैरा ही गाएगी।
2: टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट व्हाटएवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबाइड दैट डिसीजंस। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज अवर डिसीजन। फर्स्ट टू चांस था।
1: अमित शाह इसे वंदे मातरम का अपमान बता रहे हैं।
3: इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
1: 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था, जिसके बाद 15 अगस्त को पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। 17 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी।
4: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही में गया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं।
1: अब कांग्रेस जहां दो पद गाने पर अड़ी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है।
5: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
6: मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया।
1: अब सवाल यह है कि क्या जिस वंदे मातरम को लेकर बिल पास किया गया है, क्या उसके अपमान के मुद्दे पर सरकार का एक्शन होगा या फिर ये सिर्फ सियासत तक सीमित रह जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: जेन जी को लेकर हर पार्टी ने अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अब जेन जी वोटर्स को टारगेट करने का मन बना चुके हैं।
1: सरकारें ही नहीं, देश में अरसे से सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी अब जेन जी और जेन अल्फा के मुद्दों के जरिए जमीनी आधार दोबारा हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चालू करने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। किस मंत्री को कब और किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का यह दौरा दिन भर का होगा जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए पीएम बेहद गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों को ये भी सलाह दी है कि पारंपरिक तरीके छोड़कर अब जेन जी और युवा वोटर्स के पसंदीदा तरीकों से संवाद स्थापित करें। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया, उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था। खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए थे। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आकी गई, उसमें ये था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल एंगेजमेंट कितनी हुई, मंत्री के प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। उधर राहुल गांधी भी 22 अगस्त को पुणे में छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
7: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है, अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता।
1: बहरहाल जेन जी के मुद्दे ने हर पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में जेन अल्फा बुनियादी समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी मामले को लेकर सख्त हैं, जहां अब नए सिरे से किसी भी तरह की लापरवाही के विरोध में एक्शन के आदेश उन्होंने दे दिए हैं।
1: जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे, तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे, तो सीएम योगी ने सख्ती की। स्कूली बच्चों की परेशानियों को फौरन दूर करने के लिए सीएम दफ्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा, तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी, उन्हें फौरन दूर करने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने दी है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में एमडीएम, किचन, ब्लैक बोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉक वार निर्देश दिए गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने जेन जी को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी जेन जी वोटरों को एआई, मीम और शॉर्ट वीडियो के जरिए साध रही है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक हैंडल से एआई जनरेटेड वीडियो और ग्राफिक्स साझा किए जा रहे हैं। पार्टी के राजनीतिक संदेश, नीतियां और उपलब्धियां भी एआई कंटेंट के रूप में जेन जी तक पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि यूपी में करीब 21% वोटर 18 से 29 वर्ष की उम्र के हैं, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का खास फोकस है।
8: अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का व्यवहार किसी ट्रोलर की तरह हो गया है। झूठे चित्र, झूठे वीडियो लाकर समाज को भ्रम में पैदा करो।
9: समाजवादियों ने ही इनको कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप देने का काम किया। वही लैपटॉप समाजवादी द्वारा दिए लैपटॉप को, जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात है तो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए लैपटॉप और आईपैड से ही छात्रों ने अपनी पढ़ाई की।
1: समाजवादी पार्टी ही नहीं, अब कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक की नजर भी जेन जी क्लास के वोट बैंक की ओर घूम रही है। यूपी कांग्रेस भी डिजिटल मोर्चे पर सक्रिय हो चुकी है। हर जोन के लिए सोशल मीडिया और आईटी सेल की टीमें मजबूत की जा रही हैं। कांग्रेस मीम, व्यंग, ग्राफिक्स और विजुअल कंटेंट के जरिए सरकार विरोधी मुद्दों को युवाओं तक पहुंचा रही है। उधर मायावती के निर्देश पर बीएसपी भी बूथवार समीक्षा बैठकें कर रही है। इसमें भी जेन जी कनेक्ट का आधार तलाशा जा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एनकाउंटर, ये दो कार्रवाई ऐसी हैं जिनके दम पर सरकार कानून व्यवस्था की मजबूती, अपराधियों पर लगाम का दावा करती है। विपक्ष इन दोनों ढंगों से चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई का आरोप लगाता है। इस सब के बीच 15 महीने पुराने एक हाफ एनकाउंटर से जुड़ी खबर पर कोर्ट ने ही आदेश दिया, जहां एनकाउंटर की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए अदालत ने पुलिस अधिकारी की निशानेबाजी की क्षमता तक जांचने को कह दिया।
10: 12 मई 2025 जगह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, अलाउद्दीन उर्फ छुटकाऊ नाम के आरोपी को गोली मारकर हाफ एनकाउंटर किया जाता है। यूपी में हाफ एनकाउंटर का मतलब है पैरों में गोली लगना। मई 2025 में श्रावस्ती पुलिस की टीम आरोपी अलाउद्दीन को नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस कहती कि तभी इसने फायर किया और दोबारा जब रात के अंधेरे में पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हथियार लोड करना चाहा, तो ये है तत्कालीन एसएचओ इकोना अश्विनी कुमार दुबे, जो बहुत बहादुरी से कहा जाता है कि उसी रात के अंधेरे में केवल हथियार लोड होने की आवाज सुनकर ऐसी गोली चलाते हैं जो सीधे आरोपी के पैर में लगती है, किसी और को नहीं।
11: के पास वहां घेराबंदी की गई और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया, जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।
10: मई 2025 के इस हाफ एनकाउंटर पर 23 पुलिस वालों को पुरस्कार मिला, लेकिन अब एनकाउंटर से लेकर पुरस्कार तक पर सवालों का नया एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हाफ एनकाउंटर के 15 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मई 2025 के श्रावस्ती के इकोना में अलाउद्दीन वाले हाफ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने कहा है कि 23 पुलिस वालों से घिरे होने के बावजूद आरोपी ने फायरिंग की, जिसमें एक भी पुलिस वाला घायल नहीं होता। वहीं रात 11 बजे सुनसान इलाके में 15 मीटर की दूरी से एसएचओ ने गोली चलाई और वो सीधे आरोपी के दोनों पैर में लगी। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच का आदेश लखनऊ की अदालत ने दिया है और कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी जांच के दौरान तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे की निशानेबाजी और शूटिंग क्षमता का भी जरा परीक्षण कर ले।
12: कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की जीप में कैसे 23 लोग बैठ सकते हैं और वहीं रात के अंधेरे में एसएचओ, जिसने इस पूरी एनकाउंटर की कहानी बताई, एफआईआर दर्ज करवाई, वो रात के 11 बजे कैसे असलाह को लोड करने की आवाज से उसने फायरिंग की और जिसमें जो आरोपी था उसके दोनों पैर में सटीक जाकर गोली लगी है।
13: इतना सटीक निशाना बहुत सव्यसाची तो है नहीं, सव्यसाची तो मैंने सुना था कि राजा दशरथ थे जो किसी की आवाज पे तीर मार देते थे, उसी वजह से श्रवण कुमार भी मरा था। सव्यसाची नहीं है ये, अगर इन्हें ये बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने ऐसा अनुमान में लगाया तो अनुमान से भी चलाया तो किसी अन्य को भी गोली लग सकती थी ना, कोई और भी तो मर सकता था। सटीक इनकाउंटर होना चाहिए, किसी अन्य की जनहानि नहीं होना चाहिए, किसी का अन्य घायल भी हो सकता था। ये मुझे गले से उतरने वाली बात नहीं, कोर्ट ने बिल्कुल सही ये जांच के आदेश दिए हैं और मैंने बहुत पहले भी कहा है कि जिस दिन एनकाउंटर इस तरह के फंसेंगे जवाब देते नहीं बनेगा, सजा हो जाएगी लोगों को।
14: जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है छुटकाऊ का गोली लगने के बाद, उसमें जो वुंड का साइज आता है वो है 0.5 सेंटीमीटर और जो गोली एसएचओ के माध्यम से पता, केस डायरी के माध्यम से पता चली है कि चलाई गई है, वो है 0.9 mm की। तो गोली जब 9 mm की है और एंट्री वुंड है 0.5 mm का, तो ये बहुत ही इम्प्रोबेबल चीज़ें हैं जो कोर्ट को लगी हैं। एक बहुत ही कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई है पुलिस के द्वारा और जो कि मानने के योग्य नहीं है।
10: उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत से एनकाउंटर पर सियासी सवाल जवाब होता आया है। श्रावस्ती एनकाउंटर अपने आप में शायद ऐसा पहला केस है जहां एनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले की निशानेबाजी क्षमता के परीक्षण तक का आदेश दे दिया गया है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: खबर राजस्थान की, जहां जेन अल्फा की समस्याओं को लेकर सरकार ने अनोखा आदेश जारी किया। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने हल्ला बोला है।
1: राजस्थान में मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस का ये प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है जिसमें राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश पर बैन लगा दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज मार्च निकाला और विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।
15: इतने बच्चों की जान चली गई, छतें गिर रही हैं, बाढ़ आ रही है, व्यवस्था चरमरा गई है, बजाय उस वास्तविकता को एक्सेप्ट करके उस पर कदम उठाएं, सरकार ने आदेश जारी कर दिया। कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई रील नहीं बनाएगा, कोई मीडिया नहीं जाएगा, सरकारी स्कूलों पे लोगों को पाबंद कर दिया। अगर आप जाएंगे अंदर, आप पे पॉस्को कानून लगा दिया जाएगा। तो ये सरकार को जो एक तानाशाही रवैया है और शिक्षा मंत्री जो एक बेवजह इस प्रकार के आदेश जारी किए, उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं।
1: कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की, जो कि हंगामे में तब्दील हो गए।
16: किसको बचा रहे हैं? कब तक बचाएंगे? कब तक बचाएंगे इस चोर मंत्री को? 15 दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष आए थे, इन्होंने वादा करा था कि स्कूल को सही कर देंगे, आज तक एक कमरा नहीं बना पाए, ऊपर से नोटिस लगा दिया कि अंदर नहीं जा सकते, बेशर्म कहेंगे।
1: बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल कर रही है।
17: उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल और केवल मात्र हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था। उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से इसको स्पष्ट कर दिया।
1: दरअसल पिछले काफी वक्त से राजस्थान के स्कूलों की हालत को लेकर घमासान चल रहा था। सीजेपी ने स्कूलों के मुद्दे पर मोर्चा संभाला तो अलवर के एक स्कूल में प्रवक्ता आशुतोष प्रांका के जाने पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसके बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए ये निर्देश जारी किया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर पाकिस्तान की, जिसके कश्मीर प्रोपोगंडा की अमेरिका ने हवा निकाल दी। अमेरिका के भारतीय राजदूत ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है।
18: ट्रंप के बेहद करीबी और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर न केवल श्रीनगर पहुंचे बल्कि इसे भारत का बेहद अहम हिस्सा भी बता दिया।
19: Knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi.
18: सर्जियो कोर का ये बयान महज इसलिए अहम नहीं क्योंकि वो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि ट्रंप ने उन्हें दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका का विशेष दूत भी बनाया है। इस लिहाज से उनके बयानों का प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर पड़ता है। उनके कश्मीर आने से पहले महबूबा मुफ्ती ने ये मांग उठाई थी कि अमेरिका कम से कम कश्मीर के लिए अपनी एडवाइजरी को हटा ले, जिसमें उसने अमेरिकी लोगों को कश्मीर न जाने की सलाह दे रखी है। इस पर भी सर्जियो कोर ने कश्मीर के पक्ष में बड़ा बयान दे दिया।
19: The chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. Because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exists here.
18: दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज लाशें बिछा रही है, जबकि श्रीनगर में अमेरिका के राजदूत बेखौफ होकर शिकारा की सवारी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद सर्जियो कोर के बयानों से पाकिस्तान बौखला गया। उसने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास की प्रभारी राजनयिक नताली बेकर को विदेश मंत्रालय तलब किया। उसके विदेश मंत्रालय ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने की कड़ी निंदा करता है और इसे पूरी तरह से खारिज करता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने ट्रंप के बेहद करीबी सर्जियो कोर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बता दिया पाकिस्तान में मची खलबली अभी खत्म नहीं हुई है। उसके पूर्व राजनयिक मसूद खान कह रहे हैं कि सरजू गोर को जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी नहीं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
0: लखनऊ में डबल मर्डर और आत्महत्या की वारदात हुई। एक ऐसी वारदात हर कोई हैरान है। एक बैंक कर्मी ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर आकर अपनी बहन का मर्डर कर दिया और अंत में खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हत्याकांड का राज छिपा है व्हाट्सएप स्टेटस में।

0: पत्नी का मर्डर, फिर अपनी ही बहन की हत्या और अंत में खुद को भी गोली से उड़ा दिया। लखनऊ में आज डबल मर्डर और सुसाइड की ऐसी वारदात हुई है कि हर कोई हैरान है। सवाल पूछ रहा है कि SBI जैसे बैंक में काम करने वाले मानस ने ICICI बैंक में काम करने वाली पत्नी की हत्या क्यों की? मानस वाजपेयी ने पत्नी की हत्या के बाद अपनी ही बहन को क्यों मार दिया? मानस वाजपेयी ने पत्नी और बहन को मारने के बाद आत्महत्या क्यों की? लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर का ये प्राइवेट बैंक आज एक क्राइम सीन बन गया। इस बैंक में दिव्या मिश्रा नाम की एक महिला असिस्टेंट मैनेजर के पद पर थी। बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर का काम देखती थी। दोपहर में महिला के पास उनके पति का फोन आया और बैंक के बाहर मिलने के लिए बुलाया। चश्मदीदों के मुताबिक पति मानस ने दिव्या से पहले बात की और फिर अचानक से उसे गोली मार दी। इसके बाद पति वहां से भाग गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बैंक से पीड़िता दिव्या को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इधर छानबीन कर ही रही थी कि अचानक से खबर आई कि इस घटना स्थल से थोड़ी ही दूरी पर एक शख्स ने खुद को और अपनी बहन को गोली मार दी। पता चला कि ये वही शख्स है जिसने कुछ देर पहले इस प्राइवेट बैंक के बाहर पत्नी की हत्या की।
1: हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जो क्राइम सीन है। यूं तो ये प्राइवेट बैंक है, लेकिन अब इसकी बाहरी जगह क्राइम सीन में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरों में देखें तो ये वो जगह है जहां पर कुल मिलाकर ये हत्या की गई है। पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कुछ बातचीत की और उसके बाद यहीं पर इस जगह पर हत्या कर दी। और ये वो क्राइम सीन जगह है जहां पर ये पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। अब मैं आपको यहां लेकर चलता हूं। ये जो बैंक है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये वो बैंक है जहां उसकी पत्नी असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत थी। और इस बैंक को अगर आप देखें यहां पर, तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल तो ये बैंक बंद कर दिया गया है, लेकिन इसी गेट से बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी बाहर निकली थी और इसी गेट से बाहर निकलकर वो पत्नी यहाँ पहुंची बात करने के लिए अपने पति से। एक साल से सब कुछ ठीक नहीं था, याचिका पड़ी थी डाइवोर्स की। तो आखिर ऐसा क्या एकदम से हुआ कि पति मानस, जो खुद एक अच्छी पोस्ट पर SBI में था, उसे इस हत्या को अंजाम देना पड़ा? ये सवालों के घेरे में है। उसने मृत्यु यानी कि मर्डर के बाद एक व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दिया और अपनी पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया। क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता, पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन एक विवाद ने तीन जाने लखनऊ में फिलहाल ले ली।
0: पता चला कि मानस ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर बाकायदा ये घोषणा की थी। लिखा था कि आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। आस पड़ोस के लोग जब तक ये व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते तब तक मानस वारदात को अंजाम दे चुका था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। लोगों ने पहले दरवाजा पीटा, दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर गए तो देखा कि दो लाशें पड़ी हैं, एक मानस की और दूसरी उनकी बहन की। टीवी पर भक्ति गीत चल रहे थे।
2: मेरे भाई का पास उसके दोस्त का फोन आया कि तुम्हारे मकान मालिक ने क्या स्टेटस लगाया, देखो। जब हम लोग ने स्टेटस देखा तब पता चला कि भैया अंदर हैं। हम लोग को पता चला स्टेटस लगा, तो हम लोग उनके रिलेशन में उनके मामा के लड़के आए जल्दी जल्दी, तो हम लोग बेल बजाएं, फोन करें, फोन भी नहीं उठाए, घटखटाए, वो भी नहीं उठाए। फिर हम लोग बगल से गए छत से कि देखे, वहां से देखे तो वहां से भी अंदर बंद था। फिर तीन चार लोग मिलकर, वहां के सब लोग मिलकर दरवाजा तोड़े। जब दरवाजा तोड़े तब देखे वो गोली मार चुके थे अपने आप।
1: अच्छा, जब वो यहाँ आए थे ICICI बैंक से, तो क्या पसीना पसीना छूट रहा था, क्या माहौल था, वो कैसे लग रहा है?
3: जैसे हमेशा आते थे वो, वैसे
1: रिएक्ट नहीं कर रहे थे कुछ,
3: कोई ऐसा कोई नहीं, मुझसे नॉर्मल जैसे हमेशा पूछते थे। वैसे मुझसे पूछा उन्होंने,
1: क्या पूछा
3: कि लोग कैसे हो, मैंने कहा ठीक है बस।
1: अच्छा, मतलब मर्डर करके आया तो नॉर्मली पूछा कैसे हो?
3: हाँ, नॉर्मल, वो हमेशा ही पूछते थे, कोई याद नहीं था।
1: तो उनके पास कोई गन थी, पिस्टल थी?
3: नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नजर में ऐसा कुछ नहीं था।
0: लेकिन सवाल यह है कि मानस ने पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया तो पत्नी की हत्या की, खुद को भी मार डाला, लेकिन अपनी बहन की हत्या क्यों की? बताया जा रहा है कि मानस के माता पिता की मौत हो चुकी थी और वो अपनी बहन के साथ अकेले रहते थे। पहले पत्नी भी साथ रहती थी, लेकिन पिछले लगभग एक साल से दोनों अलग थे। दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया भी चल रही थी। बताया जा रहा है कि मानस की बहन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, इसीलिए शायद मानस को ये लगा होगा कि उनके बाद बहन की देखभाल कौन करेगा। यही वजह रही कि मानस ने इतना बड़ा कदम उठाया, पत्नी को मारने के बाद बहन की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मार दी।
4: हुआ कि मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने मानस का स्टेटस देखा, तो मैंने कहा नहीं, तो अचानक से मैंने स्टेटस देखा तो उसमें मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि मेरी वाइफ को लेके, मैंने स्टेटस देखा उसमें। फिर मैं बाहर आया, देखा तो जो किराएदार है वो दरवाजा जो है खटखटा रहे थे, खुल नहीं रहा था। फिर हम भी आए, हम भी खोलने लगे, तो पूरी मेहनत करी, उनके मामा के लड़के आए हुए थे, फिर एक साथ दरवाजा खोला तो देखा अंदर, जब उसे एंट्री किया तो देखा दोनों लोग मरे हुए पड़े हुए थे।
5: तो क्या वजह कुछ समझ में आ रही है?
4: नहीं, वजह कोई नहीं, बस उसकी बहन में
5: इस पे दो लिखा था, चीट किया।
4: हाँ, उनकी वाइफ ने चीट किया, ऐसे में स्टेटस लिखा हुआ था।
5: बहन को क्यों मारा
4: ये तो बता नहीं सकता हूँ, बहन को क्यों मारा, उसकी बहन तो वैसे भी मेंटली थी। हाँ,
5: अच्छा, ये गोली पिस्टल की आवाज आई है?
4: कुछ नहीं है, जब लोग एंट्री किए तो टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। हाँ, बस और कुछ नहीं था।
5: अंदर और क्या क्या पड़ा था बहन के?
4: कुछ नहीं, सब ऐसे दोनों लोग लेटे हुए थे, पिस्टल पड़ी हुई थी, हम लोगों ने देखा, तुरंत पुलिस आई, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई हुई।
5: तो वो दोनों लोग अंदर ही थे, किराए पे दे रखी थी?
6: जी जी।
5: और अब माता पिता कहाँ रहते हैं?
6: माता पिता एक्सपायर हो गए काफी समय पहले।
5: इकलौती बहन थी और वो थे, और पत्नी उनकी कहाँ रहती?
6: पत्नी भी यहीं रहती थी?
7: नहीं
6: रहती थी,
7: 3 महीने से नहीं, 3-4 महीने।
0: यह हत्याकांड और सुसाइड केस भले ही सनसनीखेज जरूर रहा, लेकिन पुलिस के सामने पूरा चैप्टर ही क्लोज हो चुका है। पुलिस अभी छानबीन कर रही है, सारी गुत्थियां तो सुलझी हुई लग रही हैं, बस ये पता नहीं चल पा रहा कि वो क्या बात थी जिसकी वजह से मानस ने पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या की, क्योंकि दोनों करीब 1 साल से साथ में नहीं रहते थे, और मानस ने जो चीटिंग का आरोप लगाया है उनकी सच्चाई क्या है।
8: देखिए, ये आज बहुत ही एक दुखद घटना थाना गोमती नगर में हुई। प्रारंभिक रूप से जो सूचना मिली कि गोमती नगर के ICICI बैंक के कर्मी को गोली मार दी गई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी छानबीन टीम हमारी कर ही रही थी कि यहां हुसैरिया से एक सूचना मिली कि गोली चलने की आवाज और किसी व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने की बात हुई। टीम यहां भी पहुंची तो ये ज्ञात हुआ कि जो उस महिला पीड़िता मृतका के पति थे, उसने अपने सिस्टर का हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है। टीमें यहां पहुंचकर जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा के लिए भेज दिया है। हमारी फील्ड यूनिट यहां आकर सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है, और हमारे थाने की और सर्विलांस टीम जो है पूरी डिटेल जानकारी कर रही है कि किस पॉइंट पे किस बात के कारण आज की ये घटना ट्रिगर हुई।
0: आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
9: खबर मौसम की, जहां नदियों में उफान ने शहरों का बुरा हाल कर दिया। यूपी के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर लिया है।
0: ये प्रयागराज है, संगम नगरी प्रयागराज, कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन अभी तो एक्वा सिटी प्रयागराज बनी हुई है। ये प्रयागराज की सिवाई चिंतामणि रोड है, कहने को ये पौश इलाका है, लेकिन पौश इलाके की मूलभूत व्यवस्था यही है कि पानी की वजह से बिजली पानी सब बंद है।
10: घरों के सामने सड़कें हैं, वहाँ जलभराव की स्थिति है, और ये पानी जो बारिश का पानी है सड़कों के अलावा घर में भी घुस गया है। आलम यह है कि लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं बारिश के पानी ने इन सभी लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट कर लिया है।
0: लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, हालात ये हो गए हैं कि घर के बाहर निकले तो रोड पर पानी, घर पर रहे तो कमरे में पानी।
11: हम लोग के घर में बहुत सारा पानी घुस चुका है, तो हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, मेरे स्कूल में दो बार छुट्टी हो चुकी है, हम लोग के 2 एग्जाम कैंसिल हो चुके,
12: जिसको कहते हैं जेल, हम लोग जेल में बंद है, ना हमारे पास पानी है ना लाइट, हम लोग रात रात भर नहीं सोए, पंखा पुराना दिया बत्ती अगरबत्ती यही सब कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है, किसी तरह जो जरा से इकट्ठा पानी हुआ तो उसको उबाल के ठंडा करके वही पी रहे हैं।
13: और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, न सभासद आए, न विधायक आए, न सांसद, तीनों भाजपा के।
0: वाराणसी का हाल भी देख लीजिए, बड़े बड़े घाटों को गंगा नदी ने अपने आगोश में ले लिया है।
14: वाराणसी में गंगा का जल स्तर पक्के घाटों को डुबोने के बाद अब गलियों और सड़कों के जरिए शहर के अंदर पहुंचने के लिए आमादा है। गंगा के अलावा वरुणा के भी काफी तटीय इलाकों में बढ़ता हुआ जल स्तर पहुंच चुका है।
0: कानपुर में भी गंगा नदी के विकराल रूप की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीमें संवेदनशील इलाकों की पहचान कर रही हैं, जहां खतरा ज्यादा है।
15: पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहां पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, जो खुद बोट के जरिए अपने बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं घाटों का। स्पीकर के जरिए लोगों को चेताया जा रहा है कि वह किस तरीके से सावधान रहे, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो डेंजरस मार्क पे लगभग पहुंच चुका है।
0: यूपी के 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आज तक ब्यूरो
9: तो ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: वंदे मातरम के छंद पर राजनीतिक प्रचंड अमित शाह ने बताया देश विरोधी मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति। इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष का उत्सव मनाएगी बीजेपी। सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम। जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर अदालत का हथौड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के निर्णय पर लगाई रोक। 11वीं 12वीं 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर। संघ ने किया मंथन। संसद मार्च के दौरान अधिक बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। और इमरान खान को लेकर बैकफुट पर शहबाज सरकार। जेल से अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारी, पाक पुलिस का जमावड़ा। खबर वंदे मातरम पर मचे घमासान की। जहां कांग्रेस अब वंदे मातरम के पहले दो पैरों पर अड़ी है, तो बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है, जिसे लेकर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
1: कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ कर दिया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम के दो पैरा ही गाएगी।
2: टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट व्हाटएवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबाइड दैट डिसीजंस। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज अवर डिसीजन। फर्स्ट टू चांस था।
1: अमित शाह इसे वंदे मातरम का अपमान बता रहे हैं।
3: इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
1: 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था, जिसके बाद 15 अगस्त को पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। 17 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी।
4: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं।
1: अब कांग्रेस जहां दो पद गाने पर अड़ी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है।
5: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
6: मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया।
1: अब सवाल यह है कि क्या जिस वंदे मातरम को लेकर बिल पास किया गया है, क्या उसके अपमान के मुद्दे पर सरकार का एक्शन होगा या फिर ये सिर्फ सियासत तक सीमित रह जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में जैन अल्फा बुनियादी समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी मामले को लेकर सख्त हैं, जहां नए सिरे से किसी भी तरह की लापरवाही के विरोध में एक्शन के आदेश उन्होंने दे दिए हैं।
1: जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे तो सीएम योगी ने सख्ती की। स्कूली बच्चों की परेशानियों को फौरन दूर करने के लिए सीएम दफ्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी उन्हें फौरन दूर करने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने दी है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में एमडीएम, किचन, ब्लैक बोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉक वार निर्देश दिए गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने जेनजी को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी जेनजी वोटरों को एआई, मीम और शॉर्ट वीडियो के जरिए साध रही है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक हैंडल से एआई जनरेटेड वीडियो और ग्राफिक्स साझा किए जा रहे हैं। पार्टी के राजनीतिक संदेश, नीतियां और उपलब्धियां भी एआई कंटेंट के रूप में जेन जी तक पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि यूपी में करीब 21% वोटर 18 से 29 वर्ष की उम्र के हैं, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का खास फोकस है।
7: अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का व्यवहार किसी ट्रोलर की तरह हो गया है। झूठे चित्र, झूठे वीडियो लाकर समाज को भ्रम में पैदा करो।
8: समाजवादियों ने ही इनको कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप देने का काम किया। वही लैपटॉप समाजवादी द्वारा दिए लैपटॉप को, जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात है तो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए लैपटॉप और आईपैड से ही छात्रों ने अपनी पढ़ाई की।
1: समाजवादी पार्टी ही नहीं, अब कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक की नजर भी जेन जी क्लास के वोट बैंक की ओर घूम रही है। यूपी कांग्रेस भी डिजिटल मोर्चे पर सक्रिय हो चुकी है। हर जोन के लिए सोशल मीडिया और आईटी सेल की टीमें मजबूत की जा रही हैं। कांग्रेस मीम, व्यंग, ग्राफिक्स और विजुअल कंटेंट के जरिए सरकार विरोधी मुद्दों को युवाओं तक पहुंचा रही है। उधर मायावती के निर्देश पर बीएसपी भी बूथवार समीक्षा बैठकें कर रही है। इसमें भी जेन जी कनेक्ट का आधार तलाशा जा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एनकाउंटर, ये दो कार्रवाई ऐसी हैं जिनके दम पर सरकार कानून व्यवस्था की मजबूती, अपराधियों पर लगाम का दावा करती है। विपक्ष इन दोनों ढंगों से चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई का आरोप लगाता है। इस सब के बीच 15 महीने पुराने एक हाफ एनकाउंटर से जुड़ी खबर पर कोर्ट ने ही आदेश दिया, जहां एनकाउंटर की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए अदालत ने पुलिस अधिकारी की निशानेबाजी की क्षमता तक जांचने को कह दिया।
9: 12 मई 2025 जगह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, अलाउद्दीन उर्फ छुटकऊ नाम के आरोपी को गोली मारकर हाफ एनकाउंटर किया जाता है। यूपी में हाफ एनकाउंटर का मतलब है पैरों में गोली लगना। मई 2025 में श्रावस्ती पुलिस की टीम आरोपी अलाउद्दीन को नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस कहती कि तभी इसने फायर किया और दोबारा जब रात के अंधेरे में पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हथियार लोड करना चाहा, तो ये है तत्कालीन एसएचओ इकोना अश्विनी कुमार दुबे, जो बहुत बहादुरी से कहा जाता है कि उसी रात के अंधेरे में केवल हथियार लोड होने की आवाज सुनकर ऐसी गोली चलाते हैं जो सीधे आरोपी के पैर में लगती है, किसी और को नहीं।
10: के पास वहां घेराबंदी की गई और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया, जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।
9: मई 2025 के इस हाफ एनकाउंटर पर 23 पुलिस वालों को पुरस्कार मिला, लेकिन अब एनकाउंटर से लेकर पुरस्कार तक पर सवालों का नया एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हाफ एनकाउंटर के 15 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मई 2025 के श्रावस्ती के एकौना में अलाउद्दीन वाले हाफ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने कहा है कि 23 पुलिस वालों से घिरे होने के बावजूद आरोपी ने फायरिंग की, जिसमें एक भी पुलिस वाला घायल नहीं होता। वहीं रात 11 बजे सुनसान इलाके में 15 मीटर की दूरी से एसएचओ ने गोली चलाई और वो सीधे आरोपी के दोनों पैर में लगी। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच का आदेश लखनऊ की अदालत ने दिया है और कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी जांच के दौरान तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे की निशानेबाजी और शूटिंग क्षमता का भी जरा परीक्षण कर ले।
11: कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की जीप में कैसे 23 लोग बैठ सकते हैं और वहीं रात के अंधेरे में एसएचओ जिसने इस पूरी एनकाउंटर की कहानी बताई, एफआईआर दर्ज करवाई, वो रात के 11 बजे कैसे असलाह को लोड करने की आवाज से उसने फायरिंग की और जिसमें जो आरोपी था उसके दोनों पैर में सटीक जाकर गोली लगी है।
12: इतना सटीक निशाना बहुत सव्यसाची तो है नहीं, सव्यसाची तो मैंने सुना था कि राजा दशरथ थे जो किसी की आवाज पे तीर मार देते थे, उसी में शायद श्रवण कुमार भी मरा था। सव्यसाची नहीं है ये, अगर इन्हें ये बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने ऐसा अनुमान में लगाया तो अनुमान से भी चलाया तो किसी अन्य को भी गोली लग सकती थी ना, कोई और भी तो मर सकता था। सटीक इनकाउंटर होना चाहिए, किसी अन्य की जनहानि नहीं होना चाहिए, किसी का अन्य घायल भी हो सकता था, ये मुझे गले से उतरने वाली बात नहीं। कोर्ट ने बिल्कुल सही ये जांच के आदेश दिए हैं और मैंने बहुत पहले भी कहा है कि जिस दिन एनकाउंटर इस तरह के फंसेंगे जवाब देते नहीं बनेगा, सजा हो जाएगी लोगों को।
13: जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है छुटकाऊ का गोली लगने के बाद, उसमें जो वुंड का साइज आता है वो है 0.5 सेंटीमीटर और जो गोली एसएचओ के माध्यम से पता, केस डायरी के माध्यम से पता चली कि चलाई गई है वो है 0.9 mm की। तो गोली जब 9 mm की है और एंट्री वुंड है 0.5 mm का, तो ये बहुत ही इम्प्रोबेबल चीज़ें हैं जो कोर्ट को लगी हैं। एक बहुत ही कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई है पुलिस के द्वारा और जो कि मानने के योग्य नहीं है।
9: उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत से एनकाउंटर पर सियासी सवाल जवाब होता आया है। श्रावस्ती एनकाउंटर अपने आप में शायद ऐसा पहला केस है जहां एनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले की निशानेबाजी क्षमता के परीक्षण तक का आदेश दे दिया गया है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: खबर राजस्थान की, जहां जेन अल्फा की समस्याओं को लेकर सरकार ने अनोखा आदेश जारी किया। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने हल्ला बोला है।
1: राजस्थान में मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस का यह प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है जिसमें राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश पर बैन लगा दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज मार्च निकाला और विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।
14: इतने बच्चों की जान चली गई, छतें गिर रही हैं, बाढ़ आ रही है, व्यवस्था चरमरा गई है, बजाय उस वास्तविकता को एक्सेप्ट करके उस पर कदम उठाएं, सरकार ने आदेश जारी कर दिया। कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई रील नहीं बनाएगा, कोई मीडिया नहीं जाएगा, सरकारी स्कूलों पे लोगों को पाबंद कर दिया। अगर आप जाएंगे अंदर आप पे पॉस्को कानून लगा दिया जाएगा। तो ये सरकार को जो एक तानाशाह रवैया है और शिक्षा मंत्री जो एक बेवजह इस प्रकार के आदेश जारी किए उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं।
1: कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की जो कि हंगामे में तब्दील हो गए।
15: किसको बचा रहे हैं? कब तक बचाएंगे? कब तक बचाएंगे इस चोर मंत्री को? 15 दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष गए थे, इन्होंने वादा करा था कि स्कूल को सही कर देंगे, आज तक एक कमरा नहीं बना पाए, ऊपर से नोटिस लगा दिया कि अंदर नहीं जा सकते, बेशर्म कहीं के।
1: बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल कर रही है।
16: उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल और केवल मात्र हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था, उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से इसको स्पष्ट कर दिया।
1: दरअसल पिछले काफी वक्त से राजस्थान के स्कूलों की हालत को लेकर घमासान चल रहा था। सीजेपी ने स्कूलों के मुद्दे पर मोर्चा संभाला तो अलवर के एक स्कूल में प्रवक्ता आशुतोष डांका के जाने पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसके बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए ये निर्देश जारी किया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर पाकिस्तान की, जिसके कश्मीर प्रोपोगंडा की अमेरिका ने हवा निकाल दी। अमेरिका के भारतीय राजदूत ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है।
17: ट्रंप के बेहद करीबी और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर न केवल श्रीनगर पहुंचे बल्कि इसे भारत का बेहद अहम हिस्सा भी बता दिया।
18: knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi.
17: सर्जियो गोर का ये बयान महज इसलिए अहम नहीं क्योंकि वो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि ट्रंप ने उन्हें दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका का विशेष दूत भी बनाया है। इस लिहाज से उनके बयानों का प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर पड़ता है। उनके कश्मीर आने से पहले महबूबा मुफ्ती ने ये मांग उठाई थी कि अमेरिका कम से कम कश्मीर के लिए अपनी एडवाइजरी को हटा ले, जिसमें उसने अमेरिकी लोगों को कश्मीर न जाने की सलाह दे रखी है। इस पर भी सर्जियो गोर ने कश्मीर के पक्ष में बड़ा बयान दे दिया।
18: The chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keep in this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. Because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
17: दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज लाशें बिछा रही है, जबकि श्रीनगर में अमेरिका के राजदूत बेखौफ होकर शिकारा की सवारी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद सर्जियो गोर के बयानों से पाकिस्तान बौखला गया। उसने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास की प्रभारी राजनयिक नताली बेकर को विदेश मंत्रालय तलब किया। उसके विदेश मंत्रालय ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने की कड़ी निंदा करता है और इसे पूरी तरह से खारिज करता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने ट्रंप के बेहद करीबी सर्जियो गोर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बता दिया। पाकिस्तान में मची खलबली अभी खत्म नहीं हुई है। उसके पूर्व राजनयिक मसूद खान कह रहे हैं कि सर्जियो गोर को जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी नहीं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
0: खबर मौसम की, जहां नदियों में उफान ने शहरों का बुरा हाल कर दिया। यूपी के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर लिया है।
1: ये प्रयागराज है, संगम नगरी प्रयागराज। कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन अभी तो एक्वा सिटी प्रयागराज बनी हुई है। ये प्रयागराज की सिवाई चिंतामणि रोड है। कहने को ये पौश इलाका है, लेकिन पौश इलाके की मूलभूत व्यवस्था यही है कि पानी की वजह से बिजली पानी सब बंद है।
19: घरों के सामने सड़कें हैं, वहाँ जलभराव की स्थिति है, और ये पानी जो बारिश का पानी है सड़कों के अलावा घर में भी घुस गया है। आलम यह है कि लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं बारिश के पानी ने इन सभी लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट कर लिया है।
1: लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि घर के बाहर निकले तो रोड पर पानी, घर पर रहे तो कमरे में पानी।
20: हम लोग के घर में बहुत सारा पानी घुस चुका है, तो हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, मेरे स्कूल में दो बार छुट्टी हो चुकी है, हम लोग के दो एग्जाम कैंसिल हो चुके,
21: जिसको कहते हैं जेल। हम लोग जेल में बंद है, ना हमारे पास पानी है, ना लाइट। हम लोग रात रात भर नहीं सोए, पंखा, पुराना दिया, बत्ती, अगरबत्ती, यही सब कर रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है। किसी तरह जो जरा से इकट्ठा पानी हुआ तो उसको उबाल के ठंडा करके वही पी रहे हैं।
22: और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, न सभासद आए, न विधायक आए, न सांसद, तीनों भाजपा के।
1: वाराणसी का हाल भी देख लीजिए। बड़े बड़े घाटों को गंगा नदी ने अपने आगोश में ले लिया है।
23: वाराणसी में गंगा का जल स्तर पक्के घाटों को डुबोने के बाद अब गलियों और सड़कों के जरिए शहर के अंदर पहुंचने के लिए आमादा है। गंगा के अलावा वरुणा के भी काफी तटीय इलाकों में बढ़ता हुआ जल स्तर पहुंच चुका है।
1: कानपुर में भी गंगा नदी के विकराल रूप की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीमें संवेदनशील इलाकों की पहचान कर रही हैं, जहां खतरा ज्यादा है।
24: पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहां पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, जो खुद बोट के जरिए अपने बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं घाटों का। स्पीकर के जरिए लोगों को चेताया।

0: हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आज तक ब्यूरो।
1: पहाड़ों पर जमकर बरसात हो रही है। जम्मू कश्मीर हिमाचल में मूसलाधार बारिश से फ्लैश फ्लड आ गया कई इलाकों में। हिमाचल के कांगड़ा में नेशनल हाईवे पर अचानक पानी आने से कई लोग फंस गए।
2: ये तस्वीरें कांगड़ा के प्रागपुर इलाके की हैं, जहां फ्लैश फ्लड से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। बहाव इतना तेज था कि कांगड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे तक पानी पहुंच गया। पानी के तेज बहाव के बीच में एक कार सवार फंस गया। कार ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज थी कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और कार में सवार लोगों को बाहर निकाला, लेकिन कार पानी में बह गई। अब जरा अनंतनाग की तस्वीरें भी देखिए। घरों के बीच में पानी ऐसा आ गया मानो ये मकान किसी नदी पर बनाए गए हों। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आंगन तक पानी भर गया। ऊंचाई वाले इलाकों में जब मूसलाधार बरसात होती है तो निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी इन दिनों फ्लैश फ्लड की घटनाएं बढ़ गई हैं। आज तक ब्यूरो।
1: भारत और जापान के बीच आज एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ। इस समझौते में कई विशेष बातें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात भारत और जापान का मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़ना। और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत की नौसेना न सिर्फ आत्मनिर्भर होगी बल्कि मेक इन इंडिया को भी इससे मिलेगा बढ़ावा।
3: पहली बार मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़े भारत और जापान। पहली बार भारत आएंगे जापान के लड़ाकू विमान। भारत के थिएटर कमांड में भी मदद करेगा जापान। भारत और जापान के बीच बढ़ता दोस्ताना दुश्मनों को खबरदार कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी को कोनिचिवा और अरिगातो कहकर विदाई दी है।
4: अरिगातो।
3: जिसके जवाब में कोइज़ुमी ने जवाब में नमस्ते कहकर भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों के गहरे रिश्तों का साफ साफ संकेत दे दिया। रक्षा मंत्रियों के बीच दिखी ये गर्मजोशी भारत और जापान के बीच हुए बड़े रक्षा समझौते में भी नजर आ आती है, जो देश के दुश्मनों के लिए जोरदार झटके से कम नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक में इन दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था संबंधी समझौते को लेकर हस्ताक्षर किए गए।
5: नमस्ते।
3: और लिखा है कि इंडो पैसिफिक में स्थिरता के लिए अहम पड़ाव। नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री कोइज़ुमी के साथ बहुत सार्थक बैठक हुई है। हमारी बातचीत समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया रक्षा तकनीक और रणनीतिक भरोसे को बढ़ाने पर केंद्रित रही है।
6: अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
3: दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा समझौते में नौसेनाओं के बीच सहयोग, सूचना का आदान प्रदान, खोज और बचाव, मानवीय सहायता, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। लेकिन सबसे अहम बात, भारत और जापान का नौसेना के जहाजों को मिलकर बनाने और डिजाइन करने को लेकर बनती एक राय है। जापान के एडवांस तकनीक और भारत की उत्पादन क्षमता का मेल मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। जापान के मोगामी क्लास फ्रिगेट जैसे आधुनिक जहाजों की तकनीक भारत के लिए उपयोगी हो सकती है। इससे पहले दोनों देशों के बीच नेवल रेडियो एंटीना सिस्टम को मिलकर बनाने का समझौता कर लिया गया था, लेकिन मिलकर नौसैनिक जहाज बनाने का कदम भारत की नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा।

0: इनका सीधा असर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के इरादों पर होगा, जो जापान फिलीपींस जैसे अपने पड़ोसियों को डराने के साथ ही हिंद महासागर में भी अपना शिकंजा कस रहा है। लेकिन इस समुद्री समझौते के बाद दोनों देश हर तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे।
1: तो ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: मातरम के छंद पर राजनीतिक प्रचंड अमित शाह ने बताया देश विरोधी मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति, इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष का उत्सव मनाएगी बीजेपी, सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम, जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर अदालत का हथौड़ा, झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के निर्णय पर लगाई रोक, 11वीं 12वीं 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर, संघ ने किया मंथन, संसद मार्च के दौरान अधिक बलप्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। और इमरान खान को लेकर बैकवर्ड पर शहबाज सरकार, जेल से अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारी, पाक पुलिस का जमावड़ा। खबर वंदे मातरम पर मचे घमासान की, जहां कांग्रेस अब वंदे मातरम के पहले दो पैरों पर अड़ी है तो बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है, जिसे लेकर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
1: कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ कर दिया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम के दो पैरा ही गाएगी।
2: टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट व्हाटएवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबाइड दैट डिसीजंस। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली, दिस इज अवर डिसीजन। फर्स्ट टू चांस था।
1: अमित शाह इसे वंदे मातरम का अपमान बता रहे हैं।
3: इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
1: 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था, जिसके बाद 15 अगस्त को पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। 17 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी।
4: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं।
1: अब कांग्रेस जहां दो पद गाने पर अड़ी है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है।
5: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
6: मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया, इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया।
1: अब सवाल यह है कि क्या जिस वंदे मातरम को लेकर बिल पास किया गया है, क्या उसके अपमान के मुद्दे पर सरकार का एक्शन होगा या फिर ये सिर्फ सियासत तक सीमित रह जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा, सोरेन सरकार के निर्णय पर रोक के बाद नौकरी खोने वाले सरकारी कर्मचारी अब खुशियां मना रहे हैं।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों के जश्न को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आज हाईकोर्ट से प्रदर्शनकारियों को बड़ा झटका लगा। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है।
7: प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की धज्जी उड़ाई गई है सरकार के द्वारा, इसलिए हमारा ये बहस था कि इस तरह का ऑर्डर रातों रात नहीं पारित किया जा सकता है। टेंटेड और अनटेंटेड में फर्क करना पड़ेगा सरकार का, सरकार को।
1: अब मामले में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है,
8: शायद इसी वजह से विलंब हो रहा होगा जिसके लिए, लेकिन इतना दबाव और इतना मतलब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में।
9: सरकार ने पहले से ही ऐसा षड्यंत्र कर दिया था आंदोलन को समाप्त करने के लिए और एक बहुत ही कमजोर ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला था, जो सबको पता था कि संभवतः ये जुडिशियल स्क्रूटनी के सामने टिकने वाला नहीं, और हुआ भी वही। अदालत ने आज ये इंटरिम रोक लगा दी, सरकार से जवाब मांगा है।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर के इम्तिहान को भी कैंसिल कर दिया था, जिससे एक झटके में 56 लोगों की नौकरी चली गई थी जो कि आज प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है।
10: और जज सर भी हमारी प्रॉब्लम को समझे, वो उन्होंने खुद बोला कि अगर ये मेरे साथ आप लोग कर देते, मेरे साथ ये इंसिडेंट हो जाता, रातों रात मेरा कुर्सी आप लोग छोड़वा देते तो हम क्या बोलते। वो खुद शर्मिंदा थे कि इस तरह डिसीजन सरकार कैसे ले सकती है, ये सीधा सीधी एक नेचुरल जस्टिस का हनन है।
1: बहरहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: जेन जी को लेकर हर पार्टी ने अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अब जेन जी वोटर्स को टारगेट करने का मन बना चुके हैं।
1: सरकारें ही नहीं, देश में अरसे से सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी अब जेन जी और जेन अल्फा के मुद्दों के जरिए जमीनी आधार दोबारा हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चालू करने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है। किस मंत्री को कब और किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का यह दौरा दिन भर का होगा जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए पीएम बेहद गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों को ये भी सलाह दी है कि पारंपरिक तरीके छोड़कर अब जेन जी और युवा वोटर्स के पसंदीदा तरीकों से संवाद स्थापित करें। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था, खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए थे। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आकी गई उसमें ये था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल एंगेजमेंट कितनी हुई, मंत्री के प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। उधर राहुल गांधी भी 22 अगस्त को पुणे में छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
11: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता।
1: बहरहाल जेन जी के मुद्दे ने हर पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में जैन अल्फा बुनियादी समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी मामले को लेकर सख्त हैं, जहां अब नए सिरे से किसी भी तरह की लापरवाही के विरोध में एक्शन के आदेश उन्होंने दे दिए हैं।
1: जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे, तो सीएम योगी ने सख्ती की। स्कूली बच्चों की परेशानियों को फौरन दूर करने के लिए सीएम दफ्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा, तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी उन्हें फौरन दूर करने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव SP गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही DM और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने दी है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में MDM, किचन, ब्लैकबोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉक वार निर्देश दिए गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने जेंजी को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी जेंजी वोटरों को AI, मीम और शॉर्ट वीडियो के जरिए साध रही है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक हैंडल से AI जनरेटेड वीडियो और ग्राफिक्स साझा किए जा रहे हैं। पार्टी के राजनीतिक संदेश, नीतियां और उपलब्धियां भी AI कंटेंट के रूप में जेंजी तक पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि यूपी में करीब 21% वोटर 18 से 29 वर्ष की उम्र के हैं, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का खास फोकस है।
12: अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का व्यवहार किसी ट्रोलर की तरह हो गया है। झूठे चित्र, झूठे वीडियो लाकर समाज को भ्रम में पैदा करो।
13: समाजवादियों ने ही इनको कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप देने का काम किया। वही लैपटॉप समाजवादी द्वारा दिए लैपटॉप को, जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात है तो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए लैपटॉप और आईपैड से ही छात्रों ने अपनी पढ़ाई की।
1: समाजवादी पार्टी ही नहीं, अब कांग्रेस से लेकर BSP तक की नजर भी जेंजी क्लास के वोट बैंक की ओर घूम रही है। यूपी कांग्रेस भी डिजिटल मोर्चे पर सक्रिय हो चुकी है। हर जोन के लिए सोशल मीडिया और IT सेल की टीमें मजबूत की जा रही हैं। कांग्रेस मीम, व्यंग, ग्राफिक्स और विजुअल कंटेंट के जरिए सरकार विरोधी मुद्दों को युवाओं तक पहुंचा रही है। उधर मायावती के निर्देश पर BSP भी बूथवार समीक्षा बैठकें कर रही है। इसमें भी जेंजी कनेक्ट का आधार तलाशा जा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: खबर राजस्थान की, जहां जैन अल्फा की समस्याओं को लेकर सरकार ने अनोखा आदेश जारी किया। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, जिससे लेकर अब कांग्रेस ने हल्ला बोला है।
1: राजस्थान में मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस का यह प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश पर बैन लगा दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज मार्च निकाला और विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।
14: इतने बच्चों की जान चली गई, छतें गिर रही हैं, बाढ़ आ रही है, व्यवस्था चरमरा गई है, बजाय उस वास्तविकता को एक्सेप्ट करके उस पर कदम उठाएं, सरकार ने आदेश जारी कर दिया। कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई रील नहीं बनाएगा, कोई मीडिया नहीं जाएगा, सरकारी स्कूलों पे लोगों को पाबंद कर दिया। अगर आप जाएंगे अंदर, आप पे पॉस्को कानून लगा दिया जाएगा। तो ये सरकार को जो एक तानाशाह रवैया है और शिक्षा मंत्री जो एक बेवजह इस प्रकार के आदेश जारी किए, उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं।
1: कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की, जो कि हंगामे में तब्दील हो गए।
15: किसको बचा रहे हैं? कब तक बचाएंगे? कब तक बचाएंगे इस चोर मंत्री को? 15 दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष गए थे, इन्होंने वादा करा था कि स्कूल को सही कर देंगे, आज तक एक कमरा नहीं बना पाए। ऊपर से नोटिस लगा दिया कि अंदर नहीं जा सकते, बेशर्म कहीं के।
1: BJP अब कांग्रेस से सवाल कर रही है।
16: उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल और केवल मात्र हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था। उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से इसको स्पष्ट कर दिया।
15: पुलिस फोर्स
1: दरअसल पिछले काफी वक्त से राजस्थान के स्कूलों की हालत को लेकर घमासान चल रहा था। सीजेपी ने स्कूलों के मुद्दे पर मोर्चा संभाला तो अलवर के एक स्कूल में प्रवक्ता आशुतोष प्रांका के जाने पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसके बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए ये निर्देश जारी किया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर पाकिस्तान की, जिसके कश्मीर प्रोपोगंडा की अमेरिका ने हवा निकाल दी। अमेरिका के भारतीय राजदूत ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है।
17: ट्रंप के बेहद करीबी और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर न केवल श्रीनगर पहुंचे बल्कि इसे भारत का बेहद अहम हिस्सा भी बता दिया।
18: Knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi.
17: सर्जियो गोर का ये बयान महज इसलिए अहम नहीं क्योंकि वो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि ट्रंप ने उन्हें दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका का विशेष दूत भी बनाया है। इस लिहाज से उनके बयानों का प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर पड़ता है। उनके कश्मीर आने से पहले महबूबा मुफ्ती ने ये मांग उठाई थी कि अमेरिका कम से कम कश्मीर के लिए अपनी एडवाइजरी को हटा ले, जिसमें उसने अमेरिकी लोगों को कश्मीर न जाने की सलाह दे रखी है। इस पर भी सर्जियो गोर ने कश्मीर के पक्ष में बड़ा बयान दे दिया।
18: The chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. Because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
17: दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज लाशें बिछा रही है, जबकि श्रीनगर में अमेरिका के राजदूत बेखौफ होकर शिकारा की सवारी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद सर्जियो गोर के बयानों से पाकिस्तान बौखला गया। उसने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास की प्रभारी राजनयिक नताली बेकर को विदेश मंत्रालय तलब किया। उसके विदेश मंत्रालय ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने की कड़ी निंदा करता है और इसे पूरी तरह से खारिज करता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने ट्रंप के बेहद करीबी सर्जियो गोर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बता दिया। पाकिस्तान में मची खलबली अभी खत्म नहीं हुई है। उसके पूर्व राजनयिक मसूद खान कह रहे हैं कि सर्जियो गोर को जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी नहीं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
0: लखनऊ में डबल मर्डर और आत्महत्या की वारदात हुई। एक ऐसी वारदात हर कोई हैरान है। एक बैंक कर्मी ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर आकर अपनी बहन का मर्डर कर दिया और अंत में खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हत्याकांड का राज छिपा है व्हाट्सएप स्टेटस में।

0: पहले पत्नी का मर्डर, फिर अपनी ही बहन की हत्या और अंत में खुद को भी गोली से उड़ा दिया। लखनऊ में आज डबल मर्डर और सुसाइड की ऐसी वारदात हुई है कि हर कोई हैरान है। सवाल पूछ रहा है कि SBI जैसे बैंक में काम करने वाले मानस ने ICICI बैंक में काम करने वाली पत्नी की हत्या क्यों की? मानस वाजपेयी ने पत्नी की हत्या के बाद अपनी ही बहन को क्यों मार दिया? मानस वाजपेयी ने पत्नी और बहन को मारने के बाद आत्महत्या क्यों की? लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर का ये प्राइवेट बैंक आज एक क्राइम सीन बन गया। इस बैंक में दिव्या मिश्रा नाम की एक महिला असिस्टेंट मैनेजर के पद पर थी। बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर का काम देखती थी। दोपहर में महिला के पास उनके पति का फोन आया और बैंक के बाहर मिलने के लिए बुलाया। चश्मदीदों के मुताबिक पति मानस ने दिव्या से पहले बात की और फिर अचानक से उसे गोली मार दी। इसके बाद पति वहां से भाग गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बैंक से पीड़िता दिव्या को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इधर छानबीन कर ही रही थी कि अचानक से खबर आई कि इस घटना स्थल से थोड़ी ही दूरी पर एक शख्स ने खुद को और अपनी बहन को गोली मार दी। पता चला कि ये वही शख्स है जिसने कुछ देर पहले इस प्राइवेट बैंक के बाहर पत्नी की हत्या की।
1: हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जो क्राइम सीन है। यूं तो ये प्राइवेट बैंक है, लेकिन अब इसकी बाहरी जगह क्राइम सीन में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरों में देखें तो ये वो जगह है जहां पर कुल मिलाकर ये हत्या की गई है। पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कुछ बातचीत की और उसके बाद यहीं पर इस जगह पर हत्या कर दी। और ये वो क्राइम सीन जगह है जहां पर ये पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। अब मैं आपको यहां लेकर चलता हूं। ये जो बैंक है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये वो बैंक है जहां उसकी पत्नी असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत थी। और इस बैंक को अगर आप देखें यहां पर, तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल तो ये बैंक बंद कर दिया गया है, लेकिन इसी गेट से बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी बाहर निकली थी और इसी गेट से बाहर निकलकर वो पत्नी यहाँ पहुंची बात करने के लिए अपने पति से। एक साल से सब कुछ ठीक नहीं था, याचिका पड़ी थी डाइवोर्स की। तो आखिर ऐसा क्या एकदम से हुआ कि पति मानस, जो खुद एक अच्छी पोस्ट पर SBI में था, उसे इस हत्या को अंजाम देना पड़ा? ये सवालों के घेरे में है। उसने मृत्यु यानी कि मर्डर के बाद एक व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दिया और अपनी पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया। क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन एक विवाद ने तीन जाने लखनऊ में फिलहाल ले ली।
0: पता चला कि मानस ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर बाकायदा ये घोषणा की, लिखा था कि आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। आस पड़ोस के लोग जब तक ये व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रहे, तब तक मानस वारदात को अंजाम दे चुका था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। लोगों ने पहले दरवाजा पीटा, दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर गए तो देखा कि दो लाशें पड़ी हैं, एक मानस की और दूसरी उनकी बहन की। टीवी पर भक्ति गीत चल रहे थे।
2: मेरे भाई का पास उसके दोस्त का फोन आया कि तुम्हारे मकान मालिक ने क्या स्टेटस लगाया, देखो। जब हम लोग ने स्टेटस देखा तब पता चला कि भैया अंदर हैं। हम लोग को पता चला स्टेटस लगा, तो हम लोग उनके रिलेशन में उनके मामा के लड़के आए जल्दी, तो हम लोग बेल बजाएं, फोन करें, फोन भी नहीं उठाए, घटखटाए, वो भी नहीं उठाए। फिर हम लोग बगल से गए छत से कि देखे, वहां से देखे तो वहां से भी अंदर बंद था। फिर तीन चार लोग मिलके, वहां के सब लोग मिलके दरवाजा तोड़े। जब दरवाजा तोड़े तब देखे वो गोली मार चुके थे अपने आप।
1: अच्छा, जब वो यहाँ आए थे ICICI बैंक से, तो क्या पसीना पसीना छूट रहा था, क्या माहौल था, वो कैसे लग रहा है?
3: जैसे हमेशा आते थे वो, वैसे
1: रिएक्ट नहीं कर रहे थे कुछ,
3: कोई ऐसा कोई नहीं। मुझसे नॉर्मल जैसे हमेशा पूछते थे, मुझसे पूछा उन्होंने
1: क्या पूछा
3: कि लोग कैसे हो, मैंने कहा ठीक है बस।
1: अच्छा, मतलब मर्डर करके आया तो नॉर्मली पूछा कैसे हो?
3: हाँ, नॉर्मल वो हमेशा ही पूछते थे, कोई याद नहीं था
1: उनके पास कोई गन थी, पिस्टल थी?
3: नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नजर में ऐसा कुछ नहीं था।
0: लेकिन सवाल यह है कि मानस ने पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया तो पत्नी की हत्या की, खुद को भी मार डाला, लेकिन अपनी बहन की हत्या क्यों की? बताया जा रहा है कि मानस के माता पिता की मौत हो चुकी थी और वो अपनी बहन के साथ अकेले रहते थे। पहले पत्नी भी साथ रहती थी, लेकिन पिछले लगभग एक साल से दोनों अलग थे। दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया भी चल रही थी। बताया जा रहा है कि मानस की बहन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, इसीलिए शायद मानस को ये लगा होगा कि उनके बाद बहन की देखभाल कौन करेगा। यही वजह रही कि मानस ने इतना बड़ा कदम उठाया, पत्नी को मारने के बाद बहन की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मार दी।
4: हुआ कि मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने मानस का स्टेटस देखा, तो मैंने कहा नहीं, तो अचानक से मैंने स्टेटस देखा तो उसमें मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि मेरी वाइफ को लेके मैंने स्टेटस देखा उसमें। फिर मैं बाहर आया, देखा तो जो किराएदार है वो दरवाजा जो है खटखटा रहे थे, खुल नहीं रहा था। फिर हम भी आए, हम भी खोलने लगे, तो पूरी मेहनत करी, उनके मामा लड़के आए हुए थे, फिर एक साथ दरवाजा खोला तो देखा अंदर, जब उसे एंट्री किया तो देखा दोनों लोग मरे हुए पड़े हुए थे।
5: तो क्या वजह कुछ समझ में आ रही है?
4: नहीं, वजह कोई नहीं, बस उसकी बहन में
5: इस पे दो लिखा था चीट किया।
4: हाँ, उनकी वाइफ ने चीट किया, ऐसे में स्टेटस लिखा हुआ था।
5: बहन को क्यों मारा
4: ये तो बता नहीं सकता हूँ, बहन को क्यों मारा, उसकी बहन तो वैसे मेंटली थी। हाँ,
5: अच्छा, ये गोली पिस्टल की आवाज आई
4: है? कुछ नहीं है, जब लोग एंट्री किए तो टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। हाँ, बस और कुछ नहीं था।
5: अंदर और क्या क्या पड़ा था बहन के?
4: कुछ नहीं सर, ऐसे दोनों लोग लेटे हुए थे, पिस्टल पड़ी हुई थी, हम लोगों ने देखा, तुरंत पुलिस आई, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई हुई।
5: तो वो दोनों लोग अंदर ही थे, किराए पे दे रखी थी?
6: जी जी।
5: और अब माता पिता कहाँ रहते?
6: माता पिता एक्सपायर हो गए काफी समय पहले।
5: इकलौती बहन थी और वो थे, और पत्नी उनकी कहाँ रहती?
6: पत्नी भी यहीं रहती थी?
7: नहीं रहती थी, 3 महीने से नहीं, 3-4 महीने।
8: ये हत्याकांड और सुसाइड केस भले ही सनसनीखेज जरूर रहा, लेकिन पुलिस के सामने पूरा चैप्टर ही क्लोज हो चुका है। पुलिस अभी छानबीन कर रही है, सारी गुत्थियां तो सुलझी हुई लग रही हैं, बस ये पता नहीं चल पा रहा कि वो क्या बात थी जिसकी वजह से मानस ने पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या की, क्योंकि दोनों करीब 1 साल से साथ में नहीं रहते थे, और मानस ने जो चीटिंग का आरोप लगाया है उनकी सच्चाई क्या है।
9: देखिए, ये आज बहुत ही एक दुखद घटना थाना गोमती नगर में हुई। प्रारंभिक रूप से जो सूचना मिली कि गोमती नगर के ICICI बैंक के कर्मी को गोली मार दी गई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी छानबीन टीम हमारी कर ही रही थी कि यहां हुसैरिया से एक सूचना मिली कि गोली चलने की आवाज और किसी व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने की बात हुई। टीम यहां भी पहुंची तो ये ज्ञात हुआ कि जो उस महिला पीड़िता मृतका के पति थे, उसने अपने सिस्टर का हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है। टीमें यहां पहुंचकर जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा के लिए भेज दिया है। हमारी फील्ड यूनिट यहां आकर सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है, और हमारे थाने की और सर्विलांस टीम जो है पूरी डिटेल जानकारी कर रही है कि किस पॉइंट पे किस बात के कारण आज की ये घटना ट्रिगर हुई।
8: आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
10: पहाड़ों पर जमकर बरसात हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में मूसलाधार बारिश से फ्लैश फ्लड आ गया कई इलाकों में। हिमाचल के कांगड़ा में नेशनल हाईवे पर अचानक पानी आने से कई लोग फंस गए।
11: ये तस्वीरें कांगड़ा के प्रागपुर इलाके की है, जहां फ्लैश फ्लड से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। बहाव इतना तेज था कि कांगड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे तक पानी पहुंच गया। पानी के तेज बहाव के बीच में एक कार सवार फंस गया। कार ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज थी कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और कार में सवार लोगों को बाहर निकाला, लेकिन कार पानी में बह गई। अब जरा अनंतनाग की तस्वीरें भी देखिए। घरों के बीच में पानी ऐसा आ गया मानो ये मकान किसी नदी पर बनाए गए हों। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आंगन तक पानी भर गया। ऊंचाई वाले इलाकों में जब मूसलाधार बरसात होती है तो निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी इन दिनों फ्लैश फ्लड की घटनाएं बढ़ गई हैं। आज तक ब्यूरो।
10: भारत और जापान के बीच आज एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ। इस समझौते में कई विशेष बातें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात भारत और जापान का मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़ना, और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत की नौसेना न सिर्फ आत्मनिर्भर होगी बल्कि मेक इन इंडिया को भी इससे मिलेगा बढ़ावा।
12: पहली बार मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़े भारत और जापान। पहली बार भारत आएंगे जापान के लड़ाकू विमान। भारत के थिएटर कमांड में भी मदद करेगा जापान। भारत और जापान के बीच बढ़ता दोस्ताना दुश्मनों को खबरदार कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजो कोइजुमी को कोनिचिवा और अरिगातो कहकर विदाई दी है, जिसके जवाब में कोइजुमी ने जवाब में नमस्ते कहकर भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों के गहरे रिश्तों का साफ साफ संकेत दे दिया। रक्षा मंत्रियों के बीच दिखी ये गर्मजोशी भारत और जापान के बीच हुए बड़े रक्षा समझौते में भी नजर आती है, जो देश के दुश्मनों के लिए जोरदार झटके से कम नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक में इन दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था संबंधी समझौते को लेकर हस्ताक्षर किए गए।
13: नमस्ते।
14: एक्सेलेंसी कोइजुमी-शान, कोनिचिवा।
12: इसकी जानकारी खुद देश के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर दी है और लिखा है कि इंडो पैसिफिक में स्थिरता के लिए अहम पड़ाव नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी के साथ बहुत सार्थक बैठक हुई है। हमारी बातचीत समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया रक्षा तकनीक और रणनीतिक भरोसे को बढ़ाने पर केंद्रित रही है।
14: अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
12: दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा समझौते में नौसेनाओं के बीच सहयोग, सूचना का आदान प्रदान, खोज और बचाव, मानवीय सहायता, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। लेकिन सबसे अहम बात, भारत और जापान का नौसेना के जहाजों को मिलकर बनाने और डिजाइन करने को लेकर बनती एक राय है। जापान के एडवांस तकनीक और भारत की उत्पादन क्षमता का मेल मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। जापान के मोगामी क्लास फ्रिगेट जैसे आधुनिक जहाजों की तकनीक भारत के लिए उपयोगी हो सकती है। इससे पहले दोनों देशों के बीच नेवल रेडियो एंटीना सिस्टम को मिलकर बनाने का समझौता कर लिया गया था, लेकिन मिलकर नौसैनिक जहाज बनाने का कदम भारत की नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। इनका सीधा असर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के इरादों पर होगा, जो जापान, फिलीपींस जैसे अपने पड़ोसियों को डराने के साथ ही हिंद महासागर में भी अपना शिकंजा कस रहा है। लेकिन इस समुद्री समझौते के बाद दोनों देश हर तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे।
10: दस ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: वंदे मातरम के छंद पर राजनीतिक प्रचंड अमित शाह ने बताया देश विरोधी मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति। इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष का उत्सव मनाएगी बीजेपी। सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम। जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर अदालत का हथौड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के निर्णय पर लगाई रोक। 11वीं 12वीं 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर। संघ ने किया मंथन। संसद मार्च के दौरान अधिक बलप्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। और इमरान खान को लेकर बैकवर्ड पर शहबाज सरकार। जेल से अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारी। पाक पुलिस का जमावड़ा। खबर वंदे मातरम पर मचे घमासान की। जहां कांग्रेस अब वंदे मातरम के पहले दो पैरों पर अड़ी है, तो बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है, जिसे लेकर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
1: कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ कर दिया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम के दो पैरा ही गाएगी।
2: टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट व्हाटएवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबेड दैट डिसीजंस। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज अवर डिसीजन। फर्स्ट टू चांस था।
1: अमित शाह इसे वंदे मातरम का अपमान बता रहे हैं।
3: इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
1: 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था, जिसके बाद 15 अगस्त को पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। 17 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी।
4: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गाया। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं।
1: अब कांग्रेस जहां दो पद गाने पर अड़ी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है।
5: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
6: मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया।
1: अब सवाल यह है कि क्या जिस वंदे मातरम को लेकर बिल पास किया गया है, क्या उसके अपमान के मुद्दे पर सरकार का एक्शन होगा या फिर ये सिर्फ सियासत तक सीमित रह जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। सोरेन सरकार के निर्णय पर रोक के बाद नौकरी खोने वाले सरकारी कर्मचारी अब खुशियां मना रहे हैं।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों के जश्न को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आज हाईकोर्ट से प्रदर्शनकारियों को बड़ा झटका लगा। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है।
7: प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की धज्जी उड़ाई गई है सरकार के द्वारा, इसलिए हमने आ रहा ये बहस था कि इस तरह का ऑर्डर रातों रात नहीं पारित किया जा सकता है। टेंटेड और अनटेंटेड में फर्क करना पड़ेगा सरकार का, सरकार को।
1: अब मामले में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है,
8: शायद इसी वजह से विलंब हो रहा होगा जिसके लिए, लेकिन इतना दबाव और इतना मतलब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में।
9: सरकार ने पहले से ही ऐसा षड्यंत्र कर दिया था आंदोलन को समाप्त करने के लिए और एक बहुत ही कमजोर ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला था जो सबको पता था कि संभवतः ये जुडिशियल स्क्रूटनी के सामने टिकने वाला नहीं है, और हुआ भी वही। अदालत ने आज ये इंटरिम रोक लगा दी, सरकार से जवाब मांगा।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर के इम्तिहान को भी कैंसिल कर दिया था, जिससे एक झटके में 56 लोगों की नौकरी चली गई थी जो कि आज प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है।
10: और जज सर भी हमारी प्रॉब्लम को समझे, वो उन्होंने खुद बोला कि अगर ये मेरे साथ आप लोग कर देते, मेरे साथ ये इंसिडेंट हो जाता, रातों रात मेरा कुर्सी आप लोग छोड़वा देते तो हम क्या बोलते। वो खुद शर्मिंदा थे कि इस तरह डिसीजन सरकार कैसे ले सकती है, ये सीधा सीधी एक नेचुरल जस्टिस का हनन है।
1: बहरहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: जेन जी को लेकर हर पार्टी ने अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अब जेन जी वोटर्स को टारगेट करने का मन बना चुके हैं।
1: सरकारें ही नहीं, देश में अरसे से सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी अब जेन जी और जेन अल्फा के मुद्दों के जरिए जमीनी आधार दोबारा हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चालू करने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है। किस मंत्री को कब और किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का यह दौरा दिन भर का होगा जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए पीएम बेहद गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों को ये भी सलाह दी है कि पारंपरिक तरीके छोड़कर अब जेन जी और युवा वोटर्स के पसंदीदा तरीकों से संवाद स्थापित करें। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था, खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए थे। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आकी गई उसमें ये था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल एंगेजमेंट कितनी हुई, मंत्री के प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। उधर राहुल गांधी भी 22 अगस्त को पुणे में छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
11: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता।
1: बहरहाल जेन जी के मुद्दे ने हर पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में जेन अल्फा बुनियादी समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी मामले को लेकर सख्त हैं। जहां अब नए सिरे से किसी भी तरह की लापरवाही के विरोध में एक्शन के आदेश उन्होंने दे दिए हैं।
1: जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे तो सीएम योगी ने सख्ती की। स्कूली बच्चों की परेशानियों को फौरन दूर करने के लिए सीएम दफ्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी उन्हें फौरन दूर करने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने दी है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में एमडीएम, किचन, ब्लैक बोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉकवार निर्देश दिए गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने जेंजी को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी जेंजी वोटरों को एआई, मीम और शॉर्ट वीडियो के जरिए साध रही है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक हैंडल से एआई जनरेटेड वीडियो और ग्राफिक्स साझा किए जा रहे हैं। पार्टी के राजनीतिक संदेश, नीतियां और उपलब्धियां भी एआई कंटेंट के रूप में जेंजी तक पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि यूपी में करीब 21% वोटर 18 से 29 वर्ष की उम्र के हैं, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का खास फोकस है।
12: अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का व्यवहार किसी ट्रोलर की तरह हो गया है। झूठे चित्र, झूठे वीडियो लाकर समाज को भ्रम में पैदा करो।
13: समाजवादियों ने ही इनको कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप देने का काम किया। वही लैपटॉप समाजवादी द्वारा दिए लैपटॉप को, जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात है तो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए लैपटॉप और आईपैड से ही छात्रों ने अपनी पढ़ाई की।
1: समाजवादी पार्टी ही नहीं, अब कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक की नजर भी जेन जी क्लास के वोट बैंक की ओर घूम रही है। यूपी कांग्रेस भी डिजिटल मोर्चे पर सक्रिय हो चुकी है। हर जोन के लिए सोशल मीडिया और आईटी सेल की टीमें मजबूत की जा रही हैं। कांग्रेस मीम, व्यंग, ग्राफिक्स और विजुअल कंटेंट के जरिए सरकार विरोधी मुद्दों को युवाओं तक पहुंचा रही है। उधर मायावती के निर्देश पर बीएसपी भी बूथवार समीक्षा बैठकें कर रही है। इसमें भी जेन जी कनेक्ट का आधार तलाशा जा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: खबर पाकिस्तान की, जिसके कश्मीर प्रोपेगेंडा की अमेरिका ने हवा निकाल दी। अमेरिका के भारतीय राजदूत ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है।
14: ट्रंप के बेहद करीबी और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर न केवल श्रीनगर पहुंचे बल्कि इसे भारत का बेहद अहम हिस्सा भी बता दिया।
15: Knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi.
14: सर्जियो कोर का ये बयान महज इसलिए अहम नहीं क्योंकि वो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि ट्रंप ने उन्हें दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका का विशेष दूत भी बनाया है। इस लिहाज से उनके बयानों का प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर पड़ता है। उनके कश्मीर आने से पहले महबूबा मुफ्ती ने ये मांग उठाई थी कि अमेरिका कम से कम कश्मीर के लिए अपनी एडवाइजरी को हटा ले, जिसमें उसने अमेरिकी लोगों को कश्मीर न जाने की सलाह दे रखी है। इस पर भी सर्जियो कोर ने कश्मीर के पक्ष में बड़ा बयान दे दिया।
15: The chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. Because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
14: दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज लाशें बिछा रही है, जबकि श्रीनगर में अमेरिका के राजदूत बेखौफ होकर शिकारा की सवारी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद सर्जियो गोर के बयानों से पाकिस्तान बौखला गया। उसने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास की प्रभारी राजनयिक नताली बेकर को विदेश मंत्रालय तलब किया। उसके विदेश मंत्रालय ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने की कड़ी निंदा करता है और इसे पूरी तरह से खारिज करता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने ट्रंप के बेहद करीबी सर्जियो गोर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बता दिया। पाकिस्तान में मची खलबली अभी खत्म नहीं हुई है। उसके पूर्व राजनयिक मसूद खान कह रहे हैं कि सर्जियो गोर को जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी नहीं। अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।
0: लखनऊ में डबल मर्डर और आत्महत्या की वारदात हुई। एक ऐसी वारदात हर कोई हैरान है। एक बैंक कर्मी ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर आकर अपनी बहन का मर्डर कर दिया और अंत में खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हत्याकांड का राज छिपा है व्हाट्सएप स्टेटस में।

0: पहले पत्नी का मर्डर, फिर अपनी ही बहन की हत्या और अंत में खुद को भी गोली से उड़ा दिया। लखनऊ में आज डबल मर्डर और सुसाइड की ऐसी वारदात हुई है कि हर कोई हैरान है, सवाल पूछ रहा है कि SBI जैसे बैंक में काम करने वाले मानस ने ICICI बैंक में काम करने वाली पत्नी की हत्या क्यों की। मानस वाजपेयी ने पत्नी की हत्या के बाद अपनी ही बहन को क्यों मार दिया। मानस वाजपेयी ने पत्नी और बहन को मारने के बाद आत्महत्या क्यों की। लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर का ये प्राइवेट बैंक आज एक क्राइम सीन बन गया। इस बैंक में दिव्या मिश्रा नाम की एक महिला असिस्टेंट मैनेजर के पद पर थी। बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर का काम देखती थी। दोपहर में महिला के पास उनके पति का फोन आया और बैंक के बाहर मिलने के लिए बुलाया। चश्मदीदों के मुताबिक पति मानस ने दिव्या से पहले बात की और फिर अचानक से उसे गोली मार दी। इसके बाद पति वहां से भाग गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बैंक से पीड़िता दिव्या को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इधर छानबीन कर ही रही थी कि अचानक से खबर आई कि इस घटना स्थल से थोड़ी ही दूरी पर एक शख्स ने खुद को और अपनी बहन को गोली मार दी। पता चला कि ये वही शख्स है जिसने कुछ देर पहले इस प्राइवेट बैंक के बाहर पत्नी की हत्या की।
1: हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जो क्राइम सीन है। यूं तो ये प्राइवेट बैंक है, लेकिन अब इसकी बाहरी जगह क्राइम सीन में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरों में देखें तो ये वो जगह है जहां पर कुल मिलाकर ये हत्या की गई है। पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कुछ बातचीत की और उसके बाद यहीं पर इस जगह पर हत्या कर दी। और ये वो क्राइम सीन जगह है जहां पर ये पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। अब मैं आपको यहां लेकर चलता हूं। ये जो बैंक है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये वो बैंक है जहां उसकी पत्नी असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत थी। और इस बैंक को अगर आप देखें यहां पर, तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल तो ये बैंक बंद कर दिया गया है, लेकिन इसी गेट से बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी बाहर निकली थी और इसी गेट से बाहर निकलकर वो पत्नी यहाँ पहुंची बात करने के लिए अपने पति से। एक साल से सब कुछ ठीक नहीं था, याचिका पड़ी थी डाइवोर्स की। तो आखिर ऐसा क्या एकदम से हुआ कि पति मानस, जो खुद एक अच्छी पोस्ट पर SBI में था, उसे इस हत्या को अंजाम देना पड़ा। ये सवालों के घेरे में है। उसने मृत्यु यानी कि मर्डर के बाद एक व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दिया और अपनी पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया। क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन एक विवाद ने तीन जाने लखनऊ में फिलहाल ले ली।
0: पता चला कि मानस ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर बाकायदा ये घोषणा की, लिखा था कि आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। आस पड़ोस के लोग जब तक ये व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते, तब तक मानस वारदात को अंजाम दे चुका था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। लोगों ने पहले दरवाजा पीटा, दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर गए तो देखा कि दो लाशें पड़ी हैं, एक मानस की और दूसरी उनकी बहन की। टीवी पर भक्ति गीत चल रहे थे।
2: मेरे भाई का पास उसके दोस्त का फोन आया कि तुम्हारे मकान मालिक ने क्या स्टेटस लगाया, देखो। जब हम लोग ने स्टेटस देखा तब पता चला कि भैया अंदर हैं। हम लोग को पता चला स्टेटस लगा, तो हम लोग उनके रिलेशन में उनके मामा के लड़के आए जल्दी, तो हम लोग बेल बजाएं, फोन करें, फोन भी नहीं उठाए, घटखटाए, वो भी नहीं उठाए। फिर हम लोग बगल से गए छत से कि देखे, वहां से देखे तो वहां से भी अंदर बंद था। फिर तीन चार लोग मिलके, वहां के सब लोग मिलके दरवाजा तोड़े। जब दरवाजा तोड़े तब देखे वो गोली मार चुके थे अपने आप।
1: अच्छा, जब वो यहाँ आए थे ICICI बैंक से, तो क्या पसीना पसीना छूट रहा था, क्या माहौल था, वो कैसे लग रहा है?
3: जैसे हमेशा आते थे, वो
1: रिएक्ट नहीं कर रहे थे कुछ,
3: कोई ऐसा कोई नहीं। मुझसे नॉर्मल जैसे हमेशा पूछते थे, वैसे मुझसे पूछा उन्होंने।
1: क्या पूछा?
3: कि लोग कैसे हो। मैंने कहा ठीक है बस।
1: अच्छा, मतलब मर्डर करके आया तो नॉर्मली पूछा कैसे हो।
3: हाँ, नॉर्मल। वो हमेशा ही पूछते थे, कोई याद नहीं था।
1: उनके पास कोई गन थी, पिस्टल थी?
3: नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नजर में ऐसा कुछ नहीं था।
0: लेकिन सवाल यह है कि मानस ने पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया तो पत्नी की हत्या की, खुद को भी मार डाला, लेकिन अपनी बहन की हत्या क्यों की? बताया जा रहा है कि मानस के माता पिता की मौत हो चुकी थी और वो अपनी बहन के साथ अकेले रहते थे। पहले पत्नी भी साथ रहती थी, लेकिन पिछले लगभग एक साल से दोनों अलग थे। दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया भी चल रही थी। बताया जा रहा है कि मानस की बहन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, इसीलिए शायद मानस को ये लगा होगा कि उनके बाद बहन की देखभाल कौन करेगा। यही वजह रही कि मानस ने इतना बड़ा कदम उठाया, पत्नी को मारने के बाद बहन की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मार दी।
4: हुआ कि मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने मानस का स्टेटस देखा, तो मैंने कहा नहीं, तो अचानक से मैंने स्टेटस देखा तो उसमें मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि मेरी वाइफ को लेके मैंने स्टेटस देखा उसमें। फिर मैं बाहर आया, देखा तो जो किराएदार है वो दरवाजा जो है खटखटा रहे थे, खुल नहीं रहा था। फिर हम भी आए, हम भी खोलने लगे, तो पूरी मेहनत करी, उनके मामा के लड़के आए हुए थे, फिर एक साथ दरवाजा खोला तो देखा अंदर, जब उसे एंट्री किया तो देखा दोनों लोग

0: बहन को क्यों मारा?
1: ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ बहन को क्यों मारा, उसकी बहन तो वैसे मेंटली थी। हाँ
0: अच्छा, ये गोली पिस्टल की आवाज आई है?
1: कुछ नहीं है, जब हम लोग एंट्री किए तो टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। हाँ बस और कुछ नहीं था।
0: अंदर और क्या क्या पड़ा था बहन के?
1: कुछ नहीं सर, वैसे दोनों लोग लेटे हुए थे, पिस्टल पड़ी हुई थी, हम लोगों ने देखा, तुरंत पुलिस आई है, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई हुई।
0: तो वो दोनों लोग अंदर ही थे, किराए पे दे रखी थी?
2: जी जी।
0: और अब माता पिता कहाँ रहते?
2: माता पिता एक्सपायर हो गए काफी समय पहले।
0: इकलौती बहन थी और वो थे, और पत्नी उनकी कहाँ रहती?
2: पत्नी भी यहीं रहती थी?
3: नहीं
2: रहती थी,
3: 3 महीने से नहीं, 3-4 महीने।
4: यह हत्याकांड और सुसाइड केस भले ही सनसनीखेज जरूर रहा, लेकिन पुलिस के सामने पूरा चैप्टर ही क्लोज हो चुका है। पुलिस अभी छानबीन कर रही है, सारी गुत्थियां तो सुलझी हुई लग रही हैं, बस ये पता नहीं चल पा रहा कि वो क्या बात थी जिसकी वजह से मानस ने पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या की, क्योंकि दोनों करीब 1 साल से साथ में नहीं रहते थे, और मानस ने जो चीटिंग का आरोप लगाया है उनकी सच्चाई क्या है।
5: देखिए, ये आज बहुत ही एक दुखद घटना थाना गोमती नगर में हुई। प्रारंभिक रूप से जो सूचना मिली कि गोमती नगर के ICICI बैंक के कर्मी को गोली मार दी गई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी छानबीन टीम हमारी कर ही रही थी कि यहां हुसैरिया से एक सूचना मिली कि गोली चलने की आवाज और किसी व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने की बात हुई। टीम यहां भी पहुंची तो ये ज्ञात हुआ कि जो उस महिला पीड़िता मृतका के पति थे, उसने अपने सिस्टर का हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है। टीमें यहां पहुंचकर जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा के लिए भेज दिया है। हमारी फील्ड यूनिट यहां आकर सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है, और हमारे थाने की और सर्विलांस टीम जो है पूरी डिटेल जानकारी कर रही है कि किस पॉइंट पे किस बात के कारण आज की ये घटना ट्रिगर हुई।
4: आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: खबर मौसम की, जहां नदियों में उफान ने शहरों का बुरा हाल कर दिया। यूपी के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर लिया है।
7: ये प्रयागराज है, संगम नगरी प्रयागराज, कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन अभी तो एक्वा सिटी प्रयागराज बनी हुई है। ये प्रयागराज की सिवाई चिंतामणि रोड है, कहने को ये पौश इलाका है, लेकिन पौश इलाके की मूलभूत व्यवस्था यही है कि पानी की वजह से बिजली पानी सब बंद है।
8: घरों के सामने सड़कें हैं, वहाँ जलभराव की स्थिति है, और ये पानी जो बारिश का पानी है सड़कों के अलावा घर में भी घुस गया है। आलम यह है कि लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं बारिश के पानी ने इन सभी लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट कर लिया है।
7: लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, हालात ये हो गए हैं कि घर के बाहर निकले तो रोड पर पानी, घर पर रहे तो कमरे में पानी।
9: हम लोग के घर में बहुत सारा पानी घुस चुका है, तो हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, मेरे स्कूल में दो बार छुट्टी हो चुकी है, हम लोग के 2 एग्जाम कैंसिल हो चुके,
10: जिसको कहते हैं जेल, हम लोग जेल में बंद है, ना हमारे पास पानी है ना लाइट, हम लोग रात रात भर नहीं सोए, पंखा पुराना दिया बत्ती अगरबत्ती यही सब कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है, किसी तरह जो जरा से इकट्ठा पानी हुआ तो उसको उबाल के ठंडा करके वही पी रहे हैं।
11: और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना सभासद आए, ना विधायक आए, ना सांसद, तीनों भाजपा के।
7: वाराणसी का हाल भी देख लीजिए, बड़े बड़े घाटों को गंगा नदी ने अपने आगोश में ले लिया है।
12: वाराणसी में गंगा का जल स्तर पक्के घाटों को डुबोने के बाद अब गलियों और सड़कों के जरिए शहर के अंदर पहुंचने के लिए आमादा है। गंगा के अलावा वरुणा के भी काफी तटीय इलाकों में बढ़ता हुआ जल स्तर पहुंच चुका है।
7: कानपुर में भी गंगा नदी के विकराल रूप की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीमें संवेदनशील इलाकों की पहचान कर रही हैं, जहां खतरा ज्यादा है।
13: पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहां पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, जो खुद बोट के जरिए अपने बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं घाटों का। स्पीकर के जरिए लोगों को चेताया जा रहा है कि वह किस तरीके से सावधान रहें, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो डेंजरस मार्क पे लगभग पहुंच चुका है।
7: यूपी के 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आज तक ब्यूरो।
6: तो ब्रेक, आप प्लीज अपना

0: वंदे मातरम के छंद पर राजनीतिक प्रचंड अमित शाह ने बताया देश विरोधी मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति। इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष का उत्सव मनाएगी बीजेपी। सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम। जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर अदालत का हथौड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के निर्णय पर लगाई रोक। 11वीं 12वीं 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर। संघ ने किया मंथन। संसद मार्च के दौरान अधिक बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। और इमरान खान को लेकर बैकफुट पर शहबाज सरकार। जेल से अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारी। पाक पुलिस का जमावड़ा। खबर वंदे मातरम पर मचे घमासान की। जहां कांग्रेस अब वंदे मातरम के पहले दो पैरों पर अड़ी है, तो बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है, जिसे लेकर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
1: कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ कर दिया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम के दो पैरा ही गाएगी।
2: टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट व्हाटएवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबाइड दैट डिसीजंस। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज अवर डिसीजन। फर्स्ट टू चांस था।
1: अमित शाह इसे वंदे मातरम का अपमान बता रहे हैं।
3: इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
1: 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था, जिसके बाद 15 अगस्त को पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। 17 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी।
4: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही में गया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं।
1: अब कांग्रेस जहां दो पद गाने पर अड़ी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है।
5: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
6: मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया।
1: अब सवाल यह है कि क्या जिस वंदे मातरम को लेकर बिल पास किया गया है, क्या उसके अपमान के मुद्दे पर सरकार का एक्शन होगा या फिर ये सिर्फ सियासत तक सीमित रह जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। सोरेन सरकार के निर्णय पर रोक के बाद नौकरी खोने वाले सरकारी कर्मचारी अब खुशियां मना रहे हैं।
1: रविवार रांची में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों के जश्न को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आज हाईकोर्ट से प्रदर्शनकारियों को बड़ा झटका लगा। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है।
7: प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की धज्जी उड़ाई गई है सरकार के द्वारा, इसलिए हमने आ रहा ये बहस था कि इस तरह का ऑर्डर रातों रात नहीं पारित किया जा सकता है। टेंटेड और अनटेंटेड में फर्क करना पड़ेगा सरकार का, सरकार को।
1: अब मामले में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है,
8: शायद इसी वजह से विलंब हो रहा होगा जिसके लिए, लेकिन इतना दबाव और इतना मतलब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में।
9: सरकार ने पहले से ही ऐसा षड्यंत्र कर दिया था आंदोलन को समाप्त करने के लिए और एक बहुत ही कमजोर ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला था जो सबको पता था कि संभवतः ये जुडिशियल स्क्रूटनी के सामने टिकने वाला नहीं है, और हुआ भी वही। अदालत ने आज ये इंटरिम रोक लगा दी, सरकार से जवाब मांगा।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर के इम्तिहान को भी कैंसिल कर दिया था, जिससे एक झटके में 56 लोगों की नौकरी चली गई थी जो कि आज प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है।
10: और जज सर भी हमारी प्रॉब्लम को समझे, वो उन्होंने खुद बोला कि अगर ये मेरे साथ आप लोग कर देते, मेरे साथ ये इंसिडेंट हो जाता, रातों रात मेरा कुर्सी आप लोग छोड़वा देते तो हम क्या बोलते। वो खुद शर्मिंदा थे कि इस तरह डिसीजन सरकार कैसे ले सकती है, ये सीधा सीधी एक नेचुरल जस्टिस का हनन है।
1: बहरहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: जेन जी को लेकर हर पार्टी ने अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अब जेन जी वोटर्स को टारगेट करने का मन बना चुके हैं।
1: सरकारें ही नहीं, देश में अरसे से सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी अब जेन जी और जेन अल्फा के मुद्दों के जरिए जमीनी आधार दोबारा हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चालू करने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है। किस मंत्री को कब और किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का यह दौरा दिन भर का होगा जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए पीएम बेहद गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों को ये भी सलाह दी है कि पारंपरिक तरीके छोड़कर अब जेन जी और युवा वोटर्स के पसंदीदा तरीकों से संवाद स्थापित करें। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था। खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए थे। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आकी गई उसमें ये था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल एंगेजमेंट कितनी हुई, मंत्री के प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। उधर राहुल गांधी भी 22 अगस्त को पुणे में छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
11: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता।
1: बहरहाल जेन जी के मुद्दे ने हर पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में जेन अल्फा बुनियादी समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी मामले को लेकर सख्त हैं, जहां अब नए सिरे से किसी भी तरह की लापरवाही के विरोध में एक्शन के आदेश उन्होंने दे दिए हैं।
1: जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे, तो सीएम योगी ने सख्ती की। स्कूली बच्चों की परेशानियों को फौरन दूर करने के लिए सीएम दफ्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा, तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी उन्हें फौरन दूर करने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने दी है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में एमडीएम, किचन, ब्लैकबोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉक वार निर्देश दिए गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने जेनजी को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी जेनजी वोटरों को एआई, मीम और शॉर्ट वीडियो के जरिए साध रही है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक हैंडल से एआई
0: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एनकाउंटर, ये दो कार्रवाई ऐसी हैं जिनके दम पर सरकार कानून व्यवस्था की मजबूती, अपराधियों पर लगाम का दावा करती है। विपक्ष इन दोनों ढंगों से चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई का आरोप लगाता है। इस सब के बीच 15 महीने पुराने एक हाफ एनकाउंटर से जुड़ी खबर पर कोर्ट ने ही आदेश दिया, जहां एनकाउंटर की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए अदालत ने पुलिस अधिकारी की निशानेबाजी की क्षमता तक जांचने को कह दिया।
12: 12 मई 2025 जगह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, अलाउद्दीन उर्फ छुटकाऊ नाम के आरोपी को गोली मारकर हाफ एनकाउंटर किया जाता है। यूपी में हाफ एनकाउंटर का मतलब है पैरों में गोली लगना। मई 2025 में श्रावस्ती पुलिस की टीम आरोपी अलाउद्दीन को नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस कहती कि तभी इसने फायर किया और दोबारा जब रात के अंधेरे में पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हथियार लोड करना चाहा, तो ये है तत्कालीन एसएचओ इकोना अश्विनी कुमार दुबे, जो बहुत बहादुरी से कहा जाता है कि उसी रात के अंधेरे में केवल हथियार लोड होने की आवाज सुनकर ऐसी गोली चलाते हैं जो सीधे आरोपी के पैर में लगती है, किसी और को नहीं।
13: के पास वहां घेराबंदी की गई और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया, जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।
12: मई 2025 के इस हाफ एनकाउंटर पर 23 पुलिस वालों को पुरस्कार मिला, लेकिन अब एनकाउंटर से लेकर पुरस्कार तक पर सवालों का नया एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हाफ एनकाउंटर के 15 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मई 2025 के श्रावस्ती के इकोना में अलाउद्दीन वाले हाफ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने कहा है कि 23 पुलिस वालों से घिरे होने के बावजूद आरोपी ने फायरिंग की, जिसमें एक भी पुलिस वाला घायल नहीं होता। वहीं रात 11 बजे सुनसान इलाके में 15 मीटर की दूरी से एसएचओ ने गोली चलाई और वो सीधे आरोपी के दोनों पैर में लगी। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच का आदेश लखनऊ की अदालत ने दिया है और कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी जांच के दौरान तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे की निशानेबाजी और शूटिंग क्षमता का भी जरा परीक्षण कर ले।
14: कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की जीप में कैसे 23 लोग बैठ सकते हैं और वहीं रात के अंधेरे में एसएचओ, जिसने इस पूरी एनकाउंटर की कहानी बताई, एफआईआर दर्ज करवाई, वो रात के 11 बजे कैसे असलाह को लोड करने की आवाज से उसने फायरिंग की और जिसमें जो आरोपी था उसके दोनों पैर में सटीक जाकर गोली लगी है।
15: इतना सटीक निशाना बहुत सव्यसाची तो है नहीं, सव्यसाची तो मैंने सुना था कि राजा दशरथ थे जो किसी की आवाज पे तीर मार देते थे, उसी वजह से श्रवण कुमार भी मरा था, सब्यसाची नहीं है ये। अगर इन्हें ये बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने ऐसा अनुमान में लगाया, तो अनुमान से भी चलाया तो किसी अन्य को भी गोली लग सकती थी ना, कोई और भी तो मर सकता था। सटीक इनकाउंटर होना चाहिए, किसी अन्य की जनहानि नहीं होना चाहिए किसी का अन्य।
0: खबर राजस्थान की, जहां जेन अल्फा की समस्याओं को लेकर सरकार ने अनोखा आदेश जारी किया। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने हल्ला बोला है।
1: राजस्थान में मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस का ये प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश पर बैन लगा दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज मार्च निकाला और विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।
16: इतने बच्चों की जान चली गई, छतें गिर रही हैं, बाढ़ आ रही है, व्यवस्था चरमरा गई है, बजाय उस वास्तविकता को एक्सेप्ट करके उस पर कदम उठाएं, सरकार ने आदेश जारी कर दिया। कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई रील नहीं बनाएगा, कोई मीडिया नहीं जाएगा, सरकारी स्कूलों पे लोगों को पाबंद कर दिया। अगर आप जाएंगे अंदर, आप पे पॉस्को कानून लगा दिया जाएगा। तो ये सरकार को जो एक तानाशाही रवैया है, और शिक्षा मंत्री जो एक बेवजह इस प्रकार के आदेश जारी किए, उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं।
1: कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की, जो कि हंगामे में तब्दील हो गए।
17: किसको बचा रहे हैं? कब तक बचाएंगे? कब तक बचाएंगे इस चोर मंत्री को? 15 दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष आए थे, इन्होंने वादा करा था कि स्कूल को सही कर देंगे, आज तक एक कमरा नहीं बना पाए, ऊपर से नोटिस लगा दिया कि अंदर नहीं जा सकते, बेशर्म कहेंगे।
1: बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल कर रही है।
18: उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल और केवल मात्र हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था। उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से इसको स्पष्ट कर दिया।
1: दरअसल पिछले काफी वक्त से राजस्थान के स्कूलों की हालत को लेकर घमासान चल रहा था। सीजेपी ने स्कूलों के मुद्दे पर मोर्चा संभाला तो अलवर के एक स्कूल में प्रवक्ता आशुतोष प्रांका के जाने पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसके बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए ये निर्देश जारी किया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर पाकिस्तान की, जिसके कश्मीर प्रोपेगेंडा की अमेरिका ने हवा निकाल दी। अमेरिका के भारतीय राजदूत ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है।
19: ट्रंप के बेहद करीबी और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर न केवल श्रीनगर पहुंचे, बल्कि इसे भारत का बेहद अहम हिस्सा भी बता दिया।
20: Knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi.
19: सर्जियो गोर का ये बयान महज इसलिए अहम नहीं क्योंकि वो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि ट्रंप ने उन्हें दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका का विशेष दूत भी बनाया है। इस लिहाज से उनके बयानों का प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर पड़ता है। उनके कश्मीर आने से पहले महबूबा मुफ्ती ने ये मांग उठाई थी कि अमेरिका कम से कम कश्मीर के लिए अपनी एडवाइजरी को हटा ले, जिसमें उसने अमेरिकी लोगों को कश्मीर न जाने की सलाह दे रखी है। इस पर भी सर्जियो गोर ने कश्मीर के पक्ष में बड़ा बयान दे दिया।
20: The chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. Because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exists here.
19: दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज लाशें बिछा रही है, जबकि श्रीनगर में अमेरिका के राजदूत बेखौफ होकर शिकारा की सवारी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद सर्जियो गोर के बयानों से पाकिस्तान बौखला गया। उसने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास की प्रभारी राजनयिक नताली बेकर को विदेश मंत्रालय तलब किया। उसके विदेश मंत्रालय ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने की कड़ी निंदा करता है और इसे पूरी तरह से खारिज करता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने ट्रंप के बेहद करीबी सर्जियो गोर के बयान को غیر ذمہ دارانہ بتا دیا. پاکستان میں مچی کھلبلی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اس کے پورو راجنیک مسعود خان کہہ رہے ہیں کہ سرجو گور کو جموں کشمیر کے اتہاس کی جانکاری نہیں. اشرف وانی شری نگر آج تک.
0: خبر موسم کی, جہاں ندیوں میں عفان نے شہروں کا برا حال کر دیا. یوپی کے 16 ضلع باڑھ سے پربھاوت ہیں. ندیوں کے پانی نے رہائشی علاقوں کی اور رخ کر لیا ہے.
1: یہ پریاگ راج ہے, سنگم نگری پریاگ راج. کہنے کو تو یہ سمارٹ سٹی ہے, لیکن ابھی تو ایکوا سٹی پریاگ راج بنی ہوئی ہے. یہ پریاگ راج کی سیوائی چنتامنی روڈ ہے. کہنے کو یہ پوش علاقہ ہے, لیکن پوش علاقے کی مول بھوت ویوستھا یہی ہے کہ پانی کی وجہ سے بجلی پانی سب بند ہے.
2: گھروں کے سامنے سڑکیں ہیں, وہاں جل بھراؤ کی استھتی ہے. اور یہ پانی جو بارش کا پانی ہے سڑکوں کے علاوہ گھر میں بھی گھس گیا ہے. عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں قید رہنے کو مجبور ہیں. یعنی ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں بارش کے پانی نے ان سبھی لوگوں کو گھروں میں ہاؤس اریسٹ کر لیا ہے.
1: لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے ہیں. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ گھر کے باہر نکلے تو روڈ پر پانی, گھر پر رہے تو کمرے میں پانی.
21: ہم لوگ کے گھر میں بہت سارا پانی گھس چکا ہے, تو ہم لوگ کہیں جا نہیں پا رہے ہیں. دوسرا, میرے اسکول میں دو بار چھٹی ہو چکی ہے, ہم لوگ کے دو ایگزام کینسل ہو چکے.
22: جس کو کہتے ہیں جیل, ہم لوگ جیل میں بند ہیں. نہ ہمارے پاس پانی ہے, نہ لائٹ. ہم لوگ رات رات بھر نہیں سوئے, پنکھا پرانا دیا بتی اگر بتی یہی سب کر رہے ہیں. پینے کا پانی نہیں ہے, نہانے کا پانی نہیں ہے. کسی طرح جو ذرا سے اکٹھا پانی ہوا تو اس کو ابال کے ٹھنڈا کر کے وہی پی رہے ہیں.
23: اور پانی نکالنے کی کوئی ویوستھا نہیں ہے, نہ سبھاسد آئے, نہ ودھایک آئے, نہ سانسد, تینوں بھاجپا کے.
1: وارانسی کا حال بھی دیکھ لیجیے. بڑے بڑے گھاٹوں کو گنگا ندی نے اپنے آغوش میں لے لیا ہے.
24: وارانسی میں گنگا کا جل استر پکے گھاٹوں کو ڈبونے کے بعد اب گلیوں اور سڑکوں کے ذریعے شہر کے اندر پہنچنے کے لیے آمادہ ہے. گنگا کے علاوہ ورونا کے بھی کافی تٹی علاقوں میں بڑھتا ہوا جل استر پہنچ چکا ہے.
1: کانپور میں بھی گنگا ندی کے وکرال روپ کی تصویریں آ رہی ہیں. ایسے میں پولیس اور پرشاسن کی ٹیمیں سمویدنشیل علاقوں کی پہچان کر رہی ہیں جہاں خطرہ زیادہ ہے.
25: پیچھے اگر آپ میرے دیکھیں گے تو یہاں پر کانپور کے پولیس کمشنر موجود ہیں, جو خود بوٹ کے ذریعے اپنے باقی پولیس ادھیکاریوں کے ساتھ یہاں پر نریکشن کر رہے ہیں گھاٹوں کا. سپیکر کے ذریعے لوگوں کو چتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے ساودھان رہے, کیونکہ جو واٹر لیول ہے وہ ڈینجرس مارک پہ لگ بھگ پہنچ چکا ہے.
1: یو پی کے 13 ضلعوں میں باڑھ جیسے حالات ہیں. 84,000 سے زیادہ لوگ پربھاوت ہیں. آج تک بیورو.
0: پہاڑوں پر جم کر برسات ہو رہی ہے. جموں کشمیر ہماچل میں موسلا دھار بارش سے فلیش فلڈ آ گیا. کئی علاقوں میں ہماچل کے کانگڑا میں نیشنل ہائی وے پر اچانک پانی آنے سے کئی لوگ پھنس گئے.
26: یہ تصویریں کانگڑا کے پراگپور علاقے کی ہیں, جہاں فلیش فلڈ سے لوگوں کی مصیبت بڑھ گئی. بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کانگڑا چنڈی گڑھ نیشنل ہائی وے تک پانی پہنچ گیا. پانی کے تیز بہاؤ کے بیچ میں ایک کار سوار پھنس گیا. کار ڈرائیور نے بہت کوشش کی, لیکن پانی کی دھارا اتنی تیز تھی کہ گاڑی آگے نہیں بڑھ سکی. موقع پر موجود استھانیہ لوگوں نے ترنت مدد کی اور کار میں سوار لوگوں کو باہر نکالا, لیکن کار پانی میں بہ گئی. اب ذرا انت ناگ کی تصویریں بھی دیکھیے. گھروں کے بیچ میں پانی ایسا آ گیا مانو یہ مکان کسی ندی پر بنائے گئے ہوں. اس سے پہلے کہ لوگ کچھ سمجھ پاتے, آنگن تک پانی بھر گیا. اونچائی والے علاقوں میں جب موسلادھار برسات ہوتی ہے تو نچلے علاقوں میں فلیش فلڈ یعنی اچانک باڑھ کی گھٹنائیں بڑھ جاتی ہیں. جموں کشمیر اور ہماچل میں بھی ان دنوں فلیش فلڈ کی گھٹنائیں بڑھ گئی ہیں. آج تک بیورو.
0: بھارت اور جاپان کے بیچ آج ایک بڑا رکشا سمجھوتا ہوا. اس سمجھوتے میں کئی وشیش باتیں ہیں, لیکن سب سے مہتوپورن بات بھارت اور جاپان کا مل کر نوسینا کا جہاز بنانے کی طرف بڑھنا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بھارت کی نوسینا نہ صرف آتم نربھر ہوگی بلکہ میک ان انڈیا کو بھی اس سے ملے گا بڑھاوا.
27: پہلی بار مل کر نوسینا کا جہاز بنانے کی طرف بڑھے بھارت اور جاپان. پہلی بار بھارت آئیں گے جاپان کے لڑاکو ویمان. भारत के थिएटर कमांड में भी मदद करेगा जापान। भारत और जापान के बीच बढ़ता दोस्ताना दुश्मनों को खबरदार कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजो कोइज़ुमी को कोनिचिवा और अरिगातो कहकर विदाई दी है, जिसके जवाब में कोइज़ुमी ने जवाब में नमस्ते कहकर भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों के गहरे रिश्तों का साफ साफ संकेत दे दिया। रक्षा मंत्रियों के बीच दिखी ये गर्मजोशी भारत और जापान के बीच हुए बड़े रक्षा समझौते में भी नजर आती है, जो देश के दुश्मनों के लिए जोरदार झटके से कम नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक में इन दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था संबंधी समझौते को लेकर हस्ताक्षर किए गए।
3: नमस्ते।
4: एक्सेलेंसी कोइज़ुमी-शान, कोनिचिवा।
27: इसकी जानकारी खुद देश के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर दी है और लिखा है कि इंडो पैसिफिक में स्थिरता के लिए एक अहम पड़ाव। नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री कोइज़ुमी के साथ बहुत सार्थक बैठक हुई है। हमारी बातचीत समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया रक्षा तकनीक और रणनीतिक भरोसे को बढ़ाने पर केंद्रित रही है।
4: अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
27: दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा समझौते में नौसेनाओं के बीच सहयोग, सूचना का आदान प्रदान, खोज और बचाव, मानवीय सहायता, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। लेकिन सबसे अहम बात, भारत और जापान का नौसेना के जहाजों को मिलकर बनाने और डिजाइन करने को लेकर बनती एक राय है। जापान के एडवांस तकनीक और भारत की उत्पादन क्षमता का मेल मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। जापान के मोगामी क्लास फ्रिगेट जैसे आधुनिक जहाजों की तकनीक भारत के लिए उपयोगी हो सकती है। इससे पहले दोनों देशों के बीच नेवल रेडियो एंटीना सिस्टम को मिलकर बनाने का समझौता कर लिया गया था, लेकिन मिलकर नौसैनिक जहाज बनाने का कदम भारत की नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। इनका सीधा असर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के इरादों पर होगा, जो जापान फिलीपींस जैसे अपने पड़ोसियों को डराने के साथ ही हिंद महासागर में भी अपना शिकंजा कस रहा है। लेकिन इस समुद्री समझौते के बाद दोनों देश हर तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे।
0: तो ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: वंदे मातरम के छंद पर राजनीतिक प्रचंड अमित शाह ने बताया देश विरोधी मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति। इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष का उत्सव मनाएगी बीजेपी। सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम। जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर अदालत का हथौड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के निर्णय पर लगाई रोक। 11वीं 12वीं 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर। संघ ने किया मंथन। संसद मार्च के दौरान अधिक बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। और इमरान खान को लेकर बैकवर्ड पर शहबाज सरकार। जेल से अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारी, पाक पुलिस का जमावड़ा। खबर वंदे मातरम पर मचे घमासान की। जहां कांग्रेस अब वंदे मातरम के पहले दो पैरों पर अड़ी है, तो बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है, जिसे लेकर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
1: कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ कर दिया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम के दो पैरा ही गाएगी।
2: टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट व्हाटएवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबाइड दैट डिसीजंस। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज अवर डिसीजन। फर्स्ट टू चांस था।
1: अमित शाह इसे वंदे मातरम का अपमान बता रहे हैं।
3: इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
1: 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था, जिसके बाद 15 अगस्त को पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। 17 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी।
4: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गाया। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं।
1: अब कांग्रेस जहां दो पद गाने पर अड़ी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है।
5: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
6: मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया।
1: अब सवाल यह है कि क्या जिस वंदे मातरम को लेकर बिल पास किया गया है, क्या उसके अपमान के मुद्दे पर सरकार का एक्शन होगा या फिर ये सिर्फ सियासत तक सीमित रह जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। सोरेन सरकार के निर्णय पर रोक के बाद नौकरी खोने वाले सरकारी कर्मचारी अब खुशियां मना रहे हैं।
1: वंदे रांची में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों के जश्न को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आज हाईकोर्ट से प्रदर्शनकारियों को बड़ा झटका लगा। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है।
7: प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की धज्जी उड़ाई गई है सरकार के द्वारा, इसलिए हमने आ रहा ये बहस था कि इस तरह का ऑर्डर रातों रात नहीं पारित किया जा सकता है। टेंटेड और अनटेंटेड में फर्क करना पड़ेगा सरकार का, सरकार को।
1: अब मामले में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है,
8: शायद इसी वजह से विलंब हो रहा होगा जिसके लिए, लेकिन इतना दबाव और इतना मतलब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में।
9: सरकार ने पहले से ही ऐसा षड्यंत्र कर दिया था आंदोलन को समाप्त करने के लिए और एक बहुत ही कमजोर ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला था जो सबको पता था कि संभवतः ये जुडिशियल स्क्रूटनी के सामने टिकने वाला नहीं है, और हुआ भी वही। अदालत ने आज ये इंटरिम रोक लगा दी, सरकार से जवाब मांगा।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर के इम्तिहान को भी कैंसिल कर दिया था, जिससे एक झटके में 56 लोगों की नौकरी चली गई थी जो कि आज प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है।
10: और जज सर भी हमारी प्रॉब्लम को समझे, वो उन्होंने खुद बोला कि अगर ये मेरे साथ आप लोग कर देते, मेरे साथ ये इंसिडेंट हो जाता, रातों रात मेरा कुर्सी आप लोग छोड़वा देते तो हम क्या बोलते। वो खुद शर्मिंदा थे कि इस तरह डिसीजन सरकार कैसे ले सकती है, ये सीधा सीधी एक नेचुरल जस्टिस का हनन है।
1: बहरहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: जेन जी को लेकर हर पार्टी ने अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अब जेन जी वोटर्स को टारगेट करने का मन बना चुके हैं।
1: सरकारें ही नहीं, देश में अरसे से सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी अब जेन जी और जेन अल्फा के मुद्दों के जरिए जमीनी आधार दोबारा हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चालू करने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है। किस मंत्री को कब और किस यूनिवर्सिटी में जाना है इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का यह दौरा दिन भर का होगा जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए पीएम बेहद गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों को ये भी सलाह दी है कि पारंपरिक तरीके छोड़कर अब जेन जी और युवा वोटर्स के पसंदीदा तरीकों से संवाद स्थापित करें। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था। खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए थे। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आकी गई उसमें ये था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल एंगेजमेंट कितनी हुई, मंत्री के प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। उधर राहुल गांधी भी 22 अगस्त को पुणे में छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
11: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता।
1: बहरहाल जेन जी के मुद्दे ने हर पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में जैन अल्फा बुनियादी समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी मामले को लेकर सख्त हैं, जहां नए सिरे से किसी भी तरह की लापरवाही के विरोध में एक्शन के आदेश उन्होंने दे दिए हैं।
1: जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे, तो सीएम योगी ने सख्ती की। स्कूली बच्चों की परेशानियों को फौरन दूर करने के लिए सीएम दफ्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा, तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी उन्हें फौरन दूर करने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने दी है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में एमडीएम, किचन, ब्लैकबोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉक वार निर्देश दिए गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने जेंजी को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी जेंजी वोटरों को एआई, मीम और शॉर्ट वीडियो के जरिए साध रही है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक हैंडल से एआई जनरेटेड वीडियो और ग्राफिक्स साझा किए जा रहे हैं। पार्टी के राजनीतिक संदेश, नीतियां और उपलब्धियां भी एआई कंटेंट के रूप में जेन जी तक पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि यूपी में करीब 21% वोटर 18 से 29 वर्ष की उम्र के हैं, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का खास फोकस है।
12: अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का व्यवहार किसी ट्रोलर की तरह हो गया है। झूठे चित्र, झूठे वीडियो लाकर समाज को भ्रम में पैदा करो।
13: समाजवादियों ने ही इनको कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप देने का काम किया। वही लैपटॉप समाजवादी द्वारा दिए लैपटॉप को, जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात है तो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए लैपटॉप और आईपैड से ही छात्रों ने अपनी पढ़ाई की।
1: समाजवादी पार्टी ही नहीं, अब कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक की नजर भी जेन जी क्लास के वोट बैंक की ओर घूम रही है। यूपी कांग्रेस भी डिजिटल मोर्चे पर सक्रिय हो चुकी है। हर जोन के लिए सोशल मीडिया और आईटी सेल की टीमें मजबूत की जा रही हैं। कांग्रेस मीम, व्यंग, ग्राफिक्स और विजुअल कंटेंट के जरिए सरकार विरोधी मुद्दों को युवाओं तक पहुंचा रही है। उधर मायावती के निर्देश पर बीएसपी भी बूथवार समीक्षा बैठकें कर रही है। इसमें भी जेन जी कनेक्ट का आधार तलाशा जा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एनकाउंटर ये दो कार्रवाई ऐसी हैं जिनके दम पर सरकार कानून व्यवस्था की मजबूती, अपराधियों पर लगाम का दावा करती है। विपक्ष इन दोनों ढंगों से चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई का आरोप लगाता है। इस सब के बीच 15 महीने पुराने एक हाफ एनकाउंटर से जुड़ी खबर पर कोर्ट ने ही आदेश दिया, जहां एनकाउंटर की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए अदालत ने पुलिस अधिकारी की निशानेबाजी की क्षमता तक जांचने को कह दिया।
14: 12 मई 2025 जगह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, अलाउद्दीन उर्फ छुटकऊ नाम के आरोपी को गोली मारकर हाफ एनकाउंटर किया जाता है। यूपी में हाफ एनकाउंटर का मतलब है पैरों में गोली लगना। मई 2025 में श्रावस्ती पुलिस की टीम आरोपी अलाउद्दीन को नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस कहती कि तभी इसने फायर किया और दोबारा जब रात के अंधेरे में पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हथियार लोड करना चाहा, तो ये है तत्कालीन एसएचओ इकोना अश्विनी कुमार दुबे, जो बहुत बहादुरी से कहा जाता है कि उसी रात के अंधेरे में केवल हथियार लोड होने की आवाज सुनकर ऐसी गोली चलाते हैं जो सीधे आरोपी के पैर में लगती है, किसी और को नहीं।
15: रात के पास वहां घेराबंदी की गई और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया, जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।
14: मई 2025 के इस हाफ एनकाउंटर पर 23 पुलिस वालों को पुरस्कार मिला, लेकिन अब एनकाउंटर से लेकर पुरस्कार तक पर सवालों का नया एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हाफ एनकाउंटर के 15 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मई 2025 के श्रावस्ती के एकौना में अलाउद्दीन वाले हाफ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने कहा है कि 23 पुलिस वालों से घिरे होने के बावजूद आरोपी ने फायरिंग की जिसमें एक भी पुलिस वाला घायल नहीं होता। वहीं रात 11 बजे सुनसान इलाके में 15 मीटर की दूरी से एसएचओ ने गोली चलाई और वो सीधे आरोपी के दोनों पैर में लगी। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच का आदेश लखनऊ की अदालत ने दिया है और कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी जांच के दौरान तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे की निशानेबाजी और शूटिंग क्षमता का भी जरा परीक्षण कर ले।
16: कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की जीप में कैसे 23 लोग बैठ सकते हैं और वहीं रात के अंधेरे में एसएचओ जिसने इस पूरी एनकाउंटर की कहानी बताई, एफआईआर दर्ज करवाई, वो रात के 11 बजे कैसे असलाह को लोड करने की आवाज से उसने फायरिंग की और जिसमें जो आरोपी था उसके दोनों पैर में सटीक जाकर गोली लगी है।
17: इतना सटीक निशाना बहुत सव्यसाची तो है नहीं, सव्यसाची तो मैंने सुना था कि राजा दशरथ थे जो किसी की आवाज पे तीर मार देते थे, उसी में शायद श्रवण कुमार भी मरा था। सव्यसाची नहीं है ये, अगर इन्हें ये बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने ऐसा अनुमान में लगाया तो अनुमान से भी चलाया तो किसी अन्य को भी गोली लग सकती थी ना, कोई और भी तो मर सकता था। सटीक इनकाउंटर होना चाहिए, किसी अन्य की जनहानि नहीं होना चाहिए, किसी का अन्य घायल भी हो सकता था। ये मुझे गले से उतरने वाली बात नहीं, कोर्ट ने बिल्कुल सही ये जांच के आदेश दिए हैं और मैंने बहुत पहले भी कहा है कि जिस दिन एनकाउंटर इस तरह के फंसेंगे जवाब देते नहीं बनेगा, सजा हो जाएगी लोगों को।
18: जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है छुटकाऊ का गोली लगने के बाद, उसमें जो वून का साइज आता है वो है 0.5 सेंटीमीटर और जो गोली एसएचओ के माध्यम से पता, केस डायरी के माध्यम से पता चली है कि चलाई गई है वो है 0.9 mm की। तो गोली जब 9 mm की है और एंट्री वूंड है 0.5 mm का, तो ये बहुत ही इम्प्रोबेबल चीज़ें हैं जो कोर्ट को लगी हैं। एक बहुत ही कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई है पुलिस के द्वारा और जो कि मानने के योग्य नहीं है।
14: उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत से एनकाउंटर पर सियासी सवाल जवाब होता आया है। श्रावस्ती एनकाउंटर अपने आप में शायद ऐसा पहला केस है जहां एनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले की निशानेबाजी क्षमता के परीक्षण तक का आदेश दे दिया गया है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: खबर राजस्थान की, जहां जेन अल्फा की समस्याओं को लेकर सरकार ने अनोखा आदेश जारी किया। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई जिससे लेकर अब कांग्रेस ने हल्ला बोला है।
1: राजस्थान में मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस का ये प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है जिसमें राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश पर बैन लगा दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज मार्च निकाला और विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।
19: इतने बच्चों की जान चली गई, छतें गिर रही हैं, बाढ़ आ रही है, व्यवस्था चरमरा गई है, बजाय उस वास्तविकता को एक्सेप्ट करके उस पे कदम उठाएं, सरकार ने आदेश जारी कर दिया। कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई रील नहीं बनाएगा, कोई मीडिया नहीं जाएगा, सरकारी स्कूलों पे लोगों को पाबंद कर दिया। अगर आप जाएंगे अंदर आप पे पॉस्को कानून लगा दिया जाएगा। तो ये सरकार को जो एक तानाशाह रवैया है और शिक्षा मंत्री जो एक बेवजह इस प्रकार के आदेश जारी किए उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं।
1: कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की जो कि हंगामे में तब्दील हो गई।
20: किसको बचा रहे हैं? कब तक बचाएंगे? कब तक बचाएंगे इस चोर मंत्री को? 15 दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष आए थे, इन्होंने वादा करा था कि स्कूल को सही कर देंगे, आज तक एक कमरा नहीं बना पाए, ऊपर से नोटिस लगा दिया कि अंदर नहीं जा सकते, बेशर्म कहेंगे।
1: बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल कर रही है।
21: उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल और केवल मात्र हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था, उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से इसको स्पष्ट कर दिया।
1: दरअसल पिछले काफी वक्त से राजस्थान के स्कूलों की हालत को लेकर घमासान चल रहा था। सीजेपी ने स्कूलों के मुद्दे पर मोर्चा संभाला तो अलवर के एक स्कूल में प्रवक्ता आशुतोष रांका के जाने पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसके बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए ये निर्देश जारी किया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: लखनऊ में डबल मर्डर और आत्महत्या की वारदात हुई। एक ऐसी वारदात हर कोई हैरान है। एक बैंक कर्मी ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर आकर अपनी बहन का मर्डर कर दिया और अंत में खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हत्याकांड का राज छिपा है व्हाट्सएप स्टेटस में।

0: पत्नी का मर्डर, फिर अपनी ही बहन की हत्या और अंत में खुद को भी गोली से उड़ा दिया। लखनऊ में आज डबल मर्डर और सुसाइड की ऐसी वारदात हुई है कि हर कोई हैरान है, सवाल पूछ रहा है कि SBI जैसे बैंक में काम करने वाले मानस ने ICICI बैंक में काम करने वाली पत्नी की हत्या क्यों की। मानस वाजपेयी ने पत्नी की हत्या के बाद अपनी ही बहन को क्यों मार दिया। मानस वाजपेयी ने पत्नी और बहन को मारने के बाद आत्महत्या क्यों की। लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर का ये प्राइवेट बैंक आज एक क्राइम सीन बन गया। इस बैंक में दिव्या मिश्रा नाम की एक महिला असिस्टेंट मैनेजर के पद पर थी। बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर का काम देखती थी। दोपहर में महिला के पास उनके पति का फोन आया और बैंक के बाहर मिलने के लिए बुलाया। चश्मदीदों के मुताबिक पति मानस ने दिव्या से पहले बात की और फिर अचानक से उसे गोली मार दी। इसके बाद पति वहां से भाग गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बैंक से पीड़िता दिव्या को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इधर छानबीन कर ही रही थी कि अचानक से खबर आई कि इस घटना स्थल से थोड़ी ही दूरी पर एक शख्स ने खुद को और अपनी बहन को गोली मार दी। पता चला कि ये वही शख्स है जिसने कुछ देर पहले इस प्राइवेट बैंक के बाहर पत्नी की हत्या की।
1: हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जो क्राइम सीन है। यूं तो ये प्राइवेट बैंक है, लेकिन अब इसकी बाहरी जगह क्राइम सीन में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरों में देखें तो ये वो जगह है जहां पर कुल मिलाकर ये हत्या की गई है। पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कुछ बातचीत की और उसके बाद यहीं पर इस जगह पर हत्या कर दी। और ये वो क्राइम सीन जगह है जहां पर ये पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। अब मैं आपको यहां लेकर चलता हूं। ये जो बैंक है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये वो बैंक है जहां उसकी पत्नी असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत थी। और इस बैंक को अगर आप देखें यहां पर, तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल तो ये बैंक बंद कर दिया गया है, लेकिन इसी गेट से बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी बाहर निकली थी और इसी गेट से बाहर निकलकर वो पत्नी यहाँ पहुंची बात करने के लिए अपने पति से। एक साल से सब कुछ ठीक नहीं था, याचिका पड़ी थी डाइवोर्स की। तो आखिर ऐसा क्या एकदम से हुआ कि पति मानस, जो खुद एक अच्छी पोस्ट पर SBI में था, उसे इस हत्या को अंजाम देना पड़ा। ये सवालों के घेरे में है। उसने मृत्यु यानी कि मर्डर के बाद एक व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दिया और अपनी पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया। क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन एक विवाद ने तीन जाने लखनऊ में फिलहाल ले ली।
0: पता चला कि मानस ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर बाकायदा ये घोषणा की, लिखा था कि आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। आस पड़ोस के लोग जब तक ये व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते, तब तक मानस वारदात को अंजाम दे चुका था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। लोगों ने पहले दरवाजा पीटा, दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर गए तो देखा कि दो लाशें पड़ी हैं, एक मानस की और दूसरी उनकी बहन की। टीवी पर भक्ति गीत चल रहे थे।
2: मेरे भाई का पास उसके दोस्त का फोन आया कि तुम्हारे मकान मालिक ने क्या स्टेटस लगाया, देखो। जब हम लोग ने स्टेटस देखा तब पता चला कि भैया अंदर हैं। हम लोग को पता चला स्टेटस लगा, तो हम लोग उनके रिलेशन में उनके मामा के लड़के आए जल्दी जल्दी, तो हम लोग बेल बजाए, फोन करें, फोन भी नहीं उठाए, घटखटाए, वो भी नहीं उठाए। फिर हम लोग बगल से गए छत से कि देखे, वहां से देखे तो वहां से भी अंदर बंद था। फिर तीन चार लोग मिलके, वहां के सब लोग मिलके दरवाजा तोड़े। जब दरवाजा तोड़े तब देखे वो गोली मार चुके थे अपने आप।
1: अच्छा, जब वो यहाँ आए थे ICICI बैंक से, तो क्या पसीना पसीना छूट रहा था, क्या माहौल था, वो कैसे लग रहा है?
3: जैसे हमेशा आते थे, वो
1: रिएक्ट नहीं कर रहे थे कुछ,
3: कोई ऐसा कोई नहीं। मुझसे नॉर्मल जैसे हमेशा पूछते थे, वैसे मुझसे पूछा उन्होंने।
1: क्या पूछा?
3: कि लोग कैसे हो। मैंने कहा ठीक है बस।
1: अच्छा, मतलब मर्डर करके आया तो नॉर्मली पूछा कैसे हो।
3: हाँ, नॉर्मल। वो हमेशा ही पूछते थे, कोई याद नहीं था
1: उनके पास। कोई गन थी, पिस्टल थी?
3: नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नजर में ऐसा कुछ नहीं था।
0: लेकिन सवाल यह है कि मानस ने पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया तो पत्नी की हत्या की, खुद को भी मार डाला, लेकिन अपनी बहन की हत्या क्यों की? बताया जा रहा है कि मानस के माता पिता की मौत हो चुकी थी और वो अपनी बहन के साथ अकेले रहते थे। पहले पत्नी भी साथ रहती थी, लेकिन पिछले लगभग एक साल से दोनों अलग थे। दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया भी चल रही थी। बताया जा रहा है कि मानस की बहन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, इसीलिए शायद मानस को ये लगा होगा कि उनके बाद बहन की देखभाल कौन करेगा। यही वजह रही कि मानस ने इतना बड़ा कदम उठाया, पत्नी को मारने के बाद बहन की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मार दी।
4: हुआ कि मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने मानस का स्टेटस देखा, तो मैंने कहा नहीं, तो अचानक से मैंने स्टेटस देखा तो उसमें मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि मेरी वाइफ को लेके मैंने स्टेटस देखा उसमें। फिर मैं बाहर आया, देखा तो जो किराएदार है वो दरवाजा जो है खटखटा रहे थे, खुल नहीं रहा था। फिर हम भी आए, हम भी खोलने लगे, तो पूरी मेहनत करी, उनके मामा के लड़के आए हुए थे, फिर एक साथ दरवाजा खोला तो देखा अंदर, जब उसे एंट्री किया तो देखा दोनों लोग मरे हुए पड़े हुए थे।
5: तो क्या वजह कुछ समझ में आ रही है?
4: नहीं, वजह कोई नहीं, बस उसकी बहन में
5: इस पे दो लिखा था, चीट किया।
4: हाँ, उनकी वाइफ ने चीट किया, ऐसे में स्टेटस लिखा हुआ था।
5: बहन को क्यों मारा
4: ये तो बता नहीं सकता हूँ, बहन को क्यों मारा, उसकी बहन तो वैसे भी मेंटली थी।

0: एंट्री किए तो टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। हाँ
1: बस
0: और कुछ नहीं था।
1: अंदर और क्या क्या पड़ा था बहन के?
0: कुछ नहीं, सब ऐसे दोनों लोग लेटे हुए थे, पिस्तौल पड़ी हुई थी, हम लोगों ने देखा, तुरंत पुलिस आई, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई हुई।
1: तो वो दोनों लोग अंदर ही थे, किराए पे दे रखी थी।
2: जी जी।
1: और अब माता पिता कहाँ रहते?
2: माता पिता एक्सपायर हो गए काफी समय पहले।
1: इकलौती बहन थी और वो थे, और पत्नी उनकी कहाँ रहती?
2: पत्नी भी यहीं रहती थी।
3: नहीं
2: रहती थी,
3: 3 महीने से नहीं, 3-4 महीने।
4: यह हत्याकांड और सुसाइड केस भले ही सनसनीखेज जरूर रहा, लेकिन पुलिस के सामने पूरा चैप्टर ही क्लोज हो चुका है। पुलिस अभी छानबीन कर रही है, सारी गुत्थियां तो सुलझी हुई लग रही हैं, बस ये पता नहीं चल पा रहा कि वो क्या बात थी जिसकी वजह से मानस ने पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या की, क्योंकि दोनों करीब 1 साल से साथ में नहीं रहते थे, और मानस ने जो चीटिंग का आरोप लगाया है उनकी सच्चाई क्या है।
5: देखिए, ये आज बहुत ही एक दुखद घटना
6: आराम से कर लो।
5: थाना गोमती नगर में हुई। प्रारंभिक रूप से जो सूचना मिली कि गोमती नगर के ICICI बैंक के कर्मी को गोली मार दी गई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी छानबीन टीम हमारी कर ही रही थी कि यहां हुसैरिया से एक सूचना मिली कि गोली चलने की आवाज और किसी व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने की बात हुई। टीम यहां भी पहुंची तो ये ज्ञात हुआ कि जो उस महिला पीड़िता मृतका के पति थे, उसने अपने सिस्टर का हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है। टीमें यहां पहुंचकर जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा के लिए भेज दिया है। हमारी फील्ड यूनिट यहां आकर सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है, और हमारे थाने की और सर्विलांस टीम जो है पूरी डिटेल जानकारी कर रही है कि किस पॉइंट पे किस बात के कारण आज की ये घटना ट्रिगर हुई।
4: आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
7: तो ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: वंदे मातरम के छंद पर राजनीतिक प्रचंड अमित शाह ने बताया देश विरोधी मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति। इन्होंने रखी विभाजन की नींव, कांग्रेसी नेताओं ने किया पलटवार। मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष का उत्सव मनाएगी बीजेपी। सेवा संकल्प महोत्सव होगा नाम। जनता तक विकास मॉडल पहुंचाने का काम, स्वच्छता से स्वास्थ्य तक के प्रोग्राम। आंदोलन के दबाव में परीक्षा रद्द करने के निर्णय पर अदालत का हथौड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के निर्णय पर लगाई रोक। 11वीं 12वीं 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी काम पर लौटे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर। संघ ने किया मंथन। संसद मार्च के दौरान अधिक बलप्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। और इमरान खान को लेकर बैकफुट पर शहबाज सरकार। जेल से अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारी। पाक पुलिस का जमावड़ा। खबर वंदे मातरम पर मचे घमासान की। जहां कांग्रेस अब वंदे मातरम के पहले दो पैरों पर अड़ी है, तो बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है, जिसे लेकर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
1: कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ कर दिया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम के दो पैरा ही गाएगी।
2: टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट व्हाटएवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबाइड दैट डिसीजंस। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज अवर डिसीजन। फर्स्ट टू चांस था।
1: अमित शाह इसे वंदे मातरम का अपमान बता रहे हैं।
3: इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि कर